0: feelings. Well, we are going to challenge that idea. It is not going to be so simple for the government to decide that the Indian people will not fight for their voice.
1: राहुल इसका जवाब हां में दे चुके हैं। राहुल कह रहे हैं कि जनतर मंतर पर जाएंगे, वहीं दोबारा विरोध प्रदर्शन करेंगे, जहां सीजेपी के नेताओं को मिनट छोड़िए, कुछ ही सेकंडों में पुलिस ने पकड़ लिया। सवाल यह है कि अगर किसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया तो उसे क्या अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि राहुल के जंतर मंतर पर दिए बयान के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से जंतर मंतर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जंतर मंतर छोड़िए इन्हें पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के बाहर धरने तक से रोक दिया, दो दो बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया।
2: वैसी अपना विरोध प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर दर्ज करवा रही है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, यहाँ आप देख सकते हैं कैसे जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुंच गए। आपको दिखाना चाहूंगा, पीछे आप पढ़ सकते होंगे संसद मार्ग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रायसेना रोड से जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं जो अपना मार्च शुरू करते हैं, जंतर मंतर जाते हैं और जंतर मंतर से यहां पार्लियामेंट स्ट्रीट वो पहुंचते हैं। वहीं एक तरफ दिल्ली पुलिस की भी यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा भारी जो है तैनाती की गई है, चप्पे चप्पे पर यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं तैनात किए गए हैं, जगह जगह को बैरिकेड करके रखा ताकि जो आईवाईसी के कार्यकर्ता है यहां से आगे ना बढ़ पाए। पर पहली लेयर की बैरिकेडिंग तोड़कर जो आईवाईसी के कार्यकर्ता है यहां पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंच गए हैं अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने के लिए।
1: पुलिस की सख्ती के बावजूद SFI और DYFI जैसे वामपंथी छात्र संगठनों ने फिरोज शाह रोड से जंतर मंतर जाने की कोशिश की, जब पुलिस ने रोका तो नारेबाजी की। विपक्षी संगठन भले ही बार बार जंतर मंतर पर जाने की कोशिश कर रहे हों, राहुल इसे दोबारा वापस पाने के दावे करें, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार और विपक्ष में टकराव की नई वजह बनती जा रही है। इस जगह पर अब पहले की तरह प्रदर्शन नहीं हो सकता, ऐसा करना अब गैर कानूनी हो गया है। अब सवाल ये है कि अगर कोई इसके बावजूद वहाँ प्रदर्शन करता है तो क्या होगा।
3: जंतर मंतर उन स्थानों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहाँ हमेशा के लिए हमेशा हमेशा DNS की धारा 163 यानी कहें तो CRPC की धारा पहले जो 144 थी, निषेधाज्ञा जिसे कहते हैं भारतीय न्याय संहिता की, अब भारतीय नागरिक न्याय संहिता की धारा 163 का असर रहेगा, यानी उसके असर में आप वहां बिना किसी परमिशन के आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। और ऐसे भी वो धरना प्रदर्शन के लिए वहां अगर आप परमिशन के लिए एप्लीकेशन भी डालेंगे तो मंजूर नहीं होगी, क्योंकि अब वो जगह धरना प्रदर्शन के लिए नामजद जगहों में नहीं रह गई है।
1: शुरुआत में दिल्ली का बोट क्लब बड़े आंदोलन का बड़ा केंद्र था, लोग बोट क्लब में जुटते और सरकार से मांगे करते या असहमति जताते। इंडिया गेट के पास स्थित बोट क्लब से भी संसद की दूरी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर है। राम मंदिर आंदोलन के वक्त केंद्र की कांग्रेस सरकार ने यहां प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी थी। 1988 में पश्चिम यूपी के कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने यहां से एक आंदोलन किया था, जिससे तब की कांग्रेस सरकार हिल गई थी। साल 1993 में प्रदर्शन स्थल बनने के बाद जनतर मंतर भी कई आंदोलन का गवाह बना, इसमें अन्ना हजारे आंदोलन सबसे बड़ा है। जंतर मंतर निर्भया आंदोलन में भी चर्चा में रहा, CAA किसान आंदोलन भी यहां से हुए, लेकिन अब यहां पर प्रदर्शन करने से रोक लगा दी गई है।
3: जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पूरे इलाके में निषेधाज्ञा जब लगाई जाती है तो पूरा नई दिल्ली इलाका घुटने लगता है, यानी दम घुट जाता है, ट्रैफिक रेंगता रहता है और लोगों को परेशानियां होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकार जंतर मंतर के बजाय किसी और खुली जगह पर प्रदर्शन के लिए इजाजत क्यों नहीं दे देती है, यहीं प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है।
1: जंतर मंतर का मामला अदालत पहुंच गया है। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं देने के दिल्ली पुलिस के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि जंतर मंतर को तय प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश के आधार पर लिया गया है, जिसमें वैकल्पिक जगहों की पहचान करने की बात कही गई थी। पुलिस की ओर से ये भी दलील दी गई कि जब जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया जा चुका है तो इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का अब कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी अगर किसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की कोशिश की तो फिर उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।
3: जैसा कि CJP ने लगातार दोहराया कि हमारा अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, तो अब कानून की धाराओं में उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। अगर आप वहां धरना प्रदर्शन करते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, 5 या 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनके आगे भाषण करते हैं, तो आपको 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है, क्योंकि इसी में अगर आपके पास अवैध हथियार पाए जाते हैं, अगर आप पुलिस पर हमला करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते हैं, तो अलग अलग धाराओं में जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अधिकतम सजा 5 साल की सजा 10,000 रुपए तक जुर्माना और चाहे अदालत चाहे तो दोनों चीजें एक साथ लगा सकती हैं। लिहाजा अब प्रदर्शन कहीं भी प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कहीं भी प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है जहां निषेधाज्ञा यानी BNSS की धारा 163 लागू है, जिसे हम पुराने जमाने में 144 कहते थे, वो अगर लागू है तो आपको एक तो परमिशन नहीं मिलेगी और बिना परमिशन के अगर आप सिद्ध करेंगे कि हमें प्रदर्शन करना है तो इन सारी चीजों को भुगतने के लिए आप तैयार हैं। कैमरामैन आलोक दास के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।
4: जंतर मंतर का मामला अदालत में है। अब अगर यहां प्रदर्शन को लेकर विपक्ष अड़ा तो उनके कार्यकर्ता, दिल्ली पुलिस के अफसर एक बार फिर से आमने सामने होंगे। राहुल ने NUCI कार्यकर्ताओं के साथ PC यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। पुलिस ने भी जवाब दिया, बदसलूकी के अपने खिलाफ वीडियो जारी किए।
5: जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव है।
6: SIR पर अमित शाह की तरफ से पहले और बड़े हमले के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को छात्रों के बहाने घेरा।
7: ये हिंदुस्तान है अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूं, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए, इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है।
6: राहुल गांधी ने सरकार ही नहीं दिल्ली पुलिस को भी चेतावनी दी, कहा प्यार से समझा रहा हूं।
7: और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूं, दिल से प्यार से। देखिए, मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए, इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक। नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस और घबराइए मत।
6: राहुल गांधी ने जिन लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सभी ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट और हिरासत में ज्यादती करने के आरोप लगाए। एक प्रदर्शनकारी ने दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगाया कि पुलिस RSS और भाजपा से जुड़े लोगों के कहने पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रही थी।
8: सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनको इलीगली डिटेन नहीं करना है प्रोटेस्टर्स को, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, पर मेरे को बजरंग दल और RSS के गुंडों के बोलने पे डिटेन किया गया और वो गुंडे वो थे जिनके पास मेरे पास उनका वीडियो है, सॉरी मेरे पास उनका वीडियो है जहाँ पर वो थ्रेटन कर रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, उनके हाथ में डंडे हैं, उनके हाथ में पत्थर है और वो सब होने के बावजूद वही सेम गुंडे जाके पुलिस को बोलते हैं और पुलिस सुप्रीम कोर्ट की ना सुनने के बजाय उन गुंडों की सुन के उन्होंने मेरे को ब्रूटली डिटेन किया।
6: राहुल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदिरा ने होठों के नीचे लगी चोटों को भी दिखाया।
9: चंचल यादव एंड अदर 3 or 4 पुलिस ऑफिसर्स वेंट इन द बस एंड ड्रैगन मी इन द रोड एंड आल्सो दे देयर इज SHO इन कैनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन। ही टोल्ड मी द लेडी पुलिस ऑफिसर टेकन अवे टू बेसमेंट, देयर इज नो CCTV, यू कैन डू एनीथिंग, सो दे पंच मी हियर, मेरा लिव एंड कंटिन्यूअसली बीटन माय पूरा चीक।
6: इसी दौरान NSUI से जुड़ी रितु बराला ने बताया कि उनके चेहरे पर चोट लगने की वजह दिल्ली पुलिस है। रितु ने बस में चंचल यादव नाम की एक महिला पुलिस कांस्टेबल पर मारपीट के आरोप लगाए।
10: महिला पुलिसकर्मी होती है वो इतना अग्रेसिव हो जाती है, हम आगे आने की कोशिश करते हैं तो वो मुझे इतनी जोर से धक्का मारती है कि मैं पीछे जाके सीट पे वो इतना जोर से पुश करती है कि मैं पीछे सीट पे जाके गिरती हूँ, और फिर वो इतना जोर से अग्रेसिव हो जाती है कि मेरा गला जोर से दबा लेती है। इधर
11: पीछे का विजुअल है वो,
10: जी जी जी, यहाँ से मतलब मेरा गला पूरा स्क्रेच हो जाता है पूरा, और फिर मतलब मैं गला कैसे कैसे छुड़ाने का प्रयास करती हूँ तो वो मेरे मुंह पे पंजा मार के मुक्का मारती है, और फिर यहाँ इतनी जोर से मतलब पूरा स्क्रेच कर देती है पूरे फेस को और आंख के इधर भी लगता है। तो उसके बाद ये छुटाने का प्रयास करते हैं के लिए मैं धक्का मारती हूँ, तो वो मेरे जोर से इतना थप्पड़ मार के मेरे बालों पे मतलब पूरा कैप्चर कर लेती है, जूते रगड़ के, और मेरी जो इयररिंग होती है वो मेरे कान के अंदर चली जाती है। और उसके बाद हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा वो बाली मेरे साथियों के सामने निकाली जाती है।
1: अब 13 अक्टूबर की ये तस्वीर देखिए, जिसमें रितु और महिला पुलिसकर्मी के बीच झड़प हो रही है। पुलिसकर्मी पर रितु थप्पड़ मारती दिखती है। अब पुलिस पूछ रही है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने का हक किसने दिया।
12: वायरल वीडियो में दिखाई दे रही महिला पुलिसकर्मी का नाम चंचल यादव है, वो नई दिल्ली जिले में तैनात है। उसने सीनियर अफसरों को शिकायत दी है, उसमें बताया है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी दौरान महिला एनएसयूआई की कार्यकर्ता को उसने हिरासत में लिया और बस में बिठाया, जहां एनएसयूआई की महिला कार्यकर्ता ने बस ड्राइवर से चाबी छीनी और उसे जमीन पर फेंक दिया, जिसके बाद दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगी। महिला कांस्टेबल चंचल यादव ने आरोप लगाया है कि एनएसयूआई की कार्यकर्ता ने उसके साथ मारपीट की, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने चंचल यादव का मेडिकल टेस्ट करवाया है और अगर लीगल एक्शन लिया जा रहा है।
13: डर गायब हो गया?
14: बिल्कुल हो गया सर।
1: तो भले ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की मारपीट के बावजूद शांतिपूर्ण संदेश दिए जाने की बात कही गई हो,

0: थैंक यू। नफरत का जवाब प्यार से ही दिया जाएगा बेसिकली।
1: लेकिन दिल्ली पुलिस इस तरह के वीडियो के आधार पर पुलिस कर्मियों के हक का सवाल उठा रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रदर्शन के दौरान छात्रों से मारपीट का वीडियो बनाने को कहा है, उससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों में वीडियो वॉर तेज होने की पूरी संभावना है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: जंतर मंतर में सीजेपी नेताओं ने प्रतिबंध के बावजूद प्रदर्शन कर नारेबाजी की, जिसके बाद सीजेपी के तीन नेताओं में से सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वहीं अजिंक्य शिंदे को रिहा कर दिया गया। अभी तक राहुल सीजेपी से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन जंतर मंतर से जुड़े मामले में राहुल का समर्थन और फिर अभिजीत दीपके का थैंक यू कहना चर्चा का विषय है। अब दीपके, नेहा बोरा, कपिल सिब्बल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
1: सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनका स्वागत इस तरह से होगा। ऐसा दूसरी बार है जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही दीपके को सरप्राइज में विरोध मिलता है।
3: भारत माता की जय।
4: राजस्थान के एनएसए यूएन में जो लगाना है लगा दो। आई एम नॉट अफ्रेड।
1: जंतर मंतर पर भी सीजेपी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने सरप्राइज दिया और मिनटों में पकड़ लिया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने से रोकने के बाद सीजेपी के तीन नेताओं में से दो को, सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है और अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है।
5: जंतर मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए 5 दिन हिरासत में ले रहे हो? ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। तिरंगा लहराना इस देश में कब से बड़ा इतना पाप हो गया?
1: तिहाड़ जेल में सौरभ दास को जेल नंबर 2 में रखा गया है, वहीं आशुतोष रांका को जेल नंबर 4 में रखा गया है। दोनों को तिहाड़ जेल की अलग अलग बैरक में रखा गया है। अब सवाल ये है कि सीजेपी नेताओं को तिहाड़ क्यों भेजा गया? क्या इसकी वजह सख्त नाकेबंदी के बावजूद मंगलवार सुबह प्रतिबंधित क्षेत्र जंतर मंतर में घुसना है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने तीनों के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया, फिर तीनों को बुधवार संसद मार्ग की एसीएम कोर्ट के सामने पेश किया, जहां पर पिछली जमानत की शर्त का उल्लंघन करने पर कोर्ट ने सौरभ और आशुतोष को 5 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। दरअसल बेल बॉन्ड की शर्त का उल्लंघन करने पर जिन्हें अदालत जेल की सजा सुनाती है, इस तरह के मामले में तुरंत राहत के लिए किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, आरोपियों को सजा काटनी ही पड़ती है। जंतर मंतर को लेकर प्रशासन इसलिए भी सख्त है क्योंकि अब इसमें पाकिस्तानी साजिश के एंगल मिले हैं।
6: ऐसे हैंडल्स हैं जिनकी आईपी इंडिकेट करती है कि वो पाकिस्तान से क्रिएट किए हुए हैंडल्स हैं, तो हम उस पर काम कर रहे हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है।
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना मना है, फिर भी कनॉट प्लेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इससे पहले प्रदर्शन में घायल एनएसयूआई के छात्रों को लेकर राहुल गांधी हाजिर हुए, दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए, जिसके बाद जंतर मंतर को लेकर सवाल और गहरा गया है।
7: अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए।
2: पंजाब की मानसा में एंटी ड्रग्स एक्टिविस्ट परमिंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद से शहर में तनाव है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी अश्विनी को पुलिस ने राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार किया, लेकिन उसके खिलाफ गुस्सा नहीं थम रहा। अश्विनी के घर में पहले तोड़फोड़ की गई, उसकी दुकान में आग लगा दी गई। पंजाब सरकार ने घर पर बुलडोजर चला दिया।
8: पंजाब का एक उभरता बॉक्सर पहले खुद नशे का आदी बना और फिर उसी ने नशे को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया। एक लाइन में परविंदर सिंह झोटा की यही कहानी है। परविंदर सिंह झोटा को
3: मानसा में बाबा बॉक्सर कहा जाता था। जालंधर के लायलपुर खालसा कॉलेज में पढ़ाई के दौरान छोटा एक टैलेंटेड बॉक्सर थे, लेकिन किसी कारणवश वो इंटरनेशनल नहीं खेल पाए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि परविंदर झोटा को खुद नशे की लत लग गई थी, लेकिन बाद में झोटा इस नशे की लत से बाहर आए और पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा। उन्होंने नशे को खत्म करना अपने जीवन का मिशन बना लिया, लेकिन अंत में इसी मिशन ने उनकी जिंदगी भी ले ली। लेकिन परविंदर झोटा की हत्या ने पूरे मानसा में ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में तनाव पैदा कर दिया है। चुनाव नजदीक है, इसलिए राजनीति भी हो रही है। झोटा के घर वालों से मिलने के लिए नेताओं का तांता लगा हुआ है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या अकाली दल, आम आदमी पार्टी, सब नेता पहुंच रहे हैं। और अब कल पंजाब बंद का भी ऐलान हो गया है।
9: श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने फैसला किया है कि नशियां के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए अपनी जान निशावर करने वाले सरदार परमिंदर सिंह झोटा के सत्कारयोग पिता जी ने जिहड़ी कल 15 तरीक नूं पंजाब बंद की कॉल दिती है, श्रोमणी अकाली दल उस पीसफुल बंद का समर्थन करेगा, क्योंकि इस वेले जिहड़ा मुद्दा वह पंजाब की जवानी नूं बचाउण दा। श्रोमणी अकाली दल सारे पंजाबियों नूं अपील करदा कि किसी नूं कहण की जरूरत नहीं पैनी चाहीदी, बिल्कुल पीसफुल तरीके दे नाल जिस तरह जिहड़े परविंदर सिंह झोटा के पिता जी ने बेनती की है कि एक सुनेहा जाना चाहिए सारे देश नूं कि सारा पंजाब उस सोच दे नाल खड़ा है जिहदे वास्ते परविंदर सिंह झोटा ने अपनी शहादत दित्ती।
3: पंजाब में भगवंत मान की सरकार भी दावा कर रही है कि किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो पंजाब में नशे के विरुद्ध युद्ध छेड़ा हुआ है।
10: पंजाब पुलिस वालों कोई भी कमी नहीं छड़ी जाऊगी, दोषियों नूं सख्त तो सख्त सज़ा मिलेगी। जे इहदी साजिश के पिछे कोई बंदा होया तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाऊगा। पूरे पंजाब दे विच जो भावें मैडिकल नशा है भावें वैसे चिट्टा बेचते हैं असी युद्ध छेड़िया होया ते उच किसी नूं कोई लिबर्टी जा किसी नाल कोई लिहाज नहीं की जाऊगी। परविंदर सिंह झोटा के परिवार नाल हमदर्दी भी प्रगट करदा कि एक जवान पुत जिहड़ा वह दुनिया तो चला गया, पर इस तरह की घटना होनी नहीं चाहीदी सी। पर जो भी कमियां भावें जिस पद्धर ते मर्जी होवे, मैं DGP साहब नूं सख्त निर्देश दिते ने कि इहदी जिहड़ी है पूरी जांच पड़ताल की जाए ते दुध दा दुध ते पानी दा पानी कीता।
3: पंजाब की विपक्षी पार्टियां सरकार के इसी अभियान को मुद्दा बना रही हैं। कांग्रेस के सांसद अमरिंदर राजा वड़े आज मृतक के परिवार से मिले, परविंदर झोटा के माता पिता उनके बच्चों से मिले, और जब मीडिया से बात करने की बारी आई तो राजा वड़िंग ने पंजाब सरकार के इसी अभियान पर सवाल उठा दिया।
11: भगवंत मान साहब ये कहंदे सी कि ये नशा असी 1.5 महीने दे विच खत्म कर देना, और इस नशा खत्म करने दे वास्ते बड़ियां मुहिमां चलाईयां गईयां विखावे दे वास्ते। एक ऐसी मुहिम जिहड़ा ना युद्ध नशा विरुद्ध सी, जेड़ा विखावा तो किया और करोड़ा रुपया लोगों का खर्च किया, लेकिन मैं समझना कि एदू महाड़ी मुहिम ते जान बुझ के लोगों नू जेड़ा बेवकूफ बनाया पंजाब सरकार ने कुछ हो नहीं सकता। पंजाब दी पुलिस दी, पंजाब दे मुख्यमंत्री दी और पंजाब दे सरकार दी पूरन करड़े शब्द च निंदा कर दी।
3: कांग्रेस से बीजेपी में आए रवनीत बिट्टू भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने भी पंजाब सरकार पर सवाल उठाए, कानून व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म बताया और परिवार की हर संभव सहायता की बात की।
12: ये ना तो नहीं हुआ, सीधा बुलडोजर चलावांगे आके जो साड़ी बारी आ गई 27 च ते ओदों बाद ए जिन्ना चिर ए भगवंत मान, मैं समझदा इस्तीफा नहीं दिंदा, जिन्ना चिर भगवंत मान इन्हां दे कातलां नूं जल्दी तो जल्दी फड़ना तो है ही आ, केस भी जिहड़ा है वो CBI नूं नहीं दिंदा ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ।
2: मेरठ के नीले ड्रम केस में कोर्ट ने मुस्कान साहिल को फांसी की सजा सुना दी। जज ने सौरभ हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताते हुए मौत की सजा सुनाई।
13: डेढ़ साल पहले हुआ हत्याकांड और करीब एक साल से चल रहे ट्रायल के बाद आखिरकार नीला ड्रम कांड में कोर्ट का फैसला आ गया। मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या करने वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।
14: वो कहां गया था क्योंकि चश्मदीद गवाह नहीं है और उसके बच्चे हैं और इसके माँ बाप बुजुर्ग हैं, ये सारी तथ्य रखे गए थे, लेकिन वो कोर्ट ने कोई वो नहीं माना और इनको अपराध की गंभीरता को देखते हुए मृत्युदंड की सजा मुकर्रर की है।
13: जिला जेल से दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। जज ने मुस्कान से पूछा, तुम अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या में दोषी हो, क्या सजा चाहती हो? मुस्कान ने जवाब दिया, मेरी बेटी छोटी है, उसका ख्याल रखा जाए। फिर वो खामोश हो गई। इसके बाद साहिल से यही सवाल पूछा गया तो वो भी चुप रहा।
15: जज ने आज ये भी कहा बहस के दौरान कि हमें फैसला देने से पहले ये भी देखना है कि समाज और जनता की ओपिनियन क्या है ऐसे केसेस में जिससे समाज पे असर पड़ता है। उनका इशारा ये था कि हाल के वक्त में बहुत सारी पत्नियां के हाथों पति का कत्ल हो रहा है, पति के हाथों पत्नियां का कत्ल हो रहा है, तो समाज में जिस तरीके से ये सारी चीजें चल रही है तो एक ऐसा फैसला होना चाहिए जो जनता चाहती है उस हिसाब से ये फैसला और जो समाज में सोच है उस हिसाब से भी एक मैसेज जाए।
13: सरकारी वकील ने कोर्ट से मुस्कान और साहिल के लिए फांसी की सजा देने की मांग की थी। वहीं मुस्कान साहिल के वकील ने कहा था, मुस्कान की दो बेटियां हैं, माता पिता बुजुर्ग हैं, कम से कम सजा होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने फांसी की सजा पर मुहर लगाई।
16: अब इस पूरे मामले में जो साइंटिफिक एविडेंसेस थे, क्योंकि जो नशा दिया गया था खाने में सब्जी में, उस नशे को कहां से खरीदा गया था उसने भी आइडेंटिफाई किया, मुस्कान को आइडेंटिफाई किया कि किस तरीके से ये कत्ल के पहले खरीदी थी, सीसीटीवी फुटेज कत्ल के पहले और बाद का, कौन आया कौन गया, ये सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण थी और डायरेक्ट एविडेंस के तौर पे काम किया, जिसके बाद आज ये दिन आया 30 सितंबर को दोषी ठहराया गया था और आखिरकार आज जो मेरठ कोर्ट है वही ठीक मौजूद है। यहाँ पर अरविंद कुमार मिश्रा की कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई है।
13: 30 सितंबर को कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को सौरभ की हत्या का दोषी ठहराया था। सौरभ राजपूत के परिवार ने कोर्ट से दोनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की गुहार लगाई थी।
17: हम तो यही देना संदेश जाते भैया, किसी का भी बच्चे को मारो मत, नहीं रहना उनके साथ, अलग हो जा। अगर कोई लड़का नहीं चाहता लड़की को मार देता है तो वो भी अपने नई लड़की के साथ रहना तो वो भी अलग हो जाए, तो अगर ये ऐसा काम करेंगे तो उनको भी फांसी की ही सजा होगी।
13: अब सवाल ये है कि आखिर मुस्कान को फांसी कब और कैसे होगी, क्योंकि मुस्कान की दो छोटी बेटियां हैं, एक बेटी सौरभ राजपूत की है तो वहीं दूसरी बेटी साहिल की, जिसका जन्म जेल में हुआ था।
18: साहिल के घर वाले करेंगे, क्योंकि साहिल ने आगे आके बोला था कि भाई मैं ये तुम चाचा बन गए हो, जो उसके जेल बंदी थे, और उन्होंने बोला था मैं बाहर आने के बाद जो है तो मैं दावत दूंगा। उसने खुले में बोला था कि मेरी बच्ची
17: जो जेल वाली बेटी है उससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, और वो बड़ी वाली बेटी अगर उसके नाना नानी हमें बिना किसी उसके देंगे तो हम रखेंगे उसे अपने पास।
13: सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च 2025 को हुई थी। शव को 5 टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में भर दिया गया था। जुलाई 2025 में जिला कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था, जिसके बाद आज कोर्ट ने फांसी की सजा देकर सौरभ राजपूत के परिवार को इंसाफ दिया। मेरठ से शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
19: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
20: कौन है माता भैरवी, क्या है माता भैरवी की महिमा, माता भैरवी की पूजा का क्या है विधान, और माता भैरवी की पूजा से कैसे मिलेगा वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन। डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
1: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
2: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
1: कितना घटिया था यार तरीके से
2: लप लप लप।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

दिल्ली के इंडिया गेट पर धरना दे रहे अंकिता भंडारी के माता पिता और कई विपक्षी नेता हिरासत में लिए गए। राहुल बोले, 4 साल से नहीं मिला इंसाफ। धामी सरकार का बयान, कराई निष्पक्ष जांच। सिवाय छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने मारपीट का आरोप, एफआईआर दर्ज करने की मांग। जवाब में पुलिस ने जारी किया प्रदर्शनकारियों की बदसलूकी का वीडियो, एफआईआर दर्ज किए जाने की भी खबर। सीजेपी का अब लहरा दो तिरंगा अभियान, अभिजीत दीपके ने किया ऐलान। 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में तिरंगा लहराने की अपील। सौरभ दास और आशुतोष राय का गोन्यायिक हिरासत के बाद फैसला। वाराणसी से सीएम योगी ने अखिलेश पर फिर बोला धावा, कहा समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी या पराया धन अपना। और मेरठ नीला ड्रम केस में दोषी मुस्कान और प्रेमी साहिल को फांसी की सजा। जिला जज ने माना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला, सौरभ के शव के किए थे टुकड़े, नीले ड्रम में भरकर दफन किया था।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं। देश और दुनिया की हर खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे अंकिता के माता पिता, विपक्षी नेताओं और कई प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और ये सभी रात भर चले प्रदर्शन के बाद इंडिया गेट पर मौजूद थे। अपडेट ये है, बड़ी खबर ये है कि पुलिस ने उन सबको अब रिहा कर दिया है। इन सबको बीती रात ये वो तस्वीरें आ रही हैं जब इंडिया गेट पर वो न्याय की मांग के लिए उनके पिता, परिजन, दोस्त प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। समर्थन में कांग्रेस के और विपक्षी दलों के कई नेता भी पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया और उसके बाद कुछ ही देर के बाद उन्हें फिर से हिरासत से रिहा कर दिया गया। अंकिता के माता पिता अपनी बेटी को न्याय दिलाने और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इस दौरान कई विपक्षी नेता उनके समर्थन में पहुंचे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इंडिया गेट पर अंकिता के इंसाफ के लिए प्रदर्शन 4 साल से। अंकिता भंडारी, वो बच्ची उत्तराखंड में जिसकी हत्या हुई, आपको याद हो कि हमेशा लगातार ये आरोप लगते रहे कि उत्तराखंड में सत्ता दल की ओर से कोई रसूखदार जिम्मेदार है जिसको सरकार और पुलिस लगातार बचाती रही, जिसके ऊपर आरोपों के छींटे तक नहीं पड़ पाए, यहां तक कि जांच में बाधा डालने के लिए सबूत ना सामने आए। ऐसे में रिसॉर्ट को लेकर के भी, वहां स्ट्रक्चर को लेकर के जिस तरह की कार्यवाही हुई, यानी कुल मिलाकर के अंकिता भंडारी केस के मामले में उत्तराखंड सरकार और पुलिस पर लीपापोती, सबूतों को नष्ट करने, दोषी को बचाने जैसे गंभीर आरोप लगते रहे। हालांकि उत्तराखंड की सरकार और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने निष्पक्ष जांच कराई थी, लेकिन उस माता पिता का क्या जिन्होंने अपनी बेटी को खोया और बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वो देहरादून से लेकर दिल्ली तक लगातार आवाज उठाते रहे। अंशुल चंग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, ये लोग जब पहुंचे थे मांग के लिए, अब जाहिर है इसमें जांच तो उत्तराखंड सरकार कह रही है कि हमने तो बड़ी निष्पक्ष जांच कराई थी, कितनी देर इन्हें हिरासत में रखा गया और उनके माता पिता इस समय कहाँ हैं? अगर उन्हें रिहा कर दिया गया है तो वो कहाँ है और क्या वो फिर पहुंच रहे हैं दिल्ली?
1: जी, अभी कोई और नया कॉल प्रोटेस्ट का नहीं आया है। करीब सुबह 4:30 बजे जो है उन्हें हटाया गया और 6 और 1 घंटे के अंदर ही उन्हें वहां से डिटेंशन से रिलीज भी कर दिया गया। साथ ही साथ योगिता भयाना जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी उनके साथ मौजूद थी, उनको भी साथ में ही दिल्ली पुलिस ने हटाया था इंडिया गेट से और उसके बाद अभी उन्हें रिहा कर दिया गया है। हालांकि कोई नया कॉल जो है अभी तक प्रोटेस्ट का ना ही योगिता भयाना की तरफ से ना ही अंकिता भंडारी के परिजनों की तरफ से अभी तक आया है, लेकिन ये बात जरूर है जिस तरीके से कल ये धरने पर बैठे, ऐसा भी लगता है कि आज दोबारा कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने के लिए सरकार पर दोबारा धरने पर बैठ सकते हैं। उनकी मांग एक ही है, दुष्यंत गौतम जिनको अभी सिक्किम का गवर्नर बनाया गया है इसको लेकर के आवाज उठाई जा रही है। इसके पहले जब उन्हें उत्तराखंड का प्रभारी भी बनाया गया था तो भी अंकिता भंडारी के जो परिजन हैं उन्होंने आवाज उठाई थी। अभी देखना होगा कि क्या कोई नुमाइंदा सरकार की तरफ से भी जाके इनसे बात करता है या इन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा धरना सामने आया है कहीं ना कहीं ये लगता है कि आज दोबारा जो ये अंकिता भंडारी के पेरेंट्स हैं दोबारा एक बार धरने पर बैठ सकते हैं, लेकिन वो लोकेशन क्या होगी ये देखना बाकी है।
0: इसके अलावा ये भी बताएगा कि वो उनके माता पिता अगर यहाँ पर हैं, पुलिस ने क्या अनुमति को लेकर के बीएनएस की धारा 163 लगाई गई थी? आमतौर पर मान के चलते इंडिया गेट पर भीड़ भाड़ हुई है, विपक्ष की ओर से कौन कौन पहुंचा था, कौन कौन से दलों के लोग थे जो समर्थन परिवार को देने के लिए पहुंचे थे?
1: जी, राहुल गांधी खुद वहां पे पहुंचे थे। इसके अलावा जो अन्य कांग्रेस के नेता है वो भी पहुंचे थे, यूथ कांग्रेस के लीडर्स हैं वो रात भर वहां पर उनके साथ बैठे रहे थे और अभी सुबह 4:30 बजे करीब उनको वहां से हटाया गया और वहां से ले जाया गया है। बाकी जो दल के नेता हैं उन सब ने कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट एक्सटेंड किया है। कई दलों ने ट्वीट करके, कई दलों ने पोस्ट करके जो सपोर्ट है इनकी मांग का उसको भी सपोर्ट किया है। तो सरकार पे कहीं ना कहीं प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, जहां सरकार पे अलग अलग मुद्दों पे नई दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें एक ये नया मुद्दा जो है सामने आ गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार की और पुलिस की जो परेशानी है वो और बढ़ सकती है आने वाले दिनों में।
0: और ये वो पहली तस्वीर है जब उनके माता पिता के साथ योगिता भयाना जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो सबसे पहले पहुंच गए और उसके बाद धीरे धीरे समर्थन में उनके परिवार, उनके मित्रगण और देखिए दर रात होते होते जो समर्थन था वो बढ़ता चला गया और ऐसे में कांग्रेस ने भी उनको समर्थन दिया, दूसरे राजनीतिक दल जो विपक्षी नेता हैं उन्होंने भी समर्थन दिया, राहुल गांधी खुद पहुँच गए इंडिया गेट पर अंकिता भंडारी के माता पिता से मिलने के लिए, उन्हें समर्थन देने के लिए। उसके बाद पुलिस से गहमागहमी हुई, धारा 163 चूंकि लगी होती इंडिया गेट और उसके आसपास के इलाके में, और ऐसे में अंकिता भंडारी के माता पिता और तमाम वहां जो नेता थे उनको हिरासत में ले लिया गया, और उसके बाद हिरासत के बाद पुलिस की कार्रवाई के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। अंशुल सिंह हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अंशुल, अंकिता के माता पिता को तो छोड़ दिया गया है, राहुल गांधी और बाकी जो नेताओं विपक्षों को लिया गया था हिरासत में, वो उनकी स्थिति क्या, उनको भी छोड़ दिया गया है या वो अभी भी हिरासत में है?
1: जी बिल्कुल, सबको छोड़ दिया गया है, अभी पुलिस की डिटेंशन में कोई भी और नहीं है। अंकिता भंडारी के जो परिजन थे उसके साथ ही साथ योगिता भयाना, इन सबको डिटेन किया गया था सुबह 4:30 बजे के आसपास, डिटेन करके वहां से हटाया गया कनाट प्लेस पुलिस

0: कहना था कि अगर इंडिया गेट पर भी नहीं बैठ सकते तो फिर आखिर प्रोटेस्ट के लिए बैठे कहाँ, क्योंकि जंतर मंतर अब एक डेसिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट रहा नहीं। रामलीला मैदान में करीब 1 लाख रुपए तक का जो फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। सीबीडी ग्राउंड बहुत दूर है, बुराड़ी में जंगल है। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं ये योगिता बयाना ने दिल्ली पुलिस के सामने भी बोली। उन्हें भी बताया कि किस तरीके से जो जंतर मंतर को डी नोटिफाई किया है उसकी वजह से अब कोई नई दिल्ली इलाके में कहीं धरने पर बैठने की जगह नहीं है, और यही वजह है कि उन्होंने इंडिया गेट चूज किया कि इंडिया गेट के सामने बैठने से कहीं ना कहीं उनके प्रोटेस्ट का जो इम्पैक्ट है वो दिखाई देगा, उनकी आवाज सुनाई देगी। और कहीं ना कहीं वो सफल भी हुई, जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी खुद वहां पर पहुंचे और उनके परिवारजनों से बात की और उनको सपोर्ट एक्सटेंड किया, और उसके बाद रात भर वहां बैठने के बाद करीब सुबह 4:30 बजे दिल्ली पुलिस ने वहां कार्रवाई की और उन्हें वहां से डिटेन करके हटाया गया। हालांकि अभी छोड़ दिया गया है, तो अब देखना होगा कि कितनी देर में और कौन सी लोकेशन होगी जहां पे एक बार फिर से योगिता बयाना और अंकिता भंडारी के जो परिजन है वो दोबारा धरने पर बैठ गए।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल तमाम जानकारी के लिए। तो अंकिता भंडारी के माता पिता बीती रात इंडिया गेट पहुंचे प्रदर्शन करने के लिए और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और फिर उन्हें रिहा कर दिया। उधर चुनाव आयोग के फैसलों और वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का आंदोलन लगातार चल रहा है। राहुल गांधी ने भले ही अपने अगले कदम की जानकारी नहीं दी हो, लेकिन जंतर मंतर को लेकर उनकी तरफ से सरकार को लगातार खबरदार किया जा रहा है। लेफ्ट कांग्रेस से जुड़े जो तमाम संगठन है वो जंतर मंतर की तरफ मार्च करना चाहते हैं या फिर राहुल गांधी का पुलिस की कथित बदसलूकी के शिकार एनएसयूआई के छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो। जंतर मंतर को लेकर लड़ाई धीरे धीरे सही लेकिन तेज होती जा रही है।
2: उसके बारे में आप मत घबराइए, वो हमारा काम है। एफआईआर होगा, प्रेशर करना है, क्या करना है। एक प्रोटेस्ट है, एक आवाज है, देश की आवाज है, और उस आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है।
3: एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राहुल गांधी छात्रों को डरना मत वाला मंत्र देते हैं। जंतर मंतर को भारत के लोगों का बताकर इसे वापस लेने की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, सीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। जंतर मंतर पर तिरंगा फहराने को अपराध नहीं बताते। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष का अगला प्रदर्शन जंतर मंतर को लेकर ही होगा, जो अब विरोध प्रदर्शन की जगह नहीं रहा।
4: The one method of expression of democracy was Jantar Mantar, and now the government has decided that Jantar Mantar can no longer be used to express democratic feelings. Well, we are going to challenge that idea. It is not going to be so simple for the government to decide that the Indian people will not fight for their voice.
3: राहुल इसका जवाब हां में दे चुके हैं। राहुल कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर जाएंगे, वहीं दोबारा विरोध प्रदर्शन करेंगे, जहां सीजेपी के नेताओं को मिनट छोड़िए कुछ ही सेकंडों में पुलिस ने पकड़ लिया। सवाल यह है कि अगर किसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया तो उसे क्या अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि राहुल के जंतर मंतर पर दिए बयान के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से जंतर मंतर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जंतर मंतर छोड़िए इन्हें पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के बाहर धरने तक से रोक दिया, दो दो बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया।
5: अब ऐसी अपना विरोध प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर दर्ज करवा रही। आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, यहाँ देख सकते हैं कैसे जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुंच गए। आपको दिखाना चाहूंगा, पीछे आप पढ़ सकते होंगे संसद मार्ग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रायसेना रोड से जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं जो अपना मार्च शुरू करते हैं, जंतर मंतर जाते हैं और जंतर मंतर से यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट वो पहुंचते हैं। वहीं एक तरफ दिल्ली पुलिस की भी यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा भारी जो है तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं तैनात किए गए हैं। जगह जगह को बैरिकेड करके रखा ताकि जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं यहां से आगे ना बढ़ पाए, पर पहली लेयर की बैरिकेडिंग तोड़कर जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं यहां पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंच गए हैं अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने के लिए।
3: पुलिस की सख्ती के बावजूद एसएफआई और टीवाईएफआई जैसे वामपंथी छात्र संगठनों ने फिरोज शाह रोड से जंतर मंतर जाने की कोशिश की। जब पुलिस ने रोका तो नारेबाजी की। विपक्षी संगठन भले ही बार बार जंतर मंतर पर जाने की कोशिश कर रहे हों, राहुल इसे दोबारा वापस पाने के दावे करें, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार और विपक्ष में टकराव की नई वजह बनती जा रही है। इस जगह पर अब पहले की तरह प्रदर्शन नहीं हो सकता, ऐसा करना अब गैर कानूनी हो गया है। अब सवाल ये है कि अगर कोई इसके बावजूद वहाँ प्रदर्शन करता है तो क्या होगा।

0: जंतर मंतर उन स्थानों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां हमेशा के लिए हमेशा हमेशा डीएनएस की धारा 163 यानी कहें तो सीआरपीसी की धारा पहले जो 144 थी निषेधाज्ञा जिसे कहते हैं भारतीय न्याय संहिता की, अब भारतीय नागरिक न्याय संहिता की धारा 163 का असर रहेगा, यानी उसके असर में आप वहां बिना किसी परमिशन के आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। और ऐसे भी वो धरना प्रदर्शन के लिए वहां अगर आप परमिशन के लिए एप्लीकेशन भी डालेंगे तो मंजूर नहीं होगी, क्योंकि अब वो जगह धरना प्रदर्शन के लिए नामजद जगहों में नहीं रह गई है।
1: शुरुआत में दिल्ली का बोट क्लब बड़े आंदोलन का बड़ा केंद्र था। लोग बोट क्लब में जुटते और सरकार से मांगे करते या असहमति जताते। इंडिया गेट के पास स्थित बोट क्लब से भी संसद की दूरी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर है। राम मंदिर आंदोलन के वक्त केंद्र की कांग्रेस सरकार ने यहां प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी थी। 1988 में पश्चिम यूपी के कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने यहां से एक आंदोलन किया था जिससे तब की कांग्रेस सरकार हिल गई थी। साल 1993 में प्रदर्शन स्थल बनने के बाद जंतर मंतर भी कई आंदोलन का गवाह बना। इसमें अन्ना हजारे आंदोलन सबसे बड़ा है। जंतर मंतर निर्भया आंदोलन में भी चर्चा में रहा। CAA किसान आंदोलन भी यहां से हुए, लेकिन अब यहां पर प्रदर्शन करने से रोक लगा दी गई है।
0: जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पूरे इलाके में निषेधाज्ञा जब लगाई जाती है तो पूरा नई दिल्ली इलाका घुटने लगता है, यानी दम घुट जाता है, ट्रैफिक रेंगता रहता है और लोगों को परेशानियां होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकार जंतर मंतर के बजाय किसी और खुली जगह पर प्रदर्शन के लिए इजाजत क्यों नहीं दे देती है, यहीं प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है।
1: जंतर मंतर का मामला अदालत पहुंच गया है। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं देने के दिल्ली पुलिस के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि जंतर मंतर को तय प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश के आधार पर लिया गया है जिसमें वैकल्पिक जगहों की पहचान करने की बात कही गई थी। पुलिस की ओर से ये भी दलील दी गई कि जब जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया जा चुका है तो इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का अब कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी अगर किसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की कोशिश की तो फिर उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।
0: जैसा कि CJP ने लगातार दोहराया कि हमारा अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, तो अब कानून की धाराओं में उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। अगर आप वहां धरना प्रदर्शन करते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, 5 या 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनके आगे भाषण करते हैं, तो आपको 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है, क्योंकि इसी में अगर आपके पास अवैध हथियार पाए जाते हैं, अगर आप पुलिस पर हमला करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते हैं, तो अलग अलग धाराओं में जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अधिकतम सजा 5 साल की सजा, ₹10,000 तक जुर्माना और चाहे अदालत चाहे तो दोनों चीजें एक साथ लगा सकती हैं। लिहाजा अब प्रदर्शन कहीं भी प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कहीं भी प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है जहां निषेधाज्ञा यानी DNSS की धारा 163 लागू है, जिसे हम पुराने जमाने में 144 कहते थे, वो अगर लागू है तो आपको एक तो परमिशन नहीं मिलेगी और बिना परमिशन के अगर आप सिद्ध करेंगे कि हमें प्रदर्शन करना है तो इन सारी चीजों को भुगतने के लिए आप तैयार हैं। कैमरामैन आलोक दास के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
2: रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, खबरें जारी, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
4: राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा मंच, जहां होगी युवाओं के मन की बात और मिलेगा युवाओं के हर सवाल का जवाब, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ। देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।

0: दिल्ली पुलिस तुम लट्ठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन। डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
1: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
2: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
1: कितना घटिया था यार, घटिया तरीके से पढ़ा।
2: लप लप लप।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

कौन है माता भैरवी, क्या है माता भैरवी की महिमा, माता भैरवी की पूजा का क्या है विधान, और माता भैरवी की पूजा से कैसे मिलेगा वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

त्योहार आते ही कोई घर जाने की तैयारी करता है, कोई मंदिरों में दर्शन का प्लान बनाता है, तो कोई पहाड़ों में कुछ दिन सुकून बिताना चाहता है। दिवाली की छुट्टियां हो या क्रिसमस और न्यूयॉर्क का मौका, घूमने फिरने का शौक लोगों को नए डेस्टिनेशन तक ले जा रहा है। अंतर बस ये है कि लंबी छुट्टी का इंतजार करने की जगह लोग छोटे छोटे ब्रेक लेकर भी सफर पर निकल रहे हैं। ट्रेवल इंडस्ट्री के आंकड़े भी त्योहारों के दौरान बढ़ती हलचल की तरफ इशारा कर रहे हैं। जोस्टल की फेस्टिव ट्रेवल पल्स 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अक्टूबर दिसंबर में जोस्टल की बुकिंग्स करीब 50% ज्यादा है। वहीं नवंबर में ठहरने की बुकिंग्स पिछले साल से 43% ज्यादा है। पिछले साल फेस्टिव सीजन में 23% जोस्टल यात्रियों ने एक से ज्यादा ट्रिप बुक की थी और एक ट्रिप की औसतन अवधि करीब 2 रात रही थी। यानी त्योहारों पर घूमने का मतलब केवल एक लंबी छुट्टी नहीं रह गया है। लोग वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड और छुट्टियों के बीच छोटे छोटे ट्रिप प्लान कर रहे हैं। इस ट्रेवल सीजन में धार्मिक यात्रा और लेजर ट्रेवल दोनों की अपनी अहमियत है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान धार्मिक आयोजनों के लिए सफर होता है, तो दिवाली और छठ के आसपास लोग परिवार से मिलने या छुट्टियां बिताने के लिए यात्रा करते हैं। वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर का हफ्ता घूमने फिरने के लिहाज से खास रहता है। होटल इंडस्ट्री की रिपोर्टिंग भी त्योहारों के दौरान बढ़ती डिमांड की ओर इशारा करती है। होटल कारोबारियों ने अपने पोर्टफोलियो में दिवाली को बड़ा डिमांड ड्राइवर बताया है। दुर्गा पूजा और नवरात्रि के दौरान भी क्षेत्रीय यात्राओं को सपोर्ट मिलने की बात कही गई है। जोस्टल की रिपोर्ट के मुताबिक हम्पी, गोकर्ण, वर्कला, ऋषिकेश और जयपुर उसकी 2026 फेस्टिव बुकिंग्स में लोकप्रिय जगहों में शामिल है। आज तक ब्यूरो।

0: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
2: डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
2: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
2: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
1: कितना घटिया था यार तुम्हारा। घटिया तरीके से पढ़ा।
2: लप लप लप।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

त्योहारों का मौसम आते ही घर जाने, रिश्तेदारों से मिलने और घूमने फिरने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार सफर का बजट कई परिवारों की जेब पर भारी पड़ सकता है, खासकर उन लोगों पर जो दशहरा, दिवाली या साल के आखिर की छुट्टियों में हवाई यात्रा करने का सोच रहे हैं। वजह है, कुछ प्रमुख रूट्स पर हवाई टिकट पिछले साल के मुकाबले काफी महंगे हो गए हैं। डेटा के मुताबिक दिल्ली हैदराबाद रूट पर किराया 68% बढ़ गया है, वहीं मुंबई कोलकाता में 51%, दिल्ली गोवा में 39% और मुंबई बेंगलुरु में 37% उछाल आ गया है। यानी फेस्टिव सीजन में कई लोकप्रिय रूट्स पर हवाई सफर के लिए पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। इसकी एक बड़ी वजह मजबूत डिमांड है। दिलचस्प बात है कि इस बार सीटों की बड़ी कमी नहीं है, लेकिन यात्रियों के पास फ्लाइट चुनने के विकल्प पहले के मुकाबले कम हुए हैं। एयरलाइंस कम उड़ानें चला रही हैं, जबकि बड़े विमानों के जरिए ज्यादा सीटें उपलब्ध करा रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर दिसंबर में घरेलू उड़ानें 5% कम हो गई हैं। हालांकि सीट क्षमता में महज 1.2% की कमी आ गई है और पसंदीदा समय पर फ्लाइट ऑप्शंस घट गए हैं। यानी कुल सीटों की बड़ी किल्लत नहीं है, लेकिन कुछ तारीखों और रूट्स पर यात्रियों को मनपसंद फ्लाइट चुनना मुश्किल हो सकता है। इसके साथ ही एयरलाइंस की लागत भी तेजी से बढ़ी है। 1 अक्टूबर से ATF करीब 16 रूपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। वहीं फरवरी सितंबर में जेट फ्यूल 32.7% चढ़ा था। एक एयरलाइंस की लागत में फ्यूल की हिस्सेदारी 30-40% होती है। महंगे जेट फ्यूल का दबाव अब टिकट की कीमतों में भी दिखने लगा है। ट्रेवल प्लेटफॉर्म यात्रा का मानना है कि जिन रूट्स पर मांग ज्यादा और विकल्प सीमित हैं, वहां यात्रा की तारीख नजदीक आने के साथ किराया और बढ़ सकता है। ऐसे में अगर त्योहारों में हवाई सफर का इरादा है तो आखिरी वक्त तक इंतजार करना जेब पर भारी पड़ सकता है। आदित्य के राणा आज तक।

0: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
2: डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
2: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
2: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
1: कितना घटिया था यार तुम्हारा, घटिया तरीके से पढ़ा।
2: लप लप लप।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

एसीआई के खिलाफ दायर राहुल गांधी समेत 13 नेताओं की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। विपक्ष ने उठाए हैं एसआईआर फॉर्म 6 को लेकर सवाल। चुनाव आयोग में असहमति की खबरों का ब्यौरा भी मांगा गया। इंडिया गेट से डिटेन किए गए अंकिता भंडारी के माता पिता को पुलिस ने छोड़ा। विपक्षी नेता और अन्य प्रदर्शनकारी अभी भी हिरासत में। राहुल बोले, इंसाफ की लड़ाई में हम साथ। धामी सरकार का बयान, निष्पक्ष जांच कराई थी। एनएसयूआई छात्रों पर दिल्ली पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। एफआईआर दर्ज करने की मांग। जवाब में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की बदसलूकी का वीडियो जारी किया। एफआईआर दर्ज किए जाने की भी खबर। सीजेपी का लहरा दो तिरंगा अभियान, अभिजीत दीपके ने किया ऐलान। 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में तिरंगा लहराने की अपील। सौरभ दास, आशुतोष राका को न्यायिक हिरासत में लिए जाने के बाद फैसला लिया। वाराणसी से सीएम योगी ने अखिलेश पर फिर बोला धावा। कहा, समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी या पराया धन अपना।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ, मैं हूं आशुतोष मिश्रा। 6:30 बज चुके हैं और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे उस बड़ी खबर के साथ, उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसमें इंसाफ की मांग को लेकर इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे अंकिता के माता पिता, विपक्षी नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने बीती रात हिरासत में ले लिया। हालांकि कुछ समय बिठाए जाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया। रात भर यह प्रदर्शन चला, दिल्ली पुलिस ने कार्यवाही की। अंकिता के माता पिता को हालांकि छोड़ दिया गया, जबकि अन्य प्रदर्शनकारियों और विपक्षी नेताओं को भी हिरासत में रखा गया था। अंकिता के माता पिता अपनी बेटी को न्याय दिलाने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं और ये मांग देहरादून से लेकर के दिल्ली तक लगातार बीते 4 सालों में। उनका आरोप कि कैसे उत्तराखंड की सरकार में ताकतवर पार्टी में सत्ता में बैठे पावरफुल लोगों तक बात गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिन पर आरोप लगे उन्हें बचाने की कोशिश की गई और इसी के साथ साथ सबूतों को भी इस तरह तबाह किया गया कि जो पावरफुल लोग हैं उन तक बात ना पहुंचे। जंतर मंतर का मामला अदालत पहुंच गया है और अब अगर यहां प्रदर्शन को लेकर का विपक्ष अड़ा तो फिर उनके कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस के अफसर एक बार फिर आमने सामने होंगे। राहुल गांधी ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। जवाब में दिल्ली पुलिस की ओर से वीडियो जवाब आया है।
1: जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव
2: SIR पर अमित शाह की तरफ से पहले और बड़े हमले के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को छात्रों के बहाने घेरा।
3: ये हिंदुस्तान है, अमित शाह जी इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूं, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए। इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है।
2: राहुल गांधी ने सरकार ही नहीं दिल्ली पुलिस को भी चेतावनी दी, कहा प्यार से समझा रहा हूं।
3: और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूं, दिल से प्यार से। देखिए, मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए। इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक। नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस, और घबराइए मत।
2: राहुल गांधी ने जिन लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सभी ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट और हिरासत में ज्यादती करने के आरोप लगाए। एक प्रदर्शनकारी ने दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगाया कि पुलिस आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोगों के कहने पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रही थी।
4: सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनको इलीगली डिटेन नहीं करना है प्रोटेस्टर्स को, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, पर मेरे को बजरंग दल और आरएसएस के गुंडों के बोलने पे डिटेन किया गया और वो गुंडे वो थे जिनके पास मेरे पास उनका वीडियो है जहाँ पर वो थ्रेटन कर रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्टर्स को। उनके हाथ में डंडे हैं, उनके हाथ में पत्थर है और वो सब होने के बावजूद वही सेम गुंडे जाके पुलिस को बोलते हैं और पुलिस सुप्रीम कोर्ट की ना सुनने के बजाय उन गुंडों की सुन के उन्होंने मेरे को ब्रूटली डिटेन किया।
2: राहुल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदिरा ने होठों के नीचे लगी चोटों को भी दिखाया।
5: Chanchal Yadav and other 10 or 12 police officers went in the bus and dragged me in the road. And also there is a SHO in Cannot Place police station. He told me, the lady police officer, taken away to basement. There is no CCTV, you can do anything. So they punched me here. Mera live. And continuously beaten my pura cheek.
2: इसी दौरान NSUI से जुड़ी रितु बराला ने बताया कि उनके चेहरे पर चोट लगने की वजह दिल्ली पुलिस है। रितु ने बस में चंचल यादव नाम की एक महिला पुलिस कांस्टेबल पर मारपीट के आरोप लगाए।
6: महिला पुलिसकर्मी होती है वो इतना अग्रेसिव हो जाती है, हम आगे आने की कोशिश करते हैं तो वो मुझे इतनी जोर से धक्का मारती कि मैं पीछे जाके सीट पे, वो इतना जोर से पुश करती कि मैं पीछे सीट पे जाके गिरती हूँ, और फिर वो इतना जोर से अग्रेसिव हो जाती कि मेरा गला जोर से दबा लेती है। इधर
7: पीछे का विजुअल है वो,
6: जी जी जी, यहाँ से मतलब मेरा गला पूरा स्क्रेच हो जाता है पूरा, और फिर मतलब मैं गला कैसे छुड़ाने का प्रयास करती हूँ तो वो मेरे मुंह पे पंजा मार के मुक्का मारती है, और फिर यहाँ इतनी जोर से मतलब पूरा स्क्रेच कर देती है पूरे फेस को, और आंख के इधर भी लगता है। तो उसके बाद ये छुटाने का प्रयास करते हैं के लिए मैं धक्का मारती हूँ, तो वो मेरे जोर से इतना थप्पड़ मार के मेरे बालों पे मतलब पूरा कैप्चर कर लेती है जूते रगड़ के, और मेरी जो इयररिंग होती है वो मेरे कान के अंदर चली जाती है, और उसके बाद हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा वो बाली मेरे साथियों के सामने निकाली जाती है।
2: अब 13 अक्टूबर की ये तस्वीर देखिए जिसमें रितु और महिला पुलिसकर्मी के बीच झड़प हो रही है। पुलिसकर्मी पर रितु थप्पड़ मारती दिखती है। अब पुलिस पूछ रही है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने का हक किसने दिया।
8: वायरल वीडियो में दिखाई दे रही महिला पुलिसकर्मी का नाम चंचल यादव है, वो नई दिल्ली जिले में तैनात है। उसने सीनियर अफसरों को शिकायत दी है, उसमें बताया है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी दौरान महिला एनएसयूआई की कार्यकर्ता को उसने हिरासत में लिया और बस में बिठाया, जहां एनएसयूआई की महिला कार्यकर्ता ने बस ड्राइवर से चाबी छीनी और उसे जमीन पर फेंक दिया, जिसके बाद दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगी। महिला कांस्टेबल
0: तो जंतर मंतर से जुड़ा एक विवाद अब तो सीजेपी से भी जुड़ा है, जिसके नेताओं ने प्रतिबंध के बावजूद जंतर मंतर पर जाकर के तिरंगा लहराया। पुलिस ने हिरासत में लिया, उन्हें जेल भेजा गया। इसके बाद सीजेपी के 3 नेताओं, आप सोचिए, सौरभ दास, आशुतोष राका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेजा गया है। अब सीजेपी ने अपना नया आंदोलन शुरू कर दिया है। 16 अक्टूबर को लोगों से तिरंगा लेकर कनॉट प्लेस पहुंचने का आह्वान किया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत डिपके दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनका स्वागत इस तरह से होगा। ऐसा दूसरी बार है जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही डिपके को सरप्राइज में विरोध मिलता है।
9: भारत माता की जय।
2: जंतर मंतर पर भी सीजेपी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने सरप्राइज दिया और मिनटों में पकड़ लिया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने से रोकने के बाद सीजेपी के 3 नेताओं में से 2 को, सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, और अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है।
10: जंतर मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए 5 दिन हिरासत में ले रहे हो, ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। तिरंगा लहराना इस देश में कब से बड़ा इतना पाप हो गया।
2: तिहाड़ जेल में सौरभ दास को जेल नंबर 2 में रखा गया है, वहीं आशुतोष रांका को जेल नंबर 4 में रखा गया है। दोनों को तिहाड़ जेल की अलग अलग बैरक में रखा गया है। अब सवाल ये है कि सीजेपी नेताओं को तिहाड़ क्यों भेजा गया, क्या इसकी वजह सख्त नाकेबंदी के बावजूद मंगलवार सुबह प्रतिबंधित क्षेत्र जंतर मंतर में घुसना है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 3 के खिलाफ BNS की कई धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया, फिर 3 को बुधवार संसद मार्ग की ACM कोर्ट के सामने पेश किया, जहां पर पिछली जमानत की शर्त का उल्लंघन करने पर कोर्ट ने सौरभ और आशुतोष को 5 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। दरअसल बेल बॉन्ड की शर्त का उल्लंघन करने पर जिन्हें अदालत जेल की सजा सुनाती है, इस तरह के मामले में तुरंत राहत के लिए किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, आरोपियों को सजा काटनी ही पड़ती है। जंतर मंतर को लेकर प्रशासन इसलिए भी सख्त है क्योंकि अब इसमें पाकिस्तानी साजिश के एंगल मिले हैं।
11: ऐसे हैंडल्स हैं जिनकी IP
7: इंडिकेट करती है कि वो पाकिस्तान से क्रिएट किए हुए हैंडल्स हैं, तो हम उस पर काम कर रहे हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है।
2: जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना मना है, फिर भी कनॉट प्लेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इससे पहले प्रदर्शन में घायल NSUI के छात्रों को लेकर राहुल गांधी हाजिर हुए, दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए, जिसके बाद जंतर मंतर को लेकर सवाल और गहरा गया है।
3: अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए।
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें जारी, आप देखते रहिए आज तक।

0: प्रदेश में दरवाजे पर चुनाव है। उससे पहले कांग्रेस ने पुराना गार्ड क्या बदला, लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में झूठ मपैजार हो गया। सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की सियासी फजीहत करने के बाद नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने पार्टी को एकजुट रखकर आगे बढ़ाने का दावा तो किया है, लेकिन कुर्सी संभालते ही पार्टी कैडर की जैसी गुटबाजी सामने आई। उसे लेकर पार्टी को 5 सदस्यों की जांच कमेटी को 18 अक्टूबर तक रिपोर्ट देनी। उधर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन की जुगत में जुटे ओवैसी निराश होकर कांग्रेस की कलह पर कुछ बोलना तक नहीं चाहते।
1: कांग्रेस में कल तमाम वीडियोस आए,
2: वो तो सब मंजर आम पे आ चुका है। अब हम उसपे क्या बोलेंगे? आप खुद चला रहे अपने टीवी चैनल पर, हम क्या बोलेंगे उस बारे
0: में? कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान का असर तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन इन हलचलों का असर यूपी के 2 तीर्थों तक नजर आ रहा है। जहां एक तरफ अजय राय के प्रभाव क्षेत्र काशी में कांग्रेस को नुकसान होने का खतरा बढ़ गया है, वहां अयोध्या के क्षेत्र में कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ ओवैसी का ही सहारा बच गया है। 2 दिन पहले ही अयोध्या में कांग्रेस के पुराने नेता करण त्रिपाठी ने ओवैसी को गदा थमाते हुए गले में पतंग वाली माला डाल ली। अयोध्या के पूर्व सांसद निर्मल खत्री के करीबी और फैजाबाद इलाके में प्रभाव रखने वाले करण त्रिपाठी की कांग्रेस से रुखसती नुकसान के तौर पर ही देखा जा रहा है। यूपी के चुनिंदा इलाकों में रैलियों कार्यक्रमों को लेकर ओवैसी कहते हैं कि अहम जगहों पर सियासी गतिविधियों के बड़े सियासी संकेत होते हैं।
2: ये तमाम मुकामात जो हैं, इसकी एक पॉलिटिकल बड़ी सिग्निफिकेंस होती है, और हम अपने अध्यक्ष के साथ, अपने पार्टी के जो जोनल इंचार्ज हैं, पार्टी के मेंबर्स हैं, उनके साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं। और जाहिर है आने वाले विधानसभा के लिए हमारी कोशिश यही है कि, और हमको यकीन है कि पहले से ज्यादा हमको जनता भरोसा कर रही है, उनकी मोहब्बत मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है।
0: वैसे अयोध्या में कांग्रेस नेता के हाथों गदा थाम चुके ओवैसी कांग्रेस का कितना नुकसान कर पाते हैं ये चुनाव में पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि अयोध्या जैसे इलाके तक भी ओवैसी इस बार हौसले के साथ कदम रख रहे हैं। आज तक ब्यूरो।

0: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
2: डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
2: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
2: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखिए।
1: कितना घटिया था यार।
2: लप लप लप।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

कौन है माता भैरवी, क्या है माता भैरवी की महिमा, माता भैरवी की पूजा का क्या है विधान, और माता भैरवी की पूजा से कैसे मिलेगा वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: आ गया सोमवार और आ गए
1: चकमक चाचा।
0: हाँ चाचा, अखबार भाँच रहे हैं। टेस्ट चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चिचा कब जाएंगे?
2: अरे भैया प्रोटेस्ट उत्तेजना में हिस्सा हम ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा, हम अपना मुद्दा उठा चुके पुराने।
0: अच्छा, कब उठा है?
2: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठा है।
0: अच्छा
2: हाँ, तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे दन दन दन दन कर गया, ऐसा ये सब नहीं था अपना मामला
3: जी,
2: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
0: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है
2: आपका। टूटा भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे प्रवाही चलती थी दर्द होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन दिल बोलता रखे था हाँ, एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
0: अच्छा
2: और क्या
0: आपका मतलब, हम लोग डर जाते हैं?
2: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल, जहाँ पुलिस सिटी में बचे उसमें भागने लगता हूँ।
0: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही
2: है। किधर?
0: चाचा हम खेल गए अब की।
4: ये हिंदुस्तान है अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है। और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूँ, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए, इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूँ, दिल से प्यार से, देखिए मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए, इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस, और घबराइए मत। कोई डर रहा है?
5: नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं।
4: खुश हो?
6: यस सर।
4: शाबाश, लव यू।

0: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
2: डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
2: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
2: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
1: कितना घटिया था यार।
2: लप लप लप।

0: वोट चोरी के चुनावी मुद्दे और सत्ता के संग्राम में दिल्ली की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन का पखवाड़ा गुजरने को है। 2 अक्टूबर से शुरू नौजवानों के प्रदर्शन के साथ 6 अक्टूबर से राहुल सड़क पर उतरे। 2 दिनों तक चुनाव आयोग जाने की कोशिश की। 8 अक्टूबर को राजघाट पर प्रदर्शन हुआ। 9 अक्टूबर को राष्ट्रपति से शिकायत। 10 को फिर सड़क पर संग्राम। 11 अक्टूबर को सरकार ने जंतर मंतर को प्रदर्शन की आधिकारिक जगह से डीनोटिफाई किया। 12 अक्टूबर को फिर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में बड़ा प्रदर्शन हुआ। 13 अक्टूबर को चाय पर चर्चा में आगे की रणनीति बनी और 14 अक्टूबर को राहुल आंदोलन के पीड़ित चेहरों को पेश कर रहे थे।
1: ये हिंदुस्तान है, अमित शाह जी इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है। और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूं, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए। इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है।
0: आखिरी हासिल अभी बाकी है, लेकिन वोट चोरी के मुद्दे पर सियासत मंथन करके राहुल ने 3 चीजें हासिल कर ली। पहली ये कि वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल ने ज्यादातर विपक्ष को एक साथ कर लिया है। दूसरी ये कि देश में विपक्षी नेता राहुल ही हैं और क्षेत्रीय दलों को उन्हीं के मुद्दों के साथ आना पड़ेगा। तीसरी ये कि अदालतों में अर्जियों की बाढ़ ने चुनाव आयोग पर अविश्वास के मुद्दे की सियासी बुनियाद मजबूत कर दी है। और राहुल की माने तो ये लड़ाई 2 मोर्चों पर चलेगी, क्योंकि सड़क की लड़ाई से माहौल भले बन जाए, चुनाव आयोग पर आरोप तो अदालतों में ही साबित करने पड़ेंगे। लिहाजा एक तो 16 दिसंबर को रामलीला मैदान में फिर महारैली होने वाली है। दूसरे अदालत में चुनाव आयोग के SIR को लेकर तमाम अर्जियां डाली गई हैं, जिन पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार और बंगाल के SIR मामले के बाद पहली बार तकरीबन एकजुट विपक्ष ने अदालत में अर्जी डाली है, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD, शिवसेना, UBT, TMC, NCP, शरद पवार, CPI, CPM, JMM और IUML ने साझा अर्जियां डाली हैं। विरोधी दल के तौर पर इंडिया से बाहर रखे गए AIMIM ने अलग से अर्जी डाली है और सबकी अर्जियों के साथ सुनवाई की मांग की है। इस अर्जी में चुनाव आयोग के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, उनमें 13 करोड़ वोटर के नाम काटने, मनमाने फैसले लेने, अवैध हलफनामा भरवाने के आरोप लगाते हुए SIR तुरंत रद्द करने, आयोग की बैठकों का ब्यौरा सार्वजनिक करने, काटे गए नामों का ऑडिट करने, उनका ब्यौरा सार्वजनिक करने, वैध कटे नाम दोबारा जोड़ने, फॉर्म 6 से नया हलफनामा हटाने और EVM के सुरक्षा मानकों की समीक्षा की मांग की गई है। लेकिन इन तमाम आरोपों और अर्जियों के बाद भी सरकार विपक्षी आंदोलन को कभी भ्रम और अफवाह की सियासत बता रही है, तो कभी चुनावी हार का बहाना। आज तक ब्यूरो।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव TV को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: दिल्ली पुलिस, तुम लट्ठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
4: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
5: डोंट ट्विस्ट।
3: क्या हुआ?
5: डोंट ट्विस्ट। लप से
3: हर आदमी में
5: होते हैं 10-20 आदमी। जब भी देखियो गौर से देखियो।
4: कितना घटिया था यार।
5: लप लप लप।
6: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

चुनाव आयोग के खिलाफ दायर राहुल गांधी समेत 13 नेताओं की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। विपक्ष ने उठाए हैं SIR फॉर्म 6 को लेकर सवाल। चुनाव आयोग में सहमति की खबरों का ब्यौरा भी मांगा गया। इंडिया गेट से डिटेन किए गए अंकिता भंडारी के माता पिता को पुलिस ने छोड़ा। विपक्षी नेता और अन्य प्रदर्शनकारी अभी भी हिरासत में। राहुल बोले, इंसाफ की लड़ाई में हम साथ। NSUI छात्रों का दिल्ली पुलिस पर मारपीट का आरोप। FIR दर्ज करने की मांग। जवाब में पुलिस ने जारी किया प्रदर्शनकारियों की बदसलूकी का वीडियो। FIR दर्ज किए जाने की भी खबर। CJP का अब लहरा दो तिरंगा अभियान। अभिजीत दीपके ने किया ऐलान। 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में तिरंगा लहराने की अपील।

नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम आपको 10 महाविद्या के अलग अलग स्वरूपों के बारे में बता रहे हैं और आज बात करेंगे माता भैरवी की। कौन है माता भैरवी, इनकी महिमा क्या है और इनका पूजा विधान क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम 10 महाविद्या के देवी के स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं और आज ये जानते हैं कि माता भैरवी की महिमा क्या है। कौन है माता भैरवी? देखिए, माता भैरवी 10 महाविद्या का 5वां स्वरूप है और माता भैरवी तंत्र साधना की बहुत बड़ी और बहुत प्रमुख देवी मानी जाती हैं। अलग से भी तंत्र साधना में माता भैरवी की पूजा की जाती है। माता भैरवी लाल वस्त्र धारण करती हैं और इनके गले में मुंड माला है। तंत्र साधना जो महिला करती है, तंत्र साधना में जो महिला आगे बढ़ती है, उस महिला को भी भैरवी कहा जाता है। तो 10 महाविद्या की जो 5वीं देवी हैं, उनका नाम भी भैरवी है। और अगर कोई महिला तंत्र साधना करती है, तंत्र साधना में आगे बढ़ती है, तो उस महिला को भी भैरवी कहा जाता है। माता भैरवी की साधना करने से सिद्धि और शक्ति जीवन में प्राप्त होती है। तमाम तरह की सिद्धियां और शक्तियां जीवन में मिलती हैं। तंत्र साधना में माता भैरवी की उपासना के लिए भैरवी साधना और भैरवी चक्र का प्रयोग किया जाता है। जिस विधि से माता भैरवी की साधना होती है उसे भैरवी साधना कहते हैं और जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, जिस चीज की सहायता से माता भैरवी की पूजा होती है उसको भैरवी चक्र कहा जाता है। माता भैरवी पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।

रखें, वाद विवाद से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब ये जानते हैं कि माता भैरवी की पूजा के नियम क्या हैं और माता भैरवी की पूजा की सावधानियां क्या हैं। देखिए, माता भैरवी की सामान्य पूजा कोई भी कर सकता है, लेकिन बिना गुरु के निर्देश के, बिना गुरु के संरक्षण के भैरवी साधना मत करिएगा। सामान्य पूजा माता भैरवी की आप सरलता के साथ कर सकते हैं। इसी प्रकार भैरवी यंत्र जो होता है, दो त्रिभुज, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ फंसे हुए होते हैं और ये तारे की तरह दिखाई देता है, इसको भैरवी यंत्र कहा जाता है। तो साधना में भैरवी यंत्र के प्रयोग में भी सावधानी रखनी चाहिए। केवल सिद्धियां प्राप्त करने के लिए या किसी का नाश करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए माता भैरवी की पूजा ना करें। माता भैरवी की अगर आप उपासना करना चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, तो मध्य रात्रि में इनकी पूजा करना उत्तम होगा। जो माता भैरवी के उपासक हैं उनके ऊपर अन्य शक्तियां असर नहीं करती, उनके ऊपर तंत्र मंत्र या तंत्र की नकारात्मक शक्ति का असर कभी नहीं होता। माता भैरवी पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें

वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें, देवी को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, करियर में समस्या हो सकती है, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न वर्षा जी ने लिखा है, कोलकाता पश्चिम बंगाल से मेल लिखती हैं। 5 अक्टूबर 1995 का जन्म है, सुबह के 11:53, जन्म स्थान है कोलकाता। वर्षा कह रही हैं कि मेरे घर वाले काफी समय से मेरी शादी ढूंढ रहे हैं लेकिन मेरी शादी नहीं हो पा रही है, तो मेरे विवाह की क्या संभावना बनती है। वर्षा, आपकी शादी का समय साल 2027 में है, मई से लेके दिसंबर 2027 के बीच में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहने, जल में जरा सी हल्दी मिलाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो माता भैरवी की तांत्रिक पूजा या भैरवी साधना आप किसी गुरु से सीखकर समझकर कर सकते हैं, लेकिन अगर माता भैरवी की सामान्य पूजा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? माता भैरवी की पूजा अगर आप नवरात्रि में करें तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा पूर्णिमा, अमावस्या या शुक्रवार को भी माता भैरवी की उपासना कर सकते हैं। इनकी उपासना लाल वस्त्र

पर होगा और माता भैरवी की पूजा में लाल फूल और सुगंध का प्रयोग खूब करना चाहिए। और माता का एक विशेष मंत्र है, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र का जितना ज्यादा जप करेंगे माता भैरवी की उतनी कृपा आपको प्राप्त होगी। माता भैरवी की जो पूजा है उससे मिलती जुलती एक पूजा है यक्षिणी की। यक्षिणी की पूजा भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, दूसरे के भूत भविष्य वर्तमान को जानने के लिए और भविष्यवाणी के लिए की जाती है। लेकिन पूजा चाहे माता भैरवी की हो या यक्षिणी को हो, बिना गुरु के प्रोटेक्शन के, बिना गुरु के निर्देश के तंत्र साधना मत करिएगा, क्योंकि अगर तंत्र साधना गलत हुई तो आपकी साधना के फलस्वरूप आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। आगे नवरात्रि पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

क्या लाभ होगा? खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। देवी को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

से बचें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। आज पंचमी तिथि है और नवरात्रि की पंचमी तिथि को नव दुर्गा के पांचवें स्वरूप की पूजा होती है। कौन है ये देवी और क्या है इनकी महिमा? देखिए, नव दुर्गा का जो पांचवा स्वरूप है वो स्कंद माता का स्वरूप है। स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को, और स्कंद माता का चित्र आप देखेंगे तो उनकी गोद में कार्तिकेय विद्यमान हैं। और स्कंद माता की पूजा बड़ी अनूठी पूजा है। जब आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो माता की पूजा के साथ साथ उनकी गोद में बैठे भगवान कार्तिकेय की पूजा भी हो जाती है। स्कंद माता की पूजा से संतान की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। अगर संतान नहीं हो पा रही है तो संतान होती है, और अगर संतान की तरफ से कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाती है। ज्योतिष में स्कंद माता का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना जाता है, और स्कंद माता की पूजा पीले रंग की वस्तुओं से, पीला फल, पीली मिठाई, पीले फूल, पीले वस्त्र अर्पित करके इनकी पूजा की जाती है। नवदुर्गा के पांचवें स्वरूप यानी स्कंद माता को केले का भोग लगाना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। केले का भोग लगा करके इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे तो आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, काम की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आस।

होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा

मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, चोट चपेट से सावधान रहें, देवी को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के नियम हैं, जिनका पालन न किया जाए तो इसके पाठ का लाभ नहीं होता। क्या ऐसा है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती मंत्रों के द्वारा कीलित है, यानी मंत्रों से इसको बांध दिया गया है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती के पाठ के पहले इसका उत्कीलन किया जाता है, इसको खोला जाता है और पाठ के अंत में शाप विमोचन किया जाता है। अगर बिना उत्कीलन के, बिना शाप विमोचन के आप सप्तशती का पाठ करेंगे तो इससे आपको लाभ नहीं होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं।

नंबर दो, चिंताएं बढ़ी रहेंगी। नंबर तीन, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर चार, मानसिक तनाव रह सकता है। नंबर पांच, काम की अधिकता रहेगी। नंबर छह, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर सात, मित्रों से विवाद हो सकता है। नंबर आठ, करियर में कुछ बदलाव होगा। और नंबर नौ, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में देवी को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न मयंक श्रीवास्तव ने हमें लिखा है, भोपाल से लिखते हैं। मयंक की जन्म की तारीख है 10 मई 1983। जन्म का समय शाम के 7:53। जन्म स्थान है भोपाल। मयंक कह रहे हैं कि नौकरी को लेकर के इनके ऊपर एक आरोप लग गया है और नौकरी को लेकर के मुकदमा चल रहा है। आरोप से, मुकदमे से मुक्ति कब तक मिलेगी? मयंक, आपकी कुंडली के हिसाब से फरवरी 2027 के बाद आपका समय काफी अनुकूल है, तो फरवरी 27 के बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। आप आरोपों से मुक्त हो जाएंगे, नौकरी में दोबारा बहाल हो जाएंगे। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रखकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज शुभ होगा वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे।
आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि वालों के लिए। चिंताएं और तनाव कम होंगे, धन का लाभ होगा। और आज सावधान रहना होगा सिंह राशि वालों को, बेवजह आपकी सेहत बिगड़ सकती है। कार्यक्रम के अंत में आप जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज पंचमी तिथि है, गुरुवार की पंचमी विशेष शुभ होती है। आज कोई भी शुभ और मंगल कार्य कर सकते हैं और आज अगर माता दुर्गा की उपासना करेंगे तो संतान संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

एसआईआर फॉर्म 6 के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच आज याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच असहमति वाले सभी फैसलों का विस्तृत ब्यौरा कोर्ट के सामने पेश करने की मांग की गई है। विपक्षी दलों की याचिका में एसआईआर के फैसलों की संवैधानिक वैधता की स्वतंत्र समिति गठित कर ऑडिट कराने की मांग की गई है। याचिका में एसआईआर में हटाए गए मतदाताओं के नाम और कारण सार्वजनिक करने का निर्देश की भी मांग की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में पत्रकार वकीलों पर हमले को लेकर के भी सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश की पीठ मामले पर अंतिम फैसला सुनाएगी। दीपके ने कनॉट प्लेस में तिरंगा मार्च निकालने का आह्वान किया है। एबीवीपी ने सीजेपी के नैरेटिव पर सवाल उठाया। दीपके, नेहा बोरा, कपिल सिब्बल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी। दोपहर 2 बजे प्रेस क्लब में संबोधन होगा। यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 8 साल पुराने मामले में नया समन जारी करने का आदेश किया गया है। 17 अक्टूबर को होगी सुनवाई। सीजेपी नेता सौरभ दास, आज तरोड़ाका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन में तिरंगा लहराना अपराध नहीं। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान बस में मारपीट के मामले में एनएसयूआई की महिला कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर। 2022 अंकिता भंडारी मर्डर केस में न्याय की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। सभी प्रदर्शनकारियों को तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में रखा गया है। अंकिता के माता पिता को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन उन्हें रिहा कर दिया गया है। परिवार राष्ट्रपति से अपील कर रहा है कि सीबीआई जांच पूरी होने तक दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति पर रोक लगाई जाए और इसे रद्द किया जाए। दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में ले जाने पर अंकिता भंडारी के पिता ने कहा कि अगर मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो पूरे देश में प्रदर्शन होंगे। हिरासत में लिए जाने के बाद अंकिता की मां ने कहा जब तक दुष्यंत गौतम नियुक्ति रद्द नहीं होती तब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे, घर में भी भूख हड़ताल की धमकी। अंकिता भंडारी मामले को लेकर कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा बैठना कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि अंकिता के परिवार के साथ एकजुटता दिखाना है। एसपी सांसद डिंपल यादव ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा यह सरकार महिला सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी है। अंकिता हत्याकांड में जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच उत्तराखंड सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि जानकारी में कई दावे किए गए हैं कि जांच निष्पक्ष हुई। सरकार ने दावा किया कि मामले में त्वरित कार्रवाई भी की गई थी और जांच अभियोजन तक कई कदम उठाए गए। सरकार के मुताबिक घटना सामने आने के 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जांच के लिए एसआईटी गठित की गई और आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। आज दिल्ली दौरे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान होंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में पटाखे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सीटीआई ने दिवाली के दौरान दिल्ली में ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत मांगी है।

वाराणसी शिक्षक सम्मेलन में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर हमला, बोले समाजवादी पार्टी सरकार में युवाओं के भविष्य से होता था खिलवाड़। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार के सामने दो विकल्प, 3 महीने में चुनाव कराएं या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण सबसे बड़ा पेंच बन गया, आयोग की रिपोर्ट और सर्वे के डेटा पर हाईकोर्ट की आपत्ति, 3 महीने में आरक्षण तय कर चुनाव कराने की चुनौती। पंचायत चुनाव तक ग्राम प्रधान बने रहेंगे प्रशासक, चुनाव से जुड़ी सभी याचिकाओं पर करीब 4 घंटे की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट का फैसला। रेलवे के 11,40,000 कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, कैबिनेट ने 2,000 करोड़ की राशि को मंजूरी दी। दीपावली के दौरान ग्रीन पटाखों को मिले अनुमति, सीटीआई का दावा, सुप्रीम कोर्ट पर रही पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में नहीं, अब केंद्र दिल्ली सरकार के पाले में। भारत सरकार ने किसानों के खाते में दिवाली से पहले 5,000 रुपए डालने की घोषणा की। नागपुर में विपक्ष का सरकार पर हल्ला बोल, कांग्रेस नेता विजय वेट्टीदार बोले सरकार किसानों की भावनाओं के साथ खेल रही है, हमने 1 लाख प्रति हेक्टेयर की मांग की थी। महाराष्ट्र को नवरात्रि का तोहफा, पुणे के ईसीआईसी मेडिकल कॉलेज को 50 MBBS सीटों की मंजूरी। उत्तराखंड नीट यूजी फर्जी सर्टिफिकेट मामले में हाईकोर्ट की सख्ती, सरकार को 24 घंटे में जवाब देने का आदेश, स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों के आरक्षण पर उठाए सवाल। मेरठ नीला ड्रम केस में दोषी मुस्कान और प्रेमी साहिल को मिली फांसी की सजा, जिला जज ने माना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला, सौरभ के शव के टुकड़े किए थे। भुवनेश्वर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर, कई गाड़ियों को टक्कर मारी, 1 की मौत, 4 घायल, ड्राइवर हिरासत में। गुवाहाटी में एक महिला से बैग छीनने की कोशिश, बैग बचाने के लिए महिला करीब 50 मीटर तक सड़क पर घिस गई। जयपुर में भूमि पूजन के दौरान जमकर चले लाठी डंडे, चाचा ताऊ के परिवार में हुई झड़प का वीडियो वायरल। गाजियाबाद में चोरों के हौसले बुलंद, आधी रात में घर के बाहर खड़ी कार पर हाथ साफ किया। दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी में शराब पार्टी का सीसीटीवी वीडियो वायरल, 3 महिलाओं समेत 4 लोगों पर शराब पीने का आरोप, FIR दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में जमीन के बंटवारे को लेकर 2 पक्षों के बीच झगड़ा, स्कॉर्पियो ने बाइक में टक्कर मारी, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। वडोदरा में ज्वेलर्स की दुकान से 8.5 करोड़ के सोने के फिल्मी अंदाज में चोरी, व्यापारी वॉशरूम गए और 12 मिनट में 5 किलो से ज्यादा वजन भरे 2 बैग गायब। जयपुर एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, जांच के बाद फिर भरी उड़ान। मुंबई से सटे नाला सोपार एक इंपीरियल हाइट्स इमारत में भीषण आग लगी, 2 महिलाओं की मौत, 6 लोग अस्पताल में भर्ती। नागपुर में सरकारी महिला डॉक्टर के अस्पताल में चोरी, महिला आई अलमारी का ताला तोड़कर 2 सोने की अंगूठी लेकर चली गई, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। भावनगर के रंगोली रिजॉर्ट में नवरात्रि फेस्टिवल में बवाल, असलम एंड असलम बैंड के विरोध में प्रदर्शन के बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता हिरासत में। सोनीपत में मुरथल के एक ढाबे से लौट रहे युवक और ममेरे भाई को कैंट ने कुचला, दोनों की मौत, कार खराब होने पर लगाते धक्का। कानपुर के सदर बाजार में 80 साल के बुजुर्ग पर सांड ने जानलेवा हमला किया, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। गीर सोमनाथ में शेरनी के हमले में युवक की मौत, ग्रामीणों में भारी आक्रोश। दमन के खारीवाड़ इलाके में खड़ी मारुति एसयूवी में लगी अचानक आग, इंजन जलकर खाक। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 21वीं मंजिल से गिरकर युवक की मौत, पत्नी से चल रहा था विवाद। सूरत में नकली घी बनाने के बड़े कारोबार का खुलासा, पुलिस ने 18 लाख रुपए का माल जब्त किया। गाजियाबाद में हार्डवेयर व्यापारी की चाकू से गोदकर हत्या, मंडोला के जंगल में मिला था शव, पैसों के लेन देन के विवाद में वारदात। अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर पलटा सरसों से तेल से भरा टैंकर, लोगों में मची तेल की लूट।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
3: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं, पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
4: इट्स माय वे।

0: Look what I can do.
1: Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने पर
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
4: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है
8: How's the hostel? Settled?
9: Yes, ma. It's really nice.
8: कोई आ रहा है क्या?
10: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभा ली अब फिर से थोड़ा रोमांस है।
8: मयंक, for real?
10: One carat for my one true love. Natural diamond, real love, solitaires to reignite your new season of love.
11: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट वो भी हर महीने
12: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ
13: सोच बदलो और बैंक भी
14: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है
15: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे
14: अब मैं चैन की नींद सो पाता कपिवा डायट्री जूस
16: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप
17: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले मैं परिंदा खुले आसमान जहां जीत रू सारा
18: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं
19: कैसे लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम
20: आई लव इट एब्सोल्युटली अमेजिंग तुम एक काम करो तुम मिठाई ऑर्डर कर लो
21: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
20: क्या
21: इनकी राय
22: नई सोच की नींव में हम हर नई उम्मीद में हम गैलेंट निर्माण का रियल हीरो
23: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना वहाँ खाया शहद पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा अरे कश्मीर क्यों जाना कश्मीर ही यहाँ आ गया
24: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद लायन कश्मीर हनी
23: असली शहद असली स्वाद I wake up wearing someone else again.

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: In association with Hint, ek hint to dete.
2: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
1: विमल बोलो जुबां केसरी।
3: राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा मंच, जहां होगी युवाओं के मन की बात और मिलेगा युवाओं के हर सवाल का जवाब। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
4: उत्तर प्रदेश में दरवाजे पर चुनाव है, उससे पहले कांग्रेस ने पुराना गार्ड क्या बदला। लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में झूठ मपैजार हो, सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की सियासी फजीहत करने के बाद नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने पार्टी को एकजुट रखकर आगे बढ़ाने का दावा तो किया है, लेकिन कुर्सी संभालते ही पार्टी कैडर की जैसी गुटबाजी सामने आई। उसे लेकर पार्टी को 5 सदस्यों की जांच कमेटी को 18 अक्टूबर तक रिपोर्ट देनी। उधर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन की जुगत में जुटे ओवैसी निराश होकर कांग्रेस की कलह पर कुछ बोलना तक नहीं चाहते।
5: कांग्रेस में कल कई तमाम वीडियोस आए,
6: वो तो सब मंजर आम पे आ चुका है, अब हम उस पर क्या बोलेंगे। आप खुद चला रहे अपने टीवी चैनल पर, हम क्या बोलेंगे उस बारे
4: में। कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान का असर तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन इन हलचलों का असर यूपी के 2 तीर्थों तक नजर आ रहा है, जहां एक तरफ अजय राय के प्रभाव क्षेत्र काशी में कांग्रेस को नुकसान होने का खतरा बढ़ गया है, वहां अयोध्या के क्षेत्र में कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ ओवैसी का ही सहारा बच गया है। 2 दिन पहले ही अयोध्या में कांग्रेस के पुराने नेता करण त्रिपाठी ने ओवैसी को गदा थमाते हुए गले में पतंग वाली माला डाल ली। अयोध्या के पूर्व सांसद निर्मल खत्री के करीबी और फैजाबाद इलाके में प्रभाव रखने वाले करण त्रिपाठी की कांग्रेस से रुखसती नुकसान के तौर पर ही देखा जा रहा है। यूपी के चुनिंदा इलाकों में रैलियों कार्यक्रमों को लेकर ओवैसी कहते हैं कि अहम जगहों पर सियासी गतिविधियों के बड़े सियासी संकेत होते हैं।
6: ये तमाम मुखामात जो हैं, इसकी एक पॉलिटिकल बड़ी सिग्निफिकेंस होती है, और हम अपने अध्यक्ष के साथ, अपने पार्टी के जो जोनल इंचार्ज हैं, पार्टी के मेंबर्स हैं, उनके साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं, और जाहिर है आने वाले विधानसभा के लिए हमारी कोशिश यही है कि, और हमको यकीन है कि पहले से ज्यादा हमको जनता भरोसा कर रही है, उनकी मोहब्बत मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है।
4: वैसे अयोध्या में कांग्रेस नेता के हाथों गदा थाम चुके ओवैसी कांग्रेस का कितना नुकसान कर पाते हैं ये चुनाव में पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि अयोध्या जैसे इलाके तक भी ओवैसी इस बार हौसले के साथ कदम रख रहे हैं। आज तक ब्यूरो। AI ने इंसानों का काम आसान किया है, लेकिन AI की बढ़ती ताकत ही सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है। डर यह है कि AI जितनी तेजी से ताकतवर हो रहा है, क्या उसकी सुरक्षा भी उतनी ही तेजी से मजबूत हो रही है। एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोडे ने इसी को लेकर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि AI मॉडल की क्षमता तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सुरक्षा इंतजाम अभी भी पीछे है, जबकि अगले 6 से 12 महीनों में AI एजेंट्स की क्षमता काफी बढ़ने का अनुमान है, जिसके गलत इस्तेमाल से साइबर अटैक और फ्रॉड का खतरा बढ़ सकता है, और AI के लिए मजबूत सुरक्षा मानक बनाने की जरूरत है। अमोडे का कहना है कि आने वाले महीनों में AI एजेंट्स इंटरनेट पर बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। अगर ऐसी ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। ये खतरा कागजी नहीं है। एंथ्रोपिक की थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट में उसके क्लॉड मॉडल के साइबर ऑपरेशन, निगरानी, फ्रॉड और हथियारों से जुड़े काम में गलत इस्तेमाल की कोशिशों का जिक्र है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा पेंच यही है कि दुनिया AI से डर भी रही है और AI की रेस से पीछे भी नहीं हटना चाहती। अमेरिका और चीन दोनों AI को आर्थिक ताकत के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं। अमेरिका की कोशिश है कि चीन AI की रेस में आगे ना निकले, जबकि चीन AI में आत्मनिर्भर बनने पर जोर दे रहा है। इससे अमेरिका और चीन के बीच एआई की बढ़त को लेकर मुकाबला तेज होता जा रहा है। चीन का फोकस एआई में आत्मनिर्भरता और घरेलू टेक्नोलॉजी पर है। वहीं अमेरिकी एजेंसियों ने चीनी कंपनियों पर एआई मॉडल से क्षमता निकालने का आरोप लगाया है, जबकि चीन ने इन आरोपों को अमेरिकी टेक दबाव की रणनीति बताया है। यानी समस्या ये नहीं है कि दुनिया एआई को रोकना चाहती है, समस्या ये है कि हर देश चाहता है कि एआई की अगली बड़ी छलांग उसके हाथ से निकले, और इसी रेस में सुरक्षा पीछे छूटने का डर है। एआई की इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दुनिया एआई की रफ्तार को इतनी तेजी से आगे बढ़ा सकती है कि आर्थिक और तकनीकी बढ़त भी बनी रहे लेकिन सुरक्षा उसके पीछे न छूटे। असल में आने वाले वक्त में एआई केवल चैटबॉट या स्मार्ट टूल नहीं रहेगा, इसका असर नौकरी, कारोबार, साइबर सिक्योरिटी और राष्ट्रीय सुरक्षा तक दिखाई देगा। एआई की रेस में अमेरिका और चीन अपनी बढ़त के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन इस दौड़ में असली जीत तभी होगी जब एआई की ताकत के साथ उसकी जिम्मेदारी और सुरक्षा भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: बुलेटिन में खबरें लगातार जारी हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि 8 बजे हम आपको दिखाएंगे सुपर 8, 8 बड़ी खबरें, हर वो खबर
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: what I can be.
1: Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
2: तेरा प्यार प्यार प्यार सर एक दो ठुमका लगाने बस
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
4: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
4: कौन सी बनानी है
7: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
8: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
9: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
10: आई लव इट एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
11: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
10: क्या
11: इनकी राय?
12: नई सोच की नींव में हम हर नई उम्मीद में हम गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
13: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना वहाँ खाया शहद पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना कश्मीर ही यहाँ आ गया।
14: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद लायन कश्मीर हनी।
13: असली शहद असली स्वाद।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आ गया सोमवार और आ गए
2: चकमक चाचा।
1: हाँ चाचा, अखबार भाँच रहे हैं।
3: टेस्ट
1: चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चिचा कब जाएंगे?
3: अरे भैया प्रदर्श में हिस्सा हम ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा है, हम अपना मुद्दा उठा चुके पुराने।
1: अच्छा, कब उठाए?
3: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए।
1: अच्छा,
3: हाँ तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग तरह इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे दन दन दन दन कर गया, ऐसा ये सब नहीं था अपना मामला
1: जी,
3: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
1: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है आपका।
3: टूटा भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे प्रवाही चलती थी दर्द पिता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर मुद्दा रखे थे हमें, एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
1: अच्छा,
3: और क्या
1: आपका मतलब हम लोग डर जाते हैं?
3: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल, जहाँ पुलिस सिटी नहीं बची उस भागने लगता।
1: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही है।
3: किधर?
1: चाचा हम खेल गए अब की।
4: वोट चोरी के चुनावी मुद्दे और सत्ता के संग्राम में दिल्ली की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन का पखवाड़ा गुजरने को है। 2 अक्टूबर से शुरू नौजवानों के प्रदर्शन के साथ 6 अक्टूबर से राहुल सड़क पर उतरे। 2 दिनों तक चुनाव आयोग जाने की कोशिश की। 8 अक्टूबर को राजघाट पर प्रदर्शन हुआ। 9 अक्टूबर को राष्ट्रपति से शिकायत। 10 को फिर सड़क पर संग्राम। 11 अक्टूबर को सरकार ने जंतर मंतर को प्रदर्शन की आधिकारिक जगह से डीनोटिफाई किया। 12 अक्टूबर को फिर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में बड़ा प्रदर्शन हुआ। 13 अक्टूबर को चाय पर चर्चा में आगे की रणनीति बनी और 14 अक्टूबर को राहुल आंदोलन के पीड़ित चेहरों को पेश कर रहे थे।
5: ये हिंदुस्तान है अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है, और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूं, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए, इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है।
4: आखिरी हासिल अभी बाकी है, लेकिन वोट चोरी के मुद्दे पर सियासत मंथन करके राहुल ने 3 चीजें हासिल कर ली। पहली ये कि वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल ने ज्यादातर विपक्ष को एक साथ कर लिया है। दूसरी ये कि देश में विपक्षी नेता राहुल ही हैं और क्षेत्रीय दलों को उन्हीं के मुद्दों के साथ आना पड़ेगा। तीसरी ये कि अदालतों में अर्जियों की बाढ़ ने चुनाव आयोग पर अविश्वास के मुद्दे की सियासी बुनियाद मजबूत कर दी है। और राहुल की माने तो ये लड़ाई 2 मोर्चों पर चलेगी, क्योंकि सड़क की लड़ाई से माहौल भले बन जाए, चुनाव आयोग पर आरोप तो अदालतों में ही साबित करने पड़ेंगे। लिहाजा एक तो 16 दिसंबर को रामलीला मैदान में फिर महारैली होने वाली है, दूसरे अदालत में चुनाव आयोग के SIR को लेकर तमाम अर्जियां डाली गई हैं जिन पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार और बंगाल के SIR मामले के बाद पहली बार तकरीबन एकजुट विपक्ष ने अदालत में अर्जी डाली है, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD, शिवसेना, UBT, TMC, NCP, शरद पवार, CPI, CPM, JMM और IUML ने साझा अर्जियां डाली हैं। विरोधी दल के तौर पर इंडिया से बाहर रखे गए AIMIM ने अलग से अर्जी डाली है और सबकी अर्जियों के साथ सुनवाई की मांग की है। इस अर्जी में चुनाव आयोग के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उनमें 13 करोड़ वोटर के नाम काटने, मनमाने फैसले लेने, अवैध हलफनामा भरवाने के आरोप लगाते हुए SIR तुरंत रद्द करने, आयोग की बैठकों का ब्यौरा सार्वजनिक करने, काटे गए नामों का ऑडिट करने, उनका ब्यौरा सार्वजनिक करने, वैध कटे नाम दोबारा जोड़ने, फॉर्म 6 से नया हलफनामा हटाने और EVM के सुरक्षा मानकों की समीक्षा की मांग की गई है। लेकिन इन तमाम आरोपों और अर्जियों के बाद भी सरकार विपक्षी आंदोलन को कभी भ्रम और अफवाह की सियासत बता रही है तो कभी चुनावी हार का बहाना। आज तक ब्यूरो।
5: ये हिंदुस्तान है अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है, और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूं, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए, इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूं, दिल से प्यार से, देखिए मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए, इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस और घबराइए मत। कोई डर रहा है?
2: नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं।
5: खुश हो?
6: यस सर।
5: शाबाश, लव यू।
7: दुनिया भर की इकोनॉमी इस वक्त सुस्ती, अनिश्चितता और उठापटक के दौर से गुजर रही है। ऐसे माहौल में भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। घरेलू मांग, बढ़ती आय और मजबूत लेबर मार्केट के दम पर देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती दिखा रही है। इसकी पुष्टि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की ताजा रिपोर्ट से भी होती है, जिसके मुताबिक भारत का ग्रोथ आउटलुक दुनिया में सबसे मजबूत है। इस सर्वे में शामिल 74% चीफ इकोनॉमिस्ट ने मजबूत ग्रोथ की उम्मीद जताई है। वहीं 98% को अगले 12 महीनों में मध्यम या उससे बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है। बढ़ती आय और मजबूत लेबर मार्केट से सपोर्ट मिलने का भरोसा रिपोर्ट में जताया गया है। ग्लोबल संस्थानों की इस भरोसे की झलक रेटिंग एजेंसियों के अनुमान में भी दिखाई दे रही है। 2026-27 के लिए फिच रेटिंग्स ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। इससे पहले ये अनुमान 6.4% था। भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के पीछे कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। पहली तिमाही में भी अर्थव्यवस्था के शानदार प्रदर्शन ने दुनिया भर में भारत की साख को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में GDP ग्रोथ 7.8% रही। इसकी वजह मजबूत इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रही थी। वहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में सुधार के संकेत से भी फायदा मिला था। एक्सपोर्ट और सरकारी निवेश ने भी ग्रोथ को मजबूत सहारा दिया है। इस प्रदर्शन के बाद कई एजेंसियों ने भी अपने अनुमान बेहतर किए हैं। फिच के बाद S&P ग्लोबल रेटिंग ने भी 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 7% कर दिया है। मूडीज ने भी 7% ग्रोथ का अनुमान जताया है। बढ़ती मांग से महंगाई का दबाव बना हुआ है और कुछ सेक्टर्स में सप्लाई से जुड़ी चुनौतियां मौजूद हैं। ऐसे में ग्रोथ और महंगाई के बीच संतुलन बड़ी चुनौती बन गया है। ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती दिखा रही है। दुनिया की बड़ी एजेंसियों और अर्थशास्त्रियों का बढ़ता भरोसा इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में भी भारत वैश्विक ग्रोथ की बड़ी कहानी बना रह सकता है। आदित्य केराड़ा, आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर राहुल गांधी समेत 13 नेताओं की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। एसआईआर फॉर्म 6 पर सवाल, जंतर मंतर और वकील पत्रकारों समेत प्रदर्शनकारियों की 22 अर्जियां लिस्टेड। दुष्यंत गौतम के खिलाफ इंडिया गेट पर धरना दे रहे अंकिता भंडारी के माता पिता को हिरासत में लेने के बाद छोड़ा गया। राहुल बोले, इंसाफ की लड़ाई में हम साथ, धामी सरकार का बयान, कराई गई निष्पक्ष जांच। एनएसयूआई छात्रों का दिल्ली पुलिस पर मारपीट का आरोप, एफआईआर दर्ज करने की मांग। जवाब में पुलिस ने जारी किया प्रदर्शनकारियों की बदसलूकी का वीडियो, एफआईआर दर्ज किए जाने की भी खबर। मानसा में एंटी ड्रग एक्टिविस्ट की हत्या के खिलाफ पूरे पंजाब में उबाल, आज प्रदेश बंद का ऐलान। उठने लगी सीबीआई जांच की मांग, हो चुकी है आरोपी को गिरफ्तारी और घर पर बुलडोजर एक्शन। राजस्थान पंचायत आज तक में सुबह 10 बजे से मरुधरा के सियासी दिग्गजों का जमावड़ा, सीएम भजन लाल, कैबिनेट मंत्री मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत विपक्ष के बड़े चेहरे भी होंगे शामिल।

0: मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सुबह के 8 बज चुके हैं और इस खास बुलेटिन में आपको रूबरू कराएंगे कई अहम खबरों से। आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज 22 अहम मामलों में सुनवाई का दिन है, क्या सुनवाई होगी। वहीं दिल्ली पुलिस के खिलाफ एनएसयूआई के प्रदर्शन पर भी अपडेट आपको देंगे। तो दिल्ली पुलिस ने वीडियो सबूत के जरिए क्या कहा है, ये भी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। खबर अंकिता भंडारी केस से जुड़ी भी, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। सीएम योगी ने कैसे अखिलेश पर तंज कसा, ये भी आगे आपको बताएंगे। और क्या है सीजीपी का लहरा दो तिरंगा अभियान, इस पर भी पूरी जानकारी देंगे। खबर मानसा मर्डर केस से जुड़ी हुई भी, आज इस पूरे मामले में पंजाब बंद है और इसकी खबर भी आगे आपको डिटेल के साथ बताएंगे। बात पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की भी करेंगे। सबसे पहले बुलेटिन में रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का, जो कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में 22 अहम याचिकाओं पर सुनवाई होने जा रही है। इन याचिकाओं में विपक्षी दलों के 13 नेताओं की वो याचिका भी शामिल है, जिसमें कि चुनाव आयोग और उसके फैसलों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में पत्रकारों, वकीलों पर कथित हमले, प्रदर्शनकारियों की हिरासत और ट्रेन मेट्रो स्टेशन को बंद करने को लेकर भी अहम सुनवाई होने जा रही है। दिल्ली में हाल के तमाम प्रदर्शन से जुड़ी अलग अलग 22 याचिकाएं सूचीबद्ध की गई है। याचिकाकर्ताओं ने सड़कें, मेट्रो सेवाएं और रेलवे के बंद किए जाने का भी मुद्दा उठाया है। देखिए 22 अहम मामलों पर आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो आज का दिन काफी अहम है। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं और इसी पर राहुल गांधी ने क्या कहा है वो आप समझिए, और 13 विपक्षी नेताओं ने क्या कहा है समझिए। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अकेले फैसले लिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। इलेक्शन कमीशन में असहमति के बिंदुओं का ब्यौरा कोर्ट में पेश किया जाए, साथ ही देश भर में SIR किसकी मंजूरी से लागू हुआ है ये भी बताया जाए। और याचिका में 13 विपक्षी नेताओं ने यह भी कहा है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जल्द से जल्द मांग की जाए, साथ ही फॉर्म 6 में बदलाव का फैसला आखिर किसने किया ये भी उनको बताया जाए। तो 13 विपक्षी नेता जिन्होंने याचिका दायर की है, 22 मामले जो कि सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी, जिस पर और करीब 13 करोड़ वोटर्स के नाम हटाने पर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं। फॉर्म 7 के जरिए सामूहिक आपत्तियों का मुद्दा भी उनकी तरफ से उठाया गया है। तो ये कुछ अहम बातें उनकी तरफ से कही गई है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में जांच की मांग वो कर रहे हैं अपनी तरफ से, और हमने देखा इससे पहले प्रदर्शन भी लगातार उनकी तरफ से किया गया। वही NSUI कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पुलिस की कथित मारपीट के मामले में राहुल गांधी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कल घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और कहा कि नफरत का जवाब प्यार से दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये देश की आवाज है और सरकार को इसके खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। राहुल ने छात्रों से पुलिस कार्रवाई के वीडियो सबूत जुटाने की अपील भी की। उन्होंने कहा है कि मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी।
1: ये हिंदुस्तान है अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है, और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूँ, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए। इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूँ, दिल से प्यार से, देखिए मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए। इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक।
0: इस सूत्रों के मुताबिक NSUI के प्रदर्शन के दौरान बस में हुई कथित मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने महिला NSUI कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये वही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर बदसलूकी और मारपीट के आरोप लगाए थे। NSUI महिला कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की गई है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ। मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई सामने आई है और NSUI महिला कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की गई है। देखिए एनएसयूआई की ओर से छात्रों से बदसलूकी के आरोपों के बीच दिल्ली पुलिस ने वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारी आक्रामक हो रहे हैं और उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। एनएसयूआई से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने जिस बस में मारपीट का आरोप लगाया था, पुलिस ने उसी बस का वीडियो जारी किया। वीडियो में प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों से हाथापाई करती नजर आ रही हैं। दूसरे वीडियो में एक महिला प्रदर्शनकारी महिला पुलिसकर्मी पर थप्पड़ मारती दिख रही है। और अब खबर अंकिता भंडारी के इंसाफ की लड़ाई की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कल देर रात इंडिया गेट पहुंचे और अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात की। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर उनके माता पिता इंडिया गेट पर प्रदर्शन

0: से राहुल और प्रियंका गांधी कल देर रात मिले। देर रात उन्होंने मुलाकात की दोनों उनके माता पिता से। इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान ये मुलाकात हुई। इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान वो वहां पर मौजूद थे जिस वक्त ये मुलाकात हुई। उसके बाद राहुल गांधी ने पोस्ट के जरिए ये बोला कि 4 साल बाद भी अंकिता के परिवार को इंसाफ नहीं मिला है, उनके साथ खड़े हैं। कल भी यही बात उन्होंने कही कि इस लड़ाई में कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ है। वीआईपी आरोपी को संरक्षण और संवैधानिक पद देने का आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया है। तो वही अंकिता भंडारी मामले को लेकर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर निशाना साधा है, देखिए।
1: उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने लगातार पूरे प्रदेश में प्रोटेस्ट किया, उसके बाद लगा था कि सरकार उस बेटी को इंसाफ दिलाने की दिशा में एक दो कदम आगे बढ़ाएगी, लेकिन अभी जो परसों का फैसला है उसके बाद तो लगता है कि न्याय देने के बजाय जो आरोपी है, जिसको परिवार आरोपी मानता है, जिसको पूरा उत्तराखंड आरोपी मानता है, जिस बीआईपी की बात हो रही है, अगर उसको इतना महामाननीय बनाने का प्रयास सरकारी तौर पर सरकार करेगी तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का क्या हुआ। यत्र नारस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का नारा यही है, ये श्लोक यही कहता है कि आप जिस व्यक्ति को आरोपी मानता हो परिवार, उसको आप माननीय बना दें, इतना माननीय बना दें कि कानून उसका कुछ कर ही ना सके।
0: अंकिता भंडारी हत्याकांड में इंसाफ की मांग को लेकर इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे अंकिता के माता पिता, विपक्षी नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने तड़के हिरासत में लिया। रात भर चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन करीब घंटे भर बाद अंकिता के माता पिता को पुलिस ने छोड़ दिया, जबकि अन्य प्रदर्शनकारियों और विपक्षी नेताओं को हिरासत में ही रखा रहा। वहीं अंकिता के माता पिता अपनी बेटी को न्याय दिलाने और मामले की निष्पक्ष जांच की लगातार मांग कर रहे हैं। अंकिता के इंसाफ के लिए इंडिया गेट पर प्रदर्शन चल रहा था, उसके माता पिता वहीं पर थे। कई विपक्षी नेता प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया गया, उनके माता पिता को भी हिरासत में लिया गया, माता पिता को छोड़ दिया गया, लेकिन कई विपक्षी नेता अभी भी हिरासत में।
2: नियुक्ति कल हो गई दुष्यंत गौतम की, आप लोग क्या कहना चाहते हो?
3: उन्होंने अभी अभी एक लिस्ट जारी कर किया, लेकिन उनकी नियुक्ति तब तक नहीं की जाए जब तक
2: क्या चाहते हो?
3: हमें चाहिए दुष्यंत कुमार सलाखों से पड़ा, जिसने जिसकी की वजह से मेरी लड़की की उन्होंने हत्या की।
2: सीबीआई जांच चल रही है अभी,
3: चल रही है, लेकिन वो सीबीआई तो जो लोअर कोर्ट में जिन गवाहों के बयान हो चुके हैं उन्हीं के रिपीट कर रही है। तो मैं ये चाहता हूँ सीबीआई से 19 सितंबर 2022 से 18 सितंबर 2022 से 19 सितंबर 2022 तक मेन जड़ वो ये पुलकित आर्य, उसकी पूरी कॉल डिटेल निकाल जाए, उसकी किससे बात कर रहा था, साफ पता पड़ जाएगा भैया आखिर कौन था।
4: माँ बाप आज तक सड़क में बैठे, कब मिलेगा मेरे बेटे को न्याय?
0: तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में इंसाफ की मांग को लेकर उनके माता पिता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपील की है कि सीबीआई जांच पूरी होने तक बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने गौतम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जबकि उनकी मां सोनी देवी ने भी अपनी पीड़ा जाहिर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में हिंदू मंदिर पर मास शूटिंग की कथित साजिश नाकाम हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, इलिनॉय के फेलेटाइन में रहने वाले 19 साल के युवक अलेक्जेंड्रोस को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को शक है कि वो नवरात्र के दौरान ओरोरा इलाके में स्थित एक हिंदू धार्मिक स्थल को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। आरोपी के घर से एक राइफल, कई भारी मात्रा में मैगजीन, सैकड़ों कारतूस, सामरिक उपकरण और बॉडी आर्मर वाला एक वेस्ट भी बरामद किया गया है। प्रणय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रणय, नवरात्रि को लेकर इस युवक पर शक जताया जा रहा है और क्या अपडेट सामने आया है?
5: देखिए, 11 तारीख को पूजा इस शख्स को गिरफ्तार किया गया था। 19 साल का यह युवा है, अलेक्जेंड्रो पापराकोकिस इसका नाम है, और ये पैलेटाइन विलेज है जो कि इलिनॉय प्रांत का एक छोटा सा सी बसाहट है, लेकिन अरोरा जो बस्ती है, शहर है, उससे काफी करीब में है, जहां पर एक बड़ा हिंदू मंदिर है और पुलिस को शक है कि ये शख्स वहां पर मास शूटिंग यानी व्यापक नरसंहार करना चाहता था और इसके पास से उस तरीके की के हथियार लोडेड मैगजीन्स राइफल्स भी मिले हैं। साथ साथ जो भारतीय समुदाय और खासतौर पर जो दक्षिण एशियाई

0: मूल के लोग हैं उनके खिलाफ जो हेट्रेड है, उनके खिलाफ जो द्वेष है, या उनके खिलाफ इस तरीके के प्रचार की जो सामग्री है वो भी बरामद की गई है। और इसी के मद्देनजर इस मामले की जांच न केवल स्थानीय पुलिस कर रही है बल्कि एफबीआई को भी यह मामला सौंपा गया है, और एफबीआई की जो शिकागो यूनिट है वो इस
1: जी
0: मामले की जांच कर रही है। लेकिन
1: चलिए,
0: ये
1: ठीक ठीक है
0: एक और
1: प्रणय, बहुत
0: बारी
1: बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं भारत में टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर बदलने वाला रिलायंस जियो अब शेयर बाजार में उतरने की तैयारी में है। दरअसल जियो प्लेटफॉर्म्स के प्रस्तावित आईपीओ के जरिए कंपनी करीब 28,755 करोड़ से 30,213 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। आईपीओ का प्राइस बैंड 1,065 से 1,119 रुपए प्रति शेयर रखा गया है, और साथ ही निवेशकों के लिए बिडिंग 19 अक्टूबर से और आम निवेशकों के लिए सब्सक्रिप्शन 21 से 23 अक्टूबर तक खुलने की जानकारी दी गई है।
2: भारत में मोबाइल इंटरनेट की दुनिया को पूरी तरह से बदलने वाला जियो अब स्टॉक मार्केट में उतरने की तैयारी कर चुका है। ऐसा तय माना जा रहा है कि बाजार में रिलायंस के आईपीओ की एंट्री धमाकेदार होगी, जिससे निवेशकों को जियो की विकास यात्रा में भागीदार बनने का मौका मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के प्रस्तावित आईपीओ के लिए आरएचपी यानी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया है और सब्सक्रिप्शन की तारीखों और प्राइस बैंड जैसी जरूरी जानकारी का ऐलान किया है। आईपीओ सब्सक्रिप्शन विंडो 21 और 23 अक्टूबर को खुलेगा और उससे पहले एंकर निवेशकों के लिए बिडिंग 19 अक्टूबर से शुरू होगी। करीब 27 करोड़ नए शेयर ऑफर पर रहेंगे। प्रति शेयर की कीमत 1,065 से 1,119 तक रहेगी। संभावित इश्यू साइज करीब 28,755 करोड़ से 30,213 करोड़ रुपए है। सबसे पहले नवंबर 1977 में धीरूभाई अंबानी रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के तहत आईपीओ लेकर आए थे। तब इसका ओवर सब्सक्रिप्शन 7 गुना से भी ऊपर गया था। दशकों बाद रिलायंस ने एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, रिटेल और डिजिटल सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में अपना विस्तार किया। 2016 में जियो के लॉन्च ने भारत के टेलीकॉम सेक्टर में बड़ी हलचल मचा दी और महज 170 दिनों के अंदर ही 10 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया। फिलहाल जियो के प्रस्तावित आईपीओ में कुछ मौजूदा शेयर होल्डर्स और कर्मचारियों के लिए भी प्रावधान शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के योग्य शेयर धारकों के लिए 2,500 करोड़ रुपए तक के शेयर रिजर्व किए गए हैं। कर्मचारियों के लिए 500 करोड़ तक के शेयर रखे गए हैं। ये अंबानी परिवार की तीसरी पीढ़ी का पहला आईपीओ है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने इस महीने की शुरुआत में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में कहा कि जियो का फोकस 1 अरब से अधिक भारतीयों को सबसे सस्ती और उन्नत तकनीक उपलब्ध कराना है। हालांकि जियो आईपीओ पर निवेशकों को सिर्फ बाजार के उत्साह के आधार पर फैसला नहीं करना चाहिए, निवेशकों को कंपनी के आर्थिक नतीजे और हालात के हिसाब से आकलन करना चाहिए। निवेश का फैसला करने से पहले आईपीओ से जुड़े दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, जिसमें बताए गए जोखिम भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
1: सुपर एट में आ वक्त हो गया, एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: हमारे नेबर मिस्टर कुमार बात बात पे कार मांगते रहते हैं।
6: वो इन लॉस को लाना है, कार मिल जाएगी।
7: अरे यार कुमार, अब तो अपनी कार ले लो यार।
8: कैनरा व्हीकल लोन से
6: अप टू 90% फाइनेंसिंग,
7: क्विक प्रोसेसिंग एंड नो प्री क्लोजर पेनल्टी।
9: कैनरा व्हीकल लोन, अपनी वाली गाड़ी के लिए।
10: एक दो, एक श्राम।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
2: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
3: तू सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
1: मतलब
3: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
1: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
3: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
4: आगे आगे, अरे उधर उधर गया। करेक्ट करेक्ट,
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
7: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार, सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
8: मेरे पास एक आइडिया है।
7: क्या?
8: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुमटा TMT बार से जो बना है,
9: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
10: क्योंकि वो मजबूत रुमटा TMT से बना है।
11: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
12: कौन सी बनानी है?
13: यार लोन भूल गया। मैरी
14: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना।
15: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
13: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
15: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन। देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
13: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
16: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
1: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
2: इट्स द माही वे।
3: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
4: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
5: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
6: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
5: क्या?
6: इनकी राय।
7: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
8: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
9: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
10: लव एंड केयर, द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट रेंज ऑफ रबर पेट टॉयज।
11: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
12: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
15: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
14: असली शहद, असली स्वाद।
16: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगे, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनो।
17: How's the hostel? Settled?
18: Yes, ma, it's really nice.
17: कोई आ रहा है क्या?
19: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटी तो निभाली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
17: मयंक, फॉर रियल?
19: वन कैरेट फॉर माय वन ट्रू लव। नेचुरल डायमंड रियल लव सॉलिटेयर्स टू रीइग्नाइट योर न्यू सीजन ऑफ लव।
20: Finding myself. That's my moment of Sarah.
21: In association with Canara Bank, together we can.
22: Anmol Biscuits. Swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds.
23: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
24: राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा मंच, जहां होगी युवाओं के मन की बात और मिलेगा युवाओं के हर सवाल का जवाब। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
25: सुनहरी वादियों पर सफेदी का पहरा, पतझड़ के रंगों के बीच सर्दियों की पहली दस्तक, कहीं आसमान से गिरते बर्फ के फाहे तो कहीं बर्फ की सफेद चादर में लिपटे पहाड़, ये तस्वीरें हैं कश्मीर की, जहां मौसम ने अचानक ऐसी करवट ली है कि खूबसूरत वादियों ने सर्दियों का लिबास ओढ़ लिया है। कुदरत के खूबसूरत नजारे, आसमान से गिरते बर्फ के फाहे और देखते ही देखते सफेद चादर में लिपटती कश्मीर की वादियां। गुरेज घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। गुरेज के तुलैल इलाके और बांदीपोरा के रजदान टॉप पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर जमी बर्फ खूबसूरत नजारा पेश कर रही है, लेकिन इसी के साथ पहाड़ी रास्तों पर सफर भी मुश्किल होता जा रहा है। गुरेज में पीर बाबा के पास सड़क पर फिसलन के चलते दमकल विभाग का एक वाहन स्किड होकर पलट गया। हादसे में 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को पहाड़ी सड़कों पर एहतियात बरतने की सलाह दी है। उधर गुलमर्ग में भी सीजन की पहली भारी बर्फबारी ने सबको चौंका दिया है। कोंगदूरी और अफरवट की ऊंचाइयां बर्फ से ढक गई हैं। पतझड़ के सुनहरे रंग देखने पहुंचे पर्यटकों को यहां सर्दियों का नजारा देखने को मिल रहा है। गुलमर्ग के बुटापथरी इलाके में भी ताजा बर्फबारी से चारों तरफ सफेदी छा गई है। सोनमर्ग में भी ऊंची पहाड़ियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। यानी कश्मीर में मौसम के दो अलग अलग रंग एक साथ देखने को मिल रहे हैं। बर्फबारी ने कश्मीर की वादियों को सर्दियों का खूबसूरत एहसास तो दे दिया है, लेकिन पहाड़ी सड़कों पर फिसलन के बीच सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
2: डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
2: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
3: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
1: कितना घटिया था यार। हाँ,
2: लप लप लप।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर राहुल गांधी समेत 13 नेताओं की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। एसआईआर फॉर्म 6 पर सवाल, जंतर मंतर और वकील पत्रकारों समेत प्रदर्शनकारियों की 22 अर्जियां लिस्टेड। दुष्यंत गौतम के खिलाफ इंडिया गेट पर धरना दे रहे अंकिता भंडारी के माता पिता को हिरासत में लेने के बाद छोड़ा गया। राहुल बोले, इंसाफ की लड़ाई में हम साथ, धामी सरकार का बयान, कराई गई निष्पक्ष जांच। एनएसयूआई छात्रों का दिल्ली पुलिस पर मारपीट का आरोप, एफआईआर दर्ज करने की मांग। जवाब में पुलिस ने जारी किया प्रदर्शनकारियों की बदसलूकी का वीडियो, एफआईआर दर्ज किए जाने की भी खबर। मानसा में एंटी ड्रग एक्टिविस्ट की हत्या के खिलाफ आज पंजाब बंद के समर्थन में उतरा विपक्ष। सीबीआई जांच की हो रही है मांग, आरोपी की हो चुकी है गिरफ्तारी, घर पर हुआ बुलडोजर एक्शन। राजस्थान पंचायत आज तक में सुबह 10 बजे से मरुधरा के सियासी दिग्गजों का जमावड़ा, सीएम भजन लाल, कैबिनेट मंत्री मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत विपक्ष के बड़े चेहरे होंगे शाम।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: मंदिर पर मास शूटिंग की कथित साजिश नाकाम, 19 साल के युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस को आरोपी के घर से राइफल, लोडेड मैगजीन, सैकड़ों कारतूस और गोरे नक्सलवादी विचारधारा से जुड़ी सामग्री भी मिली। वहीं पुलिस को शक है कि वो नवरात्रि के दौरान स्थित किसी हिंदू धार्मिक स्थल को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। इस्तांबुल में भारी बारिश के कारण तबाही, अचानक से आई बाढ़ के कारण कई इलाके जलमग्न।

बाढ़ और सड़कों पर पानी भरने की वजह से शहर में ट्रैफिक जाम। पानी भरने के कारण कई मेट्रो स्टेशन और अंडरपास बंद किए। एसआईआर फॉर्म 6 के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच आज याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच असहमति वाले सभी फैसलों का विस्तृत ब्यौरा कोर्ट में सामने पेश करने की मांग की गई। विपक्षी दलों की याचिका में एसआईआर के फैसलों की संवैधानिक वैधता की स्वतंत्र समिति गठित कर ऑडिट कराने की मांग। याचिका में एसआईआर में हटाए गए मतदाताओं के नाम और कारण सार्वजनिक करने के निर्देश भी मांग की गई। आज सुप्रीम कोर्ट में पत्रकार वकीलों पर हमले को लेकर सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश की पीठ मामले पर अंतिम फैसला सुनाई। दीपके ने कनॉट प्लेस में तिरंगा मार्च निकालने का आह्वान किया। एबीवीपी ने सीजेपी के नैरेटिव पर सवाल उठाया। दीपके, नेहा बोरा, कपिल सिब्बल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 2 बजे प्रेस क्लब में संबोधन। यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ी। 8 साल पुराने मामले में नया समन जारी करने का आदेश। सीजेपी नेता सौरभ दास और आशुतोष रंका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान बस में मारपीट मामले में एनएसयूआई की महिला कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर। 2022 संकिता भंडारी मर्डर केस की न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। सभी प्रदर्शनकारियों को तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में रखा गया। अंकिता के माता पिता को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन उन्हें रिहा कर दिया गया। परिवार राष्ट्रपति से अपील कर रहा है कि सीबीआई जांच पूरी होने तक दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल पद पर नियुक्ति पर रोक लगाई जाए और इसे रद्द किया जाए। दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर अंकिता भंडारी के पिता ने कहा, अगर मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो पूरे देश में प्रदर्शन होंगे। हिरासत में लिए जाने के बाद अंकिता की मां ने कहा, जब तक दुष्यंत गौतम नियुक्ति रद्द नहीं होती तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। अंकिता भंडारी मामले को लेकर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बैठना कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि अंकिता के परिवार के साथ एकजुट दिखाना। एसपी सांसद डिंपल यादव ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा, यह सरकार महिला सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच उत्तराखंड सरकार ने अपना पक्ष रखा। सीएम कार्यालय की ओर से जारी जानकारी में कई दावे। उत्तराखंड सरकार ने दावा किया है कि मामले में सरकार ने त्वरित कार्रवाई से लेकर जांच और अभियोजन कदम उठाए। सरकार के मुताबिक घटना सामने आने के 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जांच के लिए एसआईटी गठित की गई और आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए गए। आज दिल्ली दौरे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में पटाखों पर विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीटीआई ने दिवाली के दौरान दिल्ली में ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत मांगी। मोदी कैबिनेट ने 62 साल पुराने आईडीबीआई बैंक के 60% हिस्सेदारी को बेचने की दी मंजूरी। कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स 52878 की खरीदारी। लखनऊ कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपी श्रद्धा दुबे का पहला बयान आया सामने। बोली, शिवा शर्मा की हत्या नहीं हुई है, उसने सुसाइड किया। श्रद्धा दुबे ने कहा कि कहीं गायब नहीं है और पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराना चाहती है। आज राहुल गांधी के आवास पर एक और चाय कार्यक्रम। इस बार एनएसयूआई यूथ और सेवा दल के प्रमुख और इंचार्ज होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की महिला सांसद आज सुबह 10 बजे लोकसभा अध्यक्ष में करेंगे मुलाकात। वहीं कांग्रेस सांसद अंगुमचा की सदस्यता रद्द करने की मांग कर सकती है। सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से राम मंदिर को लेकर दिए गए बयान सियासत गरमाई। आरजेडी ने सादा निशाना। कहा, पीएम मोदी को खुश करने की राजनीति कर रहे। आईडीबीआई बैंक डील को अखिलेश यादव ने कसा तंज। वित्त मंत्री ने किया पलटवार। BS6 के बाद अब BS7 की बारी। अप्रैल 2029 से नई कार SUV पर लागू होंगे नए मानक। पीएम मोदी आज जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 के पदक वीरों से मिलेंगे। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शाम 4:30 बजे होगा कार्यक्रम। जापान में एशियाई खेलो मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया था। भारत की झोली में आए थे 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज। चेन्नई में 3108 करोड़ की वाटर पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ किया गया। 98 किलोमीटर लंबी लोहे की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। वहीं बरेली में 8 साल बाद लौटी भारतीय वायुसेना की सारंग टीम। स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर से हैरतअंगेज करतबों का प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में BIS की सिल्वर रिफाइनरी स्कीम लॉन्च। चांदी की शुद्धता और हॉल मार्किंग को मिलेगा बढ़ावा। चांदी के कारोबार में शुद्धता की नई व्यवस्था। डिजिटल स्टैंडर्ड्स रीडर 2.0 का बीटा वर्जन जारी किया गया। आयुष और रोबोटिक्स के नए मानक भी पेश। ईवी चार्जिंग केबल्स के लिए भी नए स्टैंडर्ड्स। पैक्ड पानी की गुणवत्ता पर FSDA की सख्ती। अब BIS प्रमाणन के बिना नहीं मिलेगा यूपी में लाइसेंस। वहीं मेरठ नीला ड्रम केस में दोषी मुस्कान और प्रेमी साहिल को मिली फांसी की सजा। जिला जज ने माना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला। भुवनेश्वर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर। कई गाड़ियों को मारी भीषण टक्कर।
गुवाहाटी में एक महिला से बैग छीनने की कोशिश, बैग बचाने के लिए महिला करीब 50 मीटर तक सड़क पर घसीटती रही, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जयपुर में भूमि पूजन के दौरान जमकर चले लाठी डंडे, चाचा ताऊ के परिवार में हुई झड़प का वीडियो वायरल। गाजियाबाद में चोरों के हौसले बुलंद, आधी रात घर के बाहर खड़ी कार पर किया था हादसा। दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी में शराब पार्टी का सीसीटीवी वीडियो वायरल, तीन महिलाओं समेत चार लोगों के शराब पीने का आरोप। नोएडा में जमीन के बंटवारे को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा, स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर, से घटना सीसीटीवी में कैद। वडोदरा में ज्वेलर्स की दुकान से 8.5 करोड़ के सोने की फिल्मी अंदाज में चोरी की गई। वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, जांच के बाद फिर से भरी उड़ान। मुंबई से सटे नालासोपारा की इंपीरियल हाइट्स इमारत में भीषण आग, दो महिलाओं की मौत, 6 लोग अस्पताल में भर्ती। नागपुर में सरकारी महिला डॉक्टर के हॉस्टल में चोरी, महिला आई अलमारी का ताला तोड़कर 2 सोने की अंगूठी लेकर चली गई। भावनगर के रंगोली रिजॉर्ट में नवरात्रि फेस्टिवल में बवाल मचा, असमल एंड असलम बैंड के विरोध में प्रदर्शन के बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। सोनीपत में मूर्थल के एक ढाबे से लौट रहे युवक और ममेरे भाई को कैंटर ने कुचला, दोनों की मौत। कानपुर के सदर बाजार में 80 साल के बुजुर्ग पर सांड ने किया जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। गिर सोमनाथ में शेरनी के हमले में युवक की मौत हुई, ग्रामीणों में भारी आक्रोश। दमन के खारीवाड़ इलाके में खड़ी मारुति एसयूवी में अचानक से भीषण आग लग गई, इंजन जलकर खाक। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 21वीं मंजिल से गिरकर युवक की मौत, पत्नी से चल रहा था विवाह। सूरत में नकली घी बनाने के बड़े कारोबार का खुलासा, पुलिस ने 18,21,000 रुपए का माल जब्त किया। गाजियाबाद में हार्डवेयर व्यापारी की चाकू से गूंथकर हत्या कर दी गई।

आपका आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 अक्टूबर 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।

डाल दें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कर्क राशि, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें, देवी को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, करियर में समस्या हो सकती है, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

0: धन की समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी।
1: वृश्चिक राशि।

होंगे। देवी को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

से बचें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, काम की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसू।

मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, चोट चपेट से सावधान रहें। देवी को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: एक दो एक श्राम।

0: back and breathe.
1: Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस
3: मेरे पास एक आइडिया है
2: क्या
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
4: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाती है पर स्टेज नहीं हिलता
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है
6: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है
7: कौन सी बनानी है
8: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं
9: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम
10: आई लव इट एब्सोल्युटली अमेजिंग तुम एक काम करो तुम मिठाई ऑर्डर कर लो
11: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
10: क्या
11: इनकी राय
12: नई सोच की नींव में हम हर नई उम्मीद में हम गैलेट निर्माण का रियल हीरो
13: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए
14: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
15: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे अब सब सेट है ना
16: सब सेट है बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से
17: तू सोचना क्या है मेरा अपना बैंक है ना
16: मतलब
17: पंजाब नेशनल बैंक जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर OTT सब्सक्रिप्शन लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे
16: वाओ दी मैं कल ही बैंक जाता हूँ
17: पर जाना क्यों है सब ऑनलाइन ही हो जाता है PNB मेरा अपना बैंक
18: फाइंडिंग मायसेल्फ दैट्स माय मोमेंट ऑफ सारा
19: आ गया सोमवार और आ गए
20: चकमक चाचा
19: हाँ चाचा अखबार भाँच रहे
21: हैं
19: चल रहा है भैया के चले गए दीदी पहुंच गई है चिचा कब जाएंगे
21: अरे भैया पुटा सुटा समस्या हम ले लेते हैं ये सब तुम लोग का ऐसा है हम अपना मुद्दा उठा चुके पुराने
19: अच्छा कब उठाए
21: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए
19: अच्छा
21: हाँ तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा ये नहीं तुम लोग इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे दन दन दन दन करके ऐसा ये सब नहीं था अपना मामला
19: जी
21: मुद्दा मजबूती से रखते थे
19: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है
21: टूटा भी था सही बात है जब कभी ऐसे प्रवाही चलती थी दर्द होता है थोड़ा थोड़ा लेकिन दिल मुद्दा रखे थे हाँ एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे सरकार हिला दिया एकदम
19: अच्छा
21: और क्या
19: आपका मतलब हम लोग डर जाते हैं
21: और क्या डर जाते हैं बिल्कुल जहाँ पुलिस सिटी नहीं बची उसमें भागने लगता हूँ
19: बढ़िया आप डरते नहीं है पुलिस आ रही है
21: किधर
19: चाचा हम खेल गए अब की
22: ये हिंदुस्तान है अमित शाह जी इसको अच्छी तरह देख लीजिए यहाँ कोई हिंदू नहीं है कोई मुस्लिम नहीं है कोई किसी जात का नहीं है कोई स्त्री नहीं है कोई पुरुष नहीं है एक आवाज़ है एक प्रोटेस्ट है हिंदुस्तान की आवाज़ और आप इस आवाज़ के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज़ के सामने खड़े हैं मैं आपको सुझाव देता हूँ इस आवाज़ के सामने खड़े मत होइए इस आवाज़ के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है
23: NSUI कार्यकर्ताओं को हिंदुस्तान बताकर अमित शाह का जवाब देने राहुल गांधी कुछ यूं सामने आए दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी के हंगामों पर अमित शाह ने मंगलवार को जोरदार प्रहार किया था अमित शाह ने न सिर्फ SIR के विरोध पर राहुल गांधी को घेरा था बल्कि ये भी कहा था कि राहुल असली हिंदुस्तान को नहीं जानते
24: मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी SIR के बहाने घुसपैठिया बचाने का आपकी जो कार्य योजना है उसको देश की जनता भली भांति समझ चुकी है और अब भारत की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में गांवों में दूर सुदूर पहाड़ियों पर जंगलों में और नदियों के किनारे भी है आपकी वहां कोई रीच नहीं है
23: अमित शाह के बयान पर जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से आया खड़गे ने एक्स पोस्ट में लिखा गृह मंत्री द्वारा SIR में बाहर 13 करोड़ भारतीयों को घुसपैठिया घोषित करना भारतीयता का अपमान है। उधर अमित शाह ने अपने बयान में 2029 को लेकर भी अभी से भविष्यवाणी की है।
24: श्री राहुल जी और उनके साथियों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 29 में प्रचंड हार के लिए फिर से एक बार मन बना लीजिए। 2029 के आम चुनाव में NDA प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आने वाला है और कांग्रेस की फिर से एक बार लगातार चौथी बार हार होने वाली है।
23: कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने एक्स पोस्ट में जवाब में कहा, हद है कि अमित शाह चुनावी जीत का जश्न मना रहे हैं, जबकि पूरा विवाद ही इस बात को लेकर है कि किस तरह वे हमारी चुनावी व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। अमित शाह अभी से 2029 की बात कर रहे हैं, इससे साफ लगता है कि उन्हें भी मोदी की स्थिति अस्थिर होने का एहसास है। इस बीच राहुल गांधी ने NSUI के जिन कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने दिल्ली पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। NSUI की महिला कार्यकर्ता के साथ पुलिस की महिला कांस्टेबल की झड़प का वीडियो सामने आया है।
0: कैनोट पुलिस थाने के पास से हम लोग निकलते हैं तो चंचल यादव जी वहाँ पे बस को रोकती है और मेरे साथ मैं और एक केरला की साथी होती है तीरा, जो मुझे प्रोटेक्ट करती है। इन दोनों को पर्सनली मुझे टारगेट करने के चक्कर में इसको भी मतलब इतना फर्स्ट टाइम इसको इतना जोर से घिसटा गया रोड पे और इसके कीक मारी गई, प्राइवेट वार्स पर मारी गई। मेरे भी इंटरली बैक की मतलब लेफ्ट की मारा, मतलब पूरा पुश किया गया पेट को।
23: राहुल गांधी ने CJP के सौरभ दास और आशुतोष रांका को जंतर मंतर पर अवैध तरीके से घुसपैठ की कोशिश पर 5 दिन की जेल होने पर भी अपने बयान में कहा है कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है, इसके लिए युवाओं को जेल में डालना कायरता है। छात्र, युवा, पत्रकार, इंडिया गठबंधन, झंडे और बैनर अलग अलग हैं, लेकिन मकसद एक है। हर विरोध प्रदर्शन एक ही आवाज है, अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग करते नागरिकों की आवाज। जंतर मंतर भारत के लोगों का है, हम इसे फिर से जनता के अधिकार में लेकर रहेंगे। उधर BJP भी राहुल गांधी के खिलाफ नैरेटिव की लड़ाई में कूद गई है। BJP की एक्स पोस्ट में लिखा कांग्रेस, इट्स डन ब्रो, जनता का भरोसा ही इस असली सुपरहिट का राइटर है। इस पोस्ट के जरिए BJP 4 एपिसोड सामने रख रही है। पहला राहुल गांधी का डेलुलू मोड, दूसरा एरोगेंस, तीसरा पीपल्स रिप्लाई और चौथा रिजल्ट। आज तक ब्यूरो।
22: और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूं, दिल से प्यार से, देखिए मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए, इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक। नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस, और घबराइए मत।
1: कल जाहिर सी बात है आयशा की छात्र हैं नेहा बोरा, उनको खड़ा कर दिया था, अब उनको लगा कि भाई अपने ही स्टूडेंट विंग की छात्राओं का सामने रखे हैं, तो अब छात्रों का इस्तेमाल ना करें। आपकी जो सोच है, जो आपने दिखाया है सबके सामने अपना रवैया और अपना एटीट्यूड, अरे आपने तो अपने DK शिव कुमार को नहीं छोड़ा और जितनी महिला वहां पे पुलिस कर्मी थी उनको आपने बख्शा नहीं, और ना ही आपके लोगों ने मदद भी की उन महिलाओं की, उन पत्रकारों की। तो अब उस सबसे बचने के लिए आप जिस तरह से छात्र और छात्राओं का इस्तेमाल कर रहे हैं ये सबको पता चल रहा है।
7: दिल्ली पुलिस, तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
9: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
20: डोंट ट्विस्ट।
7: क्या हुआ?
20: डोंट ट्विस्ट लप से।
7: हर आदमी में
20: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखिए।
9: कितना घटिया था यार।
20: लप लप लप।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर राहुल गांधी समेत 13 नेताओं की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। एसआईआर फॉर्म 6 पर सवाल, जंतर मंतर और वकील पत्रकारों समेत प्रदर्शनकारियों की 22 अर्जियां लिस्टेड। इंडिया गेट पर धरना दे रहे अंकिता भंडारी के माता पिता को हिरासत के बाद छोड़ा गया। दुष्यंत गौतम के खिलाफ आक्रोश, राहुल बोले इंसाफ की लड़ाई में साथ। धामी सरकार ने कहा निष्पक्ष जांच हुई। एनएसयूआई छात्रों का दिल्ली पुलिस पर मारपीट का आरोप, एफआईआर दर्ज करने की मांग। जवाब में पुलिस ने जारी किया प्रदर्शनकारियों की बदसलूकी का वीडियो, एफआईआर दर्ज किए जाने की भी खबर। मानसा में एंटी ड्रग एक्टिविस्ट की हत्या के खिलाफ आज पंजाब बंद के समर्थन में उतरा विपक्ष। सीबीआई जांच की हो रही है मांग, आरोपी की हो चुकी है गिरफ्तारी, घर पर हुआ बुलडोजर एक्शन। पंचायत आज तक राजस्थान में सुबह 10 बजे से मरुधरा के सियासी दिग्गजों का जमावड़ा। सीएम भजनलाल, कैबिनेट मंत्री मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत विपक्ष के बड़े चेहरे शामिल।

0: नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम टाइम के सुपरहिट शो 9 बज गए में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिना ब्रेक के सुबह के आपके पसंदीदा ब्रेकफास्ट न्यूज शो में देश और दुनिया की बड़ी और जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। खबरें रफ्तार से होंगी और विस्तार से भी। हमेशा की तरह सबसे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की कुछ झलकियों पर। सुप्रीम कोर्ट में आज महासुनवाई का दिन। 22 अर्जियों पर होगी सुनवाई। कौन है याचिकाकर्ता, क्या है उनकी मांग, बताएंगे आपको थोड़ी देर बाद। वहीं आज राहुल गांधी की चाय पार्टी का पार्ट 2 होने वाला है। आज की चाय पार्टी में कौन कौन मेहमान होंगे, इस खबर पर भी होगी विस्तार से बात। यूपी में सियासत में वार पलटवार की ताजा कड़ी। अखिलेश का ऐलान, आज करेंगे SIR में धांधली पर बड़ा खुलासा। और आधे घंटे बाद यानी सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर आपको बताएंगे। वहीं बुलेटिन में शुरुआत करते इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। देश की सर्वोच्च अदालत में आज महासुनवाई का दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट में 22 अहम याचिकाओं पर सुनवाई होने जा रही है। इन याचिकाओं में विपक्षी दलों के 13 नेताओं की वो याचिका शामिल है जिसमें चुनाव आयोग उसके फैसलों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। जंतर मंतर को धरना प्रदर्शन के लिए बंद करने वाले दिल्ली पुलिस के आदेश को चुनौती देने वाली अर्जी पर भी आज सुनवाई होनी है। तो इसके अलावा महिला पत्रकारों और वकीलों पर कथित हमले, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने, ट्रेन मेट्रो स्टेशन को बंद करने को लेकर भी सुनवाई होने जा रही है। तो जिस 13 नेताओं की अर्जी पर आज सुनवाई होने जा रही है उनमें कौन कौन है। पहला नाम है लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव, RJD नेता तेजस्वी यादव, साथ ही शिवसेना UBT के संजय राउत, CPIM के MA बेबी और साथ ही कई नेता। 13 फरियाद सामने आई है और 13 नेताओं के इसमें नाम शामिल है। NCP SP की सांसद सुप्रिया सुले और मोहम्मद बशीर का नाम भी है इसमें। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहमद किचलू का नाम भी। अब आपको ये भी बताते हैं कि इन विपक्षी नेताओं की अर्जी में क्या कुछ कहा गया है, क्या है सवाल उठाया गया है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने SIR के मुद्दे पर अकेले फैसले लिए। इलेक्शन कमीशन में असहमति के बिंदुओं का ब्यौरा कोर्ट में पेश किया जाए। साथ ही देश भर में SIR किसकी मंजूरी से लागू हुआ, ये सवाल उठाया गया। याचिका में SIR की जारी प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने की मांग भी की गई है। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। याचिका में सवाल पूछा गया है कि फॉर्म 6 में बदलाव का फैसला किसने किया और ECI नेट और ERO नेट के स्वतंत्र ऑडिट की मांग भी की गई है। तो करीब 13 करोड़ वोटर्स के नाम हटाने पर सवाल भी उठाए गए हैं। फॉर्म 7 के जरिए सामूहिक आपत्तियों का मुद्दा भी उठाया गया है। साथ ही रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में इंडिया गठबंधन की 13 फरियादी और ये जो तमाम अर्जी लगाई गई है उनमें उन्होंने 13 विपक्षी नेताओं ने क्या कहा है। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। संजय जी, आज एक अहम दिन, सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है।
1: आज तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही जबरदस्त गहमा गहमी का दिन है। 22 याचिकाएं हैं जिसमें 13 याचिकाएं तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के कई नेताओं की हैं। इसके अलावा जो 9 याचिकाएं हैं उसमें DUJ, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जिसने पत्रकारों पर हमले पर भी सवाल उठाए हैं और कोर्ट से ये कहा है कि क्यों ना ऐसे लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा SIR प्रदर्शन स्थल से जंतर मंतर को हटाए जाने और ये तमाम इन सारी चीजों पर बहुत सारे मसलों पर सुनवाई है। इस मामले में परसों भी सुनवाई थी लेकिन चूंकि पीठ की एक सदस्य जस्टिस बी मोहना उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से भी सुनवाई टली। दूसरी 3 वजहें थी सुनवाई टलने की और दूसरी वजह थी कि सरकार ने कहा कि उनके पास वो कंप्रिहेंसिव जवाब दाखिल करना चाहती है और तीसरा चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके पास बहुत सारी याचिकाओं के दस्तावेज आए हैं तो उसे पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए आज बहुत बड़ा दिन है, आज बहुत सारी चीजों पर सुनवाई आगे बढ़ेगी यानी दशा और दिशा तय होगी।
0: प्रदर्शन का मुद्दा भी इसमें उठाया गया है जिस पर सख्त पाबंदी है, जगह को बदला गया, अब उसको लेकर क्या लग रहा है संजय जी, जो सुनवाई होने वाली है क्या क्या सामने आ सकता है
1: इसमें। पहला तो मैं ये बताऊंगा कि पहले भी चीफ जस्टिस ने एक सुनवाई इसी सुनवाई के दौरान पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस ने कहा था कि जब इतनी मुश्किल है और शहर को हाईजैक नहीं करने दिया जा सकता है प्रदर्शन के नाम पर, शहर की रफ्तार नहीं रोकी जा सकती, आम आदमी की परेशानियों को दूर करना चाहिए, उनको परेशानी नहीं हो क्योंकि करोड़ लाखों लोग रोज सुबह अपने घर से चलते हैं और दिल्ली में नौकरी करने आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, उनके लिए मुश्किल हो रही है, तो क्यों ना सरकार ऐसा इंतजाम करती है कि धरने प्रदर्शन का कोई ऐसा स्थल हो जो मुख्य शहर से दूर हो ताकि शहर को चोक ना किया जा सके, उसका दम ना घोटा जा सके। तो इस पर सरकार ने कहा कि वो इस पर जवाब देगी और जब सरकार के सूत्रों से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि सीबीडी ग्राउंड है और बुराड़ी में इतनी बड़ी जगह है। जिस समय सुनवाई हो रही थी उस समय कपिल सिब्बल याचिकाकर्ताओं की तरफ से थे, उन्होंने कहा कि नई जगह भी अगर मिलती है तो वहां एक तो सुरक्षा का इंतजाम सही होना चाहिए, साफ सफाई पूरी होनी चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए और रोशनी का इंतजाम होना चाहिए, खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें जो बुनियादी सुविधाएं हैं वहां पर होनी चाहिए। लेकिन दूसरा धड़ा याचिकाकर्ताओं का, उसका ये कहना है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये 20 किलोमीटर दूर कहीं आउटस्कर्ट्स में ले जाएं तो वहां पर हम अपनी आवाज लगाएंगे, कौन सुनेगा? हम तो ऐसी जगह अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं जहां से कुछ कदम आगे चलें, सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाएं, सरकार के दरवाजे पर पहुंच जाएं, और वहां 22 किलोमीटर दूर
0: बिल्कुल,
1: जाकर
0: इसको
1: वो फिर
0: लेकर
1: वहां से
0: सौरभ
1: अपनी आवाज
0: भारद्वाज ने
1: कैसे
0: भी
1: सुन
0: एक
1: सकता है।
0: वीडियो जारी किया था कि वहां पर प्रदर्शन कैसे हो सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली पुलिस और कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के बीच आरोप प्रत्यारोप अब तेज हो गया है। कल राहुल गांधी की मौजूदगी में एनएसयूआई से जुड़े छात्र छात्राओं ने पुलिस पर मारपीट बदसलूकी का इल्जाम लगाया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कुछ वीडियो जारी कर एनएसयूआई प्रदर्शनकारियों पर पुलिस पर हमले का इल्जाम भी लगा दिया। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक एनएसयूआई के प्रदर्शन के दौरान बस में हुई कथित मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। ये वही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर बदसलूकी मारपीट के आरोप लगाए थे। ये वीडियो दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रोटेस्टर लगातार एग्रेसिव रहते हैं और इन्हें हैंडल करना काफी मुश्किल।

0: ये हिंदुस्तान है। अमित शाह जी इसको अच्छी तरह देख लीजिए, यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, एक आवाज़ है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज़ है। और आप इस आवाज़ के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज़ के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूँ, इस आवाज़ के सामने खड़े मत होइए, इस आवाज़ के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूँ, दिल से प्यार से, देखिए मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए, इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक।
1: अरविंद ओझा जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। अरविंद, महिला कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की गई है, राहुल गांधी का ये वीडियो हम देख रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम सभी के साथ खड़े हैं, आप वीडियो जारी कीजिए, क्या कहेंगे इस पर?
2: देखिए, दिल्ली पुलिस भी अपनी वर्दी पर वीडियो लगाती है पूजा, और वो कैद होता है, वो सब कुछ जो घटनाक्रम वो कैद होता है। और ऐसा ही वीडियो कल दिल्ली पुलिस ने जारी किया, जिसमें जो वुमेन कांस्टेबल है चंचल, उसके साथ जो NSUI की कार्यकर्ता है, वो मारपीट करती हुई दिखी है। जो कांस्टेबल है उसने सीनियर अफसरों को शिकायत भी दी, दिल्ली पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद एक FIR भी कल दर्ज हुई है जो NSUI की कार्यकर्ता है उसके खिलाफ, जिस तरह से बस उसके साथ मारपीट हुई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो चंचल कांस्टेबल ने शिकायत दी, उसमें बताया कि जो प्रोटेस्टर हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं। बस में जो मारपीट की पूरी घटना है, दरअसल NSUI की कार्यकर्ता ने ड्राइवर से चाबी छीन ली और नीचे फेंक दिया था, जिसके बाद ये पूरी झड़प हुई थी। और देखिए, कोई ये पहला मामला नहीं, जब से प्रोटेस्ट चल रहा है तब से प्रोटेस्टर की तरफ से भी शिकायतें आ रही हैं, और दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो भी शिकायत कर रहे हैं, महिला कर्मचारी भी शिकायत कर रही हैं कि उनके साथ भद्र व्यवहार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है जब वो अपनी ड्यूटी करती है उस दौरान। तो वीडियो वर्सेस वीडियो चल रहा है, एक तरफ राहुल गांधी और NSUI वीडियो जारी करती है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने भी वीडियो जारी किया। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस ने महिला कांस्टेबल की शिकायत पे एक FIR भी दर्ज कर ली है।
1: चलिए ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं अभिजीत दीपके ने 16 तारीख को दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा लहराने का ऐलान किया है। वीडियो जारी कर दीपके ने कहा है कि उनके सहयोगियों को तिरंगा लहराने के लिए जेल में डाला गया है, इसलिए वो 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे तिरंगा लहराएंगे। दीपके की CP के सेंट्रल पार्क में आने की अपील है और 16 तारीख को सेंट्रल पार्क में तिरंगा लहराएंगे दीपके, उनकी तरफ से अपील की गई है, सभी को मौजूद रहने को कहा गया है 16 तारीख और सेंट्रल पार्क में तिरंगा लहराने की अपील दीपके की तरफ से एक वीडियो संदेश जारी करते हुए की गई।
3: जैसे कि आप लोगों को पता है, सौरभ और आशु को बस तिरंगा लहराने के लिए जेल में डाला गया है। तो मैं सभी देशभक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग तिरंगे से प्यार करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 16 अक्टूबर को शाम को 5 बजे आप सब सेंट्रल पार्क कैनॉट प्लेस में आइए तिरंगे के साथ। वहां पर हम अपना तिरंगा लहराएंगे और हम बता देंगे कि वेविंग अ तिरंगा इज नॉट अ क्राइम। और जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते वो अपने अपने शहरों में शाम को तिरंगा मार्च निकालिए और बता दीजिए इन लोगों को, इन तानाशाह को, कि हमारा तिरंगा हमारा प्राइड है और उसे लहराना कोई क्राइम नहीं है। हो सकता है इसके बाद मुझे भी जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है, मेरा तिरंगा मेरा प्राइड है और उसे मैं लहरा कर ही रहूंगा।
1: तो ABVP ने लहरा दो तिरंगा अभियान को लेकर CJP पर निशाना साधा। ABVP का आरोप है कि कनॉट प्लेस में इस अभियान के जरिए लोगों को जुटाकर नया राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। संगठन का कहना है कि अगर पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकती है तो इसे राष्ट्रीय ध्वज फहराने की आजादी से जोड़कर विवाद खड़ा किया जा सकता है। ये ABVP की तरफ से जवाब सामने आया है CJP तिरंगा अभियान को लेकर। तो ABVP की तरफ से कहा गया है, बिल्कुल उनका CJP का साथ ना देते हुए ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने की आजादी से जोड़कर एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। अब बात आज एक और बड़ी खबर की। दरअसल कल इंडिया गेट एक और प्रदर्शन का गवाह बना अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर। अंकिता के

0: माता पिता धरने पर बैठे, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए।
1: इंडिया गेट पर पुलिस एक्शन की यह तस्वीर सुबह करीब 4 बजे की है। तस्वीरें देखिए। किस तरह प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है। अंकिता भंडारी के माता पिता और कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि कुछ समय बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया।
2: आज बहुत ही शर्मसार करने वाला काम किया है अमित शाह और मोदी के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने। अंकिता भंडारी के माता पिता को डिटेन किया गया है। न्याय देने के बजाय जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। पहले तो दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाकर इंक्वायरी से बाहर करने का काम किया और आज उनके माता पिता को यहाँ पर डिटेन करके दिल्ली पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। शर्म आनी चाहिए। हम बार बार ये कहेंगे, याचना नहीं अपहरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा।
1: दरअसल उत्तराखंड के बहुचर्चित 4 साल पुराने अंकिता भंडारी का मामला अब नए सिरे से गरमाने लगा है। विरोध इस बात को लेकर हो रहा है कि दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल क्यों बनाया।
3: कल परसों ही जब 12 तारीख को हमने वीडियो में दिखा कि जो भियाबी था उसको सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया। हम कल आज ही घर से तैयार होकर हमने कहा दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखेंगे और महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे पहले समय मांगेंगे कि उस व्यक्ति की नियुक्ति तब तक न की जाए जब तक सीबीआई उसकी जांच पूरी न हो जाए।
1: अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर हुए इस प्रदर्शन में लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाने पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने इस पर लिखा, 4 साल से अंकिता भंडारी के परिवार को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन एक वीआईपी आरोपी को संरक्षण और संवैधानिक पद का इनाम जरूर मिला। जहां बलात्कारियों और हत्यारों का फूलमालाओं से स्वागत होता है और अपराधियों को सत्ता की ताकत से नवाजा जाता है, उस महिला विरोधी बीजेपी से कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती।
4: उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने लगातार पूरे प्रदेश में प्रोटेस्ट किया, उसके बाद लगा था कि सरकार उस बेटी को इंसाफ दिलाने की दिशा में 1-2 कदम आगे बढ़ाएगी, लेकिन अभी जो परसों का फैसला है उसके बाद तो लगता है कि न्याय देने के बजाय जो आरोपी है, जिसको परिवार आरोपी मानता है, जिसको पूरा उत्तराखंड आरोपी मानता है, जिस बीआईपी की बात हो रही है, अगर उसको इतना महामाननीय बनाने का प्रयास सरकारी तौर पर सरकार करेगी तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का क्या हुआ।
1: अंकिता भंडारी केस में दुष्यंत गौतम का नाम पिछले साल बीजेपी के पूर्व एमएलए सुरेश राठौड़ और उनकी पत्नी उर्मिला सनावर का वीडियो और ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद आया था। वीडियो में अंकिता मर्डर में शामिल वीआईपी के तौर पर दुष्यंत गौतम का नाम उछाला गया था। हालांकि दुष्यंत गौतम ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए देहरादून के थाने में FIR दर्ज कराई थी और मानहानि का केस भी दाखिल किया था। खास बात यह है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच, चार्जशीट और अदालत की कार्यवाही में उनका नाम कहीं नहीं आया है। अनमोल बाली के साथ राहुल गौतम, दिल्ली आज तक।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है और मामले में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो खुद को बेगुनाह बताते हुए अपना नाम नेताओं और अधिकारियों से जोड़ने पर एतराज जता रही हैं। श्रद्धा का दावा है कि शिवा शर्मा की हत्या नहीं हुई है बल्कि उन्होंने आत्महत्या की थी। दूसरी तरफ श्रद्धा दुबे की SUV भारत नेपाल सीमा से सटे बहराइच के एक इलाके की एक पार्किंग में मिली है।
5: आप हर किसी के साथ मेरा नाम मत जोड़िए।
1: शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे भले ही अब तक पुलिस की पकड़ से दूर हो, लेकिन उसके नए वीडियो ने केस में खलबली मचा दी है। वीडियो जारी कर श्रद्धा ने एक तरफ खुद को बेगुनाह बताया तो दूसरी तरफ नेताओं और अधिकारियों के साथ नाम जोड़े जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। श्रद्धा का कहना है कि सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ बेवजह अफवाहें फैलाई जा रही हैं और उसका किसी से कनेक्शन नहीं है।
5: मेरे नाम को ऐसे मत उछालिए, आप हर किसी के साथ मेरा नाम मत जोड़िए। आप लोगों ने कई नेताओं कई अधिकारियों के साथ मेरा बेवजह का नाम जोड़ा है, क्योंकि हाँ अगर वो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे से कोई ऐड है तो आप मेरे बारे में ऐसी अफवाह मत फैलाइए। मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती हूँ।
1: श्रद्धा दावा करती है कि वो गायब नहीं है और पुलिस के सामने आकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, श्रद्धा ने शिवा शर्मा की मौत को हत्या मानने से इनकार करते हुए दावा किया कि शिवा ने आत्महत्या की थी। अब सवाल ये है कि पुलिस के सामने आने का दावा करने वाली श्रद्धा कब तक जांच में शामिल होती है और शिवा की मौत को लेकर किए गए उसके दावों की हकीकत क्या निकलती है।
5: मैं अवाम मत फैलाइए, मैं कहीं गायब नहीं हूँ, मैं पुलिस में आके बयान देना चाहती हूँ, मैं उन्हें सब कुछ सच सच जो कुछ भी है मैं उन्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कुछ भी किसी लड़की के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि मेरा क्या गुनाह है, मैंने कुछ नहीं किया है। और जो कुछ भी सच है शिवा शर्मा कांड से रिलेटेड कि उसकी कोई हत्या नहीं हुई थी, वो एक सुसाइड था, वो मैं आप लोगों से बताने वाली थी।
1: एक तरफ श्रद्धा दुबे वीडियो जारी कर पुलिस के सामने आने की बात कह रही है तो दूसरी तरफ उसकी SUV मिलने की खबर ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा के पास पार्किंग में श्रद्धा की SUV कार मिली है। जानकारी के मुताबिक UP 32QQ0111 ये गाड़ी 10 अक्टूबर से पार्किंग में खड़ी थी। श्रद्धा गाड़ी पार्क करने के बाद नेपाल जाने की बात कहकर वहां से निकली थी। हालांकि श्रद्धा की मौजूदा लोकेशन और नेपाल जाने की पुष्टि अभी नहीं हुई है। गाड़ी मिलने की खबर के बाद लखनऊ पुलिस के बहराइच पहुंचने की जानकारी भी सामने आई। दरअसल 9 अक्टूबर को लखनऊ में कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शिवा श्रद्धा दुबे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। आरोप है कि वो अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर स्थित फ्लैट की बालकनी से नीचे गिर गया था। शिवा की मां ने FIR में श्रद्धा दुबे, उसकी बहन, ड्राइवर आदिल और अन्य लोगों पर बेटी की हत्या में साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। परिवार का दावा है कि शिवा को कई दिनों से ब्लैकमेल किया जा रहा था और उसे धमकियां दी जा रही थी।
6: डेली बांध के और थ्रेटन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करती थी जिसके बाइट्स अक्सर उनके बॉडी पे होते थे। निशान पूछने पे वो ये कहते थे कि चोट लग गई है, गिर गया हूँ।
7: क्या क्यों करती थी, क्या वो कुछ मांग करती थी, कैसे?
6: कंट्रोल और ईगो के लिए चीज़ों को करती थी।
1: श्रद्धा को लेकर आरोप ये भी है कि उसके कई गैंगस्टर से संबंध थे। ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। इस तस्वीर में श्रद्धा अभिषेक सिंह और बाबू सिंह नाम के गैंगस्टर के साथ दिख रही है। अभिषेक सिंह 2020 के अपहरण के मामले में गिरफ्तार भी हो चुका है। अब ये वीडियो देखिए, इसमें दूसरे गैंगस्टर के साथ श्रद्धा दुबे दिख रही है। इस गैंगस्टर का नाम जुल्फिकार है जो जेड कंपनी नाम का गैंग चलाता है और फिलहाल मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है। खुलासे के मुताबिक ऐसे ही गैंगस्टर से श्रद्धा दोस्ती करती थी, फिर उसके नाम और नेटवर्क का इस्तेमाल धौंस जमाने के लिए करती थी। जांच के दौरान सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शिवा के शरीर पर 10 गंभीर आंतरिक चोटें पाई गई थीं। परिवार ने पुलिस को शिवा की एक डायरी सौंपी है जिससे मामले से जुड़े दूसरे पहलुओं का पता लगने की उम्मीद है।
7: शिवा को कुछ सबूत आपने पुलिस को सौंपे, आखिर क्या वो हैं ऐसे जिसमें कि आपको लगा कि
6: शिवा के पास एक डायरी थी जो वो डेली लिखते थे,
7: अपनी डेली रूटीन।
6: हाँ, डेली की लाइफ उसमें लिखते थे वो, रोज की।
7: क्या उन्होंने जिस दिन घटना हुई उसके पहले दिन की घटना लिखी, आपको जानकारी मिली?
6: हाँ, काफ़ी चीज़ें हैं उसमें।
7: कुछ ऐसा जो आप शेयर कर सकें, कम से कम सबके सामने आए हो?
6: उसमें हर एक बात शेयर है जो उनके साथ पिछले पाँच महीनों से हो रही थी।
7: जैसे कि वो
6: हाँ, प्रताड़ना की सारी बातें उन्होंने उसमें लिखी हैं।
1: इन सवालों का जवाब पुलिस की जांच और सामने आने वाले सबूतों से मिलेगा। फिलहाल श्रद्धा के वीडियो में किए गए दावे और उसकी SUV मिलने से मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, बहराइच से रामवरण चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।
0: तो वहीं पंजाब के मानसा में एंटी ड्रग्स एक्टिविस्ट परविंद सिंह झूठा की हत्या के खिलाफ आज पंजाब बंद है और इसका असर देखने लगा है। दरअसल फिरोजपुर के मेन बाजार की दुकानें पूरी तरह से बंद नजर आ रही हैं, निजी स्कूल भी बंद हैं। हालांकि लोग अपनी जरूरी कामों के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बाजारों में दुकानें बंद होने के कारण पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। कल पुलिस ने परविंदर हत्याकांड के मुख्य आरोपी अश्वनी को सालासर बालाजी से गिरफ्तार किया था और उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई भी हुई थी। साथ ही हत्याकांड से गुस्साए लोगों ने मुख्य आरोपी के घर पर तोड़फोड़ भी की थी। असीम बस्सी जुड़ गया हमारे साथ मोहाली से। असीम, पंजाब बंद का आज ऐलान किया गया है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, दुकानें पूरी तरीके से बंद नजर आ रही हैं, अभी क्या स्थिति है वहां पर?
8: जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि परविंदर जोटा नशे के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ते थे और उनका मर्डर किया गया जिस तरह मानसा में, उसके बाद लोगों में बहुत सारा गुस्सा था। पंजाब बंद का कॉल दिया गया था और पंजाब बंद को सपोर्ट मिल रहा है। हम इस वक्त चंडीगढ़ लुधियाना टोल प्लाजा के ऊपर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोल प्लाजा भी जो है बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक रोक दिया गया है और कई जगह पे हमने देखा शहरों में जो है दुकानें बंद कर दी गई हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। लोगों का कहना है कि जिस तरह एक इंसान जो है नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ता था उसको किस तरह इस तरह मौत के घाट उतारा गया, उसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भी है और लोग सपोर्ट भी शो कर रहे हैं। हमारे साथ वारिस पंजाब के लोग हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं।
0: ठीक है, ऐसी नजर बनाए रखेगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वही भारत में टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर बदलने वाला रिलायंस जियो अब शेयर बाजार में उतरने की तैयारी में है। दरअसल जियो प्लेटफॉर्म्स के प्रस्तावित आईपीओ के जरिए कंपनी करीब 28,755 करोड़ से 30,213 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। आईपीओ का प्राइस बैंड 1,065 से 1,119 रुपए प्रति शेयर रखा गया है।
9: भारत में मोबाइल इंटरनेट की दुनिया को पूरी तरह से बदलने वाला जियो अब स्टॉक मार्केट में उतरने की तैयारी कर चुका है। ऐसा तय माना जा रहा है कि बाजार में रिलायंस के आईपीओ की एंट्री धमाकेदार होगी, जिससे निवेशकों को जियो की विकास यात्रा में भागीदार बनने का मौका मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के प्रस्तावित आईपीओ के लिए आरएचपी यानी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल किया है और सब्सक्रिप्शन की तारीखों और प्राइस बैंड जैसी जरूरी जानकारी का ऐलान किया है। आईपीओ सब्सक्रिप्शन विंडो 21 और 23 अक्टूबर को खुलेगा और उससे पहले एंकर निवेशकों के लिए बिडिंग 19 अक्टूबर से शुरू होगी। करीब 27 करोड़ नए शेयर ऑफर पर रहेंगे। प्रति शेयर की कीमत 1,065 से 1,119 तक रहेगी। संभावित इश्यू साइज करीब 28,755 करोड़ से 30,213 करोड़ रुपए है। सबसे पहले नवंबर 1977 में धीरूभाई अंबानी रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के तहत आईपीओ लेकर आए थे। तब इसका ओवर सब्सक्रिप्शन 7 गुना से भी ऊपर गया था। दशकों बाद रिलायंस ने एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, रिटेल और डिजिटल सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में अपना विस्तार किया। 2016 में जियो के लॉन्च ने भारत के टेलीकॉम सेक्टर में बड़ी हलचल मचा दी और महज 170 दिनों के अंदर ही 10 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया। फिलहाल जियो के प्रस्तावित आईपीओ में कुछ मौजूदा शेयर होल्डर्स और कर्मचारियों के लिए भी प्रावधान शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के योग्य शेयर धारकों के लिए 2,500 करोड़ रुपए तक के शेयर रिजर्व किए गए हैं। कर्मचारियों के लिए 500 करोड़ तक के शेयर रखे गए हैं। ये अंबानी परिवार की तीसरी पीढ़ी का पहला आईपीओ है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने इस महीने की शुरुआत में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में कहा कि जियो का फोकस 1 अरब से अधिक भारतीयों को सबसे सस्ती और उन्नत तकनीक उपलब्ध कराना है। हालांकि जियो आईपीओ पर निवेशकों को सिर्फ बाजार के उत्साह के आधार पर फैसला नहीं करना चाहिए, निवेशकों को कंपनी के आर्थिक नतीजे और हालात के हिसाब से आकलन करना चाहिए। निवेश का फैसला करने से पहले आईपीओ से जुड़े दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, जिसमें बताए गए जोखिम भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
0: चलिए बुलेटिन में बिना ब्रेक के खबरें जारी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर राहुल गांधी समेत 13 नेताओं की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। एसआईआर फॉर्म 6 पर सवाल, जंतर मंतर और वकील पत्रकारों समेत प्रदर्शनकारियों की 22 अर्जियां लिस्टेड। इंडिया गेट पर धरना दे रहे अंकिता भंडारी के माता पिता को हिरासत के बाद छोड़ा गया। दुष्यंत गौतम के खिलाफ आक्रोश, राहुल बोले इंसाफ की लड़ाई में साथ, धामी सरकार ने कहा निष्पक्ष जांच हुई। आज एशियन गेम्स के पदक वीरों से मिलेंगे पीएम मोदी, मेजर ध्यानचंद, नेशनल स्टेडियम में होगा बड़ा कार्यक्रम। 21 गोल्ड समेत कुल 85 मेडल जीतकर भारत को मिला चौथा स्थान। मानसा में एंटी ड्रग एक्टिविस्ट की हत्या के खिलाफ आज पंजाब बंद के समर्थन में उतरा विपक्ष, सीबीआई जांच की हो रही है मांग, आरोपी की हो चुकी है गिरफ्तारी, घर पर हुआ बुलडोजर एक्शन। पंचायत आज तक राजस्थान में सुबह 10 बजे से मरुधरा के सियासी दिग्गजों का जमावड़ा, सीएम भजन लाल, कैबिनेट मंत्री मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत विपक्ष के बड़े चेहरे होंगे शामिल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर।
0: राजकोट में गुंडों का आतंक, सरफा व्यापारी को गोली मारकर लूटे लाखों के सोने चांदी। गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल कारोबारी को तत्काल इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आरा में पूर्व कस्टम सुप्रिंटेंडेंट की गोलियों से भूनकर हत्या, बाइक सवार नकाबपोशों ने बरसाई गोलियां। गोलीबारी की खबर फैलते ही इलाके में मची अफरा तफरी। राघोपुर नाव हादसे पर प्रशासनिक कार्रवाई, सीओ और थानाध्यक्ष का वेतन रोकने का आदेश, दोनों अधिकारियों को जारी किया गया शो कॉज नोटिस। उत्तर प्रदेश के हरदोई में कार पार्किंग को लेकर दो पड़ोसियों के बीच भयंकर झड़प, गोलीबारी में एक गंभीर रूप से हुआ घायल। एसआईआर फॉर्म 6 के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच आज याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच असहमति वाले सभी फैसलों का विस्तृत ब्यौरा कोर्ट के सामने पेश करने की मांग की गई। विपक्षी दलों की याचिका में एसआईआर के फैसलों की संवैधानिक वैधता की स्वतंत्र समिति गठित कर ऑडिट कराने की मांग। याचिका में एसआईआर के हटाए गए मतदाताओं के नाम और कारण सार्वजनिक करने का निर्देश की भी मांग की गई। आज सुप्रीम कोर्ट में पत्रकार वकीलों पर हमले को लेकर सुनवाई, मुख्य न्यायाधीश की पीठ मामले पर अंतिम फैसला सुनाएगी। दीपके ने कनॉट प्लेस में तिरंगा मार्च निकालने का आह्वान किया, एबीवीपी ने सीजेपी के नैरेटिव पर सवाल उठाया। दीपके नेहा बोरा, कपिल सिब्बल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 2 बजे प्रेस क्लब में संबोधित। यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ी, 8 साल पुराने मामले में नया समन जारी करने का आदेश, 17 अक्टूबर को होगी सुनवाई। सीजेपी नेता सौरभ दास और आशुतोष रंका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान बस में मारपीट मामले में एनएसयूआई की महिला कार्यकर्ताओं पर एफआईआर, राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। 2022 अंकिता भंडारी मर्डर केस में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। सभी प्रदर्शनकारियों को तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में रखा गया। अंकिता के माता पिता को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। परिवार राष्ट्रपति से अपील कर रहा है कि सीबीआई जांच पूरी होने तक दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल पद पर नियुक्ति पर रोक लगाई जाए और इसे रद्द किया जाए। दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर अंकिता भंडारी के पिता ने कहा, अगर मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो पूरे देश में प्रदर्शन होंगे। हिरासत में लिए जाने के बाद अंकिता की मां ने कहा, जब तक दुष्यंत गौतम नियुक्ति रद्द नहीं होगी तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, घर में भी भूख हड़ताल की धमकी। अंकिता भंडारी मामले को लेकर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बैठना कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि अंकिता के परिवार के साथ एकजुटता दिखाना। एसपी सांसद डिंपल यादव ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा यह सरकार महिला सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच उत्तराखंड सरकार ने अपना पक्ष रखा, सीएम कार्यालय की ओर से जारी जानकारी में कई दावे। उत्तराखंड सरकार ने दावा किया है कि मामले में सरकार ने त्वरित कार्रवाई से लेकर जांच और अभियोजन तक कई कदम उठाए। सरकार के मुताबिक घटना सामने आने के 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जांच के लिए एसआईटी गठित की गई और आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। आज दिल्ली दौरे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में पटाखों पर विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीटीआई ने दिवाली के दौरान दिल्ली में ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत मांगी। मोदी कैबिनेट ने 62 साल पुराने आईडीबीआई बैंक के 60% हिस्सेदारी को बेचने की मंजूरी दी। कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स 52,878 करोड़ की में खरीदी। लखनऊ कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपी श्रद्धा दुबे का पहला बयान सामने आया। शिवा शर्मा की हत्या नहीं हुई है, उसने सुसाइड किया था। श्रद्धा दुबे ने कहा कि वो कहीं गायब नहीं हुई है और पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराना चाहती है। नेताओं और अधिकारियों के साथ नाम ना जोड़ने की अपील करती नजर आई। आज राहुल गांधी के आवास पर एक और चाय कार्यक्रम, इस बार एनएसयूआई यूथ और सेवा दल के प्रमुख और इंचार्ज होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की महिला सांसद आज सुबह 10 बजे लोकसभा अध्यक्ष से करेंगी मुलाकात। तो वहीं सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से राम मंदिर को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गरमाई। आरजेडी ने साधा निशाना, कहा पीएम मोदी को खुश करने की राजनीति कर रहे। आईडीबीआई बैंक डील को अखिलेश यादव ने कसा तंज, वित्त मंत्री ने किया पलटवार, याद दिलाया फोन बैंकिंग का दौर। BS6 के बाद अब BS7 की बारी। अप्रैल 2029 से नई कार SUV पर लागू होंगे नए मानक। सबसे पहले नई कार और SUV को इन नियमों के दायरे में लाया गया। अमेरिका में हिंदू मंदिर पर मास शूटिंग की कथित साजिश नाकाम। 19 साल के युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस को आरोपी के घर से राइफल, लोडेड मैगजीन, सैकड़ों कारतूस और गोले नस्लवादी विचारधारा से जुड़ी सामग्री मिली। पुलिस को शक है कि वो नवरात्र के दौरान स्थित किसी हिंदू धार्मिक स्थल को निशाना बनाने की योजना बना रहा था, उस पर आतंकी धमकी देने का भी आरोप। इस्तांबुल में भारी बारिश के कारण तबाही, अचानक से आई बाढ़ के कारण कई इलाके जलमग्न। बाढ़ और सड़कों पर पानी भरने से शहर में ट्रैफिक जाम। पानी भरने के कारण कई मेट्रो स्टेशन और अंडरपास बंद किए गए। पीएम मोदी आज जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 के पदक वीरों से मिलेंगे। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शाम 4:30 बजे होगा कार्यक्रम। जापान में एशिया खेल मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। खिलाड़ियों की उपलब्धियों और शानदार प्रदर्शन का होगा सम्मान। एशिया खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया था। भारत की झोली में आए थे 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज। चेन्नई में 3108 करोड़ की वाटर पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री विजय ने परियोजना की आधारशिला रखी। 98 किलोमीटर लंबी लोहे की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। 9 प्रमुख जल स्रोतों को आपस में जोड़ेगी नई पाइपलाइन। मेरठ नीला ड्रम केस में दोषी मुस्कान और प्रेमी साहिल को मिली फांसी की सजा। जिला जज ने माना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला। सौरभ के शव के किए थे टुकड़े। भुवनेश्वर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर, कई गाड़ियों को मारी टक्कर। गुवाहाटी में एक महिला से बैग छीनने की कोशिश। बैग बचाने के लिए महिला करीब 50 मीटर तक घसीटती नजर आई। जयपुर में भूमि पूजन के दौरान जमकर लाठी डंडे चले। चाचा ताऊ के परिवार में हुई झड़प का वीडियो वायरल। गाजियाबाद में चोरों के हौसले बुलंद, आधी रात घर के बाहर खड़ी कार पर हाथ साफ किया। दरभंगा DMCH इमरजेंसी में शराब पार्टी का CCTV वीडियो वायरल हुआ। 3 महिलाओं समेत 4 लोगों ने लोगों के शराब पीने का भी आरोप। नोएडा में जमीन के बंटवारे को लेकर 2 पक्षों के बीच झगड़ा। स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर, घटना CCTV में कैद। बड़ोदरा में ज्वेलर्स की दुकान से 8.5 करोड़ के सोने की फिल्मी अंदाज में चोरी। व्यापारी वॉशरूम गया और 12 मिनट में 5 किलो से ज्यादा वजनी गहनों से भरा 2 बैग गायब। जयपुर एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, जांच के बाद फिर से भरी उड़ान। नागपुर में सरकारी महिला डॉक्टर के हॉस्टल में चोरी, महिला आई अलमारी की ताला तोड़कर 2 सोने की अंगूठी लेकर चली गई। भावनगर के रंगोली रिजॉर्ट में नवरात्रि फेस्टिवल में बवाल, असलम एंड असलम बैंड के विरोध में प्रदर्शन किया गया। सोनीपत में मूर्थल के एक ढाबे से लौट रहे युवक पर और मेरे भाई को कंटेनर ने कुचला, दोनों की मौत हो गई। कानपुर के सदर बाजार में 80 साल के बुजुर्ग पर सांड ने जानलेवा हमला किया, CCTV में कैद हुई पूरी घटना। गिर सोमनाथ में शेरनी के हमले में युवक की मौत, ग्रामीणों में भारी आक्रोश। दमन के खारीवाड़ में इलाके में खड़ी मारुति SUV में लगी अचानक से आग, इंजन जलकर खाक हुआ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 21वीं मंजिल से गिरकर युवक की मौत, पत्नी से चल रहा था विवाह। सूरत में नकली घी बनाने के बड़े कारोबार का खुलासा, पुलिस ने 18,21,000 रुपए का माल जब्त किया। गाजियाबाद में हार्डवेयर व्यापारी की चाकू से गोदकर हत्या, मंडोला के जंगल में मिला था शव। अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर पलटा सरसों के तेल से भरा टैंकर, लोगों में तेल की लूट की मची होड़। लोग डिब्बे और बर्तनों में तेल भरकर ले जाने लगे घर।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट
1: तो देते।
2: How's the hostel? Settled?
3: Yes, Mark, really nice.
2: कोई आ रहा है क्या?
4: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभा ली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
2: मयंक, for real?
4: One carat for my one true love. Natural diamond, real love solitaires to reignite your new season of love.
5: Maddie, I need to open a savings account.
6: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
5: स्मॉल बैंक?
6: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RDF, there's nothing small about them.
5: Okay.
6: Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
4: कौन सी बनानी है?

0: what I can be.
1: Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: SBI Celebrations Unlimited. इस festive season को बनाएं special car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ।
5: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।
6: आगे आगे
7: अरे उधर
6: उधर किधर करेक्ट करेक्ट
8: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
10: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
11: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
12: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
11: क्या?
12: इनकी राय।
13: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेंट, निर्माण का रियल हीरो।
14: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
15: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
16: इट्स अ माई वे।
17: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
18: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
17: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
19: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
20: AU,
21: सोच बदलो और बैंक भी।
22: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
23: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद। लायन कश्मीर हनी,
22: असली शहद असली स्वाद।
24: Finding myself. That's my moment of Sarah.
25: In association with Hint, एक हिंट तो देते।
26: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
25: विमल, बोलो जुबां केसरी।
27: राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा मंच, जहां होगी युवाओं के मन की बात और मिलेगा युवाओं के हर सवाल का जवाब। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
28: उत्तर प्रदेश में दरवाजे पर चुनाव है, उससे पहले कांग्रेस ने पुराना गार्ड क्या बदला? लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में झूठ मपैजार हो गए। सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की सियासी फजीहत करने के बाद नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने पार्टी को एकजुट रखकर आगे बढ़ाने का दावा तो किया है, लेकिन कुर्सी संभालते ही पार्टी कैडर की जैसी गुटबाजी सामने आई। उसे लेकर पार्टी को 5 सदस्यों की जांच कमेटी को 18 अक्टूबर तक रिपोर्ट देनी है। उधर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन की जुगत में जुटे ओवैसी निराश होकर कांग्रेस की कलह पर कुछ बोलना तक नहीं चाहते।
29: कांग्रेस में कल तमाम वीडियोस आए,
30: वो तो सब मंजर आम पे आ चुका है। अब हम उस पर क्या बोलेंगे? आप खुद चला रहे अपने टीवी चैनल पर, अब हम क्या बोलेंगे उस बारे में?
28: कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान का असर तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन इन हलचलों का असर यूपी के 2 तीर्थों तक नजर आ रहा है। जहां एक तरफ अजय राय के प्रभाव क्षेत्र काशी में कांग्रेस को नुकसान होने का खतरा बढ़ गया है, वहां अयोध्या के क्षेत्र में कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ ओवैसी का ही सहारा बच गया। दो दिन पहले ही अयोध्या में कांग्रेस के पुराने नेता करण त्रिपाठी ने ओवैसी को गदा थमाते हुए गले में पतंग वाली माला डाल ली। अयोध्या के पूर्व सांसद निर्मल खत्री के करीबी और फैजाबाद इलाके में प्रभाव रखने वाले करण त्रिपाठी की कांग्रेस से रुखसती नुकसान के तौर पर ही देखा जा रहा है। यूपी के चुनिंदा इलाकों में रैलियों कार्यक्रमों को लेकर ओवैसी कहते हैं कि अहम जगहों पर सियासी गतिविधियों के बड़े सियासी संकेत होते हैं।
30: ये तमाम मुकामात जो हैं इसकी एक पॉलिटिकल बड़ी सिग्निफिकेंस होती है और हम अपने अध्यक्ष के साथ अपने पार्टी के जो जोनल इंचार्ज हैं पार्टी के मेंबर्स हैं उनके साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं और जाहिर है आने वाले विधानसभा के लिए हमारी कोशिश यही है कि और हमको यकीन है कि पहले से ज्यादा हमको जनता भरोसा कर रही है, उनकी मोहब्बत मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है।
28: वैसे अयोध्या में कांग्रेस नेता के हाथों गदा थाम चुके ओवैसी कांग्रेस का कितना नुकसान कर पाते हैं ये चुनाव में पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि अयोध्या जैसे इलाके तक भी ओवैसी इस बार हौसले के साथ कदम रख रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली पुलिस तुम लट्ठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
2: डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
2: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
2: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखिए।
1: कितना घटिया था यार तुम्हारा तरीके से
2: लप लप लप।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
2: डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
2: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
2: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
1: कितना घटिया था यार तुम्हारा। क्या तरीके से
2: लप लप लप।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: बुलेटिन में आगे बढ़े इससे पहले देखिए 10 बजे क्या है आपके लिए खास।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार गोटी थमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?

0: Black and Blue.
1: Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
5: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
6: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
7: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
6: क्या?
7: इनकी राय।
8: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
9: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
10: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
9: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
11: आ गया सोमवार और आ गए
12: चकमक चाचा।
11: हाँ चाचा, अखबार भाँच रहे
13: हैं।
11: चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुँच गई है, चिचा कब जाएंगे?
13: अरे भैया प्रोटेस्ट में हिस्सा हम ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा, हम अपना मुद्दा उठा चुके
11: पुराने। अच्छा, कब उठाए?
13: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए।
11: अच्छा
13: हाँ, तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे दन दन दन दन करके, ऐसा नहीं, ये सब नहीं था अपना मामला
11: जी।
13: मुद्दा मजबूती से रखते थे
11: हम तो। सुने मुद्दा टूटा भी है
13: आपका? सही बात है, जब कभी ऐसे कार्रवाई चलती थी दर्द भीता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर बोलता रखे थे एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
11: अच्छा
13: और क्या
11: आपका मतलब? हम लोग डर जाते हैं।
13: और क्या डर जाते हैं? बिल्कुल, जहाँ पुलिस सिटी नहीं बची उसमें भागने लगता हूँ।
11: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही है।
13: किधर?
11: चाचा हम खेल गए अब की।
14: वोट चोरी के चुनावी मुद्दे और सत्ता के संग्राम में दिल्ली की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन का पखवाड़ा गुजरने को है। 2 अक्टूबर से शुरू नौजवानों के प्रदर्शन के साथ 6 अक्टूबर से राहुल सड़क पर उतरे। 2 दिनों तक चुनाव आयोग जाने की कोशिश की। 8 अक्टूबर को राजघाट पर प्रदर्शन हुआ। 9 अक्टूबर को राष्ट्रपति से शिकायत। 10 को फिर सड़क पर संग्राम। 11 अक्टूबर को सरकार ने जंतर मंतर को प्रदर्शन की आधिकारिक जगह से डीनोटिफाई किया। 12 अक्टूबर को फिर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में बड़ा प्रदर्शन हुआ। 13 अक्टूबर को चाय पर चर्चा में आगे की रणनीति बनी और 14 अक्टूबर को राहुल आंदोलन के पीड़ित चेहरों को पेश कर रहे थे।
15: ये हिंदुस्तान है अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है, और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूं, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए। इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है।
14: आखिरी हासिल अभी बाकी है, लेकिन वोट चोरी के मुद्दे पर सियासत मंथन करके राहुल ने 3 चीजें हासिल कर ली। पहली ये कि वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल ने ज्यादातर विपक्ष को एक साथ कर लिया है। दूसरी ये कि देश में विपक्षी नेता राहुल ही हैं और क्षेत्रीय दलों को उन्हीं के मुद्दों के साथ आना पड़ेगा। तीसरी ये कि अदालतों में अर्जियों की बाढ़ ने चुनाव आयोग पर अविश्वास के मुद्दे की सियासी बुनियाद मजबूत कर दी है। और राहुल की माने तो ये लड़ाई 2 मोर्चों पर चलेगी, क्योंकि सड़क की लड़ाई से माहौल भले बन जाए, चुनाव आयोग पर आरोप तो अदालतों में ही साबित करने पड़ेंगे। लिहाजा एक तो 16 दिसंबर को रामलीला मैदान में फिर महारैली होने वाली है। दूसरे अदालत में चुनाव आयोग के SIR को लेकर तमाम अर्जियां डाली गई हैं, जिन पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार और बंगाल के SIR मामले के बाद पहली बार तकरीबन एकजुट विपक्ष ने अदालत में अर्जी डाली है, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD, शिवसेना, UBT, TMC, NCP, शरद पवार, CPI, CPM, JMM और IUML ने साझा अर्जियां डाली हैं। विरोधी दल के तौर पर इंडिया से बाहर रखे गए AIMIM ने अलग से अर्जी डाली है और सबकी अर्जियों के साथ सुनवाई की मांग की है। इस अर्जी में चुनाव आयोग के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उनमें 13 करोड़ वोटर के नाम काटने, मनमाने फैसले लेने, अवैध हलफनामा भरवाने के आरोप लगाते हुए SIR तुरंत रद्द करने, आयोग की बैठकों का ब्यौरा सार्वजनिक करने, काटे गए नामों का ऑडिट करने, उनका ब्यौरा सार्वजनिक करने, वैध कटे नाम दोबारा जोड़ने, फॉर्म 6 से नया हलफनामा हटाने और EVM के सुरक्षा मानकों की समीक्षा की मांग की गई है। लेकिन इन तमाम आरोपों और अर्जियों के बाद भी सरकार विपक्षी आंदोलन को कभी भ्रम और अफवाह की सियासत बता रही है तो कभी चुनावी हार का बहाना। आज तक ब्यूरो।
15: ये हिंदुस्तान है अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है। और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूं, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए। इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूं, दिल से प्यार से। देखिए, मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए। इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक। नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस। और घबराइए मत, कोई डर रहा है?
0: नहीं सर, बिल्कुल नहीं।
15: खुश हो?
5: यस सर।
15: शाबाश, लव यू।
12: दुनिया भर की इकोनॉमी इस वक्त सुस्ती, अनिश्चितता और उठापटक के दौर से गुजर रही है। ऐसे माहौल में भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। घरेलू मांग, बढ़ती आय और मजबूत लेबर मार्केट के दम पर देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती दिखा रही है। इसकी पुष्टि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की ताजा रिपोर्ट से भी होती है, जिसके मुताबिक भारत का ग्रोथ आउटलुक दुनिया में सबसे मजबूत है। इस सर्वे में शामिल 74% चीफ इकोनॉमिस्ट ने मजबूत ग्रोथ की उम्मीद जताई है। वहीं 98% को अगले 12 महीनों में मध्यम या उससे बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है। बढ़ती आय और मजबूत लेबर मार्केट से सपोर्ट मिलने का भरोसा रिपोर्ट में जताया गया है। ग्लोबल संस्थानों की इस भरोसे की झलक रेटिंग एजेंसियों के अनुमान में भी दिखाई दे रही है। 2026-27 के लिए फिच रेटिंग्स ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। इससे पहले ये अनुमान 6.4% था। भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के पीछे कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। पहली तिमाही में भी अर्थव्यवस्था के शानदार प्रदर्शन ने दुनिया भर में भारत की साख को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में GDP ग्रोथ 7.8% रही। इसकी वजह मजबूत इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रही थी। वहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में सुधार के संकेत से भी फायदा मिला था। एक्सपोर्ट और सरकारी निवेश ने भी ग्रोथ को मजबूत सहारा दिया है। इस प्रदर्शन के बाद कई एजेंसियों ने भी अपने अनुमान बेहतर किए हैं। फिच के बाद S&P ग्लोबल रेटिंग ने भी 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 7% कर दिया है। मूडीज ने भी 7% ग्रोथ का अनुमान जताया है। बढ़ती मांग से महंगाई का दबाव बना हुआ है और कुछ सेक्टर्स में सप्लाई से जुड़ी चुनौतियां मौजूद हैं। ऐसे में ग्रोथ और महंगाई के बीच संतुलन बड़ी चुनौती बन गया है। ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती दिखा रही है। दुनिया की बड़ी एजेंसियों और अर्थशास्त्रियों का बढ़ता भरोसा इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में भी भारत वैश्विक ग्रोथ की बड़ी कहानी बना रह सकता है। आदित्य केराड़ा, आज तक।

याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। SIR फॉर्म 6 पर सवाल। जंतर मंतर और वकील पत्रकारों समेत प्रदर्शनकारियों की 22 अर्जियां लिस्टेड। इंडिया गेट पर धरना दे रहे अंकिता भंडारी के माता पिता को हिरासत के बाद छोड़ा गया। दुष्यंत गौतम के खिलाफ आक्रोश। राहुल गांधी बोले, इंसाफ की लड़ाई में साथ धामी सरकार ने कहा, निष्पक्ष जांच हुई। आज एशियन गेम्स के पदक वीरों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में होगा बड़ा कार्यक्रम। 21 गोल्ड मेडल समेत कुल 85 मेडल जीतकर भारत को मिला है चौथा स्थान। मानसा में एंट्री एंटी ड्रग एक्टिविस्ट की हत्या के खिलाफ आज पंजाब बंद के समर्थन में उतरा विपक्ष। सीबीआई जांच की हो रही है मांग। आरोपी की हो चुकी है गिरफ्तारी। घर पर हुआ है बुलडोजर एक्शन। और पंचायत आज तक राजस्थान में सुबह 10 बजे से मरुधरा के सियासी दिग्गजों का जमावड़ा। मुख्यमंत्री भजन लाल, कैबिनेट मंत्री मेघवाल, गजेंद्र शेखावत समेत विपक्ष के बड़े चेहरे भी होंगे शामिल।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। पहले बता दें कि आज क्या क्या खास है। आज महासुनवाई का दिन है, 22 बड़े मामले हैं, एसआईआर से लेकर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस एक्शन, प्रदर्शन में दिल्ली में महाबंदी तक पर सबसे बड़ी अदालत में बहस होने वाली है और हमारी हर केस पर नजर रहेगी। बात होगी पुलिस बनाम एनएसयूआई की भी। प्रदर्शन में पिटाई के मामले पर न सिर्फ वीडियो वॉच छिड़ गया है बल्कि एफआईआर की जंग भी अब शुरू हो चुकी है। और बताएंगे कि उत्तराखंड के अंकिता भंडारी केस के दिल्ली आते ही कैसे नारी सम्मान की लड़ाई चुने गए राज्यपाल दुष्यंत गौतम से लेकर कांग्रेस सांसद बिमोल तक आ गई है। इस सब पर बात होगी, लेकिन बात पहले आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की, जो महासंग्राम है। एक के बाद एक कई मामले आज लिस्टेड हैं और हर मामले के केंद्र में दिल्ली के प्रदर्शन, चुनाव आयोग, एसआईआर और लोकतांत्रिक अधिकारों का सवाल है। सबसे बड़ा मामला एसआईआर का है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुनवाई होनी है। सवाल है वोटर लिस्ट से नाम हटाने का, फॉर्म 6 में बदलाव का और चुनाव आयोग के फैसलों की पारदर्शिता का। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की याचिका भी इसी मुद्दे पर सुनवाई के लिए लगी है। दूसरा मोर्चा जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का भी है। दिल्ली पुलिस के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। तीसरा मामला महिला पत्रकारों से कथित बदसलूकी का है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। इसके अलावा प्रदर्शन के दौरान मेट्रो और ट्रेन सेवाओं पर पाबंदियों, अदालत परिसर में राजनीतिक प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग और एसआईआर के खिलाफ पूर्व जजों के स्वतंत्र आयोग की जन सुनवाई भी आज कोर्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर पर विपक्ष की अर्जी पर सुनवाई है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक इंडिया गठबंधन के 13 नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं और सबसे बड़ा सवाल है, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने एसआईआर पर अकेले फैसले लिए? चुनाव आयोग के भीतर असहमति थी तो उसका ब्यौरा कहां है? देश भर में एसआईआर लागू करने की मंजूरी आखिर किसने दी? ये सारे सवाल हैं। विपक्ष ने फॉर्म 6 में बदलाव से लेकर फॉर्म 7 के जरिए सामूहिक आपत्तियों तक पर सवाल उठाए हैं। करीब 13 करोड़ वोटर्स के नाम हटाए जाने के मुद्दे पर भी जवाब मांगा है। याचिका में ईसीआई नेट और ईआरओ नेट के स्वतंत्र ऑडिट, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में जांच और एसआईआर की जारी प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की गई है।
1: कहा गया है कि सीजेआई सेड ही विल नॉट मीट ऑपोजिशन लीडर्स, दैट इज नॉट रेलिवेंट, दिस इज रेलिवेंट। Honorable CJI has responded and instructed us to file a petition. कि जो आपके issues हैं वो आप Supreme Court में file कीजिए, legal process शुरू कीजिए। आज India Bloc leaders और मैं Supreme Court जाएंगे, एक साथ हम ये petition file करेंगे।
0: हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी संजय, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। संजय, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने मामले आज लिस्टेड हैं कोर्ट के सामने और उनमें से कौन सा मामला है जिस पर सबकी नजर रहने वाली है?
2: 26 मामले कोर्ट के सामने लिस्टेड हैं, जिसमें एसआईआर से लेकर एफआईआर तक बहुत सारी चीजों से जुड़े हुए मामले हैं, जिसमें महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी का मामला है, एसआईआर को लेकर प्रक्रिया को लेकर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के की भूमिका को लेकर है, साथ ही प्रदर्शन को लेकर तो है, जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का मामला है और इसके साथ ही प्रदर्शन के दौरान जो सारी चीजें हुई हैं उस पर, यानी कुल मिलाकर आज की सुनवाई बहुत गहमा गहमा भी है, बड़ी सुनवाई है। 26 याचिकाएं हैं जिसमें राहुल गांधी और खड़गे जी की याचिका के साथ साथ और अन्य विपक्षी नेताओं की याचिका है, यानी सभी याचिकाएं ये नहीं कहा जा सकता ये महत्वपूर्ण है और ये कम महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं, लिहाजा किस याचिका पर क्या आदेश होता है ये बिल्कुल सबकी निगाहें उस पर होगी और हमारी निगाहें तो लगी हुई हैं।
0: बिल्कुल अहम सुनवाई का दिन है आज, इसे हम महासुनवाई का दिन भी कह रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में और दिल्ली पुलिस बनाम एनएसयूआई की जंग तेज हो गई है। आरोपों के बाद अब वीडियो वॉर शुरू हो चुका है और एफआईआर को लेकर भी टकराव बढ़ गया है। कल राहुल गांधी की मौजूदगी में एनएसयूआई के छात्र छात्राओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली पुलिस पर मारपीट और बदसलूकी के आरोप लगाए थे, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने वीडियो जारी कर दिया है और प्रदर्शनकारियों पर ही पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट और हमले का आरोप लगा दिया है। यानी दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं, दोनों तरफ से वीडियो जारी हो रहे हैं और अब कानूनी कार्रवाई का मोर्चा भी खुल गया है। बस में हुई मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने NSUI के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। दावा यह है कि वे वही प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने पुलिस पर ज्यादती के आरोप लगाए थे। एक तरफ पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों को संभालना मुश्किल हो गया था, दूसरी तरफ NSUI पुलिस पर कार्रवाई की मांग कर रही है।
3: बस को रोकने का प्रयास करते हैं कि हम लोग बस से उतर के कैसे तैसे बस के नीचे बैठ जाते हैं कि कैसे भी हमारा प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू रन करता रहे, लेकिन चंचल यादव जी ऐसा करती है कि वो मेरे गले को जोर से दबा के मुझे पुश कर देती है ताकि मैं पीछे जाके सीट पे पीछे गिर जाती हूँ और फिर मुझे मेरे मुंह पे ऐसे मतलब स्क्रेच मतलब पूरे नाखूनों से पूरा स्क्रेच करके मेरे यहाँ पे स्क्रेच भी आया, इधर कान पे भी मतलब पूरा लगा है और स्क्रेच करने के बाद वो मुझे मैं उनके झड़प देती हूँ तो वो मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारती है कि लो तुम्हारे मुंह पे एक और तमाचा।
4: और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूँ, दिल से प्यार से, देखिए मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है।
0: और अब सीधा रुख करते हैं पंचायत आज तक राजस्थान का।

0: संविधान में आर्टिकल जोड़े कि एक केंद्र की सरकार होगी और एक राज्यों की सरकार होगी, हमारे यहां फेडरल स्ट्रक्चर बनाया, तो दोनों जगह एक ही दल की सरकार होती है, तो उसको नरेंद्र मोदी जी ने एक नया नाम दिया, डबल इंजन की सरकार, ताकि तेज गति से काम हो, विरोधाभास नहीं हो, कोई केंद्र की योजना हो उस पर कोई ब्रेक नहीं लगाए, नाम नहीं बदले, तो वो डबल इंजन की सरकार का कंसेप्ट अभी कई सालों से चल रहा है। फिर एक विषय पंचायत राज संस्थाओं और हमारे नगर निकायों को लेकर के भी आया कि ये भी एक स्थानीय सरकार होती है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और एक स्थानीय सरकार, और ये हमारे संविधान संशोधन 73 और 74 के तहत इसमें एक बल भी मिला और महापौर, उपमहापौर, इधर हमारे जिला प्रमुख, पंचायत समितियों के प्रधान, हमारे ग्राम पंचायतों के सरपंच, जो काफी पैसा भारत सरकार से सीधा इनके पास आने लग गया, तो ये भी एक स्थानीय सरकार का इन्होंने धीरे धीरे रूप ग्रहण कर लिया। तो केंद्र की सरकार में, राज्य की सरकार में और स्थानीय सरकार में अगर एक ही विचारधारा की सरकार होती है तो वो ट्रिपल इंजन की सरकार कहलाती है मेरे हिसाब से।
1: लेकिन आपने, आपका तो प्रशासनिक अनुभव भी रहा है, आप तो ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, आप राजनेता भी है, 2009 से आपने चुनाव जीतने के बाद से आप मंत्री भी रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ट्रिपल इंजन की सरकार का नाम देने के बाद, मतलब अगर आप प्रधानमंत्री की बात करें तो खुद प्रधानमंत्री ट्रिपल इंजन में काम नहीं किए, डबल इंजन में काम नहीं किए, वो खुद एक सरकार ऐसी चलाते थे जब केंद्र में किसी और की सरकार हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद राज्य के जो मॉडल उन्होंने पेश किया था उसमें तो कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं रहा। राजस्थान में भी इस तरीके की सरकारें हमने देखी हुई है कि स्थानीय निकाय में किसी और की सत्ता है, राज्य में किसी और की सत्ता है, केंद्र में किसी और की सत्ता है, क्या सचमुच में उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्या उससे उससे कोई बहुत फर्क पड़ता है,
0: पड़ता
1: जो
0: है।
1: आप लोगों को कहने की कोशिश
0: नहीं, पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार कह भी चुके हैं और सार्वजनिक मंचों से भी कह चुके हैं कि मैं गुजरात के तटीय सुरक्षा का एक बहुत बढ़िया बंदोबस्त करने वाला था जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब, लेकिन मेरे इस प्रस्ताव को जो उस समय यूपीए की सरकार थी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो वो कहते हैं कि कई बार राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पे भी टकराव हो जाता है जबकि होना नहीं चाहिए, इसलिए डबल इंजन की सरकार का उन्होंने कंसेप्ट दिया।
1: लेकिन आज की स्थिति में अगर हम देखें, जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो एफआरबीएम की रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल जो केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है राजस्थान की सरकार को, उसमें उसके पिछले साल से अगर एक साल का कंपैरिजन हम करें तो करीब करीब 36% की गिरावट उसमें आई हुई है। तो ये डबल इंजन सरकार किस तरीके से काम कर पाएगी जब केंद्र सरकार में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, लेकिन अनुदान देते समय उसमें गिरावट आ रही है, ये कहां से काम चलेगा? आप एक तरफ तो आप वादा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार का फायदा होगा, लेकिन आंकड़े कुछ और कह रहे हैं।
0: देखिए साहिल जी, अब आप ये विषय जो लेके आए हो, इस विषय में नरेंद्र मोदी जी की सोच साफ है कि हमने कोई पैसा दिया, कोई एक दल की ये कोई ऐसा हम उसको इग्नोर करके मदद कर देंगे, ये उनका भाव है ही नहीं नरेंद्र मोदी जी का। हमने बंगाल में भी अलग सरकार थी तो पैसा दिया ना, लेकिन अगर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में या कोई और कमी रह जाएगी तो वो बाद में आ जाएगा पैसा। अभी खाली जो पैसा रिलीज हुआ है उसको लेकर के आप बात करो, आप सैंक्शन का अमाउंट देखो, सैंक्शन का अमाउंट ज्यादा है,
1: लेकिन राज्य सरकार खर्च भी करनी चाहिए।
0: वो मैं ये तो कह रहा हूं कि कुछ उनके प्रपत्र हैं जो कोई भी सरकार हो वो मांगती है राज्यों से, तो प्रपत्र में अगर आपको लगता है कि कोई कमी रही है तो वो बाद में आ जाएगा। सैंक्शन अमाउंट देखिए आप, रिलीज अमाउंट को देखेंगे तो थोड़ा वो तो समय लगता है कई बार रिलीज में,
1: लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखा गया, जैसे अभी मैंने जिक्र किया स्थानीय निकाय चुनाव यहां पर हुए राजस्थान के भीतर, आमतौर पर राजस्थान एक ऐसा राज्य है कि आमतौर पर माना जाता है कि कांग्रेस की कच्ची अगर कोई कड़ी है, कमजोर कड़ी है, तो वो हिंदी बेल्ट है, लेकिन राजस्थान एक ऐसा राज्य है कि जहां पर कांग्रेस कुछ हद तक बीजेपी को टक्कर दे सकती है। स्थानीय निकाय चुनाव में आप में और यानी बीजेपी और कांग्रेस में वोट डिफरेंस 0.94% रह गया है सिर्फ, वोट प्रतिशत का डिफरेंस। ये कैसे हुआ है आपकी सरकार?

0: सरकार होने के बावजूद यानी केंद्र सरकार का सपोर्ट कितना भी रहे, राज्य सरकार परफॉर्म नहीं करेगी तो शायद उसका असर दिखाई देगा।
1: साहिल जी, आपने ठीक विषय छेड़ा। कुछ जगह तो कांग्रेस लंबे समय से ही नहीं है, वो हिंदी बेल्ट का वैसे विषय नहीं है। अब बिहार तो हिंदी बेल्ट ही है ना, कांग्रेस को लोगों ने धीरे धीरे नकार दिया, तो कुछ जगह तो लंबे समय से ही नहीं है। अब ठीक है, तमिलनाडु में बहुत लंबे समय से नहीं है, बिहार में नहीं है, यूपी में भी नहीं है, लेकिन कुछ राज्य हैं जहां कांग्रेस की प्रेजेंस है, उसमें राजस्थान भी है, उसमें गुजरात भी है, उसमें मध्य प्रदेश भी है, उसमें छत्तीसगढ़ भी है, और उसमें पंजाब भी है, और उसमें हरियाणा भी है। तो अगर आप इन राज्यों की बात करें, इनमें प्रेजेंस है, इन साउथ में जाएं तो थोड़ा कर्नाटका में भी है आप बात करें तो ये प्रेजेंस रहती है। यहां हमारे राजस्थान में तीसरे दल का विकल्प प्रयास करने के बावजूद भी कोई बहुत ज्यादा स्थान ले नहीं पाया। ऐसा तो है नहीं कि तीसरे दल के विकल्प का प्रयास नहीं हुआ, या लोकदल से लेकर के कई ऐसे प्रयास हुए, अभी भी तीसरे दल का प्रयास आरएलपी के माध्यम से हो रहा है।
0: लेकिन कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन का आप कारण क्या देखते
1: हैं? बेहतर प्रदर्शन का विषय ही नहीं है, बेहतर कहां प्रदर्शन हुआ,
0: जो डिफरेंस कम हुआ है वो
1: नहीं, हम मैंने कहा ना, यहाँ प्रेजेंस है उनकी, हम कहां मना कर रहे हैं, हम मना कहां कर रहे हैं, मना तो हम कर ही नहीं रहे ना। मैंने ये कुछ राज्य गिनाए, यहाँ प्रेजेंस है।
0: कहने का मतलब ये है कि
1: लेकिन बहुमत मिलने पे, लोकतंत्र में जिसको बहुमत मिलता है या जिसके महापौर या सभापति बनते हैं वो ही बड़ा विषय बनता है ना।
0: राजस्थान एक ऐसी जगह पर है कि लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होते हैं, उससे 1 साल पहले आज हम बैठे हुए हैं तो हम देख रहे हैं कि 1.5 साल पहले हम देख रहे हैं पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। इस बार के पंचायत चुनाव बड़े दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि SIR की प्रक्रिया के बाद जो वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी वो इस बार के चुनाव में नहीं इस्तेमाल की जाएगी। स्थानीय निकाय चुनाव में भी आपने इस्तेमाल नहीं की थी। कांग्रेस कहती है कि SIR के बाद जिस तरीके से वोटर लिस्ट बदली गई है उसका उन पर असर पड़ता है। राजस्थान में जिसका मैंने जिक्र किया कि 0.94% का डिफरेंस रह गया, तो कांग्रेस बार बार ये कहने की कोशिश करेगी कि देखिए यहां पर SIR की वोटर लिस्ट नहीं इस्तेमाल की, इसके लिए हमको फायदा हो गया।
1: देखिए SIR का कहीं मुद्दा ही नहीं है जी, कांग्रेस तो जबरदस्ती उठा रही है। बिहार में सबसे पहले उठाए उन्होंने, यात्रा निकाली, जनता में था ही नहीं मुद्दा SIR का।
0: तो आपको लगता है कि
1: जनता चाहती है कि वोटर लिस्ट साफ सुथरी होनी चाहिए, ये कांग्रेस के समझ में नहीं आ रहा है ना।
0: तो नई वोटर लिस्ट इस्तेमाल करते तब भी यही मुद्दा रहता आपका?
1: कौन सा SIR मुद्दा ही नहीं है जी, SIR मुद्दा ही नहीं है। वो जबरदस्ती इस मुद्दे को लाना चाहते हैं कई चुनाव में, जैसे क्या है उनके एक मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का जब से नेतृत्व तो मिला है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांग्रेस को, उस समय एक विषय आ गया उनके दिमाग में और उनको लगा झूठ बोलो, नैरेटिव खड़ा करो और भाग जाओ, प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। और ये 2024 के चुनाव में वो थोड़े सफल भी हुए कि बीजेपी आएगी तो संविधान समाप्त कर देगी। संविधान समाप्त होता है कैसे, कोई कर सकता है क्या संविधान समाप्त, वो संशोधन की प्रक्रिया है। और अगर बीजेपी आएगी तो रिजर्वेशन समाप्त कर देगी, रिजर्वेशन ऐसे समाप्त होता है क्या, उसकी एक प्रक्रिया है। लेकिन इन्होंने झूठे नैरेटिव गढ़े और अभी भी वो उसी में ही लगे हुए हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, फील्ड में मेहनत करनी चाहिए उनको।
0: अभी तो देख रहे हैं हम दिल्ली में रोज प्रदर्शन,
1: ये मेहनत है, ये झूठ बोलो भाग जाओ, अराजकता फैलाओ, अशांति फैलाओ, ये है, ये मेहनत नहीं है।
0: लेकिन राहुल गांधी के सड़क पर उतरने से बीजेपी को कोई फर्क
1: नहीं, मेहनत नहीं है ना।
0: अब तक तो आप कह रहे थे कि राहुल गांधी के सड़क पर नहीं उतरते।
1: कौन कह रहा था, हम तो कभी नहीं कहते, हम तो ये कह रहे थे राहुल गांधी जी को, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं मैं कि SIR का प्रपोजल इनकी तरफ से ही आया था लोकसभा में। मैं संसदीय कार्य राज्य मंत्री का भी काम देखता हूं तो मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि SIR पे चर्चा कराओ, एक सेशन हमारा डिस्टर्ब भी हुआ था, लेकिन हमने बाद में SIR की चर्चा मानी। तो ये जब बोलने खड़े हुए तो ये क्या बोले, ध्यान है आपको SIR पे बोले क्या इन्होंने? 5 मिनट तो खादी पे बोले, ये 5 मिनट महात्मा गांधी और उसके थॉट पे बोले, 5 मिनट पता नहीं किस और पे बोले, तब तक तो समय हो रहा था इनका, SIR पे बोले नहीं पाए। इसका मतलब SIR का मुद्दा है ही नहीं तो बोलते लोकसभा में, बोलते इनके दूसरे साथी बोले थे, ये तो बोले ही नहीं।
0: आज हम जब इस मंच पर बैठे हुए आप कह रहे हैं कि SIR का मुद्दा है नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी और जो 11 विपक्षी दल है उन्होंने जो पिटीशन फाइल किया आज उस पर सुनवाई होगी, उसके साथ साथ SIR को लेकर जितनी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के भीतर फाइल हुई है आज उनका नंबर आ सकता है। आज कहीं ना कहीं अब विपक्षी दलों को लगता है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए।
1: देखिए साहिल जी, SIR पहली बार तो हुई नहीं है देश में,
0: लेकिन जितना कॉन्ट्रोवर्शियल इस बार हुआ है उतना कभी भी ऐसा
1: नहीं। अभी विपक्ष अलग आ गया ना, बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए कुछ भी बोलो और भाग जाओ, ऐसा विपक्ष आ गया ना। अच्छा नहीं, मैं बताता हूं एसआईआर तो चर्चा हो चुकी है ना लोकसभा राज्यसभा में, पूरी डिबेट आप देख लेना इन्होंने क्या बोला, मैं बताऊंगा। साफ सुथरी होनी चाहिए मतदाता सूची, एक प्रिंसिपल जो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर दे गए हमें संविधान बनाते समय, वन पर्सन वन वैल्यू वन वोट, उस प्रिंसिपल के आधार पर एसआईआर है। एसआईआर पहले भी कराई, इनके शासन में भी एसआईआर हुई, अभी भी हुई। अब जो आप कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में ये क्या लेके गए कि सुप्रीम कोर्ट में लेके गए कि फॉर्म 6 इन्होंने अमेंड कर दिया
0: जी।
1: चुनाव आयोग ने जो कहा है प्रेस नोट जारी करके, जिसको मानते नहीं कि संवैधानिक संस्था होने के बावजूद उसको इसलिए नहीं मानते कि संवैधानिक संस्थाओं को इनको बदनाम करना है, इनका एक एजेंडा है। तो उन्होंने कहा हमने फॉर्म 6 बदला ही नहीं, डिक्लेरेशन में चेंज किया है। डिक्लेरेशन अलग चीज है, फॉर्म अलग चीज है। अब इसको ये टेक्निकल चीजों में उलझाना चाहते हैं।
0: आप कानून मंत्री है और आपको पता है कि फॉर्म नंबर,
1: मैं कानून मंत्री हूं इसलिए मैं कह रहा हूं आपको,
0: इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूं। जो सुप्रीम कोर्ट के में ये मामला जाने के पहले इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो प्रेस रिलीज निकाला गया था उसमें उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी।
1: नहीं नहीं, ये नहीं कहा, आप ऐसे मत करो।
0: उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी,
1: सुप्रीम कोर्ट ने
0: डिक्लेरेशन के लिए आपको मंजूरी दी थी।
1: बिहार की एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि फॉर्म 6 उसके साथ भी लगा हुआ था तो उसको अप्रूव किया, ये कहा।
0: एग्जैक्टली,
1: अप्रूव
0: किया। उसी बात को लेकर मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तब जस्टिस वहां पर ये
1: नहीं, उसमें एसआईआर थी, अब ये फॉरम 6 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट के ओरल ऑब्जर्वेशन है। मैं आपकी बात को समझ रहा हूं लेकिन एक बार तो सुप्रीम कोर्ट में मामला निर्णय तो आने दो ना आप।
0: है, लेकिन ये बात भी तो सही है ना कि ये पहले मामला कहां से उठा। जब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह दावा किया जाता है कि इलेक्शन कमीशन के भीतर सुखविंदर संधु जो एक और एक इलेक्शन कमिश्नर है वो ये कहते हैं कि भाई ये अवैध तरीके से उसमें बदलाव किया गया है, और वो बदलाव तब किया गया डिक्लेरेशन फॉर्म में जब 13 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी।
1: प्रमाण दिए उन्होंने क्या? ये इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी थी पहले जब यूपीए की गवर्नमेंट थी कि रायसना हिल पे आर्मी आ रही है, फिर सही थी क्या वो खबर?
0: तो आप कह रहे हैं कि वो पूरा गलत?
1: नहीं, वो खबर सही थी क्या? जो मिलिट्री ने आकर के डीजीओ ने कहा कि खबर गलत है, मान ली ना हमने, हम भी विपक्ष में ही थे उस समय, हमने मान ली ना वो बात। अब इलेक्शन कमीशन आके कहता है उसकी बात ये नहीं मानते?
0: नहीं, लेकिन डिक्लेरेशन
1: तो विपक्ष में फर्क आ गया ना अब।
0: नहीं, लेकिन सर डिक्लेरेशन फॉर्म में फर्क तो आ गया है।
1: नहीं, डिक्लेरेशन अलग चीज,
0: डिक्लेरेशन
1: आप समझे नहीं साहिल जी, डिक्लेरेशन अलग चीज है, फॉर्म अलग चीज है।
0: नहीं, बिल्कुल सही है,
1: हाँ दोनों में फर्क है।
0: लेकिन एसआईआर के भीतर
1: और क्या पूछा है उन्होंने?
0: फॉर्म नंबर 6
1: ने क्या पूछा है? कोई चीज पूछी है? माँ बाप कहां जन्मे या दादा दादी कहां जन्मे, क्या हो गया जी इसमें? ये इलेक्शन कमीशन पूछ, वो कहेगा ना इलेक्शन अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। अभी मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है तो मुझे एज ए लॉ मिनिस्टर ये चीजें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आपने पूछा इसलिए मैं जनता को बताने के लिए ये बता रहा हूं। बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फॉर्म 6 चेंज नहीं हुआ है जी, मैं कह रहा हूं।
0: आपका ये कहना है कि फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं?
1: फॉर्म 6 चेंज नहीं हुआ है, डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन और फॉर्म 6 में अलग अलग है दोनों चीजें।
0: और डिक्लेरेशन
1: टेक्निकल मैटर, इट विल बी डिबेटेड ऑन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड इट।
0: डिक्लेरेशन में जो बदलाव किए गए हैं जुलाई महीने में, उस बदलाव का कानून मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं।
1: वो डिक्लेरेशन है ही चीज अलग साहब,
0: लेकिन फॉर्म नंबर 6
1: इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर।
0: फॉर्म नंबर 6 तब तक
1: साहिल जी, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर,
0: आई एग्री, लेकिन फॉर्म नंबर 6 तब तक एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक डिक्लेरेशन फॉर्म आप भर के नहीं देंगे।
1: लेकिन फॉर्म नंबर 6 में चेंज है क्या?
0: अच्छा, आप कह रहे हैं कि मेन फॉर्म में कोई चेंज?
1: वही है फॉर्म नंबर 6, तो वही है, सेम है।
0: फॉर्म नंबर 6 की बात निकली है तो और एक बात इसमें निकलेंगी, क्योंकि अब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अब हम स्पेशल ड्राइव चलाएंगे पूरी राज्यों में, 20 राज्यों में और 3 केंद्र शासित
1: प्रदेशों।
0: उसमें जो लोग डिलीट हो चुके हैं या जिनका नाम वोटर लिस्ट से हट चुका है उन्हें जोड़ने के लिए एक बार फिर फॉर्म नंबर 6 का इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर से कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है।
1: मैं कुरैशी साहब का स्टेटमेंट पढ़ चुका हूं जी।
0: एग्जैक्टली,
1: ओपी राव साहब का भी पढ़ चुका हूं,
0: उसमें कह रहे हैं कि आप गलत डिक्लेरेशन।
1: उसका नहीं नहीं, वो ऐसा मान ही नहीं, वो अब उनका वर्जन है जो इलेक्शन कमीशन कहता है, उसका वर्जन तो मानते नहीं है विपक्ष वाले। उनका वर्जन सब कुछ सही है, उनका वर्जन ऐसा है क्या?
0: बात वो नहीं है, बात यह है कि
1: ऐसा थोड़ी है।
0: फॉर्म 6
1: मैं समझ गया, इशू समझ गया।
0: फॉर्म 6 नए वोटर के लिए किया जाता है, क्या आपको लगता है कि उसमें कोई बदलाव करने चाहिए?
1: नहीं नहीं,
0: अब जो नई ड्राइव चल रही है
1: ये अंडर कंसिडरेशन है जी विषय अभी। और कुरैशी साहब कह रहे हैं वो सब सही है, ओपी राव साहब भी तो कह रहे हैं, और चुनाव आयोग कह रहा उसकी बात मानी नहीं।
0: नहीं, मैं चुनाव आयोग की बात मानने के लिए तैयार
1: हूं। चुनाव आयोग की बात माननी नहीं,
0: मैं
1: ऐसा है,
0: मैं चुनाव आयोग
1: नहीं, नहीं नहीं, क्या चुनाव आयोग जो आर्टिकल 234 के तहत गठित है इस देश में उसकी बात माननी नहीं, जो रिटायर हो गए उनकी बात माननी है।
0: मैं कानूनन बात करता हूं सर,
1: मैं भी कानूनन नहीं कर रहा हूं।
0: ठीक है, मैं फॉर्म नंबर 6 में क्या होता है, फॉर्म नंबर 6 नए वोटर जोड़ने के लिए होता है, उसमें आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि इससे पहले मैं कहीं भी वोटर नहीं था। सवाल
1: उसमें कई चीजें आ गई ना,
0: उसमें कई चीजें आ गई,
1: वो अभी डिसाइड होने दो। तो अभी डिसाइड होने दो, अपने इलेक्शन कमीशन भी डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी विषय, इस विषय को इतना लंबा क्यों खींचते हो? क्योंकि मैं लॉ मिनिस्टर के नाते कुछ बातें तो मैं नहीं बोल पाऊंगा ना,
0: लेकिन
1: आप मुझे,
0: ये आपके संज्ञान में है,
1: आप मुझे बोला के क्या कराना चाहते हो, मैं नहीं बोल पाऊंगा कुछ विषय,
0: लेकिन आपके संज्ञान में,
1: हमारे ध्यान में है ये विषय,
0: आपके ध्यान में,
1: हमारे ध्यान,
0: सरकार इस पर सोच रही है कि ये मुद्दा,
1: सरकार क्यों सोच रही थी, इलेक्शन कमीशन का काम है,
0: लेकिन बदलाव के लिए तो आपके पास आना पड़ेगा।
1: नहीं, सिक्स में बदलाव करेंगे तो आएंगे ना, सिक्स में बदलाव का प्रपोजल है ही नहीं,
0: स्पेशल ड्राइव में भी कोई बदलाव का प्रपोजल,
1: सिक्स में फॉर्म सिक्स में प्रपोजल ही नहीं है ना।
0: तो जिस तरीके से ये ड्राइव चलेगा उसमें फॉर्म नंबर 6 से आप नए वोटर जोड़ पाएंगे, ये कानूनन सही होगा?
1: ये जो विपक्ष बोल रहा है ये तो हर तरह से बोला ना, जब राष्ट्रपति जी के यहाँ भी विपक्ष आया, उन्होंने कहा प्रूफ लाओ, लाए क्या आज तक, दिए क्या? अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा प्रूफ लाओ, वो ये पिटीशन के माध्यम से आना नहीं चाहते ना।
0: राहुल गांधी बोल रहे हैं हम देंगे राष्ट्रपति के पास जाके,
1: तो कहां देंगे, देओ ना, कितने दिन हो गए, है ही नहीं प्रूफ जी कोई।
0: एक और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई है कि आरोप यह लग रहा है कि विपक्ष ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पे मोर्चा निकाला, एक बड़ा एजिटेशन लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, रजिस्ट्री तक वहां पर पहुंच गए और जाके फिर उन्होंने पिटीशन फाइल की, आप इसे किस नजर से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश चल रही
1: है? कुछ नहीं जी, व्यवस्थाएं खराब करने का विषय। मैं तो जिले में कलेक्टर रहा हूं, अगर कोई जिले में ज्ञापन देना तो कलेक्टर को दिया जाएगा ना, वो जाकर के डीजे को देंगे क्या कि डीजे साहब आप आइए नीचे हम आपको ज्ञापन देंगे? एक ही परिसर में कलेक्टर एसपी डीजे बैठते हैं, मैंने तो देखा है कि जो ज्ञापन लेकर के आते हैं वो कलेक्टर को देते हैं। तो ज्ञापन देने का एक तरीका है, एक सिस्टम है, एक परंपराएं बनी हुई है। आप प्रधानमंत्री जी को लिख सकते हो, प्रधानमंत्री जी पे आप विश्वास नहीं है तो संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन, उनको लिख सकते हो कि हम 5 या 10 या इतने आदमी मिलना चाहते हैं, जो लिख नहीं रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा भी आप बताओ संख्या कितनी है, कब मिलना चाहते हो, वो लिख नहीं रहे हैं, तो वो राष्ट्रपति जी से मिले। तो राष्ट्रपति जी से पहले अब देखिए कितनी व्यवस्थाएं खराब करने के लिए उन्होंने पहले सेंट्रल हॉल में कोशिश की कि यहां राष्ट्रपति कभी आएंगे, राष्ट्रपति सेंट्रल हॉल में, फिर उन्होंने कहा नहीं हम यहां थोड़ी आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा, तो जैसे राष्ट्रपति जी ने कहा 10 आदमी आप आओ, ऐसे इलेक्शन कमीशन ने कहा 10 आदमी आ जाओ, तो वहां तो गए नहीं राष्ट्रपति जी, क्या गए? वहां गए तो उन्होंने कहा प्रूफ लाओ, तो प्रूफ लाए नहीं, तो नहीं हम तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कूच करेंगे। कूच करना ये ठीक चीज है क्या देश में? तो उन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी प्रेस के सामने आना पड़ा और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करना चाहता है तो वो पिटीशन के माध्यम से ही कर सकता है, वही परंपरा है। ये तो ठीक परंपरा नहीं डाली ना,
0: पावर की बात उन्होंने कही,
1: ठीक परंपरा नहीं डाली ना इन्होंने विपक्ष ने। ये तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं जी, आप पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव है, एक जिला प्रमुख को ज्ञापन दिया जाता है कि भाई पंचायतों में ये राशि रिलीज करो या जो भी ज्ञापन दिया, तो वो कहेगा कि नहीं आप डीजे के पास जाओ, लोग डीजे के पास जाएंगे क्या ज्ञापन देने के लिए? ये तो परंपराएं ठीक नहीं डाल रहे ना ये।
0: तो आपको क्या लगता है कि सीजीआई को मिलकर विपक्ष क्या करना चाह रहा था? क्यों ये अनप्रेसिडेंटेड है आज
1: नहीं,
0: तक कभी
1: नहीं, परंपराओं को तोड़ना,
0: सीजीआई को जाकर मिलने के लिए कभी समय नहीं,
1: परंपराओं को तोड़ना, व्यवस्थाओं को खराब करना, अराजकता फैलाना, अशांति फैलाना और मोदी जी को बदनाम करना, देश को बदनाम करना, इसका कोई एजेंडा नहीं है जी इनका। मैं तो अच्छी तरह से देखता हूं उनको लोकसभा में राज्यसभा में, कोई एजेंडा नहीं है इनका टू डिफेम द नेशन।
0: लेकिन उसके साथ साथ हमने यह भी देखा कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके चेयरमैन पीपी चौधरी भी सीजीआई के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें मिलने का समय दीजिएगा। यह भी इस देश में कभी नहीं हुआ है। जिस कमेटी के पास में वन नेशन वन इलेक्शन बिल तैयार करने की जिम्मेदारी है, जो बिल हो सकता है कि कल कोर्ट में चैलेंज किया जाए,
1: थोड़ी तो
0: नहीं तो वो तो पहले तो समय दिया गया था।
1: नहीं नहीं नहीं,
0: ये भी तो अनप्रेसिडेंटेड है। पीपी चौधरी सीजीआई के पास कैसे समय मांग सकते हैं कि आपने मिली?
1: इसको
0: क्या आपको लगता है कि वो गलत
1: इसको,
0: था?
1: इसको इसको इस तरह से देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की एक जेपीसी बनी
0: जी,
1: सभी दलों के लोग होते हैं, किस किस को विटनेस के लिए बुलाना होता है, किस किस को, उसके लिए सदस्य अपनी राय देते हैं, आप वो पीपी चौधरी साहब ने जो कॉरेस्पॉन्डेंस किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, वो सब देख लेना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से ये डिबेट का विषय है नहीं। उसका वहां भी एक सदस्य है कोई पी विल्सन, उनका प्रयास रहा होगा कि हमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस मामले में इसकी, क्योंकि जब एक्स सीजीआई की बात कर रहे हैं, एक्स सीजीआई है दो तीन कमेटी के सामने, लेकिन सीजीआई तो ना आ नहीं सकते ना, तो ऐसे पी विल्सन का कोई विषय था। आप सारे कागज पीपी चौधरी साहब से मंगा के देखना, उसके बाद आपको पता लगेगा। लेकिन गए थोड़ी हैं, तो कमेटी गई नहीं ना,
0: वो तो पहले समय दिया, उसके बाद कपिल सिब्बल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद सीजीआई ने फिर वो जो मीटिंग थी वो रद्द कर दी 6 अक्टूबर को।
1: गई नहीं ना कमेटी तो,
0: लेकिन समय मांगना ठीक था।
1: गई थी क्या कमेटी? वो एक एमपी की रिक्वेस्ट थी, उस पर कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ था। वो आप कागज मंगाओगे तो पता चलेगा ना।
0: मतलब आपका ये कहना है कि कमेटी के तौर पर,
1: कमेटी के किसी सदस्य ने अपनी राय रखी, जो मुझे जितनी जानकारी है, क्योंकि मैं डायरेक्टली देखता नहीं हूं उसको, उन्होंने कहा भी हमें सुप्रीम कोर्ट इसमें वन नेशन वन इलेक्शन में क्या राय है उसकी, ये भी जानना चाहिए। तो कैसे जाने
0: सर, ये तो गलत है ना। लेकिन
1: नहीं कह, नहीं रख दी राय, पी विल्सन से पूछो ना, गलत है सही है? वो सदस्य है, वहां सदस्य को पावर होता है।
0: लेकिन चेयरमैन, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन पहले ही बिल तैयार होने के पहले ही सीजीआई से समय मांग रहे हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था विषय। ये बिल पे राय तो लेनी ही लेनी है ना सबकी, सीजीआई की राय की जरूरत भी नहीं इसमें, कहा किसने? लेकिन वो मैंने, हम भी ये विषय जब आया तो पीपी चौधरी से जब आप इंटरव्यू करोगे ना, तब आपको पूरा पता चलेगा ना। मैं पीपी चौधरी नहीं हूं ना, मुझे तो जानकारी आपको जितनी है,
0: मैं तो आपको मेरे को है। मैं तो आपको कानून
1: जितनी जानकारी आपको
0: विपक्ष ने समय मांगा,
1: लेकिन गए नहीं, गए नहीं, ये यहां तक जानकारी है वो गए नहीं।
0: दूसरी एक चीज और दिखाई दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी एक तरीके से दो धड़े नजर आ रहे हैं। जैसे जस्टिस भुइया,
1: उसको आप मत बात करो,
0: जस्टिस भुइया ओपन स्टेटमेंट देते हैं,
1: उसके बाद गवई साहब दे चुके हैं स्टेटमेंट, इसकी बात क्या करनी, वो तो सबके पब्लिक में है।
0: आपको लगता है
1: मेरे से नहीं, मैंने मेरे से मत कहलाओ ना आप चीजें।
0: जस्टिस गवई कहते हैं कि भाई इस तरीके से बोलना गलत है।
1: सब ठीक है, इस देश में जुडिशरी भी अपना काम कर रही है, एग्जीक्यूटिव भी अपना काम कर रही है, और लेजिस्लेटिव विंग भी अपना काम कर रही है।
0: जस्टिस गवई ने कहा
1: सेपरेशन ऑफ पावर जो आर्टिकल 50 है उसके तहत सब का अपना काम कर रहे हैं। ये तो विपक्ष जो है ना, कुछ छोटी छोटी चीजों को ये उठा करके देश में ठीक नहीं है, अव्यवस्था फैलाना, अराजकता फैलाना, वो विषय और कोई विषय नहीं है जी साहिल जी, जो मुझे जानकारी है।
0: एक विषय आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने अप्रैल महीने में डिलिमिटेशन बिल इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा के भीतर, जो आपके पास नंबर नहीं थे उसके वजह से लोकसभा में पास पारित नहीं हो पाया। आज किस उसके बाद बंगाल के चुनाव होते हैं, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में फूट पड़ती है, वो नई पार्टी में चले जाते हैं,
1: एनसीपीआई
0: में चले जाते हैं, शिवसेना में फूट पड़ती है, 6 सांसद उनके शिवसेना में वापस चले जाते हैं, जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है उसमें चले जाते हैं। आज की स्थिति में सरकार क्या डिलिमिटेशन बिल पास करने के पोजीशन में है?
1: डीएमके की बात नहीं करोगे?
0: मैं डीएमके पर आऊंगा, लेकिन पहले जो आपके पास नंबर आ गए उसकी तो बात कर लें। क्या आपने नंबर जुटा लिए हैं अभी, या आप गवर्नमेंट इज ड्रॉइंग अ कोल्ड फीट कि अभी यार अभी समय थोड़ा ठीक नहीं है, माहौल थोड़ा अलग है, अभी नहीं लाएंगे?
1: ऐसा समय, इसके साथ समय का क्या संबंध है?
0: देश का माहौल
1: नहीं, इसके साथ संविधान का संबंध है।
0: ओके,
1: विपक्ष इस चीज को समझ नहीं पा रहा है। हमने समझाने की कोशिश की उस समय भी कि 2001 में, पहले 76 में फ्रीज किया,
0: नंबर फ्रीज हो गया,
1: नंबर फ्रीज हो गया। फिर आपने 2001 में, पहले 76 में 25 साल के लिए फ्रीज किया, फिर 2001 आए तो संविधान में लिखा हुआ था, तो 2001 में भी फ्रीज किया। ठीक है, तो वो फ्रीज कब तक है? 2026। तो 2026 में संविधान में लिखा हुआ है, इसलिए हमने ये प्रक्रिया अपनाई। जो आपने कहा ना कि हमने लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया, बिल्कुल किया बिल इंट्रोड्यूस, हमने पूछ के किया, चर्चा करके किया। उसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी कुछ संशोधन होना था, और डिलिमिटेशन भी उसका एक पार्ट था, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि 2026 में ये प्रक्रिया होनी है, तो हम तो संविधान से चले। और उनको लगा कि फॉर्मूला क्या, तो हमने उनको फॉर्मूला बताया, और हमारे गृह मंत्री जी ने लोकसभा के अंदर बोला कि इसमें किसी को ही नुकसान नहीं होगा, जो एग्जिस्टिंग सीटें हैं उसका हम 50% बढ़ाएंगे, और जो 50% बढ़ी हुई सीटों का नंबर होगा उतनी ही महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व हो जाएगी,
0: टोटल 850 सीटें हो जाएंगी,
1: 815
0: लोकसभा की, 30 राज्यों की 815 और बाकी की 30।
1: तो वो उसमें कोई नहीं, वो टोटल 850 तो कैप थी,
0: कैप है उसका,
1: बाकी 815। तो उसमें जैसे उन्होंने कूतर करने की कोशिश की, जयराम रमेश जी ने क्या आपके पोस्ट पे भी डाला उन्होंने कहा जी ये जो 50% बढ़ने का फॉर्मूला कह रहे हैं किसी राज्य को नुकसान नहीं होने का कह रहा है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। तो हमने कहा जयराम रमेश जी बताओ कैसे सहमत नहीं हो कि यूपी की सीटें हैं अभी 80, तो मैंने कहा 50% बढ़ेगी, तो बोला 120 हो जाएगी। तो आपको तकलीफ, पॉपुलेशन उसी ढंग से है यूपी की। तो बोला केरला की सीटें हैं 20, तो मैंने कहा साहब 50% बढ़ेगी, जो फॉर्मूला यूपी में है वही फॉर्मूला केरला में है, हमारा आमने सामने डिस्कशन है ये। तो उन्होंने कहा उसकी सीटें बढ़ेगी 10। हाँ बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा, अब ये शानदार बात है, तो उन्होंने कहा हमारा प्रभाव दक्षिणी राज्यों में ज्यादा है, तो उसका हम क्या करें, आप अपना प्रभाव यूपी में भी बढ़ाइए। कभी यूपी में बहुत से एमपी जीत के आते थे, यूपी में आपका शासन भी था, बिहार में अपना प्रभाव बढ़ाइए। अब वो प्रभाव बढ़ा नहीं रहे, और ये जो 50% फॉर्मूले को कहते हैं कि ये उत्तर की सीटें बढ़ जाएगी ज्यादा, दक्षिण की कम हो जाएगी, ऐसा है ही नहीं। जबकि जितनी सीटें आज है वो सब 50% बढ़ेगी,
0: परसेंटेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा।
1: कुछ नहीं जी, इतनी जीत। अब जैसे आपने उदाहरण, यही उदाहरण है उनका, उनका भी है, मैं आपको भी देता हूं, यूपीएससी।
0: ये डीएम के कह रहा था बेसिकली, आपने डीएम के का मुद्दा
1: नहीं,
0: निकाला
1: डीएम के
0: इसके
1: तो
0: लिए।
1: समझ में, डीएम से बात हो गई हमारी, समझ में भी आ गया।
0: कैसे समझाया आपने डीएम के?
1: नहीं, मैं कहता हूं कि अगर जनसंख्या के साथ जोड़ोगे तब चीजें अलग होती है ना। वो तो अब इनके साउथ के राज्यों को समझ में आ रही है नई चीजें, लेकिन कांग्रेस को नहीं आ रही है। अब मैं ये आप बताइए ना कि 80 है यूपी, तो 50% फॉर्मूले से कितनी होनी चाहिए? हम 120 से कम कर देंगे क्या? और अगर यूपी में उनका प्रभाव नहीं है, तो वो प्रभाव तो उनको राजनीतिक अपने आंदोलन करके, राजनीतिक अपने कार्यक्रम दे करके, यूपी की जनता को प्रभावित करके करने पड़ेंगे ना। वो बीजेपी नहीं कर सकती ना कांग्रेस के लिए। और अगर 20 सीटें हैं वहां और वहां 30 होती है, फॉर्मूला तो एक ही लागू होगा।
0: नहीं, उस वक्त डीएमके का यह कहना था, आपने यूपी और केरल का उदाहरण दिया, इसके लिए मैं रखना चाहूंगा। जैसे मसलन आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश के भीतर 80 सीटें हैं, केरल के भीतर 20 सीटें हैं, वोट सीटों का डिफरेंस 60 सीटों का हो जाता है केरल और उत्तर प्रदेश
1: ये
0: के
1: तो
0: बीच
1: कूतर
0: में।
1: कहना साहब,
0: नहीं, वो तो डीएमके दे रहा था, मैं तो आपको
1: डीएमके नहीं दे रहा जी, कांग्रेस दे रही
0: उस
1: है।
0: वक्त डीएमके,
1: नहीं नहीं
0: डीएमके भी ये
1: कांग्रेस
0: कह रहा,
1: नहीं नहीं
0: स्टालिन
1: वो तो
0: भी यही
1: समझ
0: कह
1: गए
0: रहे
1: थे
0: थे।
1: ना, वो तो क्या लेके आओ आप, ये राइटिंग में लाओ, उन्होंने इतना ही कहा था ना उस समय
0: हाँ,
1: भी।
0: आप राइटिंग में लिखिए कि पचास
1: हाँ तो हमने
0: परसेंट
1: तैयार थे
0: पर
1: हम राइटिंग में लिखने के लिए।
0: आप बिल में राइटिंग में लिखने के लिए तैयार
1: हाँ
0: थे।
1: तैयार थे, एचएम साहब ने बोला है ना लोकसभा में बहस के दौरान, तो कांग्रेस खड़ी हो गई कि इसको डीलिंक करो, डीलिमिटेशन अलग लाओ और नारी शक्ति बंधन अलग लाओ। ये कैसे होता, बिल तो एक साथ ही पेश हुए हैं ना तीन,
0: नहीं, लेकिन नारी शक्ति बंधन तो पहले ही पारित हो चुका था, क्यों नहीं लागू किया गया?
1: तो उसी में तो अमेंडमेंट करना था ना। तो
0: आपको नंबर बढ़ा के फिर लागू करना है
1: नहीं
0: बेसिकली।
1: नहीं नंबर बढ़ा के नहीं, उसमें दो चीजें थी साहब, आप इसको उसको यूपीएक्स को समझना पड़ेगा, जनता को भी समझना पड़ेगा। उसमें डिलिमिटेशन का भी विषय था और सेंसस का भी था। सेंसस कोविड के कारण लेट हुआ, सेंसस पहले हो जाता तो डिलिमिटेशन भी पहले हो जाता।
0: तो पुराने सेंसस के आधार पर आप डिलिमिटेशन करना चाहते हैं
1: तो
0: जो पहले से हो चुका है?
1: तो सेंसस अवेलेबल है उसके आधार पर करना चाह रहे हैं, या फिर नए सेंसस का विचार करो। हम तो दोनों ही ऑप्शन दे रहे हैं ना इनको, अभी भी दे रहे हैं, बात करते समय अभी भी दे रहे हैं कि संविधान में ही लिखा हुआ है सेंसस जो अवेलेबल होगा उसके आधार पर डिलिमिटेशन होगा।
0: तो वो कह रहे हैं कि नए सेंसस तक रुकने में सरकार को क्या दिक्कत है?
1: नहीं नहीं हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट करेंगे क्या वो, और उसके लिए एग्री हो जाएंगे क्या? मैं ये पूछ रहा था
0: फिर
1: ना आपके माध्यम
0: 2029 तक तो डिलिमिटेशन
1: नहीं
0: नहीं हो
1: नहीं
0: पाएगा
1: 27
0: जब
1: में, 27 में जो सेंसस अभी चल रहा है उसके फिक्र 27 में आ सकते हैं, जल्दी भी आ सकते हैं, वो तो जब सेंसस वाले जाने कब आएंगे,
0: नहीं,
1: लेकिन
0: लेकिन
1: उसके लिए वो तैयार हो जाएंगे कि आप पूछ के बताना उनको, अभी आपके आदमी आएंगे यहाँ।
0: तो आपको लगता है कि विपक्ष उसके लिए भी
1: नहीं
0: तैयार
1: नहीं
0: नहीं होगा?
1: आप हो जाए तो बताना, आप पूछना ये विषय, मैं आपको कह रहा हूं वो कुछ नहीं चाहते हैं, वो ऐब अवस्था फैलाना चाहते हैं। हमने कहा भी संविधान के अंदर ही लिखा हुआ है 2026 तक सीटें फ्रीज होगी, तो 2026 ही चल रहा है ना भाई साहब, राहुल जी अभी तो हमें तो संविधान के अनुसार काम करना ही पड़ेगा ना। बोला कुछ मत करो,
0: लेकिन अब मैं बात करूंगा पॉलिटिकल नंबर्स की, क्योंकि आपने डीएमके का जिक्र छेड़ा है, क्योंकि
1: सब आ
0: लोकसभा,
1: गई चीजें
0: नहीं
1: उसमें, सब
0: लोकसभा
1: आ गई,
0: सब आपके पास पूरा नंबर
1: नहीं
0: है।
1: चीजें सब आ गई, अब नंबर आप अब मत जोड़िए, अब चीजें सब आ गई और प्रोसेस भी हमारा ऑन है, इससे ज्यादा मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा।
0: अरे सर, आप तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ये
1: नहीं मैं कह
0: तो
1: दिया, नंबर नंबर का विषय प्रोसेस ऑन है, वो नंबर का विषय तो लोकसभा में पता
0: मैं
1: चलता है
0: आपको
1: ना,
0: बताता हूं। मैंने सवाल ये,
1: लोकसभा में अभी लोकसभा की कार्रवाई में पता चलता है ना नंबर
0: नहीं
1: का
0: ठीक है,
1: विषय
0: लेकिन
1: तो।
0: मैंने ये सवाल क्यों पूछा ये मैं आपको बताता हूं। सवाल मैंने इसलिए पूछा है ये क्योंकि आज की स्थिति में विपक्ष ये कॉन्फिडेंस है कि सरकार के पास अब नंबर नहीं है, जिस तरीके की स्थिति बनी, क्योंकि यह माना जा रहा था कि एनसीपी एसपी में भी टूट हो जाएगी, 8 सांसद उनके हैं, वो भी शायद आपके पास कुछ आ जाएंगे, अब आपके पास नंबर नहीं है, क्योंकि दिल्ली में चर्चा थी कि अक्टूबर महीने में स्पेशल सेशन आप बुलाएंगे, डिलिमिटेशन का, नारी शक्ति वंदना का बिल दोबारा पेश किया जाएगा, फिर वो अक्टूबर महीना तो अब करीब करीब खत्म ही, मतलब खत्म ही हो गया।
1: खत्म तो कहां हुआ,
0: अरे हो जाएगा अभी, मतलब अभी तो अब तो आपका कोई अभी तक आया नहीं, मतलब अभी भी आपको लगता है कि
1: चालू है ना
0: स्पेशल सेशन आ सकता है?
1: नहीं नहीं, अक्टूबर का महीना चालू है ना, खत्म कहां हुआ, मैं ये कह रहा हूँ
0: स्पेशल
1: अक्टूबर का महीना चालू है साहिल जी, अभी खत्म नहीं हुआ।
0: क्या डिलिमिटेशन बिल आने वाले सेशन में आएगा? क्या डिलिमिटेशन बिल?
1: आज तो 15 ही तारीख है ना, 15 ही है ना, तो आधा आधा महीना ही समाप्त हुआ ना।
0: आप गेस वर्क रखना चाहते हैं विपक्ष को?
1: खत्म कहां हुआ? नहीं नहीं, विपक्ष को भी पता है ना। देखिए मैं एक चीज गंभीर चीज कहना चाहता हूं, आपने विषय छेड़ दिया इसलिए कि जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम में संशोधन हम लेके आए और उस वो बिल गिरा, तो कुछ महिलाओं ने, विपक्ष की महिलाओं ने जो हमारी एमपी थी, उन्होंने उसको मेजे थपथपा करके स्वागत किया था कि हमने बिल गिरा दिया, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है फील्ड में। ये आपको समझ में नहीं आ रही है? अब नारी जो है ना वो रुकने वाली नहीं है। सब क्यों नहीं देना चाहते हैं जी? हम 1/3 रिप्रेजेंटेशन ही तो मांग रहे हैं, वो क्यों नहीं देना चाहते हम? क्या दिक्कत आ रही है जी आपको? ये अब विषय रुकेगा क्या? उनकी डिमांड तो 50% की होनी चाहिए ना
0: सर। ये तो पॉलिटिकल नैरेटिव हो गया ना, विपक्ष कह रहा है कि 2023 में तो हमने आपको समर्थन दिया था,
1: तो उसमें
0: एक पद से
1: उसी में अमेंडमेंट है, तो 2023 को लागू करने के लिए अमेंडमेंट है।
0: दिक्कत वो नहीं है सर, दिक्कत वहां पर आ जाती है कि जब विपक्ष कहता है कि
1: क्या कहता है,
0: मैं डिलिमिटेशन के माध्यम से,
1: अच्छा ये बताओ
0: जेरीमेंडरिंग करेंगे?
1: नहीं नहीं क्या
0: डिलिमिटेशन के माध्यम से जेरीमेंडरिंग?
1: क्या डिलिमिटेशन उन्होंने कभी पहले किया ही नहीं? क्या कमीशन करता है ना डिलिमिटेशन? इससे पहले भी कुलदीप सिंह जी थे ना इसके डिलिमिटेशन कमीशन के अध्यक्ष, तब क्या, तब नहीं हुआ क्या डिलिमिटेशन?
0: आसाम का उदाहरण देते हैं कि देखिए आसाम में कैसे उन्होंने,
1: क्या हुआ आसाम में? कुछ नहीं हुआ जी। उन्होंने अपील क्यों नहीं की? अब वो अपील कर देते, वो तो उदाहरण जम्मू कश्मीर का भी कई बार दे देते हैं,
0: जम्मू कश्मीर का भी उदाहरण।
1: और इन्होंने डिलिमिटेशन, ये अपन पंचायत राज संस्थाओं के लिए बैठे हैं, जब ये कांग्रेस का शासन था, या जयपुर में इन्होंने डिलिमिटेशन से 2 नगर निगम क्यों बना दिए? कि जयपुर में तो हम जीत नहीं सकते, बीजेपी जीती है, इसलिए 1 नगर निगम हम जीत जाए और 1 नगर निगम बीजेपी जीत जाए, ये ठीक है?
0: तो नेहले पे दहला,
1: नहीं
0: आप भी वैसे ही जवाब?
1: नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। हम कहते हैं न्याय करो आप, और डिलिमिटेशन कमीशन न्याय करेगा, आप अपनी बात कहना वहां, लेकिन डिलिमिटेशन को रोकेगा कैसे? आप रुकेगा कैसे? संविधान में ही प्रावधान है, डिलिमिटेशन भी संविधान में प्रावधान है, 2023 नारी शक्ति बंधन भी पास हुआ हुआ है, कब तक आप भारत की महिलाओं को इंतजार कराते रहोगे जी? अब ज्यादा इंतजार नहीं करने वाली जी भारत की भारतीय नारी।
0: अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो आप ये कह रहे हैं कि किसी भी हालत में डिलिमिटेशन का बिल आकर
1: आएगा ही,
0: आएगा,
1: इट इज ए प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
0: और सरकार के पास नंबर्स हैं, पिछली अप्रैल महीने की तरह नहीं होगा।
1: नंबर्स का क्या, संविधान के तहत लड़ना पड़ेगा लोकसभा?
0: वो तो बात अलग है, लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो उतने नंबर्स लगेंगे, पिछली बार आपके पास
1: अमेंडमेंट में नंबर का विषय है,
0: तो वो नंबर आपके पास है क्या?
1: वो तो जब सेशन होगा तो पता चलेगा ना, जितने प्रेजेंट और वोट करने वाले लोग हैं उसका 2/3 चाहिए ना, जब सेशन होगा तब पता चलेगा कितने एमपी आए हैं।
0: नहीं लेकिन तैयारी तो सरकार ने शुरू कर दी थी ना कि टीएमसी में 20 लोग एनसीआर में चले गए,
1: हमने क्या कर दिया? वो तो उन्होंने कहा, ममता जी हमारी नेता है, अभिषेक हमारे नेता नहीं है, मैंने कहा क्या? ये उन्होंने कहा, इसमें हम क्या करें जी?
0: डीएमके डिलिमिटेशन के बिल को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको सपोर्ट करेगा, सरकार को कॉन्फिडेंस है इस बात, डीएमके सपोर्ट करेगी?
1: नहीं नहीं, डीएमके से चर्चा हुई है हमारी, बाकी तो सेशन होगा तो पता चलेगा,
0: बट अभी तक कॉन्फिडेंस है आपको सपोर्ट करेगी कि नहीं?
1: देखिए हमें तो ये, हम अपील करना चाहते हैं इवन कांग्रेस को भी कि ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम और डिलिमिटेशन को ज्यादा रोके नहीं, क्योंकि ये संविधान के तहत प्रावधान किया हुआ, संविधान निर्माताओं का उस समय का।
0: सर राजनीति में अपील से तो नहीं होता है ना, आपको भी पता है कि नंबर जुटाने पड़ते हैं,
1: तो अपील से नहीं होता,
0: तो पुराने राजनीति,
1: अपील से नहीं होता तो सेशन होगा तो पता चलेगा, तो पहले मैं क्यों बोलूं, सेशन होगा तो पता चलेगा साहिल जी?
0: कॉन्फिडेंस तो देंगे आप कि भाई हमारे पास नंबर, अब इतना तो बता सकते हैं हमारे पास नंबर है, हम किसी भी हालत में डिलिमिटेशन
1: देखिए साहिल जी, जो सरकार शासन में होती है संविधान के अनुसार उनको काम करने का मैंडेट जनता देती है, तो हमें करना ही पड़ेगा ये काम, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है 2026 के बाद यह काम हमें करना ही पड़ेगा, या 2026 में कर लें थोड़ा ठहर के कर लें, करना ही पड़ेगा क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है।
0: 2029 के चुनाव में अगर आपको डिलिमिटेशन लागू कराना है तो 2026 का ये जो विंटर सेशन होगा ये आखिरी मौका है आपके पास।
1: नहीं तो आप क्या चाहते हो, अभी मातृशक्ति और इंतजार करें प्रतिनिधित्व के लिए? 1/3 ही है, 1/3 के लिए भी इंतजार करे? अब नहीं करेगी जी इंतजार, मैं आपको सही कह रहा हूं, ये होगा।
0: अब बड़ी खबर दे रहे हैं सर, दिसंबर में मतलब आप डिलिमिटेशन बिल ला रहे हैं?
1: नहीं, डिलिमिटेशन बिल संविधान के अनुसार ही लाना पड़ेगा ये कह रहा हूं मैं, खबर ये है।
0: लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ जाएगा इस
1: छब्बीस में लाना ही पड़ेगा ना, तो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, इसलिए प्रयास कर रहे हैं। अब कई बार विपक्ष पूछते हैं आपने हाउस को प्रोव नहीं किया, अरे भाई आपको क्या करना, भाई करें क्या करें, सरकार का काम है। आपने भी पहले ऐसे नहीं किए हैं, कई बार प्रोव नहीं किया आपने।
0: वन नेशन वन इलेक्शन की क्या स्थिति है आज की स्थिति में, क्या आपको लगता
1: वो
0: है?
1: जेपीसी के पास है और कुछ राज्यों में भी उन्होंने अध्ययन किया है, और वन इलेक्शन वन नेशन पे, वन नेशन वन इलेक्शन पे भी शायद कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे बात करेंगे। मुझे लगता है अब सहमति काफी राज्यों में उन्होंने विजिट किया है, लोग चाहते भी हैं कि एक साथ इलेक्शन हो जाए, जैसे अब यहां बैठे हैं इलेक्शन के लिए, ये पंचायत आज तक में भी इसमें भी वन स्टेट वन इलेक्शन का विषय है, तो नगर निगम और परिषद और निकायों के चुनाव हुए, उसके तुरंत बाद हमारे ये जिला परिषद पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, तो एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो फिर ग्राम हमारी पंचायत राज जो इंस्टीट्यूशन है वो अपने बजट के अनुसार गांव के विकास के अनुसार अपना काम करेंगे, तो गांव में विकास ज्यादा दिखेगा, ज्यादा दिखेगा। यही विषय पूरे देश में भी चल रहा है, हर राज्य इसको अपनाने की ओर बढ़ रहा है।
0: 2029 तक आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा?
1: क्या
0: वन नेशन वन इलेक्शन?
1: नहीं, वो अलग विषय है जी, वो तो कमेटी की रिपोर्ट आने पे आएगा
0: भाई, एक सुखबू का हाथ होती है।
1: नहीं, नहीं, वो अलग विषय है। और जो पहले वाला विषय आप लाए ना डिलिमिटेशन, वो संविधान का विषय है, उसमें लिमिट है, टाइम लिमिट है, वो सेंसस से भी जुड़ा हुआ है कि सेंसस की रिपोर्ट आने के बाद तुरंत डिलिमिटेशन हमें करना पड़ेगा, वो उससे भी जुड़ा हुआ है। ये अब जब जो विपक्ष के लोग आवे ना तो उनसे आप सवाल जरूर करना, इसको पूछना जरूर, इसमें संविधान के अंदर लिखा हुआ है ये।
0: एक और एक विषय, क्योंकि जस्टिस गवई की बात छिड़ी थी, इसके लिए ये मुद्दा उठाना बहुत जरूरी है, और आप उस समाज से आते हैं और राजस्थान में आप एक बड़े नेता उसमें माने जाते हैं। जस्टिस गवई ने यह भी कहा था कि एससी एसटी रिजर्वेशन में भी क्रिमिनलर लानी चाहिए, ये उनका उनका उनका उसमें स्टेटमेंट है। और उसके साथ साथ एक और एक मुद्दा उन्होंने छेड़ा था कि एट्रोसिटी एक्ट का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, कई केसेस वो कह रहे हैं कि मैंने खुद देखी हुई है कि जिसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आपकी इस पर क्या सोच है? मैं सरकार की सोच नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपकी सोच इस पर क्या है मैं पूछ रहा
1: हूं। आपको मैं सरकार की सोच ही बता दूं, मैं सरकार में हूं तो सरकार का ही आदमी हूं ना,
0: कि मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, इसके लिए
1: मैं आपको सरकार की बात बता देता हूं ना, सरकार में हूं तो सरकार का ही आदमी हूं। देखिए, जो आप विषय जिसका जिक्र कर रहे हैं, कई बार हम क्या करते हैं कि जजमेंट में क्या लिखा हुआ है उसकी बात नहीं करके जो ओरल टिप्पणी क्या है उसकी बात ज्यादा करते
0: हैं। लेकिन बड़ी बात है,
1: एक मिनट मैं बता देता हूं आपको।
0: चीफ जस्टिस जब
1: एक सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट होना चाहिए, ये विषय कोई 15-20 सालों से चल रहा था
0: जी।
1: पंजाब से चला, वाल्मीकि समाज को ज्यादा रिजर्वेशन देना चाहिए। आंध्रा में चला, मादी का माले, तो चला माले ज्यादा रिजर्वेशन ले गए, थे ऐसे में दोनों, मादी का कम ले गए, तो ऐसे कई राज्यों से चलता चलता सारी रिटें एक साथ सुप्रीम कोर्ट में आई। जो फैसला है वो ये है, मैं इन्वर्टेड कोमा में पढ़ रहा हूं, कि अगर राज्य सरकारें चाहें
0: जी
1: तो सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट कर सकती है
0: जी,
1: जिन जातियों को अभी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है उनको दे सकती है, राज्य सरकारें चाहें तो। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसी में ही एक कंफ्यूजन फैला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया क्रिमिलेयर की बात, सुप्रीम कोर्ट में मामला ही चल रहा है अभी तो, अभी कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ, अभी तो मामला चल ही रहा है।
0: कई राज्यों में उसकी कमिटीज भी बनाई गई है, सब कैटेगरीज कैसे किए जाए,
1: वो अलग विषय, उसमें डिसीजन है। और ये टिप्पणियां हैं जो आप कह रहे हो, ये टिप्पणियां हैं, उसमें डिसीजन है, तो वो डिसीजन जो है उसके आधार पर कई राज्यों में सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट का मामला कई राज्यों ने माना, कई माने नहीं माना, उन्होंने अध्ययन किया, कई राज्यों ने कर भी दिया होगा, वो एक अलग विषय है। जो टिप्पणियां हैं वो तो जजमेंट का पार्ट तो है नहीं। रही बात एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट के
0: जी, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है कि ये तो सरकार का विषय है,
1: उसके लिए
0: सरकार उसके बारे
1: उसके
0: में
1: लिए डेटा अगर आते हैं तो पुलिस भी अपना काम करती है, राज्य सरकारें भी अपना काम करती है, केंद्र सरकार भी अपना काम करती है। कई ऐसे एक्ट हैं जिनके दुरुपयोग की सूचनाएं समय समय पर संसद में भी लोग उठाते रहते हैं, ऐसा है नहीं कि नहीं संसद में।
0: लेकिन क्या इस पर एक नए से विचार करना, क्योंकि दो बड़ी केसेस आज की स्थिति में मैं देख रहा हूं, एक मुंबई में आईआईटी मुंबई में साहिल वाकोड़े जिसने आत्महत्या की, उसके बाद उस पर
1: वो अलग विषय है।
0: नहीं मैं आपको बस मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूं,
1: सब्जेक्ट अलग है, वो सब्जेक्ट अलग है, जो आपने पहले कहा वो सब्जेक्ट
0: नहीं, लेकिन उसमें
1: दोनों ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है।
0: उसमें भी सवाल ये उठाया गया कि गलत तरीके से एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया,
1: सब्जेक्ट ही अलग।
0: अब दिल्ली में एसीपी विवेक भगत, उन्होंने भी एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया हुआ है। तो मामला ये कई लोग सवाल ये उठाते हैं कि क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर सरकार की क्या सोच है?
1: नहीं नहीं सरकार की स्पष्ट सोच है जी, दुरुपयोग किसी भी एक्ट का नहीं होना चाहिए, ये सरकार की सोच है। इसमें क्या चीज है? दुरुपयोग नहीं होना चाहिए,
0: दुरुपयोग नहीं होना
1: चाहिए। हाँ ये तो सरकार की सोच है ही, सबकी सोच है ये, और वो मामला ही अलग है जो आईआईटी कह रहे हो, वो सेंसिटिव मामला अलग मामला है।
0: ठीक है, दो सेशन हमने देख लिए, अभी समय हमारा खत्म हो रहा है इसके लिए, क्योंकि और अभी हम गियर अप कर रहे हैं विंटर सेशन के लिए। क्या इस बार का सेशन कुछ अलग होगा, या जो दो सेशन में हमने देखा कि प्रश्नकाल भी नहीं हो पा रहा था और कोई भी काम नहीं हो पा रहा था, जो बिल पास हो रहे थे वो कई बार लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे, उस पर चर्चा हो रही है नहीं हो रही है, बिल पेश किए जा रहे हैं पास हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हल्ला था उसमें। विपक्ष का यह कहना है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि आप शासन कैसे चलाए, सेशन कैसे चलाए, वो सरकार की जिम्मेदारी है। क्या विंटर सेशन के पहले विपक्ष से एक बार फिर बात करने की कोशिश सरकार की तरफ से होगी, कुछ पहल उसके बारे में की जाएगी?
1: हाँ बिल्कुल होगी, और आपने सही विश्लेषण किया कि जो क्वेश्चन आवर हैं ये तो सांसदों का अधिकार है ना, सांसद चाहे बीजेपी के हों और चाहे कांग्रेस के हों, चाहे इंडिपेंडेंट एमपी हो चाहे किसी और दल के हों, उनका उनका अधिकार है, उनका अधिकारी में माना जाता है। तो हम तो चाहते हैं कि प्रश्नकाल चले और जो विषय उनको उठाना है वो जीरो आवर में उठाएं, लेकिन वो प्रश्नकाल भी नहीं चलने दे रहे थे पिछले सेशन में, आपने देखा कई जगह ऐसा हुआ। हम तो अपील भी करेंगे जब हमारा ऑल पार्टी मीटिंग होगी फ्लोर लीडर्स की, उसमें भी बात करेंगे कि भी प्रश्नकाल जो है ये चलने दिया जाना चाहिए, आपको कोई विषय उठाना है तो जीरो आवर में उठाओ। रही बात आपके बिलों की, तो बिल भी पास करना सरकार का काम है, मैंडेट है सरकार को, दिया तो किसने है? सरकार को मैंडेट जनता ने ना, तो सरकार काम ही नहीं करे, सरकार को काम तो करना पड़ेगा। हमने बहुत समझा इसकी भी, इस पर चर्चा कर लो, आप भी डिबेट कर लो, इसमें कोई दिक्कत है तो आप बता दो। कुछ बातें जैसे उनकी होती है मानते भी हैं, जैसे एफसीआरए बिल का उन्होंने कहा कि इसको वहां भेज दो वहां भेज दो, माना, फिर उन्होंने काम चलाएंगे, फिर भी नहीं चलाते। तो अब क्या है इस समय कि जो फ्लोर लीडर हैं कांग्रेस के वो बात को सहमत हो जाते हैं, लेकिन जो लीडर है कांग्रेस के वो जब आते हैं तो फ्लोर लीडर फिर पीछे हो जाते हैं। यहां समस्या जो लीडर है कांग्रेस की उनसे है, कांग्रेस के लोगों को भी है, हमें भी है, हाउस के अंदर है, चर्चा होनी चाहिए ना। कांग्रेस के एमपीओं का क्वेश्चन नहीं होते हैं क्या? होते हैं, वो हमें कहते हैं कि यार आज हमारा पहला ही क्वेश्चन था, आता तो ठीक था, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से ये हमारे देश में चला जाता, हमारे क्षेत्र में चला जाता, ऐसा बोलते हैं वो।
0: लेकिन आज की स्थिति में तो विपक्ष बड़ा कॉन्फिडेंस में है, जिस तरीके से रोज सड़क पर उतर रहे हैं, राहुल गांधी का एक नया
1: कॉन्फिडेंस
0: रूप दिखाई दे रहा है,
1: झूठ के
0: जिस तरीके से पहली बार इस सरकार में किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ है, जेनजी का आंदोलन यहां पर नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी सोच रही है कि परसेप्शन से कैसे लड़ा जाए, क्योंकि ये जेनजी वास्ट दुनिया करके कुछ कह देते हैं, कुछ और कह देते हैं कि भाई ये थोड़ा सा सिलेबस के बाहर की लड़ाई है।
1: ये कब बने मुख्यमंत्री अपने मोदी जी? 2001 से। क्या चीजें देखी नहीं उन्होंने? सब चीजें देखी है, लेकिन उनके लिए कोई निर्णय लेने से पहले नेशन फर्स्ट है, खुद नहीं है जी, खुद का स्वार्थ उनमें है ही नहीं, इसलिए वो इतने समय से लगातार सत्ता में भी हैं और आगे बढ़ रहे हैं।
0: तो ये सब स्थिति का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
1: नेशन फर्स्ट पे हम निर्णय लेंगे,
0: जो आज की स्थिति बनी हुई है उससे कोई ज्यादा फर्क
1: नेशन फर्स्ट पे निर्णय लेंगे हम, उनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, उनके लिए परिवार फर्स्ट है, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, दोनों के विचारधारा में ये फर्क है।
0: चलिए हमारा समय खत्म हुआ है, लेकिन जाने से पहले एक सवाल तो आपसे पूछना बनता है, क्योंकि जब भी मैंने आपकी तस्वीर देखी है सदन के भीतर आने की, आप साइकिल पर चले आते थे कई बार, आपको बहुत अच्छा लगता है साइकिल चलाना, अब बहुत दिन से
1: अभी भी चलाता हूँ,
0: मैंने देखा नहीं आपको बहुत दिन से साइकिल
1: चला, अभी भी चला, अभी बीकानेर में चला के आया हूँ साइकिल।
0: सदन में आते हुए, पार्लियामेंट आते हुए,
1: सदन में मैं लगातार 2 साल चला ही हूँ साइकिल से, विदाउट फेल चला।
0: शुरुआत में मैंने देखा था
1: आप, नहीं, दो साल विदाउट फेल, फिर बाद में कुछ और परिस्थितियां आ जाती है, मैं एमपी था तो विदाउट फेल चला। हमारा तो एक साइकिल का क्लब भी बना था, मनसुख भाई मांडविया जी भी उस क्लब में थे।
0: कौन कौन है उस क्लब में?
1: केटीएस, नहीं वो अब केटीएस तुलसी और कई लोग थे उस क्लब में तो हमारा। लेकिन अब साइकिल तो मैं चलाता हूँ, लेकिन कोई पर्यावरण दिवस या साइकिल चलाने का विषय, संडे ऑन साइकिल में तो मैं आमतौर पर संडे ऑन साइकिल में साइकिल चलाता हूँ। आपने हमारे फोटो देखना, देखें संडे ऑन साइकिल में, हो सकता है इस बार के संडे में भी चला लूँ साइकिल में।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब शरद कुमार कुछ पूछना चाह रहे हैं, शरद जी।
2: सर, देश में जो एसआईआर का आंदोलन चल रहा था तो उसका जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आए, तो राजस्थान के निकाय चुनाव की सफलता का उदाहरण दिया उन्होंने, अभी पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या इसे कैश कर रहे हो आप एसआईआर आंदोलन से कि राजस्थान में हम चुनाव जीत रहे हैं, जल्दीबाजी नहीं हो जाएगी, पंचायत चुनाव के तो परिणाम बाकी हैं?
1: देखिए, उन्होंने ये कहा था कि निकाय चुनाव में इन सारी परिस्थितियों में हम राजस्थान में आगे रहे, इसका मतलब युवाओं ने भी हमें समर्थन किया, ये बात का वो उल्लेख कर रहे थे। अभी पंचायत के चुनाव तो अब आ रहे हैं, अभी हम आपको कह ही रहे हैं ना कि हमारी पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा का परचम फहराएंगे पंचायत चुनाव में भी।
2: मुख्यमंत्री रोड शो कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता गली गली घूम रहे हैं,
1: नहीं क्या मुख्यमंत्री जी को रोड शो नहीं करना चाहिए क्या? इसमें दिक्कत क्या है? करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे तब भी करते थे, मेरे को तो ऐसा लगता है करते थे, इसमें क्या दिक्कत है? कोई मुख्यमंत्री जी अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए जनता के बीच में जाते हैं तो इसमें मैं कोई गलत नहीं समझता हूँ, गलत है भी नहीं वो।
0: नहीं, क्योंकि सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि अमित शाह जी ने त्रिपुरा के स्थानीय निकाय चुनाव का उदाहरण दिया और कहा कि देखिए विपक्ष का इतना माहौल बनाना पूरा निरस्त हो गया, क्योंकि देखिए हम लोग तो बैलेट पेपर पर जीत गए। गांधीनगर में जो चुनाव हुए उसका भी उन्होंने उदाहरण दिया कि कहा देखिए 104 में से 90 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की आ गई। इसके लिए आप पर जिम्मेदारी ज्यादा हो गई है कि ये चुनाव जीतना बहुत जरूरी हो गया है बीजेपी के लिए?
1: वो सब ठीक है, जिम्मेदारी हमारे पे है ही और हम जिम्मेदारी को निभाना भी जानते हैं। ये जो बैलेट पेपर पे चुनाव हुए उस पर क्या कहेंगे जी वो, जब विपक्ष के लोग आवे तो उनको पूछना, आप ये रिवर्स गियर में क्यों जाना चाहते हैं जी? ये लाया कौन था जी ईवीएम? उनके जमाने में भी आई पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, उन्होंने ही इसको लागू किया, उन्होंने इसकी तारीफ करी, कसीदे कटे लोकसभा में ईवीएम मशीन ने, रिजल्ट का इंतजार नहीं करना। अब हुआ क्या ऐसा? जब सुप्रीम कोर्ट ने सबने कह दिया इसमें कुछ भी टेम्परिंग नहीं होती, फिर क्या हो गया? अब जब आपके कुछ जगह शायद बैलेट से ही चुनाव हुई उसमें भी कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब इनको जनता में जाना पड़ेगा जी। ये जो तकनीकी पॉइंट बना करके कहते हैं कि ईवीएम मशीन खराब है, वोट चोरी हो गई, वो काम की चोरी कर रहे हैं, उनको जनता के बीच में ज्यादा जाकर के काम करना पड़ेगा। काम की चोरी होगी तो फल नहीं मिलेगा भाई साहब। कर्मेण वादी कार्यस्ते मां फलेषु कदाचन वाला विषय गीता में तो है, कर्म को प्रधानता भी दी है, फल की चिंता मत करो ये भी कहा है, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, वो कर्म ही नहीं कर रहे ना, पब्लिक में जा ही नहीं पा रहे ना वो। ये जो अभी दिल्ली में हो रहा है वो तो हल्ला हो रहा है, अशांति का वातावरण हो रहा है, अव्यवस्था का वातावरण हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानना उसका हो रहा है। उसमें एक थॉट और है, हम सबसे ऊपर, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, हमें कोई कुछ पकड़ नहीं सकता, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये थॉट और है। इसलिए मैंने कहा हमारा सिद्धांत है नेशन फर्स्ट, उनका सिद्धांत है परिवार फर्स्ट।
0: ये लड़ाई तो लंबी चलेगी, अब आने वाले जो सेशन होगा, विंटर सेशन होगा, उसमें किस तरीके से आपका और विपक्ष का सामना होता है उस पर भी हम नजर रखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन
1: नहीं रखना साहिल जी, नजर रखना, अपन फिर मिलेंगे दिल्ली में।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इस मंच पर आए और आपने सभी सवालों के जवाब दिए, इसके लिए थैंक यू सर,
3: बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन राम। और आप सुन रहे थे अर्जुन राम मेघवाल को, जो बता रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी उनके मुताबिक देश का माहौल बिगाड़ रही है। उन्होंने कई सवालों के जवाब बेबाकी से दिए।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पंचायत आज तक राजस्थान में बोले केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल, कहा फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं। राहुल के पास कोई सबूत नहीं, परंपराओं को तोड़कर देश का माहौल खराब कर रहा है विपक्ष। ईसीआई के खिलाफ दायर राहुल गांधी समेत 13 नेताओं की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। एसआईआर फॉर्म 6 पर सवाल, जंतर मंतर और वकील, पत्रकारों समेत प्रदर्शनकारियों की 22 अर्जियां लिस्टेड। इंडिया गेट पर धरना दे रहे अंकिता भंडारी के माता पिता को हिरासत में लेने पर राहुल गांधी का पोस्ट, रात के अंधेरे में उठाया, परिवार के साथ हूं, बाद में पुलिस ने छोड़ा, धामी सरकार ने कहा निष्पक्ष जांच हुई। मानसा में एंटी ड्रग एक्टिविस्ट की हत्या के खिलाफ आज पंजाब बंद के समर्थन में उतरा विपक्ष, सीबीआई जांच की हो रही है मांग, आरोपी की हो चुकी है गिरफ्तारी, घर पर हुआ है बुलडोजर एक्शन।

लखनऊ के कारोबारी की संदिग्ध मौत में आरोपी श्रद्धा दुबे की कार नेपाल बॉर्डर से बरामद, सरहद पार भागने का शक। वीडियो जारी कर शिवा के सुसाइड का दावा किया। वीवीआईपी कनेक्शन की खबरों पर जताया एतराज़।

0: नमस्कार, आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्तवाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। लखनऊ के शिवा शर्मा मौत मामले में आरोपी श्रद्धा दुबे के नेपाल में होने की तस्वीर अब सामने आ गई है। आपको बता दें कि सीसीटीवी में श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और उसका दोस्त आदिल दिखाई दे रहा है। ये सीसीटीवी की फुटेज इस बात की तस्दीक करती है कि वो नेपाल के महीम नगर में देखी गई है। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद श्रद्धा, उसकी बहन और उसका दोस्त आदिल देश छोड़कर बॉर्डर पार कर नेपाल भाग चुके हैं, और अब सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद इस बात को माना जा रहा है कि शायद वो नेपाल में हो। लेकिन श्रद्धा ने जो वीडियो जारी किया उसमें उसने ये दावा किया है कि वो भागी नहीं है। वो पुलिस के सामने आके अपना बयान दर्ज कराएगी, लेकिन ये तस्वीर जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, एक सीसीटीवी की तस्वीर है जिससे ये साफ होता है कि वो देश छोड़ नेपाल जा चुकी है, क्योंकि ये नेपाल के माहिम नगर की तस्वीर है। सवाल ये है कि शिवा शर्मा, जो कि एक कारोबारी था लखनऊ का, उसकी मौत के मामले में जब श्रद्धा दुबे को ढूंढा जा रहा है तो वो नेपाल के महीम नगर में क्या कर रही है, और अगर इस पूरे मामले में उसे आरोपी बनाया गया है तो अपनी तरफ से अपना बयान दर्ज कराने के लिए क्यों नहीं वो पुलिस के सामने आ रही है, हालांकि वो वीडियो जारी कर रही है। हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। आशीष, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, पहले तो ये बताया कि कौन कौन है इस तस्वीर में और ये कहां की तस्वीर है, और पुलिस क्या मान रही है, इस तस्वीर से क्या साबित होता है? इससे हम बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जो कि एक सीसीटीवी का स्क्रीन ग्रैब नजर आता है, उससे ये साबित हो रहा है कि वो नेपाल के महीम नगर में देखी गई है, क्योंकि ये वहीं की तस्वीर है। और वो अकेली नहीं है, उसकी बहन रश्मि उसके साथ है, साथ ही उसका दोस्त आदिल उसके साथ है। और आपको बता दें कि श्रद्धा दुबे के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन है। एक कारोबारी जिसकी मौत हो गई, जो श्रद्धा कहती है अपने जारी वीडियो में कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन कारोबारी की मां यह दावा करती है कि श्रद्धा ने उसकी हत्या की है, उसको धक्का दिया है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से धक्का देकर उसको मारा है। श्रद्धा उसके बाद भाग गई, कारोबारी को अस्पताल भेजा गया लेकिन उसकी मौत हो गई। हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, पहले तो ये समझाएं कि ये तस्वीर कहां की है, कैसे सामने आई है और इससे क्या साबित होता है, पुलिस क्या मान रही है? आशीष, आशीष आवाज आ रही है? आशीष से हम संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है कि श्रद्धा दुबे की एक तस्वीर सामने आ गई है, जैसा कि हम आशीष बताएं।
1: जी, आवाज आ रही है। जी देखिए, जिस तरीके से श्रद्धा दुबे फरार हुई थी, उसके बाद उसकी जो गाड़ी है वो बॉर्डर के पास पाई गई थी, उसके बाद ये तस्वीर एसएसबी के पास की है जहां पर एसएसबी ने उसको देखा था, और यही कहा जा सकता है कि पुलिस को, यानी बहराइच पुलिस को ये सूचना दी थी और साथ ही साथ लखनऊ पुलिस को भी ये सूचना आई थी। उस दौरान ये दूर से जो टोल की होती है एक तरीके से, या चेकिंग की होती है, वहां से तस्वीर निकली हुई है जो अब सामने आई है। इसके साथ इसकी सहयोगी भी है और रश्मि जो इसकी बहन है वो भी अभी फरार है, वो भी इसकी मदद कर रही है। तो इन तस्वीर के जरिए ये जरूर कहा जा रहा है कि साफ तौर से कि वो नेपाल भागकर वहां से मदद लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कल जो वीडियो उसने जारी किया है उसमें कई बातें कही है, लेकिन ये तो साफ है कि वह अपनी गाड़ी को खड़ी करके, जो कि ब्लैक स्कॉर्पियो है, उसको खड़ी करके वहां से आगे की तरफ बढ़ी है, जिससे कि उसको कोई भी पकड़ ना सके और वो उसको मदद मिल सके। और ये तस्वीर आने के बाद पूरी तरीके से साफ हो गया है कि वह किस तरीके से एसएसबी और पुलिस को, सिक्योरिटी को चकमा देकर वह है नेपाल की तरफ गई। और इस हालांकि पुलिस, बहराइच पुलिस और जो लखनऊ पुलिस है, दोनों ने आपस में कोऑर्डिनेट करके एक टीम को वहां पर भेजा, यानी कि अब देश के बाहर भी हम कह सकते हैं कि नेपाल तक जो है पुलिस अब अप्रोच कर रही है श्रद्धा को पकड़ने के लिए। लेकिन वो लगातार जिस तरीके से वीडियो जारी कर रही है, वो माना जा रहा है कि वो अपने बचाव के लिए ये वीडियो जारी कर रही है। हालांकि पुलिस की टीमें अलग अलग दिशा में जो गई थी, जिसमें ये तस्वीर आने के बाद साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एसएसबी में जो चेकिंग होती है, वहां के जो टैक्स, टोल टैक्स होता है या जहां से जो टैक्स लिया जाता है, वहां की ये तस्वीर जो सामने आई है वो अपने आप में ही कहा जाता है कि बड़ी तस्वीर है। और इसी की वजह से श्रद्धा बचती हुई नजर आई है, क्योंकि उसके साथ में उसके सहयोगी भी मौजूद रहे हैं और अब पुलिस का शिकंजा उनकी तरफ भी बढ़ रहा है, कस रहा। तो ये तो साफ है कि श्रद्धा इस पूरे मामले पर अपने बचाव में वीडियो तो जरूर जारी कर।
0: आशीष, शुक्रिया इस जानकारी का। सीधा रुख करते पंचायत राजस्थान का।

0: क्या आपको ये डर दिखता है, डर लगता है?
1: देखिए, मुझे डर तो नहीं लगता, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पिछले 10-12 साल के कालखंड में पूरे विश्व भर में भारत की छवि को और पूरे विश्व के लोगों का भारत की तरफ देखने के नजरिए को, पर्सपेक्टिव टू लुक टुवर्ड्स इंडिया, इन दोनों को जिस तरह से बदला है और जिस तरह से पूरे विश्व में भारत मजबूती के साथ में एक नए आर्थिक क्षितिज पर भी, डिप्लोमेटिक होराइजन पर भी जिस तरह से एक मजबूत सितारे के रूप में उभर रहा है, इसलिए मुझे उसको लेकर के कोई खतरा हो ऐसा तो नहीं दिखता। लेकिन निश्चित रूप से भारत की जो पहचान है कि भारत सबसे पुराना लोकतंत्र है, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत सबसे सहजता के साथ में परिवर्तन करने वाले मतदाताओं का लोकतंत्र है, वहां जब इस तरह के प्रश्न भारत में और भारत के बाहर उठाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई दाग लगता है। चांद पे भी कहीं ना कहीं हमको दाग दिखता है, लेकिन वो दाग चांद की ओवरऑल शीतलता को और उसकी चांदनी को कहीं प्रभावित करे ऐसा होता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने के प्रयास 14 से लेकर के 18 तक किए गए, रफाल को लेकर के कितनी तरह से बातें की गई, और ये जान करके कि सारे दुष्प्रयास विफल हुए हैं, अब लोकतंत्र की जो आत्मा है, लोकतंत्र का जो मेरुदंड है, संविधान बचाने का नारा देकर के अपनी जेब में एक लाल किताब लेकर के संवैधानिक संस्थाओं के मानमर्दन का प्रयास करके अराजकता पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं, एक ऐसे कालखंड में जब भारत विकसित होने की दिशा में एक संकल्प की शक्ति के साथ में अग्रसर है और पूरा विश्व जब इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत विकसित हो सकता है और उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, भारत की आर्थिक प्रगति, अभी परसों वर्ल्ड बैंक ने आंकड़े जारी किए, आपने देखा होगा, सारी दुनिया के कयासों को झुटलाते हुए वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने और सभी लोगों ने, OECD ने, सब ने इस बात को माना है कि भारत की आर्थिक विकास की गति 7.1% रहेगी,

0: गतिविधियां निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक स्पीड ब्रेकर के रूप में अवश्य काम करती है, सिर्फ इतनी सी चिंता है कि हमारी गति उसके कारण से प्रभावित न हो।
1: आपको ये ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है? आपको नहीं लग रहा है कि आम लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए हजारों लाखों की संख्या में देश भर से लोग आ रहे हैं हमारे साथ आंदोलन में।
0: देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सेंटिमेंट एंड मूड ऑफ द पीपल उसको मापने का सबसे उत्कृष्ट पैमाना होता है उस समय में होने वाले चुनाव। राजस्थान में नगर निकाय के चुनाव हुए, 70% से ज्यादा स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है। उसके अतिरिक्त सीजेपी के आंदोलन से लेकर के अब तक के बीच में जितने प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, सभी जगह पर भारतीय जनता
1: पार्टी चुनाव वो कह रहे हैं कि वो चुनाव इसलिए नहीं जीत पा रहे हैं क्योंकि ये सब कर दिया है आप लोगों ने।
0: सभी जगह भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में जीती है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को खुल करके मत भी दिया, सहयोग भी दिया, समर्थन भी दिया। अब क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया है, ऐसे नकारे गए लोग इकट्ठे होकर के अपनी हार को अब जो है उसको चुनाव आयोग के मथे मंड करके अपनी हार से बाहर निकल करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं।
1: पर इसमें रास्ता कहां निकलेगा गजेंद्र जी? आप लोग कहते हैं कि ये चुनाव आयोग की बात है, उनका इस्तीफा मतलब वो एक स्वायत्त संस्थान। दूसरी चीज, सरकार जो है वो इस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से राजनीतिक ही मान रही है। आप लोग कह रहे हैं कि अपनी विफलता के कारण वो ऐसा कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे मैं पीछे हटूंगा नहीं, मेरे साथ कोई भी इंडिया गठबंधन का नहीं पीछे हटेगा। तो क्या रोज इसी तरीके से बस केवल प्रोटेस्ट ही होते रहेंगे?
0: देखिए प्रोटेस्ट होना, प्रोटेस्ट करना, बिना किसी आधार पर इस तरह के विषयों को खड़ा करना, झूठ को पैदा करना, झूठ को खड़ा करना, झूठ को चलाने की कोशिश करना, ये पिछले वर्षों में कांग्रेस की राजनीति में कोई नया विषय नहीं है। हम सब ने देखा है कितनी तरह के झूठ पैदा किए गए। आप सिर्फ इसको थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली सोच करके देखिए, 2014 के बाद से लेकर के अब तक जब कभी भी भारत और भारतवासी किसी विषय पर गर्व कर सके ऐसी परिस्थिति पैदा हुई होगी, ऐसी स्थिति हुई होगी। आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सब चीजों को फॉलो करती हैं, सब पे अपनी बात रखती हैं। हर उस मुकाम पर उस पर संदेह के बादल किस तरह से खड़े किए जा सके ऐसे प्रयास हुए। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया था, किसका मोरल डाउन हो रहा था? देश की सीमाओं का और देश के 140 करोड़ लोगों का। लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किया गया, आखिरकार वीडियोस आए और उस पर चुप्पी साध ली गई। एयर स्ट्राइक हुई, मैं कुछ बताता हूं आपको, एयर स्ट्राइक हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में जिस तरह से पूरे देश भर में उसको लेकर के जिस तरह की स्थिति बनी थी, लोगों को मन में जिस तरह से राष्ट्र के प्रति एक नई चेतना का अभ्युदय हुआ था, लेकिन उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए। नया संसद का भवन बना था उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए। इन सबको छोड़ दीजिए, कोविड के समय में हमने वैक्सीन बनाया और भारत ने वैक्सीन बनाया, पूरी दुनिया भर में उस वैक्सीन का लाभ हुआ, केवल भारत के नहीं, भारत के हम 140 करोड़ लोगों को सुरक्षा चक्र मिला, लेकिन दुनिया के लगभग 100 देशों को उसका लाभ मिला। और पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की वैक्सीन डिप्लोमेसी जो है उसके चलते हुए भारत की पहचान नए सिरे से और अधिक प्रबल हुई। उस वैक्सीन के लिए क्या कहा गया था कि ये वैक्सीन तो जो है बीजेपी की वैक्सीन है, ये तो आरएसएस की वैक्सीन है। ऐसे आप जितने अवसर उठा करके देख लीजिए, हर समय में जब कभी भी भारत का मान और सम्मान विश्व के पटल पर बढ़ने वाला हो, भारतवासी गौरव को अनुभूति कर रहे हो, तब इस तरह का शगुफा छोड़ा जाएगा।
1: तो अभी किस चीज से
0: अभी भारत जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, जिस तरह से भारत जो है स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म से लेकर के एशियन गेम से लेकर के इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म तक और डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म से लेकर के टेक्नोलॉजी के दुनिया में जिस तरह से प्रभुत्व स्थापित कर रहा है, भारत का मान और सम्मान विश्व के पटल पर बढ़ने वाला हो, भारतवासी गौरव को अनुभूति कर रहे हो, तब इस तरह का शगुफा छोड़ा जाएगा।
1: तो अभी किस चीज से
0: अभी भारत जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, जिस तरह से भारत जो है स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म से लेकर के एशियन गेम से लेकर के इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म तक और डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म से लेकर के टेक्नोलॉजी के दुनिया में जिस तरह से प्रभुत्व स्थापित कर रहा है, आज उसको डिमिनिश करने के लिए सब और ये

0: आपको लगता है कि यह आंदोलन कोई कैसे कह सकता है कि ऑर्गेनिक है? ये पूर्ण रूप से डिजाइंड तरीके से भारत की गति और प्रगति को रोकने के उद्देश्य से, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के देश की राजनीति में आने के बाद में राजनीति की धुरी जो है, पिवट जो है, वो विकास हो गया है। राजनीति पूरी विकास के इर्द गिर्द घूमने लगी है, और जब राजनीति विकास के इर्द गिर्द घूमने लगी और विकास का प्रभाव पूरी देश में सामान्य मानवी के जीवन में दिखाई देने लगा, 2023 के बीच में भारत ने में 49.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल गए। वो ये मानते हैं कि वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि भारत में जो अत्यंत गरीब की जो जो जो कैटेगरी थी, जो 16% से ज्यादा होते थे, वो 2.6% पे सिमट गए। ये प्रभाव जब दिखने लगा है, तब आपके पास में सरकार की आलोचना करने के लिए कोई विषय नहीं बचा है। इसलिए अपने लोकतांत्रिक हितों के लिए आप लोकतंत्र की आत्मा को मारने के लिए काम करें। मैं ये मानता हूं ये राजनीति नहीं है, राजनीति में एक पाप है, ये दुराचार भी है और पाप भी है, जो कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, पूर्ति के लिए कर रहे हैं, और कभी न कभी समय आने पर जनता इसका जवाब अवश्य मांगेगी।
1: हालांकि आर्थिक रूप से एक बड़ा कठिन समय भी इस पूरे विश्व के लिए इस समय है। युद्ध की परिस्थितियों को दुनिया के अधिकांश देश प्रभावित जिससे हैं, और उसका असर भारत पर भी पड़ता है। लेकिन अगर एक शांत माहौल, शांत परिस्थितियां, शांत देश दिखे, तो एक पर्यटन मंत्री को बड़ी खुशी हो सकती है कि वो दुनिया को न्योता दे सके। लेकिन अगर हम ऐसे प्रोटेस्ट देखते रहे, और सिर्फ एक दिल्ली में नहीं हो रहे हैं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो आप लोगों की प्राथमिकता में तो आता होगा कि किसी तरीके से कम एक रास्ता निकाला जाए कि सब सबके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस किया जाए।
0: श्वेता जी, मैं मानता हूं कि आपने भी सुना होगा कि जो सोया हुआ आदमी है उसको जगाना आसान है, लेकिन जो जानबूझ करके आंखें मिच करके सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाने के लिए तो शायद कोई रास्ता नहीं होता। और जो कुछ डिजाइन तरीके से होता है उसको, उनको अपना डिजाइन को पूरा करने के लिए, अपने एम्बिशंस को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वो निरंतर करेंगे, इससे कोई प्रभाव भी नहीं होता। मैं इस बात को भी स्वीकार नहीं करता कि दिल्ली से बाहर उसका बहुत बड़ा प्रभाव हो, क्योंकि मैं तो राजस्थान के गांव ढाणी में घूमने वाला व्यक्ति हूं। धरातल पर इस विषय को लेकर के 1% भी कहीं कोई संज्ञान नहीं है, कोई भी इस विषय को मानने को तैयार नहीं है, कोई भी इस विषय को लेकर के इसको रजिस्टर एक्नॉलेज करे ऐसी परिस्थिति नहीं है। दूसरा विषय पर्यटन को लेकर के, अभी मैं पिछले सप्ताह में माल्टा में वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने मुझे भेजा था, एंड WTTC का ग्लोबल टूरिज्म समिट इज एज गुड एज इकोनॉमी के लिए जो डाओस होता है, या पानी के लिए जो स्टॉकहोम वाटर वीक होता है, बिल्कुल ठीक वैसा है। पूरी दुनिया के इस क्षेत्र के हुज हु जितने होते हैं वो सब वहां होते हैं। पूरी 3 दिन की बैठक, मैं इसलिए नहीं कि मैं भारत सरकार का पर्यटन मंत्री हूं, वो लगभग ऐसा लगता था कि भारत जो है नेक्स्ट ग्लोबल डेस्टिनेशन है, ये सोच करके हुए। WTTC अपने हर साल के समिट में 2-3 साल में एक बार किसी एक उत्कृष्ट काम करने वाले व्यक्ति को या देश को पुरस्कृत करती है, उसको सम्मानित करती है। ग्लोबल चेंज मेकर अगर कोई कंट्री है, उसका रिकॉग्निशन भारत को दिया गया। दुनिया के 22 देशों ने अपने प्रपोजल किए थे कि नेक्स्ट मीटिंग जो है उनके यहां पे होनी चाहिए। फाइनली जब उनके बोर्ड पर लेवल पर आई थी, तब जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, कोरिया और भारत, ये 5 देशों के बीच में कंटेस्ट था। WTTC के प्लेटफॉर्म पर जितने लोग हैं उसमें, उसके बोर्ड में जितने लोग हैं उसमें से अमेरिका की तरफ झुकाव ज्यादा है, अधिकांश लोग अमेरिकन से, लेकिन फिर भी भारत में अगली WTTC की मीटिंग हो ये वहां निश्चित हुआ और उसका अगला मुकाम भारत को मिला। अगर टूरिज्म के टूरिस्ट के नंबर के दृष्टिकोण से देखूं, पूरी दुनिया में पिछले एक साल में इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ने जो ट्रैवल किया फॉर एनी पर्पस, एक देश से निकल के दूसरे देश में गए, यात्रा बिजनेस ओरिएंटेड भी हो सकती है, अदर पर्पसेस के लिए हो सकती है, लीजर भी हो सकती है, टूरिज्म भी हो सकती है, दैट नंबर इज 132 करोड़। भारत में उसमें से कुल मिलाकर के 22 लाख पर्यटक आए। भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में 3%

0: प्रतिशत से ज्यादा की ग्रोथ भी रजिस्टर की। लेकिन भारत के पास में जो डोमेस्टिक ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी है, पिछले 12 साल में जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ने ग्रो किया, इकोनॉमी की ग्रोथ के चलते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से भारत में बना, सड़कें बनी, नए न्यू एज रेलवे आई, नए एयरपोर्ट्स बने, लोगों के पास में इकोनॉमी की ग्रोथ के कारण से डिस्पेंसिबल इनकम हुई, सरकार ने टैक्स की स्लैब्स को बदला, 2.5 लाख से निकाल करके 12.5 लाख तक लेकर के गया, आप हम सबके जेब में कुछ पैसा एडिशनल बचने लगा। टैक्स में जाता था वो लगभग 2.5 लाख से 12.5 लाख के बीच की स्लैब में लोगों के पास 30,000 से लेकर के 2 लाख रुपए की सेविंग हुई। आप तो ये तो आप भी मानती होंगी। उसके आगे जो है जीएसटी में कटौती की, वन नेशन वन टैक्स से कैस्केडिंग टैक्स इंपैक्ट कम हुआ और जीएसटी में दरों के संशोधन 2 वर्ष पहले करने के चलते हुए लोगों के पास में डिस्पेंसेबल इनकम बचे। इन सब के चलते हुए देश में घरेलू पर्यटन कितना बढ़ा है, पिछले 1 साल में देश में डोमेस्टिक ट्रैवल फॉर एनी पर्पस, वो उसको कोई जो है आइडेंटिफाई नहीं करता, अलग अलग डिस्टिंक्ट भी नहीं करते, वो लीजर के लिए भी हो सकता है, ट्रैवल के लिए भी हो सकता है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है, बिजनेस के लिए भी हो सकता है, मेडिकल के लिए भी हो सकता है, वेडिंग के लिए भी हो सकता है, सोशल ऑब्लिगेशन के लिए भी हो सकता है, ऑफिशियल वर्क के लिए भी हो सकता है। कोई एक व्यक्ति घर से निकला, किसी होटल में रात को 1 रात तक बाहर शहर से रहा और वापस आया, इसको एक ट्रैवल विजिट अगर हम कंसिडर करें, ऐसी 429 करोड़ ट्रैवल विजिट हुई है, पूरी दुनिया का 3 गुना। इसलिए भारत की ये जो पर्यटन की ताकत है,
1: पर क्या ये विदेशी पर्यटकों की कमी को मेकअप करता है, या आपको लगता है अगर विदेशी पर्यटकों को और संख्या में अट्रैक्ट करना है, कुछ राज्य ऐसे हैं, देखिए राजस्थान उसमें है जहां विदेशी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा वो शहर हो जाता है जहां पर आते हैं, आपका हिमाचल में भी काफी हद तक, या फिर जो हिल स्टेट्स हैं हमारे, पर इसको एक विस्तृत रूप आप कैसे दे पा रहे हैं और क्या सुरक्षा का एहसास उसमें एक बहुत अहम चीज है?
0: देखिए दिल्ली, जयपुर और आगरा, ये टूरिज्म के इंटरनेशनल टूरिस्ट को लेकर के पिछले 30-40 सालों से स्थापित गोल्डन क्वाड्रेंट एंगल था, लेकिन भारत बियॉन्ड गोल्डन क्वाड्रेंट एंगल है, इस पर पिछले वर्षों में प्रयास हुआ, पिछले 2-3 दशक से प्रयास हुआ, पिछले 10 साल से हमने हमारे टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो ताकि ओवरऑल टूरिस्ट के जो है एमिनिटीज में सुधार हो, ट्रैवलर के एक्सपीरियंस को हम एलिवेट कर सकें, इस पर काम हुआ है। इसलिए ये जो गोल्डन क्वाड्रेंट एंगल पहले 85% टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता था, वो नंबर घट करके अब डिसेंट्रलाइज होने लगा है, अब लगभग 60% के आसपास रह गया, बहुत तेजी से इसमें बदलाव आ रहा है। भारत में पर्यटकों की संख्या बेशक 22 लाख होगी, लेकिन एक विषय जिस पर पहले चर्चा नहीं होती थी, पहली बार WTTC ने उसको रिकॉग्नाइज किया और उसके चलते हुए भारत का जो टूरिज्म ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो निकलती है TTDI की, जो भारत 2014 में 61वें पायदान पे होता था, वो पिछली बार 2 साल बाद में जब निकलती है 2024 में वो 39वें पायदान पे था और अब की बार हम और क्वांटम जंप लेकर के हम 31वें पायदान पे पहुंच गए। एक पर्यटक निकल करके दूसरे देश में जाता है, लगभग 100 मिलियन टूरिस्ट, 10 करोड़ टूरिस्ट फ्रांस में जाते हैं, छोटा सा देश माल्टा, वहां 45 लाख टूरिस्ट जाते हैं, थाईलैंड हमारा पीयर कॉम्पिटिटर है, वहां 40 लाख लोग जाते हैं, दुबई अगेन नया डेस्टिनेशन था, इमर्ज हो रहा था, वहां 25 लाख लोग जा रहे थे। भारत में बेशक 22 लाख लोग ही आते हैं, लेकिन एवरेज स्टे इन ए कंट्री फॉर ए ट्रैवलर, उसमें भारत हाईएस्ट नंबर पर है। एक ट्रैवलर अमेरिका जाता है, उसका एवरेज स्टे जो है वो 4.5 नाइट्स है। एक टूरिस्ट फ्रांस जाता है, उसका फ्रांस स्विट्जरलैंड मिलाकर के एवरेज स्टे जो है वो 6 नाइट्स है। एक ट्रैवलर थाईलैंड जाता है, वो 3 दिन रुकता है। जो ट्रैवलर माल्टा जाता है, 45 लाख लोग जाते हैं, उनका एवरेज स्टे जो है वो 1 नाइट है। जो दुबई जाता है, उसका वीकेंड डेस्टिनेशन है।
1: तो ये पहले से इम्प्रूवमेंट है।
0: भारत में 17 नाइट्स एवरेज, 17.5 नाइट्स जो है वो आज की तारीख में भारत का एवरेज ट्रैवलर का स्टे है, भारत में जो विदेशी आता है। इसलिए भारत में स्टे बढ़ा है, भारत में कुछ एमिनिटीज को हमने एड्रेस किया, उसको लेकर के हमारा जो है TTDI जब जिन पैरामीटर्स पर रैंकिंग डिसाइड करती है, जिसमें हमको 31वां रैंक मिला है, उसमें छह पैरामीटर्स, 18 में से छह पैरामीटर इसमें, जिसमें हम पहले पांच स्थान पर हैं, जो डेटा शेयर करने इसके दृष्टिकोण से लेकर के, और उसके अतिरिक्त हाईएस्ट नंबर ऑफ नाइट स्टे में हम पहले नंबर पर हैं। इसके अलावा 10 पैरामीटर ऐसे हैं जिसमें भारत टॉप 6 में आता है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स हमारे लिए चुनौती हैं, जो हमारे आज इंटरनेशनल ट्रैवलर्स का नंबर बढ़ने में भी एक बाधा बनी है। वो है हमारा पर मिलियन काउंट कर लें, पर 100,000 काउंट कर लें, के पॉपुलेशन के विजाविज हमारे यहां पर नंबर ऑफ रूम कीज जो होता है, होटल्स जो हैं, उसमें हम जो है बहुत पिछड़े हुए। आज से 5 साल पहले ऐसी परिस्थिति थी, और यह कहा जाता था, आई नेवर वेरीफाइड द डेटा, पर टूरिज्म की दुनिया में यह बात करते थे, भारत में टोटल नंबर ऑफ रूम्स इन 5 स्टार एंड 4 स्टार होटल्स टोटल पूरे देश भर के, विजेविज न्यूयॉर्क के पूरे शहर के सारे होटल्स के 5 स्टार नंबर ऑफ रूम्स 5 एंड 4 स्टार के, न्यूयॉर्क हमसे आगे था, एक शहर। उसको एड्रेस करने के लिए भी हमने पिछले 2-3 साल में काम किए। भारत सरकार ने हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया, ताकि बैंकेबिलिटी इंप्रूव हो जाए, लोगों का रीपेमेंट पीरियड 6-7 साल से 25 साल तक चला जाए। दूसरा, हमने स्टेट्स के साथ में एंगेज किया, नीति आयोग के साथ बैठ करके एक बेस्ट प्रैक्टिसेस का डॉक्यूमेंट बनाया, और हॉस्पिटैलिटी इन्वेस्टमेंट को और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे ला सकते हैं, सारे बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करके स्टेट्स को ट्रू सेंस में सिंगल विंडो कैसे आ सकता है, इस पर काम करना शुरू किया। तीसरा, हमने सारे स्टेट्स के जो इंसेंटिव स्टेट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर हॉस्पिटैलिटी इन्वेस्टमेंट इन टू हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने स्टडी किया, मेरा प्रदेश राजस्थान उसमें सबसे अच्छा था। हमने ट्रू सेंस में इंडस्ट्री स्टेटस दिया था, हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर जो सबसे बड़ा खर्च होता है रेकरिंग एक्सपेंडिचर, उस पर कैप लगाया था, हमने इन्वेस्टमेंट पर सब्सिडी देना तय किया था एक कैप लगा करके। मैंने सारे राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई किया, उनका एक कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट बनाकर सब राज्यों को दिया। आज मैं गर्व के साथ में ये कहता हूं, राजस्थान का निवासी होने के बावजूद भी आज राजस्थान से कहीं ज्यादा इंसेंटिव मध्य प्रदेश दे रहा है, उत्तर प्रदेश दे रहा है, मेघालय दे रहा है, आंध्र प्रदेश दे रहा है, और पिछले कोविड के बाद में, मैं वेरीफाइड डेटा बोल रहा हूं, किसी भी एक इंडस्ट्री में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बैंक से फंड होकर के गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया होगा, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, चिप मेकिंग में इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, सोलर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, फॉरेन डायरेक्ट फंडिंग आया होगा तो एनर्जी में इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, ग्रीन हाइड्रोजन में हुआ होगा, लेकिन किसी एक इंडस्ट्री में हाईएस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो हुआ है दैट इज इन टू टूरिज्म एंड ट्रेवल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमारे यहाँ होटल्स बन नंबर तेजी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
5: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
4: स्मॉल बैंक,
5: स्मॉल Privilege Savings Account, Garima Savings Account, Maxima Business, Edge Current Account, Business, Maxima Business, Privilege, RDF, there's nothing small about them.
4: Okay.
5: Ujjivan, nothing small about us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: SBI Celebrations Unlimited इस फेस्टिव सीजन को बनाए स्पेशल कार लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पे स्पेशल ऑफर्स के साथ।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार रोटी ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है।
4: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
3: कौन सी बनानी है?

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: एयू,
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आज तक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाला। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दूसरे धर्म में धर्मांतरण के बाद हिंदू जाति व्यवस्था के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति से जुड़ा व्यक्ति अगर दूसरे धर्म में धर्मांतरण करने के बाद उसी आधार पर आरक्षण का लाभ मांगता है तो उसे नहीं मिलेगा। कोर्ट के मुताबिक हिंदू जाति व्यवस्था के तहत मिलने वाली सामाजिक पिछड़ेपन की स्थिति धर्म परिवर्तन के बाद दूसरे धर्म की सामाजिक व्यवस्था में अपने आप लागू नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें तमिलनाडु सरकार के धर्मांतरित मुसलमानों को आरक्षण देने के फैसले को रद्द कर दिया गया था। तो आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मद्रास हाई कोर्ट का एक आदेश आया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखा है। इस आदेश के तहत अगर कोई शख्स अपना धर्म बदल लेता है और वो अनुसूचित जाति से होता है या उसको जो फायदे या जो लाभ मिलते रहे हैं उस जाति के होने की वजह से, वो धर्मांतरण के बाद नहीं मिलेंगे, उसके धर्म बदलने के बाद नहीं मिलेंगे। यानी कि आरक्षण खास तौर पर, जिसे लेकर के अक्सर विवाद उठता रहता है, कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि वो आरक्षण का हक बरकरार उसके लिए नहीं रहेगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आइए सीधा उसी का रुख करते हैं। खबर आ रही है कि एक हलफनामा दिया गया है दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि कानून बिगड़ने की, व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी और इसी वजह से कार्रवाई की गई। प्रदर्शन के मामले में पुलिस कमिश्नर का एक हलफनामा दायर किया गया है। हलफनामे में बताया गया है कि सीजेपी को अनुमति न देने की वजह यह थी कि कानून व्यवस्था बिगड़ने की एक आशंका थी और इसी के चलते उन्हें परमिशन या अनुमति उस वक्त नहीं दी गई जो उन्होंने मांगी थी। प्रदर्शन के मामले में पुलिस कमिश्नर ने यह हलफनामा अदालत के सामने दिया है, जब उनसे पूछा गया था कि क्यों नहीं उनको अनुमति दी गई। याद रखें कि सीजेपी ने अपनी तरफ से अनुमति पुलिस से मांगी थी, लेकिन वो मना कर दी गई थी। हमारे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, पुलिस कमिश्नर का दावा है कि अनुमति न देने की वजह कानून व्यवस्था के बिगड़ना हो सकता है, लेकिन पहले जो बात पुलिस की तरफ से कही जा रही थी वो ये थी कि 10 दिन का वक्त जो तय होता है वो नहीं पूरा था, तो अब क्या कहा गया इस हलफनामे में?
1: जी हाँ, जो फाइनल नया हलफनामा आया है उसमें ये कहा गया है कि ये अनुमति दिए जाने से कानून व्यवस्था बिगड़ने के चांसेस थे, आसार थे, और उस आशंका को देखते हुए अनुमति नहीं दी गई है। और साथ ही ये पहले ये दलील दी गई थी कि जो 10 दिन पहले अनुमति की याचिका दाखिल करनी चाहिए, जो एप्लीकेशन डाला जाना चाहिए, वो 10 दिन पहले नहीं, 2 दिन पहले मिला था, लिहाजा इतनी जल्दी सारे इंतजाम करना और एहतियाती उपाय करना उतना मुश्किल है। और अब ये कहा गया है कि अगर 10 दिन पहले भी दिया जाता तो मतलब अब के हलफनामे से यही पता चलता है कि अगर 10 दिन पहले भी दिया जाता, जिस तरह के हालात थे पिछले इनके आंदोलन से सबक लेते हुए पुलिस ने इसको अनुमति नहीं दी, क्योंकि पिछली बार 2 दिन की अनुमति मांगी गई थी और 17 दिन बाद जगह खाली कराई गई थी।
0: जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस को ये हलफनामा दायर आखिर क्यों करना पड़ा, क्या जानना चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट?
1: सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उस पर दिल्ली पुलिस और साथ ही मेट्रो रेल, रेलवे, इन सारे महकमों को जिनको पक्षकार बनाया गया था उनको नोटिस जारी किया था, उनसे स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी कि आप स्टेटस रिपोर्ट फाइल करिए। और उनका जो जवाब है वो सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा था कि वो कंप्रिहेंसिव जवाब फाइल करेंगे, सारे लोगों का मिला जुला जवाब फाइल करेंगे, लेकिन उसमें जो हलफनामे का जिक्र किया गया है वो हलफनामा दिल्ली पुलिस का यही है, जिसमें उन्होंने अपने इजाज़त ना दिए जाने को लेकर सही सही वजहें बताई हैं, कानूनी वजहें बताई हैं, व्यावहारिक वजहें बताई हैं।
0: जी संजय, आपसे जानना चाहेंगे, आज यही एक याचिका नहीं है जिस पर सुनवाई होने वाली है, बहुत अहम याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई होगी, थोड़ा उनके बारे में भी जानकारी दें।
1: जी हाँ बिल्कुल, आज 26 याचिकाएं हैं, तो कोई एक याचिका नहीं है, और 26 याचिकाओं में SIR से लेकर FIR तक बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं, जिसमें महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी का मामला भी है। इसके साथ ही जंतर मंतर को प्रोटेस्ट की जगह से हटा, उसकी सूची से हटा दिया जाना भी है, साथ ही इन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर भी है, और एसआईआर को लेकर तो है ही। एसआईआर में जो गड़बड़ियां की गई हैं उसके बारे में भी सुनवाई है, जो गड़बड़ियां करने के आरोप हैं उस पर भी सुनवाई है, और सीसी के इस्तीफे को लेकर, यानी उनको हटाया जाए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल दे, जो इनकी मांग है याचिकाकर्ताओं की, उन तमाम चीज़ों पर सुनवाई है। यानी 26 याचिकाएँ हैं, अलग अलग चीज़ों को कवर करने वाली, अलग अलग पॉइंटर्स के साथ वो याचिकाएं हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन 26 याचिकाओं पर बारी बारी से एक के बाद एक सुनवाई होगी। तो उम्मीद की जा रही है कि 12 बजे तक शायद वो मैटर आएगा, क्योंकि राहुल गांधी और अन्य की याचिकाएं 25 नंबर पर हैं और 22 नंबर से शुरू हो जाएगा मामला सुनने का। तो अभी थोड़ी देर पहले तक तो मेंशनिंग चल रही थी, और अब नॉर्मल जो मामले के कॉज लिस्ट में डाले गए हैं उन पर सुनवाई चल रही है।
0: जी शुक्रिया संजय, हमारी नजर रहेगी इस पर। अब बढ़ते हैं सियासी खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच चुनावी जंग लगातार जोर पकड़ रही है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यसभा चुनाव में कारोबारी धनराज परिमल नथवानी को टिकट देने पर अखिलेश यादव को आड़े हाथों ले लिया है, हमला किया है और कहा है कि मुस्लिम को राज्यसभा उम्मीदवार आखिर क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो लगातार पीडीए की बात करते आए हैं अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि मुंबई के धन्ना सेठ को टिकट बेच दिया, ये आरोप लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वो कह रहे हैं कि पीडीए यानी पराया धन अपना।
2: पूछना चाहता हूं समाजवादियों से, ये जो बोलते थे पीडीए पीडीए चिल्लाते थे, ये राज्यसभा के टिकट में वो पीडीए कहां चला गया था? और हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी का पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। और बहुत होगा तो पराया धन अपना। और आपने दोनों चीज यहां देखी होगी, उन्होंने दो प्रत्याशी बनाए, एक प्रत्याशी बनाया अपने चचा जान को रामगोपाल यादव को। अरे काशी गई किसी यादव को बना देते, गाजीपुर के बना देते, बलिया के बना देते, नहीं बनाया। दूसरी सीट पे किसी और को बना देते, किसी दलित को भेज देते, नहीं बनाया। और चलो अपने खानदानी वोट मुसलमानों को ही बना देते, वो भी तो नहीं बनाया। तो टिकट उन्होंने बेच दिया मुंबई के धन्ना सेठ को, हो गया ना परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और पराया धन अपना, दोनों साबित हो गए।
0: और उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कैडर को चुस्त और दुरुस्त करने की कवायद हो रही है। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो अनुशासन में रहें, कोई भी ऐसा व्यवहार न करें जिससे किसी को शिकायत का मौका मिले। प्रदेश व जनता के हित में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना जरूरी है, उनका कहना है। अखिलेश कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने और पारदर्शी व्यवस्था के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना जरूरी है। वो कह रहे हैं कि सभी लोग चुनाव के लिए तैयार रहें, चुनाव में समय बहुत कम रह गया है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव का। समर्थ, योगी आदित्यनाथ एक तरफ हमला बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर, पीडीए की एक और नई परिभाषा सामने रख रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी कमर कस रहे हैं और अपने काडर को कह रहे हैं सावधान रहिए, तो किस तरह की सियासी तैयारी चल रही है उत्तर प्रदेश में?
3: देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव ने कुल मिलाकर दस्तक दे दी है और यही नतीजा है कि दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ये साफ कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का पीडीए केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यानी कि आसान भाषा में अगर कहा जाए तो केवल परिवारवाद और पूंजीवाद के बेसिस पर इस बार राज्यसभा में समाजवादी पार्टी ने टिकट बांटे हैं। सीएम योगी अपनी रैलियों के जरिए ये बताने का प्रयास कर रहे हैं और पूर्वांचल का जो समाजवादी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड वोटर है उसको भी संदेश देते दिखाई पड़ते हैं और कहते हैं कि अखिलेश यादव ने गाजीपुर मऊ जैसे जिलों में किसी को राज्यसभा नहीं भेजा, अपने मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक को भी नहीं भेजा, भेजा किसको, परिवार से चाचा को भेज दिया और कहीं ना कहीं एक तरीके से एक बड़े आदमी को आपने टिकट दे दिया है। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत देते नजर आते हैं और अनुशासन का एक तरीके से पाठ पढ़ा रहे हैं, खासकर तब जब चुनाव स्तर पर है, खासकर तब जब समाजवादी पार्टी की रथ यात्राएं और रैलियां शुरू होनी है, जब समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो जमीन पर उतरेगा। ऐसे में अखिलेश यादव अभी से बताना चाहते हैं कि आपको अनुशासन में रहना है। अखिलेश यादव इस बात पर भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस करते नजर आते हैं कि हमें यह चुनाव कैसे भी जीतना है वरना बुलडोजर कभी नहीं रुकेगा। तो इस तरह की बातें अखिलेश ने कल पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने रखी हैं कि अनुशासन में रहें। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेती नजर आ रही है और कह रही है कि समाजवादी पार्टी तो पार्टी ही अनुशासनहीनता और हल्ला बोल की है, तो किस बिना पर अखिलेश यादव के इस पाठ को कार्यकर्ता पढ़ेंगे जिनकी नींव ही अनुशासनहीनता है। कहीं ना कहीं जो वार और प्रत्यारोप, आरोप और प्रत्यारोप है, उनके सियासी तीर, सियासी बाण छोड़े जा रहे हैं, फिर चाहे वो दल भारतीय जनता पार्टी का हो और चाहे समाजवादी पार्टी का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल पीडीए को आप देखेंगे तो पिछले एक महीने की कुछ रैलीज में, पिछले एक हफ्ते की कुछ रैलीज में लगातार पीडीए को लेकर आक्रामक है और उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी का पीडीए केवल दिखावा है और असलियत जो है धरातल पर कुछ भी नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है वो लगातार इस बात को कहते आए हैं कि ये आरोप जो है ये केवल बीजेपी ही लगा सकती है क्योंकि उनके अंदर खाने चीजें खोखली हैं।
0: जी चलिए सुन लेते हैं कि समाजवादी पार्टी, और आइए अब सीधा चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे।
2: वीडियो नेहा बोरा और राहुल गांधी का है और राहुल गांधी जब अपनी मार्च निकाल रहे थे, अराजक मार्च, उसमें नेहा बोरा को उन्होंने अपना फेस बनाया था। मतलब जो राहुल गांधी का विचार है वही नेहा बोरा का विचार है। और ये नेहा बोरा ने कल एक इंटरव्यू में कहा, जो आपके सामने मैं इस वक्त रख रहा हूं, कि ये इंस्पायर्ड है बांग्लादेश के आंदोलन से और जैसा बांग्लादेश के अंदर हुआ ठीक वैसा ही ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हो। लोकतांत्रिक विरोध नहीं परंतु अराजक विचार राहुल गांधी के हैं, क्योंकि एक तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे नेहा बोरा को अप्रोप्रिएट राहुल गांधी कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये वीडियो नेहा बोरा और राहुल गांधी का है और राहुल गांधी जब अपनी मार्च निकाल रहे थे, अराजक मार्च, उसमें नेहा बोरा को उन्होंने अपना फेस बनाया था। मतलब जो राहुल गांधी का विचार है वही नेहा बोरा का विचार है। और ये नेहा बोरा ने कल एक इंटरव्यू में कहा, जो आपके सामने मैं इस वक्त रख रहा हूं, कि ये इंस्पायर्ड है बांग्लादेश के आंदोलन से और जैसा बांग्लादेश के अंदर हुआ ठीक वैसा ही ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हो। ध्यान से देखिए, ये नेहा बोरा के शब्द हैं परंतु विचार राहुल गांधी के हैं, क्योंकि एक तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे नेहा बोरा को अप्रोप्रिएट राहुल गांधी कर रहे हैं और दूसरी तरफ वही नेहा बोरा कह रही है कि भारत के अंदर बांग्लादेश जैसा अराजक जेंजी आंदोलन वो चाहते हैं। मतलब साफ है कि बांग्लादेश में हुआ क्या था, एक ग्रुप ऑफ इस्लामिस्ट ने भीड़ के सहारे, अराजकता के सहारे पूरे के पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने का प्रयास किया। उनका मकसद रेजिम चेंज था। मतलब आज ये साबित हो चुका है कि राहुल गांधी जब लोकतांत्रिक रूप से अपने परिवार को सत्ता में नहीं ला पा रहे हैं, तो अब ये स्पष्ट हो रहा है कि राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम भारत में लोकतंत्र को तहस नहस करने की एक साजिश रच रहे हैं। ये पॉलिटिकल रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक एनार्किक मार्च है और एक एनार्किक रिवोल्ट है, और भारत का लोकतंत्र अराजकता को सहारा या अराजकता का समर्थन करने की इजाजत नहीं देता है। दूसरी, ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है। प्रशांत भूषण, जिन्होंने राहुल गांधी के साथ में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वो प्रशांत भूषण एक ट्विटर स्पेस पे ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि रेवोल्यूशन हो, जिसमें खून खराबे की बात कर रहे हैं। और ठीक 24 घंटे बाद उसी प्रशांत भूषण को राहुल गांधी साथ में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं। सो देयर इज अ सीरीज ऑफ पैटर्न विच पॉइंट्स दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ राहुल गांधी इज नॉट डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस, इट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ एनआरकी। इट इज नॉट डेमोक्रेटिक resistance, it is legitimization of anarchy. It is not democratic resistance, it's a fight against Indian state, Indian democracy. इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो भारत में लोकतंत्र में विश्वास रखता है, वो राहुल गांधी और उनके ecosystem द्वारा भारत के लोकतंत्र और भारत की चुनी हुई लोकतंत्र की सरकार और constitutional bodies के मन में के प्रति भारत की जनता में झूठ के सहारे अविश्वास की भावना पैदा करने की एक साजिश रच रहे हैं।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
7: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
8: एयू,
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: लव एंड केयर, द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट रेंज ऑफ रबर पेट टॉयज।
11: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
12: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
13: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
14: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
13: क्या?
14: इनकी राय।
15: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
16: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
17: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
16: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
4: In association with Hint, एक हिंट तो देते।
5: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
4: विमल, बोलो जुबां केसरी।
18: राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा मंच, जहां होगी युवाओं के मन की बात और मिलेगा युवाओं के हर सवाल का जवाब। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।

0: आ गया सोमवार और आ गए
1: चकमक चाचा।
0: हाँ चाचा, अखबार बाँच रहे हैं।
2: टेस्ट
0: चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चिचा कब जाएंगे?
2: अरे भैया उतस में हिस्सा ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा, हम अपना मुद्दा उठा चुके
0: हैं। अच्छा, कब उठाए?
2: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए।
0: अच्छा
2: हाँ, तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग तरह इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे, दन दन दन दन कर गया, ऐसा ये सब नहीं था अपना मामला
3: जी,
2: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
0: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है।
2: टूटा भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे कार्रवाई चलती थी दर्द होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर बोलता रखे था एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
0: अच्छा
2: और क्या,
0: आपका मतलब हम लोग डर जाते हैं?
2: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल, जहाँ पुलिस सिटी नहीं भेजे उसमें भागने लगता हूँ।
0: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही है।
2: किधर?
0: चाचा हम खेल गए अब की।
4: ये हिंदुस्तान है अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है। और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूँ, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए, इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूँ, दिल से प्यार से, देखिए मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए, इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस, और घबराइए मत। कोई डर रहा है?
5: नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं।
4: खुश हो?
6: यस सर।
4: शाबाश, लव यू।

0: दिल्ली पुलिस तुम लट्ठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन। डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
1: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
2: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
1: कितना घटिया था यार।
2: लप लप लप।

0: वोट खत्म कर दिए, बढ़ा दिए वो। उसके बाद जब पोलिंग हुई, पोलिंग के बाद मतगणना और मतगणना के बाद चेयरमैन का चुनाव, कई हफ्तों का गैप दिया। कलेक्टर एसपी को साफ बोल दिया गया कि इतने पार्षदों को लेकर आना है, उठाना है, दबाना है। मतलब पुलिस ने ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख लीजिए, हरियाणा बॉर्डर हो, राजस्थान के अंदर, पूरा जो कर सकते थे करा। लेकिन जो पब्लिक है, जो आपने कहा मत प्रतिशत, एक्चुअली व्हाट मैटर्स इज नंबर ऑफ वोट्स कास्ट। तो जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट है उसमें 1% से कम का डिफरेंस है। वहां पे जहां पे आपकी सरकार है, पूरी ताकत लगाई मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, बावजूद उसके जो शहर में, जो हमेशा लोग कहते थे कि भाजपा बहुत ज्यादा मजबूत है कांग्रेस से, सभी शहरों में मिला लीजिए तो बीजेपी से 1% से कम का वोट डिफरेंस है। हां, आपने कितने पार्षदों को दबाव में, लालच में, पुलिस और प्रशासन के दबाव में वोट करा लिया, क्योंकि इन चुनावों में देर इज नो प्रोविजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। यहां पर आप किसी पार्टी जीत कराओ, आप वोट डाल सकते हो, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। एमएलए एमपी को अपनी पार्टी के आधार पर वोट डालना पड़ता है। इन चुनावों में सरकार का डंडा चलता है तो लोग डर के या सहम के वोट डाल देते हैं, लेकिन नगर पालिका में वी हैव डन एक्सट्रीमली वेल। और पंचायत में श्वेता जी, हिस्टोरिकली हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस बढ़त में रही है। मुझे याद है जब मैं अध्यक्ष था, उस टाइम वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, उस टाइम भी 33 में से लगभग 14-15 जिलों में हमने अपना प्रमुख बनाया था। और इस बार तो हालत बहुत बदतर है। आप गांव में जाइए, नरेगा को बंद कर चुके हैं, खाद की किल्लत है, डीएपी जो है पुलिस के पहरे में दुकान से बट रही है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत विकास का अभाव है, लोग आक्रोशित हैं, खासकर नौजवान वर्ग जो है। और मत भूलिए, देश में जो चल रहा है, राजस्थान के लोग वो भी तो देख रहे हैं, जो केंद्र की सरकार ने मनमानी तरीके से पेपर लीक हो, बच्चों पे गोलियां चलानी हो, लाठीचार्ज करना हो। अब कल रात को धरना हुआ था इंडिया गेट पे, अंकिता के पक्ष में जो उनके माता पिता बैठे थे, वहां पर भी सुबह के 3 बजे लोगों को खदेड़ के बसों में भर के थानों में डाल दिया। तो ये सब जो तानाशाही का रवैया है, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा इन चुनावों के अंदर।
1: सचिन जी, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस पार्टी केवल बहाना ढूंढ रही है, उनको जनता नकार रही है, इसीलिए वो चुनाव और चुनाव आयोग के मथे ये सारे आरोप मढ़ रहे हैं।
0: ठीक, आरोप जब होता है जब उसमें कोई तथ्य नहीं होता, आप भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आपको फैक्ट्स, फिगर और डेटा के साथ कोई चैलेंज करे। अच्छा सर, मेरी बात छोड़ दीजिए, निर्वाचन आयोग में 3 कमिश्नर्स हैं, 2 लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे बिना पूछे ये कानून पारित किया है, एसआईआर का, वोट्स का। प्रोविजनल लिस्ट में 13,30,00,000 लोगों के नाम काटने की बात सामने आई है। तो जब मैं उदाहरण देता हूं आपको, बंगाल का ले लीजिए, बंगाल में वहां चुनाव संपन्न हो गए, 90,00,000 लोगों के वोट काट दिए। उन 90,00,000 लोगों में से 22,00,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी क्षमता थी, पैसा था या समय था कि वो जाके कोर्ट में अपील करें। 22,00,000 में से सिर्फ 1,00,000 पर कोर्ट ने चुनाव से पहले अपना निर्णय दिया। 95% लोगों के जो केस थे उसको कोर्ट ने सही माना कि आपका वोट बनता था, निर्वाचन आयोग ने गलत काटा है। अगर 95% लोगों के वोट गलत काटे गए हैं, आप अनुपात कर लीजिए 90,00,000 में से कितनों के जायज तरीके से, नाजायज तरीके से काटे गए हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया है मैंने, लेकिन वोट चोरी, एसआईआर, वोटर डिलीशन, ज्ञानेश कुमार ने जो किया गैर संवैधानिक है, इलीगल है, और ना सिर्फ उनको जाना पड़ेगा, कानून का सामना करना पड़ेगा, और जो निर्णय लिए हैं उन्होंने कुर्सी पर बैठकर, उन सबका दोबारा उस पर पुनर्विचार होना चाहिए।
1: राहुल गांधी किसी नए रूप में रोज प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं पीछे हटूंगा नहीं। कल एक नया बदलाव हमने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कभी खुलकर आप लोग एक साथ प्रदर्शन नहीं करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने उनके पक्ष में भी जंतर मंतर से जब डीनोटिफाई होने के बाद जब वहां से हिरासत में लिया गया सीजेपी के कुछ नेताओं को, तो उसके बाद राहुल गांधी उसके पक्ष में भी आए। क्या ये
0: जो कुछ गलत है श्वेता, उसको आप कैसे सही ठहरा सकते हैं? और इस देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी विचारधाराएं हैं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। अगर कहीं जाति होती है, किसी को आप जबरदस्ती उठा रहे हैं, धरपकड़ कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं, तो हम तो हमेशा बोलते आए हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं कोई हमारा विरोधी भी है अगर, पॉलिटिकल विरोधी, और उसके साथ गलत हो रहा है, उसका भी बोलना पड़ेगा। और चाहे वो कोई दल, कोई संगठन, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर आप न्याय की बात कर रहे हैं, आप पीड़ित के साथ खड़े हैं, आपको पुलिस प्रशासन डंडे मार रही है, केस कर रही है, आपको कस्टडी में ले रही है, उसका सब विरोध करते हैं। तो ये कहना गलत है कि पहली बार हम लोगों ने किया है। कांग्रेस हमेशा जो सही है उसके साथ खड़ी रही है, और विपक्ष में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, पूरे समूचे देश का जो विपक्ष है उसके प्रतिपक्ष के नेता है, तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि सबके साथ खड़े रहें जो उस लोग सरकार का विरोध करते हैं।
1: क्या ये प्रोटेस्ट उनको स्थापित कर रहा है इंडिया गठबंधन के सबसे अग्रणी नेता के तौर पर? ये मैं दूसरे तरीके से इसलिए आपसे पूछ रही हूं कि ये क्रिटिसिज्म तक हो गया कि देखिए एनएसयूआई के छात्रों को आपने आगे नहीं किया बल्कि ऐसा की एक छात्र को आप सबसे आगे रखते हैं। दूसरा एक आरोप लगाया गया कि आप कर्नाटक के मुख्यमंत्री को आप पीछे की तरफ धकेल देते हैं बाकी नेताओं के साथ दिख रहे हैं।
0: तो ये सब जो प्रोपेगेंडा है ये उस कार्यक्रम की सफलता को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो ऑनलाइन खिलाड़ी हैं उन्होंने बैठ के कुछ ना कुछ ऐसा निकाला कि इसका हाथ पकड़ा उसको साथ रखा नहीं रखा। मुद्दा यह था कि लाखों लोग दिल्ली में एकत्रित हुए। किस लिए एकत्रित हुए? वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के वर्कर नहीं थे, उसमें तमाम संगठन के लोग थे, लॉयर्स थे।
1: मंत्री ने कहा 8,000।
0: गृहमंत्री जी तो बहुत बातें बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम 50 साल तक राज करेंगे, वो तो बोल रहे हैं कि हम पंजाब में 29 तक नशा मुक्त कर देंगे। तो ये दावे जो हैं ये तो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पिछले 12 साल से लगातार दे रहे हैं, हर हफ्ते देते हैं, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, कालाबाजारी खत्म हो जाएगी, जाली नोट खत्म हो जाएंगे, तस्करी खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान चीन से बिल्कुल हम मुकाबला कर लेंगे। तो सब वादे खोखले रह गए। वो उनका आंकलन में मुझे लगता है खोखला ही है, क्योंकि जो वहां मौजूद थे, मैं वहां मौजूद था, जहां देखो वहां पर एक आम व्यक्ति सामने आया, मध्यम वर्ग के लोग, यंग लोग, प्रोफेशनल लोग, कुछ लोग जो पॉलिटिकल भी नहीं थे, उन्होंने कहा हम समर्थन कर रहे हैं कि हमें लगता है कि संविधान को ताक पे रखकर ये मनमानी तरीके से संस्थाओं के ऊपर अपना कैप्चर कर रहे हैं। संस्थाओं को जब आप पॉलिटिकल पार्टी कैप्चर कर लेती है तो निष्पक्षता खत्म हो जाती है, और लोकतंत्र गणतंत्र मजबूत तब है जब ये संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष हैं। हमारा देश, हमारी जमहूरियत दुनिया में क्यों जानी जाती है? चुनाव तो बहुत मुल्कों में होते हैं, लेकिन उदाहरण हिंदुस्तान का क्यों दिया जाता है? क्योंकि यहां जड़ों तक लोकतंत्र पहुंचा है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने इस बात को सुनिश्चित किया था। क्यों? क्योंकि हमारी जुडिशरी, हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो विचारधारा पार्टी से ऊपर उठकर है। अगर वो संस्था संदिग्ध हो जाए, प्रमाण के साथ उनकी चोरी पकड़ी जाए, तो पूरी प्रक्रिया पे लोगों का डाउट हो जाता है।
1: सचिन जी, अगर इसी हिसाब से हम देखें तो जैसे अर्जुन राम मेघवाल आज यहां हमारे मंच पर थे, उन्होंने कहा कि संविधान ही तो कहता है कि SIR होना है और उसके लिए एक निर्धारित समय सीमा है। तो 2026 में अगर हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? हम किस दबाव में क्यों रुके?
0: SIR तो देश में कई बार हो चुका, कभी इतनी चर्चा SIR की हुई है? SIR होता था, जनसंख्या बढ़ती है, मतदाता बढ़ते थे। इस बार SIR हुआ है पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करने के लिए। 13 करोड़ लोगों के नाम आप काट रहे हैं, और SIR करने का जो प्रावधान था, जो ERO होता है श्वेता जी, जो इलेक्ट्रॉल रिटर्निंग ऑफिसर होता है, वो SDM होता है, उसके पास वो शक्ति होती है वोट ऐड या डिलीट करने की। ज्ञानेश कुमार ने क्या किया, सबको सिस्टम से बाहर कर दिया, खुद के दफ्तर से बैठ के वो लोगों को ऐड और डिलीट कर रहे हैं। ये कहां तक न्याय संगत है? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये Form 6 में जो आपने जो किया है वो गलत किया है। अगर आपका प्रक्रिया, आपकी मंशा, आपकी कार्यप्रणाली संदिग्ध है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो इलीगल है और गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। SIR करनी है, ये तो पहले SIR होती थी, किसी को पता भी नहीं पड़ता था। इतना बवाल क्यों मच रहा है? क्योंकि लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और ये प्रमाण के साथ स्थापित हो चुका है। जैसा मैंने कहा, जो दो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, और वो मैं तो उनको लगता हूं सुदबुद्धि समय पर आ गई, उन्होंने, उनको पता था कि आज नहीं तो कल पोल खुलेगी, उन्होंने पहले बोल दिया भाई इससे हमारा कोई लेन देना नहीं है, अच्छा काम किया उन्होंने। तो ज्ञानेश कुमार जी को नैतिकता के आधार पर स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके रहते देश में किसी को विश्वास नहीं रहेगा कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे हैं।
1: एक वीडियो आपका भी बड़ा वायरल होता है जिसमें आपने कहा था कि नाम वोटिंग लिस्ट में, मतलब जिन डिलीशंस और डुप्लीकेशंस के विरुद्ध आप लोग आज बोल रहे हैं, वो चीज जब आपके समर्थन में नहीं आता है नतीजा, तो उस चीज को लेकर
0: नहीं मैं तो आपको
1: सवाल आप लोग उठाते हैं।
0: आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ज्ञानेश कुमार के समय जो भी कानून पारित हुए हैं उसमें चुनाव हुए हैं, कोई पार्टी जीती हो, चाहे मेरी जीती हो चाहे कोई और जीती हो, उसका रिव्यू दोबारा होना चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई जो हमको सूट करता है वो ठीक है, जो हमारे सूट नहीं करता वो गलत है। अगर प्रक्रिया गलत है, सबके लिए गलत है, एंड वी हैव टू रिविजिट एवरीथिंग दैट इज डन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट।
1: तो जब से उनके कार्यकाल की शुरुआत हुई उस समय से देखा जाएगा,
0: अगर कहीं कमियां दिखी जा रही हैं तो वहां से होना चाहिए। और ये तो ज्ञानेश कुमार के बनने के बाद, तो पहले वो, बाय द वे आप सब समझिए, ज्ञानेश कुमार इस देश में इकलौते व्यक्ति हैं जिनको आजीवन इम्यूनिटी मिली हुई है। कानून पारित कर दिया कि ये व्यक्ति पद छोड़ने के बाद भी इन पे कोई मुकदमा नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री पे हो सकता है, चीफ मिनिस्टर पे हो सकता है, थल सेना अध्यक्ष भी हो सकता है, लेकिन ये एक अकेले प्राणी है जिन पूरे देश में जिनको पद छोड़ने के बाद आजीवन तक कोई कानून की धारा पर लागू नहीं है। क्यों इनको लीगल प्रोटेक्शन दिया, क्यों? पहले तो नहीं था, क्या जरूरत पड़ गई? ज्ञानेश कुमार ने कहा होगा अगर मैं ये करूंगा तो कल मैं मारा जाऊंगा। सरकार ने कहा ठीक है, हम आपके लिए सुरक्षा कवच बना देते हैं, आप इम्यूनिटी मिलेगी लाइफ लॉन्ग आपको। मतलब जो व्यक्ति सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर है उसको लीगल इम्यूनिटी क्यों चाहिए आजीवन?
1: और दूसरी बात, ज्ञानेश कुमार ने पद संभाला,
0: एक जो प्रक्रिया होती है निर्वाचन आयोग को नियुक्त करने की, स्थापित प्रक्रिया थी कि प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेता प्रतिपक्ष, तीन लोग मिलकर तय करेंगे। ये कानून बदल दिया गया, चीफ जस्टिस को निकाल के एक मंत्री को डाल दिया गया, तो प्रधानमंत्री, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष अब दो एक का बहुमत सरकार के पास है, चाहे जिसको बना लीजिए आप। और हमने आपत्ति करी तो सुना नहीं गया। खैर, आपने ज्ञानेश कुमार को बना दिया। ज्ञानेश कुमार को बनाने के बाद आपने कानून पारित कर दिया कि इनको आजीवन, जब तक ये जीवित हैं तब तक इन पे कोई मुकदमा, कोई केस नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी कर लें। तो फिर उनसे सारे काम करा लिए। तो बजाय कि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को और स्थापित करते, उन्होंने एक दबाव बनाकर या लालच देकर ऐसे काम उनसे करवाए हैं जो शोभा नहीं देते, जो लीगल हैं।
1: ज्ञानेश कुमार के पद संभालने से पहले बीजेपी की सरकारें बन चुकी थी, केंद्र में भी आ चुके थे वो। इनफैक्ट 2024 में तो बाकी दो टाइम के बनिस्पत उनके कम हुए अंक, लेकिन उसके बाद ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल।
0: अच्छा कि आपने मुझसे पूछ लिया। आपने मेरी बातों में कहीं एक बार भी मैंने ऐसा कहा कि हम अगर चुनाव नहीं जीत पाए तो इसके लिए कोई और दोषी है? अगर जनता किसी को चुनती है उसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन चुनाव फ्री एंड फेयर हो ना। अभी 240 आए थे बीजेपी के 2024 में, 400 की बात करते थे वो, तो किन किन लोकसभा सीटों में कहां कहां वोट डिलीट हुआ, कैसे बदला हुआ, उसे भी जांच होनी चाहिए। बाकी जनता किस मर्जी को चुने, हम चुनाव हारे या जीते, लेकिन एक फेयर फाइट हो, और जो मतदाता उसको विश्वास होना चाहिए कि मेरा वोट सही जगह जा रहा है, मैं वोट का अधिकार रखता हूं, मैं 18 साल का भारत का नागरिक हूं और मुझे वोट मिलना चाहिए। तो इस देश में जो भी पेट्रियोटिक हिंदुस्तानी है वो चाहता है कि जो प्रक्रिया वो निष्पक्ष हो, बाकी हर चीज तो जनता तय करती है, और जो जनता तय करे हमको स्वीकार है।
1: पर इलेक्शन को लेकर सवाल तो 14 के बाद से लगातार उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से।
0: सवाल उठाए गए, लेकिन धड़ल्ले से चोरी नहीं पहले हुई है। जो ज्ञानेश कुमार जी ने किया है इतिहास में आज तक कभी किसी ने किया ही नहीं है। और मैंने आपको बताया उनके उनके निर्वाचन की प्रक्रिया, उनको कानूनी जो इम्यूनिटी दी गई वो, और जो बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर्स बोल रहे हैं वो तो कांग्रेस के वर्कर नहीं है ना, उनको भी सरकार ने बनाया था। मैं इन दोनों का नाम भूल रहा हूं, लेकिन बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर्स, और श्वेता जी निर्वाचन आयोग में तीन कमिश्नर हैं एंड दे आर ऑल इक्वल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज फर्स्ट अमंग्स इक्वल। अगर उसकी मनमानी थी तो फिर तीन बनाए क्यों, एक से काम चला लेते। तीन इसलिए बनाए थे कि या तो सर्वसम्मति से हो या दो एक का बहुमत हो। अगर वो अगला किसी बात ही नहीं कर रहा है, खुद ही मनमर्जी से कानून बना रहे हैं, तो बाकी दो की जरूरत ही क्या थी? तो ये सब सोच समझ के लोगों ने कानून बनाए थे, उनको ताक पे रखकर अपने मनमानी तरीके से उन्हें जो किया अब सबके सामने, अब पूरा देश देख चुका है, एक्सपोज हो चुके हैं।
1: इंडिया गठबंधन एक साथ दिख रहा है, सारे बड़े नेता जितने अलग अलग पार्टियों के हैं जो गठबंधन का हिस्सा है वो सब एक साथ साथ में मार्च करते हुए दिखते हैं, प्रोटेस्ट करते हुए दिखते हैं। लेकिन एक टीम को एक कैप्टन की जरूरत होती है, हर खिलाड़ी कैप्टन नहीं होता, ये मानते हैं ना? मतलब
0: मैच के दौरान चाहिए ना कैप्टन,
1: एक मुकाबले के दौरान।
0: मुकाबला हो रहा है और देखिए ये मैं
1: क्या राहुल गांधी आज अपने इस मुद्दे को लगातार निरंतर जैसे उठा रहे हैं उससे वो इंडिया गठबंधन के एक सबसे प्रमुख लीडर खुद को स्थापित कर चुके हैं।
0: ये हम लोगों को ना कभी हमने सोचा है ना करने की चेष्टा की है, लेकिन ये बात तो सिद्ध है कि राहुल गांधी जी इस देश के लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, समूचा प्रतिपक्ष उनके साथ खड़ा हुआ है। अब कौन आगे कौन पीछे तो जनता तय करती है, लेकिन ये बात भी सच है पिछले कई सालों से अगर कोई एक विपक्ष का नेता है जिन्होंने प्रधानमंत्री की आंख में आंख डालकर उनको चुनौती दी है, हर मुद्दे पर वो अड़े रहे, डरे नहीं, छापे पड़ गए, ईडी के केस हो गए, पूछताछ हो गई, न जाने कितनी बार उनको डिस्क्वालीफाई तक कर दिया लोकसभा से, लेकिन वो अपनी बात पे अड़े रहे, और आज जो वो कहते थे लगभग लगभग पूरा देश बात को मान रहा है। तो निडरता के पैमाने पर, संघर्ष और लड़ने के, अपनी बात को रखने के दम पर और लोगों के लिए खड़े होने के दम पर राहुल जी सबसे प्रमुख विपक्षी नेता हैं, ये बात तो मतलब जाहिर हो चुकी है। बाकी सब नेता भी साथ मिलकर लड़ते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी क्षेत्रीय दलों का जो योगदान है उसको कोई नकार नहीं सकता इंडिया गठबंधन के अंदर।
1: सचिन जी, आप भारतीय सेना के भी टेरिटोरियल आर्मी के एक अधिकारी हैं, देश हित की बात करते हैं। एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बांग्लादेश ने, बांग्लादेश के एक बड़े प्रमुख व्यक्ति ने एक ट्वीट किया था जब ये प्रोटेस्ट हुआ था, और उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश का समर्थन है। अब नेहा बोरा जो कि इस प्रोटेस्ट में साथ आगे आगे चलती हुई दिख रही है, उन्होंने कहा बांग्लादेश ने ही हमें राह दिखाई है। क्या भारत के प्रोटेस्ट्स को,
0: मैं नहीं जानता हूं कौन बांग्लादेशी है कौन पाकिस्तानी है, मैं तो भारत देश की बात करता हूं, और हम लोग चिंतित आज हैं अपनी अगली पीढ़ी के भविष्य के लिए। हम लोगों को जो देश मिला था, जहां चुनाव, लोकतंत्र, बोलने की आजादी, अपने विचार प्रकट करने का खुलापन जो हम लोगों ने इनहेरिट किया था, मैं चाहता हूं अगली पीढ़ी को वो मिले। आज जो हो रहा है, इतनी दबिश है, इतना खौफ का माहौल पैदा किया हुआ था। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं उन जेएनजी के बच्चों को, लड़के लड़कियों को, जिन्होंने जंतर मंतर बजाकर वो सारी

0: रेट है वो 1% है, जितने वो छापे डालते हैं लोगों को अरेस्ट करते हैं 1% कन्विक्शन रेट है। तो सिर्फ एक यंत्र बन गया डराने धमकाने का, लोगों को पाले में लाने का। विपक्ष में कुछ कहोगे तो आप पे छापे डलेंगे, जैसे ही आप भाजपा में आ जाओगे गंगा जल ला लिया जाएगा, बिल्कुल शुद्ध हो जाओगे। तो ये 10 साल से यही हो रहा है, इसको कौन नहीं जानता।
1: पर क्या देश के मुद्दों पर, देश के प्रोटेस्ट में किसी विदेशी, किसी दूसरे देश को इन्वोक करना सही है?
0: किसी को ना तो इन्वोक करना चाहिए ना किया होगा, मुझे पता नहीं किसने क्या ट्वीट किया है। आजकल सोशल मीडिया पे नाना प्रकार की बातें चलती हैं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का हित, हमारे देश की एकजुटता और हमारे देश के हितों से कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे। सरकार किसी की भी हो, देश पहले आता है, जनता पहले आती है, नागरिक पहले आते हैं, संविधान पहले आता है। पार्टियां तो बाद में है ना, पहले कानून है, देश है, संविधान है। संविधान नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा तो पार्टी को हम क्या करेंगे। तो मैं तो बाहर का कोई क्या कहता है, सब तरह की बातें बोलते हैं, कोई सरकार के पक्ष में बोलता है कि विरोध में बोलता है, लेकिन भारत के लोग, हम भारतीय हैं, हमें अपने देश की चिंता है और नौजवानों की चिंता है।
1: ये प्रोटेस्ट एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ अभी जब सदन शुरू होगा उस समय मुझे लगता है कि आप लोगों की भी कोशिश होगी कि ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध जो कार्रवाई होगी, चाहे इम्पीच करना चाहेंगे तो वहां पर आप लोग शुरू करेंगे। लेकिन दूसरी चीज है डिलिमिटेशन की बात। अभी मेघवाल जी जब यहां पर आए थे उन्होंने कहा भी कि डिलिमिटेशन बिल तो आएगा और अब तो उनके पास संख्या है, आप देख ही रहे होंगे।
0: देखिए, परिसीमन इस देश में पहले भी हुआ है, एक स्थापित प्रक्रिया है। पहले जनगणना होती है, जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बनता है, फिर आयोग अपनी सिफारिश सरकार को देता है और उसके बाद नोटिफिकेशन होता है। ये पहले भी हुआ है, लेकिन ये सरकार पहली बार ना तो इंतजार कर रही है जनगणना की, ना बना रहे हैं परिसीमन आयोग। ये परिसीमन का बिल लाना चाहते हैं और एक मैन्युफैक्चर्ड मेजोरिटी, लोकसभा में 240 सांसद भाजपा के हैं, कुछ समर्थक दलों के हैं। अब उन्होंने टीएमसी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, तमाम पार्टियों को तोड़ फोड़ के सारे एमपी इकट्ठे कर रहे हैं, एक मैन्युफैक्चर्ड मेजोरिटी बना रहे हैं। किस लिए? क्योंकि बहुमत नहीं है। और ये डिलिमिटेशन बिल जो लाने की कोशिश कर रहे हैं ये इलीगल है, क्योंकि जब तक परिसीमन आयोग नहीं बनेगा, उनकी सिफारिश नहीं आएगी, तभी तो आप लागू करेंगे उसको। जो उन्होंने राजस्थान में किया है, तोड़फोड़ करके अपने पक्ष में वार्डों को बना लिया, यही वो करना चाहते हैं। आसाम में किया, कश्मीर में किया, एक प्रक्रिया है, सेंसस चल रहा है, वो होने के बाद आप लेकर आओ, कौन मना करता है। लेकिन डिलिमिटेशन कर पूरे देश का मानचित्र बदलकर अपने पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने की जो बात कर रहे हैं वो गलत है, और एक बार पहले कोशिश की थी पार्लियामेंट में, नहीं कर पाए थे।
1: पर अंकगणित तो हो गए ना उनके पक्ष में,
0: आप तोड़ फोड़ के क्या हो सकता है। जो उनके साथ वाले हों उनके भी आंख खुल गई हो पिछले 2 महीने में, जो उनके समर्थन में है आज नायडू साहब हैं और नीतीश कुमार जी की पार्टी है, इन दो बैसाखियों पर सरकार चल रही है ना। 240 272 नहीं होता तो इन दो बैसाखियों से सरकार चल रही है। आप सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है, संविधान संशोधन के लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए, आप नाना प्रकार के दल तोड़ ताड़ के अपना बहुमत ले रहे हो, एक जबरदस्ती परिसीमन को थोप रहे हो, इसको कौन स्वीकार करेगा।
1: अच्छा, इसमें एक विडंबना भी है कि चुनाव के जो नतीजे आए उसमें वाकई भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं आया, लेकिन इलेक्शन मैल प्रैक्टिसेस का ठीकरा उन्हीं पर फोड़ा जाता है।
0: क्यों नहीं छोड़ा? अरे हो सकता है अगर मैल प्रैक्टिस नहीं होती, इतने भी नहीं आते, वो तो 400 बोल रहे थे ना, कम नहीं बोला उन्होंने।
1: पर अगर किसी को मैल प्रैक्टिस करना होगा तो पूरे 400 ले लेंगे वो।
0: तो बड़ी चतुराई से करते हैं।
1: अच्छा,
0: आटे में नमक मिला लो तो रोटी बन जाती है, लेकिन नमक में आटा मिला दो तो नहीं बनेगी ना रोटी। तो देख देख के करते हैं, जहां करते हैं। खैर, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं, जहां भी कमियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फला जगह ये हुआ, जांच होनी चाहिए, क्योंकि निर्वाचन आयोग को जो निष्पक्षता से, इंडिपेंडेंटली, पारदर्शिता से काम करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। आप उदाहरण देख लो, जो नोटिस मिलते हैं विपक्ष को मिलते हैं, डेट्स जो अनाउंस होती हैं लगातार चेंज होती रहती हैं, और जो एक कार्रवाई करने का तरीका है, पिछले चुनाव में श्वेता जी, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के सरकार ने सीज कर दिए खाते सीज कर दिए, और बिहार चुनाव में, चलते चुनाव में, सरकार को अनुमति दे दी गई कि आप महिलाओं के खाते में पैसे डाल दीजिए सरकारी खजाने से। तो ये सब जो काम है ये एक पक्षपात का एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक इलेक्शन कमीशन में हम कोर्स करेक्शन नहीं करेंगे, सुधार नहीं लाएंगे, ईमानदार, निष्पक्ष, निडर व्यक्ति नहीं बैठेगा, तब तक संचालन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा चुनाव का।
1: राजस्थान की तरफ हम बढ़ते हैं, यहां पर एक आंकड़े के साथ जो यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दावा किया कि 2.5 साल में संकल्प पत्र के 78% वादे बीजेपी सरकार भजनलाल सरकार की तरफ से पूरे किए जा चुके हैं और सरकार

0: कह रही है कि जो 1,90,000 से अधिक पद पर नियुक्ति की गई है, 1,22,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो अब अगला जब चुनाव होगा, जब हम कहते हैं कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का साइकिल यहां चलता है, वो अब खत्म होने वाला है, आपको लग रहा है?
1: वो तो आपको पता पड़ जाएगा, ये आंकड़े भी सरकारी हैं और ये सिर्फ आंकड़े ही हैं, हकीकत कुछ और है। एक उदाहरण ले लीजिए आप, अभी हमारे यहां पंचायत चुनाव चल रहे हैं, सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री भाजपा के, उनके सुपुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने टिकट बीजेपी से नहीं लिया, निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव, ये बोल के कि भाजपा के सिंबल में जीत नहीं पाऊंगा इसलिए मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा हूं। इतना विश्वास इस वर्तमान सरकार के वर्तमान मंत्री के खुद के पुत्र को अपनी पार्टी के ऊपर है। तो गांव के अंदर हालात बहुत अलग तरह के हैं। ये जो वादे किए गए, वादे तो किए थे 4 लाख नौकरी के पहले बजट में, आज 3 साल होने को आए हैं, कितनी दी हैं? और जितना पेपर लीक पूरे देश में हुआ, नौजवानों के साथ जो एक अविश्वास पैदा हुआ है, लोगों ने उम्मीद की थी सरकार बनने के समय, लोगों ने कहा था भाजपा ने, हम सरकार आने के बाद नौजवानों के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करा नहीं पाए, क्योंकि गलती मुख्यमंत्री के अकेले की नहीं है, वो करना भी चाहे तो यहाँ इतना खींचतान है आपस में कि सरकार अधिकारी चला रहे हैं, प्रभावशाली मंत्री चला रहे हैं, या दिल्ली से चल रही है, या मुख्यमंत्री खुद चला पा रहे हैं, ये बड़ा असमंजस है यहाँ पर। और भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, लेकिन जो देश भर में उनके ग्राफ में जो डिक्लाइन आया है, उसका प्रभाव राजस्थान में भी पड़ेगा।
0: पेपर लीक जैसे मुद्दों पर यहां पर आप बेहतर देख रहे हैं? आपकी सरकार के समय जितनी संख्या में पेपर लीक हो रहे थे, भजनलाल सरकार का यह भी दावा है कि 2.5 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जो कि
1: दावे अलग होते हैं, लेकिन देश में जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ युवाओं का, वो इसलिए हुआ कि ना सिर्फ पेपर लीक हुए, पेपर कैंसिल हुए, और जो चेकिंग मार्किंग है उसमें भी गलफत पाई गई, तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये मुद्दा राष्ट्रीय लेवल पर कब उठा? भाजपा की सरकार में उठा ना, कांग्रेस सरकार तो नहीं थी। और हालात बेहतर तब होते हैं श्वेता जब जीरो पेपर लीक होता है, 2-4 हो गए ये तो छोटी बात है, ऐसा नहीं हो सकता ना। किसी भी पेपर को आप अगर ढंग से आप कंडक्ट करें तो लीक होना ही नहीं चाहिए, इट शुड बी जीरो टॉलरेंस।
0: नहीं, पर राजस्थान में तो नहीं हुआ ना?
1: राजस्थान में पिछले साल भर में परीक्षाएं बहुत कम हुई हैं, जो एक आध हुई हैं उन्होंने कैंसिल कर दी हैं, और जहां आरोप लगे हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा इस प्रकार का नेशनल लेवल मुद्दा है राजस्थान से अभी तक नहीं निकला है। उम्मीद करता हूं कि यहां पे कम की जगह जीरो पे हो जाए।
0: तो जेन जी का पूरा रुझान आप देख रहे हैं बीजेपी से अलग हटता हुआ, आप कह रहे हैं जो युवा पीढ़ी है, पर क्या वो कांग्रेस के पक्ष में आता हुआ देख रहे हैं?
1: आपको क्या लगता है?
0: मुझे तो अभी चुनाव का इंतजार करना होगा, चुनाव पर विश्वास आप लोगों को है नहीं?
1: ऐसा है, चुनाव में विश्वास है, चुनाव आयोग पे नहीं है।
0: क्योंकि जेंसी प्रोटेस्ट के बाद के चुनावों की
1: मैं समझ
0: संख्या
1: चाहता
0: भी
1: हूं,
0: बीजेपी
1: आप
0: गिना
1: गलत कह
0: देती है
1: रही
0: ना
1: हैं,
0: फिर?
1: चुनाव पे पूरा है, इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, हमें चुनाव पे पूरा भरोसा है, चुनाव आयोग पर नहीं है, मुख्य चुनाव आयोग पर नहीं है, इस वाले पे नहीं है। ये बात पहली बात, चुनाव हो कोई भी हारे जीते, हम लोग बहुत चुनाव जीते हैं, कुछ हारे भी हैं, बड़ी बात नहीं है, पक्ष में हो विपक्ष में अपना पॉलिटिकल काम हमें करना है, लेकिन जो चुनाव करवाने वाले लोग हैं उनकी मंशा, उनका चरित्र, उनकी कार्यप्रणाली अगर संदिग्ध है तो आप कैसे कर सकते हैं? अब मैच में रेफरी भी आपका साथ दे रहा है, विपक्ष भी आपको मिला सब, तो आप क्या मैच खेलेंगे? अगर आप न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी तो फिर फायदा ही क्या है? मैं चाह रहा हूं अभी चुनाव आएंगे यूपी में, पंजाब में, उत्तराखंड में, उससे पहले कोर्स करेक्शन हो जाए, और जो चुनाव हो तो सबको विश्वास हो, मतदाताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज को, कि जो भी हो रहा है ढंग से हो रहा है, लोग मन से अपना वोट डाल रहे हैं, किस मर्जी को डालें, कोई भी हारे जीते पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है।
0: और न्यायालय पर कितना विश्वास? क्योंकि
1: अब
0: जब
1: सुप्रीम कोर्ट ने हमने याचिका डाली है,
0: सीजीआई ने कहा कि नहीं मिल सकते हैं, उसके बावजूद बड़ी संख्या में अगर प्रोटेस्टर्स वहां पहुंचते हैं,
1: तो सुप्रीम कोर्ट से हम क्या लेने जा रहे थे?
0: नहीं, अपना
1: न्याय मांगने जा रहे थे ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है, आप अपनी बात लिखित में दे दीजिए, हमने लिखित में दे दी, इसमें क्या बुराई? एंड सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट रिजॉर्ट ना, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ नहीं है, और मुझे तो पूरा भरोसा न्यायपालिका में है। इन दिनों में कुछ मुझे दिख रहा है कि न्यायपालिका में भी कुछ जान आई है, पब्लिक का समर्थन देख के, तो वो भी कुछ ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो थोड़ा मुझे लग रहा है कि अब सही दिशा में जा रहा है। बाकी हर आदमी इंसान होता है, हर आदमी का परिवार है, हर आदमी को अपना व्यक्तिगत चिंता रहती है, और सरकार बड़ी बेरहमी से दबाव डालती है तो बड़े बड़ों को इधर उधर होना पड़ता है, लेकिन न्यायपालिका में पूरा भरोसा है मुझे। हमने पीआईएल डाली है सुप्रीम कोर्ट में परसों के दिन, 3 दिन पहले, उम्मीद करता हूं कि न्यायपालिका जो है निर्णय लेगी और जनता के पक्ष में निर्णय लेगी। ये बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये देश के हित में हम लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट की सुप्रीम कोर्ट से।
0: केरला कांग्रेस की तरफ से जो एक ट्वीट किया गया था, यानी कि वो किसी एक व्यक्ति का मत, आप कह रहे हैं, जिसको डिलीट करना पड़ा, जो जस्टिस सूर्यकांत को लेकर जो लिखा,
1: मेरी जानकारी में कि उसको डिलीट कर दिया होगा जो भी किया होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं, मैं नहीं, मेरा व्यक्तिगत मानना है किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का अगर हम आरोप लगाएं तो तथ्य के साथ लगाना चाहिए और अपनी भाषा में अपने शैली में संयम होना चाहिए। और अगर एक दूसरे का रिगार्ड हम नहीं करेंगे तो फिर हम क्या उदाहरण दे रहे हैं बाकी लोगों को, बाकी जनता को? तो बहुत शालीनता से, संयम से और सादगी से, ह्यूमिलिटी से हम लोगों को अपनी बात एक दूसरे से रखनी चाहिए।
0: सचिन जी, जिस दिशा में ये प्रोटेस्ट जा रहा है उसमें आप एक निष्कर्ष देख रहे हैं? आप लोग ऐसा प्रेशर बनाने में कामयाब अपने आप को देख रहे हैं, मजबूत देख रहे हैं कि वाकई जो चाहते हैं वो हो जाए?
1: श्वेता जी, हम
0: और ये किस रास्ते से होगा?
1: हम प्रेशर ये बना रहे हैं कि हमको वोट डाल दो, नहीं। प्रेशर इस बात का है भाई चुनाव ईमानदारी से कराओ। हम तो अपना कैंपेन नहीं कर रहे, हम तो वोट तो चुनाव 2.5 साल के बाद है। हम तो ये चाह रहे हैं कि अब तक जो चोरियां पकड़ी गई हैं, कृपया करके भविष्य को अंधकार में मत ढकेलो, इन व्यक्ति का इस्तीफा लो, एक निष्पक्ष व्यक्ति वहां पर आए, पूरा जो पहले गलतियां की हैं उसको समाधान हो और एक फेयर चुनाव आगे हो, विधानसभा के, लोकसभा के। ये हमारा प्रेशर किस बात
0: इसके लिए चुनने वाली जो वो जो कमिटी रहेगी उसमें भी बदलाव के लिए
1: होना चाहिए। अगर 2-1 का बहुमत है, सरकार प्रधानमंत्री मंत्री है और नेता प्रतिपक्ष है, तो फिर 2-1 के बहुमत से आप किस मर्जी को, देयर वाज अ रीजन व्हाई चीफ जस्टिस को वहां डाला गया था ना। चीफ जस्टिस है, पीएम है, नेता प्रतिपक्ष है, ठीक है भाई, 3 में से 2 लोग कहेंगे बन जाएंगे। अगर सरकार को खुद ही करना है तो फिर कमिटी की जरूरत क्या है, आप ऐसे ही नॉमिनेट कर दीजिए। ये सब चेक एंड बैलेंस आज से नहीं है, 70 साल से थे, समझदार लोगों ने बनाया था ना कि भाई सरकार का बहुमत है तो मनमानी नहीं चलेगी, ये निर्वाचन आयोग किसी पार्टी विचारधारा से ऊपर होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस को रखा गया था उसमें, क्यों हटाया उनको, किसके कहने पर हटाया? और अगर आपको कमेटी में अपनी मनमानी करनी है तो कमेटी खत्म कर दो, आप ऐसी नियुक्त कर दो किसी को भी।
0: निष्कर्ष अदालत से ही आएगा,
1: आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आज इसके ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कहां अपील करेंगे, लेकिन न्यायपालिका में हम सबको भरोसा है, इसीलिए हम लोगों ने लिखित में अपनी याचिका दायर करी है, सभी विपक्ष के लोगों ने मिलकर ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, कि भाई एक नया व्यक्ति आएगा तो हम सबको एक उम्मीद रहेगी कि यहां पर अब ईमानदारी से काम होंगे।
0: ईवीएम से लेकर सीईसी तक चुनाव प्रक्रिया और चुनाव की तरीकों को लेकर जितने सवाल उठे हैं, क्या उसका अंत होगा?
1: देखिए, अगर जवाब ईमानदारी से और निष्पक्षता से आएगा तो क्यों नहीं होगा, सब चीज का समाधान है, लेकिन मंशा होनी चाहिए। आप सिर्फ बात को टालने के लिए करें या बचाव किसी का करें और दिखावा करें तो वो मैं समझता हूं जायज नहीं है। अगर आप हकीकत, तथ्यों, आंकड़ों पर जाकर निर्णय करेंगे तो कौन उस बात को नहीं मानेगा?
0: और इसके बीच कांग्रेस की जो सरकारें आई, विपक्षी दलों की जो सरकारें आई,
1: यही तो मैंने कहा, जो अब चुनाव आएंगे फरवरी में उससे पहले सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपटना चाहिए। और ये ज्ञानेश कुमार जी का इस्तीफा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इस देश में जब उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो सकता है तो ज्ञानेश कुमार का क्यों नहीं हो सकता? अस्तित्व की तो बात है, संवैधानिक संस्था है, ठीक है, लेकिन हमारे राजस्थान के थे धनखड़ साहब, उनका तो इस्तीफा हो गया 1 मिनट में उपराष्ट्रपति का, इनका क्यों नहीं हो सकता?
0: चलिए, आपके इसी प्रश्न के साथ हम अपनी इस चर्चा को समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद सचिन,
1: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: How's the hostel? Settled?
5: Yes, Mark, really nice.
4: कोई आ रहा है क्या?
6: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभा ली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
4: मयंक, फॉर रियल?
6: 1 कैरेट फॉर माय 1 ट्रू लव। नेचुरल डायमंड रियल लव सॉलिटेयर्स टू रीइग्नाइट योर न्यू सीजन ऑफ लव।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: अरे उधर
2: उधर करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तुम ठुमका लगाने पर
2: मेरे पास एक आइडिया
1: क्या
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
3: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है
5: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है
6: कौन सी बनानी है
7: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
4: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
5: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
6: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
5: क्या?
6: इनकी राय।
7: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
8: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
9: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
8: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी। सो I wake up wearing someone else again.

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस
2: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
3: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: कौन सी बनानी है
7: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
1: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
2: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
3: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
2: क्या?
3: इनकी राय।
4: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेंट, निर्माण का रियल हीरो।
5: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
6: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
5: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

हिंसक उपद्रव से प्रेरणा लेने वाले नेहरा वोरा बयान के बहाने बीजेपी का सीधे राहुल गांधी पर अटैक। कहा नेहा और नेता विपक्षी सोच एक जैसी, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें पोस्टर गर्ल बनाया।

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस कमिश्नर का हलफनामा, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका के चलते ही नहीं दी गई सीजेपी को प्रदर्शन की परमिशन, केंद्र के अनुरोध पर खास इलाके में बंद किया गया इंटरनेट। जेएनयू के बर्खास्त प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद बिमोल की संसद से सदस्यता खत्म करने के लिए स्पीकर से मिले बीजेपी महिला सांसदों का डेलीगेशन, ओम बिरला को सौंपी अपनी मांगों की चिट्ठी। आमिर खान के भांजे और एक्टर इमरान खान को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का नोटिस, यूएस की नागरिकता होने के बावजूद मुंबई में प्रोटेस्ट में शामिल होने की वजह से मुंबई पुलिस का यह एक्शन।

सीएम योगी ने राज्यसभा के टिकट को लेकर अखिलेश यादव पर साधा है निशाना, कहा कि अपने खानदानी वोटर मुसलमानों को ही बना देते उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने पीडीए नारे पर सवाल उठाते हुए सीएम योगी ने कहा कि टिकट बंटवारे में पीडीए कहां चला गया है, पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। शिक्षा के मुद्दे को लेकर भी सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा है हमला, बोले जो खुद शिक्षा विरोधी हैं उनका उनसे शिक्षक और शिक्षा के बारे में हितों के बारे में क्या उम्मीद की जा सकती है। योगी सरकार ने यूपी की चौकीदारों की मानदेय 2500 से बढ़ाकर 3500 रुपए किया है, साथ ही 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने की घोषणा भी की है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने की दी है नसीहत, बोले कि चुनाव में अब समय बहुत कम बचा है, समाजवादी की सरकार बनना बेहद जरूरी है। यूपी में हो रहे एमएलसी चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोग पहुंची है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। दोनों डिप्टी सीएम पर भी जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों पर बीजेपी को लाभ पहुंचाने के दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। चुनाव आयोग पर भी साधा है निशाना भारत निर्वाचन आयोग, मुखदर्शक बना हुआ है भारत निर्वाचन आयोग की साख पर लगातार गिरावट हो रही है। पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर किया है तीखा हमला, कहा अखिलेश के सपने को चूर चूर करेगी जनता, यूपी में तीसरी बार सरकार बनाने का ठोका है दावा। यूपी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का अखिलेश के बयान पर पलटवार, कहा कि जनता को गुमराह करने की कर रहे हैं कोशिश, इन्हें भी पता है कि एसआईआर में कोई खामी नहीं है।

0: चलिए इस खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में आज पूर्वांचल की पॉलिटिक्स उफान पर है। दरअसल आज सीएम योगी की वाराणसी से लेकर मिर्जापुर और मिर्जापुर से लेकर प्रयागराज तक एक बड़े कार्यक्रम है। इन तमाम कार्यक्रमों का चुनावी नजरिया भी कुछ अहम है, क्योंकि वाराणसी में स्वच्छता कर्मियों को सम्मान तो प्रयागराज में पासी समुदाय की महान विभूति की प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में दलित वोट के लिहाज से यह अहम माना जा रहा है। तो वहीं मिर्जापुर दौरे में सनातन वोट की सियासत भी होगी। फिर प्रयागराज में अतीक अहमद के कब्जे वाली जमीन पर 602 फ्लैट वाले पदमलोक का भूमि पूजन भी किया जाएगा। तीनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको समझा रहे हैं कि आखिरकार कैसे ये तीनों दौरे इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है। वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज की तस्वीरें। तो वाराणसी में दौरे पर सीएम योगी ने स्वच्छता कर्मियों का सम्मान किया और थोड़ी देर पहले मिर्जापुर भी पहुंचे। आपको बता दें कि मिर्जापुर में सीएम योगी ने मां विध्ववासिनी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद विध्यांचल में गंगा घाटों के निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। सीएम योगी ने इलाके में 43 करोड़ 65 लाख की लागत से बने नए पुल का लोकार्पण भी किया है और एमएलसी चुनावों के मद्देनजर जगह जगह किए जा रहे शिक्षक सम्मेलन की तरह मिर्जापुर में भी एक सम्मेलन को संबोधित भी किया है। तो देखिए तस्वीरें, हम आपको बता रहे हैं कि आप जो सूबे के मुख्यमंत्री है वो इस समय लगातार विध्यवासिनी मंदिर में मां के दर्शन के लिए पहुंचे हैं और वहां से वो उसके बाद वाराणसी जाएंगे और थोड़ी देर बाद सीएम योगी प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। प्रयागराज में सीएम योगी के दो कार्यक्रम हैं, जिसमें एक तो वो सीएम योगी स्वच्छता सेनानी बाबू मुसियादीन पासी की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं और दूसरे अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के लिए बनाए गए 602 नए फ्लैट का भूमि पूजन भी करने वाले हैं।
1: पूर्वांचल की सियासत में आज सीएम योगी की चुनावी सक्रियता के दो मायने साफ नजर आते हैं, क्योंकि एक तरफ सीएम योगी पासी समुदाय की विभूति की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त जमीन पर गरीबों के लिए फिर से फ्लैट बनवा रहे हैं और इन दोनों ही कार्यक्रमों का सीधा टारगेट दलित वोट है। प्रयागराज में सीएम योगी जिस स्वतंत्रता सेनानी बाबू मसूरियादीन पासी की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, उन्होंने पासी समुदाय के ऊपर अंग्रेजों के जमाने में साल 1871 से चले आ रहे जरायम एक्ट से मुक्ति का आंदोलन चलाया था। दलितों के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले ऐसी महान विभूति की प्रतिमा अनावरण का लक्ष्य सीधे तौर पर दलित वोट से जुड़ता है। क्योंकि पूरे यूपी में प्रयागराज जिले में दलित आबादी सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के मुताबिक जिले में 13.10 लाख दलित आबादी थी और उसमें भी 6.5 लाख से अधिक सिर्फ पासी समुदाय की आबादी है। चुनावी अनुमानों के मुताबिक 2022 तक इस जिले की 12 विधानसभाओं में एनडीए को 50-55% पासी वोट मिले थे, जो 2024 में घटकर 30-35% रह गए। दलितों में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले पासी समुदाय के इसी वोट को साधने के लिए प्रयागराज में बाबू मसूरियादीन पासी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है।
2: तो प्रयागराज में एक माफिया ने एक जमीन को कब्जा किया था, उस कब्जे वाली जमीन को खाली करवा करके वहां पर हम गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए हाई राइज बिल्डिंग, बहुत ऊंची ऊंची इमारत बनाने जा रहे हैं। अब माफिया नहीं, माफिया की जगह मिट्टी में है, अब गरीबों के लिए बड़ी बड़ी हवेलियां बनेंगे।
1: यूपी को माफिया मुक्त बनाने का दावा सीएम योगी अक्सर अपने मंचों पर करते रहे हैं, लेकिन अब उसी माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाकर सीएम योगी दलित उत्थान का दांव भी चल रहे हैं। कसारी बसारी इलाके में अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई 9,811 वर्ग मीटर जमीन पर पद्म लोक आवास योजना के तहत 191 करोड़ की लागत से 602 फ्लैट बनवाने का भूमि पूजन कर रहे हैं। इसके अलावा पीएम आवास योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए बनाए गए 556 मकानों की चाबी भी लाभार्थियों को मिल रही है। इन कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी एक तरफ दलित पिछड़ों के उत्थान कल्याण के लिए सरकारी प्रयासों के दावे कर रही है, वहीं सीएम योगी समाजवादी पार्टी पर पीडीए के खोखले नारों का आरोप भी लगाते हैं।
3: पीडीए पीडीए चिल्लाते थे, ये राज्यसभा के टिकट में वो पीडीए कहां चला गया था? और हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी का पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, और बहुत होगा तो पराया धन अपना। तो ने दो प्रत्याशी बनाए, एक प्रत्याशी बनाया अपने चचा जान को, रामगोपाल यादव को। अरे काशी के ही किसी यादव को बना देते, दूसरी सीट पे किसी और को बना देते, किसी दलित को भेज देते। नहीं बनाया, और चलो अपने खानदानी वोट मुसलमानों को ही बना देते, वो भी तो नहीं बनाया। तो टिकट उन्होंने बेच दिया मुंबई के खन्ना सेठ को। हो गया ना परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और पराया धन अपना।
1: अखिलेश यहां पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों के नारे के साथ चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश में हैं। वहां बीजेपी इन नारों के पीछे की खोखली राजनीति के आरोप लगाती है। खासकर 2024 के नतीजों के बाद बीजेपी दलितों के वोट को लेकर विशेष एहतियात बरत रही है। आज तक ब्यूरो।
0: और अगली खबर है देश में चल रहे विपक्ष की सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़े प्रदर्शन को लेकर। दरअसल चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई आज जारी रहेगी। सड़क पर विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन अब अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के एसआईआर पर वार किया है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन सबूत वो लगातार इकट्ठे कर आज मीडिया के सामने शामिल होने वाले हैं। वो बताएंगे थोड़ी देर में कि अखिलेश यादव की मीडिया के सामने कौन कौन से सबूत हैं जो उन्होंने एसआईआर के खिलाफ और यूपी में इकट्ठा किए हैं।
1: चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दल 15 दिनों से सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि चुनाव आयोग पक्षपाती है, जानबूझकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए फैसले ले रहा है। राहुल गांधी पिछले दो वर्षों से चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। अब अखिलेश यादव ने एसआईआर और एसआईआर के बाद आयोग के कामकाज पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।
4: एक ही व्यक्ति के 10 वोट बने हुए, बताइए। अगर ये बात गलत है तो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी बताए कि हम गलत हैं। एक ही व्यक्ति के एसआईआर के बाद 10 वोट बने हुए हैं, आजमगढ़ सदर विधानसभा, एक ही व्यक्ति के 10 वोट हैं। अब आप बताइए क्या है इलेक्शन कमीशन को क्या माने, इनके एसआईआर के एक्सरसाइज को क्या माने? एक व्यक्ति एक वोट डाल देगा।
1: समाजवादी पार्टी मिसाल के तौर पर 100 विधानसभाओं के बूथों से ऐसे वोटर लिस्ट वाले दस्तावेज देकर आई है जिनमें एसआईआर के बावजूद लिस्ट में फर्जी वोटर हैं। मसलन कन्नौज के छिबरामऊ में बूथ 49 पर क्रम संख्या 546, 547 और 548 पर नीतू नाम की महिला के नाम 3 बार हैं। इसी तरह बूथ 166 पर हिमेश नाम के युवक का नाम 871, 872, 873 क्रमांक पर 3 बार दर्ज है। बूथ 240 पर शिवानी का नाम 732, 733, 736 क्रमांक पर 3 बार दर्ज है। बूथ 357 में आरती का नाम 724, 732, 734 क्रमांक पर दर्ज है। इटावा के जसवंत नगर में बूथ 9 और 10 पर नए वोटर के नाम 3 एपिक नंबर से 3 बार मिले। श्रावस्ती में रोशन लाल का नाम 4 अलग एपिक नंबर से 4 बार रजिस्टर्ड है।
4: बीजेपी अभी भी फर्जी वोट बनवा रही है और इलेक्शन कमीशन से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो निष्पक्ष रहेंगे। लेकिन आप हम सब जानते हैं कि एसआईआर यूपी में चल रहा था और एसआईआर खत्म हो गया अभी, अब नए तरह का रिवीजन शुरू हो रहा है और उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में डबल वोट है। चार वोट है, छह वोट है।
1: समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर वोटर लिस्ट की इन खामियों की जांच कर इन्हें दूर करने की मांग की है।
5: कहानी तो मुख्य चुनाव आयुक्त को बतानी चाहिए, इसलिए बतानी चाहिए कि SIR में वो क्लेम कर रहे हैं कि डबल वोटर नहीं होगा और हमारे लोग लिस्ट निकाल के दे रहे हैं।
1: समाजवादी पार्टी का एक और आरोप यह है कि SIR खत्म होने के बाद चुनाव आयोग जो स्पेशल ड्राइव चला रहा है उसमें BJP फर्जी वोट जुड़वा रही है।
6: देखिए, कुछ नहीं है, जनता को गुमराह करने की लगातार कोशिश इन लोगों के द्वारा की जा रही है, सच्चाई उनको भी पता है।
0: और चले बुलेटिन में, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को फटका लगाई। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को फटकार लगी, 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट मार्च को लेकर यह फटकार लगाई गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई है 12 अक्टूबर को, जो सुप्रीम कोर्ट तक 12 खंबा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक जो मार्च निकाली गई थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फटकार लगाई गई है। इसको लेकर हम आपको और भी जानकारी देंगे, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को लगातार उनके मार्च के लिए फटकार लगाई गई है। आपको याद होगा कि 12 अक्टूबर को राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने 12 खंबा रोड से और सीधे सुप्रीम कोर्ट तक एक मार्च निकाली थी, बड़ा जाम लग गया था और उसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। और सुप्रीम कोर्ट में उस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को उस मार्च के लिए फटकार लगाई है।

0: और देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा भी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। संजय का रुख करते हैं। संजय, क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या फटकार लगाने के साथ कुछ ऑब्जर्वेशन भी दी है, कुछ कहा भी है राहुल गांधी को लेकर, इस मार्च को लेकर?
1: सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है और ये कहा है कि जिस तरह से 12 अक्टूबर को राहुल गांधी ने जो मार्च किया था सुप्रीम कोर्ट की ओर और उसके दौरान जो अव्यवस्थाएं फैली उस पर उन्हें जवाब देना पड़ेगा, उन्हें नोटिस किया है और साथ ही इस पर कई सवाल उठाए हैं कि याचिका दाखिल करने का अधिकार तो है लेकिन सुप्रीम कोर्ट मार्च करके इस तरह की अव्यवस्थाएं फैलाने पर उन्हें अपनी नियत बतानी पड़ेगी, अपनी मंशा बतानी पड़ेगी यानी स्पष्टीकरण देना पड़ेगा।
0: और क्या जी जी जी संजय प्लीज
1: जी। और सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी ये बताती है कि जिस तरह से राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ही चीफ जस्टिस ने उन्हें ये गाइड किया था कि आप याचिका दायर कीजिए, हम कानूनी हिसाब से सुनेंगे। कोर्ट ने कहा कि जब आप याचिका दायर करते हैं, याचिका दायर करने के लिए वकील के जरिए भी सुप्रीम कोर्ट आया जा सकता है। इतने भीड़, इतने सारे लोगों की भीड़ लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर पूछ करने का उनका मकसद क्या था, मतलब क्या था, ये उनको स्पष्ट करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल। और संजय, क्या राहुल गांधी को कुछ समय दिया गया है या अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए कुछ ऐसा कुछ 2 हफ्ते 4 हफ्ते का समय भी दिया गया है? ऐसा
1: जाहिर है कि इस मामले की अगली सुनवाई जब होगी उससे पहले राहुल गांधी को अपना जवाब दाखिल करना पड़ेगा। और
0: बिल्कुल बिल्कुल संजय, आपसे दोबारा से इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी और हम इससे आपसे दोबारा से इनपुट लेते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
2: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुनो।

0: in association with Canara Bank. Together we can.
1: Anmol Biscuits. Swad jo banaye har pal anmol. Signature finest cardamom seeds. E3 HDMR. Ye rishta lamba chalega.
2: राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा मंच, जहां होगी युवाओं के मन की बात और मिलेगा युवाओं के हर सवाल का जवाब। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।

0: आ गया सोमवार और आ गए
1: चकमक चाचा।
0: हाँ चाचा, अखबार भाँच रहे हैं। टेस्ट चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चिचा कब जाएंगे?
2: अरे भैया तो 10 में हिस्सा हम ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा, हम अपना मुद्दा उठा चुके
0: पुराने। अच्छा, कब उठाए?
2: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए।
0: अच्छा
2: हाँ, तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे दन दन दन दन कर गए, ऐसा नहीं, ये सब नहीं था अपना मामला
3: जी,
2: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
0: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है
2: आपका। टूटा भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे कार्रवाई चलती थी दर्द होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर बोलता रखे था हाँ एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
0: अच्छा
2: और क्या
0: आपका मतलब, हम लोग डर जाते हैं?
2: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल, जहाँ पुलिस सिटी नहीं बची उसमें भागने लगता हूँ।
0: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही
2: है। किधर?
0: चाचा हम खेल गए अब की।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: यूपी में 27 के चुनाव से पहले बदलते सियासी समीकरण की ये तस्वीर है। अमेठी के गौरीगंज में पार्टी महासचिव स्मृति ईरानी और यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी की मौजूदगी में एसपी के तीन बागी विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और विनोद चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए।
2: कि आप लोगों के मन में चीज होगी, ये लोग काहे समाजवादी पार्टी छोड़कर चले आए और काहे भारतीय जनता पार्टी में आए, तो हमें बताना चाहते हैं। मुझे गर्व और गौरव की बात है कि मैं उसी कुल में पैदा हुआ हूं जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अवतार लिया था।
1: जिस अयोध्या सीट को लेकर अखिलेश और योगी के बीच जुबानी जंग हुई थी, उसी अयोध्या की गोसाईगंज सीट से अभय सिंह विधायक हैं।
3: तो बहुत पहले शामिल हो गए थे, उनके शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। उनके शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी की कोई ताकत बढ़ेगी नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी नुकसान में रहेगी।
1: 27 में सत्ता में आने का दावा करने वाले अखिलेश यादव के लिए यूपी चुनाव से पहले की यह तस्वीर झटके से कम नहीं है।
4: जिनकी अध्यक्षता में 2017 का चुनाव हारी समाजवादी पार्टी, जिनकी अध्यक्षता में पिछला चुनाव भी विधानसभा का हारी समाजवादी पार्टी, उन्हें सपने देखने के पूरे अधिकार है। लेकिन साक्षात सत्य ये है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसके लिए न सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है, बल्कि उत्तर प्रदेश के नागरिक भी इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि सपा का राज मतलब उत्तर प्रदेश के विकास को रोकना।
1: 27 की चुनावी लड़ाई के लिए बीजेपी की व्यूह रचना तैयार है। अमेठी और रायबरेली के अलावा बीजेपी की नजर पश्चिम यूपी में अपने किले को मजबूत करने पर है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आरएलडी 23 दिसंबर को एक बड़ी रैली करने के साथ साथ 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए संयुक्त प्रचार अभियान शुरू कर सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर पीएम मोदी हापुड़ जिले के नूरपुर गांव में एक बड़ी रैली को संबोधित कर सकते हैं। बीजेपी एक्शन में है तो अखिलेश भी खामोश नहीं है। एसपी सुप्रीमो आज दोपहर 1 बजे प्रदेश पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अटकलें हैं कि गोंडा और उसके आसपास के जिले के कई बीजेपी नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने अपने एक संदेश में एसआईआर पर बड़े खुलासे का संकेत भी दिया है।
5: भाजपाइयों की 420 ये हमारे जितने कार्यकर्ता है और जनता, भारतीय जनता पार्टी की 420 को नहीं चलने देंगे। 430
1: कुल मिलाकर यूपी में चुनाव से पहले सरगर्मी तेज है, जहां रणनीति के अलावा समीकरण सेट करने की कोशिश की जा रही है। आशीष श्रीवास्तव के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: ये हिंदुस्तान है, अमित शाह जी इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज। और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूँ, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए। इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है।
2: NSUI कार्यकर्ताओं को हिंदुस्तान बताकर अमित शाह का जवाब देने राहुल गांधी कुछ यूं सामने आए। दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी के हंगामों पर अमित शाह ने मंगलवार को जोरदार प्रहार किया था। अमित शाह ने न सिर्फ SIR के विरोध पर राहुल गांधी को घेरा था, बल्कि ये भी कहा था कि राहुल असली हिंदुस्तान को नहीं जानते।
3: मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, SIR के बहाने घुसपैठिया बचाने का आपकी जो कार्य योजना है उसको देश की जनता भली भांति समझ चुकी है और अब भारत की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। आपकी वहां कोई रीच नहीं है।
2: अमित शाह के बयान पर जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से आया। खड़गे ने एक्स पोस्ट में लिखा, गृह मंत्री द्वारा SIR में बाहर 13 करोड़ भारतीयों को घुसपैठिया घोषित करना भारतीयता का अपमान है। उधर अमित शाह ने अपने बयान में 2029 को लेकर भी अभी से भविष्यवाणी की है।
3: श्री राहुल जी और उनके साथियों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 29 में प्रचंड हार के लिए फिर से एक बार मन बना लीजिए। 2029 के आम चुनाव में NDA प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आने वाला है और कांग्रेस की फिर से एक बार लगातार चौथी बार हार होने वाली है।
2: कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने एक्स पोस्ट में जवाब में कहा, हद है कि अमित शाह चुनावी जीत का जश्न मना रहे।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: कड़ी फटकार। अदालत का राहुल गांधी के आचरण पर सवाल, कहा राहुल गांधी दे सफाई, मंशा स्पष्ट करें। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस कमिश्नर का हलफनामा, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका के चलते नहीं दी गई सीजेपी को प्रदर्शन की परमिशन, केंद्र के अनुरोध पर खास इलाके में बंद किया गया इंटरनेट। जेएनयू के बर्खास्त प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद बिमोल की संसद से सदस्यता खत्म करने के लिए स्पीकर से मिली बीजेपी महिला सांसदों का एक डेलीगेशन, ओम बिरला को सौंपी अपनी मांगों वाली चिट्ठी। बांग्लादेश में हिंसक उपद्रव से प्रेरणा लेने वाले नेहरा बोरा बयान के बहाने बीजेपी का सीधे राहुल गांधी पर अटैक, कहा नेहा और नेता विपक्ष की सोच एक जैसी, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें पोस्टर गर्ल बनाया। पंचायत आज तक राजस्थान में बोले हैं केंद्रीय मंत्री मेघवाल, परिसीमन बिल पास करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध, डीएमके से भी हुई है बातचीत, राहुल पर कहा उनके पास कोई सबूत नहीं, माहौल खराब कर रहे हैं। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जहां पर लेह लद्दाख को लेकर कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं।
1: वो इसे भी हमारी सरकार ने ही पूरा किया है। इसी साल अगस्त में लद्दाख में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इससे प्रशासन के साथ साथ न्याय व्यवस्था भी सुगम बनेगी। साथियों, आज डिजिटल टेक्नोलॉजी से भी कई नए अवसर करीब आ रहे हैं। होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे हो या लोकल प्रोडक्ट्स हो, आज ऑनलाइन बिजनेस आय के नए रास्ते खोल रहा है। इसलिए हमने लद्दाख और दूरदराज के क्षेत्रों में भारत नेट और हाई स्पीड इंटरनेट का विस्तार किया है। सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हो, युवा ऑनलाइन पढ़ाई कर सके और स्थानीय उद्यमी देश दुनिया के बाजारों से जुड़ सके, इसके लिए भी लगातार काम हो रहा है। साथियों, हमारा विशेष ध्यान लद्दाख की नई पीढ़ी पर है। यहां के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन रहा है। आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे। साथियों, लद्दाख में खेलों की भी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। यहां के युवाओं ने आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। मुझे खुशी है कि लद्दाख में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि यहां के युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग और सुविधाएं मिले और वो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई उपलब्धियां हासिल करें। साथियों, लद्दाख में आप सभी अपने परिश्रम से जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो बेहतरीन होते हैं। आप तो जानते ही हैं, मैं जब विदेशी मेहमानों से मिलता हूं तो अक्सर लद्दाख में बनी चीजें उन्हें उपहार में देता हूं और उन्हें आपके बारे में भी जरूर बताता हूं। मैंने जर्मनी की चांसलर को, स्वीडन के प्रधानमंत्री को और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति जी को लद्दाख में बने प्रोडक्ट उपहार में दिए हैं। यहां की पश्मीना, सी बकथोन और लोकल हैंडीक्राफ्ट, खुबानी जैसे फल, इनमें व्यापार का कितना बड़ा पोटेंशियल जुड़ा है और इसलिए ही हमने लद्दाख की खुबानी को जीआई टैग दिया। आज इसकी दुनिया भर में डिमांड बढ़ रही है। हमारा प्रयास है यहां के उत्पादों को नए बाजार मिले, उनकी बेहतर ब्रांडिंग हो और उनका लाभ सीधे उत्पादकों तक पहुंचे। हमारा विशेष ध्यान चांगपा समुदाय के पशुपालकों पर भी है। उनकी मेहनत और पारंपरिक हुनर से जुड़ी पश्मीना की पहचान को और मजबूत किया जा रहा है। लद्दाख में अब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फूलों की व्यावसायिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत हमारे देश की अनमोल धरोहर है। यहां के प्राचीन मठ, बौद्ध परंपराएं और यहां के उत्सव इन्हें संजोना और अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित करना हमारा सामूहिक दायित्व है।
0: और प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। लद्दाख को लेकर कई परियोजनाओं का उद्घाटन या फिर उसका शिलान्यास किया है और लद्दाख को लेकर बड़ी योजनाओं के बारे में वो ऐलान भी कर रहे थे। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर की मार्च को लेकर राहुल गांधी के आचरण पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि 12 अक्टूबर के सुप्रीम कोर्ट मार्च और उसके दौरान हुई अव्यवस्था पर याचिकाकर्ता राहुल गांधी को सफाई देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आखिरकार इसके पीछे की उनकी मंशा क्या थी, ये भी सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाए गए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 12 मार्च को बाराखंबा रोड से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक मार्च निकाला था जिसमें ना सिर्फ विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद थे बल्कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा इसमें मौजूद थे। तस्वीरें हम आपको 12 अक्टूबर की ही दिखा रहे हैं और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका को लेकर सुनवाई थी जो राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। आज उस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सीजेआई की तरफ से राहुल गांधी के इस मार्च को लेकर आप कह सकते हैं कि सफाई मांगी गई है और लगातार इसको लेकर उनसे जवाब भी मांगा गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय शर्मा का रुख करते हैं। संजय, क्या कुछ और कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई के दौरान?
2: सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो बड़ा सवाल राहुल गांधी के मार्च पर उठाया है। कोर्ट ने कहा कि आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, यानी नोटिस जारी किया है कि आखिर आपको मार्च करने की जरूरत क्या थी सुप्रीम कोर्ट तक आने की। सुप्रीम कोर्ट में हजारों लाखों ऐसे मामले आते हैं लेकिन मामला दर्ज कराने वाले अपने पिटीशन की कॉपी लेकर ऐसा मार्च नहीं करते हैं। हजारों लोग आप वहां से आ रहे हैं, जो अव्यवस्थाएं हुई उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। आखिर आपकी मंशा क्या थी? आप अपने वकील के जरिए भी चुपचाप अपनी याचिका दाखिल कर सकते थे, तो इतने लोगों को लेकर इतना लंबा मार्च करने की जरूरत क्या थी, ये बताया है। अभी जो मामला चल रहा है वो महिला पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार का मामला चल रहा है जिसमें इंदिरा जयसिंह उनका पक्ष रख रही है और इंदिरा जयसिंह ये कह रही है, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की भी याचिका है इसमें, जिसमें ये कहा गया कि वो महिलाएं अपनी ड्यूटी कर रही थी लेकिन ड्यूटी के दौरान प्रदर्शनकारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, जो उन्हें अपशब्द कहे हैं, तो इस पर सुनवाई चल रही है। इसके साथ ही जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन स्थलों की सूची से उसे हटा दिया गया है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली है। कुछ देर को तो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी कियोस की स्थिति हो गई थी क्योंकि हर वकील चाहता था कि पहले उसके मामले की सुनवाई हो। कोर्ट को ये बीच में दखल देना पड़ा और कहना पड़ा कि आप लोग एक एक करके अपनी बात कहें, सबके मामले सुने जाएंगे, सबकी याचिकाओं पर सुनवाई होगी, लिहाजा अदालत को ऑर्डर में चलने दें, ऑर्डर ऑर्डर। तो जंतर मंतर वाले मामले पर भी नोटिस जारी किया है, क्योंकि आज बहुत सारे मामलों पर सुनवाई का पहला दिन है। तो पहले दिन में जो लॉ को इन्फोर्स करने वाले इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों से जवाब मांगा जाता है कि आपका इस पर क्या कहना है इन याचिकाओं पर। तो आज का दिन नोटिस का है, जिसमें सभी याचिकाओं पर नोटिस जारी किए गए हैं और जवाब मांगा गया है। उस पर कोर्ट ने यह भी कहा कि ये ऐसे बिना विस्तृत सलाह मशवरा किए हुए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संजय आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप लगातार इन याचिकाओं की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक और याचिका को लेकर खबर आई है। जी आपको बताएं कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस की जातियों और कथित जातियों वाली अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को प्रदर्शन से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। इसी तरीके से सभी निजी पक्ष भी वीडियो सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि उन्हें अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा एक बार फिर से जुड़े हैं। संजय देखिए, ये भी कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि तमाम जितने सीसीटीवी फुटेजेस हैं या निजी पक्षों के जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको भी सुरक्षित रखा जाए, ताकि सुनवाई के

0: पुलिस के पास अपने पक्ष को मजबूत करने के वीडियो हैं, जबकि याचिकाकर्ताओं के पास अपने पक्ष को लेकर वीडियो हैं कि पुलिस कैसे उनसे ज्यादती कर रही है, और पुलिस के पास वीडियो हैं कि प्रदर्शनकारी उनसे कैसे ज्यादती कर रहे हैं, कैसे महिला पुलिसकर्मियों को असॉल्ट कर रहे हैं, कैसे वो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर वो FIR दर्ज की गई है। तो मामले दोनों तरफ से हैं, कहते हैं कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, तो दोनों तरफ है, लिहाजा अदालत को न्याय करने के लिए आवश्यक होगा कि वो दोनों तरफ के फुटेज वीडियो देखे। एक तरफ के वीडियो देखने से तो एक ही पक्ष पता चलता है, दोनों तरफ के वीडियो देखे ताकि अदालत उसमें पूर्ण न्याय कर सके। लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने दोनों पक्षों से कहा है कि अपने अपने वीडियो फुटेज सुरक्षित रखें, ताकि जब मामला सुनवाई के लिए आए उस समय अदालत के सामने दोनों अपने अपने सबूत के तौर पर उसे पेश कर सके। उसके बाद अदालत अपने विवेक से निर्णय लेगी कि आखिर गलती किसकी थी, और जिसकी भी गलती थी, अगर दोनों पक्षों की गलती थी, तो उसके लिए सजा तजवीज क्या की जाए।
1: संजय, क्या सभी याचिकाओं को सुन लिया गया, क्योंकि अब से थोड़ी देर में शायद सुप्रीम कोर्ट का लंच ब्रेक भी होगा, क्या उससे पहले सभी याचिकाओं को सुन लिया गया है, या फिर अब भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है?
0: सुनवाई अभी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में लंच ब्रेक ऐसे 1 से 1:15 बजे के बीच होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब मामले ज्यादा संगीन और बड़े होते हैं तो कोर्ट कई बार लंच देर से भी करता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि सारे मामले सुनने के बाद ही कोर्ट लंच के लिए जाता है। तो ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि अदालत किन चीज़ों पर, अमूमन तो अदालत टाइम की पाबंद होती है और 1 बजे 1:15 बजे के बीच अदालत भोजनावकाश के लिए चली जाती है, लेकिन कई बार मामले बड़े होते हैं या आम तौर से सोमवार और शुक्रवार के दिन अदालत आम तौर से सभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामले पूरे सुनने के बाद।
1: आपको बीच में रोकूंगा मैं संजय, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जंतर मंतर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सवाल। देखिए, जंतर मंतर को डी नोटिफाइड करने की वजह क्या थी, ये देखिए, डी नोटिफाइड किया गया था जंतर मंतर को, 3 जगह बताई गई थी दिल्ली पुलिस द्वारा, अब उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जंतर मंतर मामले पर कमेटी का गठन पहले हुआ था, एसजी की तरफ से कहा गया, कमेटी ने जंतर मंतर मामले में रिपोर्ट सौंपी, ये भी सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया। और आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिरकार जंतर मंतर को डी नोटिफाइड करने की जरूरत क्या थी, ये सवाल पूछा गया। संजय, ये भी मामला अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि जंतर मंतर पर अब कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता, इसको लेकर भी सवाल खड़े होने लग गए थे विपक्ष की तरफ से भी और तमाम संगठनों की तरफ से भी, आज उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिरकार इसको डी नोटिफाइड क्यों किया गया।
0: जी हाँ, बिल्कुल, कोर्ट ने पूछा है कि डिनोटिफाई क्यों किया, और जब कमेटी बनी हुई थी, कमेटी थी तो क्या कमेटी के सामने मामला गया, कमेटी के क्या विचार थे, कितने विकल्पों पर विचार हुआ, उन विकल्पों को कैसे फिर तय किया गया, इन तमाम चीज़ों पर जवाब दाखिल करना पड़ेगा सरकार को। लेकिन मैं पूरी स्पष्टता से बताऊं कि पिछली सुनवाई में खुद चीफ जस्टिस ने यह पूछा था कि जिस समय दिल्ली पूरी चौक हो गई थी, दिल्ली की सांसें उफन रही थी, दिल्ली पूरी थम चुकी थी और जगह जगह मेट्रो स्टेशन बंद थे, रेलवे बंद था और सड़क यातायात पर जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, ये वही दिन था जिस दिन चीफ जस्टिस ने कहा था कि इतनी भी सख्ती ना की जाए कि मक्खी मारने के लिए हथौड़ा लगाने की जरूरत पड़े। तो उसी दिन कोर्ट ने, सुप्रीम चीफ जस्टिस ने पूछा था कि क्या कोई ऐसा विकल्प दूसरी जगह प्रदर्शन के लिए जगह तय हो सकती है जहां पूरा शहर अपने रोजमर्रा के काम काज कर सके, लोग विरोध प्रदर्शन के अपने अधिकार का, लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल भी कर सके। उस समय सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि हमने 2-3 जगह ईयर मार्क की हुई है और उसे हमें कोर्ट को बताना है। बाद में जब हमने पूछा था सरकार के लोगों से तो उन्होंने कहा कि हमने 2-3 जगह ईयर मार्क की हुई है, लेकिन अब सरकार को पूरे कायदे से बताना पड़ेगा कि क्या जो CBD पार्क या फिर बुराड़ी का पार्क या और भी अन्य जगहें जो तजवीज़ की गई हैं, क्या उनके बारे में कमेटी में चर्चा हुई थी। कमेटी के मिनट्स भी कोर्ट मंगा सकता है कि चर्चा हुई भी थी या नहीं हुई थी, आखिर फैसला किसने लिया, किस स्तर पर फैसला लिया गया, ये तमाम चीज़ें, या फिर ऐसे जबानी जमा खर्च में उसे डीनोटिफाई किया, डीनोटिफाई करने की प्रक्रिया पूरी की गई या नहीं की गई, वैकल्पिक जगहों का कैसे तय किया गया, तो इन तमाम चीजों पर बात होगी। यानी अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी और गहराई तक जाएगी। कोर्ट शायद हो सकता है कि सारे डिटेल मंगाए और मंगा कर ये जानकारी करे कि आखिर प्रक्रिया क्या थी और क्या उस प्रक्रिया को फॉलो किया गया है नहीं।
1: बिल्कुल संजय, एक और बात, क्योंकि ये मल्टीपल आप कह सकते हैं कि मुद्दे हैं जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं सुन रहा है, क्या ये एक ही विपक्ष की तरफ से याचिकाएं या फिर वुमेन, आपने बताया जर्नलिस्ट की तरफ से याचिका थी, एक जंतर मंतर को लेकर याचिका थी, ये अलग अलग इसमें पक्ष आए हैं सामने, किस किस ने याचिका दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में?
0: इसमें देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि जो पॉलिटिकल नेताओं की याचिका है वो तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन

0: खड़गे सहित विपक्ष के 13 नेताओं ने याचिकाएं दाखिल की हैं, जो 13 याचिकाएं, इसके अलावा तो DUJ दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिस्ट, उन्होंने भी याचिका दाखिल की है, कई सामाजिक संस्थाओं ने याचिका दाखिल की, असदुद्दीन ओवैसी की याचिका है और भी कई ऐसे लोगों की है जिसमें लॉयर्स की तरफ से।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपसे संजय एक बार फिर से आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि वकीलों को डराने धमकाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कहा है। देखिए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय, लेकिन वकीलों को कई ऐसी कोशिश पर ध्यान नहीं देना चाहिए, CJI की तरफ से कहा है कि ऐसी कोशिश पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको तमाम बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसके बाद यारे कोर्ट को बाहर दिए जाने वाले बयानों की जानकारी है। और संजय ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी ऑब्जर्वेशन किस मामले पर आई है, क्या कोई इसी सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी या फिर ऑब्जर्वेशन दी गई है?
0: जी हाँ बिल्कुल, ये वकीलों को जिस तरह से मुश्किलें आई हैं कोर्ट में पेश होने के समय, जब मेट्रो बंद थे उस समय भी SCBA की तरफ से, स्कोरा की तरफ से याचिकाएं दाखिल की गई। इसके अलावा कुछ वकीलों ने इंडिविजुअल भी याचिकाएं दायर की हैं जिसमें उन्होंने कहा कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें अपना काम करने से रोका गया है, तो उस पर भी कोर्ट सुनवाई कर रहा है। और कोर्ट ने ये भी कहा, ये टिप्पणी की है, बहुत अहम टिप्पणी है, कि वकीलों को अपना काम करने के दौरान बाकी इधर उधर की बातें सुनने की जरूरत नहीं और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने काम पर फोकस करना चाहिए। लेकिन जो याचिकाएं हैं, 26 याचिकाओं में अलग अलग संगठनों की तरफ से, अलग अलग इंडिविजुअल्स की तरफ से, अलग अलग नेताओं की तरफ से याचिकाएं हैं जिनमें अलग अलग मुद्दे उठाए गए। मुख्य मुद्दे जो इस पूरे मामले को लेकर हैं, मैं दर्शकों की आसानी के लिए बता दूं, एक तो SIR से संबंधित मुद्दा है जिसमें कहा गया SIR में गड़बड़ियां हैं, और राहुल गांधी की तरफ से भी इनकी याचिका में कहा गया कि जब तक इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट निपटारा नहीं कर देता है तब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त को निलंबित कर दिया जाए, उनको अपना काम करने से रोका जाए।
1: बिल्कुल संजय, देखिए यही बातें हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह, हमारे सहयोगी संजय शर्मा हमारे सहयोगी लगातार सुप्रीम कोर्ट से बने हुए थे और वो बता रहे थे कि मल्टीपल याचिकाएं हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जा रही है और अब भी ये सुनवाई जा रही है। इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
5: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
4: स्मॉल बैंक,
5: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज RD, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम।
4: Okay.
5: Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
3: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: कौन सी बनानी है?

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU सोच बदलो और बैंक भी।
2: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।
3: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
4: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
5: I love it, absolutely amazing. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
6: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
5: क्या?
6: इनकी राय।
7: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेट निर्माण का रियल हीरो।
8: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
9: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
8: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
10: हाउस द हॉस्टल सेटल्ड?
11: यस नाइस।
10: कोई आ रहा है क्या?
12: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटी तो निभा ली, अब फिर से थोड़ा रोमांस है।
10: For real?
12: One carat for my one true love. Natural diamond real love solitaires to reignite your new season of love.
13: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
14: इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो।
0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU
3: सोच बदलो और बैंक भी। बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
4: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
5: I love it, absolutely amazing. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
6: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
5: क्या?
6: इनकी राय।
7: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेट निर्माण का रियल हीरो।
8: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
9: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
8: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
16: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
17: जिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड,
18: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
19: एक परिवार अटूट भरोसा।
14: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते
15: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
14: विमल बोलो जुबां केसरी।
20: क्या कहती है आपकी राशि? कैसा बीतेगा आपका दिन? किस दिन क्या करें क्या ना करें? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर? देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।
21: राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा मंच, जहां होगी युवाओं के मन की बात और मिलेगा युवाओं के हर सवाल का जवाब। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
22: पूछना चाहता हूं समाजवादियों से, ये जो बोलते थे पीडीए पीडीए चिल्लाते थे, ये राज्यसभा के टिकट में वो पीडीए कहां चला गया था? और हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी का पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। और बात होगा तो पराया धन अपना। और आपने दोनों चीज यहां देखी होगी। उन्होंने दो प्रत्याशी बनाए, एक प्रत्याशी बनाया अपने चचा जान को रामगोपाल यादव को। अरे काशी के ही किसी यादव को बना देते। गाजीपुर के बना देते, बलिया के बना देते, नहीं बनाया। दूसरी सीट पे किसी और को बना देते, किसी दलित को भेज देते, नहीं बनाया। और चलो अपने खानदानी वोट मुसलमानों को ही बना देते, वो भी तो नहीं बनाया। तो टिकट उन्होंने बेच दिया मुंबई के एक धन्ना सेठ को। हो गया ना परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और पराया धन अपना, दोनों साबित हो गए।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आशंका के चलते नहीं दी गई सीजेपी को प्रदर्शन की परमिशन। केंद्र के अनुरोध पर खास इलाके में बंद किया गया इंटरनेट। पंचायत आज तक राजस्थान में बोले केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल, परिसीमन बिल पास करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। डीएमके के साथ भी हुई बातचीत, राहुल पर कहा उनके पास कोई सबूत नहीं, माहौल खराब कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसक उपद्रव से प्रेरणा लेने वाले नेहा बोरा बयान के बहाने बीजेपी का सीधे राहुल गांधी पर अटैक। कहा नेहा और नेता विपक्ष की सोच एक जैसी, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें पोस्टर गर्ल बनाया। जेएनयू से बर्खास्त प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद बिमोल की संसद से सदस्यता खत्म करने के लिए स्पीकर से मिले बीजेपी महिला सांसदों का डेलीगेशन। ओम बिरला को सौंपी अपनी मांगों की चिट्ठी।

0: के साथ मैं हूं सुमित चौधरी। लखनऊ के करोड़पति कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा। इस केस की मुख्य आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो खुद को बेगुनाह बता रही और अपने नाम नेताओं अधिकारियों से जोड़ने पर भी एतराज जता रही है। श्रद्धा दुबे का कहना है कि शिवा शर्मा की हत्या नहीं की गई बल्कि उन्होंने आत्महत्या की। उसने ये भी कहा कि वो पुलिस को सहयोग करना चाहती हैं, लेकिन दूसरी ओर श्रद्धा दुबे की एसयूवी भारत नेपाल सीमा से सटे बहराइच के रूपहीड़ा इलाके में एक पार्किंग में मिली है और एफआईआर के बाद भी अब तक वो पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो पाई है। तीन तस्वीरें और हम आपको बता रहे हैं कि अब तक वो फरार है, लगातार पुलिस उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। शिवा शर्मा मामले पर अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। आज मामले में खुलासा हुआ है कि आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे नेपाल फरार हो चुके हैं, उनके साथ उनकी बहन, अन्य आरोपी भी हैं। इन सब के बीच उनका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो अपने आप को बेगुनाह बता रही है। एक रिपोर्ट आपको इसको लेकर दिखाते हैं।
1: करोड़पति कारोबारी की मौत का गैंगस्टर कनेक्शन, बिजनेसमैन की मौत के पीछे गहरी साजिश, हत्या के इल्जाम, क्या गैंगस्टर कनेक्शन से इंतकाम, नेपाल जा छिपी आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, करोड़पति कारोबारी की संदिग्ध मौत मामले में आरोपी है श्रद्धा दुबे, यही सबसे अहम राजदार है और शिवा शर्मा की मां की नजरों में यही हत्या की गुनहगार है। इस मॉडल पर सवाल उठ रहे हैं, लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब देने के बजाय आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे अब नेपाल जा छिपी है। ये वही तस्वीर है जो श्रद्धा दुबे के नेपाल भाग जाने का पुख्ता प्रमाण है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर नेपाल के माहिम नगर की है। श्रद्धा अपनी बहन रश्मि दुबे और दोस्त आदिल रोड क्रॉस कर बस स्टेशन के भीतर जाते दिखे हैं। पुलिस सूत्रों का मानना है कि श्रद्धा का नेटवर्क काफी मजबूत है और उसे पुलिस की हर मूवमेंट की इनसाइड जानकारी समय से पहले मिल रही है। पुलिस से भाग रही श्रद्धा दुबे अब कह रही है कि वो पुलिस की जांच में सहयोग करना चाह रही है।
2: हर किसी के साथ मेरा नाम मत जोड़िए। आप लोगों ने कई नेताओं, कई अधिकारियों के साथ मेरा बेवजह का नाम जोड़ा है, क्योंकि हाँ, अगर वो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे से कोई ऐड है तो आप मेरे बारे में ऐसी अफवाह मत फैलाइए। मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, ठीक है। मीडिया वाले से मेरा बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे बारे में अफवाह मत फैलाइए। मैं कहीं गायब नहीं हूँ, मैं पुलिस में आके बयान देना चाहती हूँ। मैं उन्हें सब कुछ सच सच, जो कुछ भी है, मैं उन्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ।
1: एक तरफ श्रद्धा दुबे वीडियो जारी कर पुलिस के सामने आने की बात कह रही है तो दूसरी तरफ उसकी एसयूवी मिलने की खबर ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा के पास पार्किंग में श्रद्धा की एसयूवी कार मिली है। जानकारी के मुताबिक यूपी 32 QQ0111 ये गाड़ी 10 अक्टूबर से पार्किंग में खड़ी थी। श्रद्धा गाड़ी पार्क करने के बाद नेपाल जाने की बात कहकर वहां से निकली थी और अब नेपाल से आई ये तस्वीर काफी कुछ बयान कर रही है।
3: श्रद्धा दुबे और शिवा शर्मा, जिस तरीके से अब तस्वीर सामने आई है, साफ है कि श्रद्धा दुबे की गाड़ी बहराइच के पास यानी महाराजगंज के पास पाई गई और वो खुद नेपाल में अपनी बहन और आदिल के साथ देखी गई। अब ऐसे में पुलिस बहराइच की, साथ ही साथ लखनऊ पुलिस की टीम नेपाल की तरफ भी रुख कर रही है कि किसी तरीके से 25,000 इनामी श्रद्धा को गिरफ्तार किया जाए।
1: शिवा शर्मा की मौत के आज 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन ना तो शिवा शर्मा के घर वालों को इंसाफ मिल पाया है, न ही किसी साजिश की पुष्टि हो पाई है और न ही साजिश के आरोपों में घिरी बॉर्डर का कोई ठोस सुराग मिला है। अगर कुछ सामने आया है तो इस हाई प्रोफाइल मॉडल से जुड़े कुछ और खुलासे और इस मॉडल का एक वीडियो। कारोबारी शिवा शर्मा की मौत से उठे सवालों को लेकर पहली बार मॉडल श्रद्धा दुबे का वीडियो सामने आया है। शिवा शर्मा की मौत के बाद उठे सवालों पर सुनिए श्रद्धा दुबे का ये बयान
2: कि कुछ भी किसी लड़की के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि मेरा क्या गुनाह है, मैंने कुछ नहीं किया है। और जो कुछ भी सच है शिवा शर्मा कांड से रिलेटेड, कि उसकी कोई हत्या नहीं हुई थी, वो एक सुसाइड था, वो मैं आप लोगों से बताने वाली थी, लेकिन मेरी कंडीशन देखिए कि मैं किस कंडीशन में हूँ। मैं ठीक कंडीशन में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी इस समय फिजिकली फिट नहीं हूँ।
1: श्रद्धा खुद को बेगुनाह बता रही है, वो शिवा शर्मा की मौत की वजह सुसाइड बता रही है।
2: वो हत्या नहीं थी, वो एक सुसाइड था, ठीक है। मैंने अपनी आंखों से देखा उसको कूदते हुए, ठीक। अगर वहाँ के सीसीटीवी कैमरेज निकलेंगे, सब कुछ निकलेगा, तो उसमें दिखेगा कि वो किस तरह से कूद रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग परेशान नहीं है। उस वक्त मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरे घर से किसी ने छलांग मार के सुसाइड अटैम्प्ट किया है, तो मेरी हालत ख़राब होनी स्वाभाविक है।
1: शिवा की मां ने जो FIR दर्ज कराई है उसमें मुख्य आरोपी श्रद्धा है, साथ में श्रद्धा की बहन रश्मि दुबे भी आरोपी बनाई गई है। नेपाल से आई तस्वीर में रश्मि भी साथ दिखी है। शिवा की मां ने आरोप लगाए हैं कि श्रद्धा उनके बेटे को लगातार धमकाती थी और टॉर्चर करती थी,
4: और डेली बांध के और थ्रेटन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करती थी, जिसके बाइट्स अक्सर उनके बॉडी पे होते थे। निशान पूछने पे वो ये कहते थे कि चोट लग गई है, गिर गया हूँ।
3: क्या क्यों करती थी, क्या वो कुछ मांग करती थी, कैसे?
4: वो कंट्रोल और ईगो के लिए चीज़ों को करती थी। वो कंट्रोल करना चाहती थी
3: पूरी तरीके से।
4: हाँ, वो पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती थी।
1: लखनऊ पुलिस ने मामले में जांच तेज कर दी है ताकि करोड़पति कारोबारी की मौत की असल वजह साफ हो सके। बहराइच से राम बरन चौधरी और लखनऊ से अंकित मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
0: और आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे पर शिवा शर्मा की मां ने कई गंभीर आरोप भी लगाए। उनसे बात की आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने, आइए आपको सुनाते हैं।
3: रंजना जी, अब वीडियो नए लगातार दो बैक टू बैक वीडियो आज भी जारी कर दिया और कह रही कि हमने देखा अपने सामने कि वो उसकी कूदा है। हम लोग को क्यों देख रहे
4: हैं? तो ठीक है, अगर वो उन्होंने ऐसा किया है तो वो कह सकती हैं, आके सामने आकर कह सकती हैं।
3: लेकिन वो तो नेपाल की तरफ देखी गई है लगातार और इस तरीके से वहां से वीडियो।
4: पुलिस अपना काम कर रही है।
3: आपके पास पर्याप्त सबूत है?
4: हाँ, हम लोगों के पास पर्याप्त सबूत है।
3: जो सौंपे हैं जिसमें PDF है, रेड डायरी है, क्या क्या ऐसे सबूत हैं जो आपको लगता है?
4: जमा कर दी गई है पुलिस के पास।
3: जब ये लोग कह रहे हैं कि तीन तीन लोग आप जैसे साथ में बताने, कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें आपको लगता है?
4: श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और उनका ड्राइवर दानिश।
3: और भी लोग इसमें शामिल हैं?
4: मुझे बहुत जानकारी इस बारे में नहीं है।
3: इनके ग्रुप के लोग?
4: मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।
3: क्या शिवा को पहले से प्रताड़ित किया जाता था?
4: हाँ।
3: कितना और किस लेवल पे?
4: वो मैंने बता दिया है।
3: मतलब कि जब वो गिरा था उससे पहले बता के गया होगा घर में कुछ भी कि हम कहाँ जा रहे हैं?
4: हाँ, उन्होंने जाते समय कहा कि श्रद्धा के साथ, श्रद्धा मुझे बाहर बुला रही है और मैं जा रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ।
3: 5 मिनट में? तो क्या क्या क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है जिससे लगातार बुलाती थी और जाता था किसी भी तरीके से डर के या कैसे भी, आपको लगता है?
4: हाँ, ये सिलसिला बना ही हुआ था।
3: जो सबूत है उनमें क्या आपको लगता है कितनी मदद मिल पाएगी आपको?
4: 100%।
3: किस तरीके का केस आपने उसमें लगाया?
4: सब FIR की कॉपी है सबके पास, आपके पास भी है। एक्सट्रैक्शन भी है, थ्रेटनिंग भी है,
3: सेक्सुअल हैरेसमेंट भी।
4: हाँ जी।
3: इसमें क्या और लोग भी शामिल हैं आपको लगता है? बड़े बड़े नाम हैं?
4: नहीं, बड़े बड़े नामों का मुझे कोई अंदाज नहीं है, इस बारे में मुझे कोई अंदाज नहीं है।
3: शिवा ने आपने लास्ट टाइम क्या कहा था जब बात हुई थी आपसे?
4: मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ।
3: क्या चाहती हैं आप?
4: मुझे इस न्यायपालिका और पुलिस और प्रशासन से जल्द अरेस्टिंग और एक उचित न्याय की उम्मीद है।
0: इस मामले में श्रद्धा दुबे पर सवाल क्यों उठे? दरअसल कारोबारी शिवा शर्मा की मां ने मॉडल पर कई गंभीर आरोप लगाए। दरअसल शिवा की मां ने पुलिस को बताया और अहम सबूत भी सौंपे। बताया जा रहा है कि शिवा शर्मा के पास एक लाल डायरी थी जिसमें वो श्रद्धा का एक एक गुना लिखा करता था। अब वो डायरी पुलिस जांच का एक अहम पन्ना बनी हुई है।

0: मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती हूँ।
1: शिवा शर्मा की लाल डायरी में दर्ज है गुनाह के सबूत। उस डायरी में दर्ज है अपने ऊपर हुए जुल्म की एक एक दास्तान। मॉडल श्रद्धा दुबे शिवा शर्मा को टॉर्चर करती थी, उसे धमकाती थी, जेल भिजवाने की धमकी देती थी, बंधक बनाकर रखती थी, और ऐसे कई इल्जाम शिवा शर्मा की मां ने श्रद्धा पर लगाए हैं। उनका दावा है कि शिवा ने श्रद्धा के हर गुनाह का लेखा जोखा अपनी लाल डायरी में लिख रखा है। वो डायरी अब पुलिस के पास है और जांच का अहम हिस्सा है। आखिर क्या है उस डायरी में? जानकारी के मुताबिक डायरी में शिवा ने श्रद्धा दुबे की ओर से की गई कई चैट का जिक्र किया है, जिनके जरिए कथित तौर पर उसे प्रताड़ित किया जाता था। श्रद्धा किस तरह शिवा पर दबाव बनाती थी, इसका भी उल्लेख है। डायरी में श्रद्धा से जुड़े सनी, आदिल समेत कई लोगों के नाम दर्ज हैं। श्रद्धा की ओर से पैसे की मांग करने और होटल शोरूम खोलने के लिए दबाव बनाने का भी जिक्र है। शिवा को जबरन दिन रात बुलाने, प्रताड़ित करने और मारपीट किए जाने की बात भी डायरी में लिखी है।
2: शिवा को कुछ सबूत आपने पुलिस को सौंपे, आखिर क्या वो हैं ऐसे जिसमें कि आपको लगा कि शिवा
3: के पास एक डायरी थी जो वो डेली लिखते थे,
2: अपनी डेली रूटीन?
3: हाँ, डेली की लाइफ उसमें लिखते थे वो, रोज की।
2: क्या उन्होंने जिस दिन घटना हुई उसके पहले दिन की घटना लिखी, आपको जानकारी मिली?
3: हाँ, काफी चीजें हैं उसमें।
2: कुछ ऐसा जो आप शेयर कर सके, कम से कम सबके सामने आए हो?
3: वो उसमें हर एक बात शेयर है जो उनके साथ पिछले पांच महीनों से हो रही थी।
2: जैसे कि वो
3: प्रताड़ना की सारी बातें उन्होंने उसमें लिखी हैं।
1: श्रद्धा को लेकर आरोप ये भी है कि उसके कई गैंगस्टर से संबंध थे। ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। इस तस्वीर में श्रद्धा अभिषेक सिंह उर्फ बाबू सिंह नाम के गैंगस्टर के साथ दिख रही है। अभिषेक सिंह 2020 के अपहरण के मामले में गिरफ्तार भी हो चुका है। अब ये वीडियो देखिए, इसमें दूसरे गैंगस्टर के साथ श्रद्धा दुबे दिख रही है। इस गैंगस्टर का नाम जुल्फिकार है, जो जेड कंपनी नाम का गैंग चलाता है और ये फिलहाल मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है। खुलासे के मुताबिक ऐसे ही गैंगस्टर से श्रद्धा दोस्ती करती थी, फिर उसके नाम और नेटवर्क का इस्तेमाल धौंस जमाने के लिए करती। इनामी बदमाश ऋषभ राय के साथ भी श्रद्धा दुबे की एक तस्वीर सामने आई है। ऋषभ राय वही आरोपी है जिसने शिवा शर्मा को धमकी दी थी। उसका धमकी वाला ऑडियो पहले वायरल हुआ था। वैसे शिवा शर्मा की मौत से ऋषभ का क्या कनेक्शन है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है।
4: ऋषभ और श्रद्धा दुबे एक साथ एक जगह मौजूद रहते थे, यही वजह है कि ऋषभ को देखा गया है कि ऑडियो के जरिए वह शिवा शर्मा को धमकाता हुआ नजर आया है। अब ऐसे में ऋषभ और श्रद्धा दुबे के बीच के कनेक्शन की पड़ताल भी पुलिस कर रही है, क्योंकि क्यों ऋषभ लगातार शिवा को धमका रहा था और क्यों लगातार श्रद्धा ऋषभ के साथ जुड़ी हुई थी। कई ये अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस ढूंढ रही है और लगातार छानबीन करके आगे की कार्रवाई कर रही है।
1: हत्या का आरोप लगाते हुए शिवा की मां ने FIR दर्ज कराई है, जिस पर जांच जारी है। अंकित मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: तो इस बुलेटिन में इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: डेढ़ साल पहले हुआ हत्याकांड और करीब एक साल से चल रहे ट्रायल के बाद आखिरकार नीला ड्रम कांड में कोर्ट का फैसला आ गया। मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या करने वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।
1: वो कहा गया था कि कुछ चश्मदीद गवाह नहीं है और उसके बच्चे हैं और इसके माँ बाप बुजुर्ग हैं, ये सारी तथ्य रखे गए थे, लेकिन वो कोर्ट ने कोई वो नहीं माना और इनको अपराध की गंभीरता को देखते हुए मृत्युदंड की सजा मुकर्रर की है।
0: जिला जेल से दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। जज ने मुस्कान से पूछा, तुम अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या में दोषी हो, क्या सजा चाहती हो? मुस्कान ने जवाब दिया, मेरी बेटी छोटी है, उसका ख्याल रखा जाए। फिर वो खामोश हो गई। इसके बाद साहिल से यही सवाल पूछा गया तो वो भी चुप रहा। सरकारी वकील ने कोर्ट से मुस्कान और साहिल के लिए फांसी की सजा देने की मांग की थी। वहीं मुस्कान साहिल के वकील ने कहा था, मुस्कान की दो बेटियां हैं, माता पिता बुजुर्ग हैं, कम से कम सजा होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने फांसी की सजा पर मुहर लगाई। 30 सितंबर को कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को सौरभ की हत्या का दोषी ठहराया था। सौरभ राजपूत के परिवार ने कोर्ट से दोनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की गुहार लगाई थी।
2: हम तो यही देना संदेश जाते भैया, किसी का भी बच्चे को मारो मत, नहीं रहना उनके साथ, अलग हो जा। अगर कोई लड़का नहीं चाहता लड़की को मार देता है तो वो भी अपने नई लड़की के साथ रहना तो वो भी अलग हो जाए। अगर ये ऐसा काम करेंगे तो उनको भी फांसी की ही सजा होगी।
0: अब सवाल ये है कि आखिर मुस्कान को फांसी कब और कैसे होगी, क्योंकि मुस्कान की दो छोटी बेटियां हैं, एक बेटी सौरभ राजपूत की है तो वहीं दूसरी बेटी साहिल की, जिसका जन्म जेल में हुआ था।
3: साहिल के घर वाले करेंगे, क्योंकि साहिल ने आगे आके बोला था कि भाई मैं ये तुम चाचा बन गए हो, जो उसके जेल बंदी थे, और उन्होंने बोला था मैं बाहर आने के बाद जो है तुम्हें दावत दूंगा। उसने खुले में बोला था कि मेरी बच्ची
2: जो जेल वाली बेटी है उससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, और वो बड़ी वाली बेटी अगर उसके नाना नानी हमें बिना किसी उसके देंगे तो हम रखेंगे उसे अपने पास।
0: सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च 2025 को हुई थी। शव को 5 टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में भर दिया गया था। जुलाई 2025 में जिला कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था, जिसके बाद आज कोर्ट ने फांसी की सजा देकर सौरभ राजपूत के परिवार को इंसाफ दिया। मेरठ से शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो।
4: दिल्ली पुलिस तुम लट्ठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
5: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
6: डोंट ट्विस्ट।
4: क्या हुआ?
6: डोंट ट्विस्ट लप से।
4: हर आदमी में
6: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
5: कितना घटिया था यार तरीके से
6: लप लप लप।
7: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: और आप देख रहे हैं आज तक, लेकिन आपको बता दे 2 बजे क्या कुछ होने वाला आपके लिए खास, आप देखते रहिए।
7: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आ गया सोमवार और आ गए
1: चकमक चाचा।
0: हाँ चाचा, अखबार भाँच रहे हैं। चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चिचा कब जाएंगे?
2: अरे भैया तो 10-10 में हिसाब ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा, हम अपना मुद्दा उठा चुके
0: पुराने। अच्छा, कब उठाए?
2: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए।
0: अच्छा
2: हाँ, तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग तरह इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे दन दन दन दन करके, ऐसा ये सब नहीं था अपना मामला
3: जी,
2: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
0: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है आपका।
2: टूटा भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे प्रोवाइड चलती थी दर्द होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर मुद्दा रखे था हाँ एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
0: अच्छा
2: और क्या,
0: आपका मतलब हम लोग डर जाते हैं?
2: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल, जहाँ पुलिस सिटी में भेजे उसमें भागने लगता हूँ।
0: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही है।
2: किधर?
0: चाचा हम खेल गए अब की।
4: ये हिंदुस्तान है अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए, यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है, और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूँ, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए, इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूँ, दिल से प्यार से, देखिए मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए, इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस, और घबराइए मत। कोई डर रहा है?
5: नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं।
4: खुश हो?
6: यस सर।
4: शाबाश, लव यू।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे भले ही अब तक पुलिस की पकड़ से दूर हो, लेकिन उसके नए वीडियो ने केस में खलबली मचा दी है। वीडियो जारी कर श्रद्धा ने एक तरफ खुद को बेगुनाह बताया तो दूसरी तरफ नेताओं और अधिकारियों के साथ नाम जोड़े जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। श्रद्धा का कहना है कि सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ बेवजह अफवाहें फैलाई जा रही हैं और उसका किसी से कनेक्शन नहीं है।
3: मेरे नाम को ऐसे मत उछालिए, आप हर किसी के साथ मेरा नाम मत जोड़िए। आप लोगों ने कई नेताओं कई अधिकारियों के साथ मेरा बेवजह का नाम जोड़ा है, क्योंकि हाँ, अगर वो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे से कोई ऐड है तो आप मेरे बारे में ऐसी अफवाह मत फैलाइए। मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती हूँ।
2: श्रद्धा दावा करती है कि वो गायब नहीं है और पुलिस के सामने आकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, श्रद्धा ने शिवा शर्मा की मौत को हत्या मानने से इनकार करते हुए दावा किया कि शिवा ने आत्महत्या की थी। अब सवाल ये है कि पुलिस के सामने आने का दावा करने वाली श्रद्धा कब तक जांच में शामिल होती है और शिवा की मौत को लेकर किए गए उसके दावों की हकीकत क्या निकलती है।
3: मैं अफवाह मत फैलाइए, मैं कहीं गायब नहीं हूँ, मैं पुलिस में आके बयान देना चाहती हूँ। मैं उन्हें सब कुछ सच सच जो कुछ भी है मैं उन्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कुछ भी किसी लड़की के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि मेरा क्या गुनाह है, मैंने कुछ नहीं किया है। और जो कुछ भी सच है शिवा शर्मा कांड से रिलेटेड कि उसकी कोई हत्या नहीं हुई थी, वो एक सुसाइड था, वो मैं आप लोगों से बताने वाली थी।
2: एक तरफ श्रद्धा दुबे वीडियो जारी कर पुलिस के सामने आने की बात कह रही है तो दूसरी तरफ उसकी एसयूवी मिलने की खबर ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा के पास पार्किंग में श्रद्धा की एसयूवी कार मिली है। जानकारी के मुताबिक UP 32QQ0111 ये गाड़ी 10 अक्टूबर से पार्किंग में खड़ी थी। श्रद्धा गाड़ी पार्क करने के बाद नेपाल जाने की बात कहकर वहां से निकली थी। हालांकि श्रद्धा की मौजूदा लोकेशन और नेपाल जाने की पुष्टि अभी नहीं हुई है। गाड़ी मिलने की खबर के बाद लखनऊ पुलिस के बहराइच पहुंचने की जानकारी भी सामने आई। दरअसल 9 अक्टूबर को लखनऊ में कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शिवा श्रद्धा दुबे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। आरोप है कि वो अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर स्थित फ्लैट की बालकनी से नीचे गिर गया था। शिवा की मां ने FIR में श्रद्धा दुबे, उसकी बहन, ड्राइवर आदिल और अन्य लोगों पर बेटी की हत्या में साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। परिवार का दावा है कि शिवा को कई दिनों से ब्लैकमेल किया जा रहा था और उसे धमकियां दी जा रही थी। श्रद्धा को लेकर आरोप ये भी है कि उसके कई गैंगस्टर से संबंध थे। ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। इस तस्वीर में श्रद्धा अभिषेक सिंह और बाबू सिंह नाम के गैंगस्टर के साथ दिख रही है। अभिषेक सिंह 2020 के अपहरण के मामले में गिरफ्तार भी हो चुका है। अब ये वीडियो देखिए, इसमें दूसरे गैंगस्टर के साथ श्रद्धा दुबे दिख रही है। इस गैंगस्टर का नाम जुल्फिकार है जो जेड कंपनी नाम का गैंग चलाता है और फिलहाल मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है। खुलासे के मुताबिक ऐसे ही गैंगस्टर से श्रद्धा दोस्ती करती थी, फिर उसके नाम और नेटवर्क का इस्तेमाल धौंस जमाने के लिए करती थी। जांच के दौरान सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शिवा के शरीर पर 10 गंभीर आंतरिक चोटें पाई गई थीं। परिवार ने पुलिस को शिवा की एक डायरी सौंपी है जिससे मामले से जुड़े दूसरे पहलुओं का पता लगने की उम्मीद है। इन सवालों का जवाब पुलिस की जांच और सामने आने वाले सबूतों से मिलेगा। फिलहाल श्रद्धा के वीडियो में किए गए दावे और उसकी एसयूवी मिलने से मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, बहराइच से रामवरण चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।
4: दिल्ली पुलिस, तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
5: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
6: डोंट ट्विस्ट।
4: क्या हुआ?
6: डोंट ट्विस्ट लप से।
4: हर आदमी में
6: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
5: कितना घटिया था यार, तुम्हारा घटिया तरीके से
6: पढ़ा। लप लप लप।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
5: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
6: डोंट ट्विस्ट।
4: क्या हुआ?
6: डोंट ट्विस्ट लप से।
4: हर आदमी में
6: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखिए।
5: कितना घटिया था यार।
6: लप लप लप।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सबसे बड़ी अदालत तक काफिले के साथ मार्च पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा सफाई दें और मंशा साफ करें। प्रदर्शनकारियों की अर्जी पर निर्देश, दोनों पक्ष अपने अपने वीडियो सुरक्षित रखें। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस कमिश्नर का हलफनामा, कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते नहीं दी गई सीजेपी को प्रदर्शन की परमिशन, केंद्र के अनुरोध पर खास इलाके में बंद किया इंटरनेट। पंचायत आज तक राजस्थान में बोले केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल, परिसीमन बिल पास कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध, डीएमके से भी हुई है बात, राहुल पर कहा उनके पास कोई सबूत नहीं, माहौल खराब कर रहे। बांग्लादेश में हिंसक उपद्रव से प्रेरणा लेने वाले नेहा बोरा के बयान के बहाने बीजेपी का सीधे राहुल गांधी पर अटैक, कहा नेहा और नेता विपक्ष की सोच एक जैसी, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें पोस्टर गर्ल बनाया। जेएनयू में बर्खास्त प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद बिमोल की संसद सदस्यता खत्म करने के लिए स्पीकर से मिला बीजेपी महिला सांसदों का डेलीगेशन, ओम बिरला को सौंपी अपनी मांग की चिट्ठी।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach in association with Bharat.
0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आएंगे खास खबरें, कौन कौन सी सुर्खियां हैं जो आज देश में लगातार छाई हुई हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जिन चार खबरों पर हमारी नजर रहेगी उनमें से पहली खबर है राहुल गांधी से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से सवाल पूछे हैं, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा हमारी नजर कुछ और खबरों पर भी है, जैसे कि सवाल पूछे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा नेहा बोरा के ऐसे बयान पर जिससे अब सीधा टारगेट लग रहा है राहुल गांधी के ऊपर। इसके अलावा चर्चा होगी जेएनयू के जो प्रोफेसर जो कांग्रेस के सांसद हैं उन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब दिल्ली पुलिस ने उन पर FIR भी की है, इसको लेकर किस तरह से खींचतान चल रही है और किस तरह से अब कांग्रेस ने भी अंकिता भंडारी वाला मुद्दा उठा लिया है, तो ये सब रहेगी। साथ ही में आपको मिलाएंगे सूरत के 16 मुन्ना भाई से, तो ये सारी बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी नजर है। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है। दरअसल उनका जो मार्च सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ा था उसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपकी मंशा आखिर क्या थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा है कि आपकी मंशा उस मार्च द्वारा क्या थी, ये आप साफ करें। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने एक मार्च बुलाया था और उसको लेकर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि मार्च के दौरान हुई अव्यवस्था को लेकर याचिकाकर्ता राहुल गांधी को अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए। और मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट को या फिर वहां मौजूद वकीलों को डरा नहीं सकता है। हमारे सहयोगी संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। संजय, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कहा मुख्य न्यायाधीश ने, किस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल हुआ, क्या सवाल थे जो राहुल गांधी से पूछे गए हैं?
2: राहुल गांधी से सीधा सीधा सवाल कोर्ट ने कहा है कि वो ये बताएं कि आखिर उन्होंने मार्च क्यों किया था और मार्च में इतनी व्यवस्था फैली, हजारों लोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिकाएं दाखिल करने आते हैं, तो क्या वो इस तरह से मार्च लेकर आते हैं और इस तरह की व्यवस्था हुई? आज अगर हम पूरी सुनवाई की बात करें तो अंदर सुप्रीम कोर्ट में नोटिसों की बरसात होती रही और बाहर मौसम बरसता रहा बुरी तरह, यानी काफी घनघोर बारिश वहां भी चल रही थी और उसी समय बाहर भी बारिश चल रही थी। इतने मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, SIR से लेकर FIR तक तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, राहुल गांधी से बताने को कहा है। और साथ ही कोर्ट की टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी अपने किसी भी एक्ट से कोर्ट को डरा धमका नहीं सकता है, वकीलों को डरा धमका नहीं सकता है। कोर्ट ने वकीलों से भी कहा कि आपको जिस तरह आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान दीजिए और इस तरह की चीजों पर ध्यान ना दें। महिलाओं के महिला पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसमें भी नोटिस जारी किया गया, जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाना या वहां पर प्रदर्शन को प्रतिबंधित करना, इस पर भी कोर्ट ने पूछा है कि उसके लिए तो एक कमेटी बनी थी उपराज्यपाल की अगुवाई में, उस कमेटी का क्या हुआ, क्या उस कमेटी के सामने सारी चीजें लेकर उठाई गई थी या फिर किसने ये फैसला लिया अपने तय लिया या पूरी प्रक्रिया के तहत लिया। कोर्ट ने ये बताने को कहा कि पहले प्रक्रिया बताइए और फिर ये बताइए क्या प्रक्रिया का पालन किया गया था। राहुल गांधी के लिए बहुत उन्हें जवाब देना पड़ेगा, यानी जो कानून के जानकार है वो तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि राहुल गांधी के लिए अपने को जस्टिफाई करना मुश्किल हो, लेकिन उनके पास भी फ्लीट ऑफ एडवोकेट्स है और कानून के बड़े बड़े दिग्गज हैं उनकी टीम में, तो जाहिर है कि वो कोई ना कोई उपाय तो बता ही देंगे और कोई ना कोई ऐसी ऐसे आधार और तथ्य देंगे जिस पर वो अपने एक्ट को जस्टिफाई कर सके।
0: जी हमारे साथ इस वक्त मौसमी सिंह भी जुड़ गई है हमारी सहयोगी, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मौसमी, हालांकि आज राहुल गांधी के घर पे एक और चाय पार्टी भी है तो व्यवस्था वहां पर है ज्यादा, लेकिन क्या इस जो बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको लेके कोई रिएक्शन प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की तरफ से अभी तक आई है?
3: देखिए अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं और अंजलि जिस तरीके से संजय जी भी बता रहे थे कि 40-46 याचिकाएं थी, एक सवा घंटे तक लगातार इन याचिकाओं को लेकर जद्दोजहद, तमाम वकील थे, पूरा एक तरीके से काफ़ी भीड़ थी कोर्ट में और याचिकाओं पर सुनवाई होती रही, तो जाहिर तौर पे कांग्रेस की भी नज़र इस पर होगी। जिस तरीके से नोटिस राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केरल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी जारी हुआ है एक तरीके से पूरी याचिका पर, तो अपने आप में जवाब देने को कहा गया है। जिस तरीके से जो भीड़ यहाँ पे 12 अक्टूबर को इकट्ठा हुई थी उसको लेकर गौरव भाटिया ने याचिका दी थी उनके खिलाफ और उसके उस पर भी नोटिस इशू हो गया है, तो जाहिर तौर पे कांग्रेस में भी मंथन हो रहा होगा कि एक जो सियासी पूरी यात्रा थी उनकी उस पर किस तरीके से कोर्ट में जवाब देना है, क्योंकि कोर्ट ने प्रेशर की बात की कि सुप्रीम कोर्ट कोई आइवरी टावर में नहीं बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को पता है सड़क पर क्या हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट जो भी बाहर आप लोग क्या बोलते हैं और कोर्ट के भीतर क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरह से ये सब जानता है, तो हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं चलेगा। तो अपने आप में ये एक बड़ी बात थी और आप देखिए कि चाहे वो इंडिया ब्लॉक की याचिका हो, चाहे वो गौरव भाटिया की तरफ से कहा गया हो कि सुप्रीम 12 अक्टूबर को जो घटना घटी उसको लेकर विपक्षी नेताओं के खिलाफ याचिका हो, चाहे वो महिला पत्रकार को लेके कोर्ट ने कहा कि कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होना चाहिए, तो तमाम ऐसी याचिकाएं थी जो अभी पिछले 2-3 हफ्ते में आंदोलन हुए जो पुलिस को लेकर जो पुलिस एक्शन था उसके खिलाफ जो याचिकाएं थी उसमें भी बहुत अहम बात कही कि वीडियो फुटेज जो है वो प्रिजर्व करना है, चाहे वो प्राइवेट पार्टीज हो या दिल्ली पुलिस को भी कहा गया कि सारे वीडियो फुटेज और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज जो है वो प्रिजर्व होने चाहिए। तो कुल मिलाकर काफी पॉलिटिकल ये हियरिंग थी और शायद इसीलिए हम लोग भी कोर्ट में मौजूद थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कमी होता है कि पूरी सियासी दलों को और पूरे विपक्ष के नेताओं को और दिल्ली पुलिस को इस तरीके से और सरकार से भी जवाब मांगा गया है जंतर मंतर को लेकर, तो इस तरह का पूरा मामला बेहद सियासी।
0: जी बिल्कुल, आप लोग हमारे साथ बने रहे, मामला बड़ा है। आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर जो आ रही है, जैसे कि मौसमी भी हमें बता रही थी, आज अदालत ने साफ किया है कि जितना भी सीसीटीवी फुटेज है उसको दिल्ली पुलिस को सुरक्षित रखना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो प्राइवेट सिटीजन्स है, जो लोग वहां प्रदर्शन करने भी गए थे, अगर उनके पास भी कोई फुटेज है तो वो उसे संभाल कर रख सकते हैं अपनी जरूरतों के हिसाब से। तो प्रदर्शन के दौरान पुलिस की जो कथित ज्यादतियां थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, हमने वीडियो वर्सेस वीडियो का वॉर तो देख लिया, एक तरफ से NSUI और दूसरे प्रदर्शनकारियों ने अपने वीडियो दिखाए थे और आरोप लगाए थे कि उनके साथ ज्यादतियां हुई, और आज पुलिस ने भी यही दावा कर दिया, उन्होंने अपने वीडियो जारी कर दिए, ऐसे में कोर्ट ने क्या आदेश दिया है?
2: 46 कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोनों अपने अपने वीडियो प्रिजर्व करके रखिए, समय आने पर हम वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। इधर पुलिस भी कह रही है कि हमको असॉल्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हमें असॉल्ट किया जा रहा है। राहुल गांधी भी कल 4-5 स्टूडेंट्स को लेकर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाजिर थे, जिन्होंने कहा हमें पीटा, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। उधर पुलिस के अधिकारी भी कह रहे हैं कि हमारे साथ क्या, पुलिस के अधिकारियों को SC ST Act में मामला दर्ज करा दिया है, तो उनके पास जो वीडियो फुटेज है, तो दोनों तरफ अदालत ने कहा है, और अदालत का धर्म भी है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद, दोनों के सबूत देखने के बाद, एक तरह के सबूत की तरह उन्हें वो किया जाएगा, और अदालत खुद अपने विवेक से निर्णय लेगी कि आखिर ज्यादती करने वाले लोग कौन हैं, ज्यादती के आरोपों में कितनी सच्चाइयां हैं, और तह तक जाने के लिए अदालत के लिए वो वीडियो काफी कारगर साबित होंगे। लिहाजा अदालत ने दोनों पक्ष को बोला है, जो प्राइवेट वीडियो जिन्होंने बनाए हैं उनको भी, यानी याचिकाकर्ताओं की तरफ से वो लोग हैं, और पुलिस ने जो वीडियो बनाए हैं, इसलिए 12 तारीख के जो का जो प्रदर्शन था उसमें बॉडी कैमरे पुलिस ने बाकायदा लगाए हुए थे कि जिस तरह से पुलिस को बदनाम करने की साजिश हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से वो कैमरे लेकर, कैमरे लगाकर जाएंगे, और हमारे पास भी फुटेज होंगी, ड्रोन के फुटेज हैं, बाकी अन्य फुटेज हैं, तो उन सब का दोनों अपने अपनी बातों को पुष्टि करने के लिए, तथ्यों को साबित करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और कोर्ट वो वीडियो देखेगा।
0: जी संजय और मौसमी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आप रुख करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। ये खबर नेहा बोरा से जुड़ी हुई है, जो कि आयशा की है। नेहा बोरा को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर और सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का कहना है कि नेहा बोरा दरअसल अपने एक बयान में ये कह चुकी हैं कि उनकी प्रेरणा बांग्लादेश के जेंजी आंदोलन से मिली हुई है, और ऐसे में अब बीजेपी टारगेट कर रही है राहुल गांधी को, क्योंकि उनका कहना है राहुल गांधी की पोस्टर गर्ल है नेहा बोरा। तो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी कि आयसा की अध्यक्ष नेहा बोरा के एक वीडियो संदेश पर बीजेपी ने अब सवाल उठाए हैं। वो बांग्लादेश के सोशलिस्ट स्टूडेंट फ्रंट के छठे राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए भेजे गए संदेश में नेहा बोरा ने भारत के जेंजी आंदोलन को बांग्लादेश के छात्र आंदोलन से प्रेरित बताया। अब इसके बाद बीजेपी के प्रदीप भंडारी ने नेहा बोरा को राहुल गांधी की पोस्टर गर्ल बताते हुए आरोप लगाए कि विपक्ष का विरोध सिर्फ राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि बीजेपी कह रही है कि बांग्लादेश से तार जुड़े हुए हैं।
4: We present you our red salute, and we know that the Gen Z movement that we are seeing everywhere in this country first started in Bangladesh. And congratulations to you for showing us the way, for showing us and extending solidarity to the young people of this country. We know that the movement that began in Bangladesh was for democratic and voter rights. Today, the movement that the young people are participating in and leading is also a movement for democratic and voting rights. We know that the fight that you fight against religious fundamentalism in your country is also a fight that the Gen Z and the young people of this country fight today.
5: Bangladesh mein hua kya tha? Ek group of Islamists ne bheed ke sahare, arajakta ke sahare, pure ke puri vyavastha ko tehas nehas karne ka prayas kiya. Unka maksad regime change tha. Matlab aaj ye sabit ho chuka hai कि राहुल गांधी जब लोकतांत्रिक रूप से अपने परिवार को सत्ता में नहीं ला पा रहे हैं, तो अब ये स्पष्ट हो रहा है कि राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम भारत में लोकतंत्र को तहस नहस करने की एक साजिश रच रहे हैं। ये पॉलिटिकल रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक एनार्किक मार्च है और एक एनार्किक रिवोल्ट है।
0: बीजेपी को अब इस सब में एक बांग्लादेश कनेक्शन भी नजर आने लग गया है। ऐसे में वो लगातार राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। उनका कहना है कि नेहा बोरा उनकी पोस्टर गर्ल है, सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर।

0: बांग्लादेश कनेक्शन भी खंगाल रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें प्रदीप भंडारी ने कई सवाल उठाए हैं नेहा बोरा को लेकर। नेहा बोरा का कहना था कि जेंजी के जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं अलग अलग देशों में, उसी से प्रेरणा ली गई थी। हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, आइए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। पीयूष, बीजेपी को इसमें कैसे बांग्लादेश कनेक्शन नजर आ रहा है?
1: जी बिल्कुल अंजलि, आपको याद होगा कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी नेहा बोरा के द्वारा, और उस बातचीत में नेहा बोरा ने ये कहा कि वो चाहती हैं जिस तरह से बांग्लादेश में रिवॉल्यूशन आया, वहां पे तख्ता पलट किया गया, वैसे ही भारत में हो और एक पूरा रिवॉल्यूशन जो है वो कैरी आउट किया जाए। उसके बाद बीजेपी का ये मानना है कि जो नेहा बोरा इस तरह की बात करते हैं उनके कंधे पर हाथ रखते हुए राहुल गांधी मार्च निकालते हैं। वहीं बीजेपी का साफ साफ ये भी कहना है कि कुछ दिनों पहले एक ट्विटर स्पेस पर प्रशांत भूषण भी देश में ब्लडशेड की बात कर रहे थे, रिवॉल्यूशन की बात कर रहे थे, और महज 24 घंटे के बाद राहुल गांधी उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक पूरी के पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, देश में अनार्की लाने की इस तरह की बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, और जो माध्यम है वो इन लोगों को बनाया जा रहा है, चाहे वो नेहा बोरा जैसे लोग हों या प्रशांत भूषण जैसे लोग हों, इनको माध्यम राहुल गांधी बना रहे हैं और देश में कहीं ना कहीं अस्थिरता लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन अब इन पूरे आरोपों पर कांग्रेस का क्या कहना है या नेहा बोरा का क्या कहना है या फिर प्रशांत भूषण का क्या कहना है, वो अभी आना बाकी है।
0: जी पीयूष, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। लगता है कि एक और वीडियो वॉर शुरू हो चुका है। इस बार एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से जो आरोप लगाए गए थे दिल्ली पुलिस को लेकर, उसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने अपने वीडियो जारी कर दिए और अब वो आरोप लगा रहे हैं एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को। आपको बता दें कि हम आपको तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक 10 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन की, जिसमें झड़प नजर आई थी सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच, और दूसरी तस्वीर हम आपको एनएसयूआई के प्रदर्शनकारियों के द्वारा जारी की गई वीडियो, माफ कीजिएगा, दिल्ली पुलिस के वीडियो की दिखा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं एनएसयूआई के प्रदर्शनकारियों पर कि उन्होंने मारपीट की और उन पर अब FIR भी दर्ज की गई है।
2: बस को रोकने का प्रयास करते हैं कि हम लोग बस से उतर के कैसे तैसे बस के नीचे बैठ जाते हैं कि कैसे भी हमारा प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू रन करता रहे, लेकिन चंचल यादव जी ऐसा करती है कि वो मेरे गले को जोर से दबा के मुझे पुश कर देती है ताकि मैं पीछे जाके सीट पे पीछे गिर जाती हूँ, और फिर मुझे मेरे मुंह पे ऐसे मतलब स्क्रेच, मतलब पूरे नाखूनों से पूरा स्क्रेच करके, मेरे यहाँ पे स्क्रेच भी आया, इधर कान पे भी मतलब पूरा लगा है, और स्क्रेच करने के बाद वो मुझे, मैं उनके झड़प देती हूँ तो वो मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारती है कि लो तुम्हारे मुंह पे एक और तमाचा।
3: और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूँ, दिल से प्यार से, देखिए मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए, इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए।
0: और आइए अब सीधा रुख करते हैं राजस्थान पंचायत आज तक का।

0: सबसे पहली बात यह है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं
1: जी
0: राहुल गांधी जी,
1: हाँ,
0: वो इस मुद्दे को कोई पहली बार तो नहीं उठा रहे। इस मुद्दे को तो लगातार उन्होंने उठाया है, उसके बाद वो कई चुनावों में गए हैं। अगर एसआईआर से उनको इतनी दिक्कत है तो एसआईआर के बाद तो उनकी केरल में विधानसभा की सरकार बनी है, तो क्या उनकी सरकार गलत है? एसआईआर से उनको अगर दिक्कत है तो तमिलनाडु में भी एसआईआर हुई, जिस पार्टी के साथ वो थे वो पार्टी चुनाव हारी, और जिस पार्टी के वो विरोध में चुनाव लड़े थे वो 20 घंटे में उनके साथ चले गए, तो क्या उनके साथ ही गलत थे, एसआईआर गलत थी, या ये प्रक्रिया गलत?
1: वो कहते हैं कि आप हर बॉल फिक्स नहीं करते हैं मैच में।
0: क्या नहीं करते?
1: हर बॉल फिक्स नहीं करते हैं मैच में, आप कुछ बॉल फिक्स करते हैं, मतलब आप बिहार में, बंगाल में करते हैं, आप तमिलनाडु केरल नहीं करते क्योंकि वहां पर ऐसे भी आपका स्टेक नहीं है।
0: इसीलिए उनसे अभी किसी ने पूछा कि भाई ये आपको एसआईआर पे कोई

0: तर्क लगता है क्या है, फैक्ट क्या है, तो वो बोले मुझे फीलिंग आती है। अब ये फीलिंग का क्या मतलब है, आप एक बात बताइए।
1: हाँ।
0: फैक्ट है नहीं, एविडेंस है नहीं, कोई रेगुलेटरी है नहीं, फिर मुझे फीलिंग आती है, तो
1: 13 करोड़
0: वो रॉयल्टी है।
1: 13 करोड़ लोगों के नाम कटे हैं, वो फीलिंग में थोड़ी कटे हैं सर।
0: अच्छा, ये SIR कब हो रही है? 24 साल बाद। कितने साल बाद हो रही है? 24 साल बाद। पहली बात, मैं आपको दो तीन चीजें बहुत क्लियर करी। SIR का जो प्रोविजन है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 21 में है।
1: ठीक है।
0: कब आया? 1950 में इनकी सरकार थी। उसका जो विस्तार हुआ, मतलब सेक्शन 21 में जो एक बड़ा स्कोप को किया, वो कब किया? 1956 में और 1966 में। ये दोनों भी अमेंडमेंट कब आए? जब इनकी सरकार थी। SIR जो अभी भारत सरकार इलेक्शन कमीशन कर रहा है, ये पहली बार नहीं है। SIR देश में पहले 8 बार हो चुकी है, आपको भी पता होगा, नहीं तो मैं आपके पास फैक्ट भी लाया था। 1952 में पहला साइकिल हुआ, 57 में सेकंड साइकिल हुआ, 61 में थर्ड साइकिल हुआ, 65-66 में फोर्थ साइकिल हुआ, 83-84 में फिफ्थ साइकिल हुआ, और वो क्या हुआ? ओनली सेलेक्टेड हाई माइग्रेशन स्टेट्स। आप भी 2003 में रांची में थी, हम भी अजमेर में थे, आज हम 2025 में दिल्ली में आ गए। क्या वो डिलीशन नहीं होना चाहिए? माइग्रेशन कितना ज्यादा हुआ है। 1983-84 में तो केवल माइग्रेशन पे हुआ। उसके बाद सिक्स साइकिल 1987-89 में हुआ, सेवन साइकिल 92-95 में हुआ, एट साइकिल 2002 में हुआ, अब 2005 तक हुआ। और 2005 तक होने के बाद आज 20 साल बाद ये 9th साइकिल हो रहा है, तो ना तो SIR पहली बार हो रही है, ना SIR बियॉन्ड द स्कोप हो रही है, ना बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हो रही है। SIR एक परमानेंट प्रक्रिया चुनाव आयोग की है, वो चुनाव आयोग कर रहा है।
1: ठीक है, यहां तक आपकी बात ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव तो ऑन रिकॉर्ड SIR का समर्थन करते हैं, वो कहते हैं SIR होना चाहिए। आप SIR में तो पीछे के दरवाजे से
0: इसका मतलब ना मंत्री, बात सुनिए, इसका मतलब तो फिर इंडिया गठबंधन के फाउंडेशन में ही मतभेद है। अब अखिलेश यादव समर्थन कर रहे हैं,
1: नहीं, नहीं, नहीं।
0: राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, और सरकार के खिलाफ दोनों एक रथ पे चढ़ के
1: गड़बड़ियों की बात दोनों कर रहे हैं ना। यहाँ पर दोनों मिले हुए, अब गड़बड़िया मैं आती हूँ सर, एक एक करके आते हैं। ठीक है, गड़बड़िया क्या कह रहे हैं? वो दो गड़बड़ियों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, उस पर पॉइंटेड जवाब। फॉर्म 6 से ही शुरू करते हैं, इस पर अनेकों जवाब आ रहे हैं कि हमने फॉर्म 6 तो बदला ही नहीं है, हमने एक डिस्क्लोजर साथ में डाला है, एक अनेक्सर साथ में डाला है, लेकिन ये तो पहले नहीं था। इसका क्या मकसद है पूछने का कि आपके माता पिता का जन्म कहाँ हुआ, आपके दादा दादी का जन्म कहाँ हुआ, ये अलग से क्यों डालने की जरूरत पड़ी? अगर एक सेकंड सर, एक इसी का एक कोरोलरी है, अगर ये घुसपैठियों को पकड़ने के लिए था तो वो भी डेटा नहीं आया, और घुसपैठियों को पकड़ने का काम गृह मंत्रालय का है, चुनाव आयोग का तो है नहीं, तो इसका मकसद क्या था सर?
0: अंजना जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और आपके क्वेश्चन का सार और सूत्र ये है कि SIR में जो आपने अपने जो डिस्क्लोजर लगाए हैं, क्या वो वैलिड है?
1: हाँ,
0: यही है,
1: क्योंकि ये खबर छपी थी इंडियन एक्सप्रेस में।
0: हाँ, आप पहले अपन दोनों, मतलब राहुल गांधी अखिलेश यादव की तरह अलग अलग फुटिंग पे ना हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग तो एक होनी चाहिए।
1: अच्छा, ठीक।
0: वो अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए, आपका क्वेश्चन और मैं आंसर। हाँ, आपका सीधे सीधे SIR पर ये कहना है कि भाई इलेक्शन कमीशन ने जो डिक्लेरेशन अलग अलग करे हैं वो करने की क्या आवश्यकता थी, यही है,
1: क्योंकि वो बदलाव है,
0: क्योंकि वो बदलाव है।
1: हाँ,
0: ठीक है,
1: जिसके लिए उनको सरकार के आपके पास आना चाहिए था।
0: अब आप सुन रहे हैं।
1: हाँ,
0: मैंने आपको पहले कहा है कि सेक्शन 21 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये 1950 में जो एक्ट है, इसमें लार्ज स्कोप भी कांग्रेस ने ही अमेंडमेंट में किया, 56 और 66। दूसरा मैंने आपके सामने कहा कि एसआईआर के 8 सर्कल पहले हो चुके और उसमें भी एक सर्कल केवल माइग्रेशन के लिए हुआ। अब जब ये बिहार के केस को इन्होंने एसआईआर में चैलेंज किया तो बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी और ये सच है कि 2003 में जब बिहार में एसआईआर हुई तो उसमें केवल चार चीजें जोड़ी गई, एनआरसी रजिस्टर अगर अवेलेबल है, सिटीजनशिप अगर आपके पास है, वैलिड पासपोर्ट अगर आपके पास है, बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है। तो बाद में जब इनका ये सारा विषय रखा गया तो कोर्ट ने कहा कि इस बार तो डॉक्यूमेंट बढ़ा करके 11 कर दिए, मतलब ज्यादा ऑप्शन दिए हैं कि ये 4 होने के अलावा और 7 डॉक्यूमेंट जोड़ करके बड़ा बनाया। ये तो इलेक्शन कमीशन का अपना निर्णय है कि भाई 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है। फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये आया कि भाई 11 के साथ 12वां आधार कार्ड भी जोड़ा जा सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट मांगना कोई हमारी रिजीम में पहली बार हुआ है, स्कोप के बाहर हुआ है, सेक्शन 21 के स्कोप के बाहर हुआ है, ऐसा तो है ही नहीं। यही तो मैं कह रहा हूं कि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, कोई भी चीज ये चूंकि इन बिटवीन इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टियों में जो कुछ लोग झूठ बोल रहे थे उन्होंने इसको चैलेंज करा कि भाई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाने को उन्होंने चैलेंज करा, सरकार तो इसमें बीच में कहीं है ही नहीं। लेकिन जब मैं वो जजमेंट पढ़ रहा था जिसमें जो एक्स्ट्रा 11 लगे, 12वां सुप्रीम कोर्ट ने आधार को उसको साथ जोड़ने को कहा,
1: ठीक है,
0: उस जजमेंट में कंक्लूजन क्या है मैं एक मिनट आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अकॉर्डिंगली वी होल्ड दैट द डॉक्यूमेंटेशन रिजीम प्रेस्क्राइब बाय द कमीशन रिप्रेजेंट ए कंसिडर्ड एक्सरसाइज ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन इन फर्दरेंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। ये जो डॉक्यूमेंटेशन रिजीम आप लाए हो, जो भी उन्होंने एग्जामिन किया कि भाई 2003 में तो 5 डॉक्यूमेंट थे, आपने इसको और बढ़ा दिया है, ये जो डॉक्यूमेंटेशन स्कीम है, ये जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट मिला है उसके अकॉर्डिंगली, आगे और सुन लो, एक लाइन ही और पढ़ूंगा, द क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, भिन्न भिन्न प्रकार के है ना, द क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द एक्सक्लूजन ऑफ सर्टन कैटेगरीज इज बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल क्राइटेरिया, विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, हैविंग अ डायरेक्ट नेक्सस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्ट्रल रोल्स। तो पर्पस भी जो है हमारा सबका ये पर्पस है और हम सब ये मानते हैं कि लोकतंत्र के अंदर जो हम तो चूंकि गांधी जी के स्वराज को सही मायने में ग्रामीण में क्षेत्र में लागू कर रहे हैं कि आपका साधन और आपका साध्य, आपका एंड और आपका मीन्स, दोनों में पवित्रता होनी चाहिए। तो ये तो यहां पर ऑब्जर्वेशन है, इसी एसआईआर को इन्होंने ही चैलेंज करा, इन्होंने ही सब कुछ करा, पूरा डिस्क्रेशन है, कोई पढ़ रहा नहीं है, कोई देख रहा नहीं है, कोई उसकी रीजनेबिलिटी को ढूंढ नहीं रहा है। और ये तो जो कुछ भी दिल्ली में कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं कि नेता प्रतिपक्ष रोज नई एक रील बनाने की साइट ढूंढ रहे हैं, या तो बैरिकेड हो सकती है या कोई वो हो सकती है, कोई क्या कहते हैं, कोई नुक्कड़ हो सकता है, कोई फ्रेंकी खाने की जगह हो सकती है। और अब तो उनको समझना चाहिए कि वो एंग्री यंग मैन नहीं रहे हैं, अब तो एंग्री एजेड मैन हो गए हैं। तो एंग्री एजेड मैन की तरह वो रोज फूफा कर रहे हैं वहां पे जाके।
1: किसके एजेंट हो गए हैं?
0: एजेड नहीं, एजेड हाँ। नहीं, एंग्री एजेड मैन,
1: उम्र दराज कह रहे हैं आप राहुल हाँ। गांधी को
0: 56 साल के हो गए।
1: अच्छा ठीक है, वापस टॉपिक पर आते हैं सर। फॉर्म 6 में जो ये अनेक्षर ऐड किया गया है उस पर मुझे अभी भी स्पष्टता से जवाब नहीं मिला, क्योंकि सुनिए ना सर, एसआईआर ने जो आप बिहार के केस में कह रहे हैं, एसआईआर को अप्रूव किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये बात है हाँ। लेकिन उसी अनेक्षर पर फिर बाद में कहा कि इस अनेक्षर को हमने अप्रूवल नहीं दिया है, ठीक है ना सर। और ये भी खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी कि 2 चुनाव आयुक्त कोर्ट तक गए, अब 2 मुख्य चुनाव जो है, 2 चुनाव आयुक्त वो कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखते हैं कि हम इससे सहमत नहीं है बदलाव से।
0: अब
1: फिर उसी के बाद ये तूफान आप पर आया।
0: फिर मैं आपको कह रहा हूं पहले तो आपके सामने पढ़ दिया, आपको नहीं ध्यान आ रहा है तो आपको मैं फिर बता रहा हूं, पैरा 161 फिर पढ़ लीजिए। द क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द एक्सक्लूजन ऑफ सर्टन कैटेगरीज इज बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल क्राइटेरिया हैविंग ए डायरेक्ट नेक्सस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्ट्रोल रोल. ये अप्रूवल है.
1: ठीक है, चलिए अब अगले फॉर्म सेवन पर आते हैं. मैं समझ गई आप वो पार्ट कोट कर रहे हैं.
0: अब आप देखिए
1: जो भी होगा इसमें कोर्ट से ही होगा.
0: हाँ. अब फॉरम सिक्स पे तो मैंने बताया है, बाकी कोर्ट का तो पूरा पावर है. फॉरम सिक्स पे वो दोबारा से जो सब जुडिस मैटर है, फॉरम सिक्स पे ऑल और कंफ्यूजन है, निश्चित रूप से कोर्ट विचार करे. सब जुडिस मैटर में तो वो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के क्लैरिफिकेशन पे वो पहला विषय है. अब दूसरा विषय आप सुन लीजिए, इलेक्शन कमीशन के दो कमिश्नर ने एसआईआर पर नहीं लिखा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर, जो आप इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट आया है उसके पैरा थ्री और पैरा फोर को पढ़िए, उसमें तो सरकार का कोई इंटरफेरेंस भी नहीं है. इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो उनका क्लैरिफिकेशन वहां पर है. अब आप मेरे से फॉरम सेवन की बात कर रहे हैं. तीन तरह के फॉरम ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है, फॉरम सिक्स, फॉरम सेवन और फॉरम एट, जो चुनाव प्रक्रिया में होते हैं.
1: जो हमारे दर्शक नहीं समझ रहे फॉर्म सेवन उनको बता देना, क्योंकि फॉर्म सिक्स का है. फॉर्म सेवन में यह है कि कोई भी बूथ लेवल एजेंट शिकायत कर सकता है. तो आरोप यह है कि आपके जो बीएलए है वो शिकायत करते हैं कि भाई ये वाली जगह से ना ये लोग बीजेपी के वोटर नहीं है, फिर शिकायत पर उनका वोट यहां से कट जाता है. तो फॉर्म सेवन पे बड़ा खेल हो रहा है, ये आरोप है. इस पर आपका जवाब?
0: ये आरोप है. मैं भी आपके दर्शकों को बता देता हूं, फॉरम सिक्स का अर्थ होता है इंक्लूजन. अगर किसी का कोई नाम नहीं है, मेरा नाम अगर नहीं आया है, तो फॉरम सिक्स भरकर इंक्लूजन हो सकता है. एसआईआर की प्रक्रिया, एसआईआर की प्रक्रिया सेक्शन 21 में इलेक्शन कमीशन उसका एक साइकिल पूरा करता है, वो फॉरम सिक्स है. फॉरम सेवन में अगर किसी ने, किसी की डेथ हो गई है, उसका नाम एग्जिस्ट करता है, किसी का माइग्रेशन हो गया है, नाम एग्जिस्ट करता है, किसी का डुप्लीकेशन है, नाम एग्जिस्ट करता है, कोई अपना नाम कटवाना चाहता है, फॉरम सेवन में है. और जो फॉरम सेवन है उसमें किसी भी बूथ पर दो तरह के कार्य लोग रहते हैं. एक सरकार का एजेंट जो बीएलओ कहलाता है, जिस बीएलओ के पास सारी मतदाता सूची होती है. एक हर पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज पार्टी का एजेंट जो बीएलए कहलाता है. मैं आपके चैनल से राहुल गांधी जी की पार्टी को चुनौती देता हूं, वो अपने देश में से, ये तो पूरा देश है, इसमें तो 15 लाख बूथ है, 1000 बूथ एजेंट ऐसे निकाल के दिखा दें जिन्होंने कोई शिकायत करी हो कि भाई ये बीजेपी वालों ने गलत कर दिया या ये इस पार्टी ने गलत कर दिया. बीएलए की अपनी सूची प्रकाशित कर दे कि हमारे ये बीएलए जिसकी नहीं मानी गई. और ऐसा इस देश में कानून नहीं है, आप पुलिस थाने पहुंच जाते हो किसी की रिपोर्ट करने के लिए. मैं आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए और देश के मतदाताओं की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 31 है, उसमें अगर कोई आदमी फॉरम सेवन में मिसचीवियस इंफॉर्मेशन देता है, अगर कोई मिसचीवियस इंफॉर्मेशन देता है,
1: जानबूझ के नाम कटवा रहा है
0: तो उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कार्यवाही का प्रावधान है.
1: पर चुनाव आयोग ये करेगा
0: नहीं? क्यों नहीं करेगा? करना चाहिए.
1: कर रहा है,
0: करना चाहिए.
1: तो आप उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं?
0: हम किसके खिलाफ बोलते
1: हैं कि बीजेपी वाले डिफेंड करने लगते हैं चुनाव आयोग?
0: हमने तो किसी के खिलाफ करी नहीं है. आप बताइए ना, किस करो भाई शिकायत, कोई भी करे. मैं कहता हूं कोई भी करे, बीजेपी करे, कांग्रेस करे, ये तो हर नागरिक का अधिकार है. क्यों, कैसे कोई किसी को खराब कर सकता है? लेकिन उनके बारे में तो आप कहिए जो ये बाकी सारी बातों को छुपाकर केवल भ्रम फैला रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, देश की जनता के साथ झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं. और आप ये बात को तय करिए, मैं आज आपको ये कहता हूं कि ठीक है, आपको सारे राइट है, सारी चीजें है, सब कुछ करने का अधिकार है, आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, आप कर रहे हो. लेकिन ये पूरे भ्रम फैलाने में आप ये तो देखिए कि आपका अपना कंडक्ट क्या है. आपके किसी बीएलए की कोई एक शिकायत नहीं है, आपकी अपनी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप जिस चीज को कह रहे हैं उस चीज से आप कल खुद ही मुकरने का काम कर रहे हैं. आप जिस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए उसमें कोर्ट का निर्णय आया हुआ है, एक पूरा प्रोसीजर और प्रक्रिया है, आप खुद तो किसी का पालन कर ही नहीं रहे हो. और आज मैं ये देख करके आश्चर्यचकित हूं अंजना जी, जो मैं तो दिल्ली के आसपास का ही रहने वाला हूँ, हमारी लड़कियां जो बेचारी पुलिस में भर्ती हुई है उनका क्या दोष है, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार है, उनको किस तरह की गालियां दी जा रही है। वो बच्ची जो आज भर्ती होके गई है, गांव से भर्ती होके गई है, तो गांव की लड़की है, उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, महिला पत्रकारों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। सुप्रीम आपको इलेक्शन कमीशन पसंद नहीं आ रहा, आप इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हो, आपको सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आता आप सुप्रीम कोर्ट पे कहने लग जाते हो, आपको कोई और बात पसंद नहीं आती आप उसको कहने लग जाते हो, आपको मीडिया ठीक नहीं लगता आप मीडिया को गाली देने लग जाते हो, और तो और आप जब अपनी रैली करते हो तो आप अपने एक मुख्यमंत्री का कुर्ता खींच के पीछे करते हो, वो बेचारा बैकवर्ड क्लास का मुख्यमंत्री है। यू आर बिलोंग्स टू ए रॉयल फैमिली, आप एक बड़े परिवार राज परिवार को बिलोंग करते हैं, लेकिन एक बैकवर्ड क्लास का मुख्यमंत्री डी शिव कुमार जो जमीन से आया, आप उसका कुर्ता खींच के उसको बेइज्जती करते हो।
1: सर, आप
0: एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार का लड़का हाँ। निकला हुआ दीपेंद्र हुड्डा, आप उसको धक्का मारते हो, आपसे खुद अपनी भीड़ नहीं संभल रही और ऐसी भीड़ को कह रहे हो कि पुलिस इसको हाथ जोड़ के करे। भाई ये कैसा आपके व्यवहार पे क्या होना चाहिए, आप रोज एक आदमी की फोटो खिंचवाते हो, आप रिग्रेट करो, क्योंकि आपको ये एहसास नहीं है कि कोई भी जमीन का नेता आपके सामने फोटो में दिख जाए। जो रील आप बना रहे हो, कभी आप आकाशवाणी पे रील बना रहे हो, कभी आप बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ के रील बना रहे हो, मतलब आप कोशिश कर रहे हो, यू आर ए एंग्री एज्ड मैन, अहंकारी।
1: पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे,
0: मैं आपसे टिप्पणी का मांग रहा हूँ
1: या बार बार मुझे बता रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि राहुल गांधी ने क्या नाक में दम नहीं कर दिया सरकार के?
0: भाई
1: अरे सुनिए ना सर,
0: आप मेरी बात सुनिए, उनकी नाक में तो डी शिव कुमार ने दम कर दिया क्योंकि कैमरे में शिव कुमार आने लग रहे थे, उनकी नाक में तो दीपेंद्र हुड्डा ने दम कर दिया क्योंकि हटाया क्यों, धक्का क्यों दिया। एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड ड्रामा जिसमें वो एंग्री यंग मैन दिखे, पर वो एंग्री एज्ड मैन है। दीपेंद्र ज्यादा स्मार्ट दिखता है या डी शिव कुमार ज्यादा अच्छे दिखते हैं तो पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं, लोगों को डांट रहे हैं। ऐसे कोई आंदोलन नहीं, आप कोर्ट के जजमेंट है, निर्णय है, प्रक्रिया है, आपको प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है, आप कहीं कुछ नहीं कर रहे, यू ओनली वॉन्ट टू क्रिएट ए ड्रामा और ये देश देख रहा है।
1: तो अगर सरकार सत्ते में नहीं है तो आपने जंतर मंतर को सर डी नोटिफाई क्यों कर दिया, अब इसमें जंतर मंतर की क्या गलती थी?
0: और बड़े तीन स्थान दे दिए, यहाँ तो 150 लोग आ सकते थे, बुराड़ी में तो 1,00,000 लोग आ सकते हैं।
1: आंदोलनकारी कहाँ जाएंगे सर, रामलीला चल रहा है सब जगह,
0: तो बुराड़ी में तो खाली पड़ा है, 1,50,000 लोग हैं, आप क्यों 150 बैठा रहे हो, बैठाओ ना लोग,
1: सबको दूर कर रहे हैं आप।
0: नहीं, दूर हम नहीं कर रहे, आप बैठिए ना, लोकतंत्र में कहाँ मना कर रहे हैं, किस आप। लेकिन एक बात बताइए, किसने अनुमति दी कि आप रात को सुप्रीम कोर्ट चले जाएं? अच्छा मैं एक बात कहता हूँ, वन ऑफ द वेरी सीजन्ड लॉयर एंड वेरी रेस्पेक्टेड लॉयर, मे बी ही इज इन द कांग्रेस पार्टी, अभिषेक मनु सिंघवी, महाराष्ट्र में दिक्कत हुई पॉलिटिकल पार्टी को, इन्होंने मेंशनिंग करके रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट करा, दिस इज द वे। लेकिन आप भीड़ को लेकर के कोर्ट में पहुंच जाओ, और सिंघवी साहब जैसा वरिष्ठ आदमी भी क्या करे, इट्स बाउंड है, वरना उनका भी हाल डीश के शिव कुमार जैसा हो जाए, तो दिस इज नॉट अ वे, हु गिव यू परमिशन, और ये कैसे आप देश को चलाएंगे। इस देश में इम्पार्शियल इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, उसकी रेस्पेक्ट और उसके तो लक्ष्मण रेखा सब खींच के रखते हैं ना, आप पार्लियामेंट की लक्ष्मण रेखा खींच के रखना चाहते हो, ना आप इलेक्शन कमीशन की मर्यादा को देखना चाहते हो, ना आप सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंसी को देखना चाहते हो, दैट मीन्स ये आप पूरा मोबोक्रेसी क्रिएट कर रहे हो। ये देश भीड़ तंत्र से नहीं चलता है, देश लोकतंत्र से चलता है, ये देश मैंडेट से चलता है, ये देश मर्यादा से चलता है, ये देश नियम और कानूनों से चलता है। और ये कोई पहली बार ऐसा यार हुआ ऐसा नहीं है भाई, ये तो 8वीं बार है, ये कोई पहली बार डॉक्यूमेंटेशन हुआ ऐसा नहीं है, ये तो पहले भी हुआ है, ये सारी चीजें सबके सामने हैं।
1: अब अगला सवाल मेरा ये है कि अभी आपने पुलिस में जो महिला काम करती हैं उनकी बात की, और हम सब ने उनके भी वीडियोस देखे, उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा है आंदोलन में, और पूरा देश उनके साथ है क्योंकि वो तो भाई वर्दी पहनकर गांव घर से आने वाली लड़कियां हैं जो पुलिस में है काम कर रही हैं। लेकिन जो पुलिस की ज्यादतियां हुई उसमें आज कोर्ट में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और आपके गृह सचिव दोनों ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी दी है सर, तो ये पुलिस ने भी तो ज्यादतियों पर अपनी बात कही है ना,
0: ठीक है, तो हाँ। ये डीके शिवकुमार से अनकंडीशनल अपॉलॉजी करेंगे या दीपेंद्र हुड्डा से करेंगे, आप जरा पूछ लेना।
1: डीके की आप इतनी चिंता कर रहे हैं, कहीं वहां तो पोचिंग उचिंग नहीं चल रही है?
0: ओबीसी के नेता को इस तरीके से खींचना, इस तरीके से दुर्व्यवहार करना, मैं तो किसी के कंडक्ट की बात करता हूं, कंडक्ट सबके लिए साफ होना चाहिए। मतलब आपका दुर्व्यवहार, आपका व्यवहार देखिए, आपका एरोगेंस देखिए, आपका अहंकार देखिए।
1: आपके लिए सर ज्यादा बड़ा चैलेंज इस वक्त क्या है, 10 अक्टूबर को जो सीजेपी का विरोध प्रदर्शन हुआ, या फिर जो ये विपक्ष एकजुट होकर, क्योंकि उस ट्रक पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी, मैं यूपी के चुनाव पर आपसे बात करूंगी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, तमाम लोग, नेहा बोरा जो लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अनेकों नेता और युवा मौजूद थे और एक बड़ा हुजूम आया था उस दिन राजधानी में। आपको लगता है कि ये बड़ा चैलेंज है आपके लिए दोनों सीजेपी?
0: देखिए, लोकतंत्र में कोई अपना विषय रखता है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई अपना रखो विषय, आपका कोई संशय है तो आप रख लीजिए विषय, क्या दिक्कत है। हम सरकार चला रहे हैं, इसका अर्थ कोई हम ही सुप्रीम होंगे, हमारे से कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, पर हम जवाब तो आपको, हमारे पास जो जवाब देने का तरीका है, हमारे पास जो जवाब देने की संस्था है, उन सारे संस्थानों पे आपको शांतिपूर्ण तरीके से जवाब देंगे। और इनके जो नेता हैं, वो आज तो उनकी रील चल रही है कि वो बांग्लादेश को कह रहे हैं कि भाई हम बांग्लादेश को के लोगों को वो संबोधित कर रहे हैं कि हम तुम्हारी राह पे चल रहे हैं। तो ये तो एसआईआर में सबसे बड़ा झगड़ा ही है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम काटे गए।
1: ये किसकी बात कर रहे हैं सर आप?
0: ये तो आप सुनिए जिसकी बात कर रहे हैं, आप भी देखिए ना, आप सबको ज्यादा जानते हैं।
1: तो सोच रहे थे कि आप नाम बताएंगे, आप नाम नहीं लेना चाह रहे हैं?
0: नहीं, हम तो एक आपके एंग्री एज्ड मैन का ही नाम ले रहे हैं, उसी में सब समा रहे हैं।
1: नेहा बोरा ने ये बोला है, जिसको लेकर आपकी पार्टी ने लपक लिया एकदम?
0: नहीं नहीं, ये तो वर्ड गलत है, लपक लिया है। हमने एक जेन्युइन इनके चेहरे को इन्होंने अपने आप सामने किया है। ये इनका असली चेहरा है, ये इनका असली दर्द है कि बांग्लादेश वालों के नाम अगर घुसपैठियों के थे तो क्यों कटे हैं। आज वो चेहरा सबके सामने आ रहा है, आज वो सच्चाई सबके सामने आ रही है। और इसलिए वो कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, तो एक ना एक दिन तो सच इनका सामने आना था। अभी कुछ दिन और रुकिए, कुछ दिन बाद और चीजें सामने आ जाएंगी इनकी।
1: सच्चाई छिप नहीं सकती कागज के फूलों से, मतलब कागज के फूल आपको ये सब लग रहे हैं। लेकिन अब आते हैं सर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप,
0: मैंने वर्ड बोला है झूठे उसूलों से, जो लोग झूठ की बुनियाद पे खड़े हैं। कागज के फूल तो खैर मैं ऐसी बातों को नहीं, लेकिन जो सच में झूठ है, जो सच में भ्रम है। और आप एक बात बताइए, इस देश में इलेक्शन कमीशन हमेशा से इंडिपेंडेंट रहा है, लेकिन कांग्रेस में तो इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होने के बाद इनकी टिकट से चुनाव लड़े, कांग्रेस के समय तो इलेक्शन कमीशन रिटायर होने के बाद इनकी सरकार में मंत्री बने। कोई व्यक्ति रिटायर होने के बाद कुछ कर सकता है, लेकिन अब कोई क्वेश्चन तो उठाएगा ही। मेरा तो अब भी मानना है, भारत के लोकतंत्र की बुनियाद इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन और इम्पार्शियल जुडिशरी, फेयरलेस। लेकिन फेयर को कब खड़ा करते हो? जब आप धमकी देने के लिए भीड़ लाते हो, जब आप मोब क्रिएट करते हो। और आप तो खुद टेलीविजन से जुड़ी हुई है, आकाशवाणी, दूरदर्शन जैसे संस्थान, ये सबसे ज्यादा संवेदनशील और सुरक्षा के लोग हैं। आज आप आकाशवाणी में घुस के बैठ गए, कल को कोई और आकाशवाणी में घुस के बैठ जाएगा, परसों कोई बाहर का ग्रुप आके आकाशवाणी में घुस के चला जाएगा। तो भाई ये तो कोई तरीका नहीं है। आप किन संस्थानों को चुनना चाहते हैं, आप किन चीजों को चुनना चाहते हैं, आप कौन से प्रदर्शन की जगह को चुनना चाहते हैं? आप रात को उठ के बोलोगे मैं यहां चल दूंगा? ऐसे तो लॉ एंड ऑर्डर, सबसे बड़ी बात अंजना जी, आपको यह मानना चाहिए कि क्या प्रदर्शन करने वालों को अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है तो आम नागरिक को फ्री पैसेज का अधिकार नहीं है? क्या प्रदर्शन करने वालों को प्रदर्शन करने का अधिकार है? क्या आम व्यक्ति को ईज ऑफ वर्क का अधिकार नहीं है? क्या प्रदर्शन करने वाले को प्रदर्शन का अधिकार है तो कॉमन पर्सन को अपने नेसेसिटी के काम के लिए जाने का अधिकार नहीं है? और इसलिए अगर आपकी संख्या ज्यादा हो गई तो सरकार ने बड़े मैदान आपको उपलब्ध करा दिए। सरकार ने यही कहा कि भाई हम मैदान उपलब्ध नहीं करा रहे तो बात अलग है। लोकतंत्र में आप रखिए बात, सब लोग रखिए, कहां दिक्कत है? और हम तो लोकतंत्र से ही निकले हुए लोग हैं, हम लोकतंत्र का संघर्ष करके ही निकले हुए लोग हैं।
1: आपने कभी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया था या नहीं?
0: हमने तो जंतर मंतर पे क्या, हमने तो बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, लेकिन इनकी तरह नहीं किए, बैरिकेडिंग पे चढ़ के। हमने कभी देश के संवेदनशील स्थानों पे कभी नहीं किए। हमने कभी देश में मर्यादाओं को तोड़ करके कभी ऐसे काम नहीं किया। और हम तो छात्र राजनीति से निकले हुए, कॉलेज के चुनाव लड़े हुए, कॉलेज
1: इसलिए मैं पूछ रही थी कि जंतर मंतर हुआ, जाना हुआ था कि नहीं कभी?
0: तब तो हम आते ही नहीं थे ना, हम तो बहुत अजमेर जैसे शहर में थे,
1: अजमेर में थे
0: तब तो जंतर मंतर क्या, हम दिल्ली हमारे लिए सपना था।
1: इससे पहले कि मैं यूपी के चुनाव पे जाऊं, एक आखिरी सवाल इस पर है। देखिए, नीट पेपर लीक के मुद्दे पर बच्चों का आंदोलन, जिसकी वजह से पहली बार एमजे अकबर का दूसरी वजहों से इस्तीफा हुआ था, पहली बार आपके एक बड़े मंत्री का इस्तीफा हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का, उसके बाद से आपको लगता है कि एक मोमेंटम विरोध प्रदर्शनों का सेट हो गया है, जिसको टैकल करना आपकी सरकार के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है, मुश्किल आ गई है? और छवि बहुत बड़ी चीज होती है, आप बार बार कह रहे हैं झूठ की बुनियाद पे ये, लेकिन छवि अगर ऐसी जा रही है तो क्या ये आज आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है? अगर चुनाव पर लोगों का भरोसा हट जाएगा तो बचेगा क्या लोकतंत्र में?
0: इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इनके तो जो झूठ के उसूल है सबके सामने आ जाएंगे। राजनीति में विषय को कोई कितना भरमाने की कोशिश करे, लेकिन मेरा ये मानना है कि अंतोदगतवा सत्य की जीत होती है। अगर लोगों ने कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश भी करी है तो हम लोगों को संवाद के माध्यम से, जागरण के माध्यम से, फैक्ट के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से विषयों का समाधान करेंगे। इतना उतावला होने की जरूरत क्या है? अगर ये इतने ही सच्चे होते तो अभी हाल ही में राजस्थान में चुनाव हुए, पूरे नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला। अभी कल गुजरात में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को
1: तो
0: समर्थन मिला।
1: फिक्स्ड हो रहा है,
0: कहां से हो रहा है
1: ये बोला है उन्होंने?
0: किन्होंने?
1: ये केसी वेणुगोपाल जी ने लिखा है कि आप, ये आयरनी है कि अमित शाह 90 पंचायत सीटों पर जीत का जश्न मना रहे हैं। हाँ? और हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं कि पूरा इलेक्शन ही रिग्ड रहता है।
0: क्योंकि आंदोलन की बुनियाद ही उनकी गलत है, उनको अपने पैरों में देखना चाहिए झांक करके।
1: अच्छा, उत्तर प्रदेश पर अब आते हैं सर, क्योंकि आगे की तरफ बढ़ना है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या एसआईआर का मुद्दा बड़ा बनेगा, क्योंकि अखिलेश यादव इस मुद्दे से अब जुड़ गए हैं? वो एसआईआर ना हो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो एसआईआर को चैलेंज जरूर कर रहे हैं कि भाई आप गड़बड़ियां कर रहे हैं, आप वोटर्स को काट रहे हैं, अलग अलग जगहों के। उन्होंने पिछली बार भी कुंदरकी और कई जगहों का मुद्दा उठाया था, क्या ये मुद्दा बहुत बड़ा होगा? और वो कह रहे हैं कि आइए यूपी के मैदान में चुनाव के लिए, इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं करने देंगे बीजेपी को।
0: तो हम तो करते भी नहीं है।
1: हाँ, राम मंदिर,
0: हिंदू आतंकवाद, किसने कहा हिंदू आतंकवाद?
1: फिर वो कहेंगे
0: नहीं, आप बताइए, आप बताइए हिंदू आतंकवाद किसने कहा? हिंदू आतंकवाद कांग्रेस की सरकार ने कहा। अल्पसंख्यकों का किसी भी संसाधन पर पहला अधिकार होना चाहिए, किसने कहा? ये कांग्रेस ने कहा। और हमने क्या कहा? सबका साथ सबका विकास। इन्होंने कहा अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार, इन्होंने क्या कहा? हिंदू आतंकवाद। हमने कहा नहीं, जो आतंकवादी है वो देश का विरोधी है। फिर कॉमन समान सिविल लॉ, आज 25 साल में स्थितियां बदल गई है। आज क्या किसी महिला का पति के साथ एक मैरिज रजिस्ट्रेशन के आधार पर, मैंने खुद ने महसूस किया है कि उसको उसके जो राइट्स होते हैं, पेंशन के राइट होते हैं, पीएफ के होते हैं, वो नहीं मिल पाते, तो क्या रजिस्टर्ड शादी हो जाए, ये कोई गलत है? आज फिर जनसंख्या में जो घुसपैठियों का विषय है, ये कहां से शुरू हुआ? तो ये तो सारे मुद्दे इन्होंने खड़े किए, और ये तो पूरा देश साक्षी है तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ा है। ये तो इन्होंने, तो मैं तो ये मानता हूं, इन्होंने सबसे बड़ा पाप ये भी किया है कि मुसलमानों को केवल एक वोट बैंक बना के छोड़ दिया है। ये तो इनकी पॉलिटिक्स है।
1: तो भूपेंद्र जी, आप लोग टिकट दे दीजिए ना।
0: किसको?
1: आप लोग टिकट ही, मुस्लिम कैंडिडेट कहां उतारते हैं आप लोग?
0: आप जीतने वाले उम्मीदवार दे दीजिए।
1: वो हम कहां ही खोजेंगे, आप खोजिए, आपको खोजना चाहिए साहब। आप
0: पार्टी के टिकट देने की
1: ओवैसी साहब लेकर घूमते ही इतने सारे, सब कहते हैं बीजेपी
0: वो
1: की
0: उनकी पार्टी के लेके घूमते हैं, हमारे के थोड़ी लेके घूमते हैं।
1: कहते हैं बीजेपी की बी टीम है ओवैसी साहब।
0: देखो, कोई आरोप लगाने को, वो तो हमारे धुरंधर विरोधी हैं, हम उनकी पार्टी के विचारों से सहमत नहीं है। राजनीतिक रूप से वो एक अलग विचार की पार्टी का नेतृत्व करते हैं, हम एक अलग विचार की पार्टी का नेतृत्व करते हैं, अखिलेश यादव एक अलग पार्टी का नेतृत्व करते हैं, हम एक अलग पार्टी का नेतृत्व करते हैं। ये जरूर है कि आजकल कांग्रेस के सांसद, क्या नाम है, रशीद मसूद, वो आजकल ज्यादा
1: इमरान
0: जी, तो वो आजकल ज्यादा अखिलेश जी को गाली दे रहे हैं। तो उनसे पूछिए अखिलेश जी को कि कांग्रेस के इमरान मसूद उनको क्यों गाली दे रहे हैं।
1: पर गठबंधन में लड़ रहे हैं दोनों वहां पर, और ये आपके लिए चैलेंज नहीं होगा इस बार?
0: ये तो इमरान मसूद और अखिलेश यादव बताएंगे कैसा चैलेंज है।
1: खैर ये सीट शेयरिंग तो अलग है, लेकिन चंदा चोरी को कैसे काउंटर कीजिएगा?
0: ऐसा कुछ भी भ्रम नहीं है, आप ये मान के चलिए। पहली बात, मंदिर से वो बैंक में गया, बैंक की काउंटिंग थी, उसके ऊपर जांच हो रही है और हमने हमेशा से स्पष्ट कहा है कि ये जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए। इस मामले में सभी लोगों ने संज्ञान लिया है और वो ट्रस्ट अपनी इंडिपेंडेंट कार्रवाई कर रहा है। हम उस स्थान की मर्यादा, पवित्रता और उस स्थान के प्रति जो हमारा एक भावनात्मक विषय है, और हमारा नहीं पूरे देश का जो भावनात्मक विषय रहा है, उसका पूरा सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि इसमें बिल्कुल सच निकलकर दोषियों की सजा होनी चाहिए।
1: कहते हैं कि पार्टी की स्ट्रैटेजी चुनाव में आप बनाते हैं, हम लोग जहां जहां इलेक्शन कवर करने जाते हैं भूपेंद्र यादव जी वहां जरूर दिखते हैं। तो भूपेंद्र यादव जी, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि अखिलेश जी ललकार रहे हैं कि योगी जी आइए अयोध्या में लड़ा जाए आमने सामने, आपकी स्ट्रैटेजी क्या कहती है? लड़ना चाहिए योगी जी को वहां पर? योगी जी कह रहे हैं हम आते हैं लड़ने।
0: ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और इसके संबंध में जो उत्तर प्रदेश की हमारी इकाई है, इकाई का जो निर्णय है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे, पार्टी जो निर्णय लेगी उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, उत्तर प्रदेश को मैं 2010 से तो बहुत नजदीक से देख रहा हूं, आज भी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सबसे ज्यादा प्रशंसा अगर अब होने लगी है तो योगी जी के 10 साल के शासनकाल की होने लगी। मुझे दिल्ली की जो महिला पत्रकार हैं, हमारे से समर्थन में नहीं है, दे आर नॉट इन आवर फेवर, पर वो मुझे कहती हैं कि भूपेंद्र जी, हमें आज नोएडा रात को 10 बजे 11 बजे अकेले गाड़ी चलाकर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो उसका सबसे बड़ा कारण योगी जी की इसके प्रति नो टॉलरेंस की नीति है।
1: तो तीसरी बार आपकी नजर में वो सरकार बना रहे हैं। अब सर आपके मंत्रालय पर आते हैं, बहुत सारे मुद्दे थे इसलिए मैंने सोचा आप कहां मिलते हैं इंटरव्यू के लिए, तो पहले हमने SIR और इन सब पे आपसे बात कर ली, अब आते हैं आपके मंत्रालय पर और प्रदूषण पर। सर इनहेलर लेने की नौबत आ रही है लोगों को, इतने सालों से उनके फेफड़े वहां पर पोल्यूशन में जी रहे हैं दिल्ली में, कुछ होगा कि ऐसे ही चलता रहेगा ये? और हमने पोल्यूशन का सोल्यूशन नाम का एक पूरा कार्यक्रम शुरू किया है आज तक ने, जिसमें कलीपुरी जो है हमारी चेयरपर्सन, उन्होंने मिलकर सब कुछ किया है ताकि हम लोग लोगों से आइडियाज मांगे कि भाई आप आइडिया दीजिए कैसे हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, बट असल काम तो सरकार को ही करना होगा।
0: सबसे पहले तो आपने अच्छा कार्यक्रम शुरू किया, उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और हम भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोग्राम की ओर ही चल रहे हैं, और इसलिए पिछले फरवरी से लेके अभी तक हम लोगों ने 25 से ज्यादा मीटिंगें करी। उसके बाद हमने NCR का एक ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया। उस ज्वाइंट एक्शन प्लान में आपने 2 हफ्ते पहले ही देखा होगा कि हमने 11 पॉइंट दिए। सबसे पहला जो है दिल्ली में 17% पॉल्यूशन जो है वो व्हीकल पॉल्यूशन है। व्हीकल पॉल्यूशन में नो पॉल्यूशन PUC, नो फ्यूल, इसको दिल्ली में हमने 100% लागू कर दिया है, और NCR में भी इसको 100% लागू कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि हमने और 150 बसों को ई बसों को शामिल किया। आज 7,500 बसों में से हम देखा जाए तो रेखा गुप्ता जी के शासनकाल में हम 5,500 ई बसें और CNG बसों पे हम हो गए हैं। उसके लिए हम व्हीकल पॉल्यूशन पे लगातार काम कर रहे हैं। दूसरा जो विषय है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में जो लगभग 3,500-4,000 यूनिट है उनको हम OCM जो कहते हैं, उनका जो पॉल्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म है उसके ऊपर हम लोग लेकर के आ गए हैं, और अब वो CPCB से भी पूरी तरीके से जुड़ गया है। फिर इंडस्ट्री का जो दूसरा पॉल्यूशन होता था नॉन कन्फर्मिंग एरिया का, सो नॉन कन्फर्मिंग एरिया में हमने पूरी तरीके से अब इंडस्ट्री को बैन करने का काम किया, काफी लोगों को बंद भी किया है। फिर एयर पोल्यूशन डिवाइस लगाने का जो था वो भी लगभग हम 70-80% पे हम जा चुके हैं, और इस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को हम पूरी तरीके से CPCB में एक मॉनिटरिंग सिस्टम से देख रहे हैं। अगले हफ्ते मैं जा रहा हूं और आपको कह रहा हूं कि आप भी आकर के वो देखिए। अभी 2 ही दिन पहले हमने एक दिल्ली में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किया है, उसके दो बातें हैं। मेरा मानना है कि पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण डस्ट पॉल्यूशन है। डस्ट पॉल्यूशन में सबसे पहले क्लीनिंग का काम है। हमने पिछले एक साल में लगातार दिल्ली और एनसीआर में कहा है कि अब सड़कें बहुत तेजी से जा रही हैं, व्हीकल बहुत तेजी से आ रहे हैं, तो मैकेनाइज स्वीपिंग होनी चाहिए। सारी मैकेनाइज स्वीपिंग मशीनों को अब हम पूरा एक डैशबोर्ड पे हमने इंटीग्रेशन कमांड सेंटर पे करा है ताकि उनकी क्लीनिंग का हो। पर फिर आप कहेंगे कि कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट का क्या होगा? अब कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट भी आप ये इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर पे जाइए, इस समय दिल्ली में 870 प्लेसेस पे ये कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन का चल रहा है। अब उसका पूरा जो PM10 का डेटा है वो उस पे आ रहा है। अगर उसके मेजरमेंट नहीं है तो आ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ आप जाके कार्यक्रम करिए।
1: हाँ, मैं करना चाहती हूँ। आप जा, नहीं तो नीले नीले एस्बेस्टस के चादर वो लगा देते हैं पीछे कंस्ट्रक्शन।
0: मैं तो यहाँ पर अब आपको कह रहा हूँ कि मैं उसको 3 दिन पहले ही उद्घाटन करके आया हूँ। उसके बाद दिल्ली में 47 हमने हॉटस्पॉट चुने हैं। मैं खुद मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन पहले आनंद विहार पे गया था, क्योंकि आनंद विहार पे रोज लगभग 3,000-3,500 बसेस जा रही है, लगभग 4 लाख का पैसेंजर जा रहा है और लगभग वहां पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है। और हमने दिल्ली के हर एक अधिकारी को उसके लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किया। हमारे जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं सिरसा जी, वो भी इसको लेकर बहुत रुचि के साथ ग्राउंड पे जो है सिरसा साहब जा रहे हैं। आप आनंद
1: सर बारिश करा रहे थे, क्लाउड सीडिंग करा रहे थे, हुआ ही नहीं।
0: देखिए उनका प्रयास था, उनका उत्साह था, लेकिन सिरसा साहब अब ये जो हॉटस्पॉट मैनेजमेंट में उन्होंने मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर एक नोडल अफसर किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली में हमारी दो सरकार होने के बाद हम इसको सितंबर में हमने 11 सूत्री मॉडल को शुरू किया है। सेम हमने एनसीआर में शुरू किया है। अभी कल ही जितने भी हमारे स्टार्टअप हैं उनको हमने मंत्रालय में बुला रहे हैं कि आप अपने इनोवेटिव आइडिया दीजिए। दो जगह जो पॉलिसी गैप थे, एक गैप था कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, उसके रूल्स हम पिछली बार लेकर के आए हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है
1: जी।
0: अभी जैसे आप नोएडा भी रह रहे हैं तो लगातार बड़ी बड़ी सोसाइटियां बन रही हैं, लेकिन उनके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का डिस्पोजल सिस्टम नहीं है। और वो बल्क जनरेटर है, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के भी सिस्टम को हम लोग नीचे लागू कर रहे हैं और इस प्रक्रिया को लगातार आगे करने का काम हम लोग कर रहे हैं। हॉटस्पॉट की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और मैंने अभी
1: तो
0: 15 दिन
1: सेग्रीगेशन भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब
0: उससे पहले तो कोई
1: कूड़ा सेग्रीगेशन नहीं करेंगे तो कैसे डिस्पोजल करेंगे?
0: उससे पहले कोई रूल्स नहीं थे।
1: हाँ।
0: पिछले साल हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, और उसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी है, बल्क जनरेटर कौन है, लेकिन इसकी और नीचे तक जाना, इसकी एक्टिविटी होना, इसके नोटिस होना बल्क जनरेटर को, उस सब पे बहुत तेजी से काम को हम लोगों ने शुरू किया है। पहली बार दिल्ली में हम केवल कॉरपोरेशन को देखते थे, जैसे सोनीपत का कॉरपोरेशन, नोएडा का कॉरपोरेशन, गाजियाबाद का कॉरपोरेशन, मानेसर का कॉरपोरेशन, गुड़गांव का कॉरपोरेशन, फरीदाबाद का कॉरपोरेशन, मेरठ का कॉरपोरेशन, इन तक थे। लेकिन हमें पहली बार ऐसा लगा कि कॉरपोरेशन के साथ साथ जो हमारे छोटे म्युनिसिपलिटीज हैं, जैसे गुड़गांव के पास पटौदी की म्युनिसिपलिटी है, बादशाहपुर हो गया, या बादशाहपुर तब गुड़गांव में आ गया, फरुखनगर की म्युनिसिपलिटीज हैं, या इधर मेरठ में आसपास जो छोटी म्युनिसिपलिटी है, पहली बार 53 म्युनिसिपलिटीज के चेयरमैन को बुलाकर इन सारे विषयों को किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ हमने पूरे एनसीआर क्षेत्र के इस कार्य की पूरा रिव्यू करके एक एक्शन प्लान किया। नायब सैनी जी के साथ एक एक्शन प्लान रिव्यू प्लान किया। रेखा गुप्ता जी के साथ ये एक्शन प्लान को हम लेकर के आए हैं। उसके साथ ही 2 दिन पहले अभी पराली लगभग 22% पंजाब में और 15% हरियाणा में पूरा हो चुका है। लेकिन उसको ध्यान रखते हुए कल ही शिवराज जी ने कृषि मंत्रियों के साथ हमने बैठक करी है, प्रबंधन के उपायों में हमने करा है, लेकिन साफ हवा में भागीदारी हम सबकी जिम्मेदारी, हम इसको पब्लिक अवेयरनेस और मूवमेंट से जोड़ने में भी लगे रहे। और जो आपने किया है ऐसा काम बाकी भी चैनल करें, इसके लिए मैं सभी को कहना चाहूंगा, और हम सभी के साथ जुड़ करके मिलकर के काम करना चाहेंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल बचा मुझे सर। मैं जब आ रही थी तो कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रोक लिया, तो उन्होंने पूछा क्या है, तो भूपेन्द्र जी का मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि देखिए बंगाल में भी वो थे जब चुनाव हुआ, जहां जहां नए नए इनके सीएम सब बने हैं, भाई मोहन यादव जी को वहां चुना आपने, मांझी जी को वहां चुना, यहां पर भजन लाल जी को चुना, कैसे चुनते हैं आप लोग? सीएम चुनने की क्या प्रक्रिया है? यहां पे आपने भजन लाल शर्मा जी को चुना, कैसे आप लोग सीएम चुनते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है?
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज देश की राजनीति में एक सेंट्रल पार्टी का स्थान ग्रहण किया है और 12 साल में सेंट्रल पार्टी का स्थान ग्रहण करने में पार्टी की कार्यपद्धति में, पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में एक डेमोक्रेटिक वे डेवलप किया है। उस डेमोक्रेटिक वे में हर स्तर पर एक कंसेंसस होता है, निर्णय कोई हाईकमान से नहीं थोपा जाता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुना जाता है और इसलिए हमारे जो भी सीएम आते हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से पार्टी के इनरूट कार्यकर्ता आते हैं। डेमोक्रेसी ही भारतीय जनता पार्टी के सीएम चुनने का आधार है, राजतंत्र नहीं।
1: ये सवाल मैंने पूछा ही बेकार, मुझे पता था, मैंने उनको कहा था इसका जवाब नहीं मिलेगा आपको।
0: इसी का अच्छा।
1: फिर भी मैंने सोचा आपसे पूछ लूं।
0: नहीं नहीं, डेमोक्रेसी और कोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज में काम करते हुए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को अपनी पार्टी में उतारना और देश में लागू करना।
1: भूपेंद्र यादव जी, आप पंचायत आज तक के मंच पर आया, आपने हर सवाल का जवाब दिया, तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: मैं धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने सेकंड सेंटेंस में करेक्ट कर लिया कि मुझे जवाब नहीं मिला, आपको सारा जवाब मिला, उसके लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सबसे बड़ी अदालत तक काफिले के साथ मार्च पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा सफाई दे और मंशा साफ करे। प्रदर्शनकारियों की अर्जी पर निर्देश, दोनों पक्ष अपने अपने वीडियो सुरक्षित रखे। पंचायत आज तक पर राजस्थान में बोले केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल, डीलिमिटेशन बिल पास करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। उपेंद्र यादव बोले, झूठ बोलकर अराजकता फैला रहे राहुल गांधी। बांग्लादेश में हिंसक उपद्रव से प्रेरणा लेने वाले नेहा बोरा के बयान के बहाने बीजेपी का सीधे राहुल गांधी पर अटैक। कहा नेहा और नेता विपक्ष की सोच एक जैसी, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें पोस्टर गर्ल बनाया। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक उबाल। इंडिया गेट से माता पिता को हिरासत में लेने पर बिफरे राहुल गांधी। देहरादून में कांग्रेस का हल्ला बोल, लोक भवन तक किया घेराव। जेएनयू के बर्खास्त प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद बिमोल की संसद सदस्यता खत्म करने के लिए स्पीकर से मिले बीजेपी महिला सांसदों का डेलीगेशन। ओम बिरला को सौंपी अपनी मांगों की चिट्ठी।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
0: सुप्रीम कोर्ट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आचरण पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने तीखी टिप्पणी की है। बोले, राहुल गांधी को अपने आचरण पर सफाई देनी चाहिए। राहुल गांधी के बर्ताव पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका को कोई भी डरा धमका नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को प्रदर्शन से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। सभी निजी पक्षों को भी अपने वीडियो सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए। जंतर मंतर को डी नोटिफाइड करे जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल। कोर्ट की टिप्पणी की वजह से लिया गया फैसला या कोई वजह पर मांगा है जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया में इंडिया गठबंधन और AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की ओर से दायर याचिकाओं पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों पर दिए गए हमले के आरोपों की सुनवाई और जांच के लिए एक समिति का गठन करेगा। सुप्रीम कोर्ट का धर्म परिवर्तन और जाति आधारित आरक्षण को लेकर अहम फैसला। हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपनाने पर नहीं मिलेगा कोई आरक्षण। कोर्ट के मुताबिक हिंदू जाति व्यवस्था के तहत व्यक्ति की सामाजिक पिछड़ेपन की स्थिति दूसरे धर्म में जाने के बाद अपने आप स्थानांतरित नहीं होती है। 10 अक्टूबर के सीजेपी मार्च पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। मार्च की अनुमति नहीं देने के फैसले को बचाव करते हुए बताई वजह। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और जान माल की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। सांसद महुआ मित्रा ने याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है। अगली सुनवाई अब कल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी है बड़ी चेतावनी। कहा कि पाकिस्तान अगर अब कोई भी नापाक हरकत करता है तो प्रहार पिछली बार से ज्यादा बड़ा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में करीब 3,350 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन और लोकार्पण किया। इन प्रोजेक्ट से सभी आवाजाही की सुविधा बेहतर होगी। पीएम मोदी ने उद्घाटन समारोह के दौरान युवाओं का किया है जिक्र। बोले कि सरकार का ध्यान लद्दाख की नई पीढ़ी और केंद्र सरकार के लिए लद्दाख का विकास है। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया। सीजेपी प्रोटेक्स में ये शामिल हुए थे। 2022 में अंकिता भंडारी मर्डर केस में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सभी प्रदर्शनकारियों को तिलक मार्ग पुलिस ने स्टेशन में रखा गया। अंकिता के माता पिता को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन उन्हें रिहा कर दिया गया है। परिवार राष्ट्रपति से अपील कर रहा है कि सीबीआई जांच पूरी होने तक दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल पद पर नियुक्ति रोक दी जाए और इसे रद्द किया जाए। दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद अंकिता भंडारी के पिता ने कहा है कि अगर मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो पूरे देश में प्रदर्शन होंगे। हिरासत मिले जाने के बाद अंकिता की मां ने भी कहा है कि जब तक दुष्यंत गौतम नियुक्ति रद्द नहीं होती तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। घर में भी भूख हड़ताल की धमकी दी है। अंकिता भंडारी मामले को लेकर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर निशाना साधा है, कहा है कि बैठना कोई प्रदर्शन नहीं है बल्कि अंकिता के परिवार के साथ एकजुटता दिखाना है। एसपी सांसद डिंपल यादव ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है, कहा कि ये सरकार महिला सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच उत्तराखंड सरकार ने अपना पक्ष रखा है। सीएम कार्यालय की ओर से ये जारी जानकारी दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने दावा किया है कि मामले में सरकार ने कार्रवाई में लेकर जांच तक अभियोजन तक कई कदम उठाए हैं। सरकार के मुताबिक घटना सामने आने के 24 घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच के लिए एसआईटी गठित भी की गई और आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया है। सीएम योगी ने राज्यसभा के टिकट को लेकर अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा कि अपने खानदानी वोटर मुसलमानों को ही बना देते उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी के पीडीए नारे पर भी सवाल उठाते हुए सीएम योगी ने कहा कि टिकट बंटवारे में पीडीए कहां चला गया है। पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। शिक्षा के मुद्दे को लेकर भी सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा है हमला, जो खुद शिक्षा विरोधी है उनसे शिक्षा और शिक्षकों के हित के काम करने की क्या उम्मीद की जा सकती है। सीएम योगी सरकार ने यूपी के चौकीदारों को मानदेय 2,500 से बढ़ाकर 3,500 रुपए कर दिया, साथ ही 5,00,000 रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने की घोषणा की है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने की नसीहत दी है, बोले कि चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है, समाजवादी सरकार बनना बेहद जरूरी है। यूपी में हो रहे एमएलसी चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोग पहुंची है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में से आचार संहिता उल्लंघन का आरोप भी लगाया गया है। दोनों डिप्टी सीएम पर भी जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों पर बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। चुनाव आयोग पर भी साधा गया है निशाना। भारत निर्वाचन आयोग मुखदर्शक बना हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग की साख पर लगातार गिरावट हो रही है। पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर किया है तीखा हमला, कहा कि अखिलेश के सपनों को चूर चूर करेगी जनता, यूपी में तीसरी बार सरकार बनाने का ठोका है दावा। यूपी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का अखिलेश के बयान पर पलटवार, कहा कि जनता को गुमराह करने की कर रहे हैं कोशिश, इन्हें भी पता है कि एसआईआर में कोई खामी नहीं है। अखिलेश के कार्यकर्ताओं को दी गई सलाह पर भी अनिल राजभर ने कसाया तंज, कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की यह प्रवृत्ति है इसलिए जनता दोबारा उन्हें नहीं लाना चाहती। वाराणसी में सीएम योगी ने काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए हैं, इसके बाद सफाई कर्मियों का सम्मान भी किया। सीएम योगी ने सफाई कर्मियों का काम की सराहना करते हुए कहा कि जिन्होंने समाज को प्रदेश को अपना माना वही परिवर्तन भी ला सकते हैं। सीएम योगी ने मिर्जापुर में मां विध्वासिनी के दर्शन किए हैं, जिन्हों उन्होंने गंगा घाटों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया और जनसभा को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने माफिया के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि अब माफिया नहीं है, उनकी जगह मिट्टी में है और माफियाओं से खाली कराई गई जमीन अब गरीबों के लिए है। लखनऊ में कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में नेपाल कनेक्शन भी सामने है। मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे बहन और रश्मि और दोस्त आदिल के साथ नेपाल में नजर आई। पुलिस ने बॉर्डर का एक प्राइवेट पार्किंग में श्रद्धा की स्कॉर्पियो कार लावारिस हालात में बरामद किया, यहीं से तीनों पैदल बॉर्डर क्रॉस कर नेपाल में दाखिल हो गए। शिवा शर्मा हत्याकांड के मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, बोली कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि शिवा शर्मा ने कूदते हुए खुदकुशी की। फरार चल रही आरोपी श्रद्धा दुबे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर खुद को बेकसूर बताया। रोते हुए श्रद्धा ने कहा कि शिवा की हत्या नहीं की गई, उसने सुसाइड किया है। शिवा शर्मा की बहन ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि श्रद्धा पर सनसनीखेज आरोप भी लगाए। बहन का दावा है कि श्रद्धा ने सोशल मीडिया पर दोस्ती की और फिर उसे हनी ट्रैप कर शिकार बना लिया। आज राहुल गांधी के आवास पर एक और चाय कार्यक्रम है, इस बार एनएसयूआई यूथ और सेवा दल के प्रमुख और इंचार्ज इसमें शामिल होंगे। बीजेपी के महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से की है मुलाकात। कांग्रेस सांसद उगमांचा बिमोल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से राम मंदिर को लेकर दिए गए बयान सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने साधा निशाना, कहा कि पीएम मोदी को खुश करने की राजनीति कर रहे। आईडीबीआई बैंक डील को अखिलेश यादव ने कसा तंज, वित्त मंत्री ने किया पलटवार, याद दिलाया फोन बैंकिंग का दौर। BS6 के बाद BS7 की बारी है। अप्रैल 2029 में नई कार SUV का लागू होंगे सभी मानक। सबसे पहले नई कारों में SUV को इन नियमों के दायरे में लाया जाएगा। अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर मास शूटिंग का कथित साजिश नाकाम कर दी गई। 19 साल के युवक को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। पुलिस को आरोपी के घर से राइफल, लोडेड मैगजीन, सैकड़ों कारतूस और गोरे नक्सलवाद विचारधारा से जुड़ी सामग्री भी मिली है। FBI इस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस को शक है कि वो नवरात्रि के दौरान स्थित किसी एक हिंदू धार्मिक स्थल पर निशाना बनाने की योजना बना रहा था, उस पर आतंकी धमकी देने का भी आरोप है। इस्तांबुल में भारी बारिश के कारण तबाही हुई। अचानक आई बाढ़ के कारण कई इलाकों में जलमग्न हो गए। ऐतिहासिक सदाबाद मस्जिद के भीतर भी पानी भर गया है। बाढ़ों और सड़कों पर पानी भरने से शहर में ट्रैफिक जाम हो गया। पानी भरने के कारण कई मेट्रो स्टेशन और अंडरपास भी बंद हो गए। एक दिन के लिए स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में शुरू हुआ बर्फबारी का दौर। केलांग में समेत कई इलाकों में बर्फ की सफेद चादर देखी गई है। ठंड की चपेट में आई समूची घाटी। दारचा में आगे वाहनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगा दी गई। जम्मू बर्फबारी के कारण मुगल रोड बंद कर दी गए। बर्फबारी की वजह से सोनमर्ग लद्दाख हाईवे पर और बांदीपुरा गुरेज रोड पर भी यातायात बाधित हुआ है। जम्मू कश्मीर में मौसम की बेरहमी बरकरार है, मेहरबानी बरकरार है। गुरेज में समेत कई इलाकों पर ताजा बर्फबारी हुई। कश्मीर घाटी में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानों में बारिश के चलते मौसम में करवट ली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी है। ठंडी पड़ी है, ठंड की कड़ाके की ठंड और भक्तों का आवाजाही अब भी जारी है। तापमान में गिरावट को देखते हुए यात्रियों को गर्म कपड़े पहनने और ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम करने की सलाह दी गई है। यात्रा के दौरान सतर्कता बरतने की अपील भी की गई। दिल्ली NCR में भी छाए हैं घने बादल। कई इलाकों में बारिश भी हुई है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ आंधी की चेतावनी भी दी थी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के असर से बदला है मौसम। IMD ने दिल्ली NCR में कल भी बारिश होने की संभावना जताई है। अलवर में भी अचानक बदले मौसम का मिजाज, जमकर हुई बारिश। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी रुकी वाहनों की रफ्तार। राजकोट में हिंदू का आतंक, सराफा व्यापारी को गोली मारकर लूटे लाखों रुपए के सोना चांदी। बारी में गंभीर रूप से घायल कारोबारी को तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूदा डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आरा में पूर्व कस्टम सुपरिटेंडेंट की गोलियों से भूनकर

0: सीओ और थाना अध्यक्ष का वेतन रोकने का आदेश भी दिया गया। दोनों अधिकारियों को जारी किया गया है शो कॉज नोटिस। उत्तर प्रदेश में हरदोई में कार पार्किंग को लेकर दो पड़ोसियों में भी बीच में भयंकर झड़प हो गई। गोलीबारी में एक गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी में शराब पार्टी का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है। 3 महिलाओं समेत 4 लोगों को शराब पीने का आरोप भी बनाया गया। एफआईआर दर्ज की गई। नोएडा में जमीन के बंटवारे को लेकर दो पक्षों के बीच झड़प हुई है। स्कॉर्पियो में बाइक को मारी टक्कर, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। वडोदरा में ज्वेलरी की दुकान में 8.5 करोड़ रुपए के सोने की फिल्मी अंदाज में चोरी की गई। व्यापारी वॉशरूम गया था और 12 मिनट में 5 किलो से ज्यादा का वजनी गहनों से भरा बैग गायब हो गया। जयपुर एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग जांच के बाद फिर से उड़ान भरी गई। नागपुर में सरकारी महिला डॉक्टर के हॉस्पिटल में चोरी हुई है। महिला आई अलमारी का ताला तोड़कर 2 सोने की अंगूठियां लेकर चली गई। घटना पूरी तरीके से सीसीटीवी में कैद हुई है। भावनगर में रंगोली रिजॉर्ट में नवरात्रि फेस्टिवल में बवाल हो गया है। असलम एंड असलम बैंड के विरोध में प्रदर्शन के बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। सोनीपत में मूर्थल में एक ठावे से लौट रहे युवक और ममेरे भाई को कंटेनर ने कुचल दिया। दोनों की मौत हो गई। कार खराब होने के पर लग रहे थे धक्का, पीछे से तेज रफ्तार टैंकर ने मारी है टक्कर। कानपुर के सदर बाजार में 80 साल के बुजुर्ग पर सांड ने किया जानलेवा हमला। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। सोमनाथ में शिवलिंग के हमलों से युवक की मौत। ग्रामीणों ने भारी आक्रोश। परिजनों के निशव स्वीकार करने से किया इनकार। शिवलिंग को पकड़ने और 40 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। दमन के खारीवाड इलाके में खड़ी मारुति एसयूवी में लगी अचानक आग। इंजन लग जलकर हुआ खाक। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 21 मंजिला इमारत से गिरकर युवक ने की मौत। पत्नी से चल रहा था विवाद। पत्नी के फ्लैट पर पहुंचते ही बालकनी से नीचे उतरने के दौरान पैर फिसलने की आशंका है। सूरत में नकली घी बनाने के बड़े कारोबार का खुलासा हुआ। पुलिस ने 18,21,000 रुपए का माल जब्त किया। 3 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। गाजियाबाद में हार्डवेयर व्यापारी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मंडोला के जंगलों में मिला था शव। पैसे के लेन देन और विवाद के चलते वारदात हुई है। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर पलटा सरसों से तेल से भरा टैंकर। लोगों में मची तेल की लूट। लोग डिब्बे पीते और बर्तन में तेल भरकर भागते हुए नजर आए। जेलर 2 आज सिनेमाघरों में हुई रिलीज। फिल्म को तमिल, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। रिलीज होने के बाद जेलर 2 को लेकर लोगों में आने लगी है प्रतिक्रिया। फिल्म को बताया जा रहा है ब्लॉकबस्टर। फिल्म दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुए। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। कॉफी विद करण अपने आखिरी सीजन के साथ ओटीटी पर लौट चुका है। शो के पहले एपिसोड में सलमान खान बतौर गेस्ट सामने आए। यामिनी गौतम अपनी फिल्म नई नवेली के रिलीज से पहले पहुंची अयोध्या। रामलला के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। फिल्म की सफलता के लिए प्रार्थना भी की।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से।
0: चले खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के आरा से। बिहार के आरा में सुबह सुबह हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जी हां, जैन कॉलेज में समीप कनकुपुरी मोहल्ले में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक पूर्व कस्टम सुपरिटेंडेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक राम कुमार सिंह सुबह टहलने के लिए अपने घर से निकले थे। इसी दौरान खर के करीब 150 मीटर दूरी पर पहले से घात लगाकर बाइक सवार अपराधी उनका इंतजार कर रहे थे और फिर ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पूर्व कस्टम सुपरिटेंडेंट को करीब 8 गोलियां लगी थी जिसमें घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। वहीं इस हत्याकांड पर बिहार बीजेपी के नेता और विधायक नीरज बबलू ने अपराधियों के एनकाउंटर की मांग की है।
2: देखिए, अपराध का ग्राफ का जहाँ तक सवाल है वो ऐसा नहीं है कि बढ़ रहा है, लेकिन हम मानते हैं कि घटनाएं घट रही है और हम सरकार से चाहेंगे भी, हम माननीय मुख्य

0: मंत्री से बात करेंगे। ये बड़ी घटना है और इस पे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अपराधियों के दिल में भय हो, दहशत हो। ये अति आवश्यक आज के डेट में हो गया है। इस तरह के अपराधी को जो बड़े लोगों की हत्या करता है, नेम फेम वाले लोगों का जो हत्या करता है, ऐसे लोगों का इनकाउंटर अति आवश्यक है। हम चाहते हैं कि इसका इनकाउंटर हो और अविलंब हो ताकि जनता के दिल में पुलिस के प्रति जो एक आदर भाव है, सम्मान है, वो रहे। अपराधी के दिल में ये भय व्याप्त हो, खौफ व्याप्त हो कि अपराध करोगे बिहार में तो बचोगे नहीं, इसकी गारंटी है, तो ये होना चाहिए।
1: चलिए खबरों का सिलसिला यहीं तक, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: SBI Celebrations Unlimited. इस फेस्टिव सीजन को बनाए स्पेशल कार लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पे स्पेशल ऑफर्स के साथ।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: How's the hostel? Settled?
2: Yes, ma, it's really nice.
1: कोई आ रहा है क्या?
3: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटी तो निभा ली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
1: मयंक, फॉर रियल?
3: वन कैरेट फॉर माय वन ट्रू लव। नेचुरल डायमंड रियल लव सॉलिटेयर्स टू रीइग्नाइट योर न्यू सीजन ऑफ लव।
4: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बात सर, एक बार दो तीन थमका लगाने बस।
5: मेरे पास एक आइडिया है।
4: क्या?
5: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
6: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
7: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
8: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: कौन सी बनानी है?

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
5: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।
6: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
7: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
8: I love it, absolutely amazing. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
9: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
8: क्या?
9: इनकी राय।
10: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
11: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
12: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
11: अब मैं चैन की नींद सो पाता कपीवा डायबिटीज जूस।
13: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते
14: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
13: विमल बोलो जुबां केसरी।
6: बांग्लादेश ने, बांग्लादेश के एक बड़े प्रमुख व्यक्ति ने ट्वीट किया था जब ये प्रोटेस्ट हुआ था, और उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश का समर्थन है। अब नेहा बोरा जो कि इस प्रोटेस्ट में साथ आगे आगे चलती हुई दिख रही, उन्होंने कहा बांग्लादेश ने ही हमें राह दिखाई है। क्या भारत के प्रोटेस्ट को
15: मैं नहीं जानता हूं कौन बांग्लादेशी है कौन पाकिस्तानी है, मैं तो भारत देश की बात करता हूं, और हम लोग चिंतित आज हैं अपनी अगली पीढ़ी के भविष्य के लिए। हम लोगों को जो देश मिला था, जहां चुनाव, लोकतंत्र, बोलने की आजादी, अपने विचार प्रकट करने का खुलापन जो हम लोगों ने इनहेरिट किया था, मैं चाहता हूं अगली पीढ़ी को वो मिले। आज जो हो रहा है, इतनी दबिश है, इतना खौफ का माहौल पैदा किया हुआ था। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं उन जेन जी के बच्चों को, लड़के लड़कियों को, जिन्होंने जंतर मंतर पर जाकर वो सारी बंदिशें तोड़ दी, उन्होंने खुले होकर अपनी बात को रखा और ये दिखाया कि हम लोग दबाव में या प्रेशर में काम नहीं कर सकते।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: SBI Celebrations Unlimited. इस फेस्टिव सीजन को बनाए स्पेशल कार लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पे स्पेशल ऑफर्स के साथ।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
8: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
9: I love it. Absolutely amazing. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
10: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
9: क्या?
10: इनकी राय।
11: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी।
2: पूछना चाहता हूं समाजवादियों से, ये जो बोलते थे पीडीए पीडीए चिल्लाते थे, ये राज्यसभा के टिकट में वो पीडीए कहां चला गया था? और हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी का पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। और बहुत होगा तो पराया धन अपना। और आपने दोनों चीज यहां देखी होगी, उन्होंने दो प्रत्याशी बनाए, एक प्रत्याशी बनाया अपने चचा जान को रामगोपाल यादव को। अरे काशी गई किसी यादव को बना देते, गाजीपुर के बना देते, बलिया के बना देते, नहीं बनाया। दूसरी सीट पे किसी और को बना देते, किसी दलित को भेज देते, नहीं बनाया। और चलो अपने खानदानी वोट मुसलमानों को ही बना देते, वो भी तो नहीं बनाया। वो टिकट उन्होंने बेच दिया मुंबई के धन्ना सेठ को। हो गया ना परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और पराया धन अपना, दोनों साबित हो गए।
3: जुमे की नमाज, मस्जिदों से उठती आवाज और तकरीर के जरिए लोगों तक पहुंचने वाला पैगाम, जम्मू कश्मीर में अब इसी पैगाम के विषय को लेकर सियासत गर्मा गई है। विवाद वक्फ बोर्ड की उस बैठक के बाद शुरू हुआ जिसमें इमामों और खतीबों के साथ जुमे की तकरीरों के लिए साझा विषय तय करने पर चर्चा हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पहल पर एतराज जताया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इसे धार्मिक मामलों में दखल से जोड़ते हुए बीजेपी के एजेंडे को जम्मू कश्मीर में लागू करने की कोशिश बताया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी इस प्रस्ताव की आलोचना की है। उनका आरोप है कि धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है और जम्मू कश्मीर को इस तरह के प्रयोग का केंद्र बनाया जा रहा है।
4: मैं समझती हूँ ये एक और जो है हमारे मजहब में, हमारे दीन में मुदाखलत है। और बदकिस्मती से बीजेपी का ये एजेंडा ही है कि किस तरह मुसलमानों को तंग किया जाए, उनकी दीन में मुदाखलत किया जाए। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह ये भी एक यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं।
3: विवाद बढ़ने के बाद वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने सफाई दी है। उनका कहना है कि बोर्ड ने खुतबों की सामग्री तय करने को लेकर कोई औपचारिक आदेश या अनिवार्य निर्देश जारी नहीं किया।
5: यहाँ से कोई डायरेक्टिव नहीं है, कोई यहाँ पे इतने बड़े ये नहीं है। हमारे आईमा जानते हैं उनको क्या करना है। आईमाओं को इंडिपेंडेंट छोड़िए, वक्फ बोर्ड पे पॉलिटिक्स मत करिए। वक्फ बोर्ड ने जो काम करा है वो करा है।
3: फिलहाल वक्फ बोर्ड की पहल पर जम्मू कश्मीर में सियासी बहस तेज है। जम्मू कश्मीर से मीर फरीद आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सफाई दे और मंशा साफ करे। प्रदर्शनकारियों की अर्जी पर निर्देश, दोनों पक्ष अपने वीडियो सुरक्षित रखे। पंचायत आज तक राजस्थान में बोले केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल, डीलिमिटेशन बिल पास कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। उपेंद्र यादव बोले, झूठ बोलकर अराजकता फैला रहे हैं राहुल गांधी। बांग्लादेश में हिंसक उपद्रव से प्रेरणा लेने वाले नेहा बोरा बयान के बयाने, बीजेपी का सीधे राहुल गांधी पर अटैक। कहा, नेहा और नेता विपक्ष की सोच एक जैसी, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें पोस्टर गर्ल बनाया। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक उबाल, इंडिया गेट से माता पिता को हिरासत में लेने पर विफरे राहुल गांधी। देहरादून में कांग्रेस का हल्ला बोल, लोक भवन तक किया घेराव। जेएनयू के बर्खास्त प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद बिमोल की संसद सदस्यता खत्म करने के लिए स्पीकर से मिली, बीजेपी महिला सांसदों का डेलीगेशन आम ओम बिरला को सौंपी अपनी मांगों की चिट्ठी।

नमस्कार, खबरें असरदार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। त्योहारों के सीजन में कुछ मिलावटखोर अपनी और हमारी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ कहीं नकली दूध की फैक्ट्री का पर्दाफाश हो रहा है तो कहीं घी बनाने वाली फैक्ट्री भी सामने आ रही है। गुजरात के सूरत और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक ऐसी ही फैक्ट्री के पर शिकंजा कसा गया है। जब पुलिस की टीमों ने यहाँ छापेमारी की तो हैरान करने वाली खुलासे भी हुए। सूरत में करीब 1800 लीटर नकली घी बरामद किया गया और 3 लोगों को गिरफ्तार।

ये तस्वीरें सूरत की उस फैक्ट्री की हैं, जहां शुद्ध गाय के घी के नाम पर मिलावट का खेल चल रहा था। फैक्ट्री के अंदर मशीनें लगी हैं, घी बनाने के लिए सारा सामान मौजूद है और पैकिंग के लिए भी पूरा इंतजाम किया गया है।

0: यहाँ डालडा और सोयाबीन तेल मिलाकर ऐसा उत्पाद तैयार किया जा रहा था जो गाय के घी जैसा लगे, यानी सस्ता कच्चा माल, खास फ्लेवर और फिर शुद्ध घी के नाम पर बाजार में सप्लाई। नकली घी के इस कारोबार में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ब्रांडिंग और पैकिंग का भी पूरा इंतजाम था। टिप्पो पर नाम था साहस प्रीमियम गाय का शुद्ध घी। अलग अलग साइज की पैकिंग तैयार थी और इसी ब्रांड के नाम पर इसे दुकानदारों तक पहुंचाया जा रहा था। मिलावट के इस अवैध धंधे की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, तुरंत एक्शन शुरू हुआ। मौके पर पहुंचकर छापेमारी हुई और फिर जो तस्वीरें सामने आईं, वो हैरान करने वाली थी। पुलिस ने मौके से 1694 किलो संदिग्ध नकली घी बरामद किया, साथ ही इसे बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी जब्त की गईं। पुलिस के मुताबिक जब्त किए गए घी और सामानों की कीमत करीब 18,21,000 रुपए है। मिलावट के इस अवैध धंधे में फैक्ट्री के मालिक, उसके बेटे समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ये भी पता लगा रही है कि इस कारोबार में और कौन कौन शामिल है और बाजार में अब तक कितनी मात्रा में नकली घी बेचा जा चुका है।
1: आरोग्य साथ चेड़ा करनी करनारी तेमज डुप्लिकेट प्रोडक्ट बनावती कंपनियों अने आ प्रकारना तत्वों विरुद्ध कार्यवाही करवा माटे सूरत शहर पुलिस द्वारा हमेशा पगला लेवामां आवे छे। सूरत शहरना अलग अलग विस्तारोमां लोकोना आरोग्य साथे चेड़ा करनारा कोई पण प्रकारना पदार्थ बनावता तत्वों सामे पगला लेवा माटे मार्गदर्शन अने सूचनाओ आपे। कुल 1600 किलो जेटू नकली घी स्थल पर थी रिकवर करवामां आवे छे।
0: त्योहारों के मौसम में नकली घी बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश नर्मदापुरम में भी हुआ। यहाँ भी खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच ने 6 ब्रांड के घी को लेकर बड़ा खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान 1426 किलो घी जब्त हुई, जिसकी कीमत करीब 7,30,000 रुपए बताई जा रही है।
2: खाद्य सुरक्षा प्रशासन नर्मदापुरम द्वारा 6 प्रकार के घी जो है उनको प्रतिबंधित किया गया है। विभिन्न बेच नंबर के हैं जिनको प्रतिबंधित किया गया है। आगे की कार्रवाई नियमानुसार प्रस्तावित की जा रही है। इसमें धारा 46(4) के अंतर्गत जो है हम लोगों ने अपील का प्रावधान के हेतु नोटिस जारी किए गए हैं।
0: मध्य प्रदेश से गुजरात तक त्योहारों के इस मौसम में नकली घी की खबरों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। नर्मदापुरम में जहां 6 ब्रांड के घी जांच में फेल पाए गए, वहीं गुजरात के सूरत में पुलिस ने करीब 1,700 किलो नकली घी जब्त किया है। ऐसे में मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है, क्योंकि सवाल सिर्फ घी की शुद्धता का नहीं बल्कि हर घर की सेहत और लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। नर्मदापुरम से पीताम्बर जोशी, आज तक।
3: अब बात सूरत की भी कर लेते हैं। सूरत में भी सेहत और जान से खिलवाड़ करने वाली एक खबर आपको दिखाते हैं, जहां फर्जी डिग्री वाले 16 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया गया, जो गरीबों को, गरीब परिवारों को अपना निशाना बनाते थे। 10वीं और 12वीं की पढ़ाई के बाद ये बिना किसी डिग्री के क्लिनिक भी चलाते थे और लोगों का इलाज भी करते थे। गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर के पास से दवाइयों की बरामदगी भी की गई है।
0: कोई 10वीं पास है तो कोई 12वीं पास, कोई 33 साल से क्लिनिक चला रहा तो कोई 10 साल से। तस्वीरों में दिख रहे ये सभी लोग आपको डॉक्टर नजर आ रहे होंगे, क्योंकि सबने अपने गले में स्टेथोस्कोप लटका रखे हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई हैरान करने वाली है। दरअसल ये कोई असली डॉक्टर नहीं, ये फर्जी डिग्री वाले मुन्ना भाई है जो कई सालों से इलाज के नाम पर मरीजों से धोखा कर रहे थे। सूरत के पांडेसरा इलाके में पुलिस की टीम ने इन 16 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है, जो यहाँ रहने वाले गरीब लोगों को अपना निशाना बनाते थे। पुलिस के मुताबिक कुछ आरोपी पहले दूसरे राज्यों में डॉक्टरों के सहायक या कंपाउंडर के रूप में काम कर चुके थे। इसके बाद सूरत आकर खुद ही मरीजों का इलाज करने लगे। छापेमारी के दौरान दवाइयाँ, इंजेक्शन, कफ सिरप के साथ साथ कुल 1,82,444 रुपए का सामान जब्त हुए हैं। पकड़े गए 16 आरोपियों में से 3 के पहले भी पुलिस कार्रवाई का सामना कर चुके हैं।
4: आइडेंटिफाई करेला અને આ લોકોને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા। ટોટલ 16 બોગસ ડોક્ટરો પકડાયા છે, એમાંથી 3 તો રિપીટ ઓફેન્ડર છે, એ ફરીથી પકડાયા છે। આ લોકો મોટે ભાગે બીએસસી બીએ અને 10 અને 12 ધોરણ ભણેલા હોય છે। કોઈ કમ્પાઉન્ડર, કોઈ ડોક્ટરની સાથે હેલ્પર આવી રીતે કામ કરતા હોય છે। અગાઉ બિહાર અને વેસ્ટ બંગાળમાં પણ આવી પ્રેક્ટિસ કરીને આવીને
0: એક તરફ બિના જરૂરી મેડિકલ યોગ્યતા કે ઇલાજ કરને કા આરોપ, તો દૂસરી તરફ દવા કે નામ પર ફર્ઝીવાડે કા મામલા ભી સામને આયા। सूरत में ही अठवा इलाके में एसओजी और फूड एंड ड्रग्स विभाग की टीम ने छापेमारी कर कई नकली दवाइयां बरामद की। आरोप है कि यहां पशुओं के लिए तैयार किए गए लिक्विड सप्लीमेंट को छोटी बोतलों में भरकर बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा के तौर पर बेचा जा रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने सप्लीमेंट की कैन, छोटी और खाली बोतलें, ढक्कन, नकली स्टिकर और मोबाइल फोन बरामद किया। लोगों की सेहत से जुड़े सूरत के ये दोनों मामले स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ 16 क्लिनिकों में कथित तौर पर बिना जरूरी मेडिकल योग्यता के इलाज किए जाने का आरोप है, तो दूसरी तरफ पशुओं के लिए बने सप्लीमेंट को बच्चों की दवा बताकर बेचने का मामला है। अब जरूरत है सख्त एक्शन की, ताकि सस्ते इलाज की तलाश में कोई अपनी सेहत जोखिम में न डाले और दवा खरीदने वाला कोई परिवार धोखे का शिकार न बने। ब्रजेश दोषी, सूरत आज तक।
3: और अगली खबर है लखनऊ के सनसनीखेज मौत के मामले में। दरअसल लखनऊ के शिवा शर्मा मौत के मामले में अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। इस मामले में खुलासा हुआ है कि आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे नेपाल फरार हो चुके, उसके साथ उसकी बहन और अन्य आरोपी भी है। इन सब के बीच उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वो अपने आप को बेगुनाह बता रही। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
5: करोड़पति कारोबारी की मौत का गैंगस्टर कनेक्शन। बिजनेसमैन की मौत के पीछे गहरी साजिश। हत्या के इल्जाम, क्या गैंगस्टर कनेक्शन से इंतकाम। नेपाल जा छिपी आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे। करोड़पति कारोबारी की संदिग्ध मौत मामले में आरोपी है श्रद्धा दुबे, यही सबसे अहम राजदार है और शिवा शर्मा की मां की नजरों में यही हत्या की गुनहगार है। इस मॉडल पर सवाल उठ रहे हैं, लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब देने के बजाय आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे अब नेपाल जा छिपी है। ये वही तस्वीर है जो श्रद्धा दुबे के नेपाल भाग जाने का पुख्ता प्रमाण है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर नेपाल के माहिम नगर की है। श्रद्धा अपनी बहन रश्मि दुबे और दोस्त आदिल रोड क्रॉस कर बस स्टेशन के भीतर जाते दिखे हैं। पुलिस सूत्रों का मानना है कि श्रद्धा का नेटवर्क काफी मजबूत है और उसे पुलिस की हर मूवमेंट की इनसाइड जानकारी समय से पहले मिल रही है। पुलिस से भाग रही श्रद्धा दुबे अब कह रही है कि वो पुलिस की जांच में सहयोग करना चाह रही है।
6: हर किसी के साथ मेरा नाम मत जोड़िए। आप लोगों ने कई नेताओं, कई अधिकारियों के साथ मेरा बेवजह का नाम जोड़ा है, क्योंकि हाँ, अगर वो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे से कोई ऐड है तो आप मेरे बारे में ऐसी अफवाह मत फैलाइए। मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, ठीक है। मीडिया वाले से मेरा बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे बारे में अफवाह मत फैलाइए। मैं कहीं गायब नहीं हूँ, मैं पुलिस में आके बयान देना चाहती हूँ। मैं उन्हें सब कुछ सच सच, जो कुछ भी है, मैं उन्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ।
5: एक तरफ श्रद्धा दुबे वीडियो जारी कर पुलिस के सामने आने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ उसकी एसयूवी मिलने की खबर ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा के पास पार्किंग में श्रद्धा की एसयूवी कार मिली है। जानकारी के मुताबिक यूपी 32 QQ0111 ये गाड़ी 10 अक्टूबर से पार्किंग में खड़ी थी। श्रद्धा गाड़ी पार्क करने के बाद नेपाल जाने की बात कहकर वहां से निकली थी और अब नेपाल से आई ये तस्वीर काफी कुछ बयान कर रही है।
7: श्रद्धा दुबे और शिवा शर्मा, जिस तरीके से अब तस्वीर सामने आई है, साफ है कि श्रद्धा दुबे की गाड़ी बहराइच के पास यानी महाराजगंज के पास पाई गई और वो खुद नेपाल में अपनी बहन और आदिल के साथ देखी गई। अब ऐसे में पुलिस बहराइच की, साथ ही साथ लखनऊ पुलिस की टीम नेपाल की तरफ भी रुख कर रही है कि किसी तरीके से 25,000 इनामी श्रद्धा को गिरफ्तार किया जाए।
8: शिवा शर्मा की मौत के आज 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन ना तो शिवा शर्मा के घर वालों को इंसाफ मिल पाया है, न ही किसी साजिश की पुष्टि हो पाई है और न ही साजिश के आरोपों में घिरी बॉर्डर का कोई ठोस सुराग मिला है। अगर कुछ सामने आया है तो इस हाई प्रोफाइल बॉर्डर से जुड़े कुछ और खुलासे और इस बॉर्डर का एक वीडियो। कारोबारी शिवा शर्मा की मौत से उठे सवालों को लेकर पहली बार मॉडल श्रद्धा दुबे का वीडियो सामने आया है। शिवा शर्मा की मौत के बाद उठे सवालों पर सुनिए श्रद्धा दुबे का ये बयान
6: कि कुछ भी किसी लड़की के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि मेरा क्या गुनाह है, मैंने कुछ नहीं किया है, और जो कुछ भी सच है शिवा शर्मा कांड से रिलेटेड कि उसकी कोई हत्या नहीं हुई थी, वो एक सुसाइड था, वो मैं आप लोगों से बताने वाली थी, लेकिन मेरी कंडीशन देखिए कि मैं किस कंडीशन में हूँ। मैं ठीक कंडीशन में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी इस समय फिजिकली फिट नहीं हूँ।
8: श्रद्धा खुद को बेगुनाह बता रही है, वो शिवा शर्मा की मौत की वजह सुसाइड बता रही है।
6: वो हत्या नहीं थी, वो एक सुसाइड था, ठीक है, मैंने अपनी आंखों से देखा उसको कूदते हुए, ठीक। अगर वहाँ के CCTV कैमरेज निकलेंगे, सब कुछ निकलेगा, तो उसमें दिखेगा कि वो किस तरह से कूद रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग परेशान नहीं है, उस वक्त मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरे घर से किसी ने छलांग मार के सुसाइड अटैम्प्ट किया है, तो मेरी हालत खराब होनी स्वाभाविक है।
8: शिवा की मां ने जो FIR दर्ज कराई है उसमें मुख्य आरोपी श्रद्धा है, साथ में श्रद्धा की बहन रश्मि दुबे भी आरोपी बनाई गई है। नेपाल से आई तस्वीर में रश्मि भी साथ दिखी है। शिवा की मां ने आरोप लगाए हैं कि श्रद्धा उनके बेटे को लगातार धमकाती थी और टॉर्चर करती थी,
9: और डेली बांध के और थ्रेटन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करती थी, जिसके बाइट्स अक्सर उनके बॉडी पे होते थे निशान। पूछने पे वो ये कहते थे कि चोट लग गई है, गिर गया हूँ।
10: क्या क्यों करती थी, क्या वो कुछ मांग करती थी, कैसे?
9: कंट्रोल और ईगो के लिए चीज़ों को करती थी। वो कंट्रोल करना चाहती थी
10: पूरी तरीके से।
9: हाँ, वो पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती थी।
8: लखनऊ पुलिस ने मामले में जांच तेज कर दी है ताकि करोड़पति कारोबारी की मौत की असल वजह साफ हो सके। बहराइच से रामबरन चौधरी और लखनऊ से अंकित मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
3: और चले वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
14: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
15: सोच बदलो और बैंक भी।
16: हेलो जी, टाइम क्या हुआ है?
17: टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। डायमंड हर दिन और एश्योर्ड गिफ्ट विद फिलिप्स, सोने पे डबल स्वाद ऑफर।
18: आ गया सोमवार और आ गए
19: चकमक चाचा।
18: हाँ चाचा, अखबार भाँच रहे हैं। चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चिचा कब जाएंगे?
20: अरे भैया, टूटा सुटा समस्या हम ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा, हम अपना मुद्दा उठा चुके पुराने।
18: अच्छा, कब उठाए?
20: JP के टाइम पे मुद्दा उठा।
18: अच्छा
20: हाँ, तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग इधर आए तो मतलब पुलिस आई, इधर भागने लगे, दन दन दन दन कर गया, ऐसा नहीं, ये सब नहीं था अपना मामला
18: जी,
20: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
18: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है आपका।
20: टूटा भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे कार्रवाई चलती थी दर्द बिता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर बोलता रखे था एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
18: अच्छा,
20: और क्या
18: आपका मतलब, हम लोग डर जाते हैं?
20: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल, जहाँ पुलिस सिटी नहीं बची उसमें भागने लगता हूँ।
18: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही है।
20: किधर?
18: चाचा हम खेल गए अब की।
21: हमारा प्रयास है कि लद्दाख में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो और यहां के पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा जाए। इस एयरपोर्ट टर्मिनल से लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर को भी नई एनर्जी मिलेगी। मैं इस आधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए सभी लद्दाख के मेरे भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जिन अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है उनका भी बहुत महत्व है। आज निम्मू पद्म दारचा सड़क लद्दाख के लोगों को समर्पित की गई है। इस पर करीब 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जिस सफर में पहले करीब 12 घंटे लगते थे अब वो लगभग 3 घंटे में पूरा हो सकेगा। यानी इससे यात्रा का समय तो बचेगा ही, इस रोड से व्यापार और कारोबार को भी बहुत मदद मिलेगी। साथियों, पहले मुझे श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाली पावर ट्रांसमिशन लाइन के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिला था। आज हानू की जल विद्युत परियोजना और उससे जुड़ी ट्रांसमिशन लाइन का भी लोकार्पण हुआ है।
15: ये हिंदुस्तान है, अमित शाह जी इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है। और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूँ, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए। इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूं, दिल से प्यार से। देखिए, मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए। इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे। ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस। और घबराइए मत, कोई डर रहा है?
19: नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं।
15: खुश हो?
19: बिल्कुल, बिल्कुल।
15: शाबाश, लव यू।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: हेलो जी, टाइम क्या हुआ है?
3: टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। डायमंड हर दिन और एश्योर्ड गिफ्ट विद फिलिप्स सोने पे डबल स्वाग ऑफर।
4: चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दल 15 दिनों से सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि चुनाव आयोग पक्षपाती है, जानबूझकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए फैसले ले रहा है। राहुल गांधी पिछले 2 वर्षों से चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। अब अखिलेश यादव ने SIR और SIR के बाद आयोग के कामकाज पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।
5: एक ही व्यक्ति के 10 वोट बने हुए, बताइए। अगर ये बात गलत है तो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी बताए कि हम गलत हैं। एक ही व्यक्ति के SIR के बाद 10 वोट बने हुए हैं, आजमगढ़ सदर विधानसभा, एक ही व्यक्ति के 10 वोट हैं। अब आप बताइए क्या है इलेक्शन कमीशन को क्या माने, इनके SIR के एक्सरसाइज को क्या माने। एक व्यक्ति एक वोट डाल देगा।
4: समाजवादी पार्टी मिसाल के तौर पर 100 विधानसभाओं के बूथों से ऐसे वोटर लिस्ट वाले दस्तावेज देकर आई है जिनमें SIR के बावजूद लिस्ट में फर्जी वोटर हैं। मसलन कन्नौज के छिबरामऊ में बूथ 49 पर क्रम संख्या 546, 547 और 548 पर नीतू नाम की महिला के नाम 3 बार हैं। इसी तरह बूथ 166 पर हिमेश नाम के युवक का नाम 871, 872, 873 क्रमांक पर 3 बार दर्ज है। बूथ 240 पर शिवानी का नाम 732, 733, 736 क्रमांक पर 3 बार दर्ज है। बूथ 357 में आरती का नाम 724, 732, 734 क्रमांक पर दर्ज है। इटावा के जसवंत नगर में बूथ 9 और 10 पर नए वोटर के नाम 3 EPIC नंबर से 3 बार मिले। श्रावस्ती में रोशन लाल का नाम 4 अलग EPIC नंबर से 4 बार रजिस्टर्ड है।
5: बीजेपी अभी भी फर्जी वोट बनवा रही है और इलेक्शन कमीशन से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो निष्पक्ष रहेंगे। लेकिन आप हम सब जानते हैं कि SIR यूपी में चल रहा था और SIR खत्म हो गया, अभी अब नए तरह का रिवीजन शुरू हो रहा है और उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में डबल वोट है, 4 वोट है, 6 वोट है।
4: समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर वोटर लिस्ट की इन खामियों की जांच कर इन्हें दूर करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी का एक और आरोप यह है कि SIR खत्म होने के बाद चुनाव आयोग जो स्पेशल ड्राइव चला रहा है उसमें बीजेपी फर्जी वोट जुड़वा रही है। एक तरफ दिल्ली में आंदोलन चल रहा है कि 13 करोड़ वैध वोटर के नाम काट दिए गए हैं, दूसरी तरफ अखिलेश कहते हैं कि नाम ज्यादा जोड़ दिए गए हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: दुनिया भर की इकोनॉमी इस वक्त सुस्ती, अनिश्चितता और उठापटक के दौर से गुजर रही है। ऐसे माहौल में भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। घरेलू मांग, बढ़ती आय और मजबूत लेबर मार्केट के दम पर देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती दिखा रही है। इसकी पुष्टि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की ताजा रिपोर्ट से भी होती है, जिसके मुताबिक भारत का ग्रोथ आउटलुक दुनिया में सबसे मजबूत है। इस सर्वे में शामिल 74% चीफ इकोनॉमिस्ट ने मजबूत ग्रोथ की उम्मीद जताई है। वहीं 98% को अगले 12 महीनों में मध्यम या उससे बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है। बढ़ती आय और मजबूत लेबर मार्केट से सपोर्ट मिलने का भरोसा रिपोर्ट में जताया गया है। ग्लोबल संस्थानों की इस भरोसे की झलक रेटिंग एजेंसियों के अनुमान में भी दिखाई दे रही है। 2026-27 के लिए फिच रेटिंग्स ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। इससे पहले ये अनुमान 6.4% था। भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के पीछे कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। पहली तिमाही में भी अर्थव्यवस्था के शानदार प्रदर्शन ने दुनिया भर में भारत की साख को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में GDP ग्रोथ 7.8% रही। इसकी वजह मजबूत इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रही थी। वहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में सुधार के संकेत से भी फायदा मिला था। एक्सपोर्ट और सरकारी निवेश ने भी ग्रोथ को मजबूत सहारा दिया है। इस प्रदर्शन के बाद कई एजेंसियों ने भी अपने अनुमान बेहतर किए हैं। फिच के बाद S&P ग्लोबल रेटिंग ने भी 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 7% कर दिया है। मूडीज ने भी 7% ग्रोथ का अनुमान जताया है। बढ़ती मांग से महंगाई का दबाव बना हुआ है और कुछ सेक्टर्स में सप्लाई से जुड़ी चुनौतियां मौजूद हैं। ऐसे में ग्रोथ और महंगाई के बीच संतुलन बड़ी चुनौती बन गया है। ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती दिखा रही है। दुनिया की बड़ी एजेंसियों और अर्थशास्त्रियों का बढ़ता भरोसा इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में भी भारत वैश्विक ग्रोथ की बड़ी कहानी बना रह सकता है। आदित्य केराड़ा, आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

काफिले के साथ मार्च पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा सफाई दे और मंशा साफ करे। प्रदर्शनकारियों की अर्जी पर निर्देश, दोनों पक्ष अपने अपने वीडियो सुरक्षित रखें। पंचायत आज तक राजस्थान में बोले कानून मंत्री मेघवाल, डिलिमिटेशन बिल पास कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। भूपेंद्र यादव बोले, झूठ बोलकर अराजकता फैला रहे हैं राहुल गांधी। बांग्लादेश में हिंसक उपद्रव से प्रेरणा लेने वाली नेहा बोरा के बहाने बीजेपी का सीधे राहुल गांधी पर बड़ा वार, कहा नेहा और नेता विपक्ष की सोच एक जैसी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने नेहा बोरा को पोस्टर गर्ल बनाया। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर दिल्ली से उत्तराखंड तक उबाल, इंडिया गेट से माता पिता को हिरासत में लेने पर बिफरे राहुल गांधी। देहरादून में कांग्रेस का हल्ला बोल, लोक भवन तक किया घेराव।

0: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। आप देख रहे हैं रणभूमि। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी AISA, आईसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा के एक वीडियो पर इस समय जबरदस्त घमासान छिड़ गया है। नेहा बोरा ने बांग्लादेश के सोशल स्टूडेंट्स फ्रंट यानी SSF को भेजे गए एक वीडियो संदेश में कहा है कि भारत में जो छात्र आंदोलन चल रहा है वो बांग्लादेश में हुए जेंजी आंदोलन से रास्ता देखकर आगे बढ़ रहा है। यानी बांग्लादेश के जेंजी ने भारत में ये जो आंदोलन इस समय चल रहा है उसे रास्ता दिखाया और वो इसके लिए बांग्लादेश को धन्यवाद दे रही है। उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया इस समय दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और अन्य नेताओं का आरोप है कि नेहा बोरा का जो बयान है वो महज छात्रों की एकजुटता का नहीं है, बल्कि ये भारत में बांग्लादेश की तर्ज पर न केवल अराजकता फैलाना बल्कि सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज करने की एक साजिश है, उसका एक वैचारिक ब्लूप्रिंट है। चूंकि नेहा बोरा दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन और विपक्ष विशेषकर कांग्रेस के नेता और नेता विपक्ष राहुल गांधी के प्रदर्शनों का एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरी हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राहुल गांधी के इस आंदोलन की पोस्टर गर्ल बताते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस और वामपंथी तंत्र दोनों मिलकर भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई नरेंद्र मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहती है और अस्थिरता से रिजीम चेंज करना चाहती है, यानी सत्ता परिवर्तन चाहती है, चुनावों से नहीं सड़क पर उपद्रव करके। यह बयान ऐसे समय आया है जब विपक्षी छात्र संगठन दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के मांग को लेकर अपने विरोध को और तेज कर रहे हैं। उन पर वोटर लिस्ट की गहन जांच यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स SIR में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। यह कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार को जाना होगा। लेकिन सबसे पहले सुनिए नेहा बोरा ने बांग्लादेश के स्टूडेंट्स फ्रंट जो है सोशल स्टूडेंट्स फ्रंट को भेजे गए वीडियो संदेश में आखिर क्या कहा और किस तरह से बांग्लादेश में जो हो रहा है और जो भारत में वो करने की कोशिश कर रही है उससे एक तार जोड़ने की कोशिश की। धार्मिक कट्टरता के मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा वो भी जरूर सुनिएगा।
1: वी प्रेजेंट यू आर रेड सल्यूट एंड वी नो दैट द जेन ज़ी मूवमेंट दैट वी आर सीइंग एवरीवेयर इन दिस कंट्री फर्स्ट स्टार्टेड इन बांग्लादेश एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर शोइंग अस द वे फॉर शोइंग अस एंड एक्सटेंडिंग सॉलिडारिटी टू द यंग पीपल ऑफ दिस कंट्री। वी नो दैट द मूवमेंट दैट बिगैन इन बांग्लादेश was for democracy and voter rights. Today, the movement that the young people are participating in and leading is also a movement for democratic and voting rights. We know that the fight that you fight against religious fundamentalism in your country is also a fight that the Gen Z and the young people of this country fight today.
0: आपने नेहा बोरा की बात सुनी। इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्रतिक्रिया दी है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहा बोरा के साथ साथ भारत में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी रेजिस्टेंस और संघर्ष की बात करते हैं लेकिन दरअसल जो असली मंशा है विपक्ष की वो बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में अराजकता फैलाना और रिजीम चेंज करना, यानी सड़क के जरिए, चुनावों के जरिए नहीं सड़क के जरिए सत्ता परिवर्तन करना है, उपद्रव करके अराजकता फैलाकर। सुनिए,
2: बांग्लादेश में हुआ क्या था? एक ग्रुप ऑफ इस्लामिस्ट ने भीड़ के सहारे, अराजकता के सहारे पूरे के पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने का प्रयास किया। उनका मकसद रेजीम चेंज था। मतलब आज ये साबित हो चुका है कि राहुल गांधी जब लोकतांत्रिक रूप से अपने परिवार को सत्ता में नहीं ला पा रहे हैं तो अब ये स्पष्ट हो रहा है कि राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम भारत में लोकतंत्र को तहस नहस करने की एक साजिश रच रहे हैं। ये पॉलिटिकल रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक एनार्किक मार्च है और एक एनार्किक रिवोल्ट है।
0: अच्छा, ऐसे इस मुद्दे से जुड़ी एक बेहद खास बात यह है कि 10 अक्टूबर को बांग्लादेश के उसी सोशल स्टूडेंट फ्रंट के छात्रों ने ढाका में एक मशाल जुलूस निकाला था, जिसके लिए नेहा बोरा ने यह वीडियो संदेश भी भेजा। यह ढाका में हुए उसी टॉर्च मार्च की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश में जो वामपंथी छात्र हैं वो दिल्ली में छात्र छात्राओं और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित ज्यादती का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने नरेंद्र मोदी विरोधी नारे लगाए। आप सोचिए, बांग्लादेश में वामपंथी छात्र भारत के प्रधानमंत्री के विरोध में नारे लगा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाने पर लेने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश में। यह जुलूस एनसीपी संयोजक नाहिद इस्लाम की ओर से आए बयान के बाद निकाला गया था, जिसमें नाहिद इस्लाम में दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। अच्छा, कौन है ये लोग, मैं आपको विस्तार से ये भी समझाऊंगा, लेकिन आप ये सोचिए कि बांग्लादेश में वो स्टूडेंट रेवोल्यूशन के नाम पर जमायत इस्लामी ने सत्ता परिवर्तन किया, अब क्या वही कोशिश भारत में है? यहां एक बात याद रखना बेहद जरूरी है। नेहा बोरा जहां यह कह रही हैं कि बांग्लादेश में जो छात्र आंदोलन हुआ था वो धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ था, क्या यह सच है या यह सच्चाई से कोसों दूर है? यह मैन्युफैक्चर्ड ट्रूथ है, यानी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है। हम आपको बता दें कि 2024 में जिस छात्र आंदोलन के कारण शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा था अपनी जान बचाने के लिए, और बांग्लादेश की सेना ने सेना के विमान में उन्हें भारत छोड़ दिया था, उसका एक जाना महाना चेहरा नाहिद इस्लाम था। नाहिद इस्लाम एक राजनीतिक दल उसने बनाया जिसका नाम है नेशनल सिटीजन पार्टी, यानी एनसीपी। जब चुनाव हुए तो एनसीपी ने बांग्लादेश के सबसे बड़े कट्टरपंथी इस्लामी संगठन जमायत इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन के साथ हाथ मिला लिया, और बांग्लादेश में लगातार यह कहा जा रहा था कि छात्रों की आड़ में जमायत इस्लामी सत्ता परिवर्तन कर रहा है। इस फैसले का छात्र आंदोलन के भीतर ही भारी विरोध भी उस समय हुआ था। एसएसएफ समेत वामपंथी और प्रगतिशील छात्रों ने इसे आंदोलन के साथ एक बड़ा धोखा बताया। दर्जन भर से अधिक वरिष्ठ छात्र नेताओं ने उस समय इस्तीफा भी दे दिया। फिर चुनाव में संसद की 300 सीटों में से एनसीपी को सिर्फ 6 सीटें मिली। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो कट्टरपंथी संगठन जमायत इस्लामी को मिला, जिसने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 68 सीटें जीत ली और वो बांग्लादेश का मुख्य विपक्षी दल बन गया। इससे साबित हो गया कि सड़कों पर क्रांति करना और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, और छात्रों की आड़ में जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ बांग्लादेश में उसके पीछे दरअसल जमायत इस्लामी जैसा एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन था। आप ये सोचिए, बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन सत्ता परिवर्तन कर रहा है और भारत में कुछ लोग नेहा बोरा जैसे बांग्लादेश के उसी आंदोलन से प्रेरित हैं जिस आंदोलन के दौरान हिंसा हुई। अच्छा, देखिए नैरेटिव क्या बनाया जा रहा है, कहा क्या जा रहा है कि ये लोग कट्टरपंथी विचारधारा के विरुद्ध थे जो बांग्लादेश में हुआ, क्या यह सच है? सच मैं आपको बताता हूं, हजारों हिंदुओं को बांग्लादेश में मार डाला गया, उनके घर जला दिए गए, उन्हें जबरन नौकरी से निकाल दिया गया। भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़े ये साफ बताते हैं कि जब बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ तख्ता पलट हुआ, उसके बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर, बौद्ध समुदाय पर, ईसाई समुदाय पर बड़े पैमाने पर भीषण हिंसा हुई, प्रताड़ना उन्हें सहनी पड़ी, अत्याचारों का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश में अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद तब से लेकर फरवरी 2026 के बीच हिंदुओं पर अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ 2900 से अधिक हिंसक घटनाएं दर्ज की गई। इन घटनाओं में हिंदुओं के घरों पर हमले किए गए, उनके घर जला दिए गए, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान जला दिए गए, वहां लूटपाट हुई, तोड़फोड़ हुई, हिंदू मंदिरों को टारगेट किया गया, पूजा स्थलों को निशाना बनाया गया। तख्ता पलट के एक महीने में 66 से अधिक हिंदुओं की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। दिसंबर 2025 में दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हुई, ये कट्टरपंथ के खिलाफ थे या कट्टरपंथों को सेंटर स्टेज किया जा रहा था? और यही कारण है कि भारत में नेहा बोरा के इस बयान पर अब इतनी तीखी प्रतिक्रिया हो रही है, इतनी तीखी उसकी आलोचना हो रही है। आलोचकों का कहना यह है कि जिस आंदोलन के दौरान भारत के पड़ोसी देश में हिंदुओं के मानवाधिकारों का सबसे क्रूर दमन हुआ, इतने मंदिर तोड़े गए, उस भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा या धार्मिक कट्टरपंथ के खिलाफ जंग, उसे भारत के युवा ऐतिहासिक बता रहे हैं, यानी झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत और पीड़ितों के जख्मों पर वो नमक छिड़क रहे हैं, और ऐसे लोगों के साथ राहुल गांधी खड़े हुए हैं। ये एक प्रश्न है जो लगातार अब उठाया जा रहा है। और जब हिंदुओं पर उत्पीड़न हो रहा था तब वहां पर वैसे तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, मोहम्मद यूनुस उनकी सरकार थी, अब क्या स्थिति है? हाल ही में न्यूयॉर्क में मोहम्मद यूनुस की इतनी भारी फजीहत हुई, बेइज्जती

0: जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब उतरे, व्हीलचेयर पर उनको ले जाया जा रहा था, तो जो बांग्लादेशी मूल के लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने उन्हें आतंकवादी कह दिया। ये कहा कि आपकी वजह से सैकड़ों बेगुनाह मारे गए बांग्लादेश में। ये घटना सोमवार की है, यानी 12 अक्टूबर 2026 को। ये घटना उस समय हुई जब दोहा से कतर एयरवेज की फ्लाइट के जरिए वो न्यूयॉर्क के जेएफके एयरपोर्ट पर टर्मिनल 8 पर उतरे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय व्हीलचेयर पर बैठे मोहम्मद यूनुस को वहां मौजूद जो बांग्लादेशी प्रवासी है उसके एक उग्र समूह ने घेर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के मुताबिक प्रदर्शनकारियों में व्यक्ति चिल्लाते हुए कह रहे थे, तुम आतंकवादी हो, यू आर अ टेररिस्ट, तुम यहां क्यों आए, तुम वापस जाओ, आपने मेरे देश में लोकतंत्र को तबाह कर दिया, हजारों पुलिसकर्मियों और बेगुनाहों की हत्या करवा दी। मौजूदा बांग्लादेशी सरकार ने इस घटना की निंदा की, लेकिन इस जैसी घटना के बाद यही है, जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि यूनुस ने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी थी। हिंदुओं पर आए दिन हमले हो रहे थे, आप सोचिए, पुलिस में जो हिंदू थे उनको मारा जा रहा था, कॉलेज में जो हिंदू अध्यापक थे उनको नौकरी से निकाला जा रहा था, अध्यापक जो हिंदू थे उनको टारगेट किया जा रहा था, जिनके व्यापार थे उनके व्यापार को निशाना बनाया जा रहा था, ब्रिजों से पेड़ों से उनके शव लटकाए जा रहे थे। और ये वही मोहम्मद यूनुस हैं जिन्होंने भारत के पूर्वोत्तर को लेकर एक बेहद बड़ा विवादित बयान दिया था, उसे जमीन से घिरा यानी बांग्लादेश से घिरा बताया था। और ऐसे लोग भारत के छात्रों के लिए एक एक इंस्पिरेशन है। क्या हो रहा था उस समय, आप खुद सुनिए।
1: You kill terrorist. You kill thousand people in Bangladesh. You terrorist. You terrorist. Why you come here?
2: Why did you kill? Why did you arrest 200,000?
1: Why you come this country? Tell us. Why you come to this country? You killed thousand of police in my country. Why you come here?
0: और जिस तरह की अराजकता से बांग्लादेश दो चार हुआ, क्या साजिश है कि भारत को भी उसी तरह जलाया जाए, उसी तरह सत्ता परिवर्तन सड़क पर उपद्रव करके किया करने की कोशिश की जाए या साजिश की जाए? जिस तरह का आंदोलन यहां चल रहा है, जिस तरह के विदेशी फंडिंग के आरोप लग रहे हैं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का जॉर्ज सोरोस को लेकर एक बेहद विवादित बयान इस समय सामने आया है। सैम पित्रोदा ने कहा है कि अगर किसी अच्छे काम के लिए जॉर्ज सोरोस भारत में $10 बिलियन का निवेश करते हैं तो उस पर तो गौर करना चाहिए। ये बयान उन्होंने भारत में जॉर्ज सोरोस की ओर से किए जा रहे दखल के जवाब के ऊपर एक प्रश्न उठाया गया, उसके जवाब में उन्होंने ये कहा, सुनिए।
3: It's up to the people in power. What is that you are asking for? If George Soros is going to bring in $10 billion investment to do something good, maybe it's one thing to look at. Possible. It all depends on case by case, policy by policy. Okay. And it's the privilege of the people in power.
0: इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
7: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
8: I love it. Absolutely amazing. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
9: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
8: क्या?
9: इनकी राय।
10: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।

0: लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पे स्पेशल ऑफर्स के साथ।
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर किधर
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: तेरा प्यार प्यार प्यार रूंगटा सर एक बार ठुमका लगाने बस।
5: मेरे पास एक आइडिया है।
4: क्या?
5: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रूंगटा TMT बार से जो बना है,
6: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
7: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा TMT से बना है।
8: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
9: कौन सी बनानी है?

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: SBI Celebrations Unlimited इस festive season को बनाएं special। कार लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: In association with Canara Bank, together we can.
2: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal anmol. Signature finest cardamom seeds.
3: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
4: Hello ji, time kya hua hai?
5: टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे. डायमंड हर दिन और एश्योर्ड गिफ्ट विद फिलिप्स, सोने पे डबल स्वाद ऑफर.
6: बिजनेस सिर्फ स्टॉक मार्केट का नाम नहीं है, ये है आपके पैसे की बात,
7: आपके बिजनेस की बात और उन डिसीजंस की बात जो आपके कल को इम्पैक्ट करते हैं.
8: मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा बिजनेस ग्रो कर रहा है,
6: इकोनॉमी में क्या बदल रहा है और इसका असर आप पर क्या होगा. हर ट्रेंड, हर अपडेट,
8: हर अपॉर्चुनिटी
7: एक जगह.
9: बिज तक, बिजनेस की हर बात सीधी आप तक.

0: सफेद चादर में लिपटी वादियां, बर्फ से ढके पहाड़ और कुदरत का बेहद खूबसूरत नजारा। ये तस्वीरें हैं उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा स्थित गुरेज की तुलैल घाटी की हैं, जहां सीजन की पहली बर्फबारी ने दस्तक दी है। बर्फबारी के बाद घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ तुलैल के मैदानी हिस्सों में बर्फ की सफेद परत दिखाई देने लगी है। बर्फबारी के साथ ही यहां मौसम का मिजाज बदल गया है और खूबसूरत वादियों ने सर्दियों की आहट का एहसास कराना शुरू कर दिया। भारी बर्फबारी का असर सड़क के रास्ते पर भी पड़ा है। पुंछ और राजौरी को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाले मुगल रोड पर पीर की गली के पास बर्फ जमा होने से आवाजाही बंद हो गई है। सड़क से बर्फ हटाने और रास्ते को साफ करने के लिए मशीनें चलाई जा रही हैं। अक्टूबर का अभी आधा महीना ही गुजरा है और कश्मीर के कई इलाकों में पारा शून्य तक लुढ़क चुका है, जबकि श्रीनगर में भी तापमान 15 डिग्री तक गिरा है। लेकिन बदलते मौसम में भी यहाँ पहुँचे पर्यटकों में गजब का उत्साह है। कश्मीर की इन वादियों में बर्फबारी सिर्फ मौसम में बदलाव की तस्वीर नहीं है, बल्कि यहाँ की खूबसूरती का एक नया अध्याय भी है। गुरेज की तुलैल घाटी से लेकर गुलमर्ग की अफरवाद चोटी तक बर्फ की सफेद चादर ने पहाड़ों और मैदानों को एक नया रूप दे दिया है। अब आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। अशरफ वानी, मीर फरीद के साथ एजाज डार, श्रीनगर, आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
1: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
2: I love it, absolutely amazing. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
3: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
2: क्या?
3: इनकी राय।
4: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
5: हेलो जी, टाइम क्या हुआ है?
6: टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। डायमंड हर दिन और एश्योर्ड गिफ्ट विद फिलिप्स, सोने पे डबल स्वाद ऑफर।
7: हमारा प्रयास है कि लद्दाख में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो और यहां के पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा जाए। इस एयरपोर्ट टर्मिनल से लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर को भी नई एनर्जी मिलेगी। मैं इस आधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए सभी लद्दाख के मेरे भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जिन अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है उनका भी बहुत महत्व है। आज निम्मू पद्म दारचा सड़क लद्दाख के लोगों को समर्पित की गई है। इस पर करीब 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जिस सफर में पहले करीब 12 घंटे लगते थे, अब वो लगभग 3 घंटे में पूरा हो सकेगा। यानी इससे यात्रा का समय तो बचेगा ही, इस रोड से व्यापार और कारोबार को भी बहुत मदद मिलेगी। साथियों, पहले मुझे श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाली पावर ट्रांसमिशन लाइन के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिला था। आज हानू की जल विद्युत परियोजना और उससे जुड़ी ट्रांसमिशन लाइन का भी लोकार्पण हुआ है।
8: सुनहरी वादियों पर सफेदी का पहरा, पतझड़ के रंगों के बीच सर्दियों की पहली दस्तक, कहीं आसमान से गिरते बर्फ के फाहे तो कहीं बर्फ की सफेद चादर में लिपटे पहाड़। ये तस्वीरें हैं कश्मीर की, जहां मौसम ने अचानक ऐसी करवट ली है कि खूबसूरत वादियों ने सर्दियों का लिबास ओढ़ लिया है। कुदरत के खूबसूरत नजारे, आसमान से गिरते बर्फ के फाहे और देखते ही देखते सफेद चादर में लिपटती कश्मीर की वादियां। गुरेज घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। गुरेज के तुलैल इलाके और बांदीपोरा के रजदान टॉप पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर जमी बर्फ खूबसूरत नजारा पेश कर रही है, लेकिन इसी के साथ पहाड़ी रास्तों पर सफर भी मुश्किल होता जा रहा है। गुरेज में पीर बाबा के पास सड़क पर फिसलन के चलते दमकल विभाग का एक वाहन स्किड होकर पलट गया। हादसे में 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को पहाड़ी सड़कों पर एहतियात बरतने की सलाह दी है। उधर गुलमर्ग में भी सीजन की पहली भारी बर्फबारी ने सबको चौंका दिया है। कोंगदूरी और अफरवट की ऊंचाइयां बर्फ से ढक गई हैं। पतझड़ के सुनहरे रंग देखने पहुंचे पर्यटकों को यहां सर्दियों का नजारा देखने को मिल रहा है। गुलमर्ग के बुटापथरी इलाके में भी ताजा बर्फबारी से चारों तरफ सफेदी छा गई है। सोनमर्ग में भी ऊंची पहाड़ियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। यानी कश्मीर में मौसम के 2 अलग-अलग रंग एक साथ देखने को मिल रहे हैं। बर्फबारी ने कश्मीर की वादियों को सर्दियों का खूबसूरत एहसास तो दे दिया है, लेकिन पहाड़ी सड़कों पर फिसलन के बीच सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

से बड़ी अदालत तक काफले के साथ मार्च पर राहुल गांधी से सुप्रीम कोर्ट के सवाल, पूछा साफ करे अपनी मंशा, प्रदर्शनकारियों की अर्जी पर निर्देश, दोनों पक्ष अपने अपने वीडियो सुरक्षित रखे। पंचायत आज तक राजस्थान में बोले कानून मंत्री मेघवाल, डीलिमिटेशन बिल पास कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध, भूपेंद्र यादव बोले झूठ बोलकर अराजकता फैला रहे हैं राहुल गांधी। बांग्लादेश में हिंसक उपद्रव से प्रेरणा लेने वाली नेहा बोरा के बहाने बीजेपी का सीधे राहुल गांधी पर अटैक, कहा नेहा और नेता विपक्ष की सोच एक जैसी, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें पोस्टल गर्ल बनाया। सीजेपी संस्थापक दीपके का सरकार पर फिर से हमला, कहा एक देश एक पार्टी इनका मकसद, साथ में मौजूद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण बोले सत्ता परिवर्तन के लिए ही है हमारी जंग। धर्म परिवर्तन मामले में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा धर्मांतरण के बाद गैर हिंदू बनने पर नहीं मिलेगा रिजर्वेशन का लाभ।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद रणभूमि में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। आज अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आई है। शिकागो के पास एक हिंदू मंदिर में सामूहिक गोलीबारी की कथित साजिश का खुलासा हुआ है और इस मामले में 19 साल के एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आरोपी की पहचान अलेक्जेंड्रोस के तौर पर हुई है। वो इलिनॉय के पलाइटाइन में रहने वाला एक युवा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से एआर स्टाइल की राइफल, सैकड़ों कारतूस, बुलेट प्रूफ जैकेट और दूसरे सामरिक उपकरण बरामद किए गए। जांच में 8 पन्नों का एक कथित घोषणा पत्र भी मिला है, जिसमें श्वेत वर्चस्ववादी विचारधारा और भारतीय समेत दूसरे नस्लीय समुदायों के खिलाफ नफरत का जिक्र किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक आरोपी ने अरोरा में एक बड़े हिंदू मंदिर को निशाना बनाने की बात अपने सहकर्मी से कही थी। आरोप है कि 11 अक्टूबर को ही वो हथियार लेकर मंदिर पहुंचा, लेकिन उसकी राइफल जाम हो गई। इसके बाद वो वहां से भाग निकला। मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी ने अपने सहकर्मी को कथित हमले और हथियार से जुड़े संदेश भेजे। सहकर्मी ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपी पर आतंकवादी धमकियां देने और अवैध रूप से हथियार रखने के आरोप भी लगाए गए। अदालत ने उसे मुकदमे की सुनवाई तक हिरासत में रखने का आदेश भी दिया है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हमले के लिए मंदिर को ही निशाना बनाने की बात की जांच अब भी जारी। फिलहाल अधिकारियों ने जनता के लिए किसी भी जारी खतरे की सूचना नहीं दी है। अमेरिका में इस घटना से हिंदू धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, नस्लीय नफरत के प्रेरित हिंसा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यानी इस घटना के बाद अब बड़ा अलार्म इस समय अमेरिका की सोसाइटी में बच चुका है। और अब रुख करते हैं मध्यपूर का, जहां मध्यपूर में जहां पर यमन ने हूती विद्रोही ने और सरकार समर्थित बलों के बीच लड़ाई बहुत ज्यादा भीषण होती जा रही। हूतियों ने दोबाबा के अंदर रेगिस्तानी इलाकों में एयरपोर्ट के पास हुई लड़ाई का एक नया वीडियो जारी किया है। इस फुटेज में लड़ाके, सैन्य वाहन और धमाके दिखाई दे रहे हैं। हूतियों का दावा है कि उन्होंने विरोधी बलों के ठिकानों पर हमला किया है। हालांकि इस वीडियो से इलाके पर दोबारा कब्जे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकती। दरअसल इस लड़ाई का सबसे अहम केंद्र है बाब अल मंदेब। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाला यह समुद्री रास्ता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से गुजरने वाले जहाज यूरोप, एशिया और मध्यपूर के बीच माल आवाजाही की अहम भूमिका निभाते हैं। यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के समर्थन से लड़ रहे बलों ने हाल ही में दुबाब के और उसके एयरपोर्ट पर नियंत्रण हासिल करने का दावा किया था। इसके बाद हूतियों की ओर से जारी इस नए फुटेज में इलाके में सैन्य गतिविधियों को लेकर सवाल खड़े होते हैं। दोनों पक्षों के दावे की स्वतंत्र पुष्टि होनी अभी बाकी है। बाब अल मंदेब के आसपास बढ़ती अस्थिरता का असर सिर्फ यमन तक सीमित नहीं है। यहाँ जहाजों की आवाजाही बाधित होती है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, माल ढुलाई और ऊर्जा को लेकर दुनिया भर पर इसका असर पड़ता है। अब सवाल यह है कि क्या हूती विद्रोही इस रणनीतिक इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे या सरकार समर्थित बल अपना नियंत्रण रख पाएंगे। फिलहाल दुबाब और बाब अल मंदेब के आसपास हालात बेहद नाजुक हैं और लगातार यहां पर हूतियों और यमन की समर्थित सरकार के बीच लड़ाई बहुत तेज होती जा रही है। यहां तक कि सऊदी की तरफ से भी लगातार हूतियों के ऊपर बड़े अटैक किए जा रहे हैं। और इन सबके बीच हूतियों का हमला सऊदी अरब के भीतर भी जारी। इन हमलों में सऊदी अरब की सुरक्षा और तेल ठिकानों पर खतरा बढ़ा दिया। आखिर हूतियों को रोकने में सऊदी अरब की चुनौतियां क्या है और क्या ये टकराव पूरे मध्य यूरोप के लिए या फिर मध्य आप कह सकते पूर्व के लिए अपनी चपेट में ले सकता है। देखिए रिपोर्ट।
1: रियाद में मिसाइल अलर्ट, सऊदी अरब में हड़कंप। अरामको की इमारत पर हमला, लगी आग। यमन में सऊदी की एयर स्ट्राइक। हूतियों की पलटवार की धमकी। हूती किसी के रोके नहीं रुक रहे, ना सऊदी अरब के हवाई हमलों से, ना सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन की सैन्य कार्रवाई से और ना ही लगातार बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव से। उल्टे हूतियों के हमलों ने सऊदी अरब की सुरक्षा व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। बेखौफ हूतियों के हमलों के बीच सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मिसाइलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया। सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत में भी खतरे की चेतावनी दी गई। इसी बीच तेहरान में सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी आरामको के परिसर में मौजूद एक प्रशासनिक इमारत को निशाना बनाया गया। हमले के बाद इमारत में सीमित आग लग गई। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन तेल ठिकानों के आसपास बढ़ते खतरे ने सऊदी अरब की चिंता बढ़ा दी है। सऊदी अरब के लिए चुनौती सिर्फ तेल ठिकानों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। रियाद से लेकर देश के पूर्वी हिस्से तक मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे ने हवाई सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका से मिले पेट्रियट और थाट जैसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के बावजूद सवाल यही है कि आखिर कुछ हमले सुरक्षा कवच को भेदने में कैसे कामयाब हो रहे हैं। इस वक्त भी रियाद में मिसाइल हमलों को लेकर अलर्ट है। पूर्वी प्रांत में मिसाइल और ड्रोन हमलों की चेतावनी है। तेहरान में अरामको परिसर की प्रशासनिक इमारत पर हमला हुआ है। इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक कोई हताहत नहीं है। पेट्रियट और थाट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम कितने कारगर हैं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। उधर सऊदी अरब ने पलटवार करते हुए यमन की राजधानी सना और दूसरे इलाकों में हूतियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने हूतियों के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। गठबंधन ने सना में कुछ ठिकानों के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी भी दी थी। सऊदी अरब को तुर्की और पाकिस्तान से मिलने वाले समर्थन के बीच भी हूतियों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यमन में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन की कार्रवाई और हूतियों की जवाबी धमकियों ने पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। हूतियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। अब सवाल है कि क्या ये टकराव यमन की सीमा से निकलकर पूरे क्षेत्र में और बड़े संघर्ष का रूप लेगा। यमन में भीषण संघर्ष के बीच ताइज में लड़ाई तेज हो गई है। यमन के गृह मंत्रालय के मुताबिक हूतियों के हमलों में पिछले 24 घंटों के दौरान 6 लोगों की मौत हुई और 18 लोग घायल हुए। सऊदी समर्थित बलों और हूतियों के बीच ताइज पर कब्जे की लड़ाई भी तेज हो गई है। उधर सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने हूतियों के मिसाइल, ड्रोन और दूसरे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। सऊदी अरब के कई इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमलों के अलर्ट जारी होने से सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। लेकिन हर किसी की नजर अब अमेरिका पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हूतियों के हमलों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने लिखा, हूती बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें एक साल पहले ही सबक मिल गया था जब हमने उन पर जबरदस्त बमबारी की थी और उनके कहने पर रुक गए थे। वो लंबे समय से शांत थे, लेकिन अब ये फिर से सामने आ गए हैं, शायद ईरान के कहने पर, जो एक नाकाम देश है जिसके पास ना तो नेवी है ना एयरफोर्स, जिसकी इकॉनमी दुनिया में सबसे खराब है और जहां महंगाई दर 301% है। वो बहुत बुरे तरीके से सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं और जानबूझकर तेल की कीमतें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद अमेरिकी चुनावों से पहले। ये अच्छी बात नहीं है। हूतियों के हमलों ने सऊदी अरब की सुरक्षा, तेल प्रतिष्ठानों और समुद्री व्यापार के लिए खतरा बढ़ा दिया है। बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य पर नियंत्रण की लड़ाई और लाल सागर में बढ़ता तनाव वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए भी चिंता का विषय है। इसी बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने रियाद, दमाम और जद्दा आने जाने वाली उड़ानें 17 अक्टूबर 2026 तक रद्द करने की घोषणा की है। रियाद से तेहरान तक सुरक्षा का संकट, यमन में सना से ताइस तक भीषण संघर्ष और लाल सागर से बाब अल मंदेब तक समुद्री रास्तों पर बढ़ता खतरा। सऊदी अरब के सामने हूतियों के हमलों को रोकने, अपने अहम ठिकानों की सुरक्षा और इस जंग को फैलने से रोकने की चुनौती है। आज तक ब्यूरो।
0: अमेरिका को लंबे समय तक यही लगता रहा कि शायद उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ईरान से है, लेकिन चुनौती प्रॉक्सीज यानी हूतियों से भी, जो अभी सऊदी अरब के सामने खड़ी है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। शहर की सड़कें दरिया बन गई हैं, गाड़ियां पानी में डूब गई और घर दुकानों में बाढ़ का पानी घुसा है। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि कई जगहों पर लोग अपने कार्यस्थलों में फंस गए। राहत और बचाव दलों ने रात भर अभियान चलाकर सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। कुछ जगहों पर लोगों को बचाने के लिए ट्रकों और मिनी बसों का की मदद भी लेनी पड़ी। चलिए रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: चलो जी, टाइम क्या हुआ है?
1: टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। डायमंड हर दिन और एश्योर्ड गिफ्ट विद फिलिप्स, सोने पे डबल स्वाग ऑफर।

0: कोई 10वीं पास है तो कोई 12वीं पास, कोई 33 साल से क्लिनिक चला रहा तो कोई 10 साल से। तस्वीरों में दिख रहे ये सभी लोग आपको डॉक्टर नजर आ रहे होंगे, क्योंकि सबने अपने गले में स्टेथोस्कोप लटका रखे हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई हैरान करने वाली है। दरअसल ये कोई असली डॉक्टर नहीं, ये फर्जी डिग्री वाले मुन्ना भाई हैं, जो कई सालों से इलाज के नाम पर मरीजों से धोखा कर रहे थे। सूरत के पांडेसरा इलाके में पुलिस की टीम ने इन 16 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है, जो यहाँ रहने वाले गरीब लोगों को अपना निशाना बनाते थे। पुलिस के मुताबिक कुछ आरोपी पहले दूसरे राज्यों में डॉक्टरों के सहायक या कंपाउंडर के रूप में काम कर चुके थे। इसके बाद सूरत आकर खुद ही मरीजों का इलाज करने लगे। छापेमारी के दौरान दवाइयां, इंजेक्शन, कफ सिरप के साथ साथ कुल 1,82,444 रुपए का सामान जब्त हुए हैं। पकड़े गए 16 आरोपियों में से 3 के पहले भी पुलिस कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। एक तरफ बिना जरूरी मेडिकल योग्यता के इलाज करने का आरोप, तो दूसरी तरफ दवा के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला भी सामने आया। सूरत में ही अठवा इलाके में SOG और फूड एंड ड्रग्स विभाग की टीम ने छापेमारी कर कई नकली दवाइयां बरामद की। आरोप है कि यहां पशुओं के लिए तैयार किए गए लिक्विड सप्लीमेंट को छोटी बोतलों में भरकर बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा के तौर पर बेचा जा रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने सप्लीमेंट की कैन, छोटी और खाली बोतलें, ढक्कन, नकली स्टिकर और मोबाइल फोन बरामद किया। लोगों की सेहत से जुड़े सूरत के ये दोनों मामले स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ 16 क्लिनिकों में कथित तौर पर बिना जरूरी मेडिकल योग्यता के इलाज किए जाने का आरोप है, तो दूसरी तरफ पशुओं के लिए बने सप्लीमेंट को बच्चों की दवा बताकर बेचने का मामला है। अब जरूरत है सख्त एक्शन की, ताकि सस्ते इलाज की तलाश में कोई अपनी सेहत जोखिम में न डाले और दवा खरीदने वाला कोई परिवार धोखे का शिकार न बने। ब्रजेश दोषी, सूरत, आज तक।
1: हम सब जानते हैं कि कन्या पूजन का क्या महत्व होता है, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस का हाथ सदैव महिलाओं के शोषणकर्ताओं के ऊपर ही रहता है। नवदुर्गा की अवहेलना करने वाले कांग्रेस पार्टी के सिटिंग सांसद बिमल अकोयजम ने जब 11 छात्राओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करी, तो इंटरनल कमेटी जो JNU की है उसने पाया कि बिमल अकोयजम कि जो 11 छात्राओं ने बिमल अकोयजम के खिलाफ कंप्लेंट करी थी उसमें सच्चाई थी, उसमें तथ्य थे, और इसीलिए 9 अक्टूबर 2026 को बिमल अकोयजम को JNU की नौकरी से बर्खास्त कर दिया। स्मैश द पेट्रियार्की के नारे में आवाज आपकी बुलंद जरूर है, लेकिन जब बिमल अकोयजम की बात आती है तो आपकी आवाज बंद क्यों है? इसलिए क्योंकि कांग्रेस सिद्धांतों की नहीं सहूलियत की राजनीति करती है।
2: SIR तो 24 के बाद चालू हुआ। आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारे। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। आपकी वहां कोई रीच नहीं है। देश के कई सूबे ऐसे हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आपको कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है। आज भी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है वो उनको फायदा नहीं करेगी। उनको जनता को समझना चाहिए, जनता का संपर्क करना चाहिए।

0: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
2: डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
2: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
2: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखिए।
3: कितना घटिया था यार।
2: लप लप लप।

0: आ गया सोमवार और आ गए
1: चकमक चाचा।
0: हाँ चाचा, अखबार बांच रहे हैं।
2: टेस्ट
0: चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चिचा कब जाएंगे?
2: अरे भैया तुरस में हिस्सा दे लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा, हम अपना मुद्दा उठा चुके पुराने।
0: अच्छा, कब उठाए?
2: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए।
0: अच्छा
2: हाँ, तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग तरह इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे दन दन दन दन करके, ऐसा ये सब नहीं था अपना मामला
3: जी,
2: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
0: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है
2: आपका भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे प्रवाही चलती थी दर्द बिता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन दिल बोलता रखे थे हाँ, एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
0: अच्छा
2: और क्या
0: आपका मतलब, हम लोग डर जाते
2: और क्या, डर जाते बिल्कुल, जहाँ पुलिस सिटी नहीं बची उस भागने लगता।
0: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही है।
2: किधर?
0: हम खेल गए अब की।
4: And we know that the Gen Z movement that we are seeing everywhere in this country first started in Bangladesh. And congratulations to you for showing us the way, for showing us and extending solidarity to the young people of this country. We know that the movement that began in Bangladesh was for democratic and voter rights. Today, the movement that the young people are participating in and leading is also a movement for democratic and voting rights. We know that the fight that you fight against religious fundamentalism in your country is also a fight that the Gen Z and the young people of this country fight today.
5: सुनने में थोड़ा अजीबोगरीब जरूर लग सकता है, लेकिन सच यही है कि आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा का ये बयान राहुल गांधी के लिए मुश्किल की वजह बन गया है। नेहा बोरा बांग्लादेश में हुए आंदोलन की तारीफ कर रही है, उससे सबक सीखने की बात कह रही है। उनके इस बयान पर बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है।
6: बांग्लादेश में हुआ क्या था, एक ग्रुप ऑफ इस्लामिस्ट ने भीड़ के सहारे, अराजकता के सहारे पूरे के पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने का प्रयास किया। उनका मकसद रेजिम चेंज था। मतलब आज ये साबित हो चुका है कि राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम भारत में लोकतंत्र को तहस नहस करने की एक साजिश रच रहे हैं।
5: आप सोच रहे होंगे आखिर आइसा यानी CPIML की स्टूडेंट विंग की प्रमुख के बयान का राहुल गांधी से क्या लेना देना, तो आप इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में विपक्ष के नेता एक साथ दिख रहे हैं। ये तस्वीर 12 अक्टूबर की है जब विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया था और तब नेहा बोरा राहुल गांधी के साथ खड़ी थी। अगले दिन इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नेहा बोरा साथ दिखी थी और उसके अगले दिन राहुल गांधी की चाय पार्टी में भी नेहा बोरा मौजूद थी। इसलिए अब बीजेपी राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली नेहा बोरा और राहुल गांधी के विचार को एक बता रही है।
6: ये पॉलिटिकल रेजिस्टेंस नहीं है, ये एनार्किक मार्च है और एक एनार्किक रिवोल्ट है।
5: तो क्या राहुल गांधी और नेहा बोरा के एक साथ एक मंच पर आना राहुल गांधी के लिए आगे भी सवालों की वजह बनता रहेगा? यही सवाल हमने कांग्रेस नेता सचिन पायलट से पूछा।
7: नहीं जानता हूँ कौन बांग्लादेशी है कौन पाकिस्तानी है, मैं तो भारत देश की बात करता हूँ और हम लोग चिंतित आज हैं अपनी अगली पीढ़ी के भविष्य के लिए। हम लोगों को जो देश मिला था जहाँ चुनाव, लोकतंत्र, बोलने की आजादी, अपने विचार प्रकट करने का खुलापन जो हम लोगों ने इनहेरिट किया था, मैं चाहता हूँ अगली पीढ़ी को वो मिले। आज जो हो रहा है इतनी दबिश है, इतना खौफ का माहौल पैदा किया हुआ था। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ उन जेन जी के बच्चों को, लड़के लड़कियों को, जिन्होंने जंतर मंतर पर जाकर वो सारी बंदिशें तोड़ दी।
5: तो सचिन पायलट ने नेहा बोरा पर हुए सवालों का सीधा जवाब देने से कन्नी काट गए, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी का झुकाव वाकई लेफ्ट की तरफ हो रहा है जैसा कि बीजेपी आरोप लगाती रही है। आज तक ब्यूरो।
8: बांग्लादेश ने, बांग्लादेश के एक बड़े प्रमुख व्यक्ति ने ट्वीट किया था जब ये प्रोटेस्ट हुआ था और उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश का समर्थन है। अब नेहा बोरा जो कि इस प्रोटेस्ट में साथ आगे आगे चलती हुई दिख रही हैं। उन्होंने कहा बांग्लादेश ने ही हमें राह दिखाई है। क्या भारत के प्रोटेस्ट्स को
7: मैं नहीं जानता हूं कौन बांग्लादेशी है कौन पाकिस्तानी है, मैं तो भारत देश की बात करता हूं और हम लोग चिंतित आज हैं अपनी अगली पीढ़ी के भविष्य के लिए। हम लोगों को जो देश मिला था जहां चुनाव, लोकतंत्र, बोलने की आजादी, अपने विचार प्रकट करने का खुलापन जो हम लोगों ने इनहेरिट किया था, मैं चाहता हूं अगली पीढ़ी को वो मिले। आज जो हो रहा है इतनी दबिश है, इतना खौफ का माहौल पैदा किया हुआ था। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं उन जेन जी के बच्चों को, लड़के लड़कियों को, जिन्होंने जंतर मंतर पर जाकर वो सारी बंदिशें तोड़ दी, उन्होंने खुले होकर अपनी बात को रखा और ये दिखाया कि हम लोग दबाव में या प्रेशर में काम नहीं कर सकते।

फरमाएं। खाने में डालेंगे घी, देसी देसी देसी देसी, देसी, देसी। खाने में डाल

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सबसे बड़ी अदालत तक काफिले के साथ मार्च पर राहुल गांधी से सुप्रीम कोर्ट के सवाल, पूछा साफ करे अपनी मंशा, प्रदर्शनकारियों की अर्जी पर निर्देश, दोनों पक्ष अपने अपने वीडियो सुरक्षित रखे। सीजेपी संस्थापक डिपके का सरकार पर एक बार फिर हमला, कहा एक देश एक पार्टी इनका मकसद। साथ में मौजूद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण बोले, सत्ता परिवर्तन के लिए हमारी जंग। पंचायत आज तक राजस्थान में बोले कानून मंत्री मेघवाल, परिसीमन बिल पास कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, झूठ बोलकर अराजकता फैला रहे हैं राहुल गांधी। प्रयागराज में सीएम योगी ने अखिलेश को एक बार फिर घेरा, कहा माफिया के सामने घुटने टेक मौन रहती थी एसपी सरकार, अब माफिया मुक्त हो गया है यूपी। दिल्ली में एशियन गेम्स के पदक वीरों से मिले पीएम मोदी, खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से साझा किए विजयी लम्हों के अनुभव।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी, दंगल में आपका स्वागत है। हम दंगल पे चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने एशियन गेम्स के पदक वीरों के साथ मुलाकात की है। भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने एशियाड खेलों में देश का नाम रोशन किया था, उनसे प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है। इन खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से विजयी लम्हों को साझा किया, उनके जो अनुभव है उन्हें साझा किया। एशियाड खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले ये खिलाड़ी प्रधानमंत्री मोदी से मिल रही है, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने जो पदक हासिल किए हैं वो देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी आज उनसे मिले हैं। भारत चौथे नंबर पर रहा मेडल के तख्ते में, कुल 85 मेडल्स, जिसमें 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज पदक भारतीय खिलाड़ियों को उसमें मिले, और वो प्रधानमंत्री उनसे अब मुलाकात कर रहे हैं।

0: अब बात चुनाव आयोग की होगी, क्योंकि चुनाव आयोग के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन जो शुरू हुआ है वो अब अदालतों में पहुंच चुका है। पिछले डेढ़ हफ्ते से हम सड़क पर यह आंदोलन देख रहे थे, लेकिन आज अदालत में वो सारी केसेस आई जो केसेस इन आंदोलकों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट में तमाम अर्जियों पर सुनवाई हुई। एसआईआर मसले पर ज्ञानेश कुमार समेत चुनाव आयोग को नोटिस दिया गया। सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन पर राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी नोटिस दिया गया। जंतर मंतर से प्रोटेस्ट साइट हटाने के मामले में केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस को भी नोटिस दिया गया। प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों से बदसलूकी के मामले में कोर्ट ने सारे डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने और जांच कमेटी के गठन की बात भी कही है। उधर महिलाओं से बदसलूकी के मामले को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बीजेपी राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी कर रही दिल्ली पुलिस की महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की। ये आरोप प्रत्यारोप सुप्रीम कोर्ट तक चल रहे थे। इस बीच कल का दिन दिल्ली के लिए एक और प्रदर्शन का दिन है। कॉकरोच जनता पार्टी और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने कल कैनॉट प्लेस में तिरंगा लहराओ मार्च का ऐलान कर रखा है, जिसके खिलाफ दुकानदारों ने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कल के प्रोटेस्ट को बैन तो नहीं किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस को कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए खुली छूट दी है। ऐसे में मामला अब चुनाव आयोग के एसआईआर विरोध के बजाय जंतर मंतर पर प्रदर्शन के हक और प्रदर्शन के दमन के आरोपों की सियासत में अब उलझता नजर आ रहा है। इसी से जुड़े सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो अदालती लड़ाई है वो कहां तक जाएगी। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए।
1: चुनाव आयोग के खिलाफ छिड़ी सियासी लड़ाई जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो वहां जंग के चार तरह के मोर्चे नजर आए। पहला मामला चुनाव आयोग और एसआईआर वाला था, दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक राहुल गांधी के मार्च का था, तीसरा मामला जंतर मंतर से प्रदर्शन स्थल हटाने का था, चौथा मामला महिला पत्रकारों प्रदर्शनकारियों से बदसलूकी का था, जिसमें से तीन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। पहला नोटिस राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं के अलावा तीन और अर्जियों पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग और दोनों चुनाव आयुक्तों को जारी हुआ, और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि हम अगली सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं में से एक से उसके आचरण के बारे में पूछना चाहेंगे। नोटिस जारी करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी बात की निंदा कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं में से एक के संबंध में नोटिस को फिलहाल अस्थायी तौर पर स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते वो अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण दें। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन करने पहुंचे राहुल, खड़गे, अखिलेश, महुआ मोइत्रा समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं को नोटिस देकर जवाब मांगा है। दरअसल 12 अक्टूबर को राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। हजारों की भीड़ के साथ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जाकर याचिका देने की इस कोशिश को लेकर वकीलों ने सख्त एतराज जताया था। 195 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं की इस हरकत पर चिंता जाहिर की थी।
2: न्यायपालिका को, भारत की न्यायपालिका सबसे ज्यादा मजबूत, निष्पक्ष और जनता इस पे विश्वास करती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इसको डराने का प्रयास, क्या हजारों समर्थकों की भीड़ लेकर सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में जाना, नारेबाजी करना, हुड़दंग करना, ये क्या था?
1: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी इसी चिट्ठी का जिक्र करते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि वकीलों को डराने धमकाने की कोशिशें चिंताजनक हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई डरा धमका नहीं सकता, ऐसी कोशिशें कमजोर होती हैं, कोई ध्यान नहीं देता। कोर्ट को बाहर दिए जा रहे बयानों की भी जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट में बाकी दो मामलों में महिला पत्रकारों से बदसलूकी और जंतर मंतर से प्रोटेस्ट साइट हटाने को लेकर भी सुनवाई हुई। महिला पत्रकारों से बदसलूकी वाले मामले में कोर्ट ने कहा कि घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी, सोशल मीडिया रिकॉर्डिंग्स और डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखे जाएं। एसीपी की ओर से दर्ज एससी एसटी एक्ट वाले केस में महिला पत्रकार की गिरफ्तारी नहीं की जाए। पीड़ित महिला पत्रकारों के नाम बंद लिफाफे में दिए जाएं। पुलिस बर्बरता की जांच के लिए गठित होने वाली कमेटी में शामिल लोगों के नाम भी बंद लिफाफे में दें।
2: देवी स्वरूप को पूजा जाता है, वहां महिलाओं की अस्मिता की जब बात आती है तो महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़, वर्दी पहने हमारी बहनों को गलत तरीके से छूना, ये कौन करता है? ये अराजक, संविधान विरोधी, केवल और केवल अपने उपनाम से जाने वाला गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करता है।
1: जंतर मंतर से प्रदर्शन स्थल हटाने के मामले में भी सरकार ने अदालत में बताया कि इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं। कमेटी ने पहले ही रिपोर्ट दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
0: यानी अब चार मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के भीतर होगी, उसमें से एक मामला एसआईआर के खिलाफ है जो सारे विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में का दरवाजा खटखटाया है। दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट जानना चाहेगी कि आखिरकार विपक्षी दल इस तरीके से प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ क्यों कर रहे थे। तीसरा मामला जो जंतर मंतर को लेकर है कि प्रोटेस्ट साइट सरकार ने आखिरकार क्यों बंद की। और चौथा अहम मामला कि प्रोटेस्ट कवर करने वाली महिला पत्रकारों के साथ बदसुलूकी आखिरकार किसने की। सारा वीडियो रिकॉर्डिंग भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है। प्रोफेसर रतनलाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुधीर सांगवान प्रवक्ता है कांग्रेस जनता पार्टी के, उसके साथ साथ एडवोकेट विनीत जिंदल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, और निखिल जैन ये भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, ये भी इस चर्चा में शामिल होंगे। तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहूंगा। पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन के पीछे राहुल गांधी की असली मंशा क्या थी? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट को के नोटिस का जब जवाब देना है तब उसमें इस बात का जिक्र विपक्षी पार्टी के नेताओं को भी करना होगा। दूसरा सवाल, क्या विपक्ष विरोध प्रदर्शन में महिला अस्मिता का सिलेक्टिव सवाल उठा रहा है? बीजेपी का काउंटर यह है कि महिला पत्रकार के साथ भी छेड़छाड़ हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि वहां पर उनके कार्यकर्ताओं के साथ और कवर करने आई महिला पत्रकारों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। तीसरा सवाल, क्या कैनॉट प्लेस में जो कल आंदोलन होगा उससे क्या आम लोगों को तकलीफ होगी? क्योंकि कुछ दुकानदार कह रहे हैं कि उससे हमें तकलीफ हो सकती है, जबकि सीजेपी कह रही है कि तिरंगा फहराने में क्या तकलीफ, क्या प्रोटेस्ट। चर्चा शुरू करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने माफी मांग ली है कि हम पर किसी भी तरीके से कोई भी कार्रवाई ना करे, रिग्रेट किया है जो सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई मक्खी मारने के लिए हथौड़ा मत चलाइएगा, हथौड़ा चलाया, माफी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट जाकर।
3: जी, साफ लोगों को असुविधा न होने पाए, जनता के कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को संभाले रखने के लिए कुछ निर्णय हुए। सर्वोच्च न्यायालय उन निर्णयों को लेकर जो है उसके मन में कुछ आशंकाएं थी, तो स्वाभाविक तौर पर सरकार ने विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष क्षमा प्रार्थना कर ली है। लेकिन सरकार का जो दायित्व है उसका निर्वाह उसकी प्राथमिकता है और उसका निर्वाह सरकार करती रहेगी, यह सर्वोच्च न्यायालय के भी संज्ञान में है। कोई भी जो है कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगाड़े, हुड़दंग मचाए, लोगों को परेशान करे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना यह सरकार का दायित्व बनता है और सरकार उस दायित्व का निर्वाह हर स्थिति में करेगी, यह संकेत साफ तौर पर है।
0: प्रोफेसर रतनलाल, लेकिन आपको भी बताना है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई आप तो मार्च कर रहे थे वहां तक ठीक है, लेकिन इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री तक विपक्षी दल के नेता अपना मार्च लेकर गए। आपको तो पिटीशन फाइल करना था, वो तो सुप्रीम कोर्ट में आप कभी भी फाइल कर सकते थे, लेकिन अब आपको ये समझाना होगा सुप्रीम कोर्ट को कि आखिरकार ये आपका रवैया क्यों रहा, क्या आपको अब सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं रहा कि आपको ये प्रेशर इस तरीके से लाना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को।
4: संघ परिवार बीजेपी जो है ना, खानदानी माफी भी है, माफी ही मांगता है, हर समय माफी मांगता है, और आज का इतिहास नहीं है, अंग्रेजों के जमाने का इतिहास है, और आज तक भी प्रूफ होगा कि माफी ही मांगेंगे। नंबर एक। नंबर दो, कि ज्ञानेश कुमार चोर, ये तथ्य स्थापित हो गया है और ये पब्लिक परसेप्शन भी बन गया है, और सरकार ये चोरी की सरकार है, फ्रॉड सरकार है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, जनता को परेशान हाईजेक करके रखा हुआ आरएसएस बीजेपी के लोगों ने, जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो राहुल गांधी अगर मार्च निकाले तो ज्ञापन ही देने तो जा रहे थे ना। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस उनको ये अधिकार है कि चलते फिरते गाड़ी रोक कर भी वो सुनवाई कर सकते हैं केस का, गाड़ी रोकेंगे वहीं कोर्ट लग जाएगी, ये अधिकार है उनका। तो हम ज्ञापन देने ही जा रहे थे ना कि चोरों की सरकार है, चोर बैठा हुआ है सब, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है और जनता ये समझ चुकी है, सारे प्रमाण आ चुके हैं और ये संविधान और देश की बात कर रहे हैं, इनको इतिहास पता नहीं है। आजादी के दौरान या समझ लीजिए 12 दिसंबर 1949 के पहले एक भी आंदोलन आरएसएस ने किया हो, कोई ज्ञापन दिया हो, कुछ किया हो, कुछ नहीं, ये सब अंग्रेजों से पैसा लेते थे। हमारे सरकार में मुखी रोड के रहे हैं, उसी समय इनकी दाल रोटी चली।
5: इतिहास में जाएंगे तो हम इतिहास पर चर्चा करते रहेंगे।
4: सुनिए,
5: आज की स्थिति में, आज की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ रहा है ना कि जो चीज आप पिटीशन फाइल करके कर सकते थे, आपने पिटीशन फाइल कर दी है, 10 मांगे आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने उस आधार पर नोटिस इशू कर दी गई है, वही सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। ये लेजिटिमेट तरीका होता है पिटीशन फाइल करने का, वो छोड़ के आपने मार्च क्यों निकाला? भाई आज तक मुझे बताइए, इतने साल कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाई, कल अगर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पर इस तरीके से मार्च लेकर आता, अगर अगर इमरजेंसी के दौरान विपक्षी मार्च अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता तो इमरजेंसी आप बढ़ा देते, 10 साल कर देते आप।
4: इमरजेंसी के दौरान
5: भाई सुप्रीम कोर्ट पर आप मोर्चा लेकर जाते, आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना उसका।
4: इमरजेंसी के दौरान जयप्रकाश नारायण ने खुलेआम ये कहा था पुलिस और सेना को कि ये सरकार की बात मत मानो, वो राजद्रोह था, देशद्रोह था। पहला जयप्रकाश आरएसएस में शामिल था, बाद में इनके बाला साहब देवरस ने 3 चिट्ठी लिखी इंदिरा गांधी को, माफी मांगा ना, माफी मांगा उस समय साधुओं को लेकर।
5: मतलब जयप्रकाश नारायण ने दो लाइनें कही,
4: संसद में कब्जा करने पहुंचे थे।
5: नहीं नहीं रतनलाल जी,
4: असली टेररिस्ट क्यों है ये?
5: जयप्रकाश नारायण ने दो लाइनें कही कि आप गैर कानूनी आदेश को पालन मत करिएगा, उस आधार पर उस वक्त सरकार ने इमरजेंसी घोषित की, आपने इमरजेंसी घोषित की। आज आज सुप्रीम कोर्ट पर अगर आप मोर्चा लेकर जा रहे हो, एजिटेशन लेकर जा रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट को या सरकार को क्या करना चाहिए आप बताइए, आपकी मंशा क्या थी सुप्रीम कोर्ट पर मार्च लेकर जाने की?
4: सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को बहाल किया था ना, संविधान का अनुच्छेद उल्लेख करते हुए इमरजेंसी लगी थी ना। इंदिरा जी 18 महीने में चुनाव करा ली थी ना, हार गई, हार स्वीकार कर ली, और अभी दिल्ली पूरा जो बंद हुआ है 10 तारीख को, सरकार ही दिल्ली बंद कर रही है, आम जनता को परेशान कर रही है, ये क्या है, इमरजेंसी नहीं क्या है भाई? ये इमरजेंसी है ना पूरा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में रहता हूँ भाई साहब, सारे कॉलेज बंद कर दिए गए, यूनिवर्सिटी बंद कर दिए गए, विजयनगर में, कमला नगर में सारे बच्चों को जाकर डराया गया, पुलिस गई कि जाओगे तो तुम्हारा करियर खराब कर देंगे, FIR होगा, बैरिकेडिंग कर दी गई पूरे कैंपस में।
5: वो कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने तो बाकायदा जो संविधान में प्रावधान है उसके आधार पर इमरजेंसी की घोषणा की और इमरजेंसी लागू कर दी। आप तो बिना संविधान का जिक्र किए आप एक अघोषित इमरजेंसी लगा रहे हो, आपकी सरकार लगा रही है। जिस तरीके से आपने पूरा मेट्रो मेट्रो बंद करवा दिए, 47 स्टेशन आपने बंद करवा दिए, सिक्योरिटी वहां पर जिस तरीके से लगा दी, आवाजाही बंद करा दी, आज जाके अदालत के सामने आप आपकी सरकार को माफी मांगनी पड़ी।
3: देखिए माफी वीर तो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में झूठ बोलकर सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय को मिसकोट करके झूठ बोला और कान पकड़कर माफी मांगी। राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान के पुत्र के बारे में झूठ बोला और कान पकड़कर माफी मांगी। तो इस देश में अगर कोई झूठा लंपट लफाज और व्यभिचारी है वो राहुल गांधी है, और उस व्यभिचारी राहुल गांधी ने जिस तरह से महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया वह राहुल गांधी का व्यभिचारी
5: कृत्य जो है। क्या एक्शन लेंगे प्रेम शुक्ला जी?

0: सेक्सुअल मिसकंडक्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपकी सरकार क्या एक्शन लेगी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी सरकार क्या एक्शन लेगी?
1: श्रीमान साहिल जोशी प्रोफेसर रतनलाल नाम का लहकर चोरों की सरकार कह रहा था, चोरी की सरकार कह रहा था,
0: क्या एक्शन लेगी?
1: सुन रहे थे?
0: अरे एक्शन क्या लेगी पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मैं आपकी भाषा क्या एक्शन लेगी?
1: एक्शन होगा
0: तो बताइए ना, जनता सुनना चाहती है।
1: पर क्या एक्शन होना चाहिए
0: भारत के नेता विपक्ष पर? अगर आपकी पुलिस की महिला कांस्टेबल ये आरोप लगा रही है बीजेपी, आप इस बात क्या एक्शन होगा
1: पुलिस को,
0: क्या एक्शन होगा बताइए ना?
1: एक्शन होगा
0: सेक्सुअल मिसकंडक्ट का एक्शन क्या होता है पता है आपको?
1: सेक्सुअल
0: गिरफ्तार किया जाता है,
1: बताइए
0: कब गिरफ्तारी होगी? कब गिरफ्तारी होगी? कब गिरफ्तारी होगी?
1: एक्शन होगा,
0: गिरफ्तारी कब होगी? आप सेक्सुअल मिसकंडक्ट करने वालों को बाहर छोड़ दे रहे हैं,
1: महिला पुलिस कर्मी
0: ये टेलीविजन डिबेट का मामला नहीं है, जो सेक्सुअल मिसकंडक्ट कर रहा है उसे आपने बाहर कैसे छोड़ा हुआ है?
1: श्रीमान
0: क्यों नहीं उस पर एक्शन ले रहा है,
1: लिया जा रहा है दुष्कर्म के लिए, सेक्सुअल मिसकंडक्ट के लिए कार्रवाई के पात्र है और पुलिस यह कार्रवाई करेगी, क्योंकि श्रीमान राहुल गांधी ने जानबूझकर गलत तरीके का स्पर्श उस महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ किया है और यह टेलीविजन पर,
0: रतनलाल जी जवाब दीजिएगा,
1: आज तक स्वयं दिखा रहा है, आज तक का टेलीविजन,
0: रतनलाल जी जवाब दीजिए,
1: आप ही दिखा रहे हैं, वो क्या गलत स्पर्श है कि नहीं है? वो सही स्पर्श है क्या किसी महिला पुलिस कर्मी के?
0: मैं तो कह रहा हूँ आप एक्शन कब लेंगे बताइए ना, आप आपको मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपके सरकार का एक्शन प्रूफ करेगा, क्यों नहीं आपकी पुलिस एक्शन ले रही है, क्यों नहीं प्रेम शुक्ला की पुलिस एक्शन ले रही है?
1: लेगी ना, लेगी,
0: इतनी बड़ी बात होने के बाद भी आपकी पुलिस एक्शन नहीं ले रही है,
1: 100%
0: कभी एक्शन लेगी? दो दिन आपके आप लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं,
1: कंप्लेंट आते ही पुलिस लेगी,
0: सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, एक्शन ही नहीं ले रहे
1: अधिकार है।
0: चलिए प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, एशियाड गेम के पदक वीरों से प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है, जरा पहले उधर चलते हैं उसके बाद रतनलाल जी इसका जवाब देंगे, सबसे पहले वहां चलेंगे जो, हाँ जी,
2: हमारे लिए यादगार रहे हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमें यहां मौजूद है, दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है और खासकर हमारी महिला हॉकी टीम, आपने तो गोल्ड लाकर 44 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है और इतना ही नहीं अपना ही रिकॉर्ड दोहरा दिया है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता है। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड और जहां पंच वहां परमेश्वर, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल, नाइनटीन एटी टू के बाद पहली बार मैराथन में भारत को मिली सफलता, ये वाकई बहुत सुखद है। साथियों, मैं हमारी बेटियों की खास तौर पर सराहना करना चाहता हूं। भारत ने जो 85 मेडल जीते हैं उनमें से 38 मेडल हमारी विमेन एथलीट्स ने जीते हैं।

0: और इनमें 11 गोल्ड मेडल भी शामिल है। और ये मेडल्स केवल एक संख्या नहीं है, ये नए भारत की एक सशक्त तस्वीर है। आज भारत ऐसे खेलों में भी मेडल जीता रहा है जिनमें एशियन गेम्स के इतिहास में हमें पहले कभी मेडल नहीं मिला था। मिक्स मार्शल आर्ट्स, सॉफ्ट टेनिस और सेलिंग की कुछ स्पर्धाएं, इनमें हमारे खिलाड़ियों ने पहली बार मेडल जीतकर नया इतिहास रचा है।
1: एनसीए एशियाड में पदक जीतकर आए हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी उन्हें संबोधित कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनसे बातचीत चल रहे हैं। सुधीर सांगवान, दूसरी तरफ कल आपका तिरंगा आंदोलन भी होगा, इजाजत तो नहीं मिली है लेकिन आंदोलन पर आप आमादा है। एक बार फिर दिल्ली के लोग कहेंगे कि भाई हमें तो तकलीफ, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि पाबंदी तो नहीं लगाई है लेकिन पुलिस को भी कहा है कि जितना हो सके आप संभालिएगा, तकलीफ नहीं होनी चाहिए लोगों को।
2: साहिल भाई बिल्कुल, ये देश लोकतंत्र से चलता है और लोकतांत्रिक मूल्यों का हम पालन करते हैं। अब मुद्दा ये नहीं है, महत्वपूर्ण मुद्दा ये है अकाउंटेबिलिटी का है। हमने सीएसी के अकाउंटेबिलिटी के लिए ये आंदोलन जारी किया था। अगर चीफ इलेक्शन कमीशन जो 4 महीने से कोई भी मीटिंग नहीं कर रहा है, अगर वो सामने आके अपनी बात को रख देते, अपनी गलती को मान लेते, इस प्रक्रिया में दोबारा से बदलाव कर देते और इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म में दोबारा से कंट्रीब्यूट कर देते तो ना तो हमने आंदोलन करना था। हम आंदोलन करने के लिए 24 घंटे क्यों बैठेंगे? हमें अपना परिवार चलाना है, हमें भी बहुत सारे काम है जो करने हैं। लेकिन बात अकाउंटेबिलिटी के, आज भी देखा आपने, जाके माफी मांग ली जाती है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन माफी मांगने से अपराध खत्म थोड़ी हुए हैं, माफी मांगने से अकाउंटेबिलिटी थोड़ी आई है। माफी मांगने के बाद ये थोड़ी पता चला है हमें कि वो क्यों मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, क्यों रेलवे बंद किया है, क्या रिपोर्ट थी आपके पास, क्या आपने सार्वजनिक किया, क्या किसी को बताया आपने क्यों क्यों किया है ये? आप अपने तरीके से एक अनुमान पेश कर देते हैं कोर्ट के सामने कि ऐसा होना था। अभी कल जाके सिर्फ जंतर मंतर पे 14-15 साथी सिर्फ तिरंगा लहराते हैं, भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, उसमें कौन सी पीस वायलेंट हो गई है? भारत माता के नारे से कौन सी पीस वायलेंट हो गई है? तिरंगा फहराने से कौन सी पीस वायलेंट हो गई है?
1: आप तो प्रोटेस्ट करने गए थे ना सुधीर जी, ये भी एक तरीके का प्रोटेस्ट होता है। आपने तो कहा था कि हम तो जो पाबंदी लगाई है वो तोड़ेंगे हम, वो तो प्रोटेस्ट ही हो गया।
2: लेकिन पीसफुली है ना साहिल जी, हम बहुत पीसफुली कर रहे हैं, हमने, हमारे पास कोई आर्म्स नहीं थे ना, हथियार हैं, और हम 50,000 पुलिस वालों से घिरे हुए हैं पूरी दिल्ली में, तो आप समझ सकते हैं कि हम पीस को कैसे ब्रेक कर सकते हैं उस केस में। बल्कि ये पीस को ब्रेक कर रहे हैं पूरी दिल्ली को किलाबंदी करके, पूरी दिल्ली को छावनी बना के, किस तरह से
1: देखिए सुधीर, अभी क्या हो गया है ना, शुरुआत आपकी लड़ाई की होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे को लेकर। आपने एक पोजीशन ले ली कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर आप कहते हैं कि भाई वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, आपकी भूमिका रखते तो शायद आप अलग तरीके से सोचते, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, ठीक है। फिर आप प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, वो उस पर क्लैंप डाउन किया जाता है, सरकार कहती है कि भाई हमें लगा कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है इसके लिए हमने क्लैंप डाउन किया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी मांग लेते हैं। अब आप ये कह रहे हैं वो प्रोटेस्ट के लिए जो जगह दी गई है उस पर पाबंदी लगाई है इसके लिए आप प्रोटेस्ट करेंगे, तो एक प्रोटेस्ट से दूसरा प्रोटेस्ट, ये श्रृंखला बनती जा रही है। आज एक प्रोटेस्ट, कल एक दूसरा प्रोटेस्ट, परसों तीसरा प्रोटेस्ट, एक प्रोटेस्ट से तीसरा, एक एक प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। आखिरकार किसी भी राज्य में सरकार क्या करेगी? प्रदर्शन का अधिकार अमर्याद होता है क्या?
2: जो मैंने बहुत बहुत सलीके से अपनी बात रखी और पूरे देश के, पूरा देश इस बात को जानता है, अराजकता करने से पहले
1: जी
2: हम अराजकता को बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि अराजकता ये लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले, हम नहीं करते हैं। हम बहुत पीसफुली, अभी देखा आपने जंतर मंतर का आंदोलन, आपने, हमने बहुत पीसफुली किया। दूसरी बात, हमने फिर भी वही बात बोली, इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन राइट को बचाने की जो लड़ाई है हमारी, अगर उसमें हम कॉन्ट्रीब्यूट करने आए हैं, आप एक बात बताओ, जंतर मंतर को डीनोटिफाई करना ये कहां कहां से लीका है, क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास? आप बता सकते हैं कि क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास जिसके कारण आपने उनको डीनोटिफाई किया?
1: शुक्ला जी,
3: सुप्रीम कोर्ट को
2: है आपके पास?
1: प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे दो वकील हमारे साथ जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके पास जाना है।
3: सुधीर सांगवान की पार्टी ने, कांग्रेस जनता पार्टी ने एक दिन की अनुमति ली और 17 दिन तक आंदोलन किया, महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई, महिला पत्रकारों के साथ बदतमीजी हुई, बदसलूकी। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन के समय महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई, 2800 आपराधिक रिकॉर्ड के हिस्ट्री शीट वहां जमा किए गए। तो ये सारा रिकॉर्ड पुलिस के पास बाकायदा है और पुलिस को पता है कि ये बारंबार आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को जमा करने की इनको अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो पुलिस ने जो है उसकी, इनका जो पहले का कंडक्ट है, पहले प्रदर्शन के लिए जिसकी अनुमति पुलिस ने प्रदान की थी, उस समय अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करने का कार्य कांग्रेस जनता पार्टी ने किया, उसी के आधार पर पुलिस ने उनको दूसरी अनुमति नहीं दी। तो इसमें क्या है, ये तो स्वाभाविक बात है। तो जो लोग जो है, और ये बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं इस तरह,
1: एक तो वो बोल रहे हैं आप होते कौन है पूछने वाले, शुरुआत प्रेम शुक्ला जी की पहली लाइन थी, आप होते कौन है पूछने वाले, मांगने वाले।
2: हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश को प्यार करते हैं, इस तरह के झंडे से प्यार करते हैं, हम पूछ सकते हैं, इस देश का नागरिक होने के नाते हम पूछ सकते हैं, हम हमारा अधिकार है पूछने का। दूसरी बात,
3: इसमें नोटिस जारी की है
2: प्रेम शुक्ला जी,
3: सुप्रीम कोर्ट आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको बता, नोटिस जारी की है सुप्रीम कोर्ट को, ने जो नोटिस जारी की है और सुप्रीम कोर्ट का ही गाइडलाइन है कि आपको 10 दिन पहले जो है अनुमति मांगनी पड़ेगी। आप सर्वोच्च न्यायालय के भी ऊपर हो गए क्या? कांग्रेस जनता पार्टी के 4 लोग जमा हो जाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करने का उनको अधिकार प्राप्त हो जाएगा, वो कह देंगे नागरिक अधिकार है।
2: आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति मांगी, दिल्ली पुलिस ने उसको फाइल किया, प्रेम शुक्ला जी करेक्ट कर लीजिए अपने आप को, 5 साल पहले भी कह सकते हैं
3: कि आपको 5 साल पहले अनुमति नहीं मांगी है, जरा थोड़ा बैलेंस होकर बात कीजिए। सुप्रीम कोर्ट अनुमति किस मांगेगा? सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की है।
1: चलिए ठीक है,
3: मैं कह रहा हूँ बाकायदा जनता,
1: प्रेम शुक्ला जी कल तिरंगा यात्रा निकलेगी,
3: सुप्रीम कोर्ट की निर्देशिका है।
1: प्रेम शुक्ला जी, इससे पहले आपको याद होगा इस देश में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, मोटर बाइक से वगैरह गली कूचे में,
3: अनुमति
1: शहर में,
3: कल अगर
1: तिरंगा यात्रा निकालेगी तो कार्रवाई होगी,
3: अनुमति लेकर की गई थी तिरंगा यात्रा,
1: कार्रवाई होगी कि क्या होगा?
3: कल से अनुमति प्राप्त करके की गई,
1: ठीक है, कल कार्रवाई होगी कि नहीं होगी?
3: अनुमति प्राप्त करके की गई थी।
1: अरे कोई बात नहीं,
3: यहाँ पर
1: कल कार्रवाई होगी कि नहीं होगी
3: नहीं दी जा सकती ना। हुड़दंगी हाथ में तिरंगा ले ले, कल चोर हाथ में तिरंगा ले लेगा और चोरी करेगा।
1: निखिल जैन,
3: आप जो है चोरी नहीं कहेंगे,
1: और एडवोकेट विनीत जिंदाल, निखिल जैन और एडवोकेट विनीत जिंदाल, मामला आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, निखिल जैन सबसे पहले आपके पास, शायद पहली बार यह हो रहा होगा कि सभी मामले, सभी रास्ते सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे का, एक कहावत है कि ऑल रोड ट्रेवल टुवर्ड्स टेम्पल, उसी तरीके से सब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। कोई भी मामला, मारपीट हुई कि नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, परमिशन देना है कि नहीं देना है सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, एसआईआर में गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट यह भी तय करेगा कि जो मार्च निकला था राहुल गांधी का वो सही था या गलत था, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के पास। निखिल जैन
4: सर जी, ये सवाल तो सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से ही पूछना चाहिए कि क्यों बार बार सरकार ऐसा करती है कि चाहे सिटीजन्स हों, एक्टिविस्ट हों, ओपोजिशन पार्टीज हों, सबको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहिए कि एक FIR के मामले जाके सुप्रीम कोर्ट में क्यों दर्ज कराने पड़ रहे हैं? क्या हाई कोर्ट्स कुछ नहीं कर रहे हैं? क्या मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स कुछ नहीं कर रहे हैं? क्या सेशन कोर्ट्स कुछ नहीं कर रहे हैं? अब आप ये महिला पत्रकार की एक FIR का ही मामला ले लीजिए, आज कई सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट की डिफरेंट हियरिंग्स, डिफरेंट मैटर्स में जो हियरिंग्स हुई हैं उनमें सुनी गई हैं प्रोटेस्ट को लेकर। एक ACP पे इल्जाम लगाती हैं 3 महिला पत्रकार की, इस ACP ने मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट कराया। अभी BJP के मित्र बात कर रहे थे कि कैसे राहुल गांधी ने किसी महिला पुलिसकर्मी का सेक्सुअल असॉल्ट कराया, खैर वो बात अलग है कि उसकी जो इकलौती वीडियो है वो BJP ने ही पोस्ट करी थी। सही है तो राहुल गांधी को सराखों के पीछे होना चाहिए और गलत है तो जिसने वो फर्जी वीडियो डाली उसको सराखों के पीछे होना चाहिए। बी दैट एज इट, में सेक्सुअल मिसकंडक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक दिल्ली पुलिस के सर्विंग ACP विवेक भगत पे 3 महिला पत्रकार आरोप लगाती हैं कि इन्होंने सेक्सुअल मिसकंडक्ट करा, FIR करवाने की कोशिश करती है, होती नहीं है। ऑन दी अदर हैंड क्या होता है कि उनमें से एक महिला पत्रकार पे दिल्ली पुलिस FIR करवा देती है, वो ACP विवेक भगत एडिशनल DCP विवेक भगत बन जाते हैं, डायनेप्स के अफसर है, उनकी प्रमोशन हो जाती है, एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार के दूसरे सबसे बड़े वकील, कोर्ट में खड़े होकर ये कहते हैं कि इस एफआईआर में इस महिला पत्रकार को अरेस्ट तब नहीं करा जाएगा अगर ये हमारे साथ कोऑपरेट करेगी। कोऑपरेट करने का मतलब आपके जिन दर्शकों को ना समझ आए, पुलिस कहती है आइए थाने में बैठिए बात करिए। हम सब जानते हैं इस देश की पुलिस कितनी अच्छी और कितने प्यार से चाय कॉफी पिलाती है थाने में बैठ के, कितने अच्छे से हजामत करती है लोगों की। तो आप यू आर फोर्सिंग अ वुमन जर्नलिस्ट कि आप थाने में बैठिए जिसने एक पुलिस के एडिशनल डीसीपी पे एफआईआर करा रखी है, उसकी एफआईआर कराने की कोशिश करी, उसकी हुई नहीं हुई लेकिन उस पे एफआईआर अलग हो गई है। सरकार आके ये नहीं कह सकती कि ये क्रॉस एफआईआर का मामला, विवेक विनीत जी बैठे हैं वो भी वकील हैं, जानते हैं कि किस तरीके से क्रॉस एफआईआर होती है। मैंने कुछ गुनाह करा, मेरे पे किसने एफआईआर कराई, मैंने जाके उस पे कुछ और एफआईआर करा दिया, तो बड़ा स्टैंडर्ड है इंडिया में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये चीज नहीं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट तक ये सवाल उठ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष ने और उनके समर्थकों ने क्यों मार्च निकाली। वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालें, संसद तक निकालें, कहीं और तक निकालें। सोचने का सवाल यह है कि क्या देश में ऐसा कभी भी पहले हुआ था? जो कथित इमरजेंसी थी उसमें भी क्या
1: आपने इससे पहले भी, भाई सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, एक जनहित याचिका नाम की एक चीज होती है, एक पिटिशन होते हैं कि जो आप जाके उनके पास जाके गुहार लगा सकते हैं कि भाई मुझे कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, लोकतांत्रिक सरकार मुझे न्याय नहीं दे रही है, तो ये गुहार लेकर मैं आपके पास आया हूं, आपके विशेष अधिकार में आप इसकी सुनवाई करिएगा, जिसका जिक्र इस पिटिशन में भी किया हुआ है। यह एक लोकतांत्रिक तरीका आपके पास ऑलरेडी है और उसी के तहत आज इलेक्शन कमीशन के लोगों को नोटिस दिया गया है, अधिकारियों को, वही तरीका पहले कर लेते।
4: साहिल जी,
1: जब बारिश निकलता है तो उसके मतलब अलग निकल सकते हैं। निखिल जैन,
4: साहिल जी,
1: ये सही है कि गलत है?
4: नहीं, आप ठीक है, मतलब जरूर निकल सकते हैं। कई लोग कहेंगे कि जुडिशरी पे प्रेशर बनाया जा रहा है और कई लोग कहेंगे कि जुडिशरी इज एब्डिकेटिंग इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखिए ना, ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष पहले नहीं गया था जुडिशरी के पास। जुलाई अगस्त से पिछले साल के सवा साल होने को है, सवा साल से एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। मई में उसकी जजमेंट भी आ गई। जजमेंट के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के आगे ये मामला रखा गया कि अभी तक इलेक्टोरल रोल फाइनलाइज नहीं हुआ है एसआईआर वाला, इसलिए प्रीवियस इलेक्टोरल रोल पे इलेक्शन होना चाहिए जो कानून है, विच इज द स्टैट्यूटरी लॉ अंडर द आरपी एक्ट। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं क्या हो गया, 27 लोग अगर वोट नहीं कर पाते हैं तो कर देंगे, बाद में कर देंगे, अगले इलेक्शन में कर देंगे।
1: अभिव्यक्ति की आजादी या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश, निखिल जैन कह रहे हैं, लेकिन आपसे भी सुनना है, अभिव्यक्ति की आजादी या दबाव डालने की कोशिश।
5: जी साहिल भाई, देखिए बड़ा दुखद होता है जब कोई लॉयर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरीके से सवाल खड़ा कर दे। उसका कारण मैं बताता हूं आपको। देखिए, हम सब लोग जानते हैं, निखिल जी भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उनको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रमाइसिस है वो एक सिक्योर्ड एरिया है और उस सिक्योर्ड एरिया में जाने से पहले आपकी चेकिंग होती है, वहां सिक्योरिटी ऑफिशियल्स बैठे होते हैं और उसके बाद अगर आप उससे आगे जाते हैं तो आपको पास बनाना पड़ता है अंदर जाने के लिए। तो एक प्रोसेस है। कल को अगर राहुल गांधी के घर में कोई इस तरीके से घुसने की कोशिश करे तो क्या आप उसको अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। तो अगर कोई इस तरीके की चीज करता है, सबने कंडेम किया है, इन्हीं के बड़े नेता हैं, विवेक तनखा सीनियर एडवोकेट हैं, आप सुनिए उनकी स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सीजीआई को पत्र लिख के कांग्रेस इस पूरे मामले में घसीट रही है, गलत है, इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। आप सुनिए उनकी बात, अगर सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। तो देखिए, ये बात कि किस तरीके से बनाना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब चीजें अलग हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या बोला? प्रेशर, अभी निखिल जैन बोल रहे थे प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है, कोई कुछ भी कहेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बोला कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भीड़ लेके घुस के आप हमारे ऊपर प्रेशर बना लेंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट है चीफ जस्टिस की आज कोर्ट में बैठ के। क्या निखिल जैन या कांग्रेस का कोई प्रवक्ता क्या इस बात को डिनाई करेगा जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बोल रहे हैं? तो कारण क्या था भाई? आपने जाना था, 13 लोगों के साइन था, आप जाते, पेटिशन फाइल करते, आ जाते, हजारों की भीड़ ले जाके आपको वहां पे क्या दिखाना था? आप कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को कन्वे करने की वजह पिछले 10 दिन से 2,000 करोड़ रुपए का, जो लोग सीपी के आसपास काम करते हैं उनका 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। जाके देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट में पेटिशन फाइल किया उन लोगों ने, उस पर सुनवाई चल रही है, कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया है। तो इस तरीके की चीजें करके आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपका नहीं है। सिर्फ आपको एक सड़क दी गई थी, आप करते हैं वहां प्रदर्शन, आप तो जनपथ, आप तो भगवान दास रोड, यहां सब पहुंचने की क्या जरूरत थी भाई?
1: देखिए, लॉयर भी सवाल उठा रहे हैं कुछ।
4: साहिल जी, मेरे लिए
6: जी, हाँ पूछें।
1: बोलिए रतनलाल जी।
5: आपके पास रिलेटेड एरिया था जंतर मंतर पे,
6: बताइए ये प्रधानमंत्री का सिटिंग चीफ जस्टिस के घर जाकर और वीडियो वायरल करना, ये किस प्रोटोकॉल में है? सुप्रीम कोर्ट का जज जाकर किसी चीफ मिनिस्टर के यहाँ जाना प्रोग्राम में और पार्टी करना किस प्रोटोकॉल में है? लंदन यात्रा करना
5: कोई याचिका दायर की आपकी याचिका पेंडिंग है?
6: एक मिनट खड़ जाइए,
5: अलग है रतन लाल जी।
1: नहीं तो इसका मकसद क्लियर करिए रतन लाल,
6: सुनिए ना, अरे सुनिए ना,
1: ये आप किस पर सवाल उठा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट पर या करने वालों पर, किस पर सवाल उठा रहे हैं?
6: एक मिनट, क्या मार्च निकालना सुप्रीम कोर्ट तक गैर संवैधानिक है? अगर संवैधानिक
5: की चोरी, आप ईवीएम की चोरी मानते हैं नहीं मानते?
6: ये जो कह रहे
5: थे वो चोरी, ईवीएम सही है गलत है?
6: ठहरो यार जिंदल, ठहरो।
5: अरे रतन लाल जी
6: कह रहे थे,
5: बताइए ईवीएम की चोरी को
6: ना भाई, आप बीच में काहे टोक रहे हो?
5: ठहरो, आप नहीं मानते, आप बताइए ना, ईवीएम चोरी नहीं करते, मानते हैं इस बात को या नहीं मानते?
6: ना हम लॉयर नहीं है, लेकिन लॉयर पे पीएचडी किया हुआ हमने।
5: अरे लॉयर,
1: अभी पहले सवाल का जवाब दीजिए ना जिंदल, जो सवाल वो उठा रहे उसका जवाब दीजिए। ईवीएम पर अलग बहस होगी, ईवीएम पर अलग बहस होगी, पहले जो सवाल वो उठा रहे उसका जवाब दे दीजिए ना विजय जिंदल। वो पूछ रहे कि गैर कानूनी क्या है इसमें? प्रोटेस्ट निकालते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं पिटीशन फाइल करने के लिए, गलत क्या? गैर कानूनी क्या है उसका जवाब दीजिए।
5: गलत है,
6: गलत है ना, आजकल वकील बन के घूम रहे हैं।
5: वो बताइए, वो बताता हूँ, आप कांग्रेस कांग्रेस
6: सुनिए ना,
5: चीफ जस्टिस
6: सुनिए, अभी
5: कांग्रेस एक लेटर लिखती है चीफ जस्टिस को,
6: अगर मार्च निकाला
5: लेटर लिखती है
6: चीफ जस्टिस सरकार है, सारी संस्थाएं बिक चुकी हैं,
5: ये कहते हैं
6: सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जाना,
5: लेकिन मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि मैं क्वेश्चन अथॉरिटी है, वो नहीं आना चाहिए मीडिया में, लेकिन उसी दिन दोपहर को कांग्रेस को रिलीज कर देती है।
1: जवाब सुन लीजिएगा, आपके पास
5: कांग्रेस चीफ जस्टिस की उस लेटर का जवाब को उनके कहने के बावजूद, जो सुबह चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहता, लेकिन उसको डिस्क्लोज कर देते हैं, उसको
1: इस देश में कई अनप्रेसिडेंटेड चीजें हुई है। विनीत जिंदल एक मिनट रतन लाल जी, नहीं वो ठीक है रतन लाल जी, एक मिनट, इस देश में इससे पहले भी चार सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है, सीजीआई ने भी जो लेटर लिखा कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद खुद मीडिया के सामने आकर वो क्यों नहीं मिलना चाहते उस बात का जिक्र उन्होंने उस बयान में किया हुआ है। उसके साथ साथ जस्टिस भुइयां वो आके भी इस बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबकि फॉर्मर सीजेआई गवई आकर कहते हैं कि इस तरीके का स्टेटमेंट देना शायद ठीक नहीं होगा, इम्प्रॉपर उसको वो करार दे रहे हैं। लेकिन विनीत जिंदल जी, सवाल यह रहता है जो उठाया जा रहा है, प्रोटेस्ट करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना क्या यह गैर कानूनी माना जाएगा? कांग्रेस पार्टी बोल रही है उसमें कोई गैर कानूनी नहीं है, इसका जवाब चाहना चाहेंगे विनीत जिंदल।
5: बिल्कुल बिल्कुल गैर कानूनी माना जाएगा, बिल्कुल गैर कानूनी माना जाएगा। आपने बिना किसी परमिशन के आप वहां गए, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा पब्लिक प्लेस नहीं है जहां पे आप जाएंगे और घुस जाएंगे, वो एक सिक्योर्ड एरिया है, वहां पे ऐसे लोग बैठे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, प्रोसेस सब लोग जानते हैं, जो लोग जाते हैं राहुल गांधी भी जानते हैं, अभिषेक मनु सिंह भी जाते हैं, और बहुत दुखद है कि अभिषेक मनु सिंह भी जैसे।
1: आखिरकार सवाल ये कायम रहेगा कि अभिव्यक्ति की आजादी का प्रदर्शन या सुप्रीम कोर्ट के आंगन में ताकत का प्रदर्शन? हालांकि इसका जवाब अब विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट के सामने भी देना है, कई सारी पिटिशन है, सुप्रीम कोर्ट अब सर्वोच्च रेफरी बनकर इस पूरे झगड़े में सामने आकर खड़ा है, लेकिन देश के सामने इसके जवाब क्या मिल पाएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले पर रहेगा। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: यार लोन भूल गया मैरी सजेस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
2: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर बेबाक है मेरा सिग्नेचर सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप
4: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो थमका लगाने बस
5: मेरे पास एक आइडिया है
4: क्या
5: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
6: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
7: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है
8: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है
6: कौन सी बनानी है

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।
2: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
3: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
4: I love it, absolutely amazing. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
5: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
4: क्या?
5: इनकी राय।
6: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी।
2: हेलो जी, टाइम क्या हुआ है?
3: टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। डायमंड हर दिन और एश्योर्ड गिफ्ट विद फिलिप्स, सोने पे डबल स्वाद ऑफर।
4: We present you our red salute, and we know that the Gen Z movement that we are seeing everywhere in this country first started in Bangladesh. And congratulations to you for showing us the way, for showing us and extending solidarity to the young people of this country. We know that the movement that began in Bangladesh was for democratic and voter rights. Today, the movement that the young people are participating in and leading is also a movement for democratic and voting rights. We know that the fight that you fight against religious fundamentalism in your country is also a fight that the Gen Z and the young people of this country fight today.
5: सुनने में थोड़ा अजीबोगरीब जरूर लग सकता है, लेकिन सच यही है कि आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा का ये बयान राहुल गांधी के लिए मुश्किल की वजह बन गया है। नेहा बोरा बांग्लादेश में हुए आंदोलन की तारीफ कर रही है, उससे सबक सीखने की बात कह रही है। उनके इस बयान पर बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है।
6: बांग्लादेश में हुआ क्या था, एक ग्रुप ऑफ इस्लामिस्ट ने भीड़ के सहारे, अराजकता के सहारे पूरे के पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने का प्रयास किया। उनका मकसद रेजिम चेंज था। मतलब आज ये साबित हो चुका है कि राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम भारत में लोकतंत्र को तहस नहस करने की एक साजिश रच रहे हैं।
5: आप सोच रहे होंगे आखिर आइसा यानी CPIML की स्टूडेंट विंग की प्रमुख के बयान का राहुल गांधी से क्या लेना देना। तो आप इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में विपक्ष के नेता एक साथ दिख रहे हैं। ये तस्वीर 12 अक्टूबर की है, जब विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया था और तब नेहा बोरा राहुल गांधी के साथ खड़ी थी। अगले दिन इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नेहा बोरा साथ दिखी थी और उसके अगले दिन राहुल गांधी की चाय पार्टी में भी नेहा बोरा मौजूद थी। इसलिए अब बीजेपी राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली नेहा बोरा और राहुल गांधी के विचार को एक बता रही है।
6: ये पॉलिटिकल रेजिस्टेंस नहीं है, ये एनार्किक मार्च है और एक एनार्किक रिवोल्ट है।
5: तो क्या राहुल गांधी और नेहा बोरा के एक साथ एक मंच पर आना राहुल गांधी के लिए आगे भी सवालों की वजह बनता रहेगा? यही सवाल हमने कांग्रेस नेता सचिन पायलट से पूछा।
7: नहीं जानता हूँ कौन बांग्लादेशी है कौन पाकिस्तानी है, मैं तो भारत देश की बात करता हूँ और हम लोग चिंतित आज हैं अपनी अगली पीढ़ी के भविष्य के लिए। हम लोगों को जो देश मिला था, जहाँ चुनाव, लोकतंत्र, बोलने की आजादी, अपने विचार प्रकट करने का खुलापन जो हम लोगों ने इनहेरिट किया था, मैं चाहता हूँ अगली पीढ़ी को वो मिले। आज जो हो रहा है इतनी दबिश है, इतना खौफ का माहौल पैदा किया हुआ था। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ उन जेन जी के बच्चों को, लड़के लड़कियों को, जिन्होंने जंतर मंतर बजाकर वो सारी बंदिशें तोड़ दी।
5: तो सचिन पायलट ने नेहा बोरा पर हुए सवालों का सीधा जवाब देने से कन्नी काट गए। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी का झुकाव वाकई लेफ्ट की तरफ हो रहा है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगाती रही है। आज तक ब्यूरो।

0: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
1: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
2: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
3: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
2: क्या?
3: इनकी राय।
4: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
5: हेलो जी, टाइम क्या हुआ है?
6: टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। डायमंड हर दिन और एश्योर्ड गिफ्ट विद फिलिप्स, सोने पे डबल स्वाद ऑफर।
7: आ गया सोमवार और आ गए
8: चकमक चाचा।
7: हाँ चाचा, अखबार बांच रहे हैं। टेस्ट चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चिचा कब जाएंगे?
9: अरे भैया प्रोटेस्ट में हिस्सा ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा, हम अपना मुद्दा उठा चुके
7: हैं। अच्छा, कब उठाए?
9: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए।
7: अच्छा,
9: हाँ तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग तरह इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे, दन दन दन दन करके, ऐसा ये सब नहीं था अपना मामला
10: जी,
9: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
7: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है आपका।
9: टूटा भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे कार्रवाई चलती थी दर्द होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन दिल बोलता रखे था एकदम पुत्ता मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
7: अच्छा,
9: और क्या
7: आपका मतलब? हम लोग डर जाते हैं।
9: और क्या डर जाते हैं? बिल्कुल, जहाँ पुलिस सिटी नहीं भेजी उसमें भागने लगता हूँ।
7: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही है।
9: किधर?
7: चाचा हम खेल गए अब की।
11: अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ना होगा। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर नोटिस। अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस नोटिस का मसौदा साफ है। पुलिस ने दो टूक कह दिया है कि इमरान खान भारत छोड़ दे। मुंबई पुलिस ने एक्टर आमिर खान के भांजे को ये नोटिस थमाया है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को ऐसा फरमान जारी करना पड़ा। दरअसल ये पूरा मामला 10 अक्टूबर 2026 का है, जब मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था। इस प्रदर्शन में सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। इमरान खान भी उस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया था। इस बात से बीजेपी नाराज हो गई। पार्टी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस से इसकी शिकायत कर दी। दरअसल इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं है, वो अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं, उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा है। बीजेपी की शिकायत थी कि ऐसे लोग देश के अंदरूनी प्रोटेस्ट में कैसे शामिल हो सकते हैं।
12: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने की नोटिस मुंबई पुलिस द्वारा दी गई है। 28 अक्टूबर तक इमरान खान को भारत छोड़ने के लिए मुंबई पुलिस द्वारा कहा गया है। अगस्त क्रांति में कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में हुए आंदोलन में इमरान खान ने हिस्सा लिया था और उन्हें उस दिन डिटेन भी किया गया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इमरान खान की नागरिकता पर सवाल उठाए थे। किरीट सोमैया ने कहा था कि इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और वो भारत में हो रहे आंदोलन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने लगातार इसकी शिकायत मुंबई पुलिस से की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए इमिग्रेशन एक्ट के तहत इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के निर्देश मुंबई पुलिस द्वारा दिए गए हैं।
11: उसी मामले में संबंधित आव्रजन कानूनों के तहत कार्रवाई की गई है। मुंबई पुलिस के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की ओर से नोटिस जारी किया गया है। OCI कार्ड धारक भारतीय मूल के विदेशी नागरिक होते हैं, जिन्हें भारत में रहने और कई अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता है, लेकिन OCI का दर्जा भारतीय नागरिकता के समान नहीं है, उसके साथ कुछ कानूनी प्रतिबंध भी जुड़े होते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इमरान खान मुंबई पुलिस के नोटिस पर क्या कदम उठाते हैं। दीपेश त्रिपाठी, आज तक।
13: चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दल 15 दिनों से सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि चुनाव आयोग पक्षपाती है, जानबूझकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए फैसले ले रहा है। राहुल गांधी पिछले 2 वर्षों से चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। अब अखिलेश यादव ने SIR और SIR के बाद आयोग के कामकाज पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।
14: एक ही व्यक्ति के 10 वोट बने हुए, बताइए अगर ये बात गलत है तो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी बताए कि हम गलत हैं। एक ही व्यक्ति के SIR के बाद 10 वोट बने हुए हैं, आजमगढ़ सदर विधानसभा एक ही व्यक्ति के 10 वोट हैं। अब आप बताइए क्या है इलेक्शन कमीशन को क्या माने, इनकी एसआईआर की एक्सरसाइज को क्या माने, एक व्यक्ति एक वोट डाल देगा।
13: समाजवादी पार्टी मिसाल के तौर पर 100 विधानसभाओं के बूथों से ऐसे वोटर लिस्ट वाले दस्तावेज देकर आई है जिनमें एसआईआर के बावजूद लिस्ट में फर्जी वोटर हैं। मसलन कन्नौज के छिबरामऊ में बूथ 49 पर क्रम संख्या 546, 547 और 548 पर नीतू नाम की महिला के नाम 3 बार हैं। इसी तरह बूथ 166 पर हिमेश नाम के युवक का नाम 871, 872, 873 क्रमांक पर 3 बार दर्ज है। बूथ 240 पर शिवानी का नाम 732, 733, 736 क्रमांक पर 3 बार दर्ज है। बूथ 357 में आरती का नाम 724, 732, 734 क्रमांक पर दर्ज है। इटावा के जसवंत नगर में बूथ 9 और 10 पर नए वोटर के नाम 3 एपिक नंबर से 3 बार मिले। श्रावस्ती में रोशन लाल का नाम 4 अलग एपिक नंबर से 4 बार रजिस्टर्ड है।
14: बीजेपी अभी भी फर्जी वोट बनवा रही है और इलेक्शन कमीशन से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो निष्पक्ष रहेंगे। लेकिन आप हम सब जानते हैं कि एसआईआर यूपी में चल रहा था और एसआईआर खत्म हो गया, अभी अब नए तरह का रिवीजन शुरू हो रहा है और उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में डबल वोट है, 4 वोट है, 6 वोट है।
13: समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर वोटर लिस्ट की इन खामियों की जांच कर इन्हें दूर करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी का एक और आरोप यह है कि एसआईआर खत्म होने के बाद चुनाव आयोग जो स्पेशल ड्राइव चला रहा है उसमें बीजेपी फर्जी वोट जुड़वा रही है। एक तरफ दिल्ली में आंदोलन चल रहा है कि 13 करोड़ वैध वोटर के नाम काट दिए गए हैं, दूसरी तरफ अखिलेश कहते हैं कि नाम ज्यादा जोड़ दिए गए हैं। समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: हम सब जानते हैं कि कन्या पूजन का क्या महत्व होता है, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस का हाथ सदैव महिलाओं के शोषणकर्ताओं के ऊपर ही रहता है। नवदुर्गा की अवहेलना करने वाले कांग्रेस पार्टी के सिटिंग सांसद बिमल अकोयजम ने जब 11 छात्राओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करी तो इंटरनल कमेटी जो जेएनयू की है उसने पाया कि बिमल अकोयजम कि जो 11 छात्राओं ने बिमल अकोयजम के खिलाफ कंप्लेंट करी थी उसमें सच्चाई थी, उसमें तथ्य थे और इसीलिए 9 अक्टूबर 2026 को बिमल अकोयजम को जेएनयू की नौकरी से बर्खास्त कर दिया। स्मैश द पेट्रियार्की के नारे में आवाज आपकी बुलंद जरूर है, लेकिन जब बिमल अकोयजम की बात आती है तो आपकी आवाज बंद क्यों है? इसलिए क्योंकि कांग्रेस सिद्धांतों की नहीं सहूलियत की राजनीति करती है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: एक कहावत है कि आपकी आजादी मेरे नाक तक, तो क्या अभिव्यक्ति की आजादी सुप्रीम कोर्ट के आंगन तक है क्या? ये एक सवाल उभरता रहेगा, नजर रखेंगे इस पर। फिलहाल दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, अल्लाह बोल में मिलेंगे थोड़ी देर में, देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पवित्र प्रांगण को धरना स्थल में परिवर्तित करने का प्रयास एक अराजक नागरिक नेता प्रतिपक्ष गैर जिम्मेदार व्यक्ति राहुल गांधी ही कर सकता है।
1: We know that the Gen Z movement that we are seeing everywhere in this country first started in Bangladesh. And congratulations to you for showing us the way, for showing us and extending solidarity to the young people of this country.
2: ये मैं आज खुले तौर पर कह रहा हूँ, यहाँ ये रेजिम चेंज की लड़ाई है और हम लोग रेजिम चेंज करा कर रहे हैं।
3: ये पॉलिटिकल रेजिस्टेंस नहीं है, ये एनार्किक मार्च है और एक एनार्किक रिवोल्ट है।
4: यहाँ वो राहुल जी के साथ आके खड़ी हुई है, तो इसलिए उसको बदनाम कैसे करने की उनकी कोशिश ये लोग कर रहे हैं।
5: साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि आज राजस्थान पंचायत हो रहा है तो आज का ये कार्यक्रम हल्ला बोल का स्पेशल एपिसोड आप सीधा जयपुर से देख रहे हैं, लेकिन

0: चर्चा बढ़ी है और एक के बाद एक एसआर के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार सरकार को घेर रहे, लेकिन आज उनके सामने एक बड़ा सवाल आ गया है और ये सवाल कहीं और से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से आया है। तो आज राहुल गांधी समेत विपक्ष के अन्य नेताओं को, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा, ये सभी नेता मौजूद हैं, इन सबको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पूछा गया है कि फाइलिंग काउंटर तक आखिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मार्च लाने के पीछे की मंशा क्या है। तो इसका अब किस तरह से फॉलोआउट होता है देखना दिलचस्प होगा। हालांकि आपको बता दें कि 10 अक्टूबर का जो पूरा विरोध प्रदर्शन रहा है उसको लेकर भी बात हुई है कोर्ट में, 12 अक्टूबर को भी जो प्रोटेस्ट हुआ उस पर भी सवाल पूछे गए हैं, लेकिन इन सबके बीच आज दिल्ली पुलिस की तरफ से कमिश्नर और गृह सचिव दोनों ने ही अपनी तरफ से अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी कोर्ट में दी है। तो मुद्दे बहुत सारे इस वक्त धधक रहे हैं। वहीं तीसरी तरफ अगर आप देखिए तो नेहा बोरा का एक बयान जिसको लेकर अब बीजेपी कांग्रेस को खूब घेर रही है, क्योंकि नेहा बोरा जिनको चाय पार्टी पर भी राहुल गांधी ने बुलाया था और जो कई मायनों में स्टूडेंट प्रोटेस्ट का चेहरा भी बनी, और वही नेहा बोरा जो कि विपक्ष के नेताओं के मन से सरकार को घेर भी रही थी, उस ट्रक पर भी मौजूद थी जब ये पूरा आंदोलन एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष निकाल रहा था, आंदोलन कर रहा था, जिसके बाद वो आगे बढ़े। उन नेहा बोरा ने ये कहा है कि 2024 में जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ था वो प्रेरणा है स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए इंडिया में। अब बीजेपी इस मुद्दे पर घेर रही है कि राहुल गांधी जिसका समर्थन करते हैं, देखिए वो देश में बांग्लादेश की तरह अराजकता फैलाना चाहते हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन 12 अक्टूबर को एसआईआर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका के बाद सैकड़ों समर्थकों के साथ वहां पहुंचे राहुल गांधी को अब अपने आचरण पर जवाब देना होगा। सीजेआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में फैली अव्यवस्था पर न सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि राहुल गांधी को स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस भी जारी किया। मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और महुआ मोइत्रा से भी जवाब मांगा गया। साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी सुप्रीम कोर्ट की फाइलिंग काउंटर पर हुए हंगामे की सफाई देनी होगी। एक ओर सबसे बड़ी अदालत का नोटिस आया है तो दूसरी ओर लेफ्ट की छात्र कार्यकर्ता नेहा बोरा का बयान भी राहुल गांधी पर हमले के लिए बीजेपी को मौका दे गया है। नेहा बोरा ने 2024 में बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार को गिराने के लिए हुए प्रदर्शनों को भारत के मौजूदा प्रदर्शनों की प्रेरणा कहा है।
1: We present you our red salute, and we know that the Gen Z movement that we are seeing everywhere in this country first started in Bangladesh. And congratulations to you for showing us the way, for showing us and extending solidarity to the young people of this country. We know that the movement that began in Bangladesh was for democratic and voter rights. Today, the movement that the young people are participating in and leading is also a movement for democratic and voting rights. We know that the fight that you fight against religious fundamentalism in your country is also a fight that the Gen Z and the young people of this country fight today.
0: 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक राहुल गांधी के मार्च में नेहा बोरा उनके साथ चलती नजर आई थी। 13 अक्टूबर को राहुल गांधी के घर हुई चाय पार्टी में भी नेहा बोरा मौजूद थी। नेहा बोरा का बयान इसीलिए भी लोगों की निगाहों में आ गया है क्योंकि 10 अक्टूबर को जब सीजेपी दिल्ली में अपना प्रदर्शन कर रहा था उसी दिन बांग्लादेश के सोशलिस्ट स्टूडेंट्स फ्रंट यानी एसएसएफ ने ढाका में सॉलिडेरिटी मार्च निकाला था। 10 अक्टूबर को ढाका में हुए इस प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लगाए गए थे। बांग्लादेश का कट्टरपंथी छात्र नेता और वहां की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी का संयोजक नाहिद इस्लाम इस मार्च में शामिल था। आपके लिए सर ज्यादा बड़ा चैलेंज इस वक्त क्या है, 10 अक्टूबर को जो सीजेपी का विरोध प्रदर्शन हुआ या फिर जो ये विपक्ष एकजुट होकर, क्योंकि उस ट्रक पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी, मैं यूपी के चुनाव पर आपसे बात करूंगी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, तमाम लोग, नेहा बोरा जो लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, अनेकों नेता और युवा मौजूद थे और एक बड़ा हुजूम आया था उस दिन राजधानी में, आपको लगता है कि ये बड़ा चैलेंज है आपके लिए दोनों सीजेपी?
2: देखिए, लोकतंत्र में कोई अपना विषय रखता है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करता है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई अपना रखो विषय। और इनके जो नेता हैं वो आज तो उनकी रील चल रही है कि वो बांग्लादेश को कह रहे हैं, कि भाई हम बांग्लादेश को के लोगों को वो संबोधित कर रहे हैं कि हम तुम्हारी राह पे चल रहे हैं, तो ये तो SIR में सबसे बड़ा झगड़ा ही है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम काटे गए।
0: ये किसकी बात कर रहे हैं सर आप?
2: ये तो आप सुनिए जिसकी बात कर रहे हैं, आप भी देखिए ना, आप सबको ज्यादा जानती
0: हैं। तो सोच रहे थे कि आप नाम बताएंगे, आप नाम नहीं लेना चाह रहे हैं।
2: नहीं, हम तो एक आपके एंग्री एज्ड मैन का ही नाम ले रहे हैं, उसी में सब समा रहे हैं।
0: नेहा बोरा ने ये बोला है, जिसको लेकर आपकी पार्टी ने लपक लिया एकदम।
2: ये इनका असली दर्द है कि बांग्लादेश वालों के नाम अगर घुसपैठियों के थे तो क्यों कटे। वो कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, तो एक ना एक दिन तो सच इनका सामने आना था। अभी कुछ दिन और रुकिए, कुछ दिन बाद और चीजें सामने आ जाएंगी इनकी।
0: नेहा बोरा ही नहीं, राहुल गांधी की चाय पार्टी में शामिल हुए वकील प्रशांत भूषण का बयान भी सुर्खियों में है, जिसे लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है।
3: प्रशांत भूषण एक ट्विटर स्पेस पे ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि रेवोल्यूशन हो, जिसमें खून खराबे की बात कर रहे हैं, और ठीक 24 घंटे बाद उसी प्रशांत भूषण को राहुल गांधी साथ में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं। सो देयर इज अ सीरीज ऑफ पैटर्न व्हिच पॉइंट्स दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ राहुल गांधी इज नॉट डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस, इट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ एनआरकी। इट इज नॉट डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस, इट्स अ फाइट अगेंस्ट इंडियन स्टेट, इंडियन डेमोक्रेसी।
0: 6 अक्टूबर से शुरू हुए अपने प्रदर्शनों को राहुल गांधी भारत की आवाज कहते आए हैं। ऐसे में कांग्रेस नेहा बोरा के बयान को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती।
4: बांग्लादेश के एक बड़े प्रमुख व्यक्ति ने ट्वीट किया था जब ये प्रोटेस्ट हुआ था, और उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश का समर्थन है। अब नेहा बोरा जो कि इस प्रोटेस्ट में साथ आगे आगे चलती हुई दिख रही है, उन्होंने कहा बांग्लादेश ने ही हमें राह दिखाई है। क्या भारत के प्रोटेस्ट को
5: मैं नहीं जानता हूं कौन बांग्लादेशी है कौन पाकिस्तानी है, मैं तो भारत देश की बात करता हूं, और हम लोग चिंतित आज हैं अपनी अगली पीढ़ी के भविष्य के लिए। हम लोगों को जो देश मिला था, जहां चुनाव, लोकतंत्र, बोलने की आजादी, अपने विचार प्रकट करने का खुलापन जो हम लोगों ने इनहेरिट किया था, मैं चाहता हूं अगली पीढ़ी को वो मिले। आज जो हो रहा है, इतनी दबिश है, इतना खौफ का माहौल पैदा किया हुआ था। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं उन जेन जी के बच्चों को, लड़के लड़कियों को, जिन्होंने जंतर मंतर पर जाकर वो सारी बंदिशें तोड़ दी, उन्होंने खुले होकर अपनी बात को रखा और ये दिखाया कि हम लोग दबाव में या प्रेशर में काम नहीं कर सकते।
0: नेहा बोरा के बयान पर बीजेपी के हमले के बीच इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का बयान भी तूल पकड़ सकता है।
6: इंडिया इज अप टू द पीपल इन पावर, यू नो व्हाट इज दैट यू आर आस्किंग फॉर। इफ जॉर्ज सोरोस इज गोइंग टू ब्रिंग इन $10 billion इन्वेस्टमेंट टू डू समथिंग गुड, मे बी इट्स वन थिंग टू लुक एट, पॉसिबल। इट ऑल डिपेंड्स ऑन केस बाय केस, पॉलिसी बाय पॉलिसी। And it's the privilege of the people in power.
0: प्रदर्शनों में विदेशी दखल के आरोप बीजेपी को अपना पक्ष मजबूत करने का मौका देते हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती की अर्जियों पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को प्रदर्शन से जुड़े सभी CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। इसी तरह सभी निजी पक्ष भी वीडियो सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि उन्हें अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। आज तक ब्यूरो। अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। चरण सिंह सापरा साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। पी संतोष कुमार, सांसद CPI के, आज हमारे साथ पहली बार हल्ला बोल में आ रहे हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार आज आप हल्ला बोल में चर्चा के लिए आ रहे हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ आ रहे हैं। लेकिन अजय आलोक जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। कोर्ट ने राहुल गांधी से सवाल पूछा है, वो जवाब देंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली से पुलिस कमिश्नर को और गृह सचिव दोनों को अनकंडीशनल अपॉलॉजी देनी पड़ी है कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने जो कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि भाई आप मेट्रो मत बंद कीजिए, इतना बहुत आप बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स उठा रहे हैं, उसका उल्लंघन किया गया, इस पर आपका जवाब।
7: देखिए, ये एक प्रशासनिक कार्रवाई है। प्रशासनिक कार्रवाई के तहत अगर उनको किसी विशेष कारण से कोर्ट की आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ा तो उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी दी। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है। उन्होंने अपनी सिचुएशन बताई कि किन कारणों में ये करना पड़ा, और कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, कोर्ट को जो भी उचित कार्रवाई करना होगा कोर्ट करेगी, उसमें हम कौन होते इंटरफेयर करने वाले। मजेदार बात यह है कि अंजना जी, कोर्ट ने आज संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने, हम बहुत धन्यवाद देते हैं कोर्ट को कि आप ये प्रदर्शन फाइलिंग रूम तक क्यों ले आए। लेकिन आप मुझे ये बताइए अंजना जी, कोई आम आदमी या कोई आम आदमी का संगठन क्या कोर्ट के फाइलिंग रूम तक पहुंच कैसे प्रदर्शन कर सकता है? प्रदर्शन तो छोड़ दीजिए, कोई प्लेकार्ड तक दिखा सकता है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वहीं के वहीं से जेल चला जाएगा। तो फिर ऐसे उपद्रवी एजेड एंग्लो इंडियन को और उसके संगठन को बर्दाश्त करने को कोर्ट की जरूरत क्या है, जबकि वो लगातार ऐसी हरकतें करते जा रहे हैं 2-2.5 महीने से। ये भी कोर्ट को सोचना पड़ेगा कि आज अगर एक पार्टी को और एक संगठन को आपने इस तरह से जाने दिया बिना कोई अकाउंटेबिलिटी तय किए हुए, तो इस देश में आज की तारीख में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी लगभग, जो कि मान्यता प्राप्त पार्टी है, लगभग 400 के पास है। कल सब कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच के प्रदर्शन करने लगे तो चल लिया देश। आज जो किया सुप्रीम कोर्ट ने वो ऐतिहासिक है कि उनसे मंशा पूछी है, और मंशा पूछने के बाद मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस एजेड एंग्लो इंडियन जो लीड कर रहा था उसकी पार्टी को जरूर इसके पीछे बिल्कुल अंत तक कार्रवाई इसकी होनी चाहिए, क्योंकि ये देश में एक नजीर सेट होना चाहिए कि आप कुछ संस्थाओं को अपनी तुच्छ राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इस सुप्रीम कोर्ट के रीडिंग काउंसिल में कौन जाता है फ्रंट में इस एजेड एंग्लो इंडियन के साथ? नेहा वोरा। कौन है नेहा वोरा? जो बांग्लादेशी स्टूडेंट, कम्युनिस्ट स्टूडेंट को, इस्लामिक स्टूडेंट के सम्मेलन को संबोधित हुए करती हैं कि आपको लाल सलाम, कि आपने हमें रास्ता दिखाया कि कैसे आंदोलन को प्रोटेस्ट करें, खोपड़ी वाली टी शर्ट पहन के। उस खोपड़ी वाली टी शर्ट का क्या है सिंबॉलिक अर्थ? उस खोपड़ी वाली टी शर्ट का सिंबॉलिक अर्थ यह है कि जहां जहां सत्ता बदली गई है, चाहे इंडोनेशिया हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, हर जगह खोपड़ी वाली टी शर्ट पहन के इस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ। तो देश में सत्ता परिवर्तन के नायक बन रही है एंग्लो इंडियन। भारतीयों की कमी पड़ गई क्या इस देश को कि एक एंग्लो इंडियन को खलनायक बना के इस देश की व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है? और मैं बहुत गंभीरता से ये कह रहा हूं,
0: ये एंग्लो इंडियन किसको कह रहे हैं आप बार बार? एक सेकंड अजय आलोक जी, मैंने सोचा था कि मैं भी आज जयपुर में हूं और ये आवाज आने जाने में गैप होगा हम लोगों के, लेकिन ये एंग्लो इंडियन किसको कह रहे हैं आप?
7: अरे मैं एजेड एंग्लो इंडियन कह रहा हूं, मैं एजेड एंग्लो इंडियन कह रहा हूं। कौन है एजेड एंग्लो इंडियन जो लीड कर रहा था वहां पे? राहुल गांधी जी। और कौन?
0: आप बताइए
7: एंग्लो इंडियन कौन होता है?
0: आप बताइए ना,
7: एंग्लो इंडियन कौन होता है? एंग्लो इंडियन की
0: डेफिनेशन
7: वही है ना कि भारतीय मूल के साथ कोई भी यूरोपियन कप, एक मिनट, भारतीय नागरिक है इसलिए तो एंग्लो इंडियन कह रहा हूं। भारत के नागरिक हैं लेकिन यूरोपियन समुदाय और ब्रिटिश के साथ जो मिक्स्ड होते हैं उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। यही परिभाषा है संविधान में, उसके तहत आरक्षण भी मिलता है। बिहार विधान परिषद में एक सीट भी रिजर्व है एंग्लो इंडियन की। इसलिए मैं कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं तो बोलिए, माफी मांग लूंगा, तुरंत माफी मांगूंगा। एजेड एंग्लो इंडियन के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतीय कम पड़ गए इन कांग्रेसियों के लिए कि एजेड एंग्लो इंडियन के भारतीय के नेतृत्व में अराजकतावादी बने हुए हैं, देश को भाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेहा वोरा जैसी लड़की जो कहती है कि पाकिस्तान को, बांग्लादेश को सलाम, बांग्लादेश रास्ता दिखाएगा इंडिया को, जिसकी उत्पत्ति इंडिया ने करवाई है।
0: संतोष जी, मैं चाहती हूं कि आप सांसद हैं और इसीलिए मैं सबसे पहले, इसके पहले कि मैं सापरा जी के पास जाऊं, क्योंकि मुझे पता है राहुल गांधी जी पर जो उन्होंने कहा उसका वो जवाब देना चाहेंगे, लेकिन नेहा वोरा के इशू पर आज पूरे देश में बहस हो रही है, तो आपके पास मैं आना चाहती हूं कि सांसद जी आखिर क्या वजह है? मतलब बांग्लादेश में जो अराजकता हमने देखी उससे प्रेरणा मिल रही है, उसकी क्या जरूरत है? क्या भारत में जो लोग हैं उनकी कमी है और भारत के युवाओं को क्या बांग्लादेश से, कट्टर देश से प्रेरणा लेने की जरूरत है? संतोष जी,
8: मेरा जवाब आप ध्यान से सुनिए। इस मामला पर मैंने सुबह स्पष्ट किया था हमारा पार्टी की पोजीशन। बांग्लादेश और नेपाल एवं अन्य देशों से इंस्पिरेशन मिलना का कोई जरूरत हम लोगों को नहीं है। दुनिया का अलग अलग देशों में अलग अलग मामला पर ऊपर लगातार आंदोलन चलता रहता है, वो सब छोड़िए, हमारा इंस्पिरेशन कहां से? हमारा इंस्पिरेशन, जितना हिंदी मुझे मालूम उतना हिंदी में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारा इंस्पिरेशन देश का जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए आंदोलन किया था उससे है हमारा प्रेरणा, उससे ज्यादा नहीं है। हमारे पास बहुत सारा आइकन है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, भगत सिंह है, बहुत सारा छात्रों नौजवानों का आंदोलन था उसी समय, अभी भी हो रहा है। वो इंस्पिरेशन का सोर्स कहां है तो एक ही उत्तर है, वो देश की स्वतंत्रता संग्राम है। बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, अमेरिका, वो अलग अलग देश है, उसका मामला उनके लिए छोड़ो, और किसी ने कुछ बताया होगा उसके ऊपर मुझे क्या बोल सकता। हमारा पार्टी और एवं इंडिया अलायंस का इंस्पिरेशन का सोर्स एक ही है, वो देश का स्वतंत्रता संग्राम है। एवं अन्य उदाहरण भी बोल सकता, लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यह है, यह है हमारा उत्तर।
0: लेकिन लेकिन संतोष जी, एक इसके पहले कि मैं

0: एक इसके पहले कि मैं सापना जी के पास जाऊं, सांसद जी ये बताइए कि एक सेकेंड नेहा, फिर नेहा वोरा को क्या आप लोग डिसोन कर रहे हैं या डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो डी राजा जी भी उस दिन थे, सारे लोग थे चाय पार्टी में और उन्होंने वहां पर स्पीच दिया, उनको सबसे आगे रखा जा रहा था इस पूरे मार्च में। संतोष जी
1: सुनिए, मेरा हिंदी का थोड़ा सा कमी है इसलिए मतलब थोड़ा सा कमी हो सकता है, लेकिन बात एक पक्का है। मैं आपको एक बार बताया, बांग्लादेश, चाइना, जापान, जो भी देश में हो सकता, अलग अलग मामला के ऊपर नौजवान छात्राओं का हमला लगातार हो रहा है। ये बात आप सारा छोड़िए, खूब पढ़िए क्या हो रहा है, लेकिन हमारा इंस्पिरेशन और हमारा मार्गदर्शक कौन है? देश का जनता है, देश के लिए लड़ रहा हूं। ऐसा नहीं इंटरनेशनली हम कनेक्टेड हैं, लेकिन इंस्पिरेशन और रास्ता कहां से? बस स्वतंत्रता संग्राम है एवं अन्य आंदोलन से, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, उससे कम नहीं बोल सकता। मैं किसी को ऑन करने के लिए और किसी को डिसोन करने के लिए नहीं कोशिश कर रहा हूं। वो अलग अलग पार्टी का लोग है, अलग अलग पार्टी का मत है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ओर से और इंडिया ब्लॉक का ओर से भी एक एक्सटेंड तक मुझे बोल सकता, ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इंडिया इंडिपेंडेंट मूवमेंट है। बस
0: ठीक है, अजय जी क्विक रिबाटल, फिर मैं जाऊंगी चरण जी के पास।
2: मैं माननीय सांसद साहब से पूछना चाहता हूं कि अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन अगर महात्मा गांधी हैं और इंडिया के इंडिपेंडेंस आंदोलन है, तो माननीय सांसद जी जरा बताएंगे, जैसे अभी आपने पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहरा वोरा को सबसे आगे खड़ा करके उसे 5 मिनट की स्पीच क्यों दिलवाई? दोनों एंग्लो इंडियन भाई बहन नेहा वोरा को अपने पैरेलली क्यों खड़ा कर रहे थे, बाकी लीडर्स को पीछे क्यों कर दिया था? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आपका अगर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट और महात्मा गांधी है, तो बांग्लादेश क्यों याद आ रहा है नेहा वोरा को? और नेहा वोरा को अभी तक निकाला क्यों नहीं गया सीपीएम माले से? ये तो किसी को पता नहीं है कि माले की संस्कृति क्या है। बिहार का हूं मैं,
1: सुनिए
2: किस संस्कृति से माले बिलोंग करती है। ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंटी इंडिया मूवमेंट से है, मानिए इस बात को। और आप लोग जाने बूझते उस एंग्लो इंडियन के चक्कर में एंटी इंडिया मूवमेंट का पार्ट बनते जा रहे हैं।
1: जी जी जी, आप जैसे सुनिए, आपका सवाल समझ गया, समझ गया, लेकिन मैं खुद सांसद हूं, लेकिन मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से केरलम से, किसी ने कुछ विषय के ऊपर कुछ बताया होगा, मुझे उसके ऊपर क्या, मैं उसके ऊपर उत्तर देने वाला नहीं हूं। वो लोगों का पार्टी वालों को आप पूछिए, मेरा पार्टी से कोई ऐसा नहीं बताया, इसलिए मुझे कोई जिम्मेदारी भी नहीं है वो बोलने के लिए। मैंने आपको और एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं, देश का स्वतंत्रता संग्राम है हमारा इंस्पिरेशन, बस आंदोलन जो हुआ वो हमारा इंस्पिरेशन है, वो हम वो रास्ता लेके मतलब आगे जाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मैं अलग पार्टी है, क्या बोल सकता हूं, दूसरा पार्टी का वो लोग कुछ बताया होगा क्या मुझे?
0: अगर ये सब कुछ बताया, संतोष जी सीपीआई से है। संतोष जी बोलिए,
1: सीपीआई के बारे में मुझे बोलिए।
0: सीपीआई से है ना, वो आईसा की है और आईसा स्टूडेंट विंग है सीपीआईएम का। बोलिए बोलिए अजय लोग,
1: एमएल का एमएल
2: पता है अंजना जी, लेकिन कंधे से कंधा लड़ा के खड़े थे मार्च में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी।
1: सुनिए, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बताया था ऐसा?
0: प्रेस कॉन्फ्रेंस
1: ज्वाइंट मीटिंग में ऐसा कुछ बताया था? नहीं नहीं, अलग अलग विषय पर अलग अलग लोगों ने दादा ने कुछ बताया होगा, आप उससे पूछिए, मैं उसका जिम्मेदार वाला नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में है तो हमको ठीक कर सकता, अगर ठीक करना तो बस।
0: ठीक है ठीक ठीक है ठीक है, संतोष जी अपना स्पष्ट कर रहे हैं आलोक जी। अब भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन सबने अपनी अपनी बात कही, ऐसा थोड़ी है कि बाद में जाकर कौन क्या कहेगा, तो बीजेपी वाले ही 10 लोग 10 तरह की बात कर देते हैं और फिर कोई डिफेंड करने को तैयार नहीं होता है। वो कह रहे हैं कि हम सीपीआई से हैं, आईसा जिसकी वो नेशनल प्रेसिडेंट है, वो सीपीआईएमएल का स्टूडेंट विंग है। ठीक है, वो स्टूडेंट विंग सीपीआईएमएल का है।
2: गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज, कंधे से कंधा मिला के राहुल गांधी जी के साथ।
0: ये सवाल तो असल में सापरा जी के लिए,
2: मार्च में साथ
0: सापरा जी, राहुल जी उस दिन नेहा वोरा को सबसे आगे लेकर चल रहे थे, अपनी पार्टी के भी कई नेता पीछे हो जा रहे थे, लेकिन नेहा वोरा को सबसे आगे लेकर वो चल रहे थे। अब बांग्लादेश के मुद्दे पर क्या बैकफुट पर नहीं डाल दिया आपके आपको नेहा जी के इस बयान ने?
3: देखिए अंजना जी, आपके इस सवाल का भी मैं जवाब जरूर दूंगा, लेकिन पहले मैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बातें कही है उसका जवाब दे दूं। मुझे समझ में नहीं आता कि बीजेपी के प्रवक्ता

0: अचानक उत्तेजित क्यों हो जाते हैं इतने, ये अपने मोगैम्बो को खुश करने के लिए अजीब अजीब तरह की बातें करने लग जाते हैं। लेकिन आज देश को पता है कि इसी मोगैम्बो ने मदारी बनकर के 140 करोड़ जनता को हमेशा नचाया है, कभी नोटबंदी के लिए और कभी वोट बंदी के लिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये मोदी नहीं मदारी है, इन्हें झूठ बोलने की बीमारी है। अब मैं आता हूं कि इन्होंने एंग्लो
1: एजेंट एंग्लो
0: इंडियन सब
1: इंडियन है
0: बातें
1: या
0: कही,
1: नहीं?
0: तो अभी अभी उत्तेजित मत होइए ना, सुन सुन लीजिए ना, मैंने भी
1: है या नहीं,
0: सुना
1: यही
0: था
1: तो
0: आपकी
1: पूछ रहा
0: बातों,
1: हूं,
0: मैंने
1: एजेंट
0: आपकी
1: एंग्लो
0: बातों को
1: इंडियन
0: सुना
1: है
0: था
1: या
0: ना।
1: नहीं?
0: अब ये बीच में टोका टोकी करोगे तो समझ में आता है, दर्शकों को भी समझ में आता है क्या हो रहा है। देखिए,
1: बीच में
0: आपने
1: नहीं, बीच
0: एंग्लो
1: में नहीं,
0: इंडियन
1: मैं भी
0: सब,
1: दूसरी जगह
0: अरे मैं
1: हूं,
0: बस पूछ रहा हूं, बता दीजिए
1: आपने
0: है या
1: आपने कई
0: नहीं।
1: सारी बातें की है, तो सवाल ये है कि
0: एक जंगली इंडियन ने जंगल राज समझ करके यहां पर बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है उसको तोड़ना मरोड़ना चाहा है, और सारी जो हमारी संविधानिक प्रक्रिया है, जो हमारा निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया, उसको तहस नहस करने का प्रयास किया। एसआईआर जो है वो स्पेशल
1: ये
0: इंटेंसिव
1: इंडियंस को
0: रिविजन
1: जंगली कह
0: छोड़
1: रहे हैं।
0: करके स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग हो गया है, इलेक्शन कमीशन एलिमिनेशन कमीशन हो गया है, चुनाव आयोग जो है वो चूना लगा रहा है, 140 करोड़ जनता को सरेआम चूना लग रहा है, ये सारी जनता देख रही, इसीलिए सभी लोग सड़कों पर आए हैं। आपने उपद्रव जैसे शब्द की बात की, भाई पहले ये बताइए कि ये उपद्रव जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसका मेन कारण कौन है? इसका मेन कारण है ज्ञानेश कुमार, क्योंकि राजा की जान तोते में है। इसीलिए हम सवाल पूछते हैं निर्वाचन आयोग को, निर्वाचन आयुक्त को, तो जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी, इनके मंत्री, इनके संतरी, इनके मुख्यमंत्री सब आ जाते हैं जवाब देने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि आज की तारीख में ज्ञानेश कुमार जो है वो इनके गले की फांस बन चुका है, इसीलिए इधर उधर की बातें करते हैं। ये जो नेहा वोरा का भी इंस्टेंस बता रहे हैं, जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ये भी ध्यान भटकाने की बात है, क्योंकि इनको पता है कि पैरों तले जमीन खसक गई है, जो लाखों लोग राहुल गांधी जी के या इंडिया गठबंधन के इस मोर्चे में आए 12 तारीख को, या फिर 10 तारीख को जो हुआ है, इससे पूरी सरकार जो है वो कपकपा उठी है। और जिस तरह से पुलिस ने जो बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ बर्बरता की है, किस तरह से एनएसयूआई की बच्चियों को, या सीपीआई सीपीएम के, या आईसा के जो नौजवान है उनको किस तरह से घसीटा गया है, ये सारी दुनिया ने देखा है। आज जेंजी देख रही है कि ये जो मौजूदा शासन है ये हमारे खिलाफ का शासन है, इसीलिए तो निर्वाचन आयोग ने जो है वो जेंजी का न्यू एनरोलमेंट है वो भी 2024 से रोक करके रखा है। भाई हमारे सवालों का जवाब जो निर्वाचन आयोग ने देना चाहिए क्यों नहीं देते? हमने जितने सवाल पूछे, अच्छा हमने सवाल पूछे उसका जवाब नहीं देते आप, लेकिन आपके जो दो निर्वाचन आयुक्त आपके साथ बैठते हैं उन्होंने 10 महीने में 14 सवाल पूछे, एक मौजूदा जस्टिस ने सवाल पूछे हैं, एक पूर्व जस्टिस ने सवाल पूछे हैं, तीन पूर्व आयुक्तों ने सवाल पूछे हैं, किसी भी सवाल का उत्तर इनको नहीं देना है, बस इनको इस तरह की बातें करनी है, बांग्लादेश की बात करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, ध्यान भटकाने का काम करेंगे, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता जो है उसका ध्यान बिल्कुल केंद्रित है। उस जनता को पता चल रहा है कि किस तरह से बाबा साहब
1: तो
0: अंबेडकर के बनाए
1: बांग्लादेश,
0: हुए
1: बांग्लादेश के
0: संविधान
1: आंदोलन से
0: का
1: प्रेरणा मिला सापरा साहब
0: उल्लंघन हो रहा
1: जी,
0: है।
1: जी सापरा जी, सापरा जी, बांग्लादेश से
0: जी
1: प्रेरणा आया, ये बीजेपी का बयान है ये या नेहा बोरा का बयान है? किसका बयान है ये, बीजेपी का बयान है?
0: नेहा बोरा ने ये बयान क्यों दिया है ये नेहा बोरा ही बता सकती है, मैं कोई नेहा बोरा का या उसकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, ये तो मुद्दे ढूंढ रहे हैं रोज, कभी इस तरह का मुद्दा ढूंढेंगे, कभी और मुद्दा
1: ठीक
0: ढूंढेंगे, ताकि
1: ठीक
0: इनकी
1: है
0: जो जमीन
1: सत्य प्रकाश
0: जमीन
1: मिश्रा
0: जमीन
1: जी,
0: खसती
1: क्या
0: है उस
1: सिर्फ
0: जमीन पे
1: डिफ्लेक्शन
0: ध्यान
1: टैक्टिक्स
0: भटका
1: है?
0: के
1: ठीक
0: डिफ्लेक्शन
1: है
0: करके ये कब्जा कर
1: अंजना
0: सकता
1: जी,
0: है।
1: 10 सेकंड, अंजना जी 10 सेकंड, ठीक है अंजना जी 10 सेकंड, अच्छा ठीक है, 10 सेकंड, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, फिर मैं दस
0: मिश्रा जी
1: सेकेंड
0: के पास
1: अंजना
0: आऊंगी।
1: जी,
0: हाँ बोलिए।
1: मैं बस आपके दर्शकों को यह कहना चाहता हूं कि ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी एक ब्रिटिशर ने, एओ ह्यूम, और ये जो नकली घैंडी कांग्रेस है इसका अंत करेगा एक एंग्लो इंडियन, नाम है राहुल गांधी एंड कंपनी।
0: अब मैं इसका
1: आप ये
0: उत्तर
1: बताइए
0: दूंगा,
1: इनके टूलकिट कैसे एक्सपोज होते हैं, मैं एक दो लाइन में बस आपको बता देता हूं, एक दो लाइन
0: देखिए
1: में। ये सबसे पहले एलन मस्क को ट्वीट को रिट्वीट करते हैं, वेलकम टू इंडिया एलन, उसके बाद इनके चचा जी जो हैं सैम पिट्रोडा यूएस में बैठ के बयान देते हैं कि जॉर्ज सोरोस अगर 10 बिलियन डॉलर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या बात है, ये देखने का नजरिया है, कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। जॉर्ज सोरोस कौन है जिसने खुलेआम कहा था कि नरेंद्र मोदी को हटना चाहिए, राइट रेजिम इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे इंटरेस्ट को शोभा नहीं देता है। मतलब जॉर्ज सोरोस और एलन मस्क डिसाइड करेगा कि इंडिया में कौन रूल करेगा, यही तो हम कहते थे 70 साल तक इन गैंडी परिवारों ने हम पे विदेशियों का शासन रखा। पीपल नीड टू गो, गैंडी मस्ट लीव, ये जो गांधी कांग्रेस से खत्म होनी चाहिए।
2: ठीक है, हो गया। अब सापरा साहब विल रिस्पॉन्ड, क्योंकि सापरा साहब सुनिए सवाल तो सुनिए। एक सेकंड। अरे एलॉन मस्क के ट्वीट पर तो राहुल जी ने ही लिखा था ना, वेलकम टू इंडिया एलॉन। जानते हैं एलॉन मस्क ने, आप लोग ट्रम्प के खिलाफ इतना बोलते हैं, और सुनिए ना ट्रम्प के खिलाफ बोलते हैं आप लोग, उसी एलॉन मस्क ने अपने देश में जानते हैं कितना पैसा दिया एलॉन मस्क को, रिपब्लिकन्स को? $276 मिलियन अभी मिड टर्म के लिए दिया है। मिड टर्म के लिए इतनी बड़ी रकम दी है उन्होंने ट्रंप और उनकी पार्टी को, और उस एलॉन मस्क की बातों में आप लोग हां में हां मिला रहे थे। मतलब वो उद्योगपति कहता है कि भारत को उद्योगपति चला रहे हैं, और वो देखिए उद्योगपति होते हुए वहां $276 मिलियन तो सिर्फ ओपन में पैसा दे रहा है ट्रंप को।
0: देखिए उस देश में क्या हो रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र फिर से चलने वाला नहीं है। जॉर्ज सोरोस, एलॉन मस्क, विदेशी हथकंडा, विदेशी हाथ, ये सारी चीजें जनता समझ चुकी है।
1: बनाने
0: का प्रयास कर रहे हो, अब सुनिए मेरी बात। आपने और बातें की, अलग अलग नाम मैं आपके बीच में नहीं बोलता था ना बेटा। अरे बेटा सुन ना भाई, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोलता था, सुनो। देखिए ऐसा है कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर के ये बोल रहे हैं,
1: बेटा,
0: उस परिवार ने इस देश के लिए शहादत दी है, उस परिवार का योगदान आजादी की जंग में
1: आजादी के बाद भी था।
0: प्रधानमंत्रियों ने शहादत दी है,
1: कहीं आजादी की जंग में नहीं कटाई,
0: बिना उंगली कटाए, बीच बीच में बोल करके डिबेट का ध्यान भटकाना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं होगा। जनता जानती
2: है, मैं आज स्टूडियो में नहीं हूँ, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए प्लीज, बीच में नहीं। सापरा साहब कंप्लीट कीजिए,
0: किस तरह से बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा, ऐसी बदतमीजी नहीं करना मेरे साथ में, याद रखना, समझे? गांधी परिवार ने
2: मैंने रोक दिया उनको, बोलिए।
0: तुमने उंगली भी नहीं कटाई लेकिन शहीदों में नाम दर्ज कराना चाहते हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम्हारे किसी नेता ने कहां पर शहादत दी है बताइए, कितनी बार कौन जेल में गया बताओ, इतिहास जरा अगर याद है तो आपको।
2: ठीक है, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, ये नेहा बोरा ने बांग्लादेश पर क्या बोला, इसने ये बोला, उसने वो बोला, सोरोस ने ये बोला, राहुल गांधी ने ये बोला, क्या ये डिफ्लेक्शन टैक्टिक्स है? क्योंकि SIR के मुद्दे पर लगातार हो रहे विरोध आंदोलनों से सरकार घिर गई है।
3: ये महसूस हो रहा है कि सरकार घिर गई है, ये तमाशा है, ये आंदोलन नहीं है। झूठ के बादल पर उम्मीदों की बारिश का आंदोलन नहीं होता। राहुल गांधी ने कहा था कि इंडियन स्टेट से लड़ना है, ये लंबी साजिश का एक नतीजा है जो दिल्ली के सड़कों पर आपको दिखा है। आपको नेहा बोरा को समझना है ना, विनोद मिश्र होते थे महासचिव CPI ML के, 1998 में चले गए धरती छोड़कर, दीपांकर भट्टाचार्य पिछले 28 सालों से उसी महासचिव की कुर्सी पर बैठा है, पूछे नेहा बोरा जाकर कि तुम्हारे पिछले आईसा के जितने प्रेसिडेंट थे आज कहां हैं, JNU के जितने अध्यक्ष थे आईसा से चुने गए आज कहां हैं, 100 में नहीं हजारों में पार्टी छोड़कर गए हैं। और आखिरी आपको याद दिला दूं, कविता कृष्णन ने उस पार्टी को इसलिए छोड़ा और लिखा पूरे 5 पेज के इस्तीफे में कि एक पार्टी यौन हिंसा का केंद्र है, यौन उत्पीड़न का केंद्र है, और इस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, और इनको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। आज नेहा बोरा ने पहली बार बोला है कि हमें बांग्लादेश बनाना है, वही हिंसा फैलानी है जो बांग्लादेश में हुआ था। राहुल गांधी भी तो कह चुके स्टेट से लड़ना है, और राहुल गांधी कर क्या रहे हैं, गए थे ना JNU में जब नारा लगा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कौन पहुंचा था वहां उस टुकड़े को समर्थन देने के लिए? मिस्टर राहुल गांधी पहुंचे थे। कौन कौन लोग थे वहां? वो लोग थे जो कश्मीर की आजादी की बात करते हैं, नेहा बोरा की पार्टी जंतर मंतर कर कई बार कश्मीर की आजादी की आंदोलन के लिए बैठ चुकी है, गद्दारों की पार्टी है ये, इसको राहुल गांधी अपने बगल में लेकर घूमते हैं। इसका साफ मतलब है कि राहुल गांधी को अब इस देश की माटी से, इसके संविधान से, इसकी संवैधानिक शक्ति से कोई प्यार नहीं है। उनको प्यार सिर्फ एक चीज से है, कुर्सी से, चाहे वो हिंसा से आए, प्रदर्शन से आए। वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पूरी भीड़ लेकर पहुंच गया। इतनी अपराध सुप्रीम कोर्ट की, हमारा लाख राजनीतिक विरोध हुआ। जयप्रकाश नारायण से बड़ी क्रांति नहीं हुई इस देश में, चौहत्तर की, वो भी सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे थे। उन्होंने भी नहीं ऐसी कोई बात कही कि देश की संविधान की सब्जी उड़ जाए। ये व्यक्ति को संविधान लेकर हाथ पे घूमता जरूर है, लेकिन ये व्यक्ति भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा नौटंकी बात। बहुत अच्छा था सीपीआई के सांसद ने, हमें इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन हमें प्रेरणा देती है, और भारत के सत्याग्रह से तो प्रेरणा दक्षिण अफ्रीका लेता है। जब ओबामा आते हैं तो गांधी को नतमस्तक करते हैं, पूरी दुनिया गांधी को नतमस्तक करती है। भारत का सत्याग्रह दुनिया में एक ऐसा सत्याग्रह आंदोलन था आजादी का, जिसको दुनिया ने सीखा। हम बांग्लादेश की बात कर रही है नेहा वोरा, मेरा मानना है नेहा वोरा राहुल गांधी की एक शिकार मात्र है। ऐसी वोरा बहुत आएंगी, राहुल गांधी उनके कंधे पर हाथ रखकर घूमेंगे। आज कहां है कन्हैया कुमार, वो भी तो उछले थे जेएनयू किसी प्रोटेस्ट से, बताए। वो सरजील इमाम की वकालत करती है तो बताए ना राहुल गांधी, क्या देश के टुकड़े करने वालों की वकालत करेंगे? क्या आप ऐसी पंगत में बैठेंगे जहां देश की आजादी, उसकी अस्मिता, उसके संविधान और उसके पूरी की पूरी लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए? क्यों पेट में दर्द और गुब्बारे उठाए राहुल गांधी के? चलिए वो कहते हैं कि वोट चोरी हो गई।
2: संतोष जी, संतोष जी, आप चूंकि इस देश की संसद में बैठते हैं, आप एक सांसद हैं संतोष जी, मैं आपसे एक गंभीर सवाल करना चाहती हूं। इस सवाल को बहुत सीरियसली इसको सोचकर आप जवाब दीजिएगा। देखिए, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में, ये हम लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल नहीं है, आज तक कभी भी सड़क से सरकार तय नहीं हुई है, वोट के जरिए ही सरकार तय हुई है और चुनावों के जरिए ही तय। बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं और बड़े बड़े आंदोलन सामने आए हैं, लेकिन अन्ना का आंदोलन भी हमने देखा है, जो नई पीढ़ी नहीं समझ पा रही होगी। चलिए अन्ना का आंदोलन का हम बड़े बड़े जो आंदोलन हुए उसको छोड़ दीजिए, हाल के ही आप अन्ना आंदोलन को साल 2010-12 के आसपास जो हुआ था भाई, उसके बाद भी इलेक्शन से सरकार बदली ना। लेकिन क्या आप उस गुट का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं जिसमें नेहा बोरा जी कह रही हैं बांग्लादेश से प्रेरणा, और प्रशांत भूषण जी भी, उनका उनको मैं कोट कर रही हूं कि हां हम लोग रिजीम चेंज के लिए काम कर रहे हैं, और मैं ये खुलकर कह रहा हूं कि हम लोग रिजीम चेंज के लिए काम कर रहे हैं। क्या आप जब जिसको आप कह सकते हैं समाज से ऐसे लोगों को वहां पर ला रहे हैं, आप उनके बयान से सहमत हैं एक सांसद के तौर पर, क्योंकि आप भी देश की संसद में बैठते हैं?
4: सुनिए, 2025 से मतलब जुलाई से हम इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के लिए, और स्पष्ट अगर बोलेगा तो एसआईआर का विरोधी हमारा आंदोलन शुरू कर दिया 2025 से। दो साल मतलब कम से कम दो साल डेढ़ साल होने वाला है। बीच में क्या बताया था, इलेक्शन कमीशन को इमेज को टार्निश करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, ये देशद्रोही है, ये एंटी नेशनल से सब बताया। बीच में क्या हो गया, इंडियन एक्सप्रेस में कुछ एक आर्टिकल आया, इलेक्शन कमीशन का अंदर भी क्या हो रहा है उसके भी हमको जानकारी मिला, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऑब्जर्वेशन, ओरल ऑब्जर्वेशन कर दिया, मुंबई हाईकोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन कर दिया, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन का भी कुछ मतलब फैसला के बारे में हमको जानकारी मिला। बात यह है, ये जो आंदोलन देश विरोधी आंदोलन नहीं है, सरकार बदलेगा नहीं बदलेगा वो अलग बात है, चुनाव का टाइम है ना। हमने एक बहुत सीरियस मुद्दा लेके आप लोगों का सामने है, शहर में है। क्या मुद्दा है, देश में 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को वोटर्स लिस्ट के हटा के रखा, क्या कारण है? कुछ मर गया ठीक है, और बाकी उसमें आतंकवादी कितना है, उसमें बांग्लादेशी कितना है, उसमें पाकिस्तानी कितना है, अभी तक जानकारी नहीं है। शिफ्टिंग का नाम पर हो गया 6 करोड़ के ज्यादा लोग शिफ्टिंग है, तो भैया एक जगह से दूसरा जगह में उनका नाम होना चाहिए। इसलिए इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो एक्सपोज हो गया, ये है बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा। ये मुद्दा से डिफ्लेक्ट करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप नेहा बोरा का बात बोल रहे हैं, प्रशांत भूषण का बात बोल रहा है, बांग्लादेश को लाकर। बात क्या है, असल में बात यह है, देश के अंदर 51 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है, ये लोकसभा और राज्यसभा कुल मिला के, वो 51 पॉलिटिकल फॉर्मेशन बोल सकता शायद। इसमें सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी जस्टिफाई करता है इलेक्शन कमीशन को, क्यों? एक ही पॉलिटिकल पार्टी, बाकी चिराग पासवान का भी मत क्या है, बाकी लोगों का क्या मत क्या है, इसलिए क्या बात, क्यों इतना तेज से ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं? अब मान लो फिर कोर्ट का ऊपर विश्वास है, ठीक है, सभी को विश्वास होना चाहिए, फिर भैया आप लोग कोर्ट ऑर्डर आने के बाद जस्टिफाई करो 15 चीफ।
2: ठीक है संतोष जी, बोलिए संतोष जी, संतोष जी, आपने बताया कि आप देखिए, आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को आप लोग एक्सपोज कर रहे हैं, आप राज्यसभा सांसद हैं केरला से, ठीक है, केरल से आप सांसद हैं, और केरल में जो एसआईआर हुआ है उससे तो कांग्रेस पार्टी सहमत है, वहां पर तो वो कह रहे हैं कि एसआईआर बिल्कुल ठीक हुआ है, तो केरल में एसआईआर ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि वहां कांग्रेस जीती है?
4: सुनिए, ये सवाल बार बार पूछ रहे, इसका बात है जहां जहां बीजेपी को जीतना का चांस है, संभावना है, उन राज्यों में ये ज्यादा किया, उसका बहुत सारा उदाहरण है, अगर टाइम है तो मुझे भी एक्सप्लेन कर सकता। ये काम कीजिए, आपने चुनाव आयोग ने कमीशन ने स्पष्ट होना चाहिए, अगर केरल में गलत हो गया तो वो भी ठीक कीजिए, तमिलनाडु में गलत हो गया तो वो भी ठीक कीजिए, हमारा एक ही मांग है, एक ही डिमांड है, 13 करोड़ ज्यादा से लोगों को इसमें खड़ा के रखा, फॉर्म 6 में बिना अनुमति ये लोग ने उसका ऑल्टरेशन कर दिया, और फॉर्म 7 में 7 मिसयूज करके बहुत सारा लोगों का वोट खड़ा के रखा, और इसका सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया, और इसके ऊपर आप इसके बारे में उत्तर देना चाहिए। अब केरल में गलती हो गया तो ठीक कीजिए, तमिलनाडु में है तो ठीक कीजिए, लेकिन बिहार, बंगाल एवं अन्य राज्यों में क्या हो गया, यह है सबसे बड़ी मामला।
2: केरल में गलती हो तो ठीक कीजिए। एक ही बार जवाब दूंगी मैं आपसे अजय आलोक जी, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, एक छोटा सा कमेंट इस पर, सत्यप्रकाश जी, उसके बाद मैं सापरा साहब और अजय आलोक जी के पास जाऊंगी। सत्यप्रकाश मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि वही बॉल आप लोग फिक्स करते हैं जहां पर संभावना हो, सारे बॉल थोड़ी फिक्स करते हैं।
3: ये कोई भी हंसेगा इन तर्क पर कि सारे बॉल फिक्स नहीं करते, आप समझिए या देश भी जानता है कि एसआईआर कई बार इस देश में हुआ, जो पिछले 2002 में हुआ था उसका विरोध कोई पार्टियां खड़े होकर नहीं कर रही थी, और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन ये तमाम 10 पार्टियां गई पहली बार, एसआईआर का विरोध नहीं किया, उसके रोकने का अनुरोध नहीं किया, अभी क्यों कर रहे ये बात कहा। एसआईआर एक प्रक्रिया होता रहेगा, उसमें त्रुटियां होंगी, उसका सुधार इलेक्शन कमीशन करता रहेगा, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि वोट चोरी कर दिया, अरे बंगाल में तो राहुल जी कह रहे थे कि ममता जी बीजेपी को जिता रही है, और केरल पहुंचते पहुंचते जीत गए तो कहे कि नहीं एसआईआर बहुत अच्छा, कम्युनिस्ट लोगों ने फर्जी वोट बना के रखा था, और उसके पहले भी कपिल सिब्बल तो सदन में बोलते नजर आए, और ये तमाम केजरीवाल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 लाख फर्जी वोटर है, हटाएंगे अगर वोटर और नए जोड़ेंगे वो प्रक्रिया लोकतंत्र में होगा। आप कहते हैं राहुल जी को सीट नहीं मिला, एक बात समझिए अंजना जी, बिहार के विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में राहुल जी को कितनी सीटें राजद दी, 70, एक तिहाई भी नहीं है, मतलब राहुल जी का वोट बेस राजद भी जानता है नहीं है।
2: इसी के साथ इस बहस का अंत करते हैं हल्ला बोल में, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, खबरें जारी रहेंगी आज तक पर, समय इतने की इजाजत देता है, देखते रहिए आज तक।

0: what I can be.
1: Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
2: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
3: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं, पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे,
4: इट्स अ माय वे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: उधर गया। करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
7: मेरे पास एक आइडिया है।
6: क्या?
7: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
8: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
9: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
10: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
11: कौन सी बनानी है?

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: How's the hostel? Settled?
4: Yes, Ma'am. Really nice.
3: कोई आ रहा है क्या?
5: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभाली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
3: मयंक, फॉर रियल?
5: वन कैरेट फॉर माय वन ट्रू लव। नेचुरल डायमंड रियल लव सॉलिटेयर्स टू रीइग्नाइट योर न्यू सीजन ऑफ लव।
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
7: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
8: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
9: I love it. Absolutely amazing. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
10: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
9: क्या?
10: इनकी राय।
11: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
12: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।
13: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
14: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
13: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
15: हेलो जी, टाइम क्या हुआ है?
16: टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। डायमंड हर दिन और एश्योर्ड गिफ्ट्स विद फिलिप्स, सोने पे डबल स्वाद ऑफर।
17: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
18: ये है एक लेगेसी।
19: यू नो डिजाइंस कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डोर,
6: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
3: एक परिवार, अटूट भरोसा।
7: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
5: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद। लायन कश्मीर हनी,
7: असली शहद असली स्वाद।
1: Finding myself. That's my moment of Sarah.
10: In association with Canara Bank, together we can.
2: Anmol biscuits, swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds.
13: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
17: SIR तो 24 के बाद चालू हुआ। आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारे। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। आपकी वहां कोई रीच नहीं है। देश के कई सूबे ऐसे हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आपको कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है। आज भी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है वो उनको फायदा नहीं करेगी। उनको जनता को समझना चाहिए, जनता का संपर्क करना चाहिए।
16: भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आते आते, बहुमत लाते लाते 50-60 साल लग गए, फिर क्या कहें हम?
8: ये अजीब सी टिप्पणी है साहब कि कांग्रेस कई राज्यों में इतने सालों से, भाई आप तो देश में कितने सालों तक नहीं थे, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? फिर कहते हैं 29 भी हम जीतेंगे, क्यों इतना भरोसा है ज्ञानेश पर? और ज्ञानेश रहेगा 29 तक? ये चुनाव आयोग जिस तरह से चल रहा है, हम चलने देंगे 29 तक? कि इतना भरोसा, हमारी बात साबित करते हैं ये बात कहकर तो वो कि 29 में भी हम जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हो साहब? सड़क पे तो निकल कर देखो, गुस्सा तो देखो लोगों का, आकर हटाओ पुलिस और आकर देखो गुस्सा।
18: देखिए गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं, मैं उसको ज्यादा नहीं, लेकिन हम लोग जो आपने पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट कर दिया, चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक खिलौना बनकर रह गया, हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है और हम लोग लड़ेंगे और आखिर तक लड़ेंगे और ये काम नहीं होने देंगे। और ये बार बार घुसपैठियों का नाम लेकर के गुमराह करने की कोशिश ना करें। 13 करोड़ लोगों के वोट काटे तो 13 करोड़ घुसपैठिए नहीं हैं। घुसपैठियों को कितनों को आपने चिन्हित करा और कितनों को डिपोर्ट करा, उसकी सूची देश को उपलब्ध कराई है।
20: दिल्ली पुलिस तुम लट्ठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
21: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
22: डोंट ट्विस्ट।
20: क्या हुआ?
22: डोंट ट्विस्ट लप से।
20: हर आदमी में
22: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखिए।
21: कितना घटिया था यार, घटिया तरीके से पढ़ा।
22: लप लप लप।
23: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
24: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार तुम ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाती, पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
4: कौन सी बनानी है?
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
11: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
12: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
13: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
12: क्या?
13: इनकी राय।
14: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेट निर्माण का रियल हीरो।
15: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
16: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
15: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
17: हेलो जी, टाइम क्या हुआ है?
18: टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। डायमंड हर दिन और एश्योर्ड गिफ्ट विद फिलिप्स, सोने पे डबल स्वाद ऑफर।
19: आ गया सोमवार और आ गए
20: चकमक चाचा।
19: हाँ चाचा, अखबार भाँच रहे हैं। चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुँच गई है, चिचा कब जाएंगे?
21: अरे भैया, तुटा में हिस्सा हम ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा, हम अपना मुद्दा उठा चुके पुराने।
19: अच्छा, कब उठाए?
21: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठा है।
19: अच्छा
21: हाँ, तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग इधर आए, तुम लोग पुलिस आई, इधर भागने लगे, दन दन दन दन कर गया, ऐसा नहीं, ये सब नहीं था अपना मामला
19: जी,
21: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
19: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है आपका।
21: टूटा भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे कार्रवाई चलती थी दर्द बिता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर बोलता रखे थे हाँ, एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
19: अच्छा
21: और क्या
19: आपका मतलब, हम लोग डर जाते हैं?
21: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल, जहाँ पुलिस सिटी नहीं बची उसमें भागने लगता हूँ।
19: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही है।
21: किधर?
19: चाचा हम खेल गए अब की।
22: सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन 12 अक्टूबर को एसआईआर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका के बाद सैकड़ों समर्थकों के साथ वहां पहुंचे राहुल गांधी को अब अपने आचरण पर जवाब देना होगा। सीजेआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में फैली अव्यवस्था पर न सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि राहुल गांधी को स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस भी जारी किया। मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और महुआ मोइत्रा से भी जवाब मांगा गया। साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी सुप्रीम कोर्ट की फाइलिंग काउंटर पर हुए हंगामे की सफाई देनी होगी। एक ओर सबसे बड़ी अदालत का नोटिस आया है तो दूसरी ओर लेफ्ट की छात्र कार्यकर्ता नेहा बोरा का बयान भी राहुल गांधी पर हमले के लिए बीजेपी को मौका दे गया है। नेहा बोरा ने 2024 में बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार को गिराने के लिए हुए प्रदर्शनों को भारत के मौजूदा प्रदर्शनों की प्रेरणा कहा है।
23: We present you our red salute, and we know that the Gen Z movement that we are seeing everywhere in this country first started in Bangladesh. And congratulations to you for showing us the way, for showing us and extending solidarity to the young people of this country. We know that the movement that began in Bangladesh was for democratic and voter rights. Today, the movement that the young people are participating in and leading is also a movement for democratic and voting rights. We know that the fight that you fight against religious fundamentalism in your country is also a fight that the Gen Z and the young people of this country fight today.
22: 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक राहुल गांधी के मार्च में नेहा बोरा उनके साथ चलती नजर आई थी। 13 अक्टूबर को राहुल गांधी के घर हुई चाय पार्टी में भी नेहा बोरा मौजूद थी। नेहा बोरा का बयान इसीलिए भी लोगों की निगाहों में आ गया है क्योंकि 10 अक्टूबर को जब सीजेपी दिल्ली में अपना प्रदर्शन कर रहा था, उसी दिन बांग्लादेश के सोशलिस्ट स्टूडेंट्स फ्रंट यानी एसएसएफ ने ढाका में सॉलिडेरिटी मार्च निकाला था। 10 अक्टूबर को ढाका में हुए इस प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लगाए गए थे। बांग्लादेश का कट्टरपंथी छात्र नेता और वहां की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी का संयोजक नाहिद इस्लाम इस मार्च में शामिल था। आपके लिए सर ज्यादा बड़ा चैलेंज इस वक्त क्या है, 10 अक्टूबर को जो सीजेपी का विरोध प्रदर्शन हुआ या फिर जो ये विपक्ष एकजुट होकर, क्योंकि उस ट्रक पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी, मैं यूपी के चुनाव पर आपसे बात करूंगी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, तमाम लोग, नेहा बोरा जो लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अनेकों नेता और युवा मौजूद थे और एक बड़ा हुजूम आया था उस दिन राजधानी में। आपको लगता है कि ये बड़ा चैलेंज है आपके लिए दोनों सीजेपी?
0: देखिए, लोकतंत्र में कोई अपना विषय रखता है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई अपना रखो विषय। और इनके जो नेता हैं वो आज तो उनकी रील चल रही है कि वो बांग्लादेश को कह रहे हैं कि भाई हम बांग्लादेश को के लोगों को वो संबोधित कर रहे हैं कि हम तुम्हारी राह पे चल रहे हैं। तो ये तो एसआईआर में सबसे बड़ा झगड़ा ही है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम काटे गए।
22: ये किसकी बात कर रहे हैं सर आप?
0: ये तो आप सुनिए जिसकी बात कर रहे हैं, आप भी देखिए ना, आप सबको ज्यादा जानती
22: हैं। मैं तो सोच रही थी कि आप नाम बताएंगे, आप नाम नहीं लेना चाह रहे हैं।
0: नहीं, हम तो एक आपके एंग्री एज्ड मैन का ही नाम ले रहे हैं, उसी में सब समा रहे हैं।
22: नेहा बोरा ने ये बोला है जिसको लेकर आपकी पार्टी ने लपक लिया एकदम।
0: ये इनका असली दर्द है कि बांग्लादेश वालों के नाम अगर घुसपैठियों के थे तो क्यों कटे। वो कहते ना, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से। तो एक ना एक दिन तो सच इनका सामने आना था, अभी कुछ दिन और रुकिए, कुछ दिन बाद और चीजें सामने आ जाएंगी इनकी।
22: नेहा बोरा ही नहीं, राहुल गांधी की चाय पार्टी में शामिल हुए वकील प्रशांत भूषण का बयान भी सुर्खियों में है, जिसे लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। 6 अक्टूबर से शुरू हुए अपने प्रदर्शनों को राहुल गांधी भारत की आवाज कहते आए हैं, ऐसे में कांग्रेस नेहा बोरा के बयान को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती। नेहा बोरा के बयान पर बीजेपी के हमले के बीच इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का बयान भी तूल पकड़ सकता है। प्रदर्शनों में विदेशी दखल के आरोप बीजेपी को अपना पक्ष मजबूत करने का मौका देते हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती की अर्जियों पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को प्रदर्शन से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। इसी तरह सभी निजी पक्ष भी वीडियो सुरक्षित रख सकते हैं ताकि उन्हें अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। आज तक ब्यूरो

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। शाम के 7 बजने वाले हैं और अगले आधे घंटे में इस बुलेटिन में दिनभर की सभी बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सबसे बड़ी अदालत तक काफिले के साथ मार्च पर राहुल गांधी से सुप्रीम कोर्ट के सवाल पूछा, साफ करें अपनी मंशा। प्रदर्शनकारियों की याचिका पर निर्देश, दोनों पक्ष अपने अपने वीडियोज सुरक्षित रखें। सीजेपी के संस्थापक दीपके का सरकार पर फिर हमला, कहा एक देश एक पार्टी इनका उद्देश्य। साथ में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण बोले, सत्ता परिवर्तन के लिए हमारी लड़ाई। पंचायत आज तक राजस्थान में बोले कानून मंत्री मेघवाल, परिसीमन बिल पास कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, झूठ बोलकर अराजकता फैला रहे हैं राहुल। प्रयागराज में सीएम योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा माफिया के सामने घुटने टेक मौन रहती थी एसपी सरकार, अब माफिया मुक्त हो गया यूपी। और दिल्ली में एशियन गेम्स के पदक वीरों से मिले पीएम मोदी, बोले आपकी सफलता देश की सफलता, बेटियों ने बढ़ाया मान। हमारे देश में चुनाव आयोग के खिलाफ शुरू हुआ राजनीतिक आंदोलन अब अदालतों में भी चल रहा है। आज 3 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा। पहला नोटिस राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं के अलावा 3 और याचिकाओं पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी हुआ। राहुल गांधी ने आज फिर से टी पार्टी करके अपनी आगे की रणनीति बनाई।
1: तेरह अक्टूबर के बाद राहुल गांधी की आज फिर से टी पार्टी हुई, फिर से चुनाव आयोग के खिलाफ जुटान हुआ और फिर से आगे की रणनीति पर बात हुई। चुनाव आयोग के खिलाफ छिड़ी सियासी लड़ाई जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, तो वहां जंग के 4 तरह के मोर्चे नजर आए। पहला मामला चुनाव आयोग और SIR वाला था, दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक राहुल गांधी के मार्च का था, तीसरा मामला जंतर मंतर से प्रदर्शन स्थल हटाने का था, चौथा मामला महिला पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों से बदसलूकी का था, जिसमें से 3 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। पहला नोटिस राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं के अलावा 3 और अर्जियों पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग और दोनों चुनाव आयुक्तों को जारी हुआ और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि हम अगली सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं में से एक से उसके आचरण के बारे में पूछना चाहेंगे। नोटिस जारी करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी बात की निंदा कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं में से एक के संबंध में नोटिस को फिलहाल अस्थायी तौर पर स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते वो अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण दें। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन करने पहुंचे राहुल, खड़गे, अखिलेश, महुआ मोइत्रा समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं को नोटिस देकर जवाब मांगा है।
2: भारत की न्यायपालिका सबसे ज्यादा मजबूत, निष्पक्ष और जनता इस पे विश्वास करती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसको डराने का प्रयास, क्या हजारों समर्थकों की भीड़ लेकर सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में जाना, नारेबाजी करना, हुड़दंग करना, ये क्या था?
1: जंतर मंतर से प्रदर्शन स्थल हटाने के मामले में भी सरकार ने अदालत में बताया कि इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं। कमेटी ने पहले ही रिपोर्ट दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। आज तक ब्यूरो।
0: जंतर मंतर को लेकर रण जारी है। आज सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने लोगों से अपील की कि कल की तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में आप पहुंचिए। दूसरी ओर नेह बोरा के बयान पर हंगामा बरपा है।
3: विपक्ष के विरोध प्रदर्शन की पोस्टर गर्ल बन गई नेहा बोरा है। बारह अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के साथ आगे आगे दिख रही थी। 13 अक्टूबर को राहुल गांधी के यहाँ टी पार्टी में भी राहुल के साथ दिखी, लेकिन अब नेहा बोरा ने जो कहा है उसने सियासी तूफान ला दिया है।
4: वी प्रेजेंट यू आवर रेड सैल्यूट And we know that the Gen Z movement that we are seeing everywhere in this country first started in Bangladesh. And congratulations to you for showing us the way, for showing us and extending solidarity to the young people of this country. We know that the movement that began in Bangladesh was for democracy and voter rights. Today, the movement that the young people are participating in and leading is also a movement for democratic and voting rights. We know that the fight that you fight against religious fundamentalism in your country is also a fight that the Gen Z and the young people of this country fight today.
3: बोरा बता रही हैं कि 2024 में बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार गिराने के लिए हुए प्रदर्शनों से भारत के युवाओं को प्रेरणा मिली है और वो सरकार के खिलाफ तन कर खड़े हुए हैं। अब नेहा बोरा के बयान पर बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है।
5: बांग्लादेश में हुआ क्या था, एक ग्रुप ऑफ इस्लामिस्ट ने भीड़ के सहारे, अराजकता के सहारे पूरे के पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने का प्रयास किया। उनका मकसद रेजिम चेंज था। मतलब आज ये साबित हो चुका है कि राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम भारत में लोकतंत्र को तहस नहस करने की एक साजिश रच रहे हैं।
3: अकेले नेहा बोरा ही नहीं, राहुल गांधी के साथ प्रदर्शन में शामिल प्रशांत भूषण भी ऐसा बयान दे रहे हैं जो सियासी आप को और हवा दे रहा है। भूषण ने कहा कि ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन की है। इधर अभिजीत दीपके बार बार अपील कर रहे हैं कि कल शाम 5 बजे वो कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा रैली करेंगे, इसमें लोग शामिल हों।
6: जैसे कि आप लोगों को पता है, सौरभ और आशु को बस तिरंगा लहराने के लिए जेल में डाला गया है। तो मैं सभी देशभक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग तिरंगे से प्यार करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 16 अक्टूबर को शाम को 5 बजे आप सब सेंट्रल पार्क कैनॉट प्लेस में आइए तिरंगे के साथ। वहां पर हम अपना तिरंगा लहराएंगे और हम बता देंगे कि वेविंग अ तिरंगा इज नॉट अ क्राइम।
3: एनएसयूआई पहले ही आरोप लगा चुकी है कि प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें पीटा। अब दिल्ली पुलिस ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों पर हमला करने का केस दर्ज किया है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन एनएसयूआई बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार की जंग जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब खबर अंकिता भंडारी मर्डर केस की, जिसे लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के नेता दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाए जाने का अंकिता का परिवार, माता पिता विरोध कर रहे हैं, तो अब कांग्रेस भी सड़क पर उतर आई है।
3: इंडिया गेट देर रात एक बार फिर हंगामे का गवाह बना, जहां अंकिता भंडारी के माता पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अंकिता भंडारी का परिवार दुष्यंत कुमार का सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने के विरोध में इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने पहुंचा था। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत कांग्रेस के कई नेता माता पिता से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन देर रात इंडिया गेट पर प्रशासन परिवार को हटाने पहुंचा, जहां माता पिता के अलावा कई कांग्रेसी नेता हिरासत में लिए गए। प्रशासन के एक्शन पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, सुबह के 4 बजे जब दुनिया सो रही थी तब अंकिता भंडारी के माता पिता को हिरासत में ले लिया गया। जिस जांच का नतीजा आया नहीं, उसके पहले ही नियुक्ति की जल्दी और सवाल पूछने वाले माँ बाप को रात के अंधेरे में उठा लिया गया। इस सरकार की पहचान यही है, पीड़ितों की आवाज दबा दो, सवाल करने वालों को हटा दो। उधर अंकिता भंडारी को लेकर हंगामे की एक तस्वीर देहरादून में भी नजर आई।
7: कांग्रेस कार्यकर्ता अचानक राज्यपाल निवास पर पहुंच गए हैं। ये राज्यपाल आवास है, राजभवन है, जिसे लोक भवन भी कहा जाता है। और देखिए किस तरह से गेट को खोलने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता इस गेट को भेद कर राज्यपाल से मिलने जाना चाहते हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। हरक सिंह को देखिए, पुलिस डिटेन कर रही है यहाँ पर, और पुलिस डिटेन करने की कोशिश कर रही है। और गणेश गोदयाल यहाँ गिर गए हैं। देखा जा सकता है कि किस तरह से कांग्रेस पूरे आक्रामक तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की जारी है।
8: राज्यपाल को क्या बोलते निकला है कि दुष्यंत गौतम के इस्तीफे की मांग, अजय गोटानी की मांग को लेकर
9: हम ज्ञापन देने के लिए आए थे। चार दिन से राज्यपाल के उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के सम्मान का सवाल है, उत्तराखंड की बेटियों का सम्मान है।
3: बीजेपी कांग्रेस पर मामले में सियासत करने का आरोप लगा रही है।
10: जब पुलिस के किसी पेपर में कहीं नाम नहीं है, केवल ऑपोजिशन इस नाम को उठा रही है।
11: उनके पेरेंट्स ने कहा सीबीआई जांच कराओ, तो सीबीआई जांच हो गई। तो आखिरकार भाई वो जांच में, जांच को होने देना, जांच में क्या आया है उसको जाने बगैर सारी बातें कह देना, पूरी तरीके से जो है वो पॉलिटिकल खेल रहे हैं। और राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, किसी की छवि बेवजह जो है धूमिल की जा रही है।
3: अंकिता भंडारी की मौत में बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम के शामिल होने को लेकर विपक्ष और परिवार की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सीबीआई की जांच पूरी होने से पहले ही दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का गवर्नर बना दिया गया, जिसके विरोध में अंकिता का परिवार दिल्ली पहुंचा।
12: किस बेस पे उन्होंने उस आदमी को राज्यपाल बनाया?
13: जो आशाएं लगी थी वो कुछ नहीं हुई, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे।
12: मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक उनकी सीबीआई जांच नहीं हो जाती, उनको राज्यपाल घोषित न किया जाए।
3: उत्तराखंड में चुनाव से पहले दुष्यंत कुमार गौतम के राज्यपाल बनने के बाद एक बार फिर अंकिता भंडारी का मुद्दा अब बढ़ता नजर आ रहा है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अंकिता भंडारी के मामले में राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि मैं अपील करता हूं कि सरकार को इस नियुक्ति पर पुनर्विचार करने और जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को पदभार न देने की सलाह दें। अंकिता के माता पिता की न्याय की उम्मीद मत टूटने दीजिए। राष्ट्रपति को यह पत्र राहुल गांधी ने लिखा है और इस पत्र में उन्होंने दुष्यंत गौतम को उनकी नियुक्ति को रद्द करने के लिए सरकार को राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि माता पिता के न्याय की उम्मीद को राष्ट्रपति महोदया आप टूटने मत दीजिए। अगली खबर, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। योगी अतीक अहमद के गढ़ रहे कसारी मसारी इलाके में भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल हुए। ये भूमि पूजन अतीक के कब्जे वाली जमीन को लेकर था, जहां अब गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कसारी मसारी का नाम कृष्णपुरी करने का भी ऐलान किया, तो वहीं अखिलेश यादव और विपक्ष पर भी जमकर योगी ने कटाक्ष किया।
14: याद करिए, ये प्रयागराज हमारा पावन तीर्थ, कवि माफिया अतीक और माफिया अशरफ जिस जमीन पर पैर रखते थे वह उनकी होती थी, और प्रदेश सरकार उन माफिया के सामने घुटने टेक करके मौन बनी रहती थी। याद करो ना, जो बात अभी हमारे मंत्रीगण बोल रहे थे और यहां के लोकप्रिय विधायक बोल रहे थे, कैसे बेटी की सुरक्षा के ऊपर खतरा होता था और कैसे माफिया असला लहरा करके प्रयाग की धरा पर, प्रयाग की सड़कों पर, प्रयाग की गलियों में भय और बसत के पर्याय बने हुए थे।
0: शिवा शर्मा मामले में अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। इस मामले में खुलासा हुआ है कि आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे नेपाल भाग चुकी है, फरार हो चुकी है, और श्रद्धा के साथ उसकी बहन और अन्य आरोपी भी भाग गए। इन सभी के बीच श्रद्धा का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो अपने आप को बेगुनाह बता रही है।
15: वही तस्वीर है जो श्रद्धा दुबे के नेपाल भाग जाने का पुख्ता प्रमाण है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर नेपाल के माहिम नगर की है। श्रद्धा अपनी बहन रश्मि दुबे और दोस्त आदिल रोड क्रॉस कर बस स्टेशन के भीतर जाते दिखे हैं। पुलिस सूत्रों का मानना है कि श्रद्धा का नेटवर्क काफी मजबूत है और उसे पुलिस की हर मूवमेंट की इनसाइड जानकारी समय से पहले मिल रही है। पुलिस से भाग रही श्रद्धा दुबे अब कह रही है कि वो पुलिस की जांच में सहयोग करना चाह रही है।
16: मैं कहीं गायब नहीं हूँ, मैं पुलिस में आके बयान देना चाहती हूँ, मैं उन्हें सब कुछ सच सच, जो कुछ भी है मैं उन्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ।
15: एक तरफ श्रद्धा दुबे वीडियो जारी कर पुलिस के सामने आने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ उसकी एसयूवी मिलने की खबर ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा के पास पार्किंग में श्रद्धा की एसयूवी कार मिली है। जानकारी के मुताबिक यूपी 32 QQ0111 ये गाड़ी 10 अक्टूबर से पार्किंग में खड़ी थी। श्रद्धा गाड़ी पार्क करने के बाद नेपाल जाने की बात कहकर वहां से निकली थी और अब नेपाल से आई ये तस्वीर काफी कुछ बयान कर रही है। कारोबारी शिवा शर्मा की मौत से उठे सवालों को लेकर पहली बार मॉडल श्रद्धा दुबे का वीडियो सामने आया है। शिवा शर्मा की मौत के बाद उठे सवालों पर सुनिए श्रद्धा दुबे का ये बयान।
16: वो हत्या नहीं थी, वो एक सुसाइड था, ठीक है। मैंने अपनी आंखों से देखा उसको कूदते हुए, ठीक। अगर वहाँ के CCTV कैमरेज निकलेंगे, सब कुछ निकलेगा, तो उसमें दिखेगा कि वो किस तरह से कूद रहा है।
15: शिवा की मां ने जो FIR दर्ज कराई है उसमें मुख्य आरोपी श्रद्धा है, साथ में श्रद्धा की बहन रश्मि दुबे भी आरोपी बनाई गई है। नेपाल से आई तस्वीर में रश्मि भी साथ दिखी है। शिवा की मां ने आरोप लगाए हैं कि श्रद्धा उनके बेटे को लगातार धमकाती थी और टॉर्चर करती थी,
17: डेली बांध के और थ्रेटन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करती थी, जिसके बाइट्स अक्सर उनके बॉडी पे होते थे। निशान पूछने पे वो ये कहते थे कि चोट लग गई है, गिर गया हूँ।
15: लखनऊ पुलिस ने मामले में जांच तेज कर दी है ताकि करोड़पति कारोबारी की मौत की असल वजह साफ हो सके। बहराइच से रामबरन चौधरी और लखनऊ से अंकित मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
0: बागेश्वर धाम से शुरू हुई पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा 5 जिलों से होकर वापस छतरपुर आ गई है। छतरपुर के रेलवे ग्राउंड में यात्रा का समापन हुआ। इस अवसर पर एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। करीब 20,000 लोग जुटे।

कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। आईटी, बैंकिंग, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में खरीदारी, रुपए में मजबूती, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से बाजार को सबूत मिला। इस दौरान सेंसेक्स 1533 अंक बढ़कर 74315 और निफ्टी 374 अंक चढ़कर 22997 पर बंद हुआ। सेंसेक्स करीब तीन सप्ताह के ऊंचे स्तर पर पहुंचा। HCL टेक के मजबूत रिजल्ट्स के बाद आईटी शेयरों में खरीदारी जारी रही। TCS, टेक महिंद्रा, ICICI बैंक्स के शेयरों में भी काफी तेजी रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO की कीमतों का दायरा तय करने के बाद करीब 4% चढ़ा। कच्चे तेल के दाम में नरमी और रुपए में मजबूती से भी बाजार का सेंटिमेंट बेहतर हुआ। शेयर बाजार में तेजी के बीच रुपए में भी मजबूती जारी रही और डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे मजबूत होकर 95.05 पर बंद हुआ। RBI के विदेशी मुद्रा बाजार से जुड़े कदमों, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, डॉलर में कमजोरी से रुपए को लगातार पांचवें व्यापारिक सत्र में सपोर्ट मिला। हालांकि विदेशी निवेशकों की बिकवाली और आयातकों की डॉलर मांग में आई रुपए की तेजी सीमित रह सकती है। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी में गिरावट जारी रही। सोना 500 रुपए और टूटा, गिरकर 1

0: 98 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। अमेरिका में महंगाई के अनुमान से अधिक रहने के बाद ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कमजोर हुई। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी और ब्याज दरें ऊंची रहने की आशंका से सोने चांदी पर दबाव बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियन गेम्स 2026 के मेडलिस्ट खिलाड़ियों से मिले और उन्हें बधाई दी।
1: आप सब युवा एथलीट इस बात के उदाहरण है कि जुनून जब जीत में बदलता है तो वो कैसे मेडल्स के साथ साथ चेहरे की चमक भी लेकर आता है। और देश तो चमकता ही है।
0: इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
5: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
6: इट्स अ माय वे।
7: शादी है
8: तो क्या बनवाना पसंद करेंगे आप?
7: बंद गला।
8: क्यों, उसे पसंद है?
9: सारा खेल फिटिंग का है। डियर विंस्टो,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यार लोन भूल गया मैरी।
1: जस्ट अ गुड बैंक ना
3: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
2: स्मॉल फाइनेंस बैंक
3: स्मॉल working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
4: There's nothing small about
5: it. Ujjivan, nothing small about us.
6: Tera pyar pyar pyar unka baar sir ek baar dhoti thumka lagane bas.
7: Mere paas ek idea.
6: Kya?
7: Ek don ke ghar ko 12 mulkon ki police ne charon taraf se gher liya hai lekin wo ghar ko tod nahi paaye. Rungta TMT bar se jo bana hai.
8: Ek rockstar hota hai. अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
9: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है।
10: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
8: कौन सी बनानी है

0: What I can do.
1: Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
2: आगे आगे
3: अरे उधर
2: उधर किधर
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
6: SBI Celebrations Unlimited. इस festive season को बनाएं special car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ।

0: टैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
1: हेलो जी, टाइम क्या हुआ है?
2: टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। डायमंड हर दिन और एश्योर्ड गिफ्ट विद फिलिप्स, सोने पे डबल स्वाद ऑफर।
3: हाउस द हॉस्टल सेटल्ड?
4: यस स्मार्ट, रियली
3: नाइस। कोई आ रहा है क्या?
5: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभा ली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
3: मयंक, फॉर रियल?
5: वन कैरेट फॉर माय वन ट्रू लव, नेचुरल डायमंड रियल लव सॉलिटेयर टू रीइग्नाइट योर न्यू सीजन ऑफ लव।
6: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
7: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
6: असली शहद, असली स्वाद।
8: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगे, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनो।
9: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
10: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
11: सोच बदलो और बैंक भी।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
14: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में उत्तर प्रदेश चुनाव पर मुद्दों की क्या होगी राजनीति विशेष, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से पर, इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
15: शादी है
16: तो क्या बनवाना पसंद करेंगे आप?
15: बंद गला।
16: क्यों, उसे पसंद है?
17: सारा खेल फिटिंग का है। डियर विंस्टो,

0: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
1: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
2: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
3: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
2: क्या?
3: इनकी राय।
4: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यार लोन भूल गया मैरी।
3: इट्स
2: जस्ट अ गुड बैंक ना।
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
2: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
4: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
2: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
5: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार रोटी थमका लगाने पर
1: मेरे पास एक आइडिया।
5: क्या?
1: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
6: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
7: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
8: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: कौन सी बनानी है?
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
1: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
2: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
3: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
2: क्या?
3: इनकी राय।
4: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
5: हेलो जी, टाइम क्या हुआ है?
6: टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। डायमंड हर दिन और एश्योर्ड गिफ्ट विद फिलिप्स, सोने पे डबल स्वाद ऑफर।
7: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनो।
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।

0: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ कपीवा डायबिटीज जूस।
2: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
3: Santa! Echo! Vishnu!

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: In association with Hint, ek hint to dete.
2: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
1: विमल बोलो जुबा केसरी,
3: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: बीजेपी और विपक्ष में जारी राजनीतिक युद्ध, ज्ञानेश के खिलाफ राहुल की मोर्चाबंदी जारी, पार्टी नेताओं के साथ इंदिरा भवन में बैठक, बीजेपी का आरोप विदेशी हाथों में खेल रहे हैं राहुल। अंकिता भंडारी के परिजनों से कल रात मुलाकात के बाद आज राहुल ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, दुष्यंत गौतम की नियुक्ति पर उठाए सवाल, कहा सरकार के इस निर्णय से स्तब्ध हूं। दिल्ली में कल प्रदर्शन के पहले आज दीपके का केंद्र पर हमला, बोले एक देश एक पार्टी इनका उद्देश्य, प्रशांत भूषण बोले सत्ता परिवर्तन के लिए हमारी लड़ाई। पंचायत आज तक राजस्थान में, बोले कानून मंत्री मेघवाल परिसीमन बिल पास कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध, आज तक पंचायत में थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्रयागराज में सीएम योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा माफिया के सामने घुटने टेक मौन रहती है एसपी, थी सरकार अब माफिया मुक्त हो गया है यूपी।

0: खबर उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम की, जहां अखिलेश यादव को लग रहा है कि अब SIR और चुनाव आयोग का मुद्दा बदलाव ला सकता है और योगी आदित्यनाथ अपने मुद्दों पर डटे हैं, जिसमें कानून व्यवस्था और माफिया राज का खात्मा सबसे ऊपर है। योगी ने गुरुवार को अतीक अहमद से छुड़वाई गई एक जमीन पर भूमि पूजन किया, जिस पर अब गरीबों के लिए घर बनेंगे।
1: हमारा पावन तीर कवि माफिया अतीक और माफिया अशरफ जिस जमीन पर पैर रखते थे वह उनकी होती थी।
2: योगी जी के लिए
1: प्रयागराज में कोई माफियागिरी करने का दुस्साहस नहीं करेगा, और अगर कराएगा या कोई करेगा तो फिर मिट्टी में मिलने की तैयारी भी कर लेगा।
3: भगवान शुक्ला जी और भाजपा ही हारेंगे भी और भागेंगे भी इस बार, केवल हारेंगे नहीं भागेंगे भी भाजपा।
1: कसारी मसारी अब नहीं होगा, अब ये कृष्णपुरी के रूप में हम इस पूरे क्षेत्र का विकसित करेंगे।
4: यूपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, योगी और अखिलेश के नैरेटिव सेट होते जा रहे हैं। 27 के लिए योगी का नैरेटिव सेट है उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था, माफिया राज का खात्मा, हिंदुत्व का मुद्दा। लेकिन ऐसा लगता है कि अखिलेश के PDA वाले नैरेटिव में अब चुनाव आयोग पर उठते सवालों को भी जोड़ा गया है। अखिलेश ने अपना ट्रैक थोड़ा सा बदला है।
3: इधर देखने को मिल रहा है कि जब जनता में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, भारतीय जनता पार्टी जब जनता के बीच में कमजोर होती दिख रही है, उस समय वो इलेक्शन कमीशन के पीछे छिप जा रही है।
4: अखिलेश ने कैसे SIR और चुनाव आयोग की कथित धांधली को अपने चुनावी मुद्दों में शामिल किया, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने इन तस्वीरों से पूरे उत्तर प्रदेश को एक बड़ा मैसेज दिया है। ये कोई साधारण भूमि पूजन नहीं है। योगी आदित्यनाथ माफिया अतीक अहमद के कब्जे से छुड़वाई गई जमीन पर भूमि पूजन कर रहे हैं। प्रयागराज में अतीक अहमद की कसारी मसारी की जमीन पर लोगों के लिए फ्लैट बनेंगे। आज योगी आदित्यनाथ ने इस जमीन पर भूमि पूजन किया। 9,811 वर्ग मीटर की इस आवासीय परियोजना में 14 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएगी। इसमें कुल 602 फ्लैट होंगे। हर फ्लैट में 2 बेडरूम, हॉल और किचन होगा। कसारी मसारी प्रयागराज के पुराने मोहल्लों में से एक है। माफिया अतीक अहमद का ये गढ़ था, पहले उसका घर भी इसी मोहल्ले में था। कसारी मसारी के कब्रिस्तान में ही अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को दफनाया गया था। 2023 में अतीक अहमद की हत्या के बाद पूरे यूपी से उसके कब्जे वाली जमीनों को छुड़वाया गया और ऐसी ही एक जमीन पर अब लोगों के लिए फ्लैट बन रहे हैं।
1: ये जो 2.5 हेक्टेयर की लैंड है, 2.5 हेक्टेयर का मतलब 15 बीघा की जो ये लैंड है, ये 15 बीघा की लैंड पर माफिया अतीक अहमद और उसके गुंडों ने कब्जा करके अपना अस्तबल बनाया हुआ था, अपनी अय्याशी का केंद्र बनाया हुआ था, उसको ध्वस्त करते हुए, उसके नाजायज साम्राज्य को ध्वस्त करते हुए इस लैंड को वापस लिया गया। अब इसमें गरीबों का आवास बनेगा। आवास के लिए इसकी शुरुआत करने के लिए आज मैं स्वयं भी आपके बीच आया हूं। यही अंतर है, सपा आती है माफिया और बदमाश लेकर के आती है, और भाजपा आती है विकास और बदलाव लेकर के आती है। यही विकास है और यही बदलाव भी है।
4: योगी ने कसारी मसारी की इस जमीन पर लोगों के लिए घर बनाने वाली योजना का भूमि पूजन ही नहीं किया, बल्कि कसारी मसारी का नाम बदलकर कृष्णपुरी भी कर दिया।
1: बहन और भाइयों, कसारी मसारी अब नहीं होगा, अब ये कृष्णपुरी के रूप में हम इस पूरे क्षेत्र का विकसित करेंगे। श्री कृष्णपुरी के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। ये विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर यहां पे विकास की जो योजना आगे बढ़ेगी, जो आवास बनेंगे, जिन गरीबों को ये सुविधा मिलेगी और वहां पे जो टाउनशिप विकसित होगी, वे भी सब इसी कृष्णपुरी का हिस्सा होगा और पूरा क्षेत्र एक नई आभा के साथ आगे बढ़ेगा। और उसी आगे बढ़ाने के क्रम में आज आपको आश्वस्त करने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं।
4: फरवरी 2023 में प्रयागराज में खुलेआम उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। आरोप अतीक अहमद पर लगा। कहा गया कि अतीक ने जेल में रहते हुए यह साजिश रची थी। हत्या के अगले ही दिन यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने यह फेमस भाषण दिया था।
5: और फिर मैं कहना चाहती है, इसे हम आज कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? तकलीफ में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे।
4: इसके बाद अतीक अहमद पुलिस की कस्टडी में मारा गया और जब गुरुवार को योगी आदित्यनाथ अतीक से छुड़ाई गई जमीन का भूमि पूजन करने पहुंचे तो उन्होंने माफिया को मिट्टी में मिलाने की फिर से याद दिलाई।
1: प्रयागराज में अब कोई माफियागिरी करने का दुस्साहस नहीं करेगा और अगर कराएगा या कोई करेगा तो फिर मिट्टी में मिलने की तैयारी भी कर लेगा।
4: 2027 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के इन कदमों का भी लिटमस टेस्ट है। योगी दावा करते हैं कि उनकी सरकार ने प्रदेश के बड़े माफियाओं का सफाया किया, प्रदेश को इस माफिया राज से मुक्ति दिलाई। 2027 में तय होगा कि ये मुद्दा जनता के बीच कितना काम करेगा और कितना वोट दिलाएगा।
1: याद करिए, ये प्रयागराज हमारा पावन तीर्थ, कवि माफिया अतीक और माफिया अशरफ जिस जमीन पर पैर रखते थे वह उनकी होती थी और प्रदेश सरकार उन माफिया के सामने घुटने टेक करके मौन बनी रहती थी। याद करो ना, जो बात अभी हमारे मंत्रीगण बोल रहे थे और यहां के लोकप्रिय विधायक बोल रहे थे, कैसे बेटी की सुरक्षा के ऊपर खतरा होता था और कैसे माफिया असला लहरा करके प्रयाग की धरा पर, प्रयाग की सड़कों पर, प्रयाग की गलियों में भय और दहशत के पर्याय बने हुए थे।
4: आज तक ब्यूरो।
0: लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यूपी में एसआईआर और चुनाव आयोग की कथित धांधली का मुद्दा समाजवादी के लिए वोट बटोरने का काम करेगा या कहीं अखिलेश दिल्ली की भीड़ को देखकर अति उत्साहित तो नहीं हो गए?
4: योगी की दिशा तय है, हिंदू हिंदुत्व और कानून व्यवस्था। अखिलेश की भी दिशा तय है, पीडी।
3: मुझे खुशी इस बात की कि आज समाजवादी परिवार, पीडीए परिवार लगातार बढ़ता चला जा रहा है।
4: लेकिन लगता है कि अखिलेश के पीडीए परिवार में अब चुनाव आयोग की भी एंट्री हो गई। अखिलेश यादव को लग रहा है कि चुनाव आयोग की कथित धांधली का यह मुद्दा देशव्यापी हो गया है और इसका उत्तर प्रदेश में भी असर होगा, इसीलिए वो भी एसआईआर की धांधलियों को उजागर कर रहे हैं।
3: डेटा भी ठीक है कि 87 लाख फॉर्म 6 भरे गए थे, 87 लाख फॉर्म भरे गए थे, इनमें से 84,30,000 नए वोटरों के नाम फाइनल वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए, लेकिन चुनाव आयोग ने केवल 87,56,000 आवेदनों में सिर्फ 71,38,000 फॉर्म 6 आवेदनों की जानकारी सार्वजनिक की थी, बाकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की इलेक्शन कमीशन ने। बाकी 16,18,000 फॉर्म 6 के नए वोटरों की जानकारी चुनाव आयोग ने सार्वजनिक नहीं की। नेक्स्ट ग्राफ देख लीजिए आप, जो रेड कलर से वो दिख रहा है कि 16 लाख लोगों के इन्होंने नहीं किया। ये 16 लाख लोग कौन हैं? ये वो वोटर हैं जिनके नाम, उम्र और नातेदार का नाम एक ही है। ये बात भी ठीक है। हाँ, हमारे पीड़े प्रहरी हर जिले और हर विधानसभा में इन फर्जी वोटरों की जांच कर रहे हैं और अब तक 16,28,000 के अलावा 3 लाख और फर्जी वोटरों को पकड़ा है।
4: अखिलेश के आरोपों की जांच होनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि क्या ये मुद्दा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में मायने रखेगा? क्या एसआईआर के मुद्दे पर यूपी की जनता वोट करेगी? क्या विपक्ष यूपी की जनता के मन में चुनाव आयोग और एसआईआर की प्रक्रिया के प्रति अविश्वास पैदा कर पाएगा? क्योंकि पूरी कोशिश तो यही है।
3: इधर देखने को मिल रहा है कि जब जनता में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, भारतीय जनता पार्टी जब जनता के बीच में कमजोर होती दिख रही है, उस समय वो इलेक्शन कमीशन के पीछे छिप जा रही है। और इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के इस भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को और भारत के नागरिकों को धोखा दे रहे हैं।
0: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: शादी है।
1: तो क्या बनवाना पसंद करेंगे आप?
0: बंद गला।
1: क्यों, उसे पसंद है?
2: सारा खेल फिटिंग का है। डियर विंस्टो,
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक दो तीन ठुमका लगाने बस।
4: मेरे पास एक आइडिया है।
3: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
5: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
6: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
7: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
5: कौन सी बनानी है?
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
10: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
11: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
12: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
11: क्या?
12: इनकी राय।
13: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
14: हेलो जी, टाइम क्या हुआ है?
15: टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। डायमंड हर दिन और एश्योर्ड गिफ्ट विद फिलिप्स, सोने पे डबल स्वाद ऑफर।
16: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनो।
17: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
18: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
19: सोच बदलो और बैंक भी।
1: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
5: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपिवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
1: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। कपिवा डायबिटीज जूस।
7: एक दो, एक श्राम।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ
1: एक हिंट तो देते।
2: Finding myself. That's my moment of Sarah.

0: कोई 10वीं पास है तो कोई 12वीं पास, कोई 33 साल से क्लिनिक चला रहा तो कोई 10 साल से। तस्वीरों में दिख रहे ये सभी लोग आपको डॉक्टर नजर आ रहे होंगे, क्योंकि सबने अपने गले में स्टेथोस्कोप लटका रखे हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई हैरान करने वाली है। दरअसल ये कोई असली डॉक्टर नहीं, ये फर्जी डिग्री वाले मुन्ना भाई है जो कई सालों से इलाज के नाम पर मरीजों से धोखा कर रहे थे। सूरत के पांडेसरा इलाके में पुलिस की टीम ने इन 16 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है जो यहाँ रहने वाले गरीब लोगों को अपना निशाना बनाते थे। पुलिस के मुताबिक कुछ आरोपी पहले दूसरे राज्यों में डॉक्टरों के सहायक या कंपाउंडर के रूप में काम कर चुके थे, इसके बाद सूरत आकर खुद ही मरीजों का इलाज करने लगे। छापेमारी के दौरान दवाइयां, इंजेक्शन, कफ सिरप के साथ साथ कुल 182,444 रुपए का सामान जब्त हुए हैं। पकड़े गए 16 आरोपियों में से 3 के पहले भी पुलिस कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। एक तरफ बिना जरूरी मेडिकल योग्यता के इलाज करने का आरोप, तो दूसरी तरफ दवा के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला भी सामने आया। सूरत में ही 8वां इलाके में SOG और फूड एंड ड्रग्स विभाग की टीम ने छापेमारी कर कई नकली दवाइयां बरामद की। आरोप है कि यहां पशुओं के लिए तैयार किए गए लिक्विड सप्लीमेंट को छोटी बोतलों में भरकर बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा के तौर पर बेचा जा रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने सप्लीमेंट की कैन, छोटी और खाली बोतलें, ढक्कन, नकली स्टिकर और मोबाइल फोन बरामद किया। लोगों की सेहत से जुड़े सूरत के ये दोनों मामले स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ 16 क्लिनिकों में कथित तौर पर बिना जरूरी मेडिकल योग्यता के इलाज किए जाने का आरोप है, तो दूसरी तरफ पशुओं के लिए बने सप्लीमेंट को बच्चों की दवा बताकर बेचने का मामला है। अब जरूरत है सख्त एक्शन की, ताकि सस्ते इलाज की तलाश में कोई अपनी सेहत जोखिम में न डाले।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: हुई है भजन लाल शर्मा जी की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और आपकी सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो हमने सोचा, जनता कहती है कि भाई 5 साल वो आते हैं वोट मांगने के बाद, 5 साल कोई पूछता नहीं है उनसे, तो हमने सोचा कि मुख्यमंत्री जी से एक चर्चा के जरिए समझा जाए कि 3 साल में क्या किया और 2 साल में क्या करने वाले। में पहला प्रश्न, गृह मंत्री अमित शाह जी ने पंचायत चुनाव के राजस्थान में जो जीत मिली उसकी अलग से चर्चा की, और विरोध प्रदर्शनों के बीच ये हुंकार निकाय चुनाव की चर्चा की, और उन्होंने कहा कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये अपनी जगह पर है लेकिन जनता हमारे साथ है, तो देखिए हमको समर्थन मिल रहा है। आप प्रधानमंत्री से भी मिले हैं तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। क्या बीजेपी अब ये संकेत दे रही है कि विरोध प्रदर्शन सड़क पर हो रहा है लेकिन चुनावी जीत हमारी स्ट्रैटेजी है, हम चुनावी जीत के जरिए उसका जवाब देंगे, और क्या सिर्फ इलेक्शंस पर ही आप लोगों का फोकस रहेगा, और ये विरोध प्रदर्शन आपको कितने परेशान करते हैं? माइक उठा लीजिए सर।
4: पहले तो सभी को नमस्कार। अंजना जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के बारे में विषय रखा है, मैं आपको थोड़ा पृष्ठभूमि से ही बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो गांव से जुड़कर के, जमीन से जुड़कर के, जनता से जुड़कर के 24 घंटे दिन के, महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन जनता के बीच में रह करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। इसलिए हमें उन कार्यकर्ताओं पर भरोसा है और जनता पर भी भरोसा है, क्योंकि जनता को हम एक गणेश मान करके हम पूजा करते हैं, और हमारा हर कार्यकर्ता जनता के हर दुख में सुख में पूरी तरह से अपनी सहभागिता निभाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश के अंदर चाहे किसी प्रदेश के अंदर जिनमें हमारा राज्य है, उनमें भारतीय जनता पार्टी अपने काम कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास के कारण ये सारी बातें करती है।
5: भजनलाल जी, प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं, और साथ ही आपने कुछ समय पहले ही कहा कि 2.5 साल में ही हमने 78% वादे अपने पूरे कर दिए हैं घोषणा पत्र में, जो कैसे कैलकुलेट किया है आप लोगों ने?
4: देखिए, आज मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज मुलाकात हुई और मैंने राजस्थान के अंदर जो 2.5 साल के अंदर जो विकास हुआ है उनके नेतृत्व में, अगर मैं पूरी तरह से बताऊं तो मेरे को बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, लेकिन राजस्थान की जो आवश्यकता थी, क्योंकि जब हम 2.5 साल पहले जब हम सरकार में आए थे तो हमने एक रोड मैप बनाया था, क्योंकि राजस्थान जब हमें एक खंडर मकान की तरह मिला था कि इसको आगे स्टार्ट कहां से किया जाए बनाने का, कहां से हम शुरुआत करें, किसानों के साथ कुठाराघात होता था, युवाओं के सपने टूट रहे थे, भ्रष्टाचार का आलम था, तुष्टीकरण के आधार पर चल रहे थे, कांग्रेस के लोग होटलों में बंद थे, उन्होंने राजस्थान की जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने एक रोड मैप बनाया और वो रोड मैप बनाया राजस्थान की जनता को विश्वास में लेते हुए कि पहले काम की क्या आवश्यकता है, और हमने उसी आधार पर, रोड मैप के आधार पर हमने काम किया। और आज मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने रोड मैप बनाया था उस रोड मैप पर लगातार हम काम कर रहे हैं। आपने देखा राजस्थान में, आपको इतनी जानकारी तो होगी कि सबसे ज्यादा आवश्यकता किस बात की थी। राजस्थान में सबसे ज्यादा आवश्यकता थी पानी की, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि देश के अंदर 10 अंतर्राज्यीय समझौते हुए हैं, जो दशकों से अटके हुए थे उसमें 4 राजस्थान के हैं। आज राजस्थान की कोई भी परियोजना हो उस पर काम चल रहा है, और आज भी 2,00,000 करोड़ के लगभग राजस्थान की विभिन्न परियोजनाओं पर काम चल रहा है या स्टार्ट होने वाला है।
3: प्रधानमंत्री का संदेश लेकिन आपने नहीं बताया, उसके शरद सवाल पूछेंगे। उन्होंने क्या कहा, विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो होने दो, चुनाव जीतो, क्या कहा पीएम?
4: देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने भी देखा है कि ये लोग कौन है, ये लोग कौन है, ये लोग वो हैं जिन्होंने जनता को नकार दिया। हम जीते तो ईवीएम ठीक है, हमारे तो खराब है, कब तक चलेगा ये? सबसे ज्यादा आजादी के बाद सबसे ज्यादा शासन किसका रहा, जब क्या होता था? ऐसे नहीं चलेगा। और मैंने जैसा आपसे कहा कि हमारा कार्यकर्ता दिन रात जनता के बीच में रहता है, जनता का हमें समर्थन है, जनता हमें चाहती है, और जनता चाहती है तो हम जनता का काम कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद हमें मिला हुआ है।
6: देखिए, निकाय चुनाव में बड़ा जोखिम था कि मुख्यमंत्री शहर शहर रोड शो करे, विपक्ष मजाक भी उड़ाता था, ये जोखिम था। अगर सफलता नहीं मिलती तो लोग सीधे आपको दोष देते। ये पहली बार देखा गया कि मुख्यमंत्री जगह जगह जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, और इस सफलता के बाद विपक्ष कहने लगा कि हम तो भला आदमी समझते थे यार, पता नहीं क्या निकले।
4: देखिए, विपक्ष क्या कहता है ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता के बीच में जाकर के जो हमने 2.5-3 साल में जो काम किया है वो जनता के पूरी तरह से जानकारी में है। हाँ, हमने किया, हमने जो जनता से वायदे किए थे हमने उनका हर साल हिसाब दिया। एक साल होने पर हमने जनता के बीच में गए और हमने जो काम किया वो हमने जनता में जाकर के बताए। दूसरी साल के हमने काम जनता में गए वो भी हमने बताए। और यही नहीं, जनता के अंदर आपको पता है शरद जी, जब विधानसभा थी तो 2 साल बनाम 5 साल हम प्रतिवेदन लेकर के आए थे और हमने पटल पर रखा था कि कांग्रेस ने कितना काम किया है 5 साल के अंदर और 2 साल में हमने कितना काम किया है, उसमें 3 गुना से लेकर के 28 गुना तक के ऐसे काम थे जिसकी लिस्ट हमने दी, जिसका विपक्ष ने आज तक जवाब नहीं दिया।
5: पर भजन लाल जी, वो तो कह रहे हैं कि परिसीमन ऐसा कर दिया कि सीटों पे जो वोटों का कॉन्सेंट्रेशन जहां कांग्रेस का था उसमें आप लोगों ने उनके लिए दिक्कत खड़ी की। वो कह रहे हैं उसके बावजूद 0.9% वोट केवल अतिरिक्त, और बाद में आगे क्या हुआ, कहां तक कर्नाटक तक सब लेकर गए अपने पार्षदों को और आप लोगों ने देखिए वापस आए और क्रॉस वोटिंग हो गई उधर।
4: देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो परसेंटेज की बात करते हैं लेकिन आप उसकी संख्या की बात करिए, मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं। परसीमन, आज भी मैंने उनसे कहा कि आप अपना परसीमन जब आपने किया वो उठा लीजिए, आपने कोई नियम बनाया किस आधार पर आपने किया? हमने जो परसीमन किया वो नियमों के अनुसार किया, हमने जो परसीमन किया वो जनसंख्या के आधार पूरा आंकड़ा रख के किया। इन्होंने जो परसीमन किया, हमारी 3 नगर परिषद जिनको 6 बना दिया।
3: मुख्यमंत्री
4: आप तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं?
3: मुख्यमंत्री जी, गहलोत जी की शिकायत है, वो कह रहे हैं कि आपने फाउल खेला है। वो कह रहे हैं कि सरदारपुरा जो उनका इलाका कंस्टिट्यूएंसी है वहां पर, वो कह रहे हैं कि जितनी ये कंस्टिट्यूएंसी थी जहां पर जो ये वार्ड्स थे, वार्ड्स के डिलिमिटेशन में आपने उनका तो सब कर दिया छोटा, और जहां जहां पर बीजेपी का समर्थन का था उसको ज्यादा बना दिया। इसी से आपको नंबर आ गया, 0.94% का डिफरेंस है वोट में कांग्रेस और बीजेपी के, मतलब बीजेपी सिर्फ 0.94% आगे है वोट में, लेकिन सीट में आप इसलिए आगे बढ़ गए क्योंकि आपने अपने वर्चस्व वाले क्षेत्रों में ज्यादा वार्ड बना लिए और उनके वाले घटा दिए।
4: देखिए, आप अगर उन वार्डों को देखेंगे तो आपको लगेगा पहले परसीमन कैसे था और अब किस तरह था, लेकिन अब इसमें मैं क्या करूं, उनका दूसरा दर्द है। वो
3: क्या?
4: गहलोत साहब का दर्द है, वो दूसरा दर्द है।
3: कौन सा?
4: उनका दर्द है कि वो अपने बाढ़ से भी हार गए। अब उस दर्द को मैं कौन सा मल्लम लगा सकता हूं, आप बताइए।
3: दर्द दिया तो आप ही ने है ना।
4: देखिए, दर्द जनता देती है, कोई नहीं देता है, दर्द जनता देती है। जनता को काम दिख रहे हैं। उनके समय में क्या हुआ था, हर 3 महीने में चुनाव होते थे, आचार संहिता लगती थी। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हर 2 साल में पंचायत चुनाव हुए, हर 2 साल में निकाय चुनाव हुए। राजस्थान के अंदर हर 3 महीने में आचार संहिता लगती थी, कितना विकास अवरुद्ध होता था, जनता का कितना पैसा लगता था। यह नहीं देखा गहलोत साहब ने? यह भी तो देखना चाहिए था।
3: पर यह कौन सा जादू है सर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, 3 कॉरपोरेशन जिसमें कांग्रेस के पास ज्यादा वोट्स हैं लेकिन बीजेपी के ज्यादा लोग।
4: गलत, जोधपुर में हमारे ज्यादा थे।
3: हाँ,
4: हमारे ज्यादा थे।
3: कोटा में
4: हमारे ज्यादा थे। कोटा में तो बहुत ज्यादा थे।
3: वोट परसेंटेज, वोट्स जो टोटल मिले हैं
4: हमारे ज्यादा थे। हमारे ज्यादा थे।
6: खेल आप अजमेर में कर लिए, वो डीके शिवकुमार के यहां लेके बैठे रहे और आप अंदर ही अंदर खेल कर लिए।
4: देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां भी हमारी संख्या ज्यादा थी, वहां भी हमारी संख्या ज्यादा थी। इन्होंने जिस तरह से निर्दलियों को कैप्चर करके और ये लेकर के चले गए। अब भाई एक बात बताइए, कि वो निर्दलीय किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे, ये तो उसके मन की बात होती है, ये तो उनको लेकर के चले गए थे।
5: पर केवल
4: और फिर इन्होंने ये नहीं देखा, एक जगह की तो कह रहे हैं लेकिन बीकानेर में क्या हुआ वो नहीं देखा, बीकानेर में कोई जादू किया क्या, इनके कितने थे और वोट कितने आए उसकी बात नहीं करेंगे क्यों, जहां हारे उसकी बात करेंगे, जहां जीते किस आधार पर जीते उसकी बात नहीं करें, ऐसे थोड़ी होता है। बात होती है तो दोनों स्थानों की करो। आपने जोधपुर में ऐसा क्या काम किया जो उसमें बीकानेर में जो आपको इतने वोट मिले, पहले उनको अपने गलेवान में झांकना चाहिए, उन्होंने क्या किया है कैसे किया उसके बाद हमसे बात करनी चाहिए।
3: ठीक है, अब इस मुद्दे पर आ जाते हैं कि विरोध प्रदर्शन। अब देश में दिल्ली में जंतर मंतर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सीजेपी वाले यहां जब स्कूल के चेकिंग के लिए आते हैं तो आप ऑर्डर कर देते हैं कि नहीं भाई स्कूल में नहीं जा सकते, वो कह रहे विरोध प्रदर्शन ये सरकार नहीं चाहती है, डिसेंट नहीं चाहती है, जो उनके हां में हां मिला है वो तो ठीक है, जो उनके खिलाफ बोले उन सबको देशद्रोही।
4: देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कभी अपनी सोच को ठीक नहीं किया, जिन लोगों ने राष्ट्र के हित में किस तरह से काम करना चाहिए यह नहीं देखना, अगर आप उन सारे विषयों को छोड़ दें तो सरकार तो कहीं हमारी थी नहीं। अगर वो जाते हैं और गांव वाले अगर किसी का विरोध करते हैं और वहां जाकर के वो बैठते हैं तो इसमें कोई क्या कर सकता है, वो भी तो गांव में है, वो भी तो जैन जी है,
5: गांव तो
4: के युवा, गांव के युवा आते हैं और वहां बैठते हैं और गांव के लोग कहते हैं कि हमारी समस्या का हम समाधान करेंगे।
5: गांव वाले अगर कहते हैं कि नहीं आना है वो अलग चीज है। मैं दूसरी चीज आपसे पूछ रही हूं कि 611 सरकारी स्कूल राजस्थान में ऐसे हैं जिनके पास बिल्डिंग नहीं है, इस तरह के बहुत सारे और आंकड़े हैं जो यहां पर एक चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं। तो केवल ये कह देने से कि तुम यहां पर फिल्मिंग नहीं कर सकते हो, शूटिंग नहीं हो सकती, आप अंदर नहीं जा सकते, सीजेपी नहीं, मैं दूसरी चीजों की भी बात कर रही हूं, मैं मीडिया की भी बात कर रही हूं कि हम सब अगर उस स्कूल की स्थिति दिखाना चाहते हैं तो आप तो देखकर उसको सुधार कर सकते हैं ना, तो उस पर बंदिश क्यों?
6: ये 5-10 सालों से ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है।
4: देखो मैं एक बात आपको पूरा स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर एक हादसा हुआ था पिछले दिनों, हादसा हुआ था तो उसमें हमारे कुछ छात्र दुर्घटनाग्रस्त हुए, उसके कारण से सरकार ने उन सभी चिन्हित ऐसे जो पुरानी विद्यालय थे या उनमें किसी तरह से दिक्कत थी तो उनको हमने डिसमेंटल किया। उसके बाद लगातार हमारी सरकार जहां विद्यालय नहीं है वहां विद्यालय भवन बन रहे हैं, और उसके अलावा जहां गांव वालों ने व्यवस्थित तरीके से जो विद्यालय अच्छा है उसमें 2 कमरे अच्छे हैं, 1 कमरा अच्छा है, उन्होंने उनको रख करके पूरी तरह से सरकार ने उसको देखा और उसमें वो विद्यालय संचालित हो रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, कई अगर समाधान की कोई बात करे कि मैं कुछ समाधान लेकर के आया हूं कि मैं इसमें कुछ करना चाहता हूं या मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूं या मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता है, वो तो हम समझें, लेकिन इंस्पेक्शन के लिए बच्चों की परीक्षाओं के समय पर जाना, बच्चों को डिस्टर्ब करना, आप क्या समझते हो कि वो कोई 1 या 2 व्यक्ति जाता है, और वो बच्चा जो छोटा बच्चा है जिसको अगर मैं देसी भाषा में कहूं तो कच्चा मटका कहते हैं, जो वो स्वरूप ले रहा है उसके सामने जाकर के ये सारे विषय आते हैं तो उसके मन पर क्या असर पड़ेगा, उसको कैसा लगेगा, ये भी तो हमें विचार करना चाहिए।
3: लेकिन मुख्यमंत्री जी, मिड डे मील देखना है मुझे, मुझे देखना है कि बच्चों को राजस्थान के स्कूलों में मिड डे मील कैसा मिल रहा है। अभी यूपी में चुनाव है सर, अब आपने किया वहां पर भी यही हो गया है। मिड डे मील हमें देखना है, हमें दिखाना है कि भाई बच्चों को अच्छा, क्योंकि एक अकाउंटेबिलिटी भी होती है ना। हो सकता है कई जगहों पर खबरें आई दाल पानी की तरह, कई मुश्किलें होती हैं उन्हीं बच्चों को, सोचिए उन पर क्या बीतती होगी। जैसे आप कह रहे हैं कि कैमरा लेके कोई घुस गया तो बुरा लगता
4: है, नहीं उसको देखिए, उसके किसी ने मने नहीं है।
3: तो आइए, कैसे कवरेज कैसे होगी, कैसे कवरेज कैसे होगी, स्कूल्स के अंदर की चेकिंग कैसे होगी?
4: नहीं नहीं,
3: कैमरे कैसे आएगा?
4: अंजना जी, दोनों बहुत अलग अलग है। एक कोई देखने के लिए जाए उसमें कोई 50-100 लोग नहीं जाएंगे, 40 लोग नहीं जाएंगे, वो देखने के लिए जाएंगे तो 1-2-3 जाएंगे और वो जाकर के देखेंगे, उसकी जांच करेंगे और उसके बाद वो बताएंगे। लेकिन एक योजनाबद्ध तरीके से 3 दिन फोन पहले कह करके कि मुझे वहां जाना है और वो भीड़ जा रही है, गाड़ियों की लाइन लग रही है, वो वहां जा रही है, वो क्या देखेगा भाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बता दीजिए मेरे।
5: मतलब आप राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहते, लेकिन हम सब जाकर देख सकते हैं ना,
4: रियलिटी देख सकते हैं।
6: अच्छा, नौकरियों की बात हो रही है, परीक्षा के रिफॉर्म को लेकर जो काम होना चाहिए था, युवाओं को लगता है कि रिफॉर्म आरपीएससी का हो, कर्मचारी चयन बोर्ड का हो, उस पर आगे बढ़ना चाहिए।
4: देखिए शरद जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस कांग्रेस के समय हमारे राजस्थान के युवाओं का दुर्भाग्य था। कांग्रेस ने राजस्थान के युवाओं के साथ जितना कुठाराघात किया है, युवा कभी माफ नहीं करेगा। कितने पेपर लीक हुए, कितने माफियापन पे, जिनको छुपाया गया, एफआईआर दर्ज नहीं की गई। हम कह सकते हैं हम जनता के बीच में गए हैं, जनता के बीच में हमने वायदा किया है। 2.5 साल के अंदर 425 के लगभग परीक्षाएं हुई हैं, एक भी परीक्षा लीक नहीं हुई, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ।
5: क्या मॉडल है?
4: और आज 600 से ज्यादा वो नवाब माफिया थे, वो जेल की सलाखों में हैं, जेल की सलाखों में हैं। ये कांग्रेस के लोग तो वो लोग हैं, जब मैंने विधानसभा में हमने घोषणा की थी कि युवाओं को हम 4 लाख नौकरी देंगे, तो उन्होंने कहा आप दे ही नहीं सकते। आप क्या दे सकते? कोई नहीं दे सकता। और मैं आज आपको बता दूं कि आज हमने अब तक 1,93,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, 1,18,000 प्रक्रियाधीन है जिनके पेपर हो गए या होने वाले हैं, और हमने 1.25 लाख की वैकेंसी और हमने निकाल दी। मैं कांग्रेस के लोगों को आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, वो लिख लीजिए और फिर मेरे को बताइए कितना हो गया है।
5: सचिन पायलट जी आए थे, उन्होंने कहा कि इतने दिए तो क्या, वादा तो आपका उससे डबल का से ज्यादा का था, 8 लाख के करीब का, उन्होंने कहा
4: 4 लाख। आप हमारे संकल्प पत्र में देख लीजिएगा, संकल्प पत्र में देख लीजिएगा
5: उसके अनुरूप
4: हमने कितना वादा किया। हाँ
5: अच्छा,
4: हम लेकिन उससे ज्यादा देंगे।
5: लेकिन भजनलाल, ये पेपर लीक वाला समझाइए जरा। शरद ने भी जब अभी हम नीट वाला पूरा चल रहा था तो उन्होंने बताया कैसे यहां से गिरफ्तारियां हो रही हैं, तार पकड़े जा रहे हैं, लेकिन वही 400 से अधिक यहां पर सरकारी परीक्षाएं हो गई भर्ती के लिए, लीक कैसे नहीं हो? क्या मॉडल अपना रहे हैं आप? क्या वो सेंटर भी अप्लाई कर सकता है?
4: देखिए ये स्पष्टता है, दृढ़ इच्छा शक्ति। अब आप मजबूती से काम करेंगे, दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करेंगे, पहले से चिंता करेंगे। हमने ब्लॉक पर मीटिंग होती है, जिले में मीटिंग होती है, प्रदेश में मीटिंग लेते हैं, उसकी मॉनिटरिंग होती है, कहां का किस तरह से व्यवस्था किस तरह से की है। 4 दिन पहले 5 दिन पहले उसको तैयार होना पड़ता है, मीटिंग लेनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है, अधिकारियों को कहना पड़ता है, और उसको व्यवस्थित रूप से किस तरह से कर सकते हैं उसकी संरचना बनाई जाती है, उसके बाद परीक्षा होती है। ऐसा नहीं है कि मेरा छात्र इतने दूर से आए, परीक्षा का केंद्र पर उसको नंबर ही नहीं मिले, ये स्थिति हुई है।
3: अच्छा है मुख्यमंत्री जी, एक स्पेशल नोट्स बनाकर आगे भेज दीजिएगा शिक्षा मंत्रालय को भी कि ठीक से एग्जाम हो, पेपर ऊपर लीक ना हो। लेकिन आते हैं अगले मुद्दे पर, कानून व्यवस्था। आपके पास गृह मंत्रालय भी है और गहलोत जी, जिनके बारे में आप अभी खूब चर्चा कर रहे थे, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय संभालने का टाइम नहीं है, वेंटिलेटर पर कानून व्यवस्था है, चार इंसिडेंट्स जो वो बार बार कोट करते हैं, एक तो आप ही के बीजेपी के पूर्व विधायक जो बडाना जी की हत्या है, फिर जयपुर में कांग्रेस नेता के घर में दिन दहाड़े लूटपाट जो हुआ, एसडीएम जो टोंक के हैं उन पर जो हमला हुआ, और जो विधानसभा में बार बार बॉम्ब की धमकियां आई। वो कह रहे कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा आपसे।
4: देखिए, आप कुछ आंकड़े निकालिए, पिछले 5 साल के आंकड़े लीजिए और अब वो हमारे आंकड़े लीजिए, आपको स्पष्टता आ जाएगी। मैं उन 5 साल वालों पर जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि राजस्थान की कानून व्यवस्था, आप पिछले आंकड़े एक एक आंकड़े उठा लीजिए और हमारे आंकड़े उठा लीजिए, कितने गैंगस्टर होते थे ये राजस्थान की जनता को पता है, कितने लूट फिरौती होती थी गैंगस्टरों के माध्यम से, गैंगस्टर आते थे घटना करके चले जाते थे। हमने कहा कि राजस्थान में या तो गैंगस्टर आएगा नहीं, और आएगा तो राजस्थान से जाएगा नहीं, और आज वही है। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो बहुत बड़ी अंतर आपको मिलेगा कि राजस्थान की कानून व्यवस्था में कितना अंतर है। हमारे यहां घटना हुई तो अपराधी तुरंत सलाखों के पीछे जाएगा, तुरंत पकड़ा जाएगा।
5: सर, पर दो तरीके हो सकते हैं ना देखने के लिए, या तो आंकड़े हम देखें, या फिर हम देखें कि जो रसूख वाले लोग हैं, जैसे एक पूर्व विधायक की बात हो गई या फिर कांग्रेस नेता की बात हो गई, अगर उनके साथ अपराध होता है तो इसका सीधा मतलब होता है कहीं पर तो कहीं शायद डर की कमी अपराधियों में रह जा रही हो। क्या आप इस बात से सहमत हैं, या फिर आपको लग रहा है कि राजनीतिक रूप से खाली ये बात?
4: देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, घटना का आधार अलग अलग होता है, घटना पुरानी रंजिश को लेकर के भी हो जाती है, घटना किसी प्रॉपर्टी को लेकर के भी हो जाती है, घटनाओं का प्रकार अलग होता है, और आप ये भी जानते हैं कि हर घटना अलग अलग तरह की होती है, और उस घटना का तुरंत अगर एक्शन नहीं होता है तो उसमें दिक्कत आती है। तुरंत एक्शन होकर के उनको अंजाम मिले और उनको उतना ही दंड मिले, ये होता है।
6: राजस्थान में इन दिनों एक बड़ी समस्या घर करती जा रही है सूखे की, बारिश कम हुई है कई इलाकों में, क्या इसे लेकर सरकार कुछ कर रही है, क्योंकि विपक्ष भी आवाज उठा रहा है और जनता भी परेशान हो रही है?
4: देखिए, राजस्थान में इस बार हमारे कुछ जिलों में बारिश कम हुई है, और हमने ये देखते हुए उससे पहले ही पानी की, चारा की, किसान के काम की ये सारी व्यवस्था हमने पहले ही की है, और निश्चित रूप से मैं राजस्थान की जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहां जिस तरह की आवश्यकता है, हमारी सरकार ने पहले ही उसकी घोषणा कर दी, और आगे भी जो आवश्यकता होगी उसको हम पूरा करेंगे।
3: ये एमओयू आपने साइन किया है नायब सिंह सैनी साहब के साथ भी, और ये सब लग रहे हैं पानी को लेकर, ये कब से शुरू होगा सर? क्योंकि अब तीसरे साल में आप एमओयू साइन कर रहे हैं, ये पानी का जो यहां पर किल्लत है, जो परेशानियां हैं, ये कब से ऑन ग्राउंड लोगों को पानी मिलेगा? आज भी डेटा बताता है कि जल जीवन मिशन में 44 लाख हाउसहोल्ड्स, घरों में नल नहीं है, और ये पीएम का फ्लैगशिप प्रोग्राम है हर घर नल।
4: देखिए, पानी को लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान की जनता इसको महसूस भी कर रही है। जैसा मैंने आपको बताया, चार तो हमारे समझौते हुए हैं, कुछ हमारे राजस्थान में। पहला समझौता हमारा ईआरसीपी, राम जल सेतु योजना, जो हमारी 1 लाख करोड़ के लगभग की हमारी वो योजना है, उसमें हमारे 26,000 करोड़ के काम तो पहले ही चल गए, 17,000 के हमारे टेंडर हो गए, 41,000 करोड़ के काम हमारे उसमें चल रहे हैं। दूसरी हमारी योजना

0: हमारी योजना मंजूर हुई है और उसमें हमारा 800 करोड़ रुपए का रिजर्व बायर का जो हमारा काम होना है उसका हमारा शिलान्यास भी हो गया और आने वाले समय में वो भी धरातल पर आने वाला है। तीसरा हमारा जो काम सबसे बड़ा काम था और वो हमने आजादी के बाद पहली बार हमने हाथ में लिया, हमारी इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर, जिसके लिए 5,500 करोड़ रुपए हमने मंजूर किया। हमारी फिरोजपुर फीडर से लेके गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर के लिए खालों के लिए उसमें 80,000 हेक्टर जमीन सिंचित होगी, उसके लिए हमारा लगातार काम चल रहा है। वो 1927 में बनकर के तैयार हुई थी, 1927 में उसका उद्घाटन हुआ था, तो उसमें पहली बार हमने इतनी बड़ी तादाद में हमने वहां पैसा दिया है, जिसका पानी हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर के लिए पानी जाता है, तो वो हमारा काम चल रहा है। इसी तरह की हमारी योजना, मैं राजस्थान की सारी योजनाएं बता रहा हूं जो हमारे राजस्थान में हमारी चल रही है। नर्मदा का पानी जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने नर्मदा का पानी बिना मांगे राजस्थान को दिया था और आज उसका काम भी हमने आगे बढ़ाया, समझौता भी हुआ है और उसमें भी हमारे बाड़मेर, सांचौर, जालौर, रानीबाड़ा, उसके लिए उसमें पानी मिलेगा, उसकी भी हमारा काम चल रहा है, उस नहर को हमें आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से सोम कमलाम के माध्यम से जवाई बांध में हमारा पानी आ रहा है, उसमें 4,500 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं जो हमारा जवाई बांध के माध्यम से पाली, जालौर और सिरोही का काम करेगा। इसी में अगला काम हमारा माही डैम जो हमारा आदिवासी क्षेत्र है बांसवाड़ा डूंगरपुर के लिए 4,000 करोड़ रुपए का काम हमारा सेंसन उसमें हुआ है, जो वो पानी हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर के लिए 80,000 हेक्टर जमीन को सिंचित करेगा और वहां के लोगों को पीने को पानी मिलेगा। और जो हमारा अरावली पर्वतमाला है उसका आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था और आधा हमारा हिंद महासागर की तरफ आता है, उस पानी को रोक करके उसमें टनल और एनीकट बना करके अभी मैं देख करके आया, 4.5 किलोमीटर उसकी टनल बनी है। वो पानी हमारा ऐसा है कि जो फालतू में अरब सागर की तरफ वो काम नहीं आता था, इधर काम आता था, वो को रोक करके 10,500 करोड़ की योजना है जो हमारे उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ के लिए काम आएगी, उस पर काम चल रहा है। एक हमारी योजना ऐसी है जो राजस्थान के आधे राजस्थान को पानी की सप्लाई करेगी, जो हमारी ब्राह्मणी नदी राणा प्रताप सागर से आता है, वो हमारे बीसलपुर बांध जो हमारा अजमेर, टोंक, जयपुर को पानी उसमें जाता है, उसको आएगा वो 2,500 करोड़ रुपए की योजना, जिससे सीधा पानी आएगा, उस पर हमारा काम टेंडर हो गए, उस पर काम हमारा चलने वाला है। पूरे राजस्थान में जो आंतरिक काम है हमारे वो तो चल रहे हैं, लेकिन परियोजनाओं के काम भी हमारे चल रहे हैं। और अब एक काम हमारा और हो गया जो हमारा अभी किसाऊ का समझौता, चौथा समझौता हुआ है, जो हमारा 6 राज्यों का है, उत्तराखंड, हिमाचल, हमारा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, उसका हमें 200 MCM पानी तो मिलना ही था, लेकिन 25% पानी उसका एक्स्ट्रा मिलेगा हमें उसमें, वो भी हमने किया है। तो क्योंकि हमारे यहाँ बिजली की आपूर्ति पूरी है तो वो 25% हमने बिजली को छोड़ा है हिमाचल के लिए और पानी हमारा 25% मिलेगा, ये भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और ये समझौते माननीय अमित शाह जी की अध्यक्षता में और सीआर पाटिल जी के सानिध्य में ये हुए, जो ये राजस्थान के लिए पानी का बहुत बड़ा काम।
1: पानी और किसानों की बात आपने की, लेकिन
2: ये जो पूछी अंजना ने अभी कि जल जीवन मिशन योजना जो है वो भ्रष्टाचार मिशन योजना राजस्थान में बना हुआ है, कोई नल ऐसे लटके पड़े हुए हैं पानी आता ही नहीं।
0: बिल्कुल, आपने देखा है कि जेजेएम में जिस तरह का काम पूर्व सरकार के समय जो हुआ था, और वो ऐसा हुआ था कि जब हमने उनकी जांच कराई तो उसके मंत्री भी जेल में है, आईएएस अधिकारी भी जेल में है और इस तरह से 60 लोग जेल की सलाखों में चले गए हैं, जाने वाले हैं। और अब लगातार जेजेएम में जिस तरह से काम हो रहा है, हमने अभी 15 अगस्त तक हमने जल समर्पण के कार्यक्रम रखे थे, उन सारी योजनाओं को, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार तो किया था लेकिन सबसे बड़ी बात क्या की थी कि इन्होंने सिर्फ पानी का जो सोर्स होता है वो सोर्स नहीं देखा, इन्होंने सिर्फ टंकियां बना दी, पाइपलाइन डाल दी, अरे भाई पानी होगा जब ही तो उसमें आएगा, लेकिन हमने उन सोर्सों को जोड़ते हुए हम लगातार उसमें काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जिस तरह से जल जीवन मिशन में काम हो रहा है और हमने माननीय प्रधानमंत्री

0: जी से आग्रह किया था कि इसको 28 तक बढ़ाया जाए, हमारे आग्रह पर वो 28 तक बढ़ाया है। निश्चित रूप से राजस्थान में जेजेएम के काम अब प्रगति पे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से हो रहे हैं।
1: किसानों की बात आप कर रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि खाद के लिए पुलिस लगानी पड़ गई?
0: किसने कह दिया आपको?
2: ये तो बहुत आरोप लग रहे हैं आपके सरकार पर।
0: किसने कहा ये?
2: आप आज तो हमारे मन से समूचे विपक्ष ने आपको इसी बात पर,
0: देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर 11 लाख मैट्रिक टन की आवश्यकता थी, हमारा 17 लाख मैट्रिक टन आया है। हमने पहले से ही व्यवस्था की है, कहीं कोई किसी की लाइन नहीं है, कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं है, पूरा खाद हर किसान को पूरी तरह से खाद मिल रहा है। अगर ये अगर किसी ने कहा है तो मैं सिरे से खारिज करता हूं।
3: ठीक है, देखिए जल जीवन मिशन, जल पानी नौकरी सब पर हमने स्कूलों सब पर बात कर ली है, लेकिन वापस बीजेपी की जो सबसे बड़ी चिंता है उसी पर पहुंचते हैं। आपने उस समय मुझे इनकार कर दिया और कहा कि ज्यादा, इसीलिए मैंने रिसर्च उस पर मंगा लिया। जयपुर जोधपुर कोटा इन कॉरपोरेशंस में कांग्रेस पोल्ड अ टोटल ऑफ 10,34,999 वोट अगेंस्ट द बीजेपी 10,19,160 वोट, यानी उनके टोटल वोट ज्यादा थे लेकिन वार्ड्स आपके ज्यादा थे जिसमें आपको जीत मिली, और यही आधार बना बनाकर विपक्ष आप पर सवाल खड़े कर रहा है। और वो कह रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल है कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी बार बार निकाय चुनाव की राजस्थान की बात कर रहे हैं। अरे हम तो यही कह रहे हैं कि आप फेर कर रहे हैं, कुछ वोट्स हमको ज्यादा मिलते हैं, वार्ड आपको ज्यादा मिल जाते हैं, और जो हमारा मुद्दा है वही है कि आप जादू से जीतते हैं, चुनाव आयोग की जादू से हर जगह जीतते हैं और डिलिमिटेशन से।
0: देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं इसकी डिटेल दूं आपको तो मैं आपको भिजवा दूंगा, डिटेल आप देखोगे तो आपको लगेगा, आपको लगेगा वोट उनके ज्यादा नहीं है। आप अगर आंकलन करोगे तो निश्चित रूप से आपको निकल करके आएगा कि आंकड़ा क्या है। अगर यही आंकड़ा होता तो वो क्यों, इस आंकड़े को देखोगे पिछली बार उनके कितने बने थे, चाहे पंचायत हो चाहे निकाय हो उनको भी देख लीजिएगा, और उसमें हम हमारे कितने मिले थे और हमको कितने मिले थे वो भी देख लीजिए। अगर उसका आंकड़ा आप देखेंगे तो स्पष्टता आपके अंदर बिल्कुल पूरी तरह से हो जाएगी।
3: तो पिछली बार वाला देखना है,
0: पिछली बार आंकड़ा पिछली वाला आंकड़ा अगर हमारा देखोगे और इस वाला आपका देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये क्या है
3: वोट परसेंटेज।
0: हाँ वो आ जाएगा,
4: कांग्रेस का 40 था इनका 35 था, वो गिरे हैं ये बड़े इनका कहने का।
3: हाँ नहीं, वो तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन टोटल वोट तो ज्यादा है ना,
0: टोटल वोट से इन सीटों का आंकड़ा, उनका आंकड़ा कितना है, वो कितना गिरे हैं, वो आपको मैं भिजवा दूंगा।
3: ठीक है भिजवा दीजिए।
2: पर ये वन स्टेट वन इलेक्शन जिसको लेकर कई हलकों में बहुत तारीफ भी हो रही है कि वरना हमेशा कोई आप योजना पे काम ही नहीं कर सकते हैं जब चुनाव चलते रहते हैं, कितनी सफलता आप इस समय देख रहे हैं इस दिशा में आगे बढ़ते हुए, कितना कितने काम करने का दायरा कितना बढ़ रहा है इससे?
0: देखिए हमने जब चुनाव का देखा कि पंचायत चुनाव कब है, निकाय चुनाव, तो लगातार हम देख रहे थे हर तीसरे महीने या तो पंचायत का चुनाव आ रहा है या निकाय का चुनाव आ रहा है, तो हमने कहा ये ठीक नहीं है। हमने उसका प्रस्ताव बनवाया, हमने विधानसभा के अंदर घोषणा की कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन करेंगे, और इसलिए हमने उनकी सूची निकलवा करके हमने कहा इस तरह से हम नहीं करेंगे। तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि आप वन स्टेट वन इलेक्शन नहीं करा पाओगे, हमने कहा बिल्कुल कराएंगे, तो उन्होंने कहा आपके काकाजी भी नहीं कराएंगे, तो बन के अब तो हम जरूर कराएंगे। और मैं आपसे कह सकता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमने वन स्टेट वन इलेक्शन कराया, निकाय चुनाव हो गए, पंचायत चल रहे और इसके बाद सहकारिता के भी चुनाव होने वाले हैं। और आपने देखा राजस्थान की स्थिति जिस तरह से इन्होंने कर रखी थी, श्वेता जी मैं आपसे कहूंगा कि राजस्थान में कांग्रेस लोगों ने जिस सहकारिता का हमारा तीसरा चरण चुनाव का हम कराएंगे उसको तो इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था। कांग्रेस के लोग कभी पोर्टल पर 4, 6, 10 लोगों से ज्यादा सदस्यता नहीं करते थे, हमने उस सदस्यता को खोल दिया और उस सदस्यता का खोलने का फायदा यह हुआ कि राजस्थान में सहकारी समिति में 10 लाख सदस्य बने। 10 लाख सदस्य बहुत बड़ी बात होती है। और हमने ये भी कहा है कि हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति जनसंख्या, अगर हमारी ग्राम पंचायत छोटी है तो 2 में करेंगे, अगर हमारी ग्राम पंचायत संख्या को कर रही है तो हम हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति खोलेंगे जिससे मेरे किसान को उसका फायदा मिले, पूरी तरह से किसान को ताकत मिले। तो हमने वन स्टेट वन इलेक्शन भी कर रहे हैं और सहकारिता की ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं।
3: पंजाब में चुनाव है और आप भी प्रचार के लिए जा रहे हैं, आप यूपी भी जा रहे हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि बॉर्डर स्टेट है पंजाब और सिक्योरिटी थ्रेट है, ड्रग्स का बहुत बड़ा इशू है जिसको बीजेपी बढ़ चढ़कर, लेकिन राजस्थान भी एक बॉर्डर स्टेट है तो इस नजरिए से ड्रग्स का चैलेंज यहां पर भी है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी? विपक्ष भी कहता है कि भाई केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय को रोकना चाहिए, वो ड्रग्स रोक नहीं पाते और हम पर इल्जाम लगाते हैं।
0: देखिए राजस्थान के अंदर ड्रग्स के ऊपर जितनी कार्रवाई हुई है आप देखेंगे कि हमने लगातार ड्रग्स पर कार्रवाई की है और बड़ी बड़ी कार्रवाई की है। हमने कहा अगर ड्रग्स किसी के घर पर मिलती है तो घर नहीं बचेगा, गाड़ी में मिलती है तो गाड़ी नहीं बचेगी, अगर किसी के गोदाम में मिलती है तो गोदाम भी नहीं बचेगा, और हमने वो कार्रवाई की है। हमने वो कार्रवाई की है, मुठभेड़ भी हुई है लेकिन हमने छोड़ा नहीं और हमारी पुलिस ने पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करते हुए उनको अंजाम देने का काम हमारी सरकार ने किया।
3: आप भी बुलडोजर चलवाते हैं मुख्यमंत्री जी, बुलडोजर आप भी चलवाते हैं?
0: अवैध के लिए तो
3: वही पीला वाला बुलडोजर
0: कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। कानून से काम होगा, इसलिए मैंने कहा सील कर देते हैं, तुरंत सील करके बंद कर देते हैं और आवश्यकता होती है तो कार्रवाई भी करते हैं।
4: अच्छा ऐसा ये एक मुद्दा बना हुआ है दिल्ली में, राजस्थान के नेता कहते हैं कि राजस्थान के जो निकाय के चुनाव हुए या फिर जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं वो SIR के आंकड़े से क्यों नहीं करा रहे हैं आप, यहां वो कहते हैं कि SIR से होना चाहिए।
0: देखिए शरद जी ये वो कहावत है नाच ना जानू आंगन टेढ़ा, कोई फर्क नहीं है राजस्थान का या देश का नागरिक, उसको वोट जुड़वाने का अधिकार मिला हुआ है, कभी भी जुड़वा सकता है, किसने मने किया? ये तो 12 महीने काम चलता है, 12 महीने काम चलता है। ये तो वो तर्क देते हैं जो उनको तर्क देने की आवश्यकता है, अब जनता ने नकार दिया वो तर्क कैसे दे उसको समझ में आएगा क्या? और मैं आपसे कहना चाहता हूं देश की जनता का मन बन गया पूरी तरह से, और मन ऐसे नहीं बना, मन बना है जनता की सेवा का। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये देश की जनता को दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। ये विपक्ष जिस तरह के बहाने बनाता है ये चलने वाले नहीं है, देश की जनता पूरी तरह से जानती है।
1: जेन जी आपके साथ है राजस्थान की
0: पूरी तरह से, पूरे देश का है, पूरे देश का है।
1: नहीं तो प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो कौन है फिर?
0: पूरे देश का है, कितना है योजनाबद्ध तरीके से क्या है?
3: तो आंदोलन करने जो सड़क पर उतर रहे हैं वो बच्चे कौन है फिर? वो तो कह रहे हैं हम है जेएनजी सरकार के खिलाफ।
0: बाकी का देश का युवा कौन है?
3: पेपर लीक के मुद्दे पर
0: बाकी का युवा कौन है? पेपर लीक राजस्थान में हो रहे थे जब कहां गए थे ये?
1: आपको लग रहा है सिलेक्टिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं।
0: राजस्थान में हो रहे थे पेपर लीक जब कहां गए थे?
3: अपनी सरकार के खिलाफ थोड़ी प्रोटेस्ट करेंगे
0: अब फिर।
3: पर दिल्ली में तो इस बार सीजेपी उतरी है ना, कोई कांग्रेस पार्टी और कोई पार्टी नहीं थी ये। इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
0: पीछे कौन खड़ा है?
3: कमेंट पर
0: पीछे कौन खड़ा है? पीछे कौन खड़ा है?
3: कौन खड़ा है आप बताइए।
0: ये तो आपको पता है।
3: नहीं आपको पता चल गया मुझे लग रहा है।
0: देखिए मैं आपसे बताना चाहता हूं
3: सर, कौन है सीजेपी के पीछे?
0: आज आज देश का युवा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करता है। आज देश के युवा को जो मौका दिया है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज देश का युवा ऊंचाइयां छू रहा है, आज खेल में मेडल लेकर के आ रहा है। ये क्या है? आज हमारे वैज्ञानिक देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अंजना जी मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश की संस्कृति और देश का मान और सम्मान को जो युवा आगे बढ़ा रहे हैं, वो आगे आ रहे हैं, वो हमारे देश के युवाओं की संख्या बहुत बड़ी है। उनको हमेशा देश दिखता है, देश का वो मेरा किसान दिखता है, देश का मेरा गरीब दिखता है, देश का मेरा मजदूर दिखता है, मेरी बहन दिखती है, मेरी माता दिखती है। मेरा पेट भरने से पेट नहीं भरेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक आत्मानवाद और अंत्योदय की परिभाषा, जब तक नहीं समझेंगे जब तक काम नहीं चलेगा। हमको अंत्योदय की परिभाषा समझनी पड़ेगी। अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति जब तक वो आगे नहीं आएगा हम सफल नहीं हो सकते, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी काम को कर रहे हैं।
1: तो अपने कार्यकाल के बीचों बीच क्या हम आपसे ये समझ सकते हैं कि जो हर 5 साल में एक सत्ता परिवर्तन यहां पर होता था उसका चक्र आप तोड़ पाएंगे?
0: देखिए मैं आपसे ये जरूर कहूंगा जो आपने कहा है कि राजस्थान का इतिहास ये रहा है, लेकिन हमें भरोसा है और राजस्थान की जनता को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है कि मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए राजस्थान में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार विकास कर रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में राजस्थान की फिजा भी बदलेगी और राजस्थान की स्थिति भी बदलेगी और राजस्थान पूरी तरह से आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में चिरस्थायी रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
3: एक एक प्रश्न हम दोनों के भी है, उसके बाद आप ये करेंगे। जल्दी से एक सवाल मेरा है, आपने कहा मोदी है तो मुमकिन है, तो भजन लाल है तो भरोसा है कि नहीं? 2 साल तो कुछ होता नहीं, अब तो चुनाव में आने का टाइम आपका आ ही रहा है। सुनिए सुनिए सवाल मेरा, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि बीजेपी में सब ठीक चल रहा है कि नहीं? वसुंधरा जी फिर से उपाध्यक्ष बनी है, कैसा इक्वेशन है? ठीक इक्वेशन है उनसे?
0: देखिए बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी सीनियर हमारे सब पूरी तरह से एकजुटता के साथ काम करते हैं। अंजना जी वसुंधरा जी से लेकर के जितने भी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, सीनियर लीडर हैं, सब पूरी तरह से मिलकर के पार्टी का काम करते हैं और जो जिसको जो दायित्व मिलता है वो इस दायित्व को पूरी तरह से निभाता है। यह भारतीय जनता पार्टी की खूबी है।
4: मुख्यमंत्री जी, जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं गिरिराज्य में पुंछड़ी कलौठा में भीड़ बढ़ गई है, सब नेताओं को लगता है कि रास्ता वहीं से खुल रहा है क्या?
0: देखिए शरद जी मैं ये बात तो कह सकता हूं कि मैं ईश्वरवादी हूं। मैं जो कहूंगा मैं उससे ज्यादा ईश्वर को मानता हूं। गिरिराज जी के अंदर मेरी आस्था है, सभी देवी देवताओं के अंदर मेरी आस्था है, और मैं आपको इतना कह सकता हूं चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसकी आस्था हमारे देवों की प्रति अगर उसकी आस्था है तो वो गलत काम नहीं कर सकता, ये मुझे विश्वास है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आस्था होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। और भगवान की कृपा आपके कर्मों के आधार पर भी निहित है, क्योंकि जब ईश्वर को मानता हूं तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करिए और बाकी का मेरे पर छोड़ दीजिए। तो मैं यही कहूंगा कि कर्म में बहुत ताकत है, और कर्म जो हमारी गांव की कहावत है कि कर्म करतार को भी हरा देता है।
3: पर भजन लाल जी, ये सारे लोग जो यहां पर बैठे हैं और जो घरों में भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे टीवी, वो सब जानना चाहेंगे, मतलब आप विधायक भी नहीं रहे, बहुत पहले चुनाव लड़े थे, विधायक भी नहीं थे, कभी मंत्री भी नहीं रहे, सीधा सीएम बने, मतलब कुछ तो आपने अलग किया होगा भगवान जी के सामने जाके,
0: देखिए,
3: या पार्टी के अंदर क्या था,
0: देखिए
3: आपको पार्टी ने क्यों चुना।
0: देखिए मेरे को, क्योंकि मैंने पहले तो मैं आपको कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जो गांव गरीब एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में आता है और उसको मौका मिलता है। ये दूसरे राजनीतिक दलों में नहीं है, या तो परिवार की पार्टी होंगी या किसी समुदाय की पार्टी होंगी, और उनके निश्चित होंगे पहले से ही। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो नीचे से चल करके काम करते करते आदमी को मौका मिलता है और हर कार्यकर्ता को मौका मिलता है। पार्टी में जो मेरे को दायित्व मिला, क्योंकि मेरी राजनीति एक युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष से हुई थी, आप तो मेरी इस बात को कह रही हैं, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष से हुई थी, उससे मेरा राजनीतिक जीवन यात्रा मेरी प्रारंभ हुआ था। विद्यार्थी परिषद के बाद मैं युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बना, फिर युवा मोर्चा में जिला मंत्री बना, उपाध्यक्ष बना, महामंत्री बना, और युवा मोर्चा का 3 बार में जिला अध्यक्ष रहा, फिर पार्टी में जिला मंत्री बना, फिर उपाध्यक्ष बना, महामंत्री बना, पार्टी का जिला अध्यक्ष बना, और उसके बाद में प्रदेश का उपाध्यक्ष बना, फिर मैं महामंत्री लगातार बना। देखिए जो मेरे को जो दायित्व मिला, मैंने पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसको निभाया। और पार्टी का होता है, जिस किसी कार्यकर्ता को दायित्व मिलता है उसको पूरी तरह से करता है, और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें आप हमारे किसी की भी स्थिति देख लीजिए, जो उन्होंने काम किया है, आगे आए हैं, एक गरीब परिवार से आए, वो अधिकतर बहुत बड़ी संख्या है उनकी जो इस तरह के कार्यकर्ता आए हैं। निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल में मेरे को काम करने का, उससे जुड़ने का मौका मेरे को मिला। और फिर मैं कहना चाहता हूं हमारा नेतृत्व इस तरह का कि जो नीचे से आदमी को देख करके किस तरह से कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए, मेरे पे भरोसा किया, निश्चित रूप से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और मेरे को यहां सही बात है, पहली बार मैं विधायक बना, एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने मेरे को जिम्मेदारी दी है, और उस जिम्मेदारी को मैं, जितनी मेरी कोशिश हो रही है उसको मैं,
1: हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान के हर युवा के साथ भी यही उनकी,
3: हालांकि असल राज आपने बताया नहीं, बता देंगे तो बाकी कार्यकर्ता भी करेंगे
1: उनकी प्रतिभा को उनके अनुसार मिलता रहे।
0: मैं मेरे कार्यकर्ताओं से कहता हूं, मेरे कार्यकर्ताओं से मैं जहां जाता हूं मैं मेरी बात करता हूं और मैं कहता हूं कि आप चिंता मत करिए, और वो मैं विश्वास के साथ कहता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। मैं उनसे ये कहता हूं कि आप में से ही आगे आने वाले हैं, आप में से ही संगठन के पदाधिकारी बनने वाले हैं, और आप में से ही जनप्रतिनिधि मंत्री मुख्यमंत्री आप में से बनने वाले हैं, और ये वास्तविकता है।
1: चलिए इसी सोच के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंचायत आज तक के मंच पर आने के लिए, बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
3: सुप्रिया जी, अब आपको इंडिया टुडे

0: हमारे नेबर मिस्टर कुमार बात बात पे कार मांग करते हैं।
1: वो इन लॉस को लाना है, कार मिल जाएगी।
2: अरे यार कुमार, अब तो अपनी कार ले लो यार।
3: कैनरा व्हीकल लोन से
1: अप टू 90% फाइनेंसिंग,
4: क्विक प्रोसेसिंग एंड नो प्री क्लोजर पेनल्टी।
5: कैनरा व्हीकल लोन, अपनी वाली गाड़ी के लिए।
6: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: Maddie, I need to open a savings account.
10: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
9: स्मॉल बैंक?
10: स्मॉल privilege savings account, गरिमा savings account, maxima business edge current account, business maxima business privilege RD, there's nothing small about them.
9: Okay.
10: Ujjivan, nothing small about us.
11: SBI celebrations unlimited. इस festive season को बनाए special car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ।
12: इस festive season Hyundai Super Delight Days सबके लिए लाए हैं delight। Hyundai showroom आओ, amazing cars पे 1,00,000 तक की amazing deals पाओ।
13: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
14: आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
13: क्रॉसबॉन्ड सुपर स्ट्रॉन्ग,
14: सुपर स्ट्रॉन्ग
13: और मॉइस्चर प्रूफ,
14: वारंटी
13: 15 साल की।
14: कदम
13: सर प्लीज
14: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन्ड से ही बनेंगे।
15: क्रॉसबॉन्ड HDMR Max, फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।
16: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है। जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल 2-in-1 बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
17: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार रोटी ठुमका लगाने पर
18: मेरे पास एक आइडिया है।
17: क्या?
18: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
19: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
20: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
21: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
19: कौन सी बनानी है?
22: टेक्नोलॉजी के मामले में किसान सुनते सबकी हैं, पर मानते सिर्फ उनकी हैं जिन पर सालों से भरोसा हो। इसीलिए स्वराज पोर्टल टेक्नोलॉजी जो दे ज्यादा प्रोडक्टिविटी और बेमिसाल कंफर्ट। भरोसा और टेक, मेरा स्वराज प्रोटेक।
23: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
24: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
23: असली शहद, असली स्वाद।

0: हेलो जी, टाइम क्या हुआ है?
1: टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। डायमंड हर दिन और एश्योर्ड गिफ्ट विद फिलिप्स, सोने पे डबल स्वाद ऑफर।
2: आगे आगे,
0: अरे उधर उधर,
2: करेक्ट करेक्ट,
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
5: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
6: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
7: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
6: क्या?
7: इनकी राय।
8: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।

0: पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
1: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
2: इट्स अ माय वे।
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।

0: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: यार ड्रिल करना पड़ेगा।
3: ड्रिल? नहीं नहीं, ओनर से पूछना पड़ेगा।
4: इसका नाम क्या रखेंगे?
5: ये भी ओनर से ही पूछ लेते हैं।
6: अरे भाई साहब, कब तक ओनर के डर में रहेंगे? शान से अपने घर में रहिए ना, विद कैनरा होम लोन।
7: चलो
8: मैं?
7: अरे आजकल की लड़कियां प्लेन चला रही हैं।
9: चलो सखी उड़ ले।
10: अनमोल ड्रीम लाइट खस्ता बिस्किट।
7: बड़ी जल्दी सीख गई।
8: कल से प्लेन चलाना सीखूंगी।
10: स्वाद सपनों का।
11: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डे सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1,00,000 तक की अमेजिंग डील्स पाओ।
2: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है, जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल 2-in-1 बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
3: हेलो जी, टाइम क्या हुआ है?
4: टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। डायमंड हर दिन और एश्योर्ड गिफ्ट विद फिलिप्स, सोने पे डबल स्वाद ऑफर।
5: आगे आगे,
6: अरे उधर
5: उधर,
6: करेक्ट करेक्ट,
0: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
8: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
9: I love it, absolutely amazing. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
10: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
9: क्या?
10: इनकी राय।
11: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
13: हाउस द हॉस्टल सेटल्ड?
14: यस मैट, रियली नाइस।
13: कोई आ रहा है क्या?
15: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटी तो निभाली, अब फिर से थोड़ा रोमांस है।
13: मयंक, फॉर रियल?
15: 1 कैरेट फॉर माय 1 ट्रू लव। Natural Diamond Real Love Solitaires to reignite your new season of love.
16: खेती में सिर्फ आज का नहीं, आने वाले कल का भी सोचना पड़ता है, इसीलिए स्वराज प्रोटेक्ट, इसका वर्षा पीटीओ सिर्फ आज नहीं, फ्यूचर के इम्प्लीमेंट्स के लिए भी है तैयार। भरोसा और टेक, मेरा स्वराज प्रोटेक्ट।

0: What I can be.
1: Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
2: बोलो ना बेटा, क्या चाहिए?
3: जूस या सोडा, डाले या आटा, बोले ना बेटा, क्या लेगा अभी फॉर यू फ्राई माय भेजा।
4: मजा नहीं आया।
2: इसे कैसे दिलाऊं मजा भगवान?
5: ये लो बस।
4: मजा!
6: अनमोल मजा, असली मजा तो यही है।
7: In association with Canara Bank, together we can.
8: Anmol biscuits, swad jo banaye har pal anmol. Signature finest cardamom seeds.
9: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
10: Aa gaya somvar aur aa gaye
11: chakmak chacha.
10: Aa chacha. अखबार बांच रहे हैं,
12: टेस्ट
10: चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चिचा कब जाएंगे?
12: अरे भैया प्रोटेस्ट में हिस्सा ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा, हम अपना मुद्दा उठा चुके पुराने।
10: अच्छा, कब उठाए?
12: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए।
10: अच्छा,
12: हाँ तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग तरह इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे, दन दन दन दन करके, ऐसा ये सब नहीं था अपना मामला
10: जी,
12: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
10: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है
12: आपका। टूटा भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे कार्रवाई चलती थी दर्द बिता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर बोलता रखे था एकदम बोलता मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
10: अच्छा,
12: और क्या
10: आपका मतलब, हम लोग डर जाते हैं?
12: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल, जहाँ पुलिस सिटी नहीं बची उसमें भागने लगता हूँ।
10: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही
12: है। किधर?
10: चाचा हम खेल गए अब की।
13: बांग्लादेश ने, बांग्लादेश के एक बड़े प्रमुख व्यक्ति ने ट्वीट किया था जब ये प्रोटेस्ट हुआ था, और उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश का समर्थन है। अब नेहा बोरा जो कि इस प्रोटेस्ट में साथ आगे आगे चलती हुई दिख रही, उन्होंने कहा बांग्लादेश ने ही हमें राह दिखाई है। क्या भारत के प्रोटेस्ट को
14: मैं नहीं जानता हूं कौन बांग्लादेशी है कौन पाकिस्तानी है, मैं तो भारत देश की बात करता हूं, और हम लोग चिंतित आज हैं अपनी अगली पीढ़ी के भविष्य के लिए। हम लोगों को जो देश मिला था जहां चुनाव, लोकतंत्र, बोलने की आजादी, अपने विचार प्रकट करने का खुलापन जो हम लोगों ने इनहेरिट किया था, मैं चाहता हूं अगली पीढ़ी को वो मिले। आज जो हो रहा है इतनी दबिश है, इतना खौफ का माहौल पैदा किया हुआ था। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं उन जेन जी के बच्चों को, लड़के लड़कियों को, जिन्होंने जंतर मंतर बजाकर वो सारी बंदिशें तोड़ दी, उन्होंने खुले होकर अपनी बात को रखा और ये दिखाया कि हम लोग दबाव में या प्रेशर में काम नहीं कर सकते।
15: हम सब जानते हैं कि कन्या पूजन का क्या महत्व होता है, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस का हाथ सदैव महिलाओं के शोषणकर्ताओं के ऊपर ही रहता है। नवदुर्गा की अवहेलना करने वाले कांग्रेस पार्टी के सिटिंग सांसद बिमल अकोयजम ने जब 11 छात्राओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करी तो इंटरनल कमेटी जो जेएनयू की है उसने पाया कि बिमल अकोयजम कि जो 11 छात्राओं ने बिमल अकोयजम के खिलाफ कंप्लेंट करी थी उस
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और जयपुर से ब्लैक एंड व्हाइट के स्पेशल एडिशन में आपका बहुत स्वागत है। दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शन और आंदोलनों को लेकर पुलिस ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है। जुलाई में कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन में हुई हिंसा और बवाल को लेकर दिल्ली पुलिस ने सभी FIR वापस ले ली थी, लेकिन अब आंदोलन के दूसरे चरण में FIR की बौछार हो चुकी है। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस आक्रामक मोड में नजर आ रही है और व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश पर FIR दर्ज की जा रही है। प्रदर्शनकारियों को सीधा जवाब देते हुए उनके बुरे व्यवहार का शिकार बने पुलिसकर्मी भी खुद अब FIR दर्ज करा रहे हैं।

12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाले जाने की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए उनकी मंशा पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के पैदल मार्च के दौरान हुई अव्यवस्था और उनके आचरण पर कड़ी नाराजगी जताई और इसे लेकर उनसे सफाई भी मांगी। अदालत ने साफ कहा कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। अमेरिका में हिंदू मंदिर पर एक बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम हुई। इलिनॉय में एक 19 साल के लड़के को मंदिर में मास शूटिंग की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसके घर से भारी मात्रा में हथियार और भड़काऊ सामग्री बरामद हुई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी नवरात्रि के दौरान किसी मंदिर को निशाना बनाने और भारतीयों के खिलाफ हिंसा फैलाने की फिराक में था। और अगली खबर, क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ नए और विनाशकारी हमले की तैयारी कर रहा है? सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ईरान के परमाणु ठिकानों और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भयानक हमला कर सकती है और इसके लिए अमेरिका के सबसे बड़े गैर परमाणु हथियार मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है। सवाल है कि क्या मिड टर्म चुनाव के बीच जंग खत्म करने के दबाव में घिरे ट्रंप इतना बड़ा फैसला लेंगे? इधर पाकिस्तान के पेशावर से एक स्कूल की जर्जर छत अचानक भरभराकर ढह गई। इस भयानक हादसे में 13 साल से कम उम्र के 27 बच्चों और महिला टीचर की मौत हो गई जबकि कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मुंबई से करीब 7000 किलोमीटर दूर लंदन जाना 1500 किलोमीटर दूर पटना जाने से सस्ता हो सकता है? इस त्योहारी सीजन में विमान कंपनियों ने आम आदमी की घर लौटने की मजबूरी को कमाई का जरिया बना लिया है और ये खबर हम चाहते हैं कि आज जोर शोर से पूरे देश में जाए। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि जहां इस दिवाली छठ के मौके पर मुंबई से पटना का एक तरफ का हवाई किराया 25,000 से ज्यादा है, वही इतने पैसे में व्यक्ति मुंबई से लंदन जा सकता है। सोचिए, मुंबई से लंदन का जितना किराया है उसने पैसे में आप दिल्ली से पटना पहुंच रहे हैं, यानी पटना जाने वालों से 5 गुना दूरी जितना किराया वसूला जा रहा है। क्या इस बेलगाम लूट पर केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय आंखें मूंद कर बैठा रहेगा? और अगली खबर, अमेरिका में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन से पहले एलॉन मस्क ने ट्रंप की पार्टी और उससे जुड़े संगठनों को $276 मिलियन यानी करीब 2,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी भरकम चंदा दिया है। इसके साथ ही इस इलेक्शन साइकिल में उनका कुल चंदा $366 मिलियन पर पहुंच गया है, जिसने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के उनके पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। अकेले सेनेट लीडरशिप फंड को $158 मिलियन देने वाले मस्क अब 2026 के चुनाव के सबसे बड़े सुपर डोनर बन गए हैं। लेकिन यहां भारत को लेकर वो आरोप लगाते हैं कि उद्योगपति इस देश को चला रहे हैं और वहां ट्रंप पर पैसे ही पैसे न्योछावर कर रहे हैं एलॉन मस्क। सुप्रीम हिपोक्रेसी इसे हम कहेंगे। इधर सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन को लेकर एक बेहद अहम और कड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें हिंदू धर्म से इस्लाम अपनाने वाले लोगों को पिछड़ा वर्ग मुस्लिम यानी BCM कोटे के तहत आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने मूल धर्म की जाति के आधार पर धर्म बदलने के बाद आरक्षण का दावा नहीं कर सकता। अदालत के मुताबिक आरक्षण का ये लाभ जन्म आधारित सामाजिक समूहों के लिए है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि मॉनसून की विदाई के बाद भी अचानक दिल्ली समेत उत्तर भारत में ये झमाझम बारिश क्यों हो रही है? मौसम में आए इस अचानक बदलाव के पीछे की असली वजह है वेस्टर्न डिस्टरबेंस। इसकी वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है।

0: आज हमने पंचायत आज तक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव का खास इंटरव्यू किया है, वो भी आपको दिखाएंगे।
1: क्या प्रदर्शन करने वालों को अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है तो आम नागरिक को फ्री पैसेज का अधिकार नहीं है?
0: क्या ये विरोध आंदोलन सरकार को घेरने में कामयाब नहीं हुए?
1: उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कार्रवाई का प्रावधान है।
0: पर चुनाव आयोग ये करेगा?
1: नहीं, क्यों नहीं करेगा? करना चाहिए।
0: कर रहा है,
1: करना चाहिए।
0: मुख्यमंत्री जी, गहलोत जी की शिकायत है, वो कह रहे हैं कि आपने फाउल खेला है।
2: गहलोत साहब का दर्द है वो दूसरा दर्द है।
0: कौन सा?
2: उनका दर्द है कि वो अपने बाढ़ से भी हार गए।
0: लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि एसआईआर, चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार पर छिड़ी राजनीतिक लड़ाई संसद और सड़क के बाद सुप्रीम कोर्ट में कहां तक पहुंचेगी और क्यों विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट मार्च पर आज अदालत को ये कहना पड़ा कि उसे कोई धमका नहीं सकता। देखिए,
3: ये तस्वीरें 12 अक्टूबर के उसी सुप्रीम कोर्ट मार्च की हैं, जिस पर अब सर्वोच्च अदालत ये सवाल पूछ रही है कि इस भीड़ को सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठा करने के पीछे क्या मंशा। विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस ने 12 अक्टूबर के पैदल मार्च को एक बड़ी सफलता बताया था। मार्च में जुटी भीड़ की कई रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की गई और इसके पीछे मकसद यही बताना था कि सरकार के खिलाफ चुनाव आयोग के मुद्दे पर अब लोग सड़कों पर इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है कि अगर लड़ाई राजनीतिक थी तो इस भीड़ को कोर्ट की तरफ क्यों मोड़ा गया।
4: चलो चलो अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर।
5: लेकिन अचानक से जब हम वहाँ खड़े थे कि राहुल गांधी अब आ रहे होंगे, हमारे सामने से उनकी जो ट्रक थी वो निकली, ऊपर से उन्होंने सबको इशारा किया। ठीक हमारे पीछे मल्लिकार्जुन खाड़गे थे, वो खड़े हुए थे। यहाँ पे काफी भगदड़ मच गई क्योंकि कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट किसी तरीके की नहीं थी। हाँ, बल्कि मैं भी खुद बहुत अलग लोगों के साथ वहाँ पे भगदड़ में गिर गए, दब गए हम लोग वहाँ पे।
3: सुप्रीम कोर्ट के परिसर तक पहुंची इस भीड़ और हंगामे को लेकर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कड़े लहजे में कहा है कि कोई भी न्यायपालिका को डरा या दबा नहीं सकता। उन्होंने विपक्षी नेताओं के आचरण पर भी सवाल उठाए और साफ शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को डराने या प्रभावित करने की कोशिशें कमजोर हैं और किसी में ऐसी हिम्मत नहीं है। यानी जिस पैदल मार्च को विपक्षी दल सुपर डुपर हिट बता रहे थे, उसी मार्च को लेकर अदालत ये सवाल पूछ रही है कि क्या उसके परिसर में इस भीड़ को इकट्ठा करके दबाव बनाने की कोई साजिश की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मार्च को लेकर राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और महुआ मोइत्रा को आधिकारिक नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर उनके इस आचरण पर स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि वो मुख्य याचिका पर नोटिस जरूर जारी कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नेताओं के इस बर्ताव को माफ कर रहे हैं। आज ही सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो विपक्ष के आंदोलन और उसके खिलाफ सरकार की रणनीति पर सीधे असर डालेगा। विपक्षी नेताओं ने एसआईआर के खिलाफ जो याचिका दायर की है, उस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का जो फैसला लिया है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का सीधा मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात की गहन जांच करेगा कि सरकार ने जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में डीनोटिफाई करते वक्त सचमुच सुरक्षा कारणों को देखा या उसने ऐसा आंदोलन कर रहे लोगों की आवाज को कमजोर करने के लिए किया। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा है कि नई दिल्ली क्षेत्र और जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में धारा 163 लागू करने के पीछे कौन सी ठोस परिस्थितियां थी, और अदालत ने पत्रकारों और वकीलों की सुरक्षा को लेकर भी एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा है। इनमें भी सबसे बड़ा मुद्दा है पत्रकारों का, जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में काफी बहस हुई। केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि आज के दौर में प्रदर्शन स्थलों पर यह पता लगाना मुश्किल होता जा रहा है कि कौन पत्रकार है और कौन नहीं। खुद दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि 6 से 10 अक्टूबर के बीच हुए प्रदर्शनों को ऐसे लोग हवा दे रहे थे जिन्होंने खुद को फ्रीलांस पत्रकार बताकर आड़ ली हुई थी। यानी अब सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा भी पहुंच चुका है कि कैसे कुछ लोग माइक और कैमरे लेकर पत्रकार बन जाते हैं जबकि वो पत्रकार होते नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: जब जुलाई महीने में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस जनता पार्टी और विपक्षी दलों ने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए आंदोलन किया था, तब सरकार ने प्रदर्शनकारियों और उनके नेताओं पर दर्ज किए गए एक एक मुकदमे को वापस ले लिया था। लेकिन इस बार के आंदोलन में दिल्ली पुलिस और सरकार की यही रणनीति कैसे बदली है और इसे धरपकड़ का नाम क्यों दिया जा रहा है, उसके लिए आप हमारी इस रिपोर्ट को देखिए।
6: ये तस्वीर इसी साल जुलाई में हुए कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष के उस आंदोलन की है जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तब उस आंदोलन में 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, 110 से ज्यादा बैरिकेड्स तोड़े गए, 25 से ज्यादा सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, 50 से ज्यादा शील्ड टूटे, 350 से ज्यादा हेलमेट डैमेज और 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर्स को नुकसान पहुंचा। लेकिन इसके बावजूद उस आंदोलन में सरकार ने न सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार किया बल्कि आंदोलन खत्म कराने के लिए हिंसा के मामलों में दर्ज की गई सभी FIR वापस ली गईं। ये एक ऐसी घटना थी जिसके बाद हर कोई कह रहा था कि इस बार जितने भी लोग आंदोलन करने आएंगे उनमें FIR का खौफ नहीं होगा। लेकिन सरकार और दिल्ली पुलिस ने अपनी रणनीति ऐसे बदली कि अब धड़ाधड़ हर मामले में FIR हो रही है और अब इनकी संख्या 25 से ज्यादा पहुंच चुकी है। अब स्थिति यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके पर FIR दर्ज हो चुकी है। आशुतोष रांका और सौरभ दास 5 दिनों की न्यायिक हिरासत के लिए तिहाड़ जेल भेजे जा चुके हैं। राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। यहां तक कि कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के कार्यकर्ताओं ने जो हंगामा किया उनके खिलाफ भी FIR हो गई। NSUI की जिस महिला कार्यकर्ता ऋतु बराला को राहुल गांधी शेरनी बता रहे थे उनके खिलाफ भी आज FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसके जरिए ये आरोप लगाया जा रहा है कि NSUI की ऋतु बराला ने हिरासत में लिए जाते वक्त लेडी कांस्टेबल चंचल यादव के बाल खींचे थे और उन्हें दाग पारी थी।

0: दिल्ली पुलिस की इस बदली हुई रणनीति को बहुत सारे लोग धरपकड़ का नाम दे रहे हैं। धरपकड़ का मतलब है बिना अनुमति ना तो आंदोलन होगा, ना नारे लगेंगे, ना तोड़फोड़ बर्दाश्त की जाएगी, उल्टा सबकी पहचान करके पुलिस FIR दर्ज करेगी और अपनी कानूनी कार्रवाई को सख्ती से पूरा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी अब वैसा आंदोलन खड़ा कर सकती है जैसा उसने जुलाई महीने में किया था। आशुतोष रांका सौरभ दास की गिरफ्तारी के बाद अभिजीत दिपके ने ऐलान किया कि 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में तिरंगा मार्च निकालेंगे और इस ऐलान के बाद दिल्ली में कैसे हलचल बढ़ने लगी है और क्यों बीजेपी इस आंदोलन के जरिए भारत को बांग्लादेश बनाने की साजिश बता रही है, उस पर ये रिपोर्ट देखिए।
0: ये लगातार दूसरा दिन था जब अभिजीत दिपके को इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ा। आशुतोष रांका और सौरभ दास की गिरफ्तारी के बाद अभिजीत दिपके वामपंथी छात्र संगठन आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा के साथ दिल्ली के प्रेस क्लब में मीडिया से बात करने के लिए आए। मकसद ये बताना था कि CJP के नेताओं पर पुलिस की कार्रवाई और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन को बंद करने के खिलाफ 16 अक्टूबर को लहरा दो तिरंगा नाम का मार्च निकाला जाएगा जिसकी शुरुआत कनॉट प्लेस से होगी। लेकिन नेहा बोरा और अभिजीत दिपके जब इसके बारे में बात करने वाले थे तभी उनका विरोध शुरू हो गया। ये लगातार दूसरा दिन है जब अभिजीत दिपके का इस तरह से विरोध हुआ। इससे पहले कल जब वो मुंबई से दिल्ली लौटे थे तब भी उनके खिलाफ नारेबाजी और हूटिंग हुई थी।
2: क्यों देश को खराब कर रहा है? क्यों से देश को खराब कर रहा है?
3: चोर है, चोर है। देश को खराब है? अरे देश को खराब कर।
2: क्यों देश को खराब कर रहा है? क्यों से देश को खराब कर रहा है?
3: चोर है, चोर है।
2: देश को खराब है?
3: अरे देश को खराब कर।
0: इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जो हो रहा है उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। पहले आरोप लगा कि बेंगलुरु में कॉकरोच जनता पार्टी की रैली फ्लॉप रही और उसमें कई सीटें खाली रहीं। इसके बाद जब 10 अक्टूबर को पार्टी ने जंतर मंतर पर आंदोलन बुलाया था तब भी वो उसमें कामयाब नहीं हुए। पार्टी के वरिष्ठ नेता बिना प्रदर्शन किए ही गिरफ्तार हो गए, जबकि जंतर मंतर पर पहुंचने की कोशिश करने वाले लोगों की संख्या भी 1000 से कम रही। इसके पीछे एक बड़ा कारण पुलिस की सख्ती थी, लेकिन BJP के समर्थक इसी को आधार बनाकर अब ये आरोप लगा रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी से देश का आम युवा कट चुका है।
4: भारत माता की जय।
5: राजस्थान के NSA UNA जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो। आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड।
0: इस तरह के विरोध और पुलिस की सख्ती के बाद अभिजीत दिपके कनॉट प्लेस में कॉकरोच जनता पार्टी का तिरंगा मार्च कितना सफल बना पाएंगे इस पर कई लोगों को शक है। ऊपर से इससे भी बड़ी चुनौती नेहा बोरा का वो बयान बन गया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारत को जेन जी आंदोलन का रास्ता बांग्लादेश ने दिखाया।
6: And we know that the Gen Z movement that we are seeing everywhere in this country first started in Bangladesh. And congratulations to you.
0: नेहा बोरा ने ये बात 13 अक्टूबर को तब कही जब बांग्लादेश में तख्ता पलट करने वाले छात्र संगठनों में से एक सोशलिस्ट स्टूडेंट्स फ्रंट की 6th नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा था और भारत की तरफ से वामपंथी छात्र संगठन की नेता होने के नाते नेहा बोरा भी इसमें हिस्सा ले रही थी। उन्होंने न सिर्फ बांग्लादेश के जेन जी आंदोलन को भारत के आंदोलन के लिए प्रेरणा बताया, बल्कि ये भी कहा कि जैसे बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, ठीक वैसी ही लड़ाई भारत में भी लड़ी जा रही है।
6: We know that the movement that began in Bangladesh was for democratic and voter rights. Today, the movement that the young people are participating in and leading is also a movement for democratic and voting rights. We know that the fight that you fight against religious fundamentalism in your country is also a fight that the Gen Z and the young people of this country fight today.
0: नेहा बोरा के इस वीडियो पर बीजेपी ने कई गंभीर सवाल उठाए और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहा छात्र प्रदर्शन केवल एक मुखौटा है और इनका असली मकसद बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में भी हिंसा फैलाकर तख्ता पलट करना है।
7: ये इंस्पायर्ड है बांग्लादेश के आंदोलन से और जैसा बांग्लादेश के अंदर हुआ ठीक वैसा ही ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हो। ध्यान से

0: ध्यान से देखिए, ये नेहा बोरा के शब्द हैं, परंतु विचार राहुल गांधी के हैं। क्योंकि एक तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे, नेहा बोरा को अप्रोप्रिएट राहुल गांधी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वही नेहा बोरा कह रही है कि भारत के अंदर बांग्लादेश जैसा अराजक जेंजी आंदोलन वो चाहते हैं।
1: नेहा बोरा के इस बयान पर अब बीजेपी राहुल गांधी को भी घेर रही है, जिन्होंने विपक्ष के आंदोलन में उन्हें पोस्टर गर्ल के तौर पर पेश किया। और ये मामला अब इतना बढ़ता जा रहा है कि इसमें अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन की भी एंट्री हो गई है। मैरी मिलबेन का आरोप है कि भारत में चल रहे इन आंदोलनों के लिए सीजेपी को अमेरिका के उन लोगों से फंडिंग मिल रही है जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और भारत के भविष्य के खिलाफ हैं। और उन्होंने अभिजीत दिपके को भी ये खुली चेतावनी दी कि जब वो अपने मकसद में सफल नहीं होंगे तब उन्हें फंडिंग देने वाली यही अमेरिकी ताकतें गर्म कोयले की तरह छोड़ देंगी, क्योंकि अराजकता कभी नहीं जीतती। हालांकि अभिजीत दिपके ने इन दावों पर कड़ा एतराज जताया है और ये लिखा है कि भारत के आंतरिक मामलों में उन्हें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: अब आप ये देखिए कि बॉलीवुड अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान खान को कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के बाद FRRO यानी फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस क्यों थमा दिया।
3: क्या कोई विदेशी नागरिक भारत में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन में शामिल हो सकता है? आमिर खान के भांजे और फिल्म अभिनेता इमरान खान कानूनी पचड़े में फंस चुके हैं। मुंबई पुलिस ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का सख्त नोटिस थमा दिया है। मुंबई में पिछले दिनों अगस्त क्रांति मैदान में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर आंदोलन। इस आंदोलन के बीच अभिनेता इमरान खान भी वहां पहुंचे और पूरी आक्रामकता के साथ इस राजनीतिक प्रदर्शन का हिस्सा भी बने। बेकाबू हालात में मुंबई पुलिस ने 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के साथ इमरान खान को भी डिटेन किया। पुलिस वैन के अंदर इमरान खान ने अपनी पुरानी फिल्म जाने तू या जाने ना के एक सीन को रिक्रिएट करते हुए वीडियो बना लिया। फिल्म के उस डायलॉग घोड़ा चलाना, जेल जाना और किसी को पीटना, इस पर वैन के भीतर हंसते मुस्कुराते हुए रील्स बनाई गई और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया।
4: आप कभी जेल गए हो?
5: आज तक तो नहीं, लेकिन लगता है
4: शायद
5: एक बार तो जाना ही है।
4: शायद जा सकते हैं। और तीसरा क्या था, आपने किसी की पिटाई कभी की है?
5: आज तक
4: वेरी क्लोज, ऑलमोस्ट राठौर, ऑलमोस्ट।
3: सोशल मीडिया के एक वर्ग ने इसे स्टार की बगावत और बहादुरी बताकर शेयर करना शुरू कर दिया, लेकिन वो शायद भूल गए कि कानून की नजरों में ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं बल्कि एक विदेशी नागरिक द्वारा देश के नियमों की सीधी अनदेखी थी। अभिनेता इमरान खान का जन्म अमेरिका में हुआ था। उनके पास जन्म से ही अमेरिकी नागरिकता और अमेरिकी पासपोर्ट है। वो भारत में सिर्फ OCI कार्ड के जरिए रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसे लेकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। OCI कार्ड धारकों को यात्रा, संपत्ति और वर्क परमिट की सुविधा मिलती, लेकिन वो स्थानीय राजनीति या देश के विरोध प्रदर्शनों में कूदकर नियम नहीं तोड़ सकते। इसी गंभीर उल्लंघन पर संज्ञान लेते हुए मुंबई पुलिस ने इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया है और उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश दिया है। इमरान ने नोटिस रिसीव भी कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि अमेरिका के इलिनॉय में एक 19 साल का लड़का हिंदू मंदिर में मास शूटिंग क्यों करना चाहता था, लोगों पर धड़ाधड़ गोलियां क्यों चलाना चाहता था, एक साथ कई लोगों की जान क्यों लेना चाहता था। देखिए,
3: नवरात्रि के पहले दिन अगर इस हमलावर की बंदूक जाम न हुई होती तो अमेरिका में सैकड़ों हिंदुओं का कत्लेआम हो जाता। अमेरिका के इलिनॉय में पुलिस ने 19 साल के इस लड़के को गिरफ्तार किया है। उसका नाम है अलेक्जेंड्रोस पापोराकिस। इसने अरोरा के श्री वेंकटेश्वर

0: स्वामी मंदिर में एक बड़े हमले की कोशिश की थी। ये मंदिर अमेरिका के कुछ सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है। 11 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला दिन था और हर त्योहार की तरह इस दिन भी मंदिर में हजारों लोगों की भीड़ थी। अलेक्जेंड्रोस ने मंदिर पर हमले के लिए इसी दिन को चुना था। वो ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को मारना चाहता था, लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे ही उसने फायर किया उसकी राइफल जाम हो गई। राइफल के जाम होते ही वो घबरा कर भाग खड़ा। पुलिस की जांच में सामने आया है कि अलेक्जेंड्रोस एक नस्लवादी युवा है जो मानता है कि गोरे लोग दूसरी नस्ल और रंग के लोगों से बेहतर। पुलिस को अलेक्जेंड्रोस के पास से कुछ ऐसे दस्तावेज और चीजें मिली हैं जिसके संबंध श्वेत नस्ल को श्रेष्ठ मानने वाले कट्टरवादी संगठनों से जुड़े हैं। इस हमले के बारे में पुलिस को तब पता चला जब अलेक्जेंड्रोस ने हमला नाकाम रहने के बाद अपने एक दोस्त को इस नाकाम हमले के बारे में बताया और बंदूक जाम ना हो उससे जुड़ी जानकारियां मांगी। इसके बाद उसने कुछ तस्वीरें भी भेजी। अलेक्जेंड्रोस की ओर से भेजी गई तस्वीरें देखकर उसका दोस्त डर गया। उसने तुरंत पुलिस को इस पूरी वारदात के बारे में बताया। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली उन्होंने तुरंत इलिनॉय के पैलेटाइन में अलेक्जेंड्रोस के घर पर दबिश दी और वहां से उसे गिरफ्तार किया। पुलिस को उसके घर के अंदर से बड़ी मात्रा में गोलियां और मैगजीन मिली। पुलिस को पता चला कि वो हमले के समय भी कई मैगजीन्स लेकर गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं की हत्या की जा सके। पुलिस के मुताबिक वो हिंदुओं से नफरत करता था, बल्कि अपने कई सहकर्मियों से उसने हिंदुओं के प्रति अपनी नफरत के बारे में बताया भी था। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस और द हिंदू मंदिर एम्पावरमेंट काउंसिल ने अमेरिका के हिंदू मंदिरों को अलर्ट जारी किया है। केस की गंभीरता को देखते हुए इसे FBI को सौंप दिया गया है। ये मामला अमेरिका में हो रहे रंगभेद और हिंदुओं के प्रति हेट क्राइम से जुड़ा है, इसीलिए अधिकारी ये जानना चाहते हैं कि अलेक्जेंड्रोस के दिमाग में ये नफरत किसने भरी और उसकी असली मंशा क्या थी। इसके अलावा अधिकारी ये भी जानना चाहते हैं कि उसके संबंध किन संगठनों से थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका में हिंदुओं के प्रति हेट क्राइम की इस घटना की निंदा की। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में फरार चल रही हाई प्रोफाइल मॉडल श्रद्धा दुबे ने सिर्फ 12 घंटे के भीतर एक के बाद एक 3 वीडियो जारी कर सनसनी फैला दी। नेपाल में छुपकर बैठी श्रद्धा ने कैमरे पर रोते हुए खुद को पूरी तरह बेकसूर बताया। उसने दावा किया कि शिवा ने आत्महत्या की है। वो 50 लाख से ज्यादा के कर्ज में डूबा था और भारी डिप्रेशन में था। आखिर ये पूरी मर्डर मिस्ट्री क्या है, उस पर ये खास रिपोर्ट।
2: लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में अब नए नए पेच सामने आ रहे हैं। शिवा की मौत को लेकर उनकी गर्लफ्रेंड और लिव इन पार्टनर श्रद्धा पर सवाल उठाए जा रहे हैं और श्रद्धा के नेपाल भागने की खबर के बाद ये शक और गहरा हो गया है। श्रद्धा पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है, लेकिन श्रद्धा दुबे ने एक के बाद एक 2 वीडियो जारी करके शिवा शर्मा के कर्ज में डूबे होने की बात कही है और वो शिवा की मौत को हत्या की तरह नहीं बल्कि आत्महत्या की तरह देखने की अपील कर रही है।
3: यही रिक्वेस्ट है कि कुछ भी किसी लड़की के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि मेरा क्या गुनाह है, मैंने कुछ नहीं किया है, और जो कुछ भी सच है शिवा शर्मा कांड से रिलेटेड कि उसकी कोई हत्या नहीं हुई थी, वो एक सुसाइड था, वो मैं आप लोगों से बताने वाली थी, लेकिन मेरी कंडीशन देखिए कि मैं किस कंडीशन में हूँ। मैं ठीक कंडीशन में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी इस समय फिजिकली फिट नहीं हूँ।
2: पिछले 2 दिनों में शिवा शर्मा की मौत के आरोपी श्रद्धा दुबे के 2 अलग अलग वीडियो सामने आ चुके हैं और दोनों ही वीडियो में वो खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश में लगी है।
3: हत्या नहीं थी, वो एक सुसाइड था, ठीक है, मैंने अपनी आंखों से देखा उसको कूदते हुए, ठीक, अगर वहाँ के CCTV कैमरेज निकलेंगे, सब कुछ निकलेगा तो उसमें दिखेगा कि वो किस तरह से कूद रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग परेशान नहीं है, उस वक्त मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरे घर से किसी ने छलांग मार के सुसाइड अटैम्प्ट किया है तो मेरी हालत ख़राब होनी स्वाभाविक है, ठीक है।
2: श्रद्धा दुबे ने शिवा शर्मा की मौत को इस तरह से पेश किया जैसे ये आत्महत्या, लेकिन श्रद्धा के इस नए वीडियो के आने के बाद शिवा शर्मा के भी कुछ वीडियो सामने आए जिसमें श्रद्धा उससे सवाल जवाब करती सुनाई दी है। ये सवाल जवाब गहने चोरी और पैसे लौटाने के दबाव बनाने को लेकर किए जा रहे हैं।
3: पैसे रिटर्न कब करोगे?
4: एक महीने में।
3: अच्छा,
4: तो उसके
5: रिटर्न में दे दे रहा हूं और तब तक के लिए मतलब गाड़ी रख लीजिए जो मेरी है, पैसे देके गाड़ी उठा लूंगा वापस।
4: मेरे यहाँ से कब चोरी की थी, किस टाइम पे की थी, सितंबर में की थी, अक्टूबर में की थी, कब की थी, बहुत बहुत प्यार से पूछ रही हूँ। अभी मैंने पुलिस नहीं बुलाई है, पुलिस इसके बाद बुलाऊंगी, पहले आप बताइए।
5: सितंबर में और हाँ। जब वॉशरूम जा रहे थे
4: मैं वॉशरूम में क्या कर रही थी, टाइम लग रहा था मुझे। हाँ। कितना टाइम लगा था अप्रोक्स?
5: अप्रोक्स 20-25 मिनट लगे थे।
4: 20-25 मिनट लगे थे, तो आपने उसमें से एक साथ ज्वेलरी चुराई थी कि पार्ट में चुराई थी?
5: एक साथ ली था।
4: एक साथ तीन चैने और एक ब्रेसलेट जो आपने कहाँ पे बेचे?
5: चौक में।
4: चौक में किसके हाथ से?
5: चौक में गोल दरवाजे के अंदर बेचा है, ये नहीं पता किस दुकान पे है क्योंकि लड़के ने मुझे लेके गया था और
4: बेच के आपको पैसे दे दिए। तो ये मेरा टोटल पैसा 6 लाख के करीब मुझे कब तक मिल जाएगा?
5: एक महीने के अंदर दे दूंगा।
4: आपकी मम्मी को पता है इस बारे में?
5: नहीं।
4: कि चोरी की है आपने?
5: किसी को नहीं पता।
4: किसी को भी नहीं पता इस बारे में?
5: किसी को नहीं पता।
4: अच्छा, और ये वीडियो मैं दबाव में तो बनवा नहीं रही हूँ भाई, आपने खुद एक्सेप्ट।
2: श्रद्धा दुबे के नेपाल भागने से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें श्रद्धा, उनकी बहन रश्मि और दोस्त आदिल पर शक गहरा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि श्रद्धा का नेटवर्क काफी अच्छा है, जिसकी वजह से उसे पुलिस मूवमेंट की भी जानकारी मिल रही है।
6: थाना हजरतगंज पर नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें कि उन्होंने उनकी एक महिला मित्र हैं श्रद्धा दुबे, उनके सिस्टर रश्मि दुबे, एक ड्राइवर जिसका नाम अभी सामने आया कि वो दानिश जिसका नाम है, और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ उन्होंने उनकी माता जी ने मुकदमा दर्ज कराया हत्या का। और तब से मुकदमा लिखने के बाद से ही ये जो सारे अक्यूज हैं अपने मौके से फरार चल रहे हैं।
2: पुलिस को बहराइच में नेपाल बॉर्डर के पास श्रद्धा की गाड़ी भी बरामद हुई है। इस गाड़ी को लेकर श्रद्धा ने दावा किया था कि वो गाड़ी को अवध ग्रीन अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी करके नेपाल जा रही है। ये वही।
1: और अब आपको त्योहारों पर एयरलाइंस की खुली लूट के बारे में हम बताना चाहते हैं, हम इसे खुली लूट ही कहेंगे। दिल्ली और छठ के मौके पर मुंबई से लंदन जाना, सोचिए दिल्ली से पटना जाना छठ के मौके पर और मुंबई से लंदन जाना, सस्ता पड़ रहा है लंदन पहुंचना छठ के मौके पर। अगर आप पटना जा रहे हैं तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और मुंबई से अगर आप लंदन जा रहे हैं तो उससे कम पैसे लगेंगे। बिजनेस में डिमांड सप्लाई का नियम ठीक है, मजबूरी के वक्त थोड़ा दाम बढ़ाना भी समझ में आता है, लेकिन ये एयरलाइंस जो कर रही है इसे बिजनेस नहीं खुली लूट कहते हैं। जब त्योहारों पर लोग घर जाने के लिए मजबूर हों तो क्या एयरलाइंस उनकी जेब काटेगी? और उड्डयन मंत्रालय हर बार की तरह बस इस लूट को देखता रहेगा, आंखें बंद रहेंगी? देखिए,
7: त्योहार मतलब खुशियों का पैगाम, अपनों के साथ खुशियां मनाने का अरमान। लेकिन जरा सोचिए, अगर घर जाने की इस खुशी पर किसी ने आपकी जेब काटने की तैयारी कर ली हो तो कैसी खुशी। हर साल दिवाली और छठ के वक्त लाखों लोग अपने घर का रुख करते हैं और ये मौका एयरलाइंस के लिए अंधाधुंध कमाई का जरिया बन गया है। 20,000 लोगों पर किए गए लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में आधे से ज्यादा लोगों ने बताया कि उन्हें त्योहारों पर घर जाने के लिए पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुने तक पैसे खर्च करने पड़े। इस खुली लूट का सबसे बेतुका और डरावना गणित देखिए। मुंबई से पटना की दूरी करीब 1500 किलोमीटर है, जबकि मुंबई से लंदन की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर है। लेकिन दिवाली से ठीक एक दिन पहले यानी 7 नवंबर को मुंबई से पटना जाने वाली फ्लाइट का वन वे किराया 25,000 रुपए से ज्यादा है, जबकि मुंबई से लंदन का किराया भी लगभग 25,000 रुपए है। यानी मुंबई से लंदन जाओ या पटना, जेब उतनी ही ढीली करनी पड़ेगी। सिर्फ पटना ही नहीं, बेंगलुरु से पटना का किराया करीब 26,000 रुपए, मुंबई से वाराणसी का 16,000 रुपए और बेंगलुरु से वाराणसी का 17,500 रुपए तक वसूला जा रहा है, जबकि सामान्य दिनों में यही किराए 6 से 9,000 रुपए के आसपास होते हैं। इस पर कुछ लोग तर्क देते हैं कि ट्रेन से सफर क्यों नहीं कर लेते। हकीकत यह है कि कामकाजी लोगों के पास सीमित छुट्टियां होती हैं और त्योहारों के इस सीजन में ट्रेनों में महीनों पहले लंबी वेटिंग लिस्ट हो जाती है। ट्रेन का कंफर्म टिकट मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं होता, और जब इंसान के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता तो वो मजबूरी में अपनी गाढ़ी कमाई हवाई कंपनियों के हवाले कर देता है। तो क्या इस बेलगाम लूट पर कोई रोक नहीं लग सकती? जब नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस त्योहारी सीजन में किराए पर कोई कैप यानी सीमा नहीं लगाई जाएगी और मंत्रालय ने सिर्फ एयरलाइन से किराए वाजिब रखने की अपील की है। सवाल यह है कि विमान कंपनियों की इस बेलगाम लूट पर उड्डयन मंत्रालय कुछ कर क्यों नहीं रहा। हर साल त्योहारों पर यह तमाशा होता है, बहस होती है और लोग जेब कटाकर चुप बैठ जाते हैं। आखिर आम लोगों की मजबूरी का फायदा उठना कब बंद होगा।
1: अब हम आपको केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के इंटरव्यू के कुछ ऐसे अंश दिखाएंगे जिसमें विपक्ष के आंदोलन से लेकर राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को लेकर खुलकर बात की गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रंगीलो राजस्थान कहते हैं। अब रंगीलो राजस्थान के इन रंगों में राजनीति का भी एक बहुत गहरा रंग है और उस रंग में हमने ऐसे ऐसे दिग्गज देखे हैं यहां पर, कहीं पर रानी तो कहीं पर पहलवान। लेकिन उसके बाद एंट्री हुई है भजन लाल शर्मा जी की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और आपकी सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो हमने सोचा, जनता कहती है कि भाई 5 साल वो आते हैं वोट मांगने के बाद, 5 साल कोई पूछता नहीं है उनसे, तो हमने सोचा कि मुख्यमंत्री जी से एक चर्चा के जरिए समझा जाए कि 3 साल में क्या किया और 2 साल में क्या करने वाले। में पहला प्रश्न, गृह मंत्री अमित शाह जी ने पंचायत चुनाव के राजस्थान में जो जीत मिली उसकी अलग से चर्चा की और विरोध प्रदर्शनों के बीच ये हुंकार निकाय चुनाव की चर्चा की और उन्होंने कहा कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये अपनी जगह पर है लेकिन जनता हमारे साथ है। तो देखिए, हमको समर्थन मिल रहा है, आप प्रधानमंत्री से भी मिले हैं तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। क्या बीजेपी अब ये संकेत दे रही है कि विरोध प्रदर्शन सड़क पर हो रहा है लेकिन चुनावी जीत हमारी स्ट्रैटेजी है, हम चुनावी जीत के जरिए उसका जवाब देंगे? और क्या सिर्फ इलेक्शंस पर ही आप लोगों का फोकस रहेगा और ये विरोध प्रदर्शन आपको कितने परेशान करते हैं? माइक उठा लीजिए सर।
8: पहले तो सभी को नमस्कार। अंजना जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के बारे में विषय रखा है, मैं आपको थोड़ा पृष्ठभूमि से ही बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो गांव से जुड़ करके, जमीन से जुड़ करके, जनता से जुड़ करके 24 घंटे दिन के, महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन जनता के बीच में रह करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। देश के अंदर चाहे किसी प्रदेश के अंदर जिनमें हमारा राज्य है, उनमें भारतीय जनता पार्टी अपने काम, कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास के कारण ये सारी बातें करती है।
1: मुख्यमंत्री जी, गहलोत जी की शिकायत है, वो कह रहे हैं कि आपने फाउल खेला है। वो कह रहे हैं कि सरदारपुरा जो उनका इलाका कंस्टिट्यूएंसी है वहां पर, वो कह रहे हैं कि जितनी ये कंस्टिट्यूएंसी थी जहां पर जो ये वार्ड्स थे, वार्ड्स के डिलिमिटेशन में आपने उनका तो सब कर दिया छोटा और जहां जहां पर बीजेपी का समर्थन का था उसको ज्यादा बना दिया। इसी से आपको नंबर आ गया 0.94% का डिफरेंस है वोट में कांग्रेस और बीजेपी के, मतलब बीजेपी सिर्फ 0.94% आगे है वोट में, लेकिन सीट में आप इसलिए आगे बढ़ गए क्योंकि आपने अपने वर्चस्व वाले क्षेत्रों में ज्यादा वार्ड बना लिए और उनके वाले घटा दिए।
8: देखिए, आप अगर उन वार्डों को देखेंगे तो आपको लगेगा पहले परसीमन कैसे था और अब किस तरह था, लेकिन अब इसमें मैं क्या करूं, उनका दूसरा दर्द है। वो
1: क्या?
8: गहलोत साहब का दर्द है, वो दूसरा दर्द है।
1: कौन सा?
8: उनका दर्द है कि वो अपने बाढ़ से भी हार गए। अब उस दर्द को मैं कौन सा मल्लम लगा सकता हूं, आप बताइए।
1: दर्द दिया तो आप ही ने है ना।
8: देखिए, दर्द जनता देती है, कोई नहीं देता है। दर्द जनता देती है, जनता को काम दिख रहे हैं, उनके समय में क्या हुआ था, हर तीन महीने में चुनाव होते थे, आचार संहिता लगती थी। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हर दो साल में पंचायत चुनाव हुए, हर दो साल में निकाय चुनाव हुए, राजस्थान के अंदर हर तीन महीने में आचार संहिता लगती थी, कितना विकास अवरुद्ध होता था, जनता का कितना पैसा लगता था। यह नीति का गहलोत साहब ने यह भी तो देखना चाहिए था।
1: ठीक है, अब इस मुद्दे पर आ जाते हैं कि विरोध प्रदर्शन। अब देश में दिल्ली में जंतर मंतर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सीजेपी वाले यहां जब स्कूल की चेकिंग के लिए आते हैं तो आप ऑर्डर कर देते हैं कि नहीं भाई स्कूल में नहीं जा सकते। वो कह रहे विरोध प्रदर्शन ये सरकार नहीं चाहती है, डिसेंट नहीं चाहती है। जो उनके हां में हां मिला है वो तो ठीक है, जो उनके खिलाफ बोले उन सबको देशद्रोही।
8: देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कभी अपनी सोच को ठीक नहीं किया, जिन लोगों ने राष्ट्र के हित में किस तरह से काम करना चाहिए ये नहीं देखना, अगर आप उन सारे विषयों को छोड़ दें तो सरकार तो कहीं हमारी थी नहीं। अगर वो जाते हैं और गांव वाले अगर किसी का विरोध करते हैं और वहां जाकर के वो बैठते हैं तो इसमें कोई क्या कर सकता है, वो भी तो गांव में है, वो भी तो जैन जी है।
1: गांव के युवा
8: आते हैं और वहां बैठते हैं और गांव के लोग कहते हैं कि हमारी समस्या का हम समाधान करेंगे।
1: लेकिन मुख्यमंत्री जी मिड डे मील देखना है मुझे देखना है कि बच्चों को राजस्थान के स्कूलों में मिड डे मील कैसा मिल रहा है। अभी यूपी में चुनाव है सर, अब आपने किया वहां पर भी यही हो गया है। मिड डे मील हमें देखना है, हमें दिखाना है कि भाई बच्चों को अच्छा, क्योंकि एक अकाउंटेबिलिटी भी होती है ना। हो सकता है कई जगहों पर खबरें आई दाल पानी की तरह, कई मुश्किलें होती हैं उन्हीं बच्चों को, सोचिए उन पर क्या बीतती होगी। जैसे आप कह रहे हैं कि कैमरा लेके कोई घुस गया तो बुरा लगता है,
8: नहीं उसको देखिए, उसके किसी ने माने नहीं है।
1: कैसे कवरेज होगी स्कूल के अंदर की चेकिंग कैसे होगी?
8: नहीं नहीं
1: आप अगर एक, कैसे आया?
8: एक अंजना जी दोनों बहुत अलग अलग हैं। एक कोई देखने के लिए जाए उसमें कोई 50-100 लोग नहीं जाएंगे, 40 लोग नहीं जाएंगे, वो देखने के लिए जाएंगे तो 1-2-3 जाएंगे और वो जाकर के देखेंगे, उसकी जांच करेंगे और उसके बाद वो बताएंगे। लेकिन एक योजनाबद्ध तरीके से 3 दिन फोन पहले कह करके कि मुझे वहां जाना है और वो भीड़ जा रही है, गाड़ियों की लाइन लग रही है, वो वहां जा रही है, वो क्या देखेगा भाई?
1: कानून व्यवस्था, आपके पास गृह मंत्रालय भी है और गहलोत जी जिनके बारे में आप अभी खूब चर्चा कर रहे थे वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय संभालने का टाइम नहीं है, वेंटिलेटर पर कानून व्यवस्था है। 4 इंसिडेंट्स जो वो बार बार कोट करते हैं, एक तो आप ही के बीजेपी के पूर्व विधायक जो भडाना जी की हत्या है, फिर जयपुर में कांग्रेस नेता के घर में दिन दहाड़े लूटपाट जो हुआ, एसडीएम जो टोंक के हैं उन पर जो हमला हुआ, और जो विधानसभा में बार बार बॉम्ब की धमकी आई। वो कह रहे कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा आपसे।
8: देखिए आप कुछ आंकड़े निकालिए, पिछले 5 साल के आंकड़े लीजिए और अब हमारे आंकड़े लीजिए, आपको स्पष्टता आ जाएगी। मैं उन 5 साल वालों पर जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि राजस्थान की कानून व्यवस्था, आप पिछले आंकड़े एक एक आंकड़े उठा लीजिए और हमारे आंकड़े उठा लीजिए, कितने गैंगस्टर होते थे ये राजस्थान की जनता को पता है, कितने लूट फिरौती होती थी गैंगस्टरों के माध्यम से, गैंगस्टर आते थे घटना करके चले जाते थे। हमने कहा कि राजस्थान में या तो गैंगस्टर आएगा नहीं और आएगा तो राजस्थान से जाएगा नहीं, और आज वही है। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो बहुत बड़ी अंतर आपको मिलेगा कि राजस्थान की कानून व्यवस्था में कितना अंतर है। हमारे यहां घटना हुई तो अपराधी तुरंत सलाखों के पीछे जाएगा, तुरंत पकड़ा जाएगा।
1: सब पर हमने स्कूलों सब पर बात कर ली है लेकिन वापस बीजेपी की जो सबसे बड़ी चिंता है उसी पर पहुंचते हैं। आपने उस समय मुझे इनकार कर दिया और कहा कि ज्यादा, इसीलिए मैंने रिसर्च उस पर मंगा लिया। जयपुर जोधपुर कोटा इन कॉरपोरेशंस में कांग्रेस पोल्ड अ टोटल ऑफ 10,34,999 वोट अगेंस्ट द बीजेपीज 10,19,160 वोट, यानी उनके टोटल वोट ज्यादा थे लेकिन वार्ड्स आपके ज्यादा थे जिसमें आपको जीत मिली। और यही आधार बना बनाकर विपक्ष आप पर सवाल खड़े कर रहा है और वो कह रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल है कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी बार बार निकाय चुनाव की राजस्थान की बात कर रहे हैं। अरे हम तो यही कह रहे हैं कि आप फेर कर रहे हैं, कुछ वोट्स हमको ज्यादा मिलते हैं, वार्ड आपको ज्यादा मिल जाते हैं और जो हमारा मुद्दा है वही है कि आप जादू से जीतते हैं, चुनाव आयोग की जादू से हर जगह जीतते हैं और डिलिमिटेशन से।
8: देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं इसकी डिटेल दूं आपको तो मैं आपको भी बताऊंगा। डिटेल आप देखोगे तो आपको लगेगा, आपको लगेगा वोट उनके ज्यादा नहीं है। आप अगर आंकलन करोगे तो निश्चित रूप से आपको निकल करके आएगा कि आंकड़ा क्या है। अगर यही आंकड़ा होता तो वो क्यों इस आंकड़े को देखोगे, पिछली बार उनके कितने बने थे, चाहे पंचायत हो चाहे निकाय हो उनको भी देख लीजिएगा और उसमें हम हमारे कितने मिले थे और हमको कितने मिले थे वो भी देख लीजिए, अगर उसका आंकड़ा आप देखेंगे।
1: ब्रेक के लिए ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: मैं करता हूँ ना,
3: मैं करूँगा।
4: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
2: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
4: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
2: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
4: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हमारे निबर मिस्टर कुमार बात बात पे कार मांगते रहते हैं।
3: वो इन लॉज को लाना है, कार मिल जाएगी।
4: अरे यार कुमार, अब तो अपनी कार ले लो यार।
5: कैनरा व्हीकल लोन से
3: अप टू 90% फाइनेंसिंग,
4: क्विक प्रोसेसिंग
6: एंड नो प्री क्लोजर पेनल्टी।
7: कैनरा व्हीकल लोन, अपनी वाली गाड़ी के लिए।
8: खेती में सिर्फ आज का नहीं, आने वाले कल का भी सोचना पड़ता है। इसीलिए स्वराज प्रोटेक्ट, इसका वर्षा पीटीओ सिर्फ आज नहीं, फ्यूचर के इम्प्लीमेंट्स के लिए भी है तैयार। भरोसा और टेक, मेरा स्वराज प्रोटेक्ट।

0: Look what I can do.
1: Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
2: SBI Celebrations Unlimited. इस festive season को बनाए special car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ.
3: मेरा रुतबा है मेरा signature. मेरा जज्बा है मेरा signature. बेबाक है मेरा signature. Signature finest silver इलायची, a premium product from Dilbar Group.
4: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर.
5: आश्चर्य जनक. एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे. कैसे कदम?
4: Crossbond, super strong.
5: सुपर स्ट्रॉन्ग
4: और मॉइस्चर प्रूफ
6: वारंटी
4: 15 साल की
5: कदम
4: सर प्लीज
5: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ वार्डरोब्स क्रॉसबॉन्ड से ही बनेंगे
7: क्रॉसबॉन्ड एचजीएमआर मैक्स फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग चले वेरी वेरी लॉन्ग
8: हाउस द हॉस्टल सेटल्ड
9: यस मैम रियली
8: नाइस कोई आ रहा है क्या
10: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभा ली अब फिर से थोड़ा रोमांस ले
8: मयंक फॉर रियल
10: वन कैरेट फॉर माय वन ट्रू लव नेचुरल डायमंड रियल लव सॉलिटेयर्स टू रीइग्नाइट योर न्यू सीजन ऑफ लव
11: आपके पास दो ऑप्शंस हैं या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो E3 प्रोडक्ट्स ये रिश्ता लंबा चलेगा

0: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डे सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1,00,000 तक की अमेजिंग डील्स पाओ।
1: यार ड्रिल करना पड़ेगा।
2: ड्रिल? नहीं नहीं, ओनर से पूछना पड़ेगा।
3: इसका नाम क्या रखेंगे?
4: ये भी ओनर से ही पूछ लेते हैं।
5: अरे भाई साहब, कब तक ओनर के डर में रहेंगे? शान से अपने घर में रहिए ना, विद कैनरा होम लोन।
6: टेक्नोलॉजी के मामले में किसान सुनते सबकी हैं, पर मानते सिर्फ उनकी हैं जिन पर सालों से भरोसा हो। इसीलिए स्वराज पोर्टल टेक्नोलॉजी जो दे ज्यादा प्रोडक्टिविटी और बेमिसाल कंफर्ट। भरोसा और टेक, मेरा स्वराज प्रोटेक्ट।
7: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
8: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
9: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
8: विमल बोलो जुबां केसरी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: How's the hostel? Settled?
3: Yes, Mark, really nice.
2: कोई आ रहा है क्या?
4: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभाली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
2: मयंक, for real?
4: One carat for my one true love. Natural diamond, real love, solitaires to reignite your new season of love.
5: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डे सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1,00,000 तक की अमेजिंग डील्स पाओ।
6: आ गया सोमवार और आ गए
7: चकमक चाचा।
6: हाँ चाचा, अखबार भाँच रहे हैं। चल रहा है भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चीचा कब जाएंगे?
8: अरे भैया पुत्र सुतस में हिस्सा हम ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा है, हम अपना मुद्दा उठा चुके पुराने।
6: अच्छा, कब उठाए?
8: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए।
6: अच्छा,
8: हाँ तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग तरह इधर आए तुम लोग से पुलिस आई इधर भागने लगे दन दन दन दन कर गया, ऐसा ये सब नहीं था अपना मामला
6: जी,
8: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
6: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है आपका।
8: टूटा भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे कार्रवाई चलती थी दर्द बिता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर मुद्दा रखे थे हमें, एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
6: अच्छा,
8: और क्या
6: आपका मतलब हम लोग डर जाते हैं?
8: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल, जहाँ पुलिस की सिटी नहीं बची उस भागने लगता।
6: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही है।
8: किधर?
6: चाचा हम खेल गए अब की।
9: यूपी में 27 के चुनाव से पहले बदलते सियासी समीकरण की ये तस्वीर है। अमेठी के गौरीगंज में पार्टी महासचिव स्मृति ईरानी और यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी की मौजूदगी में एसपी के 3 बागी विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और विनोद चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए।
10: कि आप लोगों के मन में चीज होगी, ये लोग काहे समाजवादी पार्टी छोड़ कर चले आए और काहे भारतीय जनता पार्टी में आए, तो हमें बताना चाहते हैं, मुझे गर्व और गौरव की बात है कि मैं उसी कुल में पैदा हुआ हूं जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अवतार लिया था।
9: जिस अयोध्या सीट को लेकर अखिलेश और योगी के बीच जुबानी जंग हुई थी, उसी अयोध्या की गोसाईगंज सीट से अभय सिंह विधायक हैं।
11: तो बहुत पहले शामिल हो गए थे, उनके शामिल होने का कोई मतलब नहीं है, उनके शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी की कोई ताकत बढ़ेगी नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी नुकसान में रहेगी।
9: 27 में सत्ता में आने का दावा करने वाले अखिलेश यादव के लिए यूपी चुनाव से पहले की ये तस्वीर झटके से कम नहीं है।
12: जिनकी अध्यक्षता में 2017 का चुनाव हारी समाजवादी पार्टी, जिनकी अध्यक्षता में पिछला चुनाव भी विधानसभा का हारी समाजवादी पार्टी, उन्हें सपने देखने के पूरे अधिकार है, लेकिन साक्षात सत्य ये है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसके लिए न सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है, बल्कि उत्तर प्रदेश के नागरिक भी इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि सपा का राज मतलब उत्तर प्रदेश के विकास को रोकना।
9: 27 की चुनावी लड़ाई के लिए बीजेपी की व्यूह रचना तैयार है। अमेठी और रायबरेली के अलावा बीजेपी की नजर पश्चिम यूपी में अपने किले को मजबूत करने पर है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आरएलडी 23 दिसंबर को एक बड़ी रैली करने के साथ साथ 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए संयुक्त प्रचार अभियान शुरू कर सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर पीएम मोदी हापुड़ जिले के नूरपुर गांव में एक बड़ी रैली को संबोधित कर सकते हैं। बीजेपी एक्शन में है तो अखिलेश भी खामोश नहीं है। एसपी सुप्रीमो आज दोपहर 1 बजे प्रदेश पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अटकलें हैं कि गोंडा और उसके आसपास के जिले के कई बीजेपी नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने अपने एक संदेश में एसआईआर पर बड़े खुलासे का संकेत भी दिया है।
13: भाजपाइयों की 420 ये हमारे जितने कार्यकर्ता और जनता, भारतीय जनता पार्टी की 420 को नहीं चलने देंगे। 430
9: कुल मिलाकर यूपी में चुनाव से पहले सरगर्मी तेज है, जहां रणनीति के अलावा समीकरण सेट करने की कोशिश की जा रही है। आशीष श्रीवास्तव के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और जो लोग दूसरों के रास्ते में कांटे बोते हैं, उन्हें कभी ना कभी उसी रास्ते पर नंगे पांव चलना ही पड़ता है। नमस्कार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बीजेपी और विपक्ष में जारी है राजनीतिक युद्ध। ज्ञानेश के खिलाफ राहुल की मोर्चेबंदी जारी। पार्टी नेताओं के साथ इंदिरा भवन में बैठक। बीजेपी का आरोप, विदेशी हाथों में खेल रहे हैं राहुल। अंकिता भंडारी के परिजनों से कल रात मिलने के बाद आज राहुल ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। दुष्यंत गौतम की नियुक्ति पर उठाए सवाल, कहा सरकार के इस निर्णय से स्तब्ध हूं। दिल्ली में कल प्रदर्शन के पहले आज दीपिका का केंद्र पर हमला, कहा एक देश एक पार्टी इनका उद्देश्य। प्रशांत भूषण बोले सत्ता परिवर्तन के लिए हमारी लड़ाई। पंचायत आज तक राजस्थान में, बोले मुख्यमंत्री भजन लाल तेजी से विकास कर रही है डबल इंजन की सरकार। पेपर लीक को किया सील, ड्रग तस्करों पर की कार्रवाई। और प्रयागराज में सीएम योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा माफिया के सामने घुटने टेक मौन रहती है एसपी सरकार, अब माफिया मुक्त हो गया है यूपी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक। अगर आप देख रहे हैं दस्तक, और आज दस्तक में बात सीजेपी के प्लान 16 अक्टूबर की। एक तरफ अभिजीत दिपके ने कल क्लॉट ब्लेस के सेंट्रल पार्क पर तिरंगा यात्रा का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ दिपके ने नेहा बोरा, एक्टर प्रकाश राज और सीनियर वकील प्रशांत भूषण के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें सीईसी ज्ञानेश कुमार है उस पर हमला बोला। तो सौरभ दास और आशुतोष रंका की गिरफ्तारी को लेकर भी दीपके ने सवाल उठाए, जबकि राहुल गांधी ने भी यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और कांग्रेस सेवा दल के साथ चाय पर चर्चा की। तो आइए हम आपको दिखाएं कि कल का प्लान क्या है।
1: जंतर मंतर बंद, अब कनॉट प्लेस पर जुटेगी सीजेपी। 16 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा। दीपके का ऐलान, चाहे जेल में डाल दो, तिरंगा लहरा कर रहेंगे। राहुल गांधी की चाय पर चर्चा, सीईसी के खिलाफ सरप्राइज प्लान। 16 अक्टूबर को क्या होगा, कौन कौन कनॉट प्लेस पर जुटेगा।
2: सौरभ और आशु को बस तिरंगा लहराने के लिए जेल में डाला गया है, तो मैं सभी देशभक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग तिरंगे से प्यार करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 16 अक्टूबर को शाम को 5 बजे आप सब सेंट्रल पार्क कैनॉट प्लेस में आइए तिरंगे के साथ। वहां पर हम अपना तिरंगा लहराएंगे और हम बता देंगे कि वेविंग अ तिरंगा इज नॉट अ क्राइम। हो सकता है इसके बाद मुझे भी जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। मेरा तिरंगा मेरा प्राइड है और उसे मैं लहरा कर ही रहूंगा।
1: 16 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस पर कॉकरोच जनता पार्टी की कॉल के बाद दो बड़ी पिक्चर सामने आती हैं। नंबर एक, अभिजीत दिपके दिल्ली के प्रेस क्लब में आयशा अध्यक्ष नेहा बोरा, एक्टर प्रकाश राज और सीनियर वकील प्रशांत भूषण के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। नंबर दो, राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल के साथ चाय पर चर्चा की। अब सवाल ये है कि 16 अक्टूबर को वो होने जा रहा है जो 10 अक्टूबर को ना हो सका, क्योंकि 10 अक्टूबर को जब कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया, तो पूरी दिल्ली किले में तब्दील कर दी गई थी और सीजेपी के अभिजीत दिपके, सौरभ दास और आशुतोष रंका को फ्लाइट के अंदर से ही हिरासत में ले लिया गया था।
3: पूरी दिल्ली आपने ठप कर दी, रेलवे बंद कर दिए, मेट्रो बंद कर दिए, दिल्ली को एक बॉर्डर बना दिया आपने, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर जैसा बना दिया। सारे फोर्सेस दिल्ली में अपने बुला ली, सारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को घसीटा, ऑपोजिशन को घसीटा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को सड़कों पर घसीटा, एक ज्ञानेश कुमार के लिए इतना क्या।
1: 10 अक्टूबर को जब सीजेपी जंतर मंतर की सुरक्षा को भेजने में नाकाम हुई, तो 3 दिन बाद यानी 13 अक्टूबर को सीजेपी के नेता सौरभ दास, आशुतोष रंका और अजिंक्य शिंदे हाथ में तिरंगा लेकर किसी तरह से सुरक्षा को भेद कर जंतर मंतर तक पहुंच जाते हैं।
4: इस्तीफा ज्ञानेश कुमार का जंतर मंतर पर ही होगा, जो उखाड़ने उखाड़ लो।
5: जंतर मंतर डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है एंड वी विल गेट द रेजिग्नेशन ऑफ ज्ञानेश कुमार फ्रॉम जंतर मंतर।
1: इसके बाद आशुतोष रंका और सौरभ दास को तो दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने 5 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। अब अभिजीत दिपके ने 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क पर तिरंगा यात्रा का ऐलान कर दिया है।
3: हर घर तिरंगा कहते थे ये लोग, कल आशुतोष और सौरभ को तिरंगा लहराने के लिए इन लोगों ने उठा लिया। तिरंगा लहराना इस देश में कब से वॉल्यूशन ऑफ लॉ हो गया, वॉल्यूशन ऑफ पीस हो गया। जहां तक मुझे याद है, इस देश में तिरंगा लहराने पर तब पाबंदी थी जब ये देश कॉलोनियल रूल में था, जब इस देश पर अंग्रेजों का राज था।
1: बड़ी बात यह है कि जब सौरभ दास और आशुतोष रंका तिहाड़ में हैं, तो सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके, आयशा की अध्यक्ष नेहा बोरा, एक्टर प्रकाश राज और सीनियर वकील प्रशांत भूषण के साथ ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलने आए हैं।
6: हिंदी की एक कविता है, रश्मि रवि नाम है उसका। उस कविता की 2 पंक्तियां हैं, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। ये पूरा मूवमेंट इस बात का सबूत है कि ये जो वोटर अधिकार की जद्दोजहद है, वो किसी इंडिविजुअल की नहीं है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, किसी बैनर, किसी झंडे की वो मूवमेंट नहीं है। ये मूवमेंट हिंदुस्तान के आम गरीब घरों में जिंदा है।
1: आपको बता दें कि राहुल गांधी भी आशुतोष डांका और सौरभ दास की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठा चुके हैं। राहुल ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध में तिरंगा लहराना जुर्म नहीं है, इसके लिए युवाओं को जेल भेजना कायरता है। स्टूडेंट्स, युवा, पत्रकार, इंडिया ब्लॉग, अलग अलग बैनर, लेकिन मकसद एक, सभी विरोध एक है। जंतर मंतर भारत के लोगों का है, हम इसे वापस लेंगे। इधर सीजेपी का 16 अक्टूबर वाला प्लान तैयार है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और कांग्रेस सेवा दल के साथ चाय पर चर्चा करके आगे की रणनीति सेट कर दी है।
7: प्रियंका जी भी थी, खड़गे जी थे, केसी जी थी, और सभी ने अप्रिसिएट किया, सभी ने बताया कि ये आपकी राजनीति में क्लासेस चल रही है, जो संघर्ष ही जाया नहीं जाएगा।
8: राहुल जी ने आज जो हौसला दिया है एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के वर्कर्स को, उस हौसले के बाद तो अब डेली हम सरकार डगमगाएंगे, डेली सड़कों पर दिखेंगे।
9: नहीं, उन्होंने हम सब लोगों को मोटिवेट किया कि आप सब लोग संघर्ष करो, आप सब लोग लड़ो।
10: और राहुल जी ने एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि बोले कि हर दूसरे तीसरे दिन एक नया मतलब स्टैंडिंग जो है वो निकल करके सामने आएगा और आप बहुत मजबूती से मैदान में खड़े रहो, ये लोग बहुत कम।
0: राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार और सरकार को घेरने के लिए आगे की रणनीति बना रहे हैं। दिपके ने कल कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क पर तिरंगा यात्रा के लिए तैयारी कर ली है, तो एनडीएमसी ने 16 और 17 अक्टूबर को यानी कि कल और परसों सेंट्रल पार्क बंद करने का ऐलान कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, आज प्रशांत भूषण ने दीपके के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार बदलनी होगी।
1: लेकिन सीजेपी की कॉल के बाद कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से लेकर इर्द गिर्द सुरक्षा बढ़ा दी गई है, नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
11: ये देखना होगा कि कल का जो कॉल है वो कांग्रेस जनता पार्टी कैसे ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करती है। हालांकि उन्होंने कहा है लोगों को इकट्ठा होने के लिए, लेकिन जैसा हमने पहले देखा है वैसी कुछ तस्वीरें कल को भी देखने को मिल सकती हैं कि आसपास इतनी भारी संख्या में सिक्योरिटी तैनात होगी कि कोई भी यहाँ इकट्ठा, किसी का भी यहाँ इकट्ठा होना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा।
1: दीपके के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत भूषण ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। जी हाँ, प्रशांत भूषण ने कहा कि सिविल सोसाइटी और युवाओं के नेतृत्व में लोकतंत्र को बचाने और सरकार बदलने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी।
12: स्टूडेंट्स को और यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को ये श्रेय देते हैं और उनकी अगुवाही में ये लड़ाई लड़ी जाएगी। वो हमारे लीडर होंगे और उनकी अगुवाही में सारी सिविल सोसाइटी मिलकर, पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर, सब ये लड़ाई लड़ेंगी हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए और रेजिम चेंज के लिए। ये मैं आज खुले तौर पर कह रहा हूँ, यहाँ ये रेजिम चेंज की लड़ाई है और हम लोग रेजिम चेंज करा कर रहे हैं।
1: प्रशांत भूषण सरकार बदलने की बात कर रहे हैं तो दीपके ने ज्ञानेश कुमार पर अटैक करते हुए 2024 में लोकसभा चुनावों पर भी सवाल उठा दिया है।
3: 2024 में इंडिया अलायंस और एनडीए का जो मार्जिन था विक्ट्री और डिफीट का, दैट वाज जस्ट 2%। पिछले दो सालों में 13 करोड़ से ज्यादा वोट डिलीट हुए। 2024 के रजिस्टर्ड वोटर्स से हम देखा जाए तो दैट 13 करोड़ वोटर्स मेक अप टू 14% ऑफ द वोट शेयर। जहां पर इलेक्शन बस 2% में डिसाइड हो रहा है, वहां से आप 14% वोट डिलीट कर रहे हो।
1: तो अभिजीत दीपके बेंगलुरु के मंच का जिक्र करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त पर एक और सवाल उठाते हैं।
3: प्रकाश सर के साथ में बेंगलुरु गया था, वहां पर मैं स्टेज पर बहुत ही एक मिरेकुलस चीज हुई, एक इट वाज, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा ये असलियत में कैसे हो सकता है। उस स्टेज पर मुझे ऐसे लोग मिले जो मरे हुए थे, राइट सर, मरे हुए लोग थे, मरे हुए लोग मेरे साथ खड़े हुए थे स्टेज पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, जिनको ज्ञानेश कुमार के इलेक्शन कमीशन ने डेट डिक्लेयर कर दिया था।
1: अब 16 अक्टूबर को क्या होगा, हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में सीजेपी के प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। मौसमी सिंह के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
0: आपने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी का प्लान 16 अक्टूबर देखा और अब हम आपको उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के राजनीतिक दांव के बारे में बताते हैं। यूपी का चुनाव सीएम योगी की हैट्रिक या फिर अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी का चुनाव है। दोनों ही नेताओं ने चुनावी दंगल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही नेताओं में चैलेंज पॉलिटिक्स को लेकर जुबानी युद्ध छिड़ा हुआ है।

0: योगी और अखिलेश की जुबानी टक्कर।
1: उन्हें यही फैसला लेना चाहिए, उनके बीच में अगला चुनाव लड़ना चाहिए।
0: वार और पलटवार, सियासत है धुआंधार।
2: पीडीए पीडीए चिल्लाते थे ये राज्यसभा के टिकट में, वो पीडीए कहाँ चला गया था।
0: 403 सीटों की लड़ाई, चुनावी पारा है हाई। 2027 का चुनाव, हर दिन नए नए दाम।
3: और जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं।
4: आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं। लड़ाई चेलों से क्यों, लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए।
0: विधानसभा चुनाव से पहले 10 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव को योगी और अखिलेश की अग्नि परीक्षा से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन चुनावी लड़ाई में 3 के बजाय 2 उम्मीदवार उतारकर अखिलेश पहले राउंड में पिछड़ गए। दूसरे राउंड में अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया। ऐलान किया कि सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं। योगी ने नेहले पर दहला चला, चुनौती स्वीकार कर ऐलान किया कि अयोध्या में सीधा मुकाबला उनके और अखिलेश यादव के बीच होना चाहिए और वो तैयार है। वहाँ भी अखिलेश यादव का सियासी दांव उल्टा पड़ा, लिहाजा अखिलेश को डैमेज कंट्रोल का गियर लगाना पड़ा। ऐसे में 2027 की लड़ाई को लेकर सियासी पारा हाई है। सवाल यही है कि 2027 में योगी के सिर फिर सजेगा ताज या फिर 10 साल के बाद अखिलेश की सत्ता में वापसी होगी।
5: लेकिन जन आक्रोश के सामने भारतीय जनता पार्टी नहीं चलेगी। बाई इलेक्शन में तो 420 ही चल सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 403 में 420 ही नहीं चलने देंगे। पीडी के लोग डट करके मुकाबला करने काम करेंगे और भाजपाई हारेंगे भी और भागेंगे भी इस बार।
6: उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के चुनाव ने बता दिया है कि विधानसभा का चुनाव परिणाम क्या होने जा रहा है। ये लड़ाई 80-20 की फिर आ गई है, 80% एनडीए में और 20% पीडीए में, और पीडीए का क्या हाल होने वाला है ये आपके सामने फिर आने वाला है।
0: बीते दिन समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए तो 24 घंटों के अंदर समाजवादी पार्टी के कुनबे में कई नेताओं को शामिल किया गया, जिसमें कई बीजेपी छोड़कर साइकिल पर सवार हुए हैं। मतलब सिर्फ जुबानी जंग नहीं बल्कि हर मोर्चे पर सीधी टक्कर जारी है।
5: वो हारने जा रहे हैं, वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए प्रहरी पीडीए समाज जुड़ गया है। ये लोग पीड़ा दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, और वहीं प्रेम दया का अपनापन का समाजवादी पार्टी लोगों को जोड़ने का काम कर रही है।
4: अगर इनका वास्तविक चेहरा देखना हो तो अभी राज्यसभा में आपने देखा होगा, ये पीडीए पीडीए पीडीए चिल्ला रहे थे। पूछो तो राज्यसभा में इनको प्रत्याशी बनाने थे तो एक अपने चचा जान को बना दिए और दूसरा मुंबई के धन्ना सेठ को बना दिए। एक भी दलित नहीं, एक भी वंचित नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, एक भी फॉरवर्ड नहीं, कोई मतलब नहीं। अरे चलो इन पे विश्वास नहीं था तो कम से कम मुसलमानों को ही बना देते प्रत्याशी, लेकिन नहीं बनाया उनको भी।
0: अखिलेश ने पीडीए के फॉर्मूले से 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को पछाड़ा था। इसी चुनावी मंत्र पर अखिलेश 2027 में जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो वहीं अखिलेश के पीडीए पर तंज करते हुए सीएम योगी ने इसे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करार दिया। चाहे अखिलेश हो या फिर योगी, दोनों अपनी अपनी जीत की भविष्यवाणी करने में पीछे नहीं है।
5: इधर देखने को मिल रहा है कि जब जनता में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, भारतीय जनता पार्टी जब जनता के बीच में कमजोर होती दिख रही है उस समय वो इलेक्शन कमीशन के पीछे छिप जा रही है और इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के इस भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को और भारत के नागरिकों को धोखा दे रहे हैं।
6: आश्चर्य है कि चुनाव जीते तो इनका पुरुषार्थ और हारे तो ईवीएम दोषी। इलेक्शन कमीशन दोषी।
0: हर दिन यूपी के सियासी दंगल में योगी और अखिलेश के बीच वार पलटवार का खेल जारी है। अखिलेश राम मंदिर में दान की चोरी को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरते हैं तो योगी राम भक्तों को अखिलेश से सावधान रहने की सलाह देते हुए नजर आते हैं।
5: देखिए धर्म अधर्म, अधर्मी कौन है वो हारेगा, झूठ बोलने वाले हारेंगे, जनता को दुख देने वाले हारेंगे और जिन्होंने करोड़ों श्रद्धालुओं का चढ़ावा रामधन की चोरी की वो हारेंगे, भगवान स्वयं हरवाएंगे उन्हें।
4: रामद्रोही इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? याद करिए, ये रामद्रोही इसको स्वीकार कर ही नहीं सकते और इसलिए वे कुछ न कुछ युक्ति जरूर निकाल करके अयोध्या को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ते।
0: योगी ने राम मंदिर के नाम पर धर्म याद दिलाया तो अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी का धर्म। वहीं योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताते हैं, लेकिन अखिलेश यूपी की कानून व्यवस्था पर उठे सवालों से पलटवार करते हैं।
6: क्या माफिया जिस जमीन पे पैर रख लिया वह तीक की हो गई, अशरफ की हो गई, और अब जिस जमीन पर सरकार ने कहा कि ये माफिया की नहीं, ये गरीब के लिए आसियाना बनना है, तो माफिया की सिट्टी पिट्टी गम वहां पे बहुमंजिला आवासीय सुविधा उपलब्ध करवा करके हम गरीब के लिए मकान की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं।
5: यूपी सरकार कस्टोडियल डेथ में नंबर वन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन से सबसे ज्यादा यूपी सरकार को नोटिसेस मिले हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कई ऑब्जर्वेशंस में कहा कि यहां की पुलिस पॉलिटिकल काम कर रही है, यहां की पुलिस प्रशासन न्याय नहीं दे रहा है, और यहां तक कहा कि पुलिस को क्या खत्म कर दिया जाए। सोचिए, पुलिस को भंग कर दिया जाए, विभाग ही खत्म किया जाए क्या?
0: मतलब साफ है कि यूपी चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे कानून व्यवस्था, अयोध्या, वोट चोरी और तुष्टीकरण के मुद्दों पर जुबानी तकरार और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। देखना यही है कि यूपी के वोटरों पर ये मुद्दे कितना असर डालते हैं। दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे हैं, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा।
7: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे ईरान पर ट्रंप गिराएंगे महाविनाशक बॉम्ब। क्या है पूरा प्लान, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
3: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
4: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
5: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
6: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
5: क्या?
6: इनकी राय।
7: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेट, निर्माण का रियल हीरो।
8: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है।
9: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
8: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायफ्री जूस।
10: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुनो।

0: विश्राम।
1: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
2: एक हिंट तो देते।
3: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
4: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं, पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
5: इट्स अ माय वे।

0: जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।
1: हमारा प्रयास है कि लद्दाख में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो और यहां के पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा जाए। इस एयरपोर्ट टर्मिनल से लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर को भी नई एनर्जी मिलेगी। मैं इस आधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए सभी लद्दाख के मेरे भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जिन अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है उनका भी बहुत महत्व है। आज निम्मू पद्म दारचा सड़क लद्दाख के लोगों को समर्पित की गई है। इस पर करीब 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जिस सफर में पहले करीब 12 घंटे लगते थे, अब वो लगभग 3 घंटे में पूरा हो सकेगा। यानी इससे यात्रा का समय तो बचेगा ही, इस रोड से व्यापार और कारोबार को भी बहुत मदद मिलेगी। साथियों, पहले मुझे श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाली पावर ट्रांसमिशन लाइन के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिला था। आज हानू की जल विद्युत परियोजना और उससे जुड़ी ट्रांसमिशन लाइन का भी लोकार्पण हुआ है।

0: मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती हूँ।
1: शिवा शर्मा की लाल डायरी में दर्ज है गुनाह के सबूत। उस डायरी में दर्ज है अपने ऊपर हुए जुल्म की एक एक दास्तान। मॉडल श्रद्धा दुबे शिवा शर्मा को टॉर्चर करती थी, उसे धमकाती थी, जेल भिजवाने की धमकी देती थी, बंधक बनाकर रखती थी, और ऐसे कई इल्जाम शिवा शर्मा की मां ने श्रद्धा पर लगाए हैं। उनका दावा है कि शिवा ने श्रद्धा के हर गुनाह का लेखा जोखा अपनी लाल डायरी में लिख रखा है। वो डायरी अब पुलिस के पास है और जांच का अहम हिस्सा है। आखिर क्या है उस डायरी में? जानकारी के मुताबिक डायरी में शिवा ने श्रद्धा दुबे की ओर से की गई कई चैट का जिक्र किया है, जिनके जरिए कथित तौर पर उसे प्रताड़ित किया जाता था। श्रद्धा किस तरह शिवा पर दबाव बनाती थी, इसका भी उल्लेख है। डायरी में श्रद्धा से जुड़े सनी, आदिल समेत कई लोगों के नाम दर्ज हैं। श्रद्धा की ओर से पैसे की मांग करने और होटल शोरूम खोलने के लिए दबाव बनाने का भी जिक्र है। शिवा को जबरन दिन रात बुलाने, प्रताड़ित करने और मारपीट के जाने की बात भी डायरी में लिखी है। श्रद्धा को लेकर आरोप ये भी है कि उसके कई गैंगस्टर से संबंध थे। ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। इस तस्वीर में श्रद्धा अभिषेक सिंह उर्फ बाबू सिंह नाम के गैंगस्टर के साथ दिख रही है। अभिषेक सिंह 2020 के अपहरण के मामले में गिरफ्तार भी हो चुका है। अब ये वीडियो देखिए, इसमें दूसरे गैंगस्टर के साथ श्रद्धा दुबे दिख रही है। इस गैंगस्टर का नाम जुल्फिकार है, जो जेड कंपनी नाम का गैंग चलाता है और ये फिलहाल मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है। खुलासे के मुताबिक ऐसे ही गैंगस्टर से श्रद्धा दोस्ती करती थी, फिर उसके नाम और नेटवर्क का इस्तेमाल धौंस जमाने के लिए करती। इनामी बदमाश ऋषभ राय के साथ भी श्रद्धा दुबे की एक तस्वीर सामने आई है। ऋषभ राय वही आरोपी है जिसने शिवा शर्मा को धमकी दी थी। उसका धमकी वाला ऑडियो पहले वायरल हुआ था। वैसे शिवा शर्मा की मौत से ऋषभ का क्या कनेक्शन है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। हत्या का आरोप लगाते हुए शिवा की मां ने FIR दर्ज कराई है, जिस पर जांच जारी है। अंकित मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
2: डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
2: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
2: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
1: कितना घटिया था यार तुम्हारा। घटिया तरीके से पढ़ा।
2: लप लप लप।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: स्वागत एक बार फिर से आपका, आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। और अब खबर ईरान पर सबसे बड़े हमले के अमेरिकी प्लान की। अमेरिकी राष्ट्रपति मिड टर्म चुनाव से पहले या फिर चुनाव के बाद ईरान पर हमले के लिए मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार प्लान ईरान के एटमी सेंटर और पावर प्लांट को निशाना बनाने का है। यह दावा लीक रिपोर्ट के आधार पर किया गया। ईरान पहले ही आरोप लगा चुका है कि ट्रंप को मिड टर्म चुनाव में हार का डर सता रहा है। उसी डर के कारण ट्रंप ईरान के खिलाफ नए हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह नया प्लान बनाया, लेकिन हमला हुआ तो ईरान भी पलटवार करेगा ही।

0: ईरान पर विध्वंसक हमले का नया प्लान लीक। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिराने की तैयारी है। मिड टर्म चुनाव से पहले ईरान पर होगा हमला। सर्वशक्तिमान बम से तबाही मचाने का प्लान। अमेरिकी सेना तैयार, ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार। क्या महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू। युद्ध जीतने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने तमाम सैन्य विकल्पों को आजमाया। ईरान पर भीषण बमबारी की, ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, ईरान की नाकेबंदी की, लेकिन ईरान की सैन्य रणनीति के आगे अमेरिकी राष्ट्रपति का ऑपरेशन ईरान अधूरा रह गया। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध में अपनी जीत और ईरान की हार का दावा करते नहीं थकते, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत भी ईरान को युद्ध में हराने में नाकाम रही। हालात ये हैं कि हुर्मुज पर ईरान का कब्जा है, लाल सागर पर हूतियों की मिसाइलों का डर है, मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे पुराना सहयोगी यानी सऊदी अरब हूतियों की मिसाइलों का कहर झेल रहा है। हालत यह है कि ईरान युद्ध आज अमेरिकी राष्ट्रपति का सबसे बड़ा सिर दर्द है। उन्हें युद्ध के चलते मिड टर्म चुनाव में हार नजर आ रही है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ नए हमलों को लेकर कई सैन्य विकल्पों का प्लान तैयार किया है। सेना के टॉप अफसरों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को कई सैन्य विकल्प सुझाए हैं, जिनमें मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स यानी GBU-43B शामिल है। नए प्लान के मुताबिक मिड टर्म चुनाव से ठीक पहले या बाद में ट्रंप विनाशकारी बम के इस्तेमाल का आदेश दे सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान के खिलाफ नए सैन्य ऑपरेशन को ट्रंप एक बार फिर हरी झंडी दिखाते हैं तो शक्तिशाली बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमला ईरान के पावर प्लांट और परमाणु सेंटरों पर किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ईरान के साथ युद्ध में पहली बार अमेरिकी शस्त्रागार के सबसे बड़े गैर परमाणु बम का इस्तेमाल होगा। सीएनएन की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ट्रंप ने सेना को ईरानी ठिकानों के खिलाफ नए हमले की तैयारी का आदेश दिया है। मतलब ये हमला सेंटकॉम करेगा और इसके संकेत कुछ दिनों पहले ईरान के करीब बढ़ाई गई सैन्य तैनाती से मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान पर नए हमलों के जरिए ट्रंप अपने नागरिकों के बीच ये नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं कि जीत अमेरिका की हुई, क्योंकि ईरान युद्ध के चलते अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार लुढ़कता जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान के साथ दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए समाधान निकालने के कोई संकेत नहीं है।
1: Their economy is in ruins. They have inflation like no other country anywhere in the world. And the man who left the other day said, "I'm leaving because our country is finished." That's what he said. I don't know. I don't take anything for granted, but they're not doing well. And thanks to the men and women of America's armed forces, dozens of Iran's terrorist leaders have been blown out of existence and straight through to the gates of hell. As you know, their leaders are gone. Their second group of leaders are gone. And the biggest problem I have is nobody knows who the hell is running the country. Nobody knows.
0: कई महीनों से ट्रंप और उनके सलाहकार उन विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं जो युद्ध का निर्णायक अंत कर सकते हैं। ट्रंप को भी पता है कि उनके दावों के बावजूद अमेरिका छोड़िए दुनिया का कोई भी मुल्क मानने को तैयार नहीं है कि ईरान ने सरेंडर कर दिया। उल्टा ईरान ने अमेरिका के नाम एक नई चेतावनी जारी की है। ईरान के खिलाफ नया युद्ध शुरू करना अमेरिका के लिए तर्कहीन होगा, लेकिन इस तरह के हमले की संभावना बनी हुई है क्योंकि ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले एक उपलब्धि हासिल करने की जरूरत है। ईरान किसी भी नए आक्रमण का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। इस बार अमेरिका के लिए परिणाम कहीं अधिक गंभीर होंगे। ईरान ने 40 दिनों के युद्ध के दौरान मुख्य रूप से अपने पुराने हथियारों पर भरोसा किया था, लेकिन तब से उसे कहीं अधिक उन्नत हथियार प्राप्त हो गए हैं। अगर अमेरिका बड़े हमले की तैयारी में है तो ईरान भी पलटवार के लिए तैयार है। लिहाजा ट्रंप विनाशकारी बम गिराने का आदेश देते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि युद्ध की आग में पूरा मिडल ईस्ट झुलस सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का प्लान ईरान के उन एटमी सेंटर को निशाना बनाने का है जो जमीन के काफी नीचे अंडरग्राउंड हैं। माना जा रहा है कि पिकैक्स माउंटेन पर मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल मानते हैं कि पिकैक्स माउंटेन के अंडरग्राउंड ठिकाने पर ईरान एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अमेरिका के सैन्य अफसरों को संदेह है कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के इस्तेमाल के बाद भी एटमी ठिकाना पूरी तरह तबाह होगा या नहीं। वैसे पिकैक्स माउंटेन पर हमले की धमकी ट्रंप पहले भी दे चुके हैं।
1: Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon. A lot of people don't call it a war. I call it a military conflict because it's small potatoes for us. It's not a big thing.
0: CNN की रिपोर्ट के मुताबिक मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स की विध्वंसक क्षमता के बावजूद अमेरिकी सैन्य अफसर खुद मानते हैं कि हमले के बाद एटमी सेंटर पूरी तरह तबाह हो जाएगा कहना मुश्किल है। ऐसे में ट्रंप अगर दोबारा हमले का आदेश देते हैं तो इसका मकसद सिर्फ ईरान को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि ट्रंप को इस युद्ध से निकलने का रास्ता देना है। दरअसल ट्रंप एक ऐसा रास्ता चाहते हैं जिसे ईरान के खिलाफ अपनी जीत के तौर पर अमेरिकी नागरिकों के सामने पेश कर सके। आखिर मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स क्या है, समझिए। इसे GBU-43B ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बम कहा जाता है। ये अमेरिका का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम है। बम का वजन 21,600 पाउंड यानी 9,797 किलो है। विनाशकारी बम में H-6 नाम का विस्फोटक इस्तेमाल होता है। इसे C-130 जैसे बड़े मालवाहक विमान से गिराया जाता है। MOAB का इस्तेमाल इससे पहले 2017 में हुआ था। इससे अफगानिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला हुआ था। ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था। ट्रंप के आदेश पर ही अफगानिस्तान में ISIS के ठिकानों पर सेना ने अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम को गिराया था। अफगान अधिकारियों ने तब बताया था कि हमले में ISIS के 36 लड़ाके मारे गए थे। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमले का फाइनल आदेश नहीं दिया है, मतलब ट्रंप के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। कई बातें पर्दे के पीछे चल रही हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य एक है, ईरान को किसी भी हाल में परमाणु बम हासिल नहीं करने देना।
1: One thing and right up front, no nuclear weapons. If we could have made that deal 2 years ago, we would have made that deal, but they weren't willing to do that. Now they are willing to do it.
0: अमेरिका के इस नए हमले की आशंकाओं के बीच ईरानी संसद के स्पीकर ने भी दावा किया है कि अब बातचीत से किसी नतीजे तक पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि ईरान की शर्तें मानने के बाद ही अमेरिका एक बार फिर हमला कर सकता है। भले ही अमेरिका हमारी शर्तों को स्वीकार कर ले, लेकिन इससे ईरान पर एक और हमले को रोका नहीं जा सकेगा। सिर्फ युद्ध जारी रखने और तनाव बढ़ाने से दुश्मन आगे की धमकियां देने से नहीं रुकेगा। आज ईरान इतनी मजबूत स्थिति में है कि अमेरिका और दूसरी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें सैन्य हमलों के माध्यम से अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकती।
2: और अब खबर सऊदी अरब और हुती विद्रोहियों के बीच छिड़े युद्ध की। जी हां, मिडिल ईस्ट के इस मोर्चे पर युद्ध हर दिन तेज हो रहा है। अब सऊदी अरब के भीतर हुती विद्रोहियों के हमले खतरनाक होते जा रहे हैं। ऐसे में सऊदी अरब की सुरक्षा और तेल ठिकानों पर भी खतरा बढ़ गया। साथ ही हुती विद्रोहियों को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। जी हां, खुलासा यह हुआ कि यमन के हुती विद्रोही चीन से मंगाए गए पुर्जों की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन की संस्था कॉन्फ्लिक्ट आर्ममेंट रिसर्च की रिपोर्ट में यह दावा कर दिया गया। इस बीच सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मिसाइलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया। आइए दिखाएं आपको कैसे हुती विद्रोही अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए।
0: हुती विद्रोहियों के हमले से सऊदी में हाहाकार। रियाद में मिसाइल हमले का अलर्ट, दहशत में लोग। सऊदी के समर्थन में उतरी यमन की फौज से भी भिड़े हुती। बाब अल मंदेब की लड़ाई सऊदी के भीतर हमलों तक आए। चीन की मदद से मिसाइल बना रहे हुती रिपोर्ट से सनसनी। जिस तरह से सऊदी अरब में विश्व की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको के तेहरान स्थित मुख्यालय पर हुती विद्रोहियों ने हमला किया, ये इस बात का संकेत है कि अब जंग भीषण हो रही है। सऊदी अरब के लिए चुनौती सिर्फ तेल ठिकानों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। रियाद से लेकर देश के पूर्वी हिस्से तक मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे ने हवाई सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका से मिले पैट्रियट और थार जैसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के बावजूद सवाल यही है कि आखिर कुछ हमले सुरक्षा कवच को भेदने में कैसे कामयाब हो रहे हैं। इस बीच ब्रिटेन की संस्था कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट रिसर्च यानी CAR की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यमन के हूती विद्रोही चीन से मंगाए गए पुर्जों की मदद से नई बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विद्रोही ईरान में डिजाइन हुई खैबर शेकर मिसाइल जैसी मिसाइल तैयार करना चाहते हैं, जिसकी मारक क्षमता करीब 1500 किलोमीटर है। अगर हूती ऐसा हथियार बनाने में सफल होते हैं तो वो सऊदी अरब के अलावा इसराइल को भी ज्यादा सटीक तरीके से निशाना बना सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यमन के अधिकारियों ने जुलाई में चीन से भेजे गए दो संदिग्ध सामानों की खेप पकड़ी थी। इनमें मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई अहम पुर्जे मिले। पकड़ी गई खेप चीन से भेजी गई थी, इसे यमन के हुदैदा बंदरगाह पहुंचाया जाना था। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि इस बंदरगाह का इस्तेमाल ईरान हथियारों की सप्लाई के लिए करता रहा है। रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्था के वरिष्ठ विश्लेषक फैबियन हिंच के मुताबिक हूती ईरान में डिजाइन की गई खास तरह की मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन पुर्जों का इस्तेमाल आम नागरिक कामों में करना मुश्किल है। खेप में रॉकेट मोटर के हिस्से, मिसाइल को स्थिर रखने वाले पुर्जे और रॉकेट मोटर को चालू करने वाले उपकरण मिले थे। फेनोलिक रेजिन नाम का पदार्थ भी था। इसका इस्तेमाल मिसाइल की गर्मी से बचाने वाली परत बनाने में होता है। ऐसे में हर किसी की नजर अब अमेरिका पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हूतियों के हमलों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने लिखा कि हूती बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं। मुझे लगा था कि उन्हें एक साल पहले ही सबक मिल गया था, जब हमने उन पर जबरदस्त बमबारी की थी और उनके कहने पर रुक गए थे। वो लंबे समय से शांत थे, लेकिन अब वो फिर से सामने आए हैं। शायद ईरान के कहने पर, जो एक नाकाम देश है जिसके पास ना तो नेवी है न एयरफोर्स, जिसकी इकॉनमी दुनिया में सबसे खराब है और जहां महंगाई दर 301% है, वो बहुत बुरे तरीके से सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं और जानबूझकर तेल की कीमतें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद अमेरिकी चुनावों से पहले। ये अच्छी बात नहीं है।
2: हमारे देश में टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर बदलने वाला रिलायंस जियो अब शेयर बाजार में उतरने की तैयारी कर रहा है। जियो प्लेटफॉर्म्स के प्रस्तावित आईपीओ के द्वारा कंपनी करीब 28,755 करोड़ से 30,213 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। आईपीओ का प्राइस बैंड 1,065 से 1,119 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। एंकर निवेशकों के लिए बिडिंग 19 अक्टूबर से और आम निवेशकों के लिए सब्सक्रिप्शन 21 से 23 अक्टूबर तक खुलने की जानकारी दी गई है।
3: भारत में मोबाइल इंटरनेट की दुनिया को पूरी तरह से बदलने वाला जियो अब स्टॉक मार्केट में उतरने की तैयारी कर चुका है। ऐसा तय माना जा रहा है कि बाजार में रिलायंस के आईपीओ की एंट्री धमाकेदार होगी, जिससे निवेशकों को जियो की विकास यात्रा में भागीदार बनने का मौका मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के प्रस्तावित आईपीओ के लिए RHP यानी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल किया है और सब्सक्रिप्शन की तारीखों और प्राइस बैंड जैसी जरूरी जानकारी का ऐलान किया है। आईपीओ सब्सक्रिप्शन विंडो 21 और 23 अक्टूबर को खुलेगा और उससे पहले एंकर निवेशकों के लिए बिडिंग 19 अक्टूबर से शुरू होगी। करीब 27 करोड़ नए शेयर ऑफर पर रहेंगे। प्रति शेयर की कीमत 1,065 से 1,119 तक रहेगी। संभावित इशू साइज करीब 28,755 करोड़ से 30,213 करोड़ रुपए है। सबसे पहले नवंबर 1977 में धीरूभाई अंबानी रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के तहत आईपीओ लेकर आए थे। तब इसका ओवर सब्सक्रिप्शन 7 गुना से भी ऊपर गया था। दशकों बाद रिलायंस ने एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, रिटेल और डिजिटल सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में अपना विस्तार किया। 2016 में जियो के लॉन्च ने भारत के टेलीकॉम सेक्टर में बड़ी हलचल मचा दी और महज 170 दिनों के अंदर ही 10 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया। फिलहाल जियो के प्रस्तावित आईपीओ में कुछ मौजूदा शेयर होल्डर्स और कर्मचारियों के लिए भी प्रावधान शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के योग्य शेयर धारकों के लिए 2,500 करोड़ रुपए तक के शेयर रिजर्व किए गए हैं। कर्मचारियों के लिए 500 करोड़ तक के शेयर रखे गए हैं। ये अंबानी परिवार की तीसरी पीढ़ी का पहला आईपीओ है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने इस महीने की शुरुआत में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में कहा कि जियो का फोकस 1 अरब से अधिक भारतीयों को सबसे सस्ती और उन्नत तकनीक उपलब्ध कराना है। हालांकि जियो आईपीओ पर निवेशकों को सिर्फ बाजार के उत्साह के आधार पर फैसला नहीं करना चाहिए, निवेशकों को कंपनी के आर्थिक नतीजे और हालात के हिसाब से आकलन करना चाहिए। निवेश का फैसला करने से पहले आईपीओ से जुड़े दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, जिसमें बताए गए जोखिम भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
1: सोच बदलो और बैंक भी। बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
2: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
3: I love it, absolutely amazing। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
4: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
3: क्या?
4: इनकी राय।
5: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
6: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है।
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
6: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायफ्री जूस।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: In association with Canara Bank, together we can.
3: Anmol biscuits, swad jo banaye har pal anmol. Signature finest cardamom seeds. E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
4: Aa gaya somvar aur aa gaye
5: chakmak chacha.
4: Aa chacha. अखबार भाँच रहे हैं,
6: टेस्ट
4: चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चिचा कब जाएंगे?
6: अरे भैया पुत्र सुतस में हिस्सा हम ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा है, हम अपना मुद्दा उठा चुके पुराने।
4: अच्छा कब उठाए?
6: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए।
4: अच्छा
6: हाँ, तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे दन दन दन दन कर गया, ऐसा ये सब नहीं था अपना मामला
7: जी,
6: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
4: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है आपका।
6: टूटा भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे कार्रवाई चलती थी दर्द बिता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन दिल बोलता रखे था एकदम पुत्ता मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
4: अच्छा
6: और क्या
4: आपका मतलब, हम लोग डर जाते हैं?
6: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल यहाँ पुलिस तो सिटी नहीं बची, भागने लगता हूँ।
4: बढ़िया आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही
6: है किधर?
4: चाचा हम खेल गए अब की।
8: बांग्लादेश ने, बांग्लादेश के एक बड़े प्रमुख व्यक्ति ने ट्वीट किया था जब ये प्रोटेस्ट हुआ था, और उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश का समर्थन है। अब नेहा बोरा जो कि इस प्रोटेस्ट में साथ आगे आगे चलती हुई दिख रही, उन्होंने कहा बांग्लादेश ने ही हमें राह दिखाई है। क्या भारत के प्रोटेस्ट को
9: मैं नहीं जानता हूं कौन बांग्लादेशी है कौन पाकिस्तानी है, मैं तो भारत देश की बात करता हूं, और हम लोग चिंतित आज हैं अपनी अगली पीढ़ी के भविष्य के लिए। हम लोगों को जो देश मिला था जहां चुनाव, लोकतंत्र, बोलने की आजादी, अपने विचार प्रकट करने का खुलापन जो हम लोगों ने इनहेरिट किया था, मैं चाहता हूं अगली पीढ़ी को वो मिले। आज जो हो रहा है इतनी दबिश है, इतना खौफ का माहौल पैदा किया हुआ था। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं उन जेन जी के बच्चों को, लड़के लड़कियों को, जिन्होंने जंतर मंतर पर जाकर वो सारी बंदिशें तोड़ दी, उन्होंने खुले होकर अपनी बात को रखा और ये दिखाया कि हम लोग दबाव में या प्रेशर में काम नहीं कर सकते।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Mera rutba hai mera signature. Mera jazba hai mera signature. Bebaak hai mera signature. Signature finest silver ilaichi, a premium product from Dilbaag Group.
2: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
3: कैसे लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
4: I love it, absolutely amazing. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
5: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए।
4: क्या?
5: इनकी राय।
6: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
7: सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन 12 अक्टूबर को एसआईआर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका के बाद सैकड़ों समर्थकों के साथ वहां पहुंचे राहुल गांधी को अब अपने आचरण पर जवाब देना होगा। सीजेआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में फैली अव्यवस्था पर न सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि राहुल गांधी को स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस भी जारी किया। मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और महुआ मोइत्रा से भी जवाब मांगा गया। साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी सुप्रीम कोर्ट की फाइलिंग काउंटर पर हुए हंगामे की सफाई देनी होगी। एक ओर सबसे बड़ी अदालत का नोटिस आया है तो दूसरी ओर लेफ्ट की छात्र कार्यकर्ता नेहा बोरा का बयान भी राहुल गांधी पर हमले के लिए बीजेपी को मौका दे गया है। नेहा बोरा ने 2024 में बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार को गिराने के लिए हुए प्रदर्शनों को भारत के मौजूदा प्रदर्शनों की प्रेरणा कहा है।
8: We present you our red salute, and we know that the Gen Z movement that we are seeing everywhere in this country first started in Bangladesh. And congratulations to you for showing us the way, for showing us and extending solidarity to the young people of this country. We know that the movement that began in Bangladesh was for democratic and voter rights. Today, the movement that the young people are participating in and leading is also a movement for democratic and voting rights. We know that the fight that you fight against religious fundamentalism in your country is also a fight that the Gen Z and the young people of this country fight today.
7: 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक राहुल गांधी के मार्च में नेहा बोरा उनके साथ चलती नजर आई थी। 13 अक्टूबर को राहुल गांधी के घर हुई चाय पार्टी में भी नेहा बोरा मौजूद थी। नेहा बोरा का बयान इसलिए भी लोगों की निगाहों में आ गया है क्योंकि 10 अक्टूबर को जब सीजेपी दिल्ली में अपना प्रदर्शन कर रहा था उसी दिन बांग्लादेश के सोशलिस्ट स्टूडेंट्स फ्रंट यानी एसएसएफ ने ढाका में सॉलिडेरिटी मार्च निकाला था। 10 अक्टूबर को ढाका में हुए इस प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लगाए गए थे। बांग्लादेश का कट्टरपंथी छात्र नेता और वहां की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी का संयोजक नाहिद इस्लाम इस मार्च में शामिल था। आपके लिए सर ज्यादा बड़ा चैलेंज इस वक्त क्या है, 10 अक्टूबर को जो सीजेपी का विरोध प्रदर्शन हुआ या फिर जो ये विपक्ष एकजुट होकर, क्योंकि उस ट्रक पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी, मैं यूपी के चुनाव पर आपसे बात करूंगी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, तमाम लोग, नेहा बोरा जो लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, अनेकों नेता और युवा मौजूद थे और एक बड़ा हुजूम आया था उस दिन राजधानी में। आपको लगता है कि ये बड़ा चैलेंज है आपके लिए दोनों सीजेपी?
9: देखिए, लोकतंत्र में कोई अपना विषय रखता है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करता है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई अपना रखो विषय। और इनके जो नेता हैं वो आज तो उनकी रील चल रही है कि वो बांग्लादेश को कह रहे हैं कि भाई हम बांग्लादेश को के लोगों को वो संबोधित कर रहे हैं कि हम तुम्हारी राह पे चल रहे हैं। तो ये तो एसआईआर में सबसे बड़ा झगड़ा ही है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम काटे गए।
7: ये किसकी बात कर रहे हैं सर आप?
9: ये तो आप सुनिए जिसकी बात कर रहे हैं, आप भी देखिए ना, आप सबको ज्यादा जानते हैं।
7: मैं तो सोच रही थी कि आप नाम बताएंगे, आप नाम नहीं लेना चाह रहे हैं।
9: नहीं, हम तो एक आपके एंग्री एज्ड मैन का ही नाम ले रहे हैं, उसी में सब समा रहे हैं।
7: नेहा बोरा ने ये बोला है जिसको लेकर आपकी पार्टी ने लपक लिया एकदम।
9: ये इनका असली दर्द है कि बांग्लादेश वालों के नाम अगर घुसपैठियों के थे तो क्यों कटे। वो कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से। तो एक ना एक दिन तो सच इनका सामने आना था। अभी कुछ दिन और रुकिए, कुछ दिन बाद और चीजें सामने आ जाएंगी इनकी।
7: नेहा बोरा ही नहीं, राहुल गांधी की चाय पार्टी में शामिल हुए वकील प्रशांत भूषण का बयान भी सुर्खियों में है जिसे लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। 6 अक्टूबर से शुरू हुए अपने प्रदर्शनों को राहुल गांधी भारत की आवाज कहते आए हैं। ऐसे में कांग्रेस नेहा बोरा के बयान को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती। नेहा बोरा के बयान पर बीजेपी के हमले के बीच इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का बयान भी तूल पकड़ सकता है। प्रदर्शनों में विदेशी दखल के आरोप बीजेपी को अपना पक्ष मजबूत करने का मौका देते हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती की अर्जियों पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को प्रदर्शन से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। इसी तरह सभी निजी पक्ष भी वीडियो सुरक्षित रख सकते हैं ताकि उन्हें अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। आज तक ब्यूरो

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बीजेपी और विपक्ष में जारी है राजनीतिक युद्ध। ज्ञानेश के खिलाफ राहुल की मोर्चेबंदी जारी। पार्टी नेताओं के साथ इंदिरा भवन में बैठक। बीजेपी का आरोप, विदेशी हाथों में खेल रहे हैं राहुल। अंकिता भंडारी के परिजनों से कल रात मिलने के बाद आज राहुल ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। दुष्यंत गौतम की नियुक्ति पर उठाए सवाल, कहा सरकार के इस निर्णय से स्तब्ध हूं। दिल्ली में कल प्रदर्शन के पहले आज दीपके का केंद्र पर हमला, कहा एक देश एक पार्टी इनका उद्देश्य। प्रशांत भूषण बोले सत्ता परिवर्तन के लिए हमारी लड़ाई। पंचायत आज तक राजस्थान में, बोले मुख्यमंत्री भजन लाल तेजी से विकास कर रही है डबल इंजन की सरकार। पेपर लीक को किया सील, ड्रग तस्करों पर की कार्रवाई। और प्रयागराज में सीएम योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा माफिया के सामने घुटने टेक मौन रहती है एसपी सरकार, अब माफिया मुक्त हो गया है यूपी।
1: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। नीले डरम वाली मुस्कान और साहिब अब जेल में किस तरह रहेंगे, क्या पहनेंगे, क्या काम करेंगे, क्यों दोनों पर अब 2400 घंटे नजर होगी, क्यों वॉशरूम जाने तक पर उनकी निगरानी की जाएगी, तो इन सारे सवालों के जवाब मेरठ डिस्ट्रिक्ट जेल से बाहर आ चुके हैं। आज वारदात में इन सवालों के जवाब देने के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि मुस्कान और साहिल को सजाए मौत देते वक्त अदालत ने क्यों ये माना कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है।

0: अर्थात बिना समाज के दंड कानून का वध हो जाता है और दंड कानून रहित समाज भी काट दिया जाता है। इसलिए दंड कानून को चाहिए कि वो समाज की रक्षा करे और समाज को चाहिए कि वो अपने भीतर दंड कानून को समाहित करे। महाभारत की यही वो लाइन थी जिसे पढ़ने के बाद मेरठ के डिस्ट्रिक्ट जज अरविंद कुमार मिश्रा ने मुस्कान और साहिल को उनके अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया। ये उसी मृत्यु दंड के फैसले की कॉपी है। इसमें जज साहब लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि मुस्कान और साहिल ने जो अपराध किया है वो बहुत ही क्रूर और विभत्स है। बेहोशी की हालत में मृतक यानी सौरभ को उसके अपने ही घर में, जहां वो परसों बाद विदेश से अपने परिवार के साथ रहने की कामना से लौटा था, उसे उसी की पत्नी द्वारा अपने विवाहेतर संबंध के साथी के साथ मिलकर घृणित उद्देश्य से ठंडे दिमाग के साथ योजनाबद्ध तरीके और पूरे इत्मीनान के साथ बेरहमी से हत्या कर टुकड़े किए। इस अपराध को किए जाने का तरीका बहुत ही क्रूर और बेरहम था। घटनास्थल की दीवारें और छतों पर खून के निशान उसकी क्रूरता की पुष्टि करते हैं। मृतक की हत्या करने के बाद उसके शव को और सबूतों को छिपाने का तरीका बेहद चौंकाने वाला है, जो समाज की अंतरात्मा को हिला देता है। दोष सिद्ध गण यानी मुस्कान और साहिल को अपने अपराध पर कोई पछतावा या अपराध बोध नहीं है। इस अदालत की नजर में इस मामले में अपराध की गंभीरता बढ़ाने वाली परिस्थितियां सजा कम करने वाली परिस्थितियों से कहीं ज्यादा भारी है और ये सबसे ज्यादा दुर्लभ मामलों यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कसौटी पर खरा उतरता है। और ये अदालत बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा मानती है। अदालत इस नतीजे पर भी पहुंचती है कि मुस्कान और साहिल के सुधार और वापस समाज में पुनर्वास की संभावना का अभाव, मेरी राय में नरमी बरतने लायक कोई हालात नहीं है। मुस्कान और साहिल को मृत्यु दंड की सजा के संबंध में वारंट हासिल होने पर मृत्यु दंड पर अमल के लिए दोनों की गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि दोनों की मृत्यु न हो जाए।
1: और हत्या का जो तरीका है, पहले उसकी गला दबाकर हत्या करेगी, चाकुओं से गोद कर हत्या की गई, दोनों ने मिलकर किया है और उस चाकू से इस कदर व्यवस्था से हत्या की कि दीवार के छत तक यानी कमरे के छत तक भी खून का फवारा गया था, पूरे दीवारों में खून के छींक। इन्होंने उसकी हत्या की और अपने घर में हत्या की दोनों ने मिलकर के। उसके बाद तीन टुकड़ों में शरीर को विभाजित किया, काटकर गला काट करके सर को अलग किया, दोनों हाथ के पंजों को अलग किया और उसके बाद बड़े सातिराना दिमाग से उसको डिस्पोजल करने का प्रयास किया जिससे सबूत साक्ष्य पुलिस को ना मिल सके। तो ये इससे बड़ा क्रूर और दूसरा क्रूरतम इसलिए भी है कि ये इन्होंने जो हत्या की बहुत सोचकर समझकर बड़े प्लानिंग बना करके और बड़े शांत और स्थिर बुद्धि के साथ इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से हत्या की है। तो ये क्रूरतम हत्याओं में इस प्रकार की हत्याएं आती जाती है।
0: इधर जज अरविंद कुमार मिश्रा ने खचाखच भरी अदालत में मुस्कुराते हुए मुस्कान और साहिल को मृत्यु दंड देने का ऐलान किया और उधर उसी पल मेरठ जेल में अदालत से लाइव जुड़ी मुस्कान और साहिल दहाड़े मार कर रोने लगे। मेरठ इकलौती वो जेल है जहां फांसी देने की सुविधा है, लेकिन ये जल्दबाजी होगी कहना कि मुस्कान और साहिल को यहां फांसी दी जाएगी या जल्दी जाएगी, क्योंकि अभी मामला लोअर कोर्ट तक का था, अभी फैसला लोअर कोर्ट ने दिया है, इसके बाद ये हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आराम से 5-10 साल उम्मीद करें कि ये केस अभी शायद और लंबा चलेगा और तब कहीं जाकर आखिरी फैसले की घड़ी आएगी। लेकिन जैसे ही ये फैसला सुनाया गया, जेल के अंदर मुस्कान और साहिल जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में मौजूद थे, सीधे अदालत से जुड़े हुए थे, जज साहब ने जैसे ही कहा कि मैं आप दोनों को मृत्यु दंड दे रहा हूं, मुस्कान और साहिल रो पड़े। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें ऐसी सख्त सजा मिलेगी, उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि उन्हें सजाए मौत भी मिल सकती है। फैसला सुनते ही मुस्कान इतनी हैरान थी कि उसके मुंह से बेसाख्ता बस एक ही शब्द निकला, अरे, मानो पूछ रही हो कि ये कैसे हो गया।
2: पहला अल्फाज क्या था सजा सुनने के बाद उसका?
3: अरे
2: जैसे ही सजा सुनी तो मुस्कान ने सोचा अरे करके जो रोने लगे,
3: फिर आपसे कुछ बात कही।
2: हाँ, फिर वो क्या क्या होगा आगे, क्या प्रक्रिया है ये बात।
0: मुस्कान और साहिल दोनों पूरी रात जेल में रोते रहे और जागते रहे, यहाँ तक कि दोनों ने रात का खाना भी नहीं खाया।
2: इतना बड़ा फैसला सुनने के बाद स्वाभाविक है कि पहली रात वो लोग सोए नहीं, और रात को खाना लिया था तो खाया नहीं था, समझाया गया था, तो उन्होंने कहा हम रात में खाएंगे, परंतु खाया नहीं, परंतु अभी नाश्ता ले लिया है।
0: जेल का नियम है कि मौत की सजा पाने वाले हर कैदी को कम से कम फैसले के अगले कुछ घंटों या कुछ दिन लगातार समझाने की कोशिश की जाती है, उनकी काउंसलिंग की जाती है।
2: कल रात दोनों डॉक्टर्स ने और हमारे जो दोनों जेलर हैं, उन दोनों फार्मासिस्ट, दोनों जेलर और एक डॉक्टर, और मैंने स्वयं भी इनकी काउंसलिंग की। तो उस समय काफ़ी इनका जो हाइपर टाइप हो रहे थे, रो रहे थे बार बार कर, तो उनको समझाया और काउंसलिंग की जा रही। आज भी जो है उनका स्वास्थ्य परीक्षण और काउंसलिंग की जाएगी।
0: मौत की सजा सुनकर कैदी कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए जेल की ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो लगातार 24 घंटे दिन रात उन पर नजर रखे, यहाँ तक कि वॉशरूम जाने पर भी उनकी निगरानी रखी जाती है। क्योंकि महिला बैरक में सीसीटीवी कैमरे नहीं होते, इसलिए वहाँ निगरानी की जिम्मेदारी पुरानी और सीनियर कैदी और जेल स्टाफ की होती है। पुरुष बैरक में सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ जेल स्टाफ भी 24 घंटे मौत की सजा पाने वाले कैदियों की निगरानी करते हैं। ये निगरानी तब तक रहती है जब तक कुछ दिन बीत जाने के बाद वो सामान नहीं हो जाते। ऐसे कैदी जिनको सजाए मौत मिलती है, जैसे अभी आपने शुरू में कहा काउंसलिंग की जाती है, अब चूंकि उन्हें पता है कि सजाए मौत मिल चुकी है, दोनों बैरक में हैं, तो ऐसे फैसले आने के बाद जेल स्टाफ ऐसे कैदियों के लिए कुछ अलग से इंतजाम करता है कि उनके ऊपर निगरानी रखने या उनको मतलब नजरों से दूर नहीं रखना, इस तरह की कोई खास व्यवस्था होती है?
2: जी, प्रयास ये किया जाता है कि ऐसे बंदियों के ऊपर, एक तो लम्बेदारों के माध्यम से जो पुराने कन्विक्टेड प्रिजनर्स होते हैं जो जेल में सहायता करते हैं जेल स्टाफ की जेल संचालन में, उनके माध्यम से और जेल स्टाफ के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखते हैं, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, वो टॉयलेट भी जाएगा तो हमारे पर्यवेक्षण में जाएगा। ऐसे ही महिलाओं में चूंकि सीसीटीवी आदि हम लोग नहीं लगा सकते हैं, सीसीटीवी अलाउ नहीं है, तो वहाँ जो महिला बंदी रक्षक हैं उनके माध्यम से निगरानी रखी जाती है। पुरुष बैरक में सीसीटीवी भी है, उनके माध्यम से भी कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जाती है।
0: चूंकि 14 अक्टूबर से पहले मुस्कान और साहिल अंडर ट्रायल यानी विचाराधीन कैदी थे, लिहाजा वो अपनी पसंद के कपड़े पहन सकते थे, लेकिन जेल नियम के हिसाब से सजा याफ्ता होने के साथ ही कैदियों को जेल की वर्दी और उनका कैदी नंबर अलॉट कर दिया जाता है। अब मुस्कान और साहिल जेल में अपने नाम से नहीं बल्कि कैदी नंबर 395 और 396 से जाने जाएंगे। सजा याफ्ता कैदियों के लिए जेल में काम करना भी जरूरी होता है, हालांकि उस काम के उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं। आमतौर पर हर कैदी जो जिस काम में महारत रखता हो और जेल के अंदर वो काम मौजूद हो, उसे वही काम सौंपा जाता है। मुस्कान पिछले 1.5 साल से जब से मेरठ जेल में है सिलाई कढ़ाई का काम कर रही थी, जबकि साहिल खेतीबाड़ी और बागवानी करता था। हालांकि वो ग्रेजुएट है, वो वहां बाकी कैदियों को पढ़ा भी सकता है, लेकिन अमूमन कैदियों से पूछ कर ही उसे उसकी पसंद का काम सौंपा जाता है।
2: उनको नंबर भी अलॉट कर दिए। साहिल का नंबर है 395, कैदी नंबर है 395/2026 और मुस्कान का कैदी नंबर है 396/2026, और दोनों को कारागार के जो कपड़े हैं कैदियों के वो दे दिए गए हैं। साहिल को 2 जोड़ी कुर्ता पजामा जो वाइट दिए जाते हैं वो दे दिए गए हैं, तथा जो क्रीमिस साड़ी और सूट दिया जाता है वो 1 साड़ी 1 सूट मुस्कान को भी दे दिए गए हैं। दोनों ने अपनी स्वेच्छा से ही काम की इच्छा जताई है। मुस्कान सिलाई और कढ़ाई का काम करेगी तथा वो पहले कृषि और बागवानी का काम जो कर रहा था साहिल वो काम करेगा।
0: मुस्कान के साथ एक और दिक्कत है, 11 महीने की उसकी बेटी जेल में उसके साथ बंद है। उसे जेल में अपने काम के साथ साथ अपनी बेटी को भी पालना है। कानून ये कहता है कि जेल में बंद महिला कैदी 6 साल तक अपने बच्चे को जेल में अपने साथ रख सकती है। हालांकि इस हिसाब से मुस्कान अगले 5 सालों तक अपनी बेटी को अपने पास रखने की हकदार है, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद जब उसकी बेटी 6 साल की हो जाएगी तब उसकी बेटी जेल में नहीं रह पाएगी। या तो उसे अनाथालय में भेज दिया जाएगा या फिर अगर नजदीकी रिश्तेदार उसे अपनाना चाहे तो कागजी कार्रवाई के साथ उन्हें सौंपा जाएगा।
3: चूंकि उसकी एक बेटी है जो यहाँ रह रही है और ये शायद कानून में है कि 6 साल तक जेल में रख सकते हैं, तो अभी तक कभी उसने बात की है कि वो 6 साल तक यहीं रखेगी या कोई ऐसा उसने फैसला किया है?
2: नहीं, वो तो ये उम्मीद रखती है कि बेटी उसके पास ही रहे, रादर वो तो दूसरी जो बेटी है उसके बारे में भी बार बार पूछती है तथा उससे मिलना चाहती है, तो 6 साल तक उसका, जब तक उसके साथ बेटी रह सकती है, यहीं रखेगी, उसका कहना ये है।
3: दूसरी बेटी से जो बड़ी बेटी उससे मिलने की बात आई थी, उसकी ख्वाहिश थी, तो क्या ऐसी वजह थी कि वो मिल नहीं पाई?
2: देखिए, कारागार की तरफ से कोई वजह नहीं थी, वो लेकर के उसके परिजन या जिसके पास भी है उसके माता पिता के पास बताते हैं, वो आए नहीं मुलाकात के लिए। यदि वो आएंगे तो नियमों के अंतर्गत हम जरूर मिलाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, उसने पूछा कि अगर वो नहीं आते हैं तो हम कैसे मिल सकते हैं, क्या प्रावधान है, तो उसको बता दिया गया कि वो एक पत्र लिख सकती है अपने परिजनों को, अपनी बेटी को, जिसमें वो उनसे कह सकती है जो भी उसे कहना है, बुलाने के लिए या अन्य कोई बात कहनी है, तो उसने पत्र लिखने की अनुमति मांगी थी, वो उसको दे दी गई है। अभी तक उसने पत्र लिख के नहीं दिया है, जैसे ही पत्र लिखती है उसको हम उसके परिजनों को भेजेंगे।
0: इस केस में सरकारी वकील के चौबे ने शुरू से ही अदालत में ये तथ्य रखे थे कि मुस्कान के नीले ड्रम वाली घटना के बाद देश में अचानक पत्नियों के हाथों पति का एक तरह से कत्लेआम शुरू हो चुका था, यानी एक मुस्कान की वजह से पूरे समाज पर इसका गहरा असर पड़ा। मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा देते वक्त अपने फैसले में जज साहब ने भी इस बात को स्वीकार किया।
1: जब ये घटना हुई, उसके घटना के बाद से आप सब लोगों ने देखा होगा, समाज ने देखा कि हमारे जिले के अंदर 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो पत्नियों ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के और पति की हत्या की, और किसी ने सांप छोड़ दिया उसके बिस्तर पर, किसी ने करैत जहरीला सांप छोड़ के कटवा के मरवा दिया, किसी एक क्या ना ऊपर जो पहाड़ की चोटी से नवविवाहिता, दोनों करोड़पति अरबपति थे, परिवार उद्योगपतियों के बच्चे थे, उन्होंने धक्का दे दिया टीले से और उसकी हत्या कर दी। एक और ने अपने उसके हनीमून मनाने के लिए गई थी और वहां उसका दोस्त भी था, उस दोस्त के साथ पहाड़ पर चढ़ते हुए थे, आप लोगों ने सबने देखा होगा, वहां उसकी डंडे से पीट करके और धक्का देकर गिरा करके हत्या कर दी गई थी। तो इस प्रकार की घटनाओं की तो बाढ़ आ गई थी, और ये इसी जो एक तथ्य ये भी पूछा गया था, इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा, ये समाज के ऊपर पड़ने वाले दुष्प्रभाव ही तो है।
0: फिलहाल इस केस का पहला फेज अब पूरा हो चुका है, अगले 90 दिनों के अंदर मुस्कान और साहिल मेरठ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। केस का फेज 2 इलाहाबाद हाई कोर्ट से शुरू होगा, तब तक इंतजार कीजिए। मोहम्मद उस्मान चौधरी और हिमांशु मिश्रा के साथ शम्स ताहिर खान, मेरठ, आज तक।
4: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

त्योहारों का सीजन आते ही घर में खरीदारी की लिस्ट लंबी हो जाती है। नए कपड़े, गिफ्ट, ट्रेवल और दूसरे खर्चों के लिए कई लोग लोन या क्रेडिट कार्ड का सहारा लेते हैं, लेकिन अगर पहले से ही जेब पर कर्ज का बोझ हो तो एक नया लोन परेशानी को ज्यादा बढ़ा सकता है। कर्ज और लोन रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट पैनल के एक सर्वे में ऐसी ही उधारकर्ताओं की तस्वीर सामने आई है। इस सर्वे में शामिल 60% उधारकर्ताओं की ईएमआई पारिवारिक आय के करीब या उससे ज्यादा बताई गई है। वहीं 40% कर्जदार पुराने लोन की ईएमआई भरने के लिए नया उधार या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। कर्ज लेने की वजह हमेशा शॉपिंग या त्योहार नहीं होती, कई लोगों के लिए उधार लेना मजबूरी बन जाता है। रिपोर्ट बताती है कि 26% ने मेडिकल इमरजेंसी और हेल्थ खर्च के लिए लोन लिया है। वहीं 22% ने शादी, पढ़ाई और दूसरे पर्सनल खर्चों के लिए कर्ज लिया है, जबकि 18% ने बिजनेस या नौकरी जाने के बाद उधार लिया और 15% ने घर और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोन लिया है। मतलब कई परिवार पहले से ही कई तरह की आर्थिक जिम्मेदारियों के बीच फंसे हैं। ऐसे में त्योहारों के दौरान लिया गया नया लोन मौजूदा बोझ को और बढ़ा सकता है। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि जब कर्ज चुकाना मुश्किल होने लगता है तो परेशानी तेजी से बढ़ती है। इसमें कहा गया है कि 31% मामलों में नौकरी जाने या सैलरी घटने का असर लोगों की मुश्किल बढ़ा रहा है। वहीं 28% मामलों में आय के मुकाबले ईएमआई का बोझ ज्यादा देखा गया है और 19% मामलों में एक से ज्यादा लोन परेशानी की वजह बन गए हैं। कर्ज का दबाव बढ़ने पर मामला केवल ईएमआई तक सीमित नहीं रहता, कई उधारकर्ताओं को रिकवरी के दबाव का भी सामना करना पड़ता है। कर्ज चुकाने में दिक्कत आने के बाद कई लोगों को लगता है फोन कॉल, नोटिस और दूसरी तरह के दबाव का सामना करना पड़ा। एक्सपर्ट पैनल के डेटा के मुताबिक 39% को रिकवरी कॉल्स या अभद्र भाषा का सामना करना पड़ा। वहीं 28% को कई लेंडर्स की तरफ से लगातार कॉल आए, जबकि 11% लोगों के घर या वर्कप्लेस तक रिकवरी एजेंट पहुंच गए और 8% को कानूनी या पुलिस कार्रवाई की धमकी मिली। एक्सपर्ट पैनल के मुताबिक त्योहारों में खर्च अक्सर भावनाओं और सामाजिक दबाव से प्रभावित होता है, लेकिन एक बार लिया गया लोन कई महीनों या कई साल तक चलने वाली फाइनेंशियल जिम्मेदारी बन सकता है। ऐसे में सुझाव दिया गया है कि मौजूदा ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बकाया का हिसाब लगाएं, कुल रिपेमेंट कॉस्ट को समझें, अतिरिक्त ईएमआई उठाने की क्षमता जांचें और अचानक आने वाले खर्चों के लिए

0: त्योहारों का सीजन आते ही घर में खरीदारी की लिस्ट लंबी हो जाती है। नए कपड़े, गिफ्ट, ट्रेवल और दूसरे खर्चों के लिए कई लोग लोन या क्रेडिट कार्ड का सहारा लेते हैं, लेकिन अगर पहले से ही जेब पर कर्ज का बोझ हो तो एक नया लोन परेशानी को ज्यादा बढ़ा सकता है। कर्ज और लोन रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट पैनल के एक सर्वे में ऐसी ही उधारकर्ताओं की तस्वीर सामने आई है। इस सर्वे में शामिल 60% उधारकर्ताओं की ईएमआई पारिवारिक आय के करीब या उससे ज्यादा बताई गई है। वहीं 40% कर्जदार पुराने लोन की ईएमआई भरने के लिए नया उधार या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। कर्ज लेने की वजह हमेशा शॉपिंग या त्योहार नहीं होती, कई लोगों के लिए उधार लेना मजबूरी बन जाता है। रिपोर्ट बताती है कि 26% ने मेडिकल इमरजेंसी और हेल्थ खर्च के लिए लोन लिया है। वहीं 22% ने शादी, पढ़ाई और दूसरे पर्सनल खर्चों के लिए कर्ज लिया है, जबकि 18% ने बिजनेस या नौकरी जाने के बाद उधार लिया और 15% ने घर और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोन लिया है। मतलब कई परिवार पहले से ही कई तरह की आर्थिक जिम्मेदारियों के बीच फंसे हैं। ऐसे में त्योहारों के दौरान लिया गया नया लोन मौजूदा बोझ को और बढ़ा सकता है। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि जब कर्ज चुकाना मुश्किल होने लगता है तो परेशानी तेजी से बढ़ती है। इसमें कहा गया है कि 31% मामलों में नौकरी जाने या सैलरी घटने का असर लोगों की मुश्किल बढ़ा रहा है। वहीं 28% मामलों में आय के मुकाबले ईएमआई का बोझ ज्यादा देखा गया है और 19% मामलों में एक से ज्यादा लोन परेशानी की वजह बन गए हैं। कर्ज का दबाव बढ़ने पर मामला केवल ईएमआई तक सीमित नहीं रहता, कई उधारकर्ताओं को रिकवरी के दबाव का भी सामना करना पड़ता है। कर्ज चुकाने में दिक्कत आने के बाद कई लोगों को लगता है फोन कॉल, नोटिस और दूसरी तरह के दबाव का सामना करना पड़ा। एक्सपर्ट पैनल के डेटा के मुताबिक 39% को रिकवरी कॉल्स या अभद्र भाषा का सामना करना पड़ा। वहीं 28% को कई लेंडर्स की तरफ से लगातार कॉल आए, जबकि 11% लोगों के घर या वर्कप्लेस तक रिकवरी एजेंट पहुंच गए और 8% को कानूनी या पुलिस कार्रवाई की धमकी मिली। एक्सपर्ट पैनल के मुताबिक त्योहारों में खर्च अक्सर भावनाओं और सामाजिक दबाव से प्रभावित होता है, लेकिन एक बार लिया गया लोन कई महीनों या कई साल तक चलने वाली फाइनेंशियल जिम्मेदारी बन सकता है। ऐसे में सुझाव दिया गया है कि मौजूदा ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बकाया का हिसाब लगाएं, कुल रिपेमेंट कॉस्ट को समझें, अतिरिक्त ईएमआई उठाने की क्षमता जांचें और अचानक आने वाले खर्चों के लिए गुंजाइश बनाकर रखें। त्योहार खुशियां लेकर आते हैं, लेकिन कर्ज का बोझ उन खुशियों को फीका भी कर सकता है। इसलिए नया लोन लेने से पहले अपनी आय, मौजूदा ईएमआई और चुकाने की क्षमता का सही आकलन करना जरूरी है। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ना होगा। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर नोटिस। अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस नोटिस का मसौदा साफ है। पुलिस ने दो टूक कह दिया है कि इमरान खान भारत छोड़ दें। मुंबई पुलिस ने एक्टर आमिर खान के भांजे को ये नोटिस थमाया है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को ऐसा फरमान जारी करना पड़ा। दरअसल ये पूरा मामला 10 अक्टूबर 2026 का है, जब मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था। इस प्रदर्शन में सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। इमरान खान भी उस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया था। इस बात से बीजेपी नाराज हो गई। पार्टी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई

0: पुलिस से इसकी शिकायत कर दी। दरअसल इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं है, वो अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं, उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा है। बीजेपी की शिकायत थी कि ऐसे लोग देश के अंदरूनी प्रोटेस्ट में कैसे शामिल हो सकते हैं।
1: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने की नोटिस मुंबई पुलिस द्वारा दी गई है। 28 अक्टूबर तक इमरान खान को भारत छोड़ने के लिए मुंबई पुलिस द्वारा कहा गया है। अगस्त क्रांति में कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में हुए आंदोलन में इमरान खान ने हिस्सा लिया था और उन्हें उस दिन डिटेन भी किया गया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इमरान खान की नागरिकता पर सवाल उठाए थे। किरीट सोमैया ने कहा था कि इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और वो भारत में हो रहे आंदोलन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने लगातार इसकी शिकायत मुंबई पुलिस से की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए इमिग्रेशन एक्ट के तहत इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के निर्देश मुंबई पुलिस द्वारा दिए गए हैं।
0: उसी मामले में संबंधित आव्रजन कानूनों के तहत कार्रवाई की गई है। मुंबई पुलिस के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की ओर से नोटिस जारी किया गया है। OCI कार्ड धारक भारतीय मूल के विदेशी नागरिक होते हैं, जिन्हें भारत में रहने और कई अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता है, लेकिन OCI का दर्जा भारतीय नागरिकता के समान नहीं है, उसके साथ कुछ कानूनी प्रतिबंध भी जुड़े होते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इमरान खान मुंबई पुलिस के नोटिस पर क्या कदम उठाते हैं। दीपेश त्रिपाठी, आज तक।
2: पूछना चाहता हूं समाजवादियों से, ये जो बोलते थे पीडीए पीडीए चिल्लाते थे, ये राज्यसभा के टिकट में वो पीडीए कहां चला गया था? और हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी का पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। और बात होगा तो पराया धन अपना, और आपने दोनों चीज यहां देखी होगी। उन्होंने दो प्रत्याशी बनाए, एक प्रत्याशी बनाया अपने चचा जान को, रामगोपाल यादव को। अरे काशी गई किसी यादव को बना देते, गाजीपुर के बना देते, बलिया के बना देते, नहीं बनाया। दूसरी सीट पे किसी और को बना देते, किसी दलित को भेज देते, नहीं बनाया। और चलो अपने खानदानी वोट मुसलमानों को ही बना देते, वो भी तो नहीं बनाया। वो टिकट उन्होंने बेच दिया मुंबई के धन्ना सेठ को, हो गया ना परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और पराया धन अपना, दोनों साबित हो गए।

0: सफेद चादर में लिपटी वादियां, बर्फ से ढके पहाड़ और कुदरत का बेहद खूबसूरत नजारा। ये तस्वीरें हैं उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा स्थित गुरेज की तुलैल घाटी की हैं, जहां सीजन की पहली बर्फबारी ने दस्तक दी है। बर्फबारी के बाद घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ तुलैल के मैदानी हिस्सों में बर्फ की सफेद परत दिखाई देने लगी है। बर्फबारी के साथ ही यहां मौसम का मिजाज बदल गया है और खूबसूरत वादियों ने सर्दियों की आहट का एहसास कराना शुरू कर दिया। भारी बर्फबारी का असर सड़क के रास्ते पर भी पड़ा है। पुंछ और राजौरी को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाले मुगल रोड पर पीर की गली के पास बर्फ जमा होने से आवाजाही बंद हो गई है। सड़क से बर्फ हटाने और रास्ते को साफ करने के लिए मशीनें चलाई जा रही हैं। अक्टूबर का अभी आधा महीना ही गुजरा है और कश्मीर के कई इलाकों में पारा शून्य तक लुढ़क चुका है, जबकि श्रीनगर में भी तापमान 15 डिग्री तक गिरा है। लेकिन बदलते मौसम में भी यहां पहुंचे पर्यटकों में गजब का उत्साह है। कश्मीर की इन वादियों में बर्फबारी सिर्फ मौसम में बदलाव की तस्वीर नहीं है, बल्कि यहां की खूबसूरती का एक नया अध्याय भी है। गुरेज की तुलैल घाटी से लेकर गुलमर्ग की अफरवाद चोटी तक बर्फ की सफेद चादर ने पहाड़ों और मैदानों को एक नया रूप दे दिया है। अब आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। अशरफ वानी, मीर फरीद के साथ एजाज डार, श्रीनगर, आज तक। जुमे की नमाज, मस्जिदों से उठती आवाज और तकरीर के जरिए लोगों तक पहुंचने वाला पैगाम, जम्मू कश्मीर में अब इसी पैगाम के विषय को लेकर सियासत गर्मा गई है। विवाद वक्फ बोर्ड की उस बैठक के बाद शुरू हुआ, जिसमें इमामों और खतीबों के साथ जुमे की तकरीरों के लिए साझा विषय तय करने पर चर्चा हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पहल पर एतराज जताया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इसे धार्मिक मामलों में दखल से जोड़ते हुए बीजेपी के एजेंडे को जम्मू कश्मीर में लागू करने की कोशिश बताया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी इस प्रस्ताव की आलोचना की है। उनका आरोप है कि धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है और जम्मू कश्मीर को इस तरह के प्रयोग का केंद्र बनाया जा रहा है।
1: मैं समझती हूँ ये एक और जो है हमारे मजहब में, हमारे दीन में मुदाखलत है और बदकिस्मती से बीजेपी का ये एजेंडा ही है कि किस तरह मुसलमानों को तंग किया जाए, उनकी दीन में मुदाखलत किया जाए। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह ये भी एक यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं।
0: विवाद बढ़ने के बाद वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने सफाई दी है। उनका कहना है कि बोर्ड ने खुतबों की सामग्री तय करने को लेकर कोई औपचारिक आदेश या अनिवार्य निर्देश जारी नहीं किया।
2: यहाँ से कोई डायरेक्टिव नहीं है, कोई यहाँ पे इतने बड़े ये नहीं है। हमारे आइमा जानते हैं उनको क्या करना है। आइमाओं को इंडिपेंडेंट छोड़िए, वक्फ बोर्ड पे पॉलिटिक्स मत करिए। वक्फ बोर्ड ने जो काम करा है वो करा है।
0: फिलहाल वक्फ बोर्ड की पहल पर जम्मू कश्मीर में सियासी बहस तेज है। जम्मू कश्मीर से मीर फरीद, आज तक।

0: बीजेपी और विपक्ष में जारी है राजनीतिक युद्ध। ज्ञानेश के खिलाफ राहुल की मोर्चेबंदी जारी। पार्टी नेताओं के साथ इंदिरा भवन में बैठक। बीजेपी का आरोप, विदेशी हाथों में खेल रहे हैं राहुल। अंकिता भंडारी के परिजनों से कल रात मिलने के बाद आज राहुल ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। दुष्यंत गौतम की नियुक्ति पर उठाए सवाल, कहा सरकार के इस निर्णय से स्तब्ध हूं। दिल्ली में कल प्रदर्शन के पहले आज दीपके का केंद्र पर हमला, कहा एक देश एक पार्टी इनका उद्देश्य। प्रशांत भूषण बोले सत्ता परिवर्तन के लिए हमारी लड़ाई। पंचायत आज तक राजस्थान में बोले मुख्यमंत्री भजन लाल, तेजी से विकास कर रही है डबल इंजन की सरकार। पेपर लीक को किया सील, ड्रग तस्करों पर की कार्रवाई। और प्रयागराज में सीएम योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा माफिया के सामने घुटने टेक मौन रहती है एसपी सरकार, अब माफिया मुक्त हो गया है यूपी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत आपका मुंबई मेट्रो में। बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान ने 10 अक्टूबर को मुंबई में एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया था जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर था। इमरान अमेरिकी नागरिक हैं, इसलिए बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। अब इमरान खान को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का नोटिस मुंबई पुलिस ने दे दिया है, लेकिन इस नोटिस के खिलाफ इमरान खान के वकील कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। विपक्ष इसे लेकर हमलावर है।

0: आमिर खान के भांजे और अभिनेता इमरान खान को मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया है। मुंबई पुलिस ने इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस थमा दिया है। अब विपक्ष इसे तानाशाही करार दे रहा है।
1: क्या एक व्यक्ति जो भारत देश का है लेकिन उसके पास लीगल एक व्यवस्था आपने बनाई कि वो एक ऐसा पासपोर्ट रख सकता है कि जिसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसने अगर पार्टिसिपेट किया किसी प्रोटेस्ट में तो आपको उतना बर्दाश्त नहीं है? कोशिश तो उन लोग बहुत करेंगे, एक इमरान खान को आप भगा दोगे 10 इमरान खान खड़े हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: इमरान खान के खिलाफ मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई के पीछे की वजह भी समझ ली। दरअसल 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने इमरान खान समेत कई लोगों को हिरासत में लिया था। अब इस मामले में मुंबई पुलिस के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी FRRO की ओर से नोटिस जारी किया गया है, जिसके तहत 28 अक्टूबर तक इमरान को भारत छोड़ने के लिए कहा गया है, क्योंकि इमरान भारतीय नागरिक नहीं है। ऐसे में भारत में रहते हुए राजनीतिक या सार्वजनिक प्रदर्शन में उनकी भागीदारी को लेकर संबंधित आवर्जन कानूनों के तहत ये एक्शन हुआ है। इमरान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI का दर्जा है।
2: बॉलीवुड अभिनेता और एक्टर आमिर खान के भांजे इमरान खान को मुंबई पुलिस ने भारत छोड़ने की नोटिस दी है। 28 अक्टूबर को इमरान खान को भारत छोड़ने के लिए मुंबई पुलिस द्वारा इस नोटिस में कहा गया है। अगस्त क्रांति में हुए जन आंदोलन में इमरान खान ने हिस्सा लिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर और CGP के समर्थन को लेकर ये प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें इमरान खान ने शिरकत की थी, जिसके बाद उन्हें उस दिन डिटेन कर लिया गया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने इमरान खान की नागरिकता पर सवाल उठाए थे और पुलिस में शिकायत की थी कि वो अमेरिकी नागरिक है और उन्हें अमेरिका भेजा जाए। आज इमिग्रेशन एक्ट के तहत मुंबई पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई है। अब देखना होगा कि इमरान खान द्वारा इस आने वाले दिनों इस नोटिस को क्या जवाब दिया जाता है, या वो 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ते हैं या वो इस नोटिस को लीगली चैलेंज करेंगे।
0: बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इमरान खान की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। अब वो मुंबई पुलिस और CM फडणवीस का आभार जता रहे हैं।
3: अमेरिकन नागरिक इमरान खान पाकिस्तान से पैसा आए, विदेश की ताकत और ऐसे विदेशी नागरिक हिंदुस्तान में अराजकता फैलाने का षड्यंत्र, इमरान खान के खिलाफ मैंने शिकायत दी थी। इमरान खान को 28 अक्टूबर तक हिंदुस्तान छोड़ना है। ऐसे जो भी होंगे, इमरान होंगे, इकबाल होंगे, यूसुफ होगा, अब्दुल होगा, जो विदेशी नागरिक विदेशी पैसा, उनके ऊपर ऐसी ही कार्रवाई होगी।
0: पुलिस के मुताबिक अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन के लिए जरूरी मंजूरी नहीं ली गई। OCI कार्ड धारक भारतीय मूल के विदेशी नागरिक होते हैं, जिन्हें भारत में रहने और कई अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता है। हालांकि OCI का दर्जा भारतीय नागरिकता के समान नहीं है और इसके लिए कुछ कानूनी प्रतिबंध भी जुड़े होते हैं।
4: मेरे ख्याल से जो भी कार्रवाई हुई है इसमें जो भी एक्ट है, इसमें जो सेंटर का एक्ट है, वो एक्ट के हिसाब से कार्रवाई हुई है। और यहाँ पे कोई भी पर्सनल ग्रजेस रख के या फिर कोई सेलिब्रिटी है इसलिए कार्रवाई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप वीजा लेके इस कंट्री में हो तो उस पर जब भी वीजा इश्यू होते हैं तभी कोई कंडीशन इसमें लगाई जाती है, और अगर इस कंडीशन का वायोलेशन होगा तो बिल्कुल उसके उसमें जो एक्ट लागू है उस एक्ट के हिसाब से कार्रवाई हुई है।
0: हालांकि इमरान ने प्रदर्शन में अपनी भागीदारी को व्यक्तिगत नागरिक के तौर पर बताया था। मुंबई पुलिस ने घर जाकर इमरान खान के परिवार को नोटिस थमा दिया है।
5: हम इस वक्त एक्टर इमरान खान के रेसिडेंस के बाहर खड़े हैं। एक्टर इमरान खान एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं आफ्टर बीइंग टोल्ड टू लीव इंडिया बाय October 28। ये नोटिस आज सुबह ही उनको दिया गया था और ऐसे भी कहा जा रहा है, उनके लॉयर्स कह रहे हैं कि ये वो चैलेंज करेंगे बॉम्बे हाईकोर्ट को, ये नोटिस को चैलेंज करेंगे और ये कल होगा फ्राइडे को। तो अब देखते हैं इनका नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट मूव क्या होगा इमरान का।
0: लेकिन इमरान खान के वकील देश छोड़ने वाले इस नोटिस को कोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहे हैं। फिलहाल इमरान खान को नोटिस के मामले में विपक्ष की एंट्री के बाद सियासी घमासान बढ़ने के आसार। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
6: कल दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी ने कन्नौट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा यात्रा का ऐलान किया है। इससे पहले आज अभिजीत दिपके ने नेहा बोरा, एक्टर प्रकाश राज, सीनियर वकील प्रशांत भूषण के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीसी ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला। वहीं सौरभ दास और आशुतोष रंखा की गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठाए, जबकि राहुल गांधी ने भी यूथ कांग्रेस NSUI और कांग्रेस सेवा दल के साथ चाय पर चर्चा की।
7: जंतर मंतर बंद, अब कनॉट प्लेस पर जुटेगी CJP। 16 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा, दिपके का ऐलान, चाहे जेल में डाल दो तिरंगा लहरा कर रहेंगे। राहुल गांधी की चाय पर चर्चा, CEC के खिलाफ सरप्राइज प्लान। 16 अक्टूबर को क्या होगा, कौन कौन कनॉट प्लेस पर जुटेगा?
8: सौरभ और आशु को बस तिरंगा लहराने के लिए जेल में डाला गया है, तो मैं सभी देशभक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग तिरंगे से प्यार करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 16 अक्टूबर को शाम को 5 बजे आप सब सेंट्रल पार्क कैनॉट प्लेस में आइए तिरंगे के साथ। वहां पर हम अपना तिरंगा लहराएंगे और हम बता देंगे कि वेविंग अ तिरंगा इज नॉट अ क्राइम। हो सकता है इसके बाद मुझे भी जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। मेरा तिरंगा मेरा प्राइड है और उसे मैं लहरा कर ही रहूंगा।
7: 16 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस पर कॉकरोच जनता पार्टी की कॉल के बाद दो बड़ी पिक्चर सामने आती हैं। नंबर एक, अभिजीत दिपके दिल्ली के प्रेस क्लब में आयशा अध्यक्ष, नेहा बोरा, एक्टर प्रकाश राज और सीनियर वकील प्रशांत भूषण के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। नंबर दो, राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में यूथ कांग्रेस NSUI सेवा दल के साथ चाय पर चर्चा की। अब सवाल यह है कि 16 अक्टूबर को वो होने जा रहा है जो 10 अक्टूबर को ना हो सका, क्योंकि 10 अक्टूबर को जब कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया तो पूरी दिल्ली किले में तब्दील कर दी गई थी और CJP के अभिजीत दिपके, सौरभ दास और आशुतोष रंका को फ्लाइट के अंदर से ही हिरासत में ले लिया गया था।
9: पूरी दिल्ली आपने ठप कर दी, रेलवे बंद कर दिए, मेट्रो बंद कर दिए, दिल्ली को एक बॉर्डर बना दिया आपने, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर जैसा बना दिया। सारे फोर्सेस दिल्ली में अपने बुला ली, सारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को घसीटा, ऑपोजिशन को घसीटा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को सड़कों पर घसीटा, एक ज्ञानेश कुमार के लिए इतना क्या?
7: 10 अक्टूबर को जब CJP जंतर मंतर की सुरक्षा को भेजने में नाकाम हुई तो 3 दिन बाद यानी 13 अक्टूबर को CJP के नेता सौरभ दास, आशुतोष रंका और अजिंक्य शिंदे हाथ में तिरंगा लेकर किसी तरह से सुरक्षा को भेद कर जंतर मंतर तक पहुंच जाते हैं।
10: इस्तीफा ज्ञानेश कुमार का जंतर मंतर पर ही होगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो।
11: जंतर मंतर डेजिग्नेट प्रोटेस्ट साइट है एंड वी विल गेट द रेजिग्नेशन ऑफ ज्ञानेश कुमार फ्रॉम जंतर मंतर।
7: इसके बाद आशुतोष रंका और सौरभ दास को तो दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने 5 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। अब अभिजीत दिपके ने 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क पर तिरंगा यात्रा का ऐलान कर दिया है।
9: हर घर तिरंगा कहते थे ये लोग, कल आशुतोष और सौरभ को तिरंगा लहराने के लिए इन लोगों ने उठा लिया। तिरंगा लहराना इस देश में कब से वॉल्यूशन ऑफ लॉ हो गया, वॉल्यूशन ऑफ पीस हो गया? जहां तक मुझे याद है इस देश में तिरंगा लहराने पर तब पाबंदी थी जब ये देश कॉलोनियल रूल में था, जब इस देश पर अंग्रेजों का राज था।
7: बड़ी बात यह है कि जब सौरभ दास और आशुतोष रंका तिहाड़ में हैं, तो CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके, आयशा की अध्यक्ष नेहा बोरा, एक्टर प्रकाश राज और सीनियर वकील प्रशांत भूषण के साथ ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलने आए हैं।
12: हिंदी की एक कविता है, रश्मि रवि नाम है उसका, उस कविता की दो पंक्तियां हैं, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये पूरा मूवमेंट इस बात का सबूत है कि ये जो वोटर अधिकार की जद्दोजहद है वो किसी इंडिविजुअल की नहीं है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, किसी बैनर किसी झंडे की वो मूवमेंट नहीं है। ये मूवमेंट हिंदुस्तान के आम गरीब घरों में जिंदा है।
7: आपको बता दें कि राहुल गांधी भी आशुतोष रंका और सौरभ दास की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठा चुके हैं। राहुल ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध में तिरंगा लहराना जुर्म नहीं है, इसके लिए युवाओं को जेल भेजना कायरता है। स्टूडेंट्स, युवा, पत्रकार, इंडिया ब्लॉक, अलग अलग बैनर, लेकिन मकसद एक, सभी विरोध एक है। जंतर मंतर भारत के लोगों का है, हम इसे वापस लेंगे। इधर सीजेपी का 16 अक्टूबर वाला प्लान तैयार है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और कांग्रेस सेवा दल के साथ चाय पर चर्चा करके आगे की रणनीति सेट कर दी है।
13: प्रियंका जी भी थी, खड़गे जी थे, केसी जी थे, और सभी ने अप्रिसिएट किया, सभी ने बताया कि ये आपकी राजनीति में क्लासेस चल रही है, जो संघर्ष ये जाया नहीं जाएगा।
14: राहुल जी ने आज जो हौसला दिया है एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के वर्कर्स को, उस हौसले के बाद तो अब डेली हम सरकार डगमगाएंगे, डेली सड़कों पर दिखेंगे।
15: नहीं, उन्होंने हम सब लोगों को मोटिवेट किया कि आप सब लोग संघर्ष करो, आप सब लोग लड़ो।
16: और राहुल जी ने एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि बोले कि हर दूसरे तीसरे दिन एक नया स्टैंडिंग जो है वो निकल करके सामने आएगा, और आप बहुत मजबूती से मैदान में खड़े रहो, ये लोग बहुत कमजोर लोग हैं।
6: महाराष्ट्र एफडीए ने मिलावट रोकने और खाद्य सुरक्षा मजबूत करने के लिए खुले और बिना पैकिंग वाले मसाला पाउडर और मिश्रित मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी है। अब मसालों को उत्पादन स्थल पर पैक और सील करना अनिवार्य होगा। मसालों को कीटाणु रहित करने के लिए एथनील ऑक्साइड के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।
17: ये जो ऑर्डर जारी किया है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है, कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है, वो सेफ होने चाहिए, स्टैंडर्ड होने चाहिए, और किसी भी तरह उसका क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जिसमें कौन आता है, इसमें बेसिकली प्रोड्यूसर्स आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, होलसेल और रिटेल सेलर्स आते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, होटल्स, कैटरर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स एंड दोज हु डील टर्मरिक जो है, कोरिएंडर, चिली, कमीन, ब्लैक पेपर, सिनेमन, मिक्स स्पाइसेस, ये जो सब प्रोड्यूस करने वाले एफबीओज है वो सब इसमें कवर है। इसमें स्ट्रिक्ट बैन है, प्रोहिबिशन है मेटानेल येलो, रोडामिन बी, सुदान डाइस और लीड क्रोमेट जैसे कलर जो है, इसमें स्ट्रिक्ट बैन है, दे कैन नॉट इट, ये बिल्कुल यूज नहीं किए जा सकते स्पाइसेस बनाने में या उसे मिक्स करने में।
6: बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम शक्तिपीठ मां तुलजा भवानी के दर्शन आपको करवाएंगे। देखते रहिए मुंबई मेट्रो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: महाराष्ट्र के तुलजापुर में शक्तिपीठ मां तुलजा भवानी मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मां भवानी को छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी माना जाता है। लोक मान्यता है कि मां ने शिवाजी महाराज को भवानी तलवार प्रदान की थी जो उनके साहस और स्वराज्य का प्रतीक बनी।
2: शिवाजी महाराज की तलवार की ताकत और धार उनको कहां से मिली थी आपको बताएं? माँ तुलजा भवानी से, उनकी कुलदेवी से, और उसी मंदिर में हम मौजूद हैं। बहुत ही खास मंदिर, अष्टभुजा वाली माँ गर्भगृह में विराजमान हैं। शिवाजी महाराज की कुलदेवी हैं ये, और आपको बता दें कि शिवाजी महाराज भी यहाँ पर एक बार आए थे, और कहा यह जाता है कि उनकी तलवार में जो धार थी, जो शक्ति थी, जो ताकत थी, जो दुश्मनों को खत्म करने का मादा था, वो उन्हें कुलदेवी से मिला था। सपने में आकर माँ ने कहा था कि जिस तरीके से तुम एक नेक काम के लिए निकले हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी तलवार के साथ हूँ। हजारों हजार लोग पहुँचते हैं यहाँ दर्शनों के लिए माँ भवानी के, और आपको बता दें कि 6-6 घंटे की लाइन यहाँ पर लगती है। अभी क्योंकि नवरात्रों का समय है तो बड़ी संख्या पर लोगों के पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के तुलजापुर में विराजती हैं माँ तुलजा भवानी, और उनकी महिमा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका संबंध है मराठा इतिहास और छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथा के साथ। मान्यता है कि माँ भवानी शक्ति और साहस का प्रतीक हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। पौराणिक कथाएं भी इससे बहुत जुड़ी हुई हैं। 12वीं शताब्दी में माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण हुआ था। महाराष्ट्र के प्रमुख तीर्थों में से एक है। मंदिर की जो वास्तुकला है वो बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि हेमाड पंथी शैली का यहाँ पर ज्यादा प्रयोग नजर आता है। तो मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, गर्भगृह है, विशाल जो इसका प्रांगण है, बहुत ज्यादा खास माना जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र के साथ शशि शर्मा, तुलजापुर आज तक महाराष्ट्र।
1: मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।

0: आ गया सोमवार और आ गए
1: चकमक चाचा।
0: हाँ चाचा, अखबार भाँच रहे हैं।
2: टेस्ट
0: चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चिचा कब जाएंगे?
2: अरे भैया प्रोटेस्ट उत्तेस्ट में हिस्सा ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा, हम अपना मुद्दा उठा चुके पुराने।
0: अच्छा, कब उठाए?
2: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए।
0: अच्छा
2: हाँ, तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग तरह इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे दन दन दन दन कर गया, ऐसा ये सब नहीं था अपना मामला
3: जी,
2: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
0: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है।
2: टूटा भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे कार्रवाई चलती थी दर्द होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर मुद्दा रखे था हाँ, एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
0: अच्छा
2: और क्या
0: आपका मतलब, हम लोग डर जाते हैं?
2: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल, जहाँ पुलिस सिटी में भेजे उसमें भागने लगता हूँ।
0: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही
2: है। किधर?
0: चाचा हम खेल गए अब की।
4: ये हिंदुस्तान है अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है। और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूँ, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए, इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूँ, दिल से प्यार से, देखिए मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए, इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस, और घबराइए मत। कोई डर रहा है?
5: नहीं सर, बिल्कुल नहीं।
4: खुश हो?
6: यस सर।
4: शाबाश, लव यू।

0: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
2: डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
2: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
3: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
1: कितना घटिया था यार।
2: लप लप लप।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: चुनाव आयोग के खिलाफ छिड़ी सियासी लड़ाई जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो वहां जंग के चार तरह के मोर्चे नजर आए। पहला मामला चुनाव आयोग और SIR वाला था, दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक राहुल गांधी के मार्च का था, तीसरा मामला जंतर मंतर से प्रदर्शन स्थल हटाने का था, चौथा मामला महिला पत्रकारों प्रदर्शनकारियों से बदसलूकी का था, जिसमें से तीन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। पहला नोटिस राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं के अलावा तीन और अर्जियों पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग और दोनों चुनाव आयुक्तों को जारी हुआ और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि हम अगली सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं में से एक से उसके आचरण के बारे में पूछना चाहेंगे। नोटिस जारी करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी बात की निंदा कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं में से एक के संबंध में नोटिस को फिलहाल अस्थायी तौर पर स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते वो अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण दें। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन करने पहुंचे राहुल खड़गे, अखिलेश, महुआ मोइत्रा समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं को नोटिस देकर जवाब मांगा है। दरअसल 12 अक्टूबर को राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। हजारों की भीड़ के साथ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जाकर याचिका देने की इस कोशिश को लेकर वकीलों ने सख्त एतराज जताया था। 195 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं की इस हरकत पर चिंता जाहिर की थी।
1: न्यायपालिका को, भारत की न्यायपालिका सबसे ज्यादा मजबूत, निष्पक्ष और जनता इस पे विश्वास करती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इसको डराने का प्रयास, क्या हजारों समर्थकों की भीड़ लेकर सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में जाना, नारेबाजी करना, हुड़दंग करना, ये क्या था?
0: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी इसी चिट्ठी का जिक्र करते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि वकीलों को डराने धमकाने की कोशिशें चिंताजनक हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई डरा धमका नहीं सकता, ऐसी कोशिशें कमजोर होती हैं, कोई ध्यान नहीं देता। कोर्ट को बाहर दिए जा रहे बयानों की भी जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट में बाकी दो मामलों में महिला पत्रकारों से बदसलूकी और जंतर मंतर से प्रोटेस्ट साइट हटाने को लेकर भी सुनवाई हुई। महिला पत्रकारों से बदसलूकी वाले मामले में कोर्ट ने कहा कि घटना से जुड़े सभी CCTV, सोशल मीडिया रिकॉर्डिंग्स और डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखे जाएं। ACP की ओर से दर्ज SC/ST एक्ट वाले केस में महिला पत्रकार की गिरफ्तारी नहीं की जाए, पीड़ित महिला पत्रकारों के नाम बंद लिफाफे में दिए जाएं, पुलिस बर्बरता की जांच के लिए गठित होने वाली कमेटी में शामिल लोगों के नाम भी बंद लिफाफे में दें। जंतर मंतर से प्रदर्शन स्थल हटाने के मामले में भी सरकार ने अदालत में बताया कि इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं, कमेटी ने पहले ही रिपोर्ट दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।

0: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
2: डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
2: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
2: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखिए।
1: कितना घटिया था यार, घटिया तरीके से पढ़ा।
2: लप लप लप।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

में जारी है राजनीतिक घमासान। ज्ञानेश के खिलाफ राहुल की मोर्चाबंदी जारी। पार्टी नेताओं के साथ इंदिरा भवन में बैठक। बीजेपी का आरोप, विदेशी हाथों में खेल रहे हैं राहुल। अंकिता के परिजनों से मुलाकात के बाद राहुल ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। दुष्यंत गौतम की नियुक्ति पर उठाए सवाल, कहा सरकार के निर्णय से स्तब्ध हूं। दिल्ली में प्रदर्शन के पहले दीपके का केंद्र पर हमला, कहा एक देश एक पार्टी इनका उद्देश्य। प्रशांत भूषण बोले सत्ता परिवर्तन के लिए हमारी लड़ाई। पंचायत आज तक राजस्थान में बोले मुख्यमंत्री भजन लाल, तेजी से विकास कर रही है डबल इंजन की सरकार। पेपर लीक को किया सील, ड्रग तस्करों पर कार्रवाई। प्रयागराज में योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा माफिया के सामने घुटने टेक मौन रहती थी समाजवादी सरकार, अब माफिया मुक्त हो गया यूपी।

बीजेपी और विपक्ष में जारी है राजनीतिक युद्ध। ज्ञानेश के खिलाफ राहुल की मोर्चाबंदी जारी। पार्टी नेताओं के साथ इंदिरा भवन में की बैठक। राहुल गांधी पर बीजेपी ने लगाया आरोप, कहा विदेशी हाथों में खेल रहे हैं राहुल। अंकिता के परिजनों से मिलने के बाद राहुल ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। दुष्यंत गौतम की नियुक्ति पर उठाया सवाल, कहा सरकार के निर्णय से मैं स्तब्ध। दिल्ली में आज प्रदर्शन के पहले बीती शाम दीपके का केंद्र पर हमला, कहा एक देश एक पार्टी इनका उद्देश्य। अभिजीत दीपके बोले अगर हम 100 जगहों के नाम सार्वजनिक कर दें तो क्या उन सभी 100 जगहों को बंद कर दिया जाएगा। प्रशांत भूषण का बड़ा बयान, बोले ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है, हम सुनिश्चित करेंगे कि सत्ता परिवर्तन हो। पंचायत आज तक राजस्थान में, बोले मुख्यमंत्री भजनलाल तेजी से विकास कर रही है डबल इंजन की सरकार। पेपर लीक को किया सील, ड्रग तस्करों पर हुई कार्रवाई। प्रयागराज में सीएम योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा माफिया के सामने घुटने टेक मौन रहती थी एसपी सरकार। अतीक के अवैध कब्जे वाली जमीन पर गरीबों के लिए भवन निर्माण, मुख्यमंत्री योगी ने शिलान्यास करते हुए कहा यूपी पूरी तरह से अब माफिया मुक्त। मानसा परविंदर झोटा हत्याकांड में बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी अश्विनी कुमार को 7 दिन की रिमांड, पत्नी नीलम रानी और विपिन कुमार भी गिरफ्तार। झोटा हत्याकांड के बाद थाना सिटी 2 के प्रभारी बेअंत कौर निलंबित। मानसा में सुरक्षा बढ़ गई, मेडिकल के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। मानसा हत्याकांड पर सीएम मान का सख्त संदेश, बोले दोषियों साजिश में शामिल किसी को भी नहीं बख्शेंगे। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में अब रोज होगी कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई, सुबह 10 से 5 बजे तक राष्ट्रीय पदाधिकारी सुनेंगे लोगों की समस्याएं। दिल्ली में 5 घंटे की पूछताछ के बाद पूर्व जेएनयू प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद डॉक्टर अंगोमचा बिमोल वसंत कुंज थाने से निकले। बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, नवरात्र दिवाली समेत सभी पर्वों पर सार्वजनिक सड़कों गलियों फुटपाथों पर पटाखे फोड़ने पर साल भर तक रोक। जालना में डोमिनेट्स पिज्जा आउटलेट का फूड लाइसेंस सस्पेंड, एफडीए की जांच में सिर्फ 63% खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन। शाकाहारी मांसाहारी पिज्जा एक ही ओवन में बनाने, साफ सफाई में लापरवाही पर कार्रवाई। जालना में डोमिनोज का लाइसेंस अगले आदेश तक रद्द। महाराष्ट्र एफडीए का बड़ा निर्णय, मुंबई समेत राज्य में खुले मसालों की बिक्री पर प्रतिबंध, मसालों के स्टेनलाइजेशन एथिलीन ऑक्साइड के इस्तेमाल पर भी रोक। बॉलीवुड एक्टर इमरान खान को भारत छोड़ने के FRRO के आदेश को कोर्ट में चुनौती देंगे वकील, 14 दिन में देश छोड़ने का मिला है नोटिस। सूरत में मजदूरों का महा आंदोलन, रविवार की छुट्टी और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन। पुलिस ने आंदोलन शुरू होने से पहले यूनियन के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया, कलेक्टर कार्यालय के बाहर कई मजदूर हिरासत में। राजकोट में मामूली बात पर युवक की चाकू मारकर हत्या, 3 गिरफ्तार। नोएडा में बारिश के बाद बड़ा हादसा टला, सड़क धंसने से गड्ढे में फंस गई स्कूल बस, बाल बाल बचे बच्चे। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, पत्थरों से भरा डंपर पलटने से कार के पास खड़े युवक की दबकर मौत। पलवल में नागरिक अस्पताल के सामने खुले नाले में स्कूटी समेत गिरा व्यक्ति, सुरक्षा दीवार बैरिकेडिंग नहीं होने से हादसा। पटना में बच्चों से भरी स्कूल वैन पलटी, 7 बच्चे घायल, 1 बच्चे की स्थिति गंभीर। मुंबई के गोरेगांव में दिल दहला देने वाली घटना, 2 वर्ष की बच्ची को छठी मंजिल से फेंकने का आरोप, 12 वर्ष की नाबालिग और मां गिरफ्तार। जयपुर में बेकाबू सरकारी बस का कहर, कई वाहनों को मारी टक्कर, महिला को कुचला। इंदौर में अवैध क्लिनिक में इलाज के दौरान 10 वर्ष की बच्ची की मौत, पहले भी एक महिला की हो चुकी है मौत। गुजरात के पंचमहल मालवाहक रोपवे पर केबल टूटी, ट्रॉली टावर से टकराई, कोई हताहत नहीं। बीते वर्ष इसी घटना के कारण 6 लोगों की मौत हुई थी। हाजीपुर में स्कूल की सीढ़ियों पर मिला 10वीं के नाबालिग छात्र का शव, पीट पीट कर हत्या का आरोप, लड़की से विवाद की आशंका। दिल्ली के कालंदी कुंज में सरेराह चाकू मारकर हत्या, सीसीटीवी से पता चला। बागपत में कुत्ते की हत्या, रस्सी से बांधकर गली में घसीटा शव, स्ट्रीट डॉग की हत्या का वीडियो वायरल। मुजफ्फरपुर में ऑनर किलिंग का खुलासा, प्रेम प्रसंग के विरोध में युवती की हत्या। मोगा में एनआरआई के घर के गेट पर फायरिंग, स्कॉर्पियो सवार फायरिंग करके भागे। धौलपुर की फल मंडी में भीषण आग, लाखों रुपए के फल जलकर राख, दमकल की 3-4 गाड़ियों ने बड़ी मेहनत से आग बुझाई। मुजफ्फरपुर में सिलीगुड़ी से आ रही यात्री बस के तहखाने से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, 3 गिरफ्तार। अमृतसर के अजनाला में ड्रग ओवरडोज से नाबालिग की मौत, जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिरी, 14 गाड़ियां क्षतिग्रस्त, बड़ा हादसा टला। वाराणसी में जोरदार धमाके से 2 मंजिला मकान गिरा, 2 लोग घायल। पटना में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार, 82 एटीएम डेबिट कार्ड बरामद। दिल्ली एनसीआर में छाए घने बादल, कई इलाकों में बारिश, तेज आंधी ने लोगों को किया हैरान। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदला मौसम, IMD ने दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश की संभावना व्यक्त की।
तेज हवा के कारण दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलते हैं वाहनों की रफ्तार धीमी हुई, गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लगी। हरियाणा के करनाल में भी मौसम ने करवट ली, काले बादलों के साथ छाया अंधेरा, जमकर हुई बारिश। मौसम विज्ञान के अनुसार कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। जम्मू कश्मीर की वादियां बर्फबारी से हुई गुलजार, गुलमर्ग में हिमपात से बढ़ गई पहाड़ों की खूबसूरती। जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में मौसम की पहली बर्फबारी, रास्ते पहाड़ सब जगह बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी के कारण मुगल रोड हुआ बंद, सोनमर्ग लद्दाख हाईवे और बांदीपुरा गुरेज रोड पर भी आने जाने वालों की मुश्किलें बढ़ी। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने मुगल रोड और गली इलाके में बर्फ हटाने का काम शुरू किया, मशीनें काम पर लगाई गईं। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी का दौर, केलांग समेत कई इलाकों में सफेद बर्फ की चादर से सब ढका। जिला मुख्यालय केलांग समेत दारचा जस्पा सिस्सू में बर्फ के फाहे, खूबसूरत दृश्य। मनाली में बर्फबारी, रोहतांग शिंकुला बारालाचा दर्रे पर 6 इंच तक गिरी बर्फ, मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। रोहतक में एक बार फिर से मौसम बदला, प्रदेश भर में बारिश, गोहाना में तेज बारिश से मंडी में रखा धान खराब हुआ। लद्दाख को विकास की सौगात, पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 3,500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। लेह एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी तोहफा, 640 करोड़ रुपए से बने टर्मिनल को यात्रियों को समर्पित किया गया। धर्मशाला में मौसम बदला, बारिश बर्फबारी से लौटी ठंड, चांदी सी चमकी पहाड़ियां। लाहौल की चंद्रा घाटी में बर्फबारी में फंस गए 100 वाहन किए गए रेस्क्यू, सड़क पर फिसलन से प्रभावित हुई आवाजाही, पुलिस ने पर्यटकों से सुरक्षित चलने की अपील की। चंबा की पांगी घाटी में बर्फबारी से पहाड़ों ने उड़ी सफेद चादर, अक्टूबर में दिसंबर जैसी पड़ रही है ठंड। उज्जैन के भैरवगढ़ सेंट्रल जेल में गरबा, कैदियों ने गरबा खेलते हुए मां की आराधना की। गुजरात के अमरेली में सावर कुंडला की देसी गरबा की धूम, पारंपरिक वेशभूषा, मां जगदंग की आराधना। चित्रकूट में 7 दिवसीय रामलीला महोत्सव, थाईलैंड तेलंगाना की कलाकारों ने 3D रामकथा का मंचन किया। चित्रकूट में 9 दिन के गरबा की धूम, मां दुर्गा की आराधना के साथ गरबा डांडिया में झूमे श्रद्धालु। अब फोन की घंटी बजते ही पता चल जाएगा कि कौन आपको कॉल कर रहा है, एक नंबर से नया नियम होगा लागू। कॉल आने पर मोबाइल नंबर के साथ कॉल करने वाले का नाम भी दिखाई देगा। दूरसंचार विभाग ने पहचान से जुड़े नियम में किया बड़ा बदलाव। मसूरी के होटल से अक्षय कुमार का एक्सक्लूसिव वीडियो आया, राशि खन्ना भी नजर आई, फिल्म की शूटिंग है। फिल्म जेलर 2 सिनेमाघरों में रिलीज होगी आज, हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम कन्नड़ में आएगी फिल्म। रिलीज होने के बाद जेलर 2 को लेकर लोगों की आने लगी प्रतिक्रिया, फिल्म को कहा ब्लॉकबस्टर। फिल्म दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर हिट, वर्ल्डवाइड 500 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली। कॉफी विद करण अपने अंतिम सीजन के साथ OTT पर लौट चुका है, शो के पहले एपिसोड में सलमान बतौर गेस्ट आए नजर। यामी गौतम अपनी नई फिल्म नई नवेली के रिलीज से पहले पहुंचे अयोध्या, रामलला के किए दर्शन, फिल्म की सफलता के लिए की प्रार्थना। रश्मिका मंदाना अपनी फिल्म रणबाली के किरदार जयम्मा से हुई प्रेरित, 400 परिवारों को गोद लेने का निर्णय, जरूरतमंद परिवारों की करेंगी मदद। रोहित जैन ने 500 करोड़ रुपए के बजट के साथ नया OTT प्लेटफॉर्म टाइगर TV किया लॉन्च, आज से हिंदी और पंजाबी कंटेंट शुरू। सिनेमा प्रेमियों के लिए आज और कल का दिन महत्वपूर्ण, कई बड़ी फिल्मों की सौगात, जेलर 2, प्रहार, नई नवेली, रणबाली, 5 फिल्में हो रही हैं रिलीज। कृति सेनन की मडॉक फिल्म्स की नई हॉरर फिल्म एंट्री, फिल्म को स्त्री से भी अधिक डरावना बताया जा रहा है। फिल्म रामायण का इंटरनेशनल ट्रेलर बेंगलुरु में लॉन्च, मेकर्स ने ग्लोबल कैंपेन शुरू किया। रिलायंस ने जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO के लिए RHP दाखिल किया, 1,065 से 1,119 रुपए प्राइस बैंड पर करीब 30,000 करोड़ जुटाने की उम्मीद, 21 से 23 अक्टूबर तक खुलेगा। महंगे फोन और कम डिस्काउंट्स के कारण नवरात्र ऑनलाइन सेल में स्मार्टफोन्स यूनिट्स की बिक्री 16% घटी, पहले हफ्ते में कुल ई-कॉमर्स 31% बढ़ा। ऑन सर्वे के अनुसार अगले वर्ष कंपनियों को औसतन 9% इंक्रीमेंट का अनुमान, लेकिन महंगाई के असर से 5.5% की संभावना। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अजनारा होम्स में बायर्स की तरफ से पूरा पेमेंट करने, पोजीशन मिलने के बावजूद रजिस्ट्री न होने की शिकायत, हाईकोर्ट ने UP सरकार अथॉरिटी UP रेरा से मांगा जवाब। PNGRB ने PNG में 5% तक हाइड्रोजन मिलाने के ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी किए, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद के बीच लागत और पाइपलाइन सेफ्टी में बदलाव की जरूरत। IEA का अनुमान इस वर्ष वैश्विक ऑयल डिमांड
ढाई मिलियन बैरल प्रतिदिन घटेगी, ईरान वॉर, ऊंची फ्यूल प्राइसेस, सप्लाई से डीजल की मांग सबसे ज्यादा प्रभावित। सेबी ने एसएमई आईपीओ में मिनिमम एप्लीकेशन 1 लाख रुपए करने, अलॉटीज की संख्या 200 से 500 करने का रखा प्रस्ताव, निवेशकों की सुरक्षा, आसान पहुंच के बीच संतुलन का उद्देश्य। नेटफ्लिक्स ने लगभग 1000 कर्मचारी यानी 6% को जॉब से निकाला, सब्सक्राइबर्स घटने, स्टॉक गिरने के बीच नेटफ्लिक्स ने लिया ये निर्णय। सीएट ने इस तिमाही में अलग अलग श्रेणियों के टायर की कीमतें 4 से 6% बढ़ाने की बात कही, नया टायर खरीदने वाली कार और टू व्हीलर्स को अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सरकार डेटा सेंटर की बढ़ती बिजली खपत का बोझ कम आम कंज्यूमर्स आप पर हम पर न पड़ने देने के लिए नई नीति लाने पर विचार कर रही, ग्रिड और रिसोर्सेज पर दबाव कम करना उद्देश्य। अमेरिकी न्यूज चैनल सीएनएन के हवाले से बड़ी खबर, ईरान पर महाशक्तिशाली मदर ऑफ ऑल बॉम्ब गिराने पर विचार कर रहा है अमेरिका। रूसी सेना का ओडेसा, कीव समेत कई जगहों पर भीषण हमला, सुपरमार्केट को निशाना बनाया, लॉजिस्टिक्स केंद्र, गोदामों और रिहायशी इमारतों पर हमले में 3 की मौत। रूस को लेकर अमेरिका रुख से चिंतित तो यूरोप, जर्मनी के चांसलर बोले रूस की अरबों यूरो की फ्रीज संपत्ति यूरोप के नियंत्रण में रहनी चाहिए। यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी सेना को बड़ी सफलता और बड़ी शक्ति, 6 हफ्तों के अंदर रूस ने बना लिया जेट इंजन वाले ड्रोन को लॉन्च करने वाला एक बहुत बड़ा बेस। वैश्विक तेल संकट के बीच रूसी सरकार का बयान, ट्रंप के साथ समझौते के बाद रूसी डीजल की वैश्विक बाजार में सप्लाई हुई शुरू। रोमानिया के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, कहा ब्लैक सी के समुद्री तट के पास 2 जहाजों पर भीषण ड्रोन हमला, रोमानियाई राष्ट्रपति ने यह बताने से इनकार किया कि ड्रोन रूसी थे या नहीं। पाकिस्तान के पेशावर में स्कूल में दर्दनाक हादसा, छत गिरने से 27 छात्रों समेत 1 शिक्षक की मौत, मारे गए सभी बच्चों की उम्र 13 साल से कम। अमेरिका की शिकागो के पास हिंदू मंदिर में गोलाबारी मामले में 19 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर कटाक्ष किया, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के परीक्षण पर उठाए सवाल। अल्बानिया में नहीं थम रहा सरकार विरोधी प्रदर्शन, प्रधानमंत्री ने कहा हिंसक प्रदर्शन के बावजूद नहीं दूंगा इस्तीफा।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और जयपुर से ब्लैक एंड व्हाइट के स्पेशल एडिशन में आपका बहुत स्वागत है। दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शन और आंदोलनों को लेकर पुलिस ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है। जुलाई में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में हुई हिंसा और बवाल को लेकर दिल्ली पुलिस ने सभी FIR वापस ले ली थी, लेकिन अब आंदोलन के दूसरे चरण में FIR की बौछार हो चुकी है। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस आक्रामक मोड में नजर आ रही है और व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश पर FIR दर्ज की जा रही है। प्रदर्शनकारियों को सीधा जवाब देते हुए उनके बुरे व्यवहार का शिकार बने पुलिसकर्मी भी खुद अब FIR दर्ज करा रहे हैं।

12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाले जाने की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए उनकी मंशा पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के पैदल मार्च के दौरान हुई अव्यवस्था और उनके आचरण पर कड़ी नाराजगी जताई और इसे लेकर उनसे सफाई भी मांगी। अदालत ने साफ कहा कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। अमेरिका में हिंदू मंदिर पर एक बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम हुई। इलिनॉय में एक 19 साल के लड़के को मंदिर में मास शूटिंग की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसके घर से भारी मात्रा में हथियार और भड़काऊ सामग्री बरामद हुई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी नवरात्रि के दौरान किसी मंदिर को निशाना बनाने और भारतीयों के खिलाफ हिंसा फैलाने की फिराक में था। और अगली खबर, क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ नए और विनाशकारी हमले की तैयारी कर रहा है? सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ईरान के परमाणु ठिकानों और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भयानक हमला कर सकती है और इसके लिए अमेरिका के सबसे बड़े गैर परमाणु हथियार मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है। सवाल है कि क्या मिड टर्म चुनाव के बीच जंग खत्म करने के दबाव में घिरे ट्रंप इतना बड़ा फैसला लेंगे? इधर पाकिस्तान के पेशावर से एक स्कूल की जर्जर छत अचानक भरभराकर ढह गई। इस भयानक हादसे में 13 साल से कम उम्र के 27 बच्चों और महिला टीचर की मौत हो गई जबकि कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मुंबई से करीब 7000 किलोमीटर दूर लंदन जाना 1500 किलोमीटर दूर पटना जाने से सस्ता हो सकता है? इस त्योहारी सीजन में विमान कंपनियों ने आम आदमी की घर लौटने की मजबूरी को कमाई का जरिया बना लिया है और ये खबर हम चाहते हैं कि आज जोर शोर से पूरे देश में जाए। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि जहां इस दिवाली छठ के मौके पर मुंबई से पटना का एक तरफ का हवाई किराया 25,000 से ज्यादा है, वही इतने पैसे में व्यक्ति मुंबई से लंदन जा सकता है। सोचिए, मुंबई से लंदन का जितना किराया है उसने पैसे में आप दिल्ली से पटना पहुंच रहे हैं, यानी पटना जाने वालों से 5 गुना दूरी जितना किराया वसूला।

पीछे छोड़ दिया। अकेले सेनेट लीडरशिप फंड को $158 मिलियन देने वाले मस्क अब 2026 के चुनाव के सबसे बड़े सुपर डोनर बन गए हैं। लेकिन यहां भारत को लेकर वो आरोप लगाते हैं कि उद्योगपति इस देश को चला रहे हैं और वहां ट्रंप पर पैसे ही पैसे न्योछावर कर रहे हैं एलॉन मस्क। सुप्रीम हिपोक्रेसी इसे हम कहेंगे। इधर सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन को लेकर एक बेहद अहम और कड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें हिंदू धर्म से इस्लाम अपनाने वाले लोगों को पिछड़ा वर्ग मुस्लिम यानी BCM कोटे के तहत आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने मूल धर्म की जाति के आधार पर धर्म बदलने के बाद आरक्षण का दावा नहीं कर सकता। अदालत के मुताबिक आरक्षण का ये लाभ जन्म आधारित सामाजिक समूहों के लिए है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि मॉनसून की विदाई के बाद भी अचानक दिल्ली समेत उत्तर भारत में ये झमाझम बारिश क्यों हो रही है। मौसम में आए इस अचानक बदलाव के पीछे की असली वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसकी वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है।

0: आज हमने पंचायत आज तक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव का खास इंटरव्यू किया है, वो भी आपको दिखाएंगे।
1: क्या प्रदर्शन करने वालों को अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है तो आम नागरिक को फ्री पैसेज का अधिकार नहीं है?
0: क्या ये विरोध आंदोलन सरकार को घेरने में कामयाब नहीं हुए?
1: उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कार्रवाई का प्रावधान है।
0: पर चुनाव आयोग ये करेगा?
1: नहीं, क्यों नहीं करेगा? करना चाहिए।
0: कर रहा है,
1: करना चाहिए।
0: मुख्यमंत्री जी, गहलोत जी की शिकायत है, वो कह रहे हैं कि आपने फाउल खेला है।
2: गहलोत साहब का दर्द है वो दूसरा दर्द है।
0: कौन सा?
2: उनका दर्द है कि वो अपने बाढ़ से भी हार गए।
0: लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि एसआईआर, चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार पर छिड़ी राजनीतिक लड़ाई संसद और सड़क के बाद सुप्रीम कोर्ट में कहां तक पहुंचेगी और क्यों विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट मार्च पर आज अदालत को ये कहना पड़ा कि उसे कोई धमका नहीं सकता। देखिए,
3: ये तस्वीरें 12 अक्टूबर के उसी सुप्रीम कोर्ट मार्च की हैं, जिस पर अब सर्वोच्च अदालत ये सवाल पूछ रही है कि इस भीड़ को सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठा करने के पीछे क्या मंशा। विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस ने 12 अक्टूबर के पैदल मार्च को एक बड़ी सफलता बताया था। मार्च में जुटी भीड़ की कई रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की गई और इसके पीछे मकसद यही बताना था कि सरकार के खिलाफ चुनाव आयोग के मुद्दे पर अब लोग सड़कों पर इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है कि अगर लड़ाई राजनीतिक थी तो इस भीड़ को कोर्ट की तरफ क्यों मोड़ा गया।
4: चलो चलो अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर।
5: लेकिन अचानक से जब हम वहाँ खड़े थे कि राहुल गांधी अब आ रहे होंगे, हमारे सामने से उनकी जो ट्रक थी वो निकली, ऊपर से उन्होंने सबको इशारा किया। ठीक हमारे पीछे मल्लिकार्जुन खाड़गे थे, वो खड़े हुए थे। यहाँ पे काफी भगदड़ मच गई क्योंकि कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट किसी तरीके की नहीं थी। हाँ, बल्कि मैं भी खुद बहुत अलग लोगों के साथ वहाँ पे भगदड़ में गिर गए, दब गए हम लोग वहाँ पे।
3: सुप्रीम कोर्ट के परिसर तक पहुंची इस भीड़ और हंगामे को लेकर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कड़े लहजे में कहा है कि कोई भी न्यायपालिका को डरा या दबा नहीं सकता। उन्होंने विपक्षी नेताओं के आचरण पर भी सवाल उठाए और साफ शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को डराने या प्रभावित करने की कोशिशें कमजोर हैं और किसी में ऐसी हिम्मत नहीं है। यानी जिस पैदल मार्च को विपक्षी दल सुपर डुपर हिट बता रहे थे, उसी मार्च को लेकर अदालत ये सवाल पूछ रही है कि क्या उसके परिसर में इस भीड़ को इकट्ठा करके दबाव बनाने की कोई साजिश की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मार्च को लेकर राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और महुआ मोइत्रा को आधिकारिक नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर उनके इस आचरण पर स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि वो मुख्य याचिका पर नोटिस जरूर जारी कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नेताओं के इस बर्ताव को माफ कर रहे हैं।

0: आज ही सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो विपक्ष के आंदोलन और उसके खिलाफ सरकार की रणनीति पर सीधे असर डालेगा। विपक्षी नेताओं ने SIR के खिलाफ जो याचिका दायर की है उस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का जो फैसला लिया है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का सीधा मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात की गहन जांच करेगा कि सरकार ने जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में डीनोटिफाई करते वक्त सचमुच सुरक्षा कारणों को देखा या उसने ऐसा आंदोलन कर रहे लोगों की आवाज को कमजोर करने के लिए किया। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा है कि नई दिल्ली क्षेत्र और जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में धारा 163 लागू करने के पीछे कौन सी ठोस परिस्थितियां थी, और अदालत ने पत्रकारों और वकीलों की सुरक्षा को लेकर भी एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा है। इनमें भी सबसे बड़ा मुद्दा है पत्रकारों का, जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में काफी बहस हुई। केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि आज के दौर में प्रदर्शन स्थलों पर यह पता लगाना मुश्किल होता जा रहा है कि कौन पत्रकार है और कौन नहीं। खुद दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि 6 से 10 अक्टूबर के बीच हुए प्रदर्शनों को ऐसे लोग हवा दे रहे थे जिन्होंने खुद को फ्रीलांस पत्रकार बताकर आड़ ली हुई थी। यानी अब सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा भी पहुंच चुका है कि कैसे कुछ लोग माइक और कैमरे लेकर पत्रकार बन जाते हैं जबकि वो पत्रकार होते नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: जब जुलाई महीने में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस जनता पार्टी और विपक्षी दलों ने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए आंदोलन किया था, तब सरकार ने प्रदर्शनकारियों और उनके नेताओं पर दर्ज किए गए एक एक मुकदमे को वापस ले लिया था। लेकिन इस बार के आंदोलन में दिल्ली पुलिस और सरकार की यही रणनीति कैसे बदली है और इसे धरपकड़ का नाम क्यों दिया जा रहा है, उसके लिए आप हमारी इस रिपोर्ट को देखिए।
2: ये तस्वीर इसी साल जुलाई में हुए कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष के उस आंदोलन की है जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तब उस आंदोलन में 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, 110 से ज्यादा बैरिकेड्स तोड़े गए, 25 से ज्यादा सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, 50 से ज्यादा शील्ड टूटे, 350 से ज्यादा हेलमेट डैमेज और 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर्स को नुकसान पहुंचा। लेकिन इसके बावजूद उस आंदोलन में सरकार ने न सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार किया बल्कि आंदोलन खत्म कराने के लिए हिंसा के मामलों में दर्ज की गई सभी FIR वापस ली गईं। ये एक ऐसी घटना थी जिसके बाद हर कोई कह रहा था कि इस बार जितने भी लोग आंदोलन करने आएंगे उनमें FIR का खौफ नहीं होगा। लेकिन सरकार और दिल्ली पुलिस ने अपनी रणनीति ऐसे बदली कि अब धड़ाधड़ हर मामले में FIR हो रही है और अब इनकी संख्या 25 से ज्यादा पहुंच चुकी है। अब स्थिति यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके पर FIR दर्ज हो चुकी है। आशुतोष रांका और सौरभ दास 5 दिनों की न्यायिक हिरासत के लिए तिहाड़ जेल भेजे जा चुके हैं। राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। यहां तक कि कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के कार्यकर्ताओं ने जो हंगामा किया उनके खिलाफ भी FIR हो गई। NSUI की जिस महिला कार्यकर्ता ऋतु बराला को राहुल गांधी शेरनी बता रहे थे उनके खिलाफ भी आज FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसके जरिए ये आरोप लगाया जा रहा है कि NSUI की ऋतु बराला ने हिरासत में लिए जाते वक्त लेडी कांस्टेबल चंचल यादव के बाल खींचे थे और उन्हें दाब मारी थी।

0: दिल्ली पुलिस की इस बदली हुई रणनीति को बहुत सारे लोग धर पकड़ का नाम दे रहे हैं। धर पकड़ का मतलब है बिना अनुमति ना तो आंदोलन होगा, ना नारे लगेंगे, ना तोड़फोड़ बर्दाश्त की जाएगी, उल्टा सबकी पहचान करके पुलिस FIR दर्ज करेगी और अपनी कानूनी कार्रवाई को सख्ती से पूरा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी अब वैसा आंदोलन खड़ा कर सकती है जैसा उसने जुलाई महीने में किया था। आशुतोष रांका सौरभ दास की गिरफ्तारी के बाद अभिजीत दिपके ने ऐलान किया कि 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में तिरंगा मार्च निकालेंगे, और इस ऐलान के बाद दिल्ली में कैसे हलचल बढ़ने लगी है और क्यों बीजेपी इस आंदोलन के जरिए भारत को बांग्लादेश बनाने की साजिश बता रही है, उस पर ये रिपोर्ट देखिए।
0: ये लगातार दूसरा दिन था जब अभिजीत दिपके को इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ा। आशुतोष रांका और सौरभ दास की गिरफ्तारी के बाद अभिजीत दिपके वामपंथी छात्र संगठन ISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा के साथ दिल्ली के प्रेस क्लब में मीडिया से बात करने के लिए आए। मकसद ये बताना था कि CJP के नेताओं पर पुलिस की कार्रवाई और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन को बंद करने के खिलाफ 16 अक्टूबर को लहरा दो तिरंगा नाम का मार्च निकाला जाएगा, जिसकी शुरुआत कनॉट प्लेस से होगी। लेकिन नेहा बोरा और अभिजीत दिपके जब इसके बारे में बात करने वाले थे तभी उनका विरोध शुरू हो गया। ये लगातार दूसरा दिन है जब अभिजीत दिपके का इस तरह से विरोध हुआ। इससे पहले कल जब वो मुंबई से दिल्ली लौटे थे तब भी उनके खिलाफ नारेबाजी और हूटिंग हुई थी।
2: क्यों देश को खराब कर रहा है? क्यों से देश को खराब कर रहा है?
3: चोर है, चोर है।
4: देश को खराब है?
3: अरे देश को खराब कर।
2: क्यों देश को खराब कर रहा है? क्यों से देश को खराब कर रहा है?
3: चोर है, चोर है।
4: देश को खराब है?
3: अरे देश को खराब कर।
0: इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जो हो रहा है उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। पहले आरोप लगा कि बेंगलुरु में कॉकरोच जनता पार्टी की रैली फ्लॉप रही और उसमें कई सीटें खाली रहीं। इसके बाद जब 10 अक्टूबर को पार्टी ने जंतर मंतर पर आंदोलन बुलाया था तब भी वो उसमें कामयाब नहीं हुए। पार्टी के वरिष्ठ नेता बिना प्रदर्शन किए ही गिरफ्तार हो गए, जबकि जंतर मंतर पर पहुंचने की कोशिश करने वाले लोगों की संख्या भी 1000 से कम रही। इसके पीछे एक बड़ा कारण पुलिस की सख्ती थी, लेकिन BJP के समर्थक इसी को आधार बनाकर अब ये आरोप लगा रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी से देश का आम युवा कट चुका है।
5: भारत माता की जय।
6: राजस्थान के NSA UNA जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो। आई एम नॉट अफ्रेड।
0: इस तरह के विरोध और पुलिस की सख्ती के बाद अभिजीत दिपके कनॉट प्लेस में कॉकरोच जनता पार्टी का तिरंगा मार्च कितना सफल बना पाएंगे इस पर कई लोगों को शक है। ऊपर से इससे भी बड़ी चुनौती नेहा बोरा का वो बयान बन गया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारत को जेंजी आंदोलन का रास्ता बांग्लादेश ने दिखाया।
7: And we know that the Gen Z movement that we are seeing everywhere in this country first started in Bangladesh. And congratulations to you.
0: नेहा बोरा ने ये बात 13 अक्टूबर को तब कही जब बांग्लादेश में तख्ता पलट करने वाले छात्र संगठनों में से एक सोशलिस्ट स्टूडेंट्स फ्रंट की 6th नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा था और भारत की तरफ से वामपंथी छात्र संगठन की नेता होने के नाते नेहा बोरा भी इसमें हिस्सा ले रही थी। उन्होंने न सिर्फ बांग्लादेश के जेंजी आंदोलन को भारत के आंदोलन के लिए प्रेरणा बताया, बल्कि ये भी कहा कि जैसे बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, ठीक वैसी ही लड़ाई भारत में भी लड़ी जा रही है।
7: We know that the movement that began in Bangladesh was for democratizing and voter rights. Today, the movement that the young people are participating in and leading is also a movement for democratic and voting rights. We know that the fight that you fight against religious fundamentalism in your country is also a fight that the Gen Z and the young people of this country fight today.
0: Neha Bora ke is video par BJP ne kai gambhir sawal uthaye, aur sabse badi baat ye hai ki Gyanesh Kumar ke khilaf chal raha chhatra pradarshan keval ek mukhota hai aur inka asli maqsad Bangladesh ki tarz par Bharat mein bhi hinsa phaila kar takhta palat karna hai.
8: Ye inspired hai बांग्लादेश के आंदोलन से, और जैसा बांग्लादेश के अंदर हुआ ठीक वैसा ही ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हो। ध्यान से देखिए, ये नेहा बोरा के शब्द हैं परंतु विचार राहुल गांधी के हैं, क्योंकि एक तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे नेहा बोरा को अप्रोप्रिएट राहुल गांधी कर रहे हैं और दूसरी तरफ वही नेहा बोरा कह रही है कि भारत के अंदर बांग्लादेश जैसा अराजक जेंजी आंदोलन वो चाहते हैं।
0: नेहा बोरा के इस बयान पर अब बीजेपी राहुल गांधी को भी घेर रही है, जिन्होंने विपक्ष के आंदोलन में उन्हें पोस्टर गर्ल के तौर पर पेश किया, और ये मामला अब इतना बढ़ता जा रहा है कि इसमें अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन की भी एंट्री हो गई है। मैरी मिलबेन का आरोप है कि भारत में चल रहे इन आंदोलनों के लिए सीजेपी को अमेरिका के उन लोगों से फंडिंग मिल रही है जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और भारत के भविष्य के खिलाफ हैं। और उन्होंने अभिजीत दिपके को भी ये खुली चेतावनी दी कि जब वो अपने मकसद में सफल नहीं होंगे तब उन्हें फंडिंग देने वाली यही अमेरिकी ताकतें गर्म कोयले की तरह छोड़ देंगी, क्योंकि अराजकता कभी नहीं जीतती। हालांकि अभिजीत दिपके ने इन दावों पर कड़ा एतराज जताया है और ये लिखा है कि भारत के आंतरिक मामलों में उन्हें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
1: अब आप ये देखिए कि बॉलीवुड अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान खान को कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के बाद FRRO यानी फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस क्यों थमा दिया।
9: क्या कोई विदेशी नागरिक भारत में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन में शामिल हो सकता है? आमिर खान के भांजे और फिल्म अभिनेता इमरान खान कानूनी पचड़े में फंस चुके हैं। मुंबई पुलिस ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का सख्त नोटिस थमा दिया है। मुंबई में पिछले दिनों अगस्त क्रांति मैदान में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के बीच अभिनेता इमरान खान भी वहां पहुंचे और पूरी आक्रामकता के साथ इस राजनीतिक प्रदर्शन का हिस्सा भी बने। बेकाबू हालात में मुंबई पुलिस ने 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के साथ इमरान खान को भी डिटेन किया। पुलिस वैन के अंदर इमरान खान ने अपनी पुरानी फिल्म जाने तू या जाने ना के एक सीन को रिक्रिएट करते हुए वीडियो बना लिया। फिल्म के उस डायलॉग घोड़ा चलाना, जेल जाना और किसी को पीटना, इस पर वैन के भीतर हंसते मुस्कुराते हुए रील्स बनाई गई और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया।
10: आज तक तो नहीं, लेकिन लगता है
11: शायद
10: एक बार तो जाना ही है,
11: शायद जा सकते हैं। और तीसरा क्या था, आपने किसी की पिटाई कभी की है?
10: आज तक बट आई स्टिल थिंक करेक्टली
11: वेरी क्लोज, ऑलमोस्ट अ राठौड़, ऑलमोस्ट।
9: सोशल मीडिया के एक वर्ग ने इसे स्टार की बगावत और बहादुरी बताकर शेयर करना शुरू कर दिया, लेकिन वो शायद भूल गए कि कानून की नजरों में ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं बल्कि एक विदेशी नागरिक द्वारा देश के नियमों की सीधी अनदेखी थी। अभिनेता इमरान खान का जन्म अमेरिका में हुआ था, उनके पास जन्म से ही अमेरिकी नागरिकता और अमेरिकी पासपोर्ट है। वो भारत में सिर्फ OCI कार्ड के जरिए रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसे लेकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। OCI कार्ड धारकों को यात्रा, संपत्ति और वर्क परमिट की सुविधा मिलती, लेकिन वो स्थानीय राजनीति या देश के विरोध प्रदर्शनों में कूदकर नियम नहीं तोड़ सकते। इसी गंभीर उल्लंघन पर संज्ञान लेते हुए मुंबई पुलिस ने इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया है और उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश दिया है। इमरान ने नोटिस रिसीव भी कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि अमेरिका के इलिनॉय में एक 19 साल का लड़का हिंदू मंदिर में मास शूटिंग क्यों करना चाहता था, लोगों पर धड़ाधड़ गोलियां क्यों चलाना चाहता था, एक साथ कई लोगों की जान क्यों लेना चाहता था। देखिए,
9: नवरात्रि के पहले दिन अगर इस हमलावर की बंदूक जाम न हुई होती तो अमेरिका में सैकड़ों हिंदुओं का कत्लेआम हो जाता। अमेरिका के इलिनॉय में पुलिस ने 19 साल के इस लड़के को गिरफ्तार किया है। उसका नाम है अलेक्जेंड्रोस पापोराकिस। इसने अरोरा के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक बड़े हमले की कोशिश की थी। ये मंदिर अमेरिका के कुछ सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक। 11 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला दिन था और हर त्योहार की तरह इस दिन भी मंदिर में हजारों लोगों की भीड़ थी। अलेक्जेंड्रोस ने मंदिर पर हमले के लिए इसी दिन को चुना था। वो ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को मारना चाहता था, लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि जैसे ही उसने फायर किया उसकी राइफल जाम हो गई। राइफल के जाम होते ही वो घबरा कर भाग खड़ा। पुलिस की जांच में सामने आया है कि अलेक्जेंड्रोस एक नस्लवादी युवा है जो मानता है कि गोरे लोग दूसरी नस्ल और रंग के लोगों से बेहतर। पुलिस को अलेक्जेंड्रोस के पास से कुछ ऐसे दस्तावेज और चीजें मिली हैं जिसके संबंध श्वेत नस्ल को श्रेष्ठ मानने वाले कट्टरवादी संगठनों से जुड़े हैं। इस हमले के बारे में पुलिस को तब पता चला जब अलेक्जेंड्रोस ने हमला नाकाम रहने के बाद अपने एक दोस्त को इस नाकाम हमले के बारे में बताया और बंदूक जाम ना हो उससे जुड़ी जानकारियां मांगी। इसके बाद उसने कुछ तस्वीरें भी भेजी। अलेक्जेंड्रोस की ओर से भेजी गई तस्वीरें देखकर उसका दोस्त डर गया। उसने तुरंत पुलिस को इस पूरी वारदात के बारे में बताया। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली उन्होंने तुरंत इलिनॉय के पैलेटाइन में अलेक्जेंड्रोस के घर पर दबिश दी और वहां से उसे गिरफ्तार किया। पुलिस को उसके घर के अंदर से बड़ी मात्रा में गोलियां और मैगजीन मिली। पुलिस को पता चला कि वो हमले के समय भी कई मैगजीन्स लेकर गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं की हत्या की जा सके। पुलिस के मुताबिक वो हिंदुओं से नफरत करता था, बल्कि अपने कई सहकर्मियों से उसने हिंदुओं के प्रति अपनी नफरत के बारे में बताया भी था। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस और द हिंदू मंदिर एम्पावरमेंट काउंसिल ने अमेरिका के हिंदू मंदिरों को अलर्ट जारी किया है। केस की गंभीरता को देखते हुए इसे FBI को सौंप दिया गया है। ये मामला अमेरिका में हो रहे रंगभेद और हिंदुओं के प्रति हेट क्राइम से जुड़ा है, इसीलिए अधिकारी ये जानना चाहते हैं कि अलेक्जेंड्रोस के दिमाग में ये नफरत किसने भरी और उसकी असली मंशा क्या थी। इसके अलावा अधिकारी ये भी जानना चाहते हैं कि उसके संबंध किन संगठनों से थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका में हिंदुओं के प्रति हेट क्राइम की इस घटना की निंदा की। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में फरार चल रही हाई प्रोफाइल मॉडल श्रद्धा दुबे ने सिर्फ 12 घंटे के भीतर एक के बाद एक 3 वीडियो जारी कर सनसनी फैला दी। नेपाल में छुपकर बैठी श्रद्धा ने कैमरे पर रोते हुए खुद को पूरी तरह बेकसूर बताया। उसने दावा किया कि शिवा ने आत्महत्या की है। वो 50 लाख से ज्यादा के कर्ज में डूबा था और भारी डिप्रेशन में था। आखिर ये पूरी मर्डर मिस्ट्री क्या है, उस पर ये खास रिपोर्ट।
12: लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में अब नए नए पेच सामने आ रहे हैं। शिवा की मौत को लेकर उनकी गर्लफ्रेंड और लिव इन पार्टनर श्रद्धा पर सवाल उठाए जा रहे हैं और श्रद्धा के नेपाल भागने की खबर के बाद यह शक और गहरा हो गया है। श्रद्धा पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है, लेकिन श्रद्धा दुबे ने एक के बाद एक 2 वीडियो जारी करके शिवा शर्मा के कर्ज में डूबे होने की बात कही है और वो शिवा की मौत को हत्या की तरह नहीं बल्कि आत्महत्या की तरह देखने की अपील कर रही है।
13: यही रिक्वेस्ट है कि कुछ भी किसी लड़की के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि मेरा क्या गुनाह है, मैंने कुछ नहीं किया है, और जो कुछ भी सच है शिवा शर्मा कांड से रिलेटेड कि उसकी कोई हत्या नहीं हुई थी, वो एक सुसाइड था, वो मैं आप लोगों से बताने वाली थी, लेकिन मेरी कंडीशन देखिए कि मैं किस कंडीशन में हूँ। मैं ठीक कंडीशन में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी इस समय फिजिकली फिट नहीं हूँ।
12: पिछले दो दिनों में शिवा शर्मा की मौत के आरोपी श्रद्धा दुबे के दो अलग अलग वीडियो सामने आ चुके हैं और दोनों ही वीडियो में वो खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश में लगी है।
13: हत्या नहीं थी, वो एक सुसाइड था, ठीक है, मैंने अपनी आंखों से देखा उसको कूदते हुए, ठीक। अगर वहाँ के सीसीटीवी कैमरेज निकलेंगे, सब कुछ निकलेगा, तो उसमें दिखेगा कि वो किस तरह से कूद रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग परेशान नहीं है, उस वक्त मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरे घर से किसी ने छलांग मार के सुसाइड अटैम्प्ट किया है, तो मेरी हालत ख़राब होनी स्वाभाविक है, ठीक है।
12: श्रद्धा दुबे ने शिवा शर्मा की मौत को इस तरह से पेश किया जैसे ये आत्महत्या। लेकिन श्रद्धा के इस नए वीडियो के आने के बाद शिवा शर्मा के भी कुछ वीडियो सामने आए जिसमें श्रद्धा उससे सवाल जवाब करती सुनाई दी है। ये सवाल जवाब गहने चोरी और पैसे लौटाने के दबाव बनाने को लेकर किए जा रहे हैं।
13: पैसे रिटर्न कब करोगे?
14: एक महीने में।
13: अच्छा, तो उसके
14: रिटर्न में दे रहा हूँ और तब तक के लिए मतलब गाड़ी रख लीजिए, मिल गया पैसे देके गाड़ी उठा लूंगा वापस।
13: मेरे यहाँ से कब चोरी की थी, किस टाइम पे की थी? सितंबर में की थी, अक्टूबर में की थी, कब की थी? मैं बहुत प्यार से पूछ रही हूँ, अभी मैंने पुलिस नहीं बुलाई है, पुलिस इसके बाद बुलाऊंगी, पहले आप बताइए।
14: सितंबर में और हाँ। जब वॉशरूम जा रहे थे
13: मैं, वॉशरूम में क्या कर रही थी? टाइम लग रहा था मुझे। कितना टाइम लगा था?
14: अप्रोक्स 20-25 मिनट लगे था।
13: 20-25 मिनट लगे थे, तो आपने उसमें से एक साथ ज्वेलरी चुराई थी कि पार्ट में चुराई?
14: एक साथ ली था।
13: एक साथ तीन चैने और एक ब्रेसलेट जो आपने कहाँ पे बेचे?
14: चौक में।
13: चौक में किसके हाथ से?
14: चौक में गोल दरवाजे के अंदर बेचा है, ये नहीं पता किस दुकान पे है, क्योंकि लड़के ने मुझे लेके गया था और बेच मतलब
13: बेच के आपको पैसे दे दिए। तो ये मेरा टोटल पैसा 6 लाख के करीब मुझे कब तक मिल जाएगा?
14: एक महीने के अंदर मिलूंगा।
13: आपकी मम्मी को पता है इस बारे में?
14: नहीं।
13: कि चोरी की है आपने?
14: किसी को नहीं पता।
13: किसी को भी नहीं पता इस बारे में?
14: किसी को नहीं पता।
13: अच्छा, और ये वीडियो मैं दबाव में तो बनवा नहीं रही हूँ भाई, आपने खुद एक्सेप्ट।
12: श्रद्धा दुबे के नेपाल भागने से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें श्रद्धा, उनकी बहन रश्मि और दोस्त आदिल पर शक गहरा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि श्रद्धा का नेटवर्क काफी अच्छा है, जिसकी वजह से उसे पुलिस मूवमेंट की भी जानकारी मिल रही है।
15: थाना हजरतगंज पर नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें कि उन्होंने उनकी एक महिला मित्र हैं श्रद्धा दुबे, उनकी सिस्टर रश्मि दुबे, एक ड्राइवर जिसका नाम अभी सामने आया कि वो दानिश जिसका नाम है, और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ उन्होंने उनकी माता जी ने मुकदमा दर्ज कराया हत्या का। और तब से मुकदमा लिखने के बाद से ही ये जो सारे क्यूज हैं अपने मौके से फरार चल रहे हैं।
12: पुलिस को बहराइच में नेपाल बॉर्डर के पास श्रद्धा की गाड़ी भी बरामद हुई है। इस गाड़ी को लेकर श्रद्धा ने दावा किया था कि वो गाड़ी को अवध ग्रीन अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी करके नेपाल जा रही है। ये वही।
1: और अब आपको त्योहारों पर एयरलाइंस की खुली लूट के बारे में हम बताना चाहते हैं, हम इसे खुली लूट ही कहेंगे। दिल्ली और छठ के मौके पर मुंबई से लंदन जाना, सोचिए, दिल्ली से पटना जाना छठ के मौके पर और मुंबई से लंदन जाना, सस्ता पड़ रहा है लंदन पहुंचना छठ के मौके पर। अगर आप पटना जा रहे हैं तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और मुंबई से अगर आप लंदन जा रहे हैं तो उससे कम पैसे लगेंगे। बिजनेस में डिमांड सप्लाई का नियम ठीक है, मजबूरी के वक्त थोड़ा दाम बढ़ाना भी समझ में आता है, लेकिन ये एयरलाइंस जो कर रही है इसे बिजनेस नहीं खुली लूट कहते हैं। जब त्योहारों पर लोग घर जाने के लिए मजबूर हों तो क्या एयरलाइंस उनकी जेब काटेगी? और उड्डयन मंत्रालय हर बार की तरह बस इस लूट को देखता रहेगा, आंखें बंद रहेंगी? देखिए,
0: त्योहार मतलब खुशियों का पैगाम, अपनों के साथ खुशियां मनाने का अरमान। लेकिन जरा सोचिए, अगर घर जाने की इस खुशी पर किसी ने आपकी जेब काटने की तैयारी कर ली हो तो कैसी खुशी। हर साल दिवाली और छठ के वक्त लाखों लोग अपने घर का रुख करते हैं और ये मौका एयरलाइंस के लिए अंधाधुंध कमाई का जरिया बन गया है। 20,000 लोगों पर किए गए लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में आधे से ज्यादा लोगों ने बताया कि उन्हें त्योहारों पर घर जाने के लिए पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुने तक पैसे खर्च करने पड़े। इस खुली लूट का सबसे बेतुका और डरावना गणित देखिए। मुंबई से पटना की दूरी करीब 1500 किलोमीटर है, जबकि मुंबई से लंदन की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर है। लेकिन दिवाली से ठीक एक दिन पहले यानी 7 नवंबर को मुंबई से पटना जाने वाली फ्लाइट का वन वे किराया 25000 रुपए से ज्यादा है, जबकि मुंबई से लंदन का किराया भी लगभग 25000 रुपए है। यानी मुंबई से लंदन जाओ या पटना, जेब उतनी ही ढीली करनी पड़ेगी। सिर्फ पटना ही नहीं, बेंगलुरु से पटना का किराया करीब 26000 रुपए, मुंबई से वाराणसी का 16000 रुपए और बेंगलुरु से वाराणसी का 17500 रुपए तक वसूला जा रहा है, जबकि सामान्य दिनों में यही किराए 6 से 9000 रुपए के आसपास होते हैं। इस पर कुछ लोग तर्क देते हैं कि ट्रेन से सफर क्यों नहीं कर लेते। हकीकत यह है कि कामकाजी लोगों के पास सीमित छुट्टियां होती हैं और त्योहारों के इस सीजन में ट्रेनों में महीनों पहले लंबी वेटिंग लिस्ट हो जाती है। ट्रेन का कंफर्म टिकट मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं होता, और जब इंसान के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता तो वो मजबूरी में अपनी गाढ़ी कमाई हवाई कंपनियों के हवाले कर देता है। तो क्या इस बेलगाम लूट पर कोई रोक नहीं लग सकती? जब नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस त्योहारी सीजन में किराए पर कोई कैप यानी सीमा नहीं लगाई जाएगी और मंत्रालय ने सिर्फ एयरलाइन से किराए वाजिब रखने की अपील की है। सवाल यह है कि विमान कंपनियों की इस बेलगाम लूट पर उड्डयन मंत्रालय कुछ कर क्यों नहीं रहा? हर साल त्योहारों पर ये तमाशा होता है, बहस होती है और लोग जेब कटाकर चुप बैठ जाते हैं। आखिर आम लोगों की मजबूरी का फायदा उठना कब बंद होगा?
1: अब हम आपको केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के इंटरव्यू के कुछ ऐसे अंश दिखाएंगे जिसमें विपक्ष के आंदोलन से लेकर राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को लेकर खुलकर बात की गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रंगीलो राजस्थान कहते हैं। अब रंगीलो राजस्थान के इन रंगों में राजनीति का भी एक बहुत गहरा रंग है और उस रंग में हमने ऐसे ऐसे दिग्गज देखे हैं यहां पर, कहीं पर रानी तो कहीं पर पहलवान। लेकिन उसके बाद एंट्री हुई है भजन लाल शर्मा जी की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और आपकी सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो हमने सोचा, जनता कहती है कि भाई 5 साल वो आते हैं वोट मांगने के बाद, 5 साल कोई पूछता नहीं है उनसे, तो हमने सोचा कि मुख्यमंत्री जी से एक चर्चा के जरिए समझा जाए कि 3 साल में क्या किया और 2 साल में क्या करने वाले। में पहला प्रश्न, गृह मंत्री अमित शाह जी ने पंचायत चुनाव के राजस्थान में जो जीत मिली उसकी अलग से चर्चा की और विरोध प्रदर्शनों के बीच ये हुंकार निकाय चुनाव की चर्चा की और उन्होंने कहा कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये अपनी जगह पर है लेकिन जनता हमारे साथ है। तो देखिए, हमको समर्थन मिल रहा है, आप प्रधानमंत्री से भी मिले हैं तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। क्या बीजेपी अब ये संकेत दे रही है कि विरोध प्रदर्शन सड़क पर हो रहा है लेकिन चुनावी जीत हमारी स्ट्रैटेजी है, हम चुनावी जीत के जरिए उसका जवाब देंगे? और क्या सिर्फ इलेक्शंस पर ही आप लोगों का फोकस रहेगा और ये विरोध प्रदर्शन आपको कितने परेशान करते हैं? माइक उठा लीजिए सर।
16: पहले तो सभी को नमस्कार। अंजना जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के बारे में विषय रखा है, मैं आपको थोड़ा पृष्ठभूमि से ही बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो गांव से जुड़कर के, जमीन से जुड़कर के, जनता से जुड़कर के 24 घंटे दिन के, महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन जनता के बीच में रह करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं, देश के अंदर चाहे किसी प्रदेश के अंदर जिनमें हमारा राज्य है, उनमें भारतीय जनता पार्टी अपने काम, कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास के कारण ये सारी बातें करती है।
1: मुख्यमंत्री जी, गहलोत जी की शिकायत है, वो कह रहे हैं कि आपने फाउल खेला है वो कह रहे हैं कि सरदारपुरा जो उनका इलाका कंस्टिट्यूएंसी है वहां पर वो कह रहे हैं कि जितनी ये कंस्टिट्यूएंसीज थी जहां पर जो ये वार्ड्स थे वार्ड्स के डिलिमिटेशन में आपने उनका तो सब कर दिया छोटा और जहां जहां पर बीजेपी का समर्थन का था उसको ज्यादा बना दिया। इसी से आपको नंबर आ गया 0.94% का डिफरेंस है वोट में कांग्रेस और बीजेपी के, मतलब बीजेपी सिर्फ 0.94% आगे है वोट में, लेकिन सीट में आप इसलिए आगे बढ़ गए क्योंकि आपने अपने वर्चस्व वाले क्षेत्रों में ज्यादा वार्ड बना लिए और उनके वाले घटा दिए।
16: देखिए आप अगर उन वार्डों को देखेंगे तो आपको लगेगा पहले परसीमन कैसे था और अब किस तरह था, लेकिन अब इसमें मैं क्या करूं, उनका दूसरा दर्द है। वो
1: क्या?
16: गहलोत साहब का दर्द है, वो दूसरा दर्द है।
1: कौन सा?
16: उनका दर्द है कि वो अपने बाढ़ से भी हार गए। अब उस दर्द को मैं कौन सा मल्लम लगा सकता हूं आप बताइए।
1: दर्द दिया तो आप ही ने ना।
16: देखिए दर्द जनता देती है, कोई नहीं देता है, दर्द जनता देती है, जनता को काम दिख रहे हैं। उनके समय में क्या हुआ था, हर 3 महीने में चुनाव होते थे, आचार संहिता लगती थी। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हर 2 साल में पंचायत चुनाव हुए, हर 2 साल में निकाय चुनाव हुए, राजस्थान के अंदर हर 3 महीने में आचार संहिता लगती थी, कितना विकास अवरुद्ध होता था, जनता का कितना पैसा लगता था। यह नहीं देखा गहलोत साहब ने, यह भी तो देखना चाहिए था।
1: ठीक है, अब इस मुद्दे पर आ जाते हैं कि विरोध प्रदर्शन। अब देश में दिल्ली में जंतर मंतर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सीजेपी वाले यहां जब स्कूल के चेकिंग के लिए आते हैं तो आप ऑर्डर कर देते हैं कि नहीं भाई स्कूल में नहीं जा सकते। वो कह रहे विरोध प्रदर्शन ये सरकार नहीं चाहती है, डिसेंट नहीं चाहती है। जो उनके हां में हां मिला है वो तो ठीक है, जो उनके खिलाफ बोले उन सबको देशद्रोही।
16: देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कभी अपनी सोच को ठीक नहीं किया, जिन लोगों ने राष्ट्र के हित में किस तरह से काम करना चाहिए यह नहीं देखना, अगर आप उन सारे विषयों को छोड़ दें तो सरकार तो कहीं हमारी थी नहीं। अगर वो जाते हैं और गांव वाले अगर किसी का विरोध करते हैं और वहां जाकर के वो बैठते हैं तो इसमें कोई क्या कर सकता है, वो भी तो गांव में है, वो भी तो जैन जी है।
1: गांव के युवा
16: आते हैं और वहां बैठते हैं और गांव के लोग कहते हैं कि हमारी समस्या का हम समाधान करेंगे।
1: लेकिन मुख्यमंत्री जी मिड डे मील देखना है मुझे, मुझे देखना है कि बच्चों को राजस्थान के स्कूलों में मिड डे मील कैसा मिल रहा है। अभी यूपी में चुनाव है सर, अब आपने किया वहां पर भी यही हो गया है। मिड डे मील हमें देखना है, हमें दिखाना है कि भाई बच्चों को अच्छा, क्योंकि एक अकाउंटेबिलिटी भी होती है ना। हो सकता है कई जगहों पर खबरें आई दाल पानी की तरह, कई मुश्किलें होती हैं उन्हीं बच्चों को, सोचिए उन पर क्या बीतती होगी। जैसे आप कह रहे हैं कि कैमरा लेके कोई घुस गया तो बुरा लगता है,
16: नहीं उसको देखिए, उसके किसी ने मने नहीं है।
1: तो कैसे कवरेज कैसे होगी, कैसे कवरेज कैसे होगी, स्कूल के अंदर की चेकिंग कैसे होगी?
16: नहीं नहीं
1: आप अगर एक, कैसे आया?
16: एक अंजना जी दोनों बहुत अलग अलग हैं। एक कोई देखने के लिए जाए उसमें कोई 50-100 लोग नहीं जाएंगे, 40 लोग नहीं जाएंगे, वो देखने के लिए जाएंगे तो 1-2-3 जाएंगे और वो जाकर के देखेंगे, उसकी जांच करेंगे और उसके बाद वो बताएंगे। लेकिन एक योजनाबद्ध तरीके से 3 दिन फोन पहले कह करके कि मुझे वहां जाना है और वो भीड़ जा रही है, गाड़ियों की लाइन लग रही है, वो वहां जा रही है, वो क्या देखेगा भाई?
1: कानून व्यवस्था, आपके पास गृह मंत्रालय भी है और गहलोत जी जिनके बारे में आप अभी खूब चर्चा कर रहे थे वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय संभालने का टाइम नहीं है, वेंटिलेटर पर कानून व्यवस्था है। 4 इंसिडेंट्स जो वो बार बार कोट करते हैं, एक तो आप ही के बीजेपी के पूर्व विधायक जो भडाना जी की हत्या है, फिर जयपुर में कांग्रेस नेता के घर में दिन दहाड़े लूटपाट जो हुआ, एसडीएम जो टोंक के हैं उन पर जो हमला हुआ और जो विधानसभा में बार बार बॉम्ब की धमकियां आई। वो कह रहे हैं कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा आपसे।
16: देखिए आप कुछ आंकड़े निकालिए, पिछले 5 साल के आंकड़े लीजिए और अब वो हमारे आंकड़े लीजिए, आपको स्पष्टता आ जाएगी। मैं उन 5 साल वालों पर जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि राजस्थान की कानून व्यवस्था, आप पिछले आंकड़े, एक एक आंकड़े उठा लीजिए और हमारे आंकड़े उठा लीजिए, कितने गैंगस्टर होते थे ये राजस्थान की जनता को पता है, कितने लूट फिरौती होती थी गैंगस्टरों के माध्यम से, गैंगस्टर आते थे घटना करके चले जाते थे। हमने कहा कि राजस्थान में या तो गैंगस्टर आएगा नहीं, और आएगा तो राजस्थान से जाएगा नहीं, और आज वही है। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो बहुत बड़ी अंतर आपको मिलेगा कि राजस्थान की कानून व्यवस्था में कितना अंतर है। हमारे यहां घटना हुई तो अपराधी तुरंत सलाखों के पीछे जाएगा, तुरंत पकड़ा जाएगा।
1: सब पर हमने स्कूलों सब पर बात कर ली है, लेकिन वापस बीजेपी की जो सबसे बड़ी चिंता है उसी पर पहुंचते हैं। आपने उस समय मुझे इनकार कर दिया और कहा कि ज्यादा, इसीलिए मैंने रिसर्च उस पर मंगा लिया। जयपुर, जोधपुर, कोटा इन कॉरपोरेशंस में कांग्रेस पोल्ड अ टोटल ऑफ 10,34,999 वोट अगेंस्ट द बीजेपी 10,19,160 वोट, यानी उनके टोटल वोट ज्यादा थे लेकिन वार्ड्स आपके ज्यादा थे जिसमें आपको जीत मिली, और यही आधार बना बनाकर विपक्ष आप पर सवाल खड़े कर रहा है। और वो कह रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल है कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी बार बार निकाय चुनाव की राजस्थान की बात कर रहे हैं। अरे हम तो यही कह रहे हैं कि आप फेर कर रहे हैं, कुछ वोट्स हमको ज्यादा मिलते हैं, वार्ड आपको ज्यादा मिल जाते हैं, और जो हमारा मुद्दा है वही है कि आप जादू से जीतते हैं, चुनाव आयोग की जादू से हर जगह जीतते हैं और डिलिमिटेशन से।
16: देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं इसकी डिटेल दूं आपको तो मैं आपको भी बताऊंगा, डिटेल आप देखोगे तो आपको लगेगा, आपको लगेगा वोट उनके ज्यादा नहीं है। आप अगर आंकलन करोगे तो निश्चित रूप से आपको निकल करके आएगा कि आंकड़ा क्या है। अगर यही आंकड़ा होता तो वो क्यों इस आंकड़े को देखोगे, पिछली बार उनके कितने बने थे, चाहे पंचायत हो चाहे निकाय हो, उनको भी देख लीजिएगा।
1: और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही, अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो लोग दूसरों के रास्ते में कांटे बोते हैं उन्हें कभी ना कभी उसी रास्ते पर नंगे पांव चलना ही पड़ता है। नमस्कार।

0: हमारे देश में चुनाव आयोग के खिलाफ शुरू हुआ राजनीतिक आंदोलन अब अदालतों में भी चल रहा है। आज 3 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर यह जवाब मांगा। पहला नोटिस राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं के अलावा 3 और अर्जियों पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को जारी हुआ। राहुल गांधी ने फिर से टी पार्टी करके कल अपनी आगे की रणनीति बनाई।
1: तेरह अक्टूबर के बाद राहुल गांधी की आज फिर से टी पार्टी हुई, फिर से चुनाव आयोग के खिलाफ जुटान हुआ और फिर से आगे की रणनीति पर बात हुई। चुनाव आयोग के खिलाफ छिड़ी सियासी लड़ाई जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, तो वहां जंग के 4 तरह के मोर्चे नजर आए। पहला मामला चुनाव आयोग और SIR वाला था, दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक राहुल गांधी के मार्च का था, तीसरा मामला जंतर मंतर से प्रदर्शन स्थल हटाने का था, चौथा मामला महिला पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों से बदसलूकी का था, जिसमें से 3 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। पहला नोटिस राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं के अलावा 3 और अर्जियों पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग और दोनों चुनाव आयुक्तों को जारी हुआ और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि हम अगली सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं में से एक से उसके आचरण के बारे में पूछना चाहेंगे। नोटिस जारी करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी बात की निंदा कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं में से एक के संबंध में नोटिस को फिलहाल अस्थायी तौर पर स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते वो अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण दें। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन करने पहुंचे राहुल खड़गे, अखिलेश, महुआ मोइत्रा समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं को नोटिस देकर जवाब मांगा है।
2: भारत की न्यायपालिका सबसे ज्यादा मजबूत, निष्पक्ष और जनता इस पे विश्वास करती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसको डराने का प्रयास, क्या हजारों समर्थकों की भीड़ लेकर सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में जाना, नारेबाजी करना, हुड़दंग करना, ये क्या था?
1: जंतर मंतर से प्रदर्शन स्थल हटाने के मामले में भी सरकार ने अदालत में बताया कि इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं। कमेटी ने पहले ही रिपोर्ट दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। आज तक ब्यूरो
0: खबर। CJP के प्लान 16 अक्टूबर यानी कि आज दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने के ऐलान की। अभिजीत दीपके के इस ऐलान के बाद NDMC ने 16 और 17 अक्टूबर यानी कि आज और कल सेंट्रल पार्क बंद करने का ऐलान कर दिया।
1: लेकिन CJP की कॉल के बाद कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से लेकर इर्द गिर्द सुरक्षा बढ़ा दी गई है, नए CCTV कैमरे लगाए गए हैं।
3: ये देखना होगा कि कल का जो कॉल है वो कांग्रेस जनता पार्टी कैसे ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करती है। हालांकि उन्होंने कहा है लोगों को इकट्ठा होने के लिए, लेकिन जैसा हमने पहले देखा है वैसी कुछ तस्वीरें कल को भी देखने को मिल सकती हैं कि आसपास इतनी भारी संख्या में सिक्योरिटी तैनात होगी कि कोई भी यहाँ इकट्ठा, किसी का भी यहाँ इकट्ठा होना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा।
1: दीपके के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत भूषण ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। जी हाँ, प्रशांत भूषण ने कहा कि सिविल सोसाइटी और युवाओं के नेतृत्व में लोकतंत्र को बचाने और सरकार बदलने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी।
4: स्टूडेंट्स को और यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को ये श्रेय देते हैं और उनकी अगुवाही में ये लड़ाई लड़ी जाएगी। वो हमारे लीडर होंगे और उनकी अगुवाही में सारी सिविल सोसाइटी मिलकर, पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर, सब ये लड़ाई लड़ेंगी हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए और रेजिम चेंज के लिए। ये मैं आज खुले तौर पर कह रहा हूँ, यहाँ ये रेजिम चेंज की लड़ाई है और हम लोग रेजिम चेंज करा कर रहे हैं।
1: प्रशांत भूषण सरकार बदलने की बात कर रहे हैं तो दीपके ने ज्ञानेश कुमार पर अटैक करते हुए 2024 में लोकसभा चुनावों पर भी सवाल उठा दिया है।
5: 2024 में इंडिया अलायंस और NDA का जो मार्जिन था विक्ट्री और डिफीट का, दैट वाज जस्ट 2%। पिछले 2 सालों में 13 करोड़ से ज्यादा वोट डिलीट हुए।
1: तो अभिजीत दीपके बेंगलुरु के मंच का जिक्र करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त पर एक और सवाल उठाते हैं।
5: प्रकाश सर के साथ में बेंगलुरु गया था, वहां पर मेरे स्टेज पर बहुत ही एक मिरेकुलस चीज हुई, एक इट वाज, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा ये असलियत में कैसे हो सकता है। उस स्टेज पर मुझे ऐसे लोग मिले जो मरे हुए थे, राइट सर, मरे हुए लोग थे, मरे हुए लोग मेरे साथ खड़े हुए थे स्टेज पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, जिनको ज्ञानेश कुमार के इलेक्शन कमीशन ने डेट डिक्लेयर कर दिया था।
1: अब 16 अक्टूबर को क्या होगा, हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में सीजेपी के प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। मौसमी सिंह के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
0: जंतर मंतर को लेकर रण जारी है। आज सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने लोगों से अपील की कि तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में पहुंचे। वहीं दूसरी ओर नेहा बोरा के बयान पर हंगामा बरपा है।
6: विपक्ष के विरोध प्रदर्शन की पोस्टर गर्ल बन गई नेहा बोरा है। बारह अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के साथ आगे आगे दिख रही थी। 13 अक्टूबर को राहुल गांधी के यहाँ टी पार्टी में भी राहुल के साथ दिखी, लेकिन अब नेहा बोरा ने जो कहा है उसने सियासी तूफान ला दिया है।
7: And we know that the Gen Z movement that we are seeing everywhere in this country first started in Bangladesh. And congratulations to you for showing us the way, for showing us and extending solidarity to the young people of this country. We know that the movement that began in Bangladesh was for democratic and voter rights. Today, the movement that the young people are participating in and leading is also a movement for democratic and voting rights. We know that the fight that you fight against religious fundamentalism in your country is also a fight that the Gen Z and the young people of this country fight today.
6: तो नेहा बोरा बता रही हैं कि 2024 में बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार गिराने के लिए हुए प्रदर्शनों से भारत के युवाओं को प्रेरणा मिली है और वो सरकार के खिलाफ तन कर खड़े हुए हैं। अब नेहा बोरा के बयान पर बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है।
8: बांग्लादेश में हुआ क्या था, एक ग्रुप ऑफ इस्लामिस्ट ने भीड़ के सहारे, अराजकता के सहारे पूरे के पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने का प्रयास किया। उनका मकसद रेजिम चेंज था। मतलब आज ये साबित हो चुका है कि राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम भारत में लोकतंत्र को तहस नहस करने की एक साजिश रच रहे हैं।
6: अकेले नेहा बोरा ही नहीं, राहुल गांधी के साथ प्रदर्शन में शामिल प्रशांत भूषण भी ऐसा बयान दे रहे हैं जो सियासी आप को और हवा दे रहा है। भूषण ने कहा कि ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन की है। इधर अभिजीत दीपके बार बार अपील कर रहे हैं कि कल शाम 5 बजे वो कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा रैली करेंगे, इसमें लोग शामिल हों।
9: जैसे कि आप लोगों को पता है, सौरभ और आशु को बस तिरंगा लहराने के लिए जेल में डाला गया है। तो मैं सभी देशभक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग तिरंगे से प्यार करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 16 अक्टूबर को शाम को 5 बजे आप सब सेंट्रल पार्क कैनॉट प्लेस में आइए तिरंगे के साथ। वहां पर हम अपना तिरंगा लहराएंगे और हम बता देंगे कि वेविंग अ तिरंगा इज नॉट अ क्राइम।
6: एनएसयूआई पहले ही आरोप लगा चुकी है कि प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें पीटा। अब दिल्ली पुलिस ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों पर हमला करने का केस दर्ज किया है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन, एनएसयूआई बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार की जंग जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी का चुनाव सीएम योगी की हैट्रिक या फिर अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी का चुनाव है। दोनों ही नेताओं ने चुनावी दंगल में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। दोनों ही नेताओं ने चैलेंज पॉलिटिक्स को लेकर जुबानी युद्ध शुरू कर दिया।

0: योगी और अखिलेश की जुबानी टक्कर।
1: उन्हें यही फैसला लेना चाहिए, उनके बीच में अगला चुनाव लड़ना चाहिए।
0: वार और परखवार, सियासत है धुआंधार।
2: पीडीए पीडीए चिल्लाते थे ये राज्यसभा के टिकट में, वो पीडीए कहाँ चला गया था।
0: 403 सीटों की लड़ाई, चुनावी पारा है हाई। 2027 का चुनाव, हर दिन नए नए दाम।
3: और जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़कर के दिखाएं।
4: आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं। लड़ाई चेलों से क्यों, लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए।
0: विधानसभा चुनाव से पहले 10 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव को योगी और अखिलेश की अग्नि परीक्षा से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन चुनावी लड़ाई में 3 के बजाय 2 उम्मीदवार उतारकर अखिलेश पहले राउंड में पिछड़ गए। दूसरे राउंड में अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया, ऐलान किया कि सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं। योगी ने नेहले पर दहला चला, चुनौती स्वीकार कर ऐलान किया कि अयोध्या में सीधा मुकाबला उनके और अखिलेश यादव के बीच होना चाहिए और वो तैयार है। वहाँ भी अखिलेश यादव का सियासी दांव उल्टा पड़ा, लिहाजा अखिलेश को डैमेज कंट्रोल का गियर लगाना पड़ा। ऐसे में 2027 की लड़ाई को लेकर सियासी पारा हाई है। सवाल यही है कि 2027 में योगी के सिर फिर सजेगा ताज या फिर 10 साल के बाद अखिलेश की सत्ता में वापसी होगी।
3: लेकिन जन आक्रोश के सामने भारतीय जनता पार्टी नहीं चलेगी। बाय इलेक्शन में तो 420 ही चल सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 403 में 420 ही नहीं चलने देंगे। पीडी के लोग डट करके मुकाबला करने काम करेंगे और भाजपाई हारेंगे भी और भागेंगे भी इस बार।
5: उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के चुनाव ने बता दिया है कि विधानसभा का चुनाव परिणाम क्या होने जा रहा है। ये लड़ाई 80-20 की फिर आ गई है, 80% एनडीए में और 20% पीडीए में, और पीडीए का क्या हाल होने वाला है ये आपके सामने फिर आने वाला है।
0: बीते दिन समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए, तो 24 घंटों के अंदर समाजवादी पार्टी के कुनबे में कई नेताओं को शामिल किया गया, जिसमें कई बीजेपी छोड़कर साइकिल पर सवार हुए हैं। मतलब सिर्फ जुबानी जंग नहीं बल्कि हर मोर्चे पर सीधी टक्कर जारी है।
3: वो हारने जा रहे हैं, वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए प्रहरी पीडीए समाज जुड़ गया है, ये लोग पीड़ा दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, और वहीं प्रेम दया का अपनापन का समाजवादी पार्टी लोगों को जोड़ने का काम कर रही है।
4: अगर इनका वास्तविक चेहरा देखना हो तो अभी राज्यसभा में आपने देखा होगा, ये पीडीए पीडीए पीडीए चिल्ला रहे थे। पूछो तो राज्यसभा में इनको प्रत्याशी बनाने थे तो एक अपने चचा जान को बना दिए और दूसरा मुंबई के धन्ना सेठ को बना दिए। एक भी दलित नहीं, एक भी वंचित नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, एक भी फॉरवर्ड नहीं, कोई मतलब नहीं। अरे चलो इन पे विश्वास नहीं था तो कम से कम मुसलमानों को ही बना देते प्रत्याशी, लेकिन नहीं बनाया उनको भी।
0: अखिलेश ने पीडीए के फॉर्मूले से 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को पछाड़ा था। इसी चुनावी मंत्र पर अखिलेश 2027 में जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो वहीं अखिलेश के पीडीए पर तंज करते हुए सीएम योगी ने इसे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करार दिया। चाहे अखिलेश हो या फिर योगी, दोनों अपनी अपनी जीत की भविष्यवाणी करने में पीछे नहीं है।
3: इधर देखने को मिल रहा है कि जब जनता में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, भारतीय जनता पार्टी जब जनता के बीच में कमजोर होती दिख रही है उस समय वो इलेक्शन कमीशन के पीछे छिप जा रही है और इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के इस भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को और भारत के नागरिकों को धोखा दे रहे हैं।
5: आश्चर्य है कि चुनाव जीते तो इनका पुरुषार्थ और हारे तो ईवीएम दोषी। इलेक्शन कमीशन दोषी।
0: हर दिन यूपी के सियासी दंगल में योगी और अखिलेश के बीच वार पलटवार का खेल जारी है। अखिलेश राम मंदिर में दान की चोरी को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरते हैं तो योगी राम भक्तों को अखिलेश से सावधान रहने की सलाह देते हुए नजर आते हैं।
3: देखिए धर्म अधर्म, अधर्मी कौन है वो हारेगा, झूठ बोलने वाले हारेंगे, जनता को दुख देने वाले हारेंगे और जिन्होंने करोड़ों श्रद्धालुओं का चढ़ावा रामधन की चोरी की वो हारेंगे, भगवान स्वयं हरवाएंगे उन्हें।
4: रामद्रोही इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? याद करिए, ये रामद्रोही इसको स्वीकार कर ही नहीं सकते और इसलिए वे कुछ न कुछ युक्ति जरूर निकाल करके अयोध्या को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ते।
0: योगी ने राम मंदिर के नाम पर धर्म याद दिलाया तो अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी का धर्म। वहीं योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताते हैं, लेकिन अखिलेश यूपी की कानून व्यवस्था पर उठे सवालों से पलटवार करते हैं।
5: क्या माफिया जिस जमीन पे पैर रख लिया वह तीक की हो गई, अशरफ की हो गई, और अब जिस जमीन पर सरकार ने कहा कि ये माफिया की नहीं, ये गरीब के लिए आसियाना बनना है, तो माफिया की सिट्टी पिट्टी गम वहां पे बहुमंजिला आवासीय सुविधा उपलब्ध करवा करके हम गरीब के

0: यूपी सरकार को नोटिसेस मिले हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कई ऑब्जर्वेशंस में कहा कि यहां की पुलिस पॉलिटिकल काम कर रही है, यहां की पुलिस प्रशासन न्याय नहीं दे रहा है, और यहां तक कहा कि पुलिस को क्या खत्म कर दिया जाए। सोचिए, पुलिस को भंग कर दिया जाए, विभाग ही खत्म किया जाए क्या?
1: मतलब साफ है कि यूपी चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे कानून व्यवस्था, अयोध्या, वोट चोरी और तुष्टीकरण के मुद्दों पर जुबानी तकरार और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। देखना यही है कि यूपी के वोटरों पर ये मुद्दे कितना असर डालते हैं। दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे हैं, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा।
2: और अब खबर अंकिता भंडारी मर्डर केस की, जिसे लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाए जाने का परिवार विरोध कर रहा है, तो कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई है।
3: इंडिया गेट देर रात एक बार फिर हंगामे का गवाह बना, जहां अंकिता भंडारी के माता पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अंकिता भंडारी का परिवार दुष्यंत कुमार का सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने के विरोध में इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने पहुंचा था। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत कांग्रेस के कई नेता माता पिता से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन देर रात इंडिया गेट पर प्रशासन परिवार को हटाने पहुंचा, जहां माता पिता के अलावा कई कांग्रेसी नेता हिरासत में लिए गए। प्रशासन के एक्शन पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, सुबह के 4 बजे जब दुनिया सो रही थी तब अंकिता भंडारी के माता पिता को हिरासत में ले लिया गया। जिस जांच का नतीजा आया नहीं, उसके पहले ही नियुक्ति की जल्दी और सवाल पूछने वाले माँ बाप को रात के अंधेरे में उठा लिया गया। इस सरकार की पहचान यही है, पीड़ितों की आवाज दबा दो, सवाल करने वालों को हटा दो। उधर अंकिता भंडारी को लेकर हंगामे की एक तस्वीर देहरादून में भी नजर आई।
4: कांग्रेस कार्यकर्ता अचानक राज्यपाल निवास पर पहुंच गए हैं। ये राज्यपाल आवास है, राजभवन है, जिसे लोक भवन भी कहा जाता है। और देखिए किस तरह से गेट को खोलने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता इस गेट को भेद कर राज्यपाल से मिलने जाना चाहते हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। हरक सिंह को देखिए, पुलिस डिटेन कर रही है यहाँ पर, और पुलिस डिटेन करने की कोशिश कर रही है। और गणेश गोदयाल यहाँ गिर गए हैं। देखा जा सकता है कि किस तरह से कांग्रेस पूरे आक्रामक तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की जारी है।
5: राज्यपाल को क्या बोलते निकला है कि दुष्यंत गौतम के इस्तीफे की मांग, अजय गोटानी की मांग को लेकर हम ज्ञापन देने के लिए आए थे। चार दिन से राज्यपाल के उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के सम्मान का सवाल है, उत्तराखंड की बेटियों का सम्मान है।
3: बीजेपी कांग्रेस पर मामले में सियासत करने का आरोप लगा रही है।
6: जब पुलिस के किसी पेपर में कहीं नाम नहीं है, केवल ऑपोजिशन इस नाम को उठा रही है।
7: उनके पेरेंट्स ने कहा सीबीआई जांच कराओ, तो सीबीआई जांच हो गई। तो आखिरकार भाई, वो जांच में, जांच को होने देना, जांच में क्या आया है उसको जाने बगैर सारी बातें कह देना, पूरी तरीके से जो है वो पॉलिटिकल खेल रहे हैं। और राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, किसी की छवि बेवजह जो है धूमिल की जा रही है।
3: अंकिता भंडारी की मौत में बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम के शामिल होने को लेकर विपक्ष और परिवार की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सीबीआई की जांच पूरी होने से पहले ही दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का गवर्नर बना दिया गया, जिसके विरोध में अंकिता का परिवार दिल्ली पहुंचा।
8: किस बेस पे उन्होंने उस आदमी को राज्यपाल बनाया?
9: जो आशाएं लगी थी वो कुछ नहीं हुई, और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे।
8: मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक उनकी सीबीआई जांच नहीं हो जाती, उनको राज्यपाल घोषित न किया जाए।
3: उत्तराखंड में चुनाव से पहले दुष्यंत कुमार गौतम के राज्यपाल बनने के बाद एक बार फिर अंकिता भंडारी का मुद्दा अब बढ़ता नजर आ रहा है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: शिवा शर्मा मामले में जांच का दायरा बढ़ रहा है। इसमें खुलासा हुआ कि आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे नेपाल भाग चुकी है, उसके साथ उसकी बहन और अन्य आरोपी भी फरार हैं। सभी का पुलिस इनकी तलाश कर रही है, लेकिन एक वीडियो भी आया है जिसमें अपने आप को श्रद्धा बेगुनाह बताती है।
1: वही तस्वीर है जो श्रद्धा दुबे के नेपाल भाग जाने का

0: पुख्ता प्रमाण है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर नेपाल के माहिम नगर की है। श्रद्धा अपनी बहन रश्मि दुबे और दोस्त आदिल रोड क्रॉस कर बस स्टेशन के भीतर जाते दिखे हैं। पुलिस सूत्रों का मानना है कि श्रद्धा का नेटवर्क काफी मजबूत है और उसे पुलिस की हर मूवमेंट की इनसाइड जानकारी समय से पहले मिल रही है। पुलिस से भाग रही श्रद्धा दुबे अब कह रही है कि वो पुलिस की जांच में सहयोग करना चाह रही है।
1: मैं कहीं गायब नहीं हूँ, मैं पुलिस में आके बयान देना चाहती हूँ, मैं उन्हें सब कुछ सच सच जो कुछ भी है मैं उन्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ।
0: एक तरफ श्रद्धा दुबे वीडियो जारी कर पुलिस के सामने आने की बात कह रही है तो दूसरी तरफ उसकी SUV मिलने की खबर ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा के पास पार्किंग में श्रद्धा की SUV कार मिली है। जानकारी के मुताबिक UP 32 QQ 0111 ये गाड़ी 10 अक्टूबर से पार्किंग में खड़ी थी। श्रद्धा गाड़ी पार्क करने के बाद नेपाल जाने की बात कहकर वहाँ से निकली थी और अब नेपाल से आई ये तस्वीर काफी कुछ बयान कर रही है। कारोबारी शिवा शर्मा की मौत से उठे सवालों को लेकर पहली बार मॉडल श्रद्धा दुबे का वीडियो सामने आया है। शिवा शर्मा की मौत के बाद उठे सवालों पर सुनिए श्रद्धा दुबे का ये बयान।
1: वो हत्या नहीं थी, वो एक सुसाइड था, ठीक है। मैंने अपनी आंखों से देखा उसको कूदते हुए, ठीक। अगर वहाँ के CCTV कैमरे निकलेंगे, सब कुछ निकलेगा तो उसमें दिखेगा कि वो किस तरह से कूद रहा है।
0: शिवा की मां ने जो FIR दर्ज कराई है उसमें मुख्य आरोपी श्रद्धा है, साथ में श्रद्धा की बहन रश्मि दुबे भी आरोपी बनाई गई है। नेपाल से आई तस्वीर में रश्मि भी साथ दिखी है। शिवा की मां ने आरोप लगाए हैं कि श्रद्धा उनके बेटे को लगातार धमकाती थी और टॉर्चर करती थी,
2: डेली बांध के और थ्रेटन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करती थी जिसके बाइट्स अक्सर उनके बॉडी पे होते थे निशान। पूछने पे वो ये कहते थे कि चोट लग गई है, गिर गया हूँ।
0: लखनऊ पुलिस ने मामले में जांच तेज कर दी है ताकि करोड़पति कारोबारी की मौत की असल वजह साफ हो सके। बहराइच से राम बरन चौधरी और लखनऊ से अंकित मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
3: और अब खबर आमिर खान के भांजे और कई फिल्मों में एक्टिंग करने वाले इमरान खान की, जिन्हें मुंबई पुलिस ने भारत छोड़ने का नोटिस दे दिया है। इमरान को डेडलाइन बता दी गई है, 28 अक्टूबर तक देश छोड़ दीजिए।
4: अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस नोटिस का मसौदा साफ है। पुलिस ने दो टूक कह दिया है कि इमरान खान भारत छोड़ दें। मुंबई पुलिस ने एक्टर आमिर खान के भांजे को ये नोटिस थमाया है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को ऐसा फरमान जारी करना पड़ा। दरअसल ये पूरा मामला 10 अक्टूबर 2026 का है, जब मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था। इस प्रदर्शन में CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। इमरान खान भी उस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया था। इस बात से BJP नाराज हो गई। पार्टी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस से इसकी शिकायत कर दी। दरअसल इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं है, वो अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं। उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा है। BJP की शिकायत थी कि ऐसे लोग देश के अंदरूनी प्रोटेस्ट में कैसे शामिल हो सकते हैं।
5: किरीट सोमैया ने कहा था कि इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और वो भारत में हो रहे आंदोलन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने लगातार इसकी शिकायत मुंबई पुलिस से की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए इमिग्रेशन एक्ट के तहत इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के निर्देश मुंबई पुलिस द्वारा दिए गए हैं।
4: उसी मामले में संबंधित आव्रजन कानूनों के तहत कार्रवाई की गई है। मुंबई पुलिस के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की ओर से नोटिस जारी किया गया है।
6: इमरान खान के खिलाफ मैंने शिकायत दी थी, इमरान खान को 28 अक्टूबर तक हिंदुस्तान छोड़ना है। ऐसे जो भी होंगे, इमरान होंगे, इकबाल होंगे, यूसुफ होगा, अब्दुल होगा, जो विदेशी नागरिक, विदेशी पैसा, उनके ऊपर ऐसी ही कार्रवाई होगी।
4: OCI कार्ड धारक भारतीय मूल के विदेशी नागरिक होते हैं जिन्हें भारत में रहने और कई अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता है, लेकिन OCI का दर्जा भारतीय नागरिकता के समान नहीं है। उसके साथ कुछ कानूनी प्रतिबंध भी जुड़े होते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इमरान खान मुंबई पुलिस के नोटिस पर क्या कदम उठाते हैं। दीपेश त्रिपाठी, आज तक।
3: कश्मीर में मौसम लगातार बदल रहा है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी से सफेद परत दिखाई देने लगी। ऊंचे पहाड़ों, खुले मैदानों पर गिरी बर्फ से इलाका पूरी तरह से ढक गया। बर्फबारी के साथ ही घाटी में सर्द मौसम की शुरुआत का एहसास होने लगा।
4: ये तस्वीरें हैं उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा स्थित गुरेज की तुलैल घाटी की है, जहाँ सीजन की पहली बर्फबारी ने दस्तक दी है। बर्फबारी के बाद घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ तुलैल के मैदानी हिस्सों में बर्फ की सफेद परत दिखाई देने लगी। बर्फबारी के साथ ही यहाँ मौसम का मिजाज बदल गया है और खूबसूरत वादियों ने सर्दियों की आहट का एहसास कराना शुरू कर दिया है।
7: हर जगह पर जबरदस्त बर्फबारी रात के बीच हुई है, जिससे तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। अगर श्रीनगर की बात की जाए तो दिन का अधिकतम तापमान 15 डिग्री रहने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटों के दौरान कश्मीर में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा।
4: भारी बर्फबारी का असर सड़क के रास्ते पर भी पड़ा है। पुंछ और राजौरी को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाले मुगल रोड पर पीर की गली के पास बर्फ जमा होने से आवाजाही बंद हो गई है। सड़क से बर्फ हटाने और रास्ते को साफ करने के लिए मशीनें चलाई जा रही हैं। अक्टूबर का अभी आधा महीना ही गुजरा है और कश्मीर के कई इलाकों में पारा शून्य तक लुढ़क चुका है, जबकि श्रीनगर में भी तापमान 15 डिग्री तक गिरा है। लेकिन बदलते मौसम में भी यहां पहुंचे पर्यटकों में गजब का उत्साह है।
8: बहुत बहुत अमेजिंग, सबको आना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगी, इंडिया में, वर्ल्ड में सबको आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है।
4: अब आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। अशरफ वानी, मीर फरीद के साथ एजाज डार, श्रीनगर, आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: बीजेपी और विपक्ष में जारी है राजनीतिक घमासान। ज्ञानेश के खिलाफ राहुल की मोर्चाबंदी जारी। पार्टी नेताओं के साथ इंदिरा भवन में बैठक। बीजेपी का आरोप, विदेशी हाथों में खेल रहे हैं राहुल। अंकिता के परिजनों से मुलाकात के बाद राहुल ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। दुष्यंत गौतम की नियुक्ति पर उठाए सवाल, कहा सरकार के निर्णय से स्तब्ध हूं। दिल्ली में प्रदर्शन के पहले दीपके का केंद्र पर हमला, कहा एक देश एक पार्टी इनका उद्देश्य। प्रशांत भूषण बोले सत्ता परिवर्तन के लिए हमारी लड़ाई। पंचायत आज तक राजस्थान में बोले मुख्यमंत्री भजन लाल, तेजी से विकास कर रही है डबल इंजन की सरकार। पेपर लीक को किया सील, ड्रग तस्करों पर कार्रवाई। प्रयागराज में योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा माफिया के सामने घुटने टेक मौन रहती थी समाजवादी सरकार, अब माफिया मुक्त हो गया यूपी। हमारे देश में चुनाव आयोग के खिलाफ शुरू हुआ राजनीतिक आंदोलन अब अदालतों में भी चल रहा है। आज तीन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर यह जवाब मांगा। पहला नोटिस राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं के अलावा तीन और अर्जियों पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को जारी हुआ। राहुल गांधी ने फिर से टी पार्टी करके कल अपनी आगे की रणनीति बनाई।
1: तेरह अक्टूबर के बाद राहुल गांधी की आज फिर से टी पार्टी हुई, फिर से चुनाव आयोग के खिलाफ जुटान हुआ और फिर से आगे की रणनीति पर बात हुई। चुनाव आयोग के खिलाफ छिड़ी सियासी लड़ाई जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो वहां जंग के चार तरह के मोर्चे नजर आए। पहला मामला चुनाव आयोग और SIR वाला था, दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक राहुल गांधी के मार्च का था, तीसरा मामला जंतर मंतर से प्रदर्शन स्थल हटाने का था, चौथा मामला महिला पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों से बदसलूकी का था, जिसमें से तीन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। पहला नोटिस राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं के अलावा तीन और अर्जियों पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग और दोनों चुनाव आयुक्तों को जारी हुआ और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि हम अगली सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं में से एक से उसके आचरण के बारे में पूछना चाहेंगे। नोटिस जारी करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी बात की निंदा कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं में से एक के संबंध में नोटिस को फिलहाल अस्थायी तौर पर स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते वो अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण दें। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन करने पहुंचे राहुल, खड़गे, अखिलेश, महुआ मोइत्रा समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं को नोटिस देकर जवाब मांगा है।
2: भारत की न्यायपालिका सबसे ज्यादा मजबूत, निष्पक्ष और जनता इस पे विश्वास करती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसको डराने का प्रयास, क्या हजारों समर्थकों की भीड़ लेकर सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में जाना, नारेबाजी करना, हुड़दंग करना, ये क्या था?
1: जंतर मंतर से प्रदर्शन स्थल हटाने के मामले में भी सरकार ने अदालत में बताया कि इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं। कमेटी ने पहले ही रिपोर्ट दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। आज तक ब्यूरो
0: खबर। CJP के प्लान 16 अक्टूबर यानी कि आज दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने के ऐलान की। अभिजीत दीपके के इस ऐलान के बाद NDMC ने 16 और 17 अक्टूबर यानी कि आज और कल सेंट्रल पार्क बंद करने का ऐलान कर दिया।
1: लेकिन CJP की कॉल के बाद कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से लेकर इर्द गिर्द सुरक्षा बढ़ा दी गई है, नए CCTV कैमरे लगाए गए हैं।
3: ये देखना होगा कि कल का जो कॉल है वो कांग्रेस जनता पार्टी कैसे ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करती है। हालांकि उन्होंने कहा है लोगों को इकट्ठा होने के लिए, लेकिन जैसा हमने पहले देखा है वैसी कुछ तस्वीरें कल को भी देखने को मिल सकती हैं कि आसपास इतनी भारी संख्या में सिक्योरिटी तैनात होगी कि कोई भी यहाँ इकट्ठा, किसी का भी यहाँ इकट्ठा होना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा।
1: दीपके के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत भूषण ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। जी हाँ, प्रशांत भूषण ने कहा कि सिविल सोसाइटी और युवाओं के नेतृत्व में लोकतंत्र को बचाने और सरकार बदलने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी।
4: स्टूडेंट्स को, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को ये श्रेय देते हैं और उनकी अगुवाही में ये लड़ाई लड़ी जाएगी। वो हमारे लीडर होंगे और उनकी अगुवाही में सारी सिविल सोसाइटी मिलकर, पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सब ये लड़ाई लड़ेंगी हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए और रेजिम चेंज के लिए। ये मैं आज खुले तौर पर कह रहा हूँ, यहाँ ये रेजिम चेंज की लड़ाई है और हम लोग रेजिम चेंज करा कर रहे हैं।
1: प्रशांत भूषण सरकार बदलने की बात कर रहे हैं तो दिपके ने ज्ञानेश कुमार पर अटैक करते हुए 2024 में लोकसभा चुनावों पर भी सवाल उठा दिया है।
5: 2024 में इंडिया अलायंस और एनडीए का जो मार्जिन था विक्ट्री और डिफीट का, दैट वाज जस्ट 2%। पिछले दो सालों में 13 करोड़ से ज्यादा वोट डिलीट हुए।
1: तो अभिजीत दिपके बेंगलुरु के मंच का जिक्र करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त पर एक और सवाल उठाते हैं।
5: प्रकाश सर के साथ में बेंगलुरु गया था, वहां पर मेन स्टेज पर बहुत ही एक मिरेकुलस चीज हुई, एक इट वाज, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा ये असलियत में कैसे हो सकता है। उस स्टेज पर मुझे ऐसे लोग मिले जो मरे हुए थे, राइट सर, मरे हुए लोग थे, मरे हुए लोग मेरे साथ खड़े हुए थे स्टेज पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, जिनको ज्ञानेश कुमार के इलेक्शन कमीशन ने डेड डिक्लेयर कर दिया था।
1: अब 16 अक्टूबर को क्या होगा, हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में सीजेपी के प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। मौसमी सिंह के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
0: जंतर मंतर को लेकर रण जारी है। आज सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने लोगों से अपील की कि तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में पहुंचे। वहीं दूसरी ओर नेहा बोरा के बयान पर हंगामा बरपा है।
6: विपक्ष के विरोध प्रदर्शन की पोस्टर गर्ल बन गई नेहा बोरा है। बारह अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के साथ आगे आगे दिख रही थी। 13 अक्टूबर को राहुल गांधी के यहाँ टी पार्टी में भी राहुल के साथ दिखी, लेकिन अब नेहा बोरा ने जो कहा है उसने सियासी तूफान ला दिया है।
7: And we know that the Gen Z movement that we are seeing everywhere in this country first started in Bangladesh. And congratulations to you for showing us the way, for showing us and extending solidarity to the young people of this country. We know that the movement that began in Bangladesh was for democratic and voter rights. Today, the movement that the young people are participating in and leading is also a movement for democratic and voting rights. We know that the fight that you fight against religious fundamentalism in your country is also a fight that the Gen Z and the young people of this country fight today.
6: तो नेहा बोरा बता रही हैं कि 2024 में बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार गिराने के लिए हुए प्रदर्शनों से भारत के युवाओं को प्रेरणा मिली है और वो सरकार के खिलाफ तन कर खड़े हुए हैं। अब नेहा बोरा के बयान पर बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है।
8: बांग्लादेश में हुआ क्या था, एक ग्रुप ऑफ इस्लामिस्ट ने भीड़ के सहारे, अराजकता के सहारे पूरे के पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने का प्रयास किया। उनका मकसद रेजिम चेंज था। मतलब आज ये साबित हो चुका है कि राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम भारत में लोकतंत्र को तहस नहस करने की एक साजिश रच रहे हैं।
6: अकेले नेहा बोरा ही नहीं, राहुल गांधी के साथ प्रदर्शन में शामिल प्रशांत भूषण भी ऐसा बयान दे रहे हैं जो सियासी आप को और हवा दे रहा है। भूषण ने कहा कि ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन की है। इधर अभिजीत दिपके बार बार अपील कर रहे हैं कि कल शाम 5 बजे वो कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा रैली करेंगे, इसमें लोग शामिल हों।
9: जैसे कि आप लोगों को पता है, सौरभ और आशु को बस तिरंगा लहराने के लिए जेल में डाला गया है। तो मैं सभी देशभक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग तिरंगे से प्यार करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 16 अक्टूबर को शाम को 5 बजे आप सब सेंट्रल पार्क कैनॉट प्लेस में आइए तिरंगे के साथ। वहां पर हम अपना तिरंगा लहराएंगे और हम बता देंगे कि वेविंग अ तिरंगा इज नॉट अ क्राइम।
6: एनएसयूआई पहले ही आरोप लगा चुकी है कि प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें पीटा। अब दिल्ली पुलिस ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों पर हमला करने का केस दर्ज किया है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन एनएसयूआई बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार की जंग जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी का चुनाव सीएम योगी की हैट्रिक या फिर अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी का चुनाव है। दोनों ही नेताओं ने चुनावी दंगल में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। दोनों ही नेताओं ने चैलेंज पॉलिटिक्स को लेकर जुबानी युद्ध शुरू कर दिया।

0: योगी और अखिलेश की जुबानी टक्कर।
1: उन्होंने यही फैसला लेना चाहिए, उनके बीच में अगला चुनाव लड़ना चाहिए।
0: वार और पलटवार, सियासत है धुआंधार।
2: पीडीए पीडीए चिल्लाते थे ये राज्यसभा के टिकट में, वो पीडीए कहाँ चला गया था।
0: 403 सीटों की लड़ाई, चुनावी पारा है हाई। 2027 का चुनाव, हर दिन नए नए दाम।
3: और जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं।
4: आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से, चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं। लड़ाई चेलों से क्यों, लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए।
0: विधानसभा चुनाव से पहले 10 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव को योगी और अखिलेश की अग्नि परीक्षा से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन चुनावी लड़ाई में 3 के बजाय 2 उम्मीदवार उतारकर अखिलेश पहले राउंड में पिछड़ गए। दूसरे राउंड में अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया, ऐलान किया कि सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं। योगी ने नहले पर दहला चला, चुनौती स्वीकार कर ऐलान किया कि अयोध्या में सीधा मुकाबला उनके और अखिलेश यादव के बीच होना चाहिए और वो तैयार है। वहाँ भी अखिलेश यादव का सियासी दांव उल्टा पड़ा, लिहाजा अखिलेश को डैमेज कंट्रोल का गियर लगाना पड़ा। ऐसे में 2027 की लड़ाई को लेकर सियासी पारा हाई है। सवाल यही है कि 2027 में योगी के सिर फिर सजेगा ताज या फिर 10 साल के बाद अखिलेश की सत्ता में वापसी होगी।
3: लेकिन जन आक्रोश के सामने भारतीय जनता पार्टी नहीं चलेगी। बाई इलेक्शन में तो 420 ही चल सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 403 में 420 ही नहीं चलने देंगे। पीडी के लोग डट करके मुकाबला करने काम करेंगे और भाजपा ही हारेंगे भी और भागेंगे भी इस बार।
5: उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के चुनाव ने बता दिया है कि विधानसभा का चुनाव परिणाम क्या होने जा रहा है। ये लड़ाई 80-20 की फिर आ गई है, 80% एनडीए में और 20% पीडीए में, और पीडीए का क्या हाल होने वाला है ये आपके सामने फिर आने वाला है।
0: बीते दिन समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए, तो 24 घंटों के अंदर समाजवादी पार्टी के कुनबे में कई नेताओं को शामिल किया गया, जिसमें कई बीजेपी छोड़कर साइकिल पर सवार हुए हैं। मतलब सिर्फ जुबानी जंग नहीं बल्कि हर मोर्चे पर सीधी टक्कर जारी है।
3: वो हारने जा रहे हैं, वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए प्रहरी पीडीए समाज जुड़ गया है, ये लोग पीड़ा दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, और वहीं प्रेम दया का अपनापन का समाजवादी पार्टी लोगों को जोड़ने का काम कर रही है।
4: अगर इनका वास्तविक चेहरा देखना हो तो अभी राज्यसभा में आपने देखा होगा, ये पीडीए पीडीए पीडीए चिल्ला रहे थे, पूछो तो राज्यसभा में इनको प्रत्याशी बनाने थे तो एक अपने चचा जान को बना दिए और दूसरा मुंबई के धन्ना सेठ को बना दिए। एक भी दलित नहीं, एक भी वंचित नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, एक भी फॉरवर्ड नहीं, कोई मतलब नहीं। अरे चलो इन पे विश्वास नहीं था तो कम से कम मुसलमानों को ही बना देते प्रत्याशी, लेकिन नहीं बनाया उनको भी।
0: अखिलेश ने पीडीए के फॉर्मूले से 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को पछाड़ा था। इसी चुनावी मंत्र पर अखिलेश 2027 में जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो वहीं अखिलेश के पीडीए पर तंज करते हुए सीएम योगी ने इसे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करार दिया। चाहे अखिलेश हो या फिर योगी, दोनों अपनी अपनी जीत की भविष्यवाणी करने में पीछे नहीं है।
3: इधर देखने को मिल रहा है कि जब जनता में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, भारतीय जनता पार्टी जब जनता के बीच में कमजोर होती दिख रही है उस समय वो इलेक्शन कमीशन के पीछे छिप जा रही है और इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के इस भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को और भारत के नागरिकों को धोखा दे रहे हैं।
5: आश्चर्य है कि ये चुनाव जीते तो इनका पुरुषार्थ और हारे तो ईवीएम दोषी। इलेक्शन कमीशन दोषी।
0: हर दिन यूपी के सियासी दंगल में योगी और अखिलेश के बीच वार पलटवार का खेल जारी है। अखिलेश राम मंदिर में दान की चोरी को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरते हैं तो योगी राम भक्तों को अखिलेश से सावधान रहने की सलाह देते हुए नजर आते हैं।
3: देखिए धर्म अधर्म, अधर्मी कौन है वो हारेगा, झूठ बोलने वाले हारेंगे, जनता को दुख देने वाले हारेंगे और जिन्होंने करोड़ों श्रद्धालुओं का चढ़ावा रामधन की चोरी की वो हारेंगे, भगवान स्वयं हरवाएंगे उन्हें।
4: रामद्रोही इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? याद करिए, ये रामद्रोही इसको स्वीकार कर ही नहीं सकते और इसलिए वे कुछ न कुछ युक्ति जरूर निकाल करके अयोध्या को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ते।
0: योगी ने राम मंदिर के नाम पर धर्म याद दिलाया तो अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी का धर्म। वहीं योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताते हैं, लेकिन अखिलेश यूपी की कानून व्यवस्था पर उठे सवालों से पलटवार करते हैं।
5: क्या माफिया जिस जमीन पे पैर रख लिया वह तीख की हो गई, अशरफ की हो गई, और अब जिस जमीन पर सरकार ने कहा कि ये माफिया की नहीं, ये गरीब के लिए आसियाना बनना है, तो माफिया की सिट्टी पिट्टी गम वहां पे बहुमंजिला आवासीय सुविधा उपलब्ध करवा करके हम गरीब के लिए मकानों की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं।
3: यूपी सरकार कस्टोडियल डेथ में नंबर वन है। ह्यूमन राइट्स कमीशन से सबसे ज्यादा यूपी सरकार को नोटिसेस मिले हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कई ऑब्जर्वेशंस में कहा कि यहां की पुलिस पॉलिटिकल काम कर रही है, यहां की पुलिस प्रशासन न्याय नहीं दे रहा है, और यहां तक कहा कि पुलिस को क्या खत्म कर दिया जाए। सोचिए, पुलिस को भंग कर दिया जाए, विभाग ही खत्म किया जाए क्या?
0: मतलब साफ है कि यूपी चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे कानून व्यवस्था, अयोध्या, वोट चोरी और तुष्टीकरण के मुद्दों पर जुबानी तकरार और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। देखना यही है कि यूपी के वोटरों पर ये मुद्दे कितना असर डालते हैं। दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे हैं, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा।
6: और अब खबर अंकिता भंडारी मर्डर केस की, जिसे लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाए जाने का परिवार विरोध कर रहा है तो कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई है।
7: इंडिया गेट देर रात एक बार फिर हंगामे का गवाह बना, जहां अंकिता भंडारी के माता पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अंकिता भंडारी का परिवार दुष्यंत कुमार का सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने के विरोध में इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने पहुंचा था। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत कांग्रेस के कई नेता माता पिता से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन देर रात इंडिया गेट पर प्रशासन परिवार को हटाने पहुंचा, जहां माता पिता के अलावा कई कांग्रेसी नेता हिरासत में लिए गए। प्रशासन के एक्शन पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, सुबह के 4 बजे जब दुनिया सो रही थी तब अंकिता भंडारी के माता पिता को हिरासत में ले लिया गया। जिस जांच का नतीजा आया नहीं उसके पहले ही नियुक्ति की जल्दी और सवाल पूछने वाले माँ बाप को रात के अंधेरे में उठा लिया गया। इस सरकार की पहचान यही है, पीड़ितों की आवाज दबा दो, सवाल करने वालों को हटा दो। उधर अंकिता भंडारी को लेकर हंगामे की एक तस्वीर देहरादून में भी नजर आई।
8: कांग्रेस कार्यकर्ता अचानक राज्यपाल निवास पर पहुंच गए हैं। ये राज्यपाल आवास है, राजभवन है, जिसे लोक भवन भी कहा जाता है। और देखिए किस तरह से गेट को खोलने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता इस गेट को भेद कर राज्यपाल से मिलने जाना चाहते हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। हरक सिंह को देखिए पुलिस डिटेन कर रही है यहाँ पर, और पुलिस डिटेन करने की कोशिश कर रही है। और गणेश गोदयाल यहाँ गिर गए हैं। देखा जा सकता है कि किस तरह से कांग्रेस पूरे आक्रामक तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की जारी है।
9: राज्यपाल को क्या बोलते निकला है कि दुष्यंत गौतम के इस्तीफे की मांग, अजय गोटान की मांग को लेकर हम ज्ञापन देने के लिए आए थे। चार दिन से राज्यपाल उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के सम्मान का सवाल है, उत्तराखंड की बेटियों का सम्मान है।
7: बीजेपी कांग्रेस पर मामले में सियासत करने का आरोप लगा रही है।
10: जब पुलिस के किसी पेपर में कहीं नाम नहीं है, केवल ऑपोजिशन इस नाम को उठा रही है।
11: उनके पेरेंट्स ने कहा सीबीआई जांच कराओ, तो सीबीआई जांच हो गई। तो आखिरकार भाई वो जांच में, जांच को होने देना, जांच में क्या आया है उसको जाने बगैर सारी बातें कह देना, पूरी तरीके से जो है वो पॉलिटिकल खेल रहे हैं। और राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, किसी की छवि बेवजह जो है धूमिल की जा रही है।
7: अंकिता भंडारी की मौत में बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम के शामिल होने को लेकर विपक्ष और परिवार की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सीबीआई की जांच पूरी होने से पहले ही दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का गवर्नर बना दिया गया, जिसके विरोध में अंकिता का परिवार दिल्ली पहुंचा।
12: किस बेस पे उन्होंने उस आदमी को राज्यपाल बनाया?
13: जो आशाएं लगी थी वो कुछ नहीं हुई, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे।
12: मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक उनकी सीबीआई जांच नहीं हो जाती, उनको राज्यपाल घोषित न किया जाए।
7: उत्तराखंड में चुनाव से पहले दुष्यंत कुमार गौतम के राज्यपाल बनने के बाद एक बार फिर अंकिता भंडारी का मुद्दा अब बढ़ता नजर आ रहा है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
6: शिवा शर्मा मामले में जांच का दायरा बढ़ रहा है। इसमें खुलासा हुआ कि आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे नेपाल भाग चुकी है, उसके साथ उसकी बहन और अन्य आरोपी भी फरार हैं। सभी का पुलिस इनकी तलाश कर रही है, लेकिन एक वीडियो भी आया जिसमें अपने आप को श्रद्धा बेगुनाह बताती है।
14: वही तस्वीर है जो श्रद्धा दुबे के नेपाल भाग जाने का पुख्ता प्रमाण है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर नेपाल के माहिम नगर की है। श्रद्धा अपनी बहन रश्मि दुबे और दोस्त आदिल रोड क्रॉस कर बस स्टेशन के भीतर जाते दिखे हैं। पुलिस सूत्रों का मानना है कि श्रद्धा का नेटवर्क काफी मजबूत है और उसे पुलिस की हर मूवमेंट की इनसाइड जानकारी समय से पहले मिल रही है। पुलिस से भाग रही श्रद्धा दुबे अब कह रही है कि वो पुलिस की जांच में सहयोग करना चाह रही है।
15: मैं कहीं गायब नहीं हूँ, मैं पुलिस में आके बयान देना चाहती हूँ, मैं उन्हें सब कुछ सच सच जो कुछ भी है मैं उन्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ।
14: एक तरफ श्रद्धा दुबे वीडियो जारी कर पुलिस के सामने आने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ उसकी एसयूवी मिलने की खबर ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा के पास पार्किंग में श्रद्धा की एसयूवी कार मिली है। जानकारी के मुताबिक UP 32 QQ 011 ये गाड़ी 10 अक्टूबर से पार्किंग में खड़ी थी। श्रद्धा गाड़ी पार्क करने के बाद नेपाल जाने की बात कहकर वहां से निकली थी, और अब नेपाल से आई ये तस्वीर काफी कुछ बयान कर रही है। कारोबारी शिवा शर्मा की मौत से उठे सवालों को लेकर पहली बार मॉडल श्रद्धा दुबे का वीडियो सामने आया है। शिवा शर्मा की मौत के बाद उठे सवालों पर सुनिए श्रद्धा दुबे का ये बयान।
15: वो हत्या नहीं थी, वो एक सुसाइड था, ठीक है। मैंने अपनी आंखों से देखा उसको कूदते हुए, ठीक। अगर वहां के सीसीटीवी कैमरेज निकलेंगे, सब कुछ निकलेगा, तो उसमें दिखेगा कि वो किस तरह से कूद रहा है।
14: शिवा की मां ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें मुख्य आरोपी श्रद्धा है, साथ में श्रद्धा की बहन रश्मि दुबे भी आरोपी बनाई गई है। नेपाल से आई तस्वीर में रश्मि भी साथ दिखी है। शिवा की मां ने आरोप लगाए हैं कि श्रद्धा उनके बेटे को लगातार धमकाती थी और टॉर्चर करती थी,
16: डेली बांध के और थ्रेटन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करती थी, जिसके बाइट्स अक्सर उनके बॉडी पे होते थे। निशान पूछने पे वो ये कहते थे कि चोट लग गई है, गिर गया हूँ।
14: लखनऊ पुलिस ने मामले में जांच तेज कर दी है ताकि करोड़पति कारोबारी की मौत की असल वजह साफ हो सके। बहराइच से रामबरन चौधरी और लखनऊ से अंकित मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव आज तक।
6: कश्मीर में मौसम लगातार बदल रहा है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी से सफेद परत दिखाई देने लगी। ऊंचे पहाड़ों, खुले मैदानों पर गिरी बर्फ से इलाका पूरी तरह से ढक गया। बर्फबारी के साथ ही घाटी में सर्द मौसम की शुरुआत का एहसास होने लगा।
17: ये तस्वीरें हैं उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा स्थित गुरेज की तुलैल घाटी की है, जहाँ सीजन की पहली बर्फबारी ने दस्तक दी है। बर्फबारी के बाद घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ तुलैल के मैदानी हिस्सों में बर्फ की सफेद परत दिखाई देने लगी। बर्फबारी के साथ ही यहां मौसम का मिजाज बदल गया है और खूबसूरत वादियों ने सर्दियों की आहट का एहसास कराना शुरू कर दिया है।
18: हर जगह पर जबरदस्त बर्फबारी रात के बीच हुई है, जिससे तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। अगर श्रीनगर की बात की जाए तो दिन का अधिकतम तापमान 15 डिग्री रहने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटों के दौरान कश्मीर में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा।
17: भारी बर्फबारी का असर सड़क के रास्ते पर भी पड़ा है। पुंछ और राजौरी को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाले मुगल रोड पर पीर की गली के पास बर्फ जमा होने से आवाजाही बंद हो गई है। सड़क से बर्फ हटाने और रास्ते को साफ करने के लिए मशीनें चलाई जा रही हैं। अक्टूबर का अभी आधा महीना ही गुजरा है और कश्मीर के कई इलाकों में पारा शून्य तक लुढ़क चुका है, जबकि श्रीनगर में भी तापमान 15 डिग्री तक गिरा है। लेकिन बदलते मौसम में भी यहां पहुंचे पर्यटकों में गजब का उत्साह है।
19: बहुत बहुत अमेजिंग, सबको आना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगी, इंडिया में, वर्ल्ड में सबको आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है।
17: अब आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। अशरफ वानी, मीर फरीद के साथ एजाज डार, श्रीनगर, आज तक।
6: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: आ गया सोमवार और आ गए
1: चकमक चाचा।
0: हाँ चाचा, अखबार भाँच रहे हैं।
2: टेस्ट
0: चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चिचा कब जाएंगे?
2: अरे भैया प्रोटेस्ट में हिस्सा हम नहीं लेते, ये सब तुम लोग का ऐसा, हम अपना मुद्दा उठा चुके
0: पुराने। अच्छा, कब उठाए?
2: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए।
0: अच्छा
2: हाँ, तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे दन दन दन दन कर गया, ऐसा ये सब नहीं था अपना मामला
3: जी,
2: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
0: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है आपका।
2: टूटा भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे प्रवाही चलती थी दर्द पिता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर मुद्दा रखे थे हाँ एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
0: अच्छा
2: और क्या
0: आपका मतलब, हम लोग डर जाते हैं?
2: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल, जहाँ पुलिस सिटी नहीं बची उसमें भागने लगता हूँ।
0: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही
2: है। किधर?
0: चाचा हम खेल गए अब की।

0: बीजेपी और विपक्ष में जारी है राजनीतिक घमासान। ज्ञानेश के खिलाफ राहुल की मोर्चाबंदी जारी। पार्टी नेताओं के साथ इंदिरा भवन में बैठक। बीजेपी का आरोप, विदेशी हाथों में खेल रहे हैं राहुल। अंकिता के परिजनों से मुलाकात के बाद राहुल ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। दुष्यंत गौतम की नियुक्ति पर उठाए सवाल, कहा सरकार के निर्णय से स्तब्ध हूं। दिल्ली में प्रदर्शन के पहले दिपके का केंद्र पर हमला, कहा एक देश एक पार्टी इनका उद्देश्य। प्रशांत भूषण बोले सत्ता परिवर्तन के लिए हमारी लड़ाई। पंचायत आज तक राजस्थान में बोले मुख्यमंत्री भजन लाल, तेजी से विकास कर रही है डबल इंजन की सरकार। पेपर लीक को किया सील, ड्रग तस्करों पर कार्रवाई। प्रयागराज में योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा माफिया के सामने घुटने टेक मौन रहती थी समाजवादी सरकार, अब माफिया मुक्त हो गया यूपी। हमारे देश में चुनाव आयोग के खिलाफ शुरू हुआ राजनीतिक आंदोलन अब अदालतों में भी चल रहा है। आज तीन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर यह जवाब मांगा। पहला नोटिस राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं के अलावा तीन और अर्जियों पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को जारी हुआ। राहुल गांधी ने फिर से टी पार्टी करके कल अपनी आगे की रणनीति बनाई।
1: तेरह अक्टूबर के बाद राहुल गांधी की आज फिर से टी पार्टी हुई, फिर से चुनाव आयोग के खिलाफ जुटान हुआ और फिर से आगे की रणनीति पर बात हुई। चुनाव आयोग के खिलाफ छिड़ी सियासी लड़ाई जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो वहां जंग के चार तरह के मोर्चे नजर आए। पहला मामला चुनाव आयोग और SIR वाला था, दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक राहुल गांधी के मार्च का था, तीसरा मामला जंतर मंतर से प्रदर्शन स्थल हटाने का था, चौथा मामला महिला पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों से बदसलूकी का था, जिसमें से तीन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। पहला नोटिस राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं के अलावा तीन और अर्जियों पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग और दोनों चुनाव आयुक्तों को जारी हुआ और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि हम अगली सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं में से एक से उसके आचरण के बारे में पूछना चाहेंगे। नोटिस जारी करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी बात की निंदा कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं में से एक के संबंध में नोटिस को फिलहाल अस्थायी तौर पर स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते वो अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण दें। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन करने पहुंचे राहुल, खड़गे, अखिलेश, महुआ मोइत्रा समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं को नोटिस देकर जवाब मांगा है।
2: भारत की न्यायपालिका सबसे ज्यादा मजबूत, निष्पक्ष और जनता इस पे विश्वास करती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसको डराने का प्रयास, क्या हजारों समर्थकों की भीड़ लेकर सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में जाना, नारेबाजी करना, हुड़दंग करना, ये क्या था?
1: जंतर मंतर से प्रदर्शन स्थल हटाने के मामले में भी सरकार ने अदालत में बताया कि इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं। कमेटी ने पहले ही रिपोर्ट दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। आज तक ब्यूरो
0: खबर। CJP के प्लान 16 अक्टूबर यानी कि आज दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने के ऐलान की। अभिजीत दीपके के इस ऐलान के बाद NDMC ने 16 और 17 अक्टूबर यानी कि आज और कल सेंट्रल पार्क बंद करने का ऐलान कर दिया।
1: लेकिन CJP की कॉल के बाद कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से लेकर इर्द गिर्द सुरक्षा बढ़ा दी गई है, नए CCTV कैमरे लगाए गए हैं।
3: ये देखना होगा कि कल का जो कॉल है वो कांग्रेस जनता पार्टी कैसे ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करती है। हालांकि उन्होंने कहा है लोगों को इकट्ठा होने के लिए, लेकिन जैसा हमने पहले देखा है वैसी कुछ तस्वीरें कल को भी देखने को मिल सकती हैं कि आसपास इतनी भारी संख्या में सिक्योरिटी तैनात होगी कि कोई भी यहाँ इकट्ठा, किसी का भी यहाँ इकट्ठा होना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा।
1: दीपके के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत भूषण ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। जी हाँ, प्रशांत भूषण ने कहा कि सिविल सोसाइटी और युवाओं के नेतृत्व में लोकतंत्र को बचाने और सरकार बदलने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी।
4: स्टूडेंट्स को और यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को ये श्रेय देते हैं और उनकी अगुवाही में ये लड़ाई लड़ी जाएगी। वो हमारे लीडर होंगे और उनकी अगुवाही में सारी सिविल सोसाइटी मिलकर, पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर, सब ये लड़ाई लड़ेंगी हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए और रेजिम चेंज के लिए। ये मैं आज खुले तौर पर कह रहा हूँ, यहाँ ये रेजिम चेंज की लड़ाई है और हम लोग रेजिम चेंज करा कर रहे हैं।
1: प्रशांत भूषण सरकार बदलने की बात कर रहे हैं तो दिपके ने ज्ञानेश कुमार पर अटैक करते हुए 2024 में लोकसभा चुनावों पर भी सवाल उठा दिया है।
5: 2024 में इंडिया अलायंस और एनडीए का जो मार्जिन था विक्ट्री और डिफीट का, दैट वाज जस्ट 2%। पिछले दो सालों में 13 करोड़ से ज्यादा वोट डिलीट हुए।
1: तो अभिजीत दिपके बेंगलुरु के मंच का जिक्र करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त पर एक और सवाल उठाते हैं।
5: प्रकाश सर के साथ में बेंगलुरु गया था, वहां पर मेरे स्टेज पर बहुत ही एक मिरेकुलस चीज हुई, एक इट वाज, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा ये असलियत में कैसे हो सकता है। उस स्टेज पर मुझे ऐसे लोग मिले जो मरे हुए थे, राइट सर, मरे हुए लोग थे, मरे हुए लोग मेरे साथ खड़े हुए थे स्टेज पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, जिनको ज्ञानेश कुमार के इलेक्शन कमीशन ने डेट डिक्लेयर कर दिया था।
1: अब 16 अक्टूबर को क्या होगा, हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में सीजेपी के प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। मौसमी सिंह के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
0: जंतर मंतर को लेकर रण जारी है। आज सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने लोगों से अपील की कि तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में पहुंचे। वहीं दूसरी ओर नेहा बोरा के बयान पर हंगामा बरपा है।
6: विपक्ष के विरोध प्रदर्शन की पोस्टर गर्ल बन गई नेहा बोरा है। बारह अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के साथ आगे आगे दिख रही थी। 13 अक्टूबर को राहुल गांधी के यहाँ टी पार्टी में भी राहुल के साथ दिखी, लेकिन अब नेहा बोरा ने जो कहा है उसने सियासी तूफान ला दिया है।
7: And we know that the Gen Z movement that we are seeing everywhere in this country first started in Bangladesh. And congratulations to you for showing us the way, for showing us and extending solidarity to the young people of this country. We know that the movement that began in Bangladesh was for democratic and voter rights. Today, the movement that the young people are participating in and leading is also a movement for democratic and voting rights. We know that the fight that you fight against religious fundamentalism in your country is also a fight that the Gen Z and the young people of this country fight today.
6: तो नेहा बोरा बता रही हैं कि 2024 में बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार गिराने के लिए हुए प्रदर्शनों से भारत के युवाओं को प्रेरणा मिली है और वो सरकार के खिलाफ तन कर खड़े हुए हैं। अब नेहा बोरा के बयान पर बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है।
8: बांग्लादेश में हुआ क्या था, एक ग्रुप ऑफ इस्लामिस्ट ने भीड़ के सहारे, अराजकता के सहारे पूरे के पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने का प्रयास किया। उनका मकसद रेजिम चेंज था। मतलब आज ये साबित हो चुका है कि राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम भारत में लोकतंत्र को तहस नहस करने की एक साजिश रच रहे हैं।
6: अकेले नेहा बोरा ही नहीं, राहुल गांधी के साथ प्रदर्शन में शामिल प्रशांत भूषण भी ऐसा बयान दे रहे हैं जो सियासी आप को और हवा दे रहा है। भूषण ने कहा कि ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन की है। इधर अभिजीत दिपके बार बार अपील कर रहे हैं कि कल शाम 5 बजे वो कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा रैली करेंगे, इसमें लोग शामिल हों।
9: जैसे कि आप लोगों को पता है, सौरभ और आशु को बस तिरंगा लहराने के लिए जेल में डाला गया है। तो मैं सभी देशभक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग तिरंगे से प्यार करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 16 अक्टूबर को शाम को 5 बजे आप सब सेंट्रल पार्क कैनॉट प्लेस में आइए तिरंगे के साथ। वहां पर हम अपना तिरंगा लहराएंगे और हम बता देंगे कि वेविंग अ तिरंगा इज नॉट अ क्राइम।
6: एनएसयूआई पहले ही आरोप लगा चुकी है कि प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें पीटा। अब दिल्ली पुलिस ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों पर हमला करने का केस दर्ज किया है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन एनएसयूआई बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार की जंग जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी का चुनाव सीएम योगी की हैट्रिक या फिर अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी का चुनाव है। दोनों ही नेताओं ने चुनावी दंगल में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। दोनों ही नेताओं ने चैलेंज पॉलिटिक्स को लेकर जुबानी युद्ध शुरू कर दिया।

0: योगी और अखिलेश की जुबानी टक्कर।
1: उन्होंने यही फैसला लेना चाहिए, उनके बीच में अगला चुनाव लड़ना चाहिए।
0: वार और पलटवार, सियासत है धुआंधार।
2: पीडीए चिल्लाते थे ये राज्यसभा के टिकट में, वो पीडीए कहाँ चला गया था।
0: 403 सीटों की लड़ाई, चुनावी पारा है हाई। 2027 का चुनाव, हर दिन नए नए दाम।
3: और जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं।
4: आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं। लड़ाई चेलों से क्यों, लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए।
0: विधानसभा चुनाव से पहले 10 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव को योगी और अखिलेश की अग्नि परीक्षा से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन चुनावी लड़ाई में 3 के बजाय 2 उम्मीदवार उतारकर अखिलेश पहले राउंड में पिछड़ गए। दूसरे राउंड में अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया, ऐलान किया कि सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं। योगी ने नहले पर दहला चला, चुनौती स्वीकार कर ऐलान किया कि अयोध्या में सीधा मुकाबला उनके और अखिलेश यादव के बीच होना चाहिए और वो तैयार है। वहाँ भी अखिलेश यादव का सियासी दांव उल्टा पड़ा, लिहाजा अखिलेश को डैमेज कंट्रोल का गियर लगाना पड़ा। ऐसे में 2027 की लड़ाई को लेकर सियासी पारा हाई है। सवाल यही है कि 2027 में योगी के सिर फिर सजेगा ताज या फिर 10 साल के बाद अखिलेश की सत्ता में वापसी होगी।
5: लेकिन जन आक्रोश के सामने भारतीय जनता पार्टी नहीं चलेगी। बाई इलेक्शन में तो 420 ही चल सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 403 में 420 ही नहीं चलने देंगे। पीडी के लोग डट करके मुकाबला करने काम करेंगे और भाजपाई हारेंगे भी और भागेंगे भी इस बार।
6: उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के चुनाव ने बता दिया है कि विधानसभा का चुनाव परिणाम क्या होने जा रहा है। ये लड़ाई 80-20 की फिर आ गई है, 80% एनडीए में और 20% पीडीए में, और पीडीए का क्या हाल होने वाला है ये आपके सामने फिर आने वाला है।
0: बीते दिन समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए, तो 24 घंटों के अंदर समाजवादी पार्टी के कुनबे में कई नेताओं को शामिल किया गया, जिसमें कई बीजेपी छोड़कर साइकिल पर सवार हुए हैं। मतलब सिर्फ जुबानी जंग नहीं बल्कि हर मोर्चे पर सीधी टक्कर जारी है।
5: वो हारने जा रहे हैं, वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए प्रहरी पीडीए समाज जुड़ गया है, ये लोग पीड़ा दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, और वहीं प्रेम दया का अपनापन का समाजवादी पार्टी लोगों को जोड़ने का काम कर रही है।
4: अगर इनका वास्तविक चेहरा देखना हो तो अभी राज्यसभा में आपने देखा होगा, ये पीडीए पीडीए पीडीए चिल्ला रहे थे, पूछो तो राज्यसभा में इनको प्रत्याशी बनाने थे तो एक अपने चचा जान को बना दिए और दूसरा मुंबई के धन्ना सेठ को बना दिए। एक भी दलित नहीं, एक भी वंचित नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, एक भी फॉरवर्ड नहीं, कोई मतलब नहीं। अरे चलो इन पे विश्वास नहीं था तो कम से कम मुसलमानों को ही बना देते प्रत्याशी, लेकिन नहीं बनाया उनको भी।
0: अखिलेश ने पीडीए के फॉर्मूले से 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को पछाड़ा था। इसी चुनावी मंत्र पर अखिलेश 2027 में जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो वहीं अखिलेश के पीडीए पर तंज करते हुए सीएम योगी ने इसे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करार दिया। चाहे अखिलेश हो या फिर योगी, दोनों अपनी अपनी जीत की भविष्यवाणी करने में पीछे नहीं है।
5: इधर देखने को मिल रहा है कि जब जनता में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, भारतीय जनता पार्टी जब जनता के बीच में कमजोर होती दिख रही है उस समय वो इलेक्शन कमीशन के पीछे छिप जा रही है और इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के इस भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को और भारत के नागरिकों को धोखा दे रहे हैं।
6: आश्चर्य है कि चुनाव जीते तो इनका पुरुषार्थ और हारे तो ईवीएम दोषी। इलेक्शन कमीशन दोषी।
0: हर दिन यूपी के सियासी दंगल में योगी और अखिलेश के बीच वार पलटवार का खेल जारी है। अखिलेश राम मंदिर में दान की चोरी को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरते हैं तो योगी राम भक्तों को अखिलेश से सावधान रहने की सलाह देते हुए नजर आते हैं।
5: देखिए धर्म अधर्म, अधर्मी कौन है वो हारेगा, झूठ बोलने वाले हारेंगे, जनता को दुख देने वाले हारेंगे और जिन्होंने करोड़ों श्रद्धालुओं का चढ़ावा रामधन की चोरी की वो हारेंगे, भगवान स्वयं हरवाएंगे उन्हें।
4: रामद्रोही इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? याद करिए, ये रामद्रोही इसको स्वीकार कर ही नहीं सकते और इसलिए वे कुछ न कुछ युक्ति जरूर निकाल करके अयोध्या को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ते।
0: योगी ने राम मंदिर के नाम पर धर्म याद दिलाया तो अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी का धर्म। वहीं योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताते हैं, लेकिन अखिलेश यूपी की कानून व्यवस्था पर उठे सवालों से पलटवार करते हैं।
6: क्या माफिया जिस जमीन पे पैर रख लिया वह तीख की हो गई, अशरफ की हो गई, और अब जिस जमीन पर सरकार ने कहा कि ये माफिया की नहीं, ये गरीब के लिए आसियाना बनना है, तो माफिया की सिट्टी पिट्टी गम वहां पे बहुमंजिला आवासीय सुविधा उपलब्ध करवा करके हम गरीब के लिए मकानों की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं।
5: यूपी सरकार कस्टोडी

0: शासन न्याय नहीं दे रहा है और यहां तक कहा कि पुलिस को क्या खत्म कर दिया जाए। सोचिए, पुलिस को भंग कर दिया जाए, विभाग ही खत्म किया जाए क्या?
1: मतलब साफ है कि यूपी चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे कानून व्यवस्था, अयोध्या, वोट चोरी और तुष्टीकरण के मुद्दों पर जुबानी तकरार और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। देखना यही है कि यूपी के वोटरों पर ये मुद्दे कितना असर डालते हैं। दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे हैं, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा।
2: और अब खबर अंकिता भंडारी मर्डर केस की, जिसे लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाए जाने का परिवार विरोध कर रहा है, तो कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई है।
3: इंडिया गेट देर रात एक बार फिर हंगामे का गवाह बना, जहां अंकिता भंडारी के माता पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अंकिता भंडारी का परिवार दुष्यंत कुमार का सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने के विरोध में इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने पहुंचा था। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत कांग्रेस के कई नेता माता पिता से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन देर रात इंडिया गेट पर प्रशासन परिवार को हटाने पहुंचा, जहां माता पिता के अलावा कई कांग्रेसी नेता हिरासत में लिए गए। प्रशासन के एक्शन पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, सुबह के 4 बजे जब दुनिया सो रही थी तब अंकिता भंडारी के माता पिता को हिरासत में ले लिया गया। जिस जांच का नतीजा आया नहीं उसके पहले ही नियुक्ति की जल्दी और सवाल पूछने वाले माँ बाप को रात के अंधेरे में उठा लिया गया। इस सरकार की पहचान यही है, पीड़ितों की आवाज दबा दो, सवाल करने वालों को हटा दो। उधर अंकिता भंडारी को लेकर हंगामे की एक तस्वीर देहरादून में भी नजर आई।
4: कांग्रेस कार्यकर्ता अचानक राज्यपाल निवास पर पहुंच गए हैं। ये राज्यपाल आवास है, राजभवन है, जिसे लोक भवन भी कहा जाता है। और देखिए किस तरह से गेट को खोलने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता इस गेट को भेद कर राज्यपाल से मिलने जाना चाहते हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। हरक सिंह को देखिए, पुलिस डिटेन कर रही है यहाँ पर, और पुलिस डिटेन करने की कोशिश कर रही है। और गणेश गोदयाल यहाँ गिर गए हैं। देखा जा सकता है कि किस तरह से कांग्रेस पूरे आक्रामक तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की जारी है।
5: राज्यपाल को क्या मांग देने दिला है कि दुष्यंत गौतम के इस्तीफे की मांग, अजय गोटानी की मांग को लेकर हम ज्ञापन देने के लिए आए थे। चार दिन से राज्यपाल उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के सम्मान का सवाल है, उत्तराखंड की बेटियों का सम्मान है।
3: बीजेपी कांग्रेस पर मामले में सियासत करने का आरोप लगा रही है।
6: जब पुलिस के किसी पेपर में कहीं नाम नहीं है, केवल ऑपोजिशन इस नाम को उठा रही है।
7: उनके पेरेंट्स ने कहा सीबीआई जांच कराओ, तो सीबीआई जांच हो गई। तो आखिरकार भाई वो जांच में, जांच को होने देना, जांच में क्या आया है उसको जाने बगैर सारी बातें कह देना, पूरी तरीके से जो है वो पॉलिटिकल खेल रहे हैं। और राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, किसी की छवि बेवजह जो है धूमिल की जा रही है।
3: अंकिता भंडारी की मौत में बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम के शामिल होने को लेकर विपक्ष और परिवार की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सीबीआई की जांच पूरी होने से पहले ही दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का गवर्नर बना दिया गया, जिसके विरोध में अंकिता का परिवार दिल्ली पहुंचा।
8: किस बेस पे उन्होंने उस आदमी को राज्यपाल बनाया? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक उनकी सीबीआई जांच नहीं हो जाती उनको राज्यपाल घोषित न किया जाए।
3: उत्तराखंड में चुनाव से पहले दुष्यंत कुमार गौतम के राज्यपाल बनने के बाद एक बार फिर अंकिता भंडारी का मुद्दा अब बढ़ता नजर आ रहा है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: शिवा शर्मा मामले में जांच का दायरा बढ़ रहा है। इसमें खुलासा हुआ कि आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे नेपाल भाग चुकी है, उसके साथ उसकी बहन और अन्य आरोपी भी फरार हैं। सभी का पुलिस इनकी तलाश कर रही है, लेकिन एक वीडियो भी आया जिसमें अपने आप को श्रद्धा बेगुनाह बताती है।
9: ये वही तस्वीर है जो श्रद्धा दुबे के नेपाल भाग जाने का पुख्ता प्रमाण है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर नेपाल के माहिम नगर की है। श्रद्धा अपनी बहन रश्मि दुबे और दोस्त आदिल रोड क्रॉस कर बस स्टेशन के भीतर जाते दिखे।

0: हैं। पुलिस सूत्रों का मानना है कि श्रद्धा का नेटवर्क काफी मजबूत है और उसे पुलिस की हर मूवमेंट की इनसाइड जानकारी समय से पहले मिल रही है। पुलिस से भाग रही श्रद्धा दुबे अब कह रही है कि वो पुलिस की जांच में सहयोग करना चाह रही है।
1: मैं कहीं गायब नहीं हूँ, मैं पुलिस में आके बयान देना चाहती हूँ, मैं उन्हें सब कुछ सच सच जो कुछ भी है मैं उन्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ।
0: एक तरफ श्रद्धा दुबे वीडियो जारी कर पुलिस के सामने आने की बात कह रही है तो दूसरी तरफ उसकी SUV मिलने की खबर ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा के पास पार्किंग में श्रद्धा की SUV कार मिली है। जानकारी के मुताबिक UP 32 QQ 0111 ये गाड़ी 10 अक्टूबर से पार्किंग में खड़ी थी। श्रद्धा गाड़ी पार्क करने के बाद नेपाल जाने की बात कहकर वहां से निकली थी और अब नेपाल से आई ये तस्वीर काफी कुछ बयान कर रही है। कारोबारी शिवा शर्मा की मौत से उठे सवालों को लेकर पहली बार मॉडल श्रद्धा दुबे का वीडियो सामने आया है। शिवा शर्मा की मौत के बाद उठे सवालों पर सुनिए श्रद्धा दुबे का ये बयान।
1: वो हत्या नहीं थी, वो एक सुसाइड था, ठीक है। मैंने अपनी आंखों से देखा उसको कूदते हुए, ठीक। अगर वहां के CCTV कैमरेज निकलेंगे, सब कुछ निकलेगा, तो उसमें दिखेगा कि वो किस तरह से कूद रहा है।
0: शिवा की मां ने जो FIR दर्ज कराई है उसमें मुख्य आरोपी श्रद्धा है, साथ में श्रद्धा की बहन रश्मि दुबे भी आरोपी बनाई गई है। नेपाल से आई तस्वीर में रश्मि भी साथ दिखी है। शिवा की मां ने आरोप लगाए हैं कि श्रद्धा उनके बेटे को लगातार धमकाती थी और टॉर्चर करती थी,
2: डेली बांध के और थ्रेटन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करती थी जिसके बाइट्स अक्सर उनके बॉडी पे होते थे निशान। पूछने पे वो ये कहते थे कि चोट लग गई है, गिर गया हूँ।
0: लखनऊ पुलिस ने मामले में जांच तेज कर दी है ताकि करोड़पति कारोबारी की मौत की असल वजह साफ हो सके। बहराइच से रामबरन चौधरी और लखनऊ से अंकित मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
3: और अब खबर आमिर खान के भांजे और कई फिल्मों में एक्टिंग करने वाले इमरान खान की, जिन्हें मुंबई पुलिस ने भारत छोड़ने का नोटिस दे दिया है। इमरान को डेडलाइन बता दी गई है, 28 अक्टूबर तक देश छोड़ दीजिए।
4: अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस नोटिस का मसौदा साफ है। पुलिस ने दो टूक कह दिया है कि इमरान खान भारत छोड़ दें। मुंबई पुलिस ने एक्टर आमिर खान के भांजे को ये नोटिस थमाया है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को ऐसा फरमान जारी करना पड़ा। दरअसल ये पूरा मामला 10 अक्टूबर 2026 का है, जब मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था। इस प्रदर्शन में CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। इमरान खान भी उस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया था। इस बात से BJP नाराज हो गई। पार्टी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस से इसकी शिकायत कर दी। दरअसल इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं है, वो अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं। उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा है। BJP की शिकायत थी कि ऐसे लोग देश के अंदरूनी प्रोटेस्ट में कैसे शामिल हो सकते हैं।
5: किरीट सोमैया ने कहा था कि इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और वो भारत में हो रहे आंदोलन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने लगातार इसकी शिकायत मुंबई पुलिस से की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए इमिग्रेशन एक्ट के तहत इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के निर्देश मुंबई पुलिस द्वारा दिए गए हैं।
4: उसी मामले में संबंधित आव्रजन कानूनों के तहत कार्रवाई की गई है। मुंबई पुलिस के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की ओर से नोटिस जारी किया गया है।
6: इमरान खान के खिलाफ मैंने शिकायत दी थी, इमरान खान को 28 अक्टूबर तक हिंदुस्तान छोड़ना है। ऐसे जो भी होंगे, इमरान होंगे, इकबाल होंगे, यूसुफ होगा, अब्दुल होगा, जो विदेशी नागरिक, विदेशी पैसा, उनके ऊपर ऐसी ही कार्रवाई होगी।
4: OCI कार्ड धारक भारतीय मूल के विदेशी नागरिक होते हैं जिन्हें भारत में रहने और कई अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता है, लेकिन OCI का दर्जा भारतीय नागरिकता के समान नहीं है। उसके साथ कुछ कानूनी प्रतिबंध भी जुड़े होते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इमरान खान मुंबई पुलिस के नोटिस पर क्या कदम उठाते हैं। दीपेश त्रिपाठी, आज तक।
3: कश्मीर में मौसम लगातार बदल रहा है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी से सफेद परत दिखाई देने लगी। ऊंचे पहाड़ों, खुले मैदानों पर गिरी बर्फ से इलाका पूरी तरह से ढक गया। बर्फबारी के साथ ही घाटी में सर्द मौसम की शुरुआत का एहसास होने लगा।
4: ये तस्वीरें हैं उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा स्थित गुरेज की तुलैल घाटी की है, जहाँ सीजन की पहली बर्फबारी ने दस्तक दी है। बर्फबारी के बाद घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ तुलैल के मैदानी हिस्सों में बर्फ की सफेद परत दिखाई देने लगी है। बर्फबारी के साथ ही यहाँ मौसम का मिजाज बदल गया है और खूबसूरत वादियों ने सर्दियों की आहट का एहसास कराना शुरू कर दिया है।
7: हर जगह पर जबरदस्त बर्फबारी रात के बीच हुई है, जिससे तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। अगर श्रीनगर की बात की जाए तो दिन का अधिकतम तापमान 15 डिग्री रहने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटों के दौरान कश्मीर में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा।
4: भारी बर्फबारी का असर सड़क के रास्ते पर भी पड़ा है। पुंछ और राजौरी को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाले मुगल रोड पर पीर की गली के पास बर्फ जमा होने से आवाजाही बंद हो गई है। सड़क से बर्फ हटाने और रास्ते को साफ करने के लिए मशीनें चलाई जा रही हैं। अक्टूबर का अभी आधा महीना ही गुजरा है और कश्मीर के कई इलाकों में पारा शून्य तक लुढ़क चुका है, जबकि श्रीनगर में भी तापमान 15 डिग्री तक गिरा है। लेकिन बदलते मौसम में भी यहाँ पहुँचे पर्यटकों में गजब का उत्साह है।
8: बहुत बहुत अमेजिंग, सबको आना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगी, इंडिया में, वर्ल्ड में सबको आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है।
4: अब आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। अशरफ वानी, मीर फरीद के साथ एजाज डार, श्रीनगर, आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पक्ष में जारी है राजनीतिक घमासान। ज्ञानेश के खिलाफ राहुल की मोर्चाबंदी जारी। पार्टी नेताओं के साथ इंदिरा भवन में बैठक। बीजेपी का आरोप, विदेशी हाथों में खेल रहे हैं राहुल। अंकिता के परिजनों से मुलाकात के बाद राहुल ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। दुष्यंत गौतम की नियुक्ति पर उठाए सवाल, कहा सरकार के निर्णय से स्तब्ध हूं। दिल्ली में प्रदर्शन के पहले दीपके का केंद्र पर हमला, कहा एक देश एक पार्टी इनका उद्देश्य। प्रशांत भूषण बोले सत्ता परिवर्तन के लिए हमारी लड़ाई। पंचायत आज तक राजस्थान में बोले मुख्यमंत्री भजन लाल, तेजी से विकास कर रही है डबल इंजन की सरकार। पेपर लीक को किया सील, ड्रग तस्करों पर कार्रवाई। प्रयागराज में योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा माफिया के सामने घुटने टेक मौन रहती थी समाजवादी सरकार, अब माफिया मुक्त हो गया यूपी। हमारे देश में चुनाव आयोग के खिलाफ शुरू हुआ राजनीतिक आंदोलन अब अदालतों में भी चल रहा है। आज तीन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर यह जवाब मांगा। पहला नोटिस राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं के अलावा तीन और अर्जियों पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को जारी हुआ। राहुल गांधी ने फिर से टी पार्टी करके कल अपनी आगे की रणनीति बनाई।
1: तेरह अक्टूबर के बाद राहुल गांधी की आज फिर से टी पार्टी हुई, फिर से चुनाव आयोग के खिलाफ जुटान हुआ और फिर से आगे की रणनीति पर बात हुई। चुनाव आयोग के खिलाफ छिड़ी सियासी लड़ाई जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो वहां जंग के चार तरह के मोर्चे नजर आए। पहला मामला चुनाव आयोग और SIR वाला था, दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक राहुल गांधी के मार्च का था, तीसरा मामला जंतर मंतर से प्रदर्शन स्थल हटाने का था, चौथा मामला महिला पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों से बदसलूकी का था, जिसमें से तीन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। पहला नोटिस राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं के अलावा तीन और अर्जियों पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग और दोनों चुनाव आयुक्तों को जारी हुआ और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि हम अगली सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं में से एक से उसके आचरण के बारे में पूछना चाहेंगे। नोटिस जारी करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी बात की निंदा कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं में से एक के संबंध में नोटिस को फिलहाल अस्थायी तौर पर स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते वो अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण दें। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन करने पहुंचे राहुल, खड़गे, अखिलेश, महुआ मोइत्रा समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं को नोटिस देकर जवाब मांगा है।
2: भारत की न्यायपालिका सबसे ज्यादा मजबूत, निष्पक्ष और जनता इस पे विश्वास करती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसको डराने का प्रयास, क्या हजारों समर्थकों की भीड़ लेकर सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में जाना, नारेबाजी करना, हुड़दंग करना, ये क्या था?
1: जंतर मंतर से प्रदर्शन स्थल हटाने के मामले में भी सरकार ने अदालत में बताया कि इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं। कमेटी ने पहले ही रिपोर्ट दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। आज तक ब्यूरो।
0: खबर CJP के प्लान 16 अक्टूबर यानी कि आज दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने के ऐलान की। अभिजीत दीपके के इस ऐलान के बाद NDMC ने 16 और 17 अक्टूबर यानी कि आज और कल सेंट्रल पार्क बंद करने का ऐलान कर दिया।
1: लेकिन CJP की कॉल के बाद कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से लेकर इर्द गिर्द सुरक्षा बढ़ा दी गई है, नए CCTV कैमरे लगाए गए हैं।
3: ये देखना होगा कि कल का जो कॉल है वो कांग्रेस जनता पार्टी कैसे ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करती है। हालांकि उन्होंने कहा है लोगों को इकट्ठा होने के लिए, लेकिन जैसा हमने पहले देखा है वैसी कुछ तस्वीरें कल को भी देखने को मिल सकती हैं कि आसपास इतनी भारी संख्या में सिक्योरिटी तैनात होगी कि कोई भी यहाँ इकट्ठा, किसी का भी यहाँ इकट्ठा होना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा।
1: दीपके के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत भूषण ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। जी हाँ, प्रशांत भूषण ने कहा कि सिविल सोसाइटी और युवाओं के नेतृत्व में लोकतंत्र को बचाने और सरकार बदलने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी।
4: स्टूडेंट्स को और यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को ये श्रेय देते हैं और उनकी अगुवाही में ये लड़ाई लड़ी जाएगी, वो हमारे लीडर होंगे और उनकी अगुवाही में सारी सिविल सोसाइटी मिलकर, पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सब ये लड़ाई लड़ेंगी हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए और रेजिम चेंज के लिए। ये मैं आज खुले तौर पर कह रहा हूँ, यहाँ ये रेजिम चेंज की लड़ाई है और हम लोग रेजिम चेंज करा कर रहे हैं।
1: प्रशांत भूषण सरकार बदलने की बात कर रहे हैं तो दिपके ने ज्ञानेश कुमार पर अटैक करते हुए 2024 में लोकसभा चुनावों पर भी सवाल उठा दिया है।
5: 2024 में इंडिया अलायंस और एनडीए का जो मार्जिन था विक्ट्री और डिफीट का, दैट वाज जस्ट 2%। पिछले दो सालों में 13 करोड़ से ज्यादा वोट डिलीट हुए।
1: तो अभिजीत दिपके बेंगलुरु के मंच का जिक्र करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त पर एक और सवाल उठाते हैं।
5: प्रकाश सर के साथ में बेंगलुरु गया था, वहां पर मेरे स्टेज पर बहुत ही एक मिरेकुलस चीज हुई, एक इट वाज, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा ये असलियत में कैसे हो सकता है। उस स्टेज पर मुझे ऐसे लोग मिले जो मरे हुए थे, राइट सर, मरे हुए लोग थे, मरे हुए लोग मेरे साथ खड़े हुए थे स्टेज पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, जिनको ज्ञानेश कुमार के इलेक्शन कमीशन ने डेट डिक्लेयर कर दिया था।
1: अब 16 अक्टूबर को क्या होगा, हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में सीजेपी के प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। मौसमी सिंह के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
0: जंतर मंतर को लेकर रण जारी है। आज सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने लोगों से अपील की कि तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में पहुंचे, वहीं दूसरी ओर नेहा बोरा के बयान पर हंगामा बरपा है।
6: विपक्ष के विरोध प्रदर्शन की पोस्टर गर्ल बन गई नेहा बोरा है। बारह अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के साथ आगे आगे दिख रही थी। 13 अक्टूबर को राहुल गांधी के यहाँ टी पार्टी में भी राहुल के साथ दिखी, लेकिन अब नेहा बोरा ने जो कहा है उसने सियासी तूफान ला दिया है।
7: And we know that the Gen Z movement that we are seeing everywhere in this country first started in Bangladesh. And congratulations to you for showing us the way, for showing us and extending solidarity to the young people of this country. We know that the movement that began in Bangladesh was for democratic and voter rights. Today, the movement that the young people are participating in and leading is also a movement for democratic and voting rights. We know that the fight that you fight against religious fundamentalism in your country is also a fight that the Gen Z and the young people of this country fight today.
6: तो नेहा बोरा बता रही हैं कि 2024 में बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार गिराने के लिए हुए प्रदर्शनों से भारत के युवाओं को प्रेरणा मिली है और वो सरकार के खिलाफ तन कर खड़े हुए हैं। अब नेहा बोरा के बयान पर बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है।
8: बांग्लादेश में हुआ क्या था, एक ग्रुप ऑफ इस्लामिस्ट ने भीड़ के सहारे, अराजकता के सहारे पूरे के पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने का प्रयास किया। उनका मकसद रेजिम चेंज था। मतलब आज ये साबित हो चुका है कि राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम भारत में लोकतंत्र को तहस नहस करने की एक साजिश रच रहे हैं।
6: अकेले नेहा बोरा ही नहीं, राहुल गांधी के साथ प्रदर्शन में शामिल प्रशांत भूषण भी ऐसा बयान दे रहे हैं जो सियासी आप को और हवा दे रहा है। भूषण ने कहा कि ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन की है। इधर अभिजीत दिपके बार बार अपील कर रहे हैं कि कल शाम 5 बजे वो कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा रैली करेंगे, इसमें लोग शामिल हों।
9: जैसे कि आप लोगों को पता है, सौरभ और आशु को बस तिरंगा लहराने के लिए जेल में डाला गया है। तो मैं सभी देशभक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग तिरंगे से प्यार करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 16 अक्टूबर को शाम को 5 बजे आप सब सेंट्रल पार्क कैनॉट प्लेस में आइए तिरंगे के साथ। वहां पर हम अपना तिरंगा लहराएंगे और हम बता देंगे कि वेविंग अ तिरंगा इज नॉट अ क्राइम।
6: एनएसयूआई पहले ही आरोप लगा चुकी है कि प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें पीटा। अब दिल्ली पुलिस ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों पर हमला करने का केस दर्ज किया है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन एनएसयूआई बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार की जंग जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी का चुनाव सीएम योगी की हैट्रिक या फिर अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी का चुनाव है। दोनों ही नेताओं ने चुनावी दंगल में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। दोनों ही नेताओं ने चैलेंज पॉलिटिक्स को लेकर जुबानी युद्ध शुरू कर दिया।

0: योगी और अखिलेश की जुबानी टक्कर।
1: उन्होंने यही फैसला लेना चाहिए, उनके बीच में अगला चुनाव लड़ना चाहिए।
0: वार और परखवार, सियासत है धुआंधार।
2: पीडीए पीडीए चिल्लाते थे ये राज्यसभा के टिकट में, वो पीडीए कहाँ चला गया था।
0: 403 सीटों की लड़ाई, चुनावी पारा है हाई। 2027 का चुनाव, हर दिन नए नए दाम।
3: और जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं।
4: आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं। लड़ाई चेलों से क्यों, लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए।
0: विधानसभा चुनाव से पहले 10 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव को योगी और अखिलेश की अग्नि परीक्षा से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन चुनावी लड़ाई में 3 के बजाय 2 उम्मीदवार उतारकर अखिलेश पहले राउंड में पिछड़ गए। दूसरे राउंड में अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया, ऐलान किया कि सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं। योगी ने नहले पर दहला चला, चुनौती स्वीकार कर ऐलान किया कि अयोध्या में सीधा मुकाबला उनके और अखिलेश यादव के बीच होना चाहिए और वो तैयार हैं। वहाँ भी अखिलेश यादव का सियासी दांव उल्टा पड़ा, लिहाजा अखिलेश को डैमेज कंट्रोल का गियर लगाना पड़ा। ऐसे में 2027 की लड़ाई को लेकर सियासी पारा हाई है। सवाल यही है कि 2027 में योगी के सिर फिर सजेगा ताज या फिर 10 साल के बाद अखिलेश की सत्ता में वापसी होगी।
3: लेकिन जन आक्रोश के सामने भारतीय जनता पार्टी नहीं चलेगी। बाई इलेक्शन में तो 420 ही चल सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 403 में 420 ही नहीं चलने देंगे। पीडी के लोग डट करके मुकाबला करने काम करेंगे और भाजपा ही हारेंगे भी और भागेंगे भी इस बार।
5: उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के चुनाव ने बता दिया है कि विधानसभा का चुनाव परिणाम क्या होने जा रहा है। ये लड़ाई 80-20 की फिर आ गई है, 80% एनडीए में और 20% पीडीए में, और पीडीए का क्या हाल होने वाला है ये आपके सामने फिर आने वाला है।
0: बीते दिन समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए, तो 24 घंटों के अंदर समाजवादी पार्टी के कुनबे में कई नेताओं को शामिल किया गया, जिसमें कई बीजेपी छोड़कर साइकिल पर सवार हुए हैं। मतलब सिर्फ जुबानी जंग नहीं बल्कि हर मोर्चे पर सीधी टक्कर जारी है।
3: वो हारने जा रहे हैं, वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए प्रहरी पीडीए समाज जुड़ गया है, ये लोग पीड़ा दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, और वहीं प्रेम दया का अपनापन का समाजवादी पार्टी लोगों को जोड़ने का काम कर रही है।
4: अगर इनका वास्तविक चेहरा देखना हो तो अभी राज्यसभा में आपने देखा होगा, पीडीए पीडीए पीडीए चिल्ला रहे थे, पूछो तो राज्यसभा में इनको प्रत्याशी बनाने थे तो एक अपने चचा जान को बना दिए और दूसरा मुंबई के धन्ना सेठ को बना दिए। एक भी दलित नहीं, एक भी वंचित नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, एक भी फॉरवर्ड नहीं, कोई मतलब नहीं। अरे चलो इन पे विश्वास नहीं था तो कम से कम मुसलमानों को ही बना देते प्रत्याशी, लेकिन नहीं बनाया उनको भी।
0: अखिलेश ने पीडीए के फॉर्मूले से 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को पछाड़ा था। इसी चुनावी मंत्र पर अखिलेश 2027 में जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो वहीं अखिलेश के पीडीए पर तंज करते हुए सीएम योगी ने इसे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करार दिया। चाहे अखिलेश हो या फिर योगी, दोनों अपनी अपनी जीत की भविष्यवाणी करने में पीछे नहीं है।
3: इधर देखने को मिल रहा है कि जब जनता में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, भारतीय जनता पार्टी जब जनता के बीच में कमजोर होती दिख रही है उस समय वो इलेक्शन कमीशन के पीछे छिप जा रही है और इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के इस भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को और भारत के नागरिकों को धोखा दे रहे हैं।
5: आश्चर्य है कि ये चुनाव जीते तो इनका पुरुषार्थ और हारे तो ईवीएम दोषी। इलेक्शन कमीशन दोषी।
0: हर दिन यूपी के सियासी दंगल में योगी और अखिलेश के बीच वार पलटवार का खेल जारी है। अखिलेश राम मंदिर में दान की चोरी को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरते हैं तो योगी राम भक्तों को अखिलेश से सावधान रहने की सलाह देते हुए नजर आते हैं।
3: देखिए धर्म अधर्म, अधर्मी कौन है वो हारेगा, झूठ बोलने वाले हारेंगे, जनता को दुख देने वाले हारेंगे और जिन्होंने करोड़ों श्रद्धालुओं का चढ़ावा रामधन की चोरी की वो हारेंगे, भगवान स्वयं हरवाएंगे उन्हें।
4: रामद्रोही इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? याद करिए, ये रामद्रोही इसको स्वीकार कर ही नहीं सकते और इसलिए वे कुछ न कुछ युक्ति जरूर निकाल करके अयोध्या को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ते।
0: योगी ने राम मंदिर के नाम पर धर्म याद दिलाया तो अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी का धर्म। वहीं योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताते हैं, लेकिन अखिलेश यूपी की कानून व्यवस्था पर उठे सवालों से पलटवार करते हैं।
5: क्या माफिया जिस जमीन पे पैर रख लिया वह तीख की हो गई, अशरफ की हो गई, और अब जिस जमीन पर सरकार ने कहा कि ये माफिया की नहीं, ये गरीब के लिए आसियाना बनना है, तो माफिया की सिट्टी पिट्टी गम वहां पे बहुमंजिला आवासीय सुविधा उपलब्ध करवा करके हम गरीब के लिए मकानों की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं।
3: यूपी सरकार कस्टोडियल डेथ में नंबर वन है। ह्यूमन राइट्स कमीशन से सबसे ज्यादा यूपी सरकार को नोटिसेस मिले हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कई ऑब्जर्वेशंस में कहा कि यहां की पुलिस पॉलिटिकल काम कर रही है, यहां की पुलिस प्रशासन न्याय नहीं दे रहा है, और यहां तक कहा कि पुलिस को क्या खत्म कर दिया जाए। सोचिए, पुलिस को भंग कर दिया जाए, विभाग ही खत्म किया जाए क्या?
0: मतलब साफ है कि यूपी चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे कानून व्यवस्था, अयोध्या, वोट चोरी और तुष्टीकरण के मुद्दों पर जुबानी तकरार और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। देखना यही है कि यूपी के वोटरों पर ये मुद्दे कितना असर डालते हैं। दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे हैं, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा।
6: और अब खबर अंकिता भंडारी मर्डर केस की, जिसे लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाए जाने का परिवार विरोध कर रहा है तो कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई है।
7: इंडिया गेट देर रात एक बार फिर हंगामे का गवाह बना, जहां अंकिता भंडारी के माता पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अंकिता भंडारी का परिवार दुष्यंत कुमार का सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने के विरोध में इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने पहुंचा था। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत कांग्रेस के कई नेता माता पिता से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन देर रात इंडिया गेट पर प्रशासन परिवार को हटाने पहुंचा, जहां माता पिता के अलावा कई कांग्रेसी नेता हिरासत में लिए गए। प्रशासन के एक्शन पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, सुबह के 4 बजे जब दुनिया सो रही थी तब अंकिता भंडारी के माता पिता को हिरासत में ले लिया गया। जिस जांच का नतीजा आया नहीं उसके पहले ही नियुक्ति की जल्दी और सवाल पूछने वाले माँ बाप को रात के अंधेरे में उठा लिया गया। इस सरकार की पहचान यही है, पीड़ितों की आवाज दबा दो, सवाल करने वालों को हटा दो। उधर अंकिता भंडारी को लेकर हंगामे की एक तस्वीर देहरादून में भी नजर आई।
8: कांग्रेस कार्यकर्ता अचानक राज्यपाल निवास पर पहुंच गए हैं। ये राज्यपाल आवास है, राजभवन है, जिसे लोक भवन भी कहा जाता है। और देखिए किस तरह से गेट को खोलने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता इस गेट को भेद कर राज्यपाल से मिलने जाना चाहते हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। हरक सिंह को देखिए पुलिस डिटेन कर रही है यहाँ पर, और पुलिस डिटेन करने की कोशिश कर रही है। और गणेश गोदयाल यहाँ गिर गए हैं। देखा जा सकता है कि किस तरह से कांग्रेस पूरे आक्रामक तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की जारी है।
9: राज्यपाल को क्या बोलते निकले दुष्यंत गौतम के इस्तीफे की मांग, अजय गोटाने की मांग को लेकर हम ज्ञापन देने के लिए आए थे। चार दिन से राज्यपाल उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के सम्मान का सवाल है, उत्तराखंड की बेटियों का सम्मान है।
7: बीजेपी कांग्रेस पर मामले में सियासत करने का आरोप लगा रही है।
10: जब पुलिस के किसी पेपर में कहीं नाम नहीं है, केवल ऑपोजिशन इस नाम को उठा रही है।
11: उनके पेरेंट्स ने कहा सीबीआई जांच कराओ, तो सीबीआई जांच हो गई। तो आखिरकार भाई वो जांच में, जांच को होने देना, जांच में क्या आया है उसको जाने बगैर सारी बातें कह देना, पूरी तरीके से जो है वो पॉलिटिकल खेल रहे हैं। और राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, किसी की छवि बेवजह जो है धूमिल की जा रही है।
7: अंकिता भंडारी की मौत में बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम के शामिल होने को लेकर विपक्ष और परिवार की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सीबीआई की जांच पूरी होने से पहले ही दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का गवर्नर बना दिया गया, जिसके विरोध में अंकिता का परिवार दिल्ली पहुंचा।
12: किस बेस पे उन्होंने उस आदमी को राज्यपाल बनाया?
13: जो आशाएं लगी थी वो कुछ नहीं हुई, और साथ ही साथ और कोशिश करेंगे।
12: मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक उनकी सीबीआई जांच नहीं हो जाती, उनको राज्यपाल घोषित न किया जाए।
7: उत्तराखंड में चुनाव से पहले दुष्यंत कुमार गौतम के राज्यपाल बनने के बाद एक बार फिर अंकिता भंडारी का मुद्दा अब बढ़ता नजर आ रहा है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
6: शिवा शर्मा मामले में जांच का दायरा बढ़ रहा है। इसमें खुलासा हुआ कि आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे नेपाल भाग चुकी है, उसके साथ उसकी बहन और अन्य आरोपी भी फरार हैं। सभी का पुलिस इनकी तलाश कर रही है, लेकिन एक वीडियो भी आया जिसमें अपने आप को श्रद्धा बेगुनाह बताती है।
14: वही तस्वीर है जो श्रद्धा दुबे के नेपाल भाग जाने का पुख्ता प्रमाण है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर नेपाल के माहिम नगर की है। श्रद्धा अपनी बहन रश्मि दुबे और दोस्त आदिल रोड क्रॉस कर बस स्टेशन के भीतर जाते दिखे हैं। पुलिस सूत्रों का मानना है कि श्रद्धा का नेटवर्क काफी मजबूत है और उसे पुलिस की हर मूवमेंट की इनसाइड जानकारी समय से पहले मिल रही है। पुलिस से भाग रही श्रद्धा दुबे अब कह रही है कि वो पुलिस की जांच में सहयोग करना चाह रही है।
15: मैं कहीं गायब नहीं हूँ, मैं पुलिस में आके बयान देना चाहती हूँ, मैं उन्हें सब कुछ सच सच जो कुछ भी है मैं उन्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ।
14: एक तरफ श्रद्धा दुबे वीडियो जारी कर पुलिस के सामने आने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ उसकी एसयूवी मिलने की खबर ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा के पास पार्किंग में श्रद्धा की एसयूवी कार मिली है। जानकारी के मुताबिक यूपी 32 QQ0111 ये गाड़ी 10 अक्टूबर से पार्किंग में खड़ी थी। श्रद्धा गाड़ी पार्क करने के बाद नेपाल जाने की बात कहकर वहां से निकली थी, और अब नेपाल से आई ये तस्वीर काफी कुछ बयान कर रही है। कारोबारी शिवा शर्मा की मौत से उठे सवालों को लेकर पहली बार मॉडल श्रद्धा दुबे का वीडियो सामने आया है। शिवा शर्मा की मौत के बाद उठे सवालों पर सुनिए श्रद्धा दुबे का ये बयान।
15: वो हत्या नहीं थी, वो एक सुसाइड था, ठीक है। मैंने अपनी आंखों से देखा उसको कूदते हुए, ठीक। अगर वहां के सीसीटीवी कैमरेज निकलेंगे, सब कुछ निकलेगा, तो उसमें दिखेगा कि वो किस तरह से कूद रहा है।
14: शिवा की मां ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें मुख्य आरोपी श्रद्धा है, साथ में श्रद्धा की बहन रश्मि दुबे भी आरोपी बनाई गई है। नेपाल से आई तस्वीर में रश्मि भी साथ दिखी है। शिवा की मां ने आरोप लगाए हैं कि श्रद्धा उनके बेटे को लगातार धमकाती थी और टॉर्चर करती थी,
16: डेली बांध के और थ्रेटन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करती थी, जिसके बाइट्स अक्सर उनके बॉडी पे होते थे। निशान पूछने पे वो ये कहते थे कि चोट लग गई है, गिर गया हूँ।
14: लखनऊ पुलिस ने मामले में जांच तेज कर दी है ताकि करोड़पति कारोबारी की मौत की असल वजह साफ हो सके। बहराइच से रामवरण चौधरी और लखनऊ से अंकित मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव आज तक।
6: कश्मीर में मौसम लगातार बदल रहा है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी से सफेद परत दिखाई देने लगी। ऊंचे पहाड़ों, खुले मैदानों पर गिरी बर्फ से इलाका पूरी तरह से ढक गया। बर्फबारी के साथ ही घाटी में सर्द मौसम की शुरुआत का एहसास होने लगा।
17: ये तस्वीरें हैं उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा स्थित गुरेज की तुलैल घाटी की है, जहाँ सीजन की पहली बर्फबारी ने दस्तक दी है। बर्फबारी के बाद घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ तुलैल के मैदानी हिस्सों में बर्फ की सफेद परत दिखाई देने लगी है। बर्फबारी के साथ ही यहां मौसम का मिजाज बदल गया है और खूबसूरत वादियों ने सर्दियों की आहट का एहसास कराना शुरू कर दिया है।
18: हर जगह पर जबरदस्त बर्फबारी रात के बीच हुई है, जिससे तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। अगर श्रीनगर की बात की जाए तो दिन का अधिकतम तापमान 15 डिग्री रहने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटों के दौरान कश्मीर में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा।
17: भारी बर्फबारी का असर सड़क के रास्ते पर भी पड़ा है। पुंछ और राजौरी को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाले मुगल रोड पर पीर की गली के पास बर्फ जमा होने से आवाजाही बंद हो गई है। सड़क से बर्फ हटाने और रास्ते को साफ करने के लिए मशीनें चलाई जा रही हैं। अक्टूबर का अभी आधा महीना ही गुजरा है और कश्मीर के कई इलाकों में पारा शून्य तक लुढ़क चुका है, जबकि श्रीनगर में भी तापमान 15 डिग्री तक गिरा है। लेकिन बदलते मौसम में भी यहां पहुंचे पर्यटकों में गजब का उत्साह है।
19: बहुत अमेजिंग, सबको आना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगी, इंडिया में, वर्ल्ड में सबको आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है।
17: अब आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। अशरफ वानी, मीर फरीद के साथ एजाज डार, श्रीनगर, आज तक।
6: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: आ गया सोमवार और आ गए
1: चकमक चाचा।
0: हाँ चाचा, अखबार बांच रहे हैं।
2: टेस्ट
0: चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चिचा कब जाएंगे?
2: अरे भैया उदस में हिस्सा ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा, हम अपना मुद्दा उठा चुके हैं।
0: अच्छा, कब उठाए?
2: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए।
0: अच्छा
2: हाँ, तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग तरह इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे, दन दन दन दन कर गया, ऐसा ये सब नहीं था अपना मामला
3: जी,
2: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
0: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है,
2: टूटा भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे प्रवाही चलती थी दर्द होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर मुद्दा रखे थे हाँ, एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
0: अच्छा
2: और क्या,
0: आपका मतलब हम लोग डर जाते हैं?
2: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल, जहाँ पुलिस सिटी में भेजे उसमें भागने लगता।
0: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही
2: किधर?
0: चाचा हम खेल गए अब की।

0: विपक्ष में जारी है राजनीतिक घमासान। ज्ञानेश के खिलाफ राहुल की मोर्चाबंदी जारी। पार्टी नेताओं के साथ इंदिरा भवन में बैठक। बीजेपी का आरोप, विदेशी हाथों में खेल रहे हैं राहुल। अंकिता के परिजनों से मुलाकात के बाद राहुल ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। दुष्यंत गौतम की नियुक्ति पर उठाए सवाल, कहा सरकार के निर्णय से स्तब्ध हूं। दिल्ली में प्रदर्शन के पहले दीपके का केंद्र पर हमला, कहा एक देश एक पार्टी इनका उद्देश्य। प्रशांत भूषण बोले सत्ता परिवर्तन के लिए हमारी लड़ाई। पंचायत आज तक राजस्थान में बोले मुख्यमंत्री भजन लाल, तेजी से विकास कर रही है डबल इंजन की सरकार। पेपर लीक को किया सील, ड्रग तस्करों पर कार्रवाई। प्रयागराज में योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा माफिया के सामने घुटने टेक मौन रहती थी समाजवादी सरकार, अब माफिया मुक्त हो गया यूपी। हमारे देश में चुनाव आयोग के खिलाफ शुरू हुआ राजनीतिक आंदोलन अब अदालतों में भी चल रहा है। आज तीन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर यह जवाब मांगा। पहला नोटिस राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं के अलावा तीन और अर्जियों पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को जारी हुआ। राहुल गांधी ने फिर से टी पार्टी करके कल अपनी आगे की रणनीति बनाई।
1: तेरह अक्टूबर के बाद राहुल गांधी की आज फिर से टी पार्टी हुई, फिर से चुनाव आयोग के खिलाफ जुटान हुआ और फिर से आगे की रणनीति पर बात हुई। चुनाव आयोग के खिलाफ छिड़ी सियासी लड़ाई जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो वहां जंग के चार तरह के मोर्चे नजर आए। पहला मामला चुनाव आयोग और SIR वाला था, दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक राहुल गांधी के मार्च का था, तीसरा मामला जंतर मंतर से प्रदर्शन स्थल हटाने का था, चौथा मामला महिला पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों से बदसलूकी का था, जिसमें से तीन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। पहला नोटिस राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं के अलावा तीन और अर्जियों पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग और दोनों चुनाव आयुक्तों को जारी हुआ और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि हम अगली सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं में से एक से उसके आचरण के बारे में पूछना चाहेंगे। नोटिस जारी करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी बात की निंदा कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं में से एक के संबंध में नोटिस को फिलहाल अस्थायी तौर पर स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते वो अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण दें। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन करने पहुंचे राहुल, खड़गे, अखिलेश, महुआ मोइत्रा समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं को नोटिस देकर जवाब मांगा है।
2: भारत की न्यायपालिका सबसे ज्यादा मजबूत, निष्पक्ष और जनता इस पे विश्वास करती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसको डराने का प्रयास, क्या हजारों समर्थकों की भीड़ लेकर सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में जाना, नारेबाजी करना, हुड़दंग करना, ये क्या था?
1: जंतर मंतर से प्रदर्शन स्थल हटाने के मामले में भी सरकार ने अदालत में बताया कि इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं। कमेटी ने पहले ही रिपोर्ट दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। आज तक ब्यूरो
0: खबर। CJP के प्लान 16 अक्टूबर यानी कि आज दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने के ऐलान की। अभिजीत दीपके के इस ऐलान के बाद NDMC ने 16 और 17 अक्टूबर यानी कि आज और कल सेंट्रल पार्क बंद करने का ऐलान कर दिया।
1: लेकिन CJP की कॉल के बाद कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से लेकर इर्द गिर्द सुरक्षा बढ़ा दी गई है, नए CCTV कैमरे लगाए गए हैं।
3: ये देखना होगा कि कल का जो कॉल है वो कांग्रेस जनता पार्टी कैसे ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करती है। हालांकि उन्होंने कहा है लोगों को इकट्ठा होने के लिए, लेकिन जैसा हमने पहले देखा है वैसी कुछ तस्वीरें कल को भी देखने को मिल सकती हैं कि आसपास इतनी भारी संख्या में सिक्योरिटी तैनात होगी कि कोई भी यहाँ इकट्ठा, किसी का भी यहाँ इकट्ठा होना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा।
1: दीपके के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत भूषण ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। जी हाँ, प्रशांत भूषण ने कहा कि सिविल सोसाइटी और युवाओं के नेतृत्व में लोकतंत्र को बचाने और सरकार बदलने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी।
4: स्टूडेंट्स को और यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को ये श्रेय देते हैं और उनकी अगुवाही में ये लड़ाई लड़ी जाएगी। वो हमारे लीडर होंगे और उनकी अगुवाही में सारी सिविल सोसाइटी मिलकर, पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सब ये लड़ाई लड़ेंगी हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए और रेजिम चेंज के लिए। ये मैं आज खुले तौर पर कह रहा हूँ, यहाँ ये रेजिम चेंज की लड़ाई है और हम लोग रेजिम चेंज करा कर रहे हैं।
1: प्रशांत भूषण सरकार बदलने की बात कर रहे हैं तो दिपके ने ज्ञानेश कुमार पर अटैक करते हुए 2024 में लोकसभा चुनावों पर भी सवाल उठा दिया है।
5: 2024 में इंडिया अलायंस और एनडीए का जो मार्जिन था विक्ट्री और डिफीट का, दैट वाज जस्ट 2%। पिछले दो सालों में 13 करोड़ से ज्यादा वोट डिलीट हुए।
1: तो अभिजीत दिपके बेंगलुरु के मंच का जिक्र करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त पर एक और सवाल उठाते हैं।
5: प्रकाश सर के साथ में बेंगलुरु गया था, वहां पर मेरे स्टेज पर बहुत ही एक मिराकुलस चीज हुई, एक इट वाज, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा ये असलियत में कैसे हो सकता है। उस स्टेज पर मुझे ऐसे लोग मिले जो मरे हुए थे, राइट सर, मरे हुए लोग थे, मरे हुए लोग मेरे साथ खड़े हुए थे स्टेज पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, जिनको ज्ञानेश कुमार के इलेक्शन कमीशन ने डेट डिक्लेयर कर दिया था।
1: अब 16 अक्टूबर को क्या होगा, हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में सीजेपी के प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। मौसमी सिंह के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
0: जंतर मंतर को लेकर रण जारी है। आज सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने लोगों से अपील की कि तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में पहुंचे। वहीं दूसरी ओर नेहा बोरा के बयान पर हंगामा बरपा है।
6: विपक्ष के विरोध प्रदर्शन की पोस्टर गर्ल बन गई नेहा बोरा है। बारह अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के साथ आगे आगे दिख रही थी। 13 अक्टूबर को राहुल गांधी के यहाँ टी पार्टी में भी राहुल के साथ दिखी, लेकिन अब नेहा बोरा ने जो कहा है उसने सियासी तूफान ला दिया है।
7: And we know that the Gen Z movement that we are seeing everywhere in this country first started in Bangladesh. And congratulations to you for showing us the way, for showing us and extending solidarity to the young people of this country. We know that the movement that began in Bangladesh was for democratic and voter rights. Today, the movement that the young people are participating in and leading is also a movement for democratic and voting rights. We know that the fight that you fight against religious fundamentalism in your country is also a fight that the Gen Z and the young people of this country fight today.
6: तो नेहा बोरा बता रही हैं कि 2024 में बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार गिराने के लिए हुए प्रदर्शनों से भारत के युवाओं को प्रेरणा मिली है और वो सरकार के खिलाफ तन कर खड़े हुए हैं। अब नेहा बोरा के बयान पर बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है।
8: बांग्लादेश में हुआ क्या था, एक ग्रुप ऑफ इस्लामिस्ट ने भीड़ के सहारे, अराजकता के सहारे पूरे के पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने का प्रयास किया। उनका मकसद रेजिम चेंज था। मतलब आज ये साबित हो चुका है कि राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम भारत में लोकतंत्र को तहस नहस करने की एक साजिश रच रहे हैं।
6: अकेले नेहा बोरा ही नहीं, राहुल गांधी के साथ प्रदर्शन में शामिल प्रशांत भूषण भी ऐसा बयान दे रहे हैं जो सियासी आप को और हवा दे रहा है। भूषण ने कहा कि ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन की है। इधर अभिजीत दिपके बार बार अपील कर रहे हैं कि कल शाम 5 बजे वो कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा रैली करेंगे, इसमें लोग शामिल हों।
9: जैसे कि आप लोगों को पता है, सौरभ और आशु को बस तिरंगा लहराने के लिए जेल में डाला गया है। तो मैं सभी देशभक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग तिरंगे से प्यार करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 16 अक्टूबर को शाम को 5 बजे आप सब सेंट्रल पार्क कैनॉट प्लेस में आइए तिरंगे के साथ। वहां पर हम अपना तिरंगा लहराएंगे और हम बता देंगे कि वेविंग अ तिरंगा इज नॉट अ क्राइम।
6: सीबीआई पहले ही आरोप लगा चुकी है कि प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें पीटा। अब दिल्ली पुलिस ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों पर हमला करने का केस दर्ज किया है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन एनएसयूआई बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार की जंग जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी का चुनाव सीएम योगी की हैट्रिक या फिर अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी का चुनाव है। दोनों ही नेताओं ने चुनावी दंगल में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। दोनों ही नेताओं ने चैलेंज पॉलिटिक्स को लेकर जुबानी युद्ध शुरू कर दिया।

0: योगी और अखिलेश की जुबानी टक्कर।
1: उन्होंने यही फैसला लेना चाहिए, उनके बीच में अगला चुनाव लड़ना चाहिए।
0: वार और पलटवार, सियासत है धुआंधार।
2: पीडीए पीडीए चिल्लाते थे ये राज्यसभा के टिकट में, वो पीडीए कहाँ चला गया था।
0: 403 सीटों की लड़ाई, चुनावी पारा है हाई। 2027 का चुनाव, हर दिन नए नए दाम।
3: और जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं।
4: आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से, चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं। लड़ाई चेलों से क्यों, लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए।
0: विधानसभा चुनाव से पहले 10 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव को योगी और अखिलेश की अगली परीक्षा से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन चुनावी लड़ाई में 3 के बजाय 2 उम्मीदवार उतारकर अखिलेश पहले राउंड में पिछड़ गए। दूसरे राउंड में अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया, ऐलान किया कि सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं। योगी ने नहले पर दहला चला, चुनौती स्वीकार कर ऐलान किया कि अयोध्या में सीधा मुकाबला उनके और अखिलेश यादव के बीच होना चाहिए और वो तैयार हैं। वहां भी अखिलेश यादव का सियासी दांव उल्टा पड़ा, लिहाजा अखिलेश को डैमेज कंट्रोल का गियर लगाना पड़ा। ऐसे में 2027 की लड़ाई को लेकर सियासी पारा हाई है। सवाल यही है कि 2027 में योगी के सिर फिर सजेगा ताज या फिर 10 साल के बाद अखिलेश की सत्ता में वापसी होगी।
3: लेकिन जन आक्रोश के सामने भारतीय जनता पार्टी नहीं चलेगी। बाई इलेक्शन में तो 420 ही चल सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 403 में 420 ही नहीं चलने देंगे। पीडी के लोग डट करके मुकाबला करने काम करेंगे और भाजपाई हारेंगे भी और भागेंगे भी इस बार।
5: उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के चुनाव ने बता दिया है कि विधानसभा का चुनाव परिणाम क्या होने जा रहा है। ये लड़ाई 80-20 की फिर आ गई है, 80% एनडीए में और 20% पीडीए में, और पीडीए का क्या हाल होने वाला है ये आपके सामने फिर आने वाला है।
0: बीते दिन समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए, तो 24 घंटों के अंदर समाजवादी पार्टी के कुनबे में कई नेताओं को शामिल किया गया, जिसमें कई बीजेपी छोड़कर साइकिल पर सवार हुए हैं। मतलब सिर्फ जुबानी जंग नहीं बल्कि हर मोर्चे पर सीधी टक्कर जारी है।
3: वो हारने जा रहे हैं, वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए प्रहरी पीडीए समाज जुड़ गया है, ये लोग पीड़ा दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, और वहीं प्रेम दया का अपनापन का समाजवादी पार्टी लोगों को जोड़ने का काम कर रही है।
4: अगर इनका वास्तविक चेहरा देखना हो तो अभी राज्यसभा में आपने देखा होगा, ये पीडीए पीडीए पीडीए चिल्ला रहे थे, पूछो तो राज्यसभा में इनको प्रत्याशी बनाने थे तो एक अपने चचा जान को बना दिए और दूसरा मुंबई के धन्ना सेठ को बना दिए। एक भी दलित नहीं, एक भी वंचित नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, एक भी फॉरवर्ड नहीं, कोई मतलब नहीं। अरे चलो इन पे विश्वास नहीं था तो कम से कम मुसलमानों को ही बना देते प्रत्याशी, लेकिन नहीं बनाया उनको भी।
0: अखिलेश ने पीडीए के फॉर्मूले से 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को पछाड़ा था। इसी चुनावी मंत्र पर अखिलेश 2027 में जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो वहीं अखिलेश के पीडीए पर तंज करते हुए सीएम योगी ने इसे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करार दिया। चाहे अखिलेश हो या फिर योगी, दोनों अपनी अपनी जीत की भविष्यवाणी करने में पीछे नहीं है।
3: इधर देखने को मिल रहा है कि जब जनता में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, भारतीय जनता पार्टी जब जनता के बीच में कमजोर होती दिख रही है उस समय वो इलेक्शन कमीशन के पीछे छिप जा रही है और इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के इस भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को और भारत के नागरिकों को धोखा दे रहे हैं।
5: आश्चर्य है कि ये चुनाव जीते तो इनका पुरुषार्थ और हारे तो ईवीएम दोषी। इलेक्शन कमीशन दोषी।
0: हर दिन यूपी के सियासी दंगल में योगी और अखिलेश के बीच वार पलटवार का खेल जारी है। अखिलेश राम मंदिर में दान की चोरी को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरते हैं तो योगी राम भक्तों को अखिलेश से सावधान रहने की सलाह देते हुए नजर आते हैं।
3: देखिए धर्म अधर्म, अधर्मी कौन है वो हारेगा, झूठ बोलने वाले हारेंगे, जनता को दुख देने वाले हारेंगे और जिन्होंने करोड़ों श्रद्धालुओं का चढ़ावा रामधन की चोरी की वो हारेंगे, भगवान स्वयं हरवाएंगे उन्हें।
4: रामद्रोही इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? याद करिए, ये रामद्रोही इसको स्वीकार कर ही नहीं सकते और इसलिए वे कुछ न कुछ युक्ति जरूर निकाल करके अयोध्या को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ते।
0: योगी ने राम मंदिर के नाम पर धर्म याद दिलाया तो अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी का धर्म। वहीं योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताते हैं, लेकिन अखिलेश यूपी की कानून व्यवस्था पर उठे सवालों से पलटवार करते हैं।
5: क्या माफिया जिस जमीन पे पैर रख लिया वह तीख की हो गई, अशरफ की हो गई, और अब जिस जमीन पर सरकार ने कहा कि ये माफिया की नहीं, ये गरीब के लिए आसियाना बनना है, तो माफिया की सिट्टी पिट्टी गम वहां पे बहुमंजिला आवासीय सुविधा उपलब्ध करवा करके हम गरीब की

0: यूपी सरकार को नोटिसेस मिले हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कई ऑब्जर्वेशंस में कहा कि यहां की पुलिस पॉलिटिकल काम कर रही है, यहां की पुलिस प्रशासन न्याय नहीं दे रहा है, और यहां तक कहा कि पुलिस को क्या खत्म कर दिया जाए। सोचिए, पुलिस को भंग कर दिया जाए, विभाग ही खत्म किया जाए क्या?
1: मतलब साफ है कि यूपी चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे कानून व्यवस्था, अयोध्या, वोट चोरी और तुष्टीकरण के मुद्दों पर जुबानी तकरार और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। देखना यही है कि यूपी के वोटरों पर ये मुद्दे कितना असर डालते हैं। दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे हैं, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा।
2: और अब खबर अंकिता भंडारी मर्डर केस की, जिसे लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाए जाने का परिवार विरोध कर रहा है, तो कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई है।
3: इंडिया गेट देर रात एक बार फिर हंगामे का गवाह बना, जहां अंकिता भंडारी के माता पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अंकिता भंडारी का परिवार दुष्यंत कुमार का सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने के विरोध में इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने पहुंचा था। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत कांग्रेस के कई नेता माता पिता से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन देर रात इंडिया गेट पर प्रशासन परिवार को हटाने पहुंचा, जहां माता पिता के अलावा कई कांग्रेसी नेता हिरासत में लिए गए। प्रशासन के एक्शन पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, सुबह के 4 बजे जब दुनिया सो रही थी तब अंकिता भंडारी के माता पिता को हिरासत में ले लिया गया। जिस जांच का नतीजा आया नहीं, उसके पहले ही नियुक्ति की जल्दी और सवाल पूछने वाले माँ बाप को रात के अंधेरे में उठा लिया गया। इस सरकार की पहचान यही है, पीड़ितों की आवाज दबा दो, सवाल करने वालों को हटा दो। उधर अंकिता भंडारी को लेकर हंगामे की एक तस्वीर देहरादून में भी नजर आई।
4: कांग्रेस कार्यकर्ता अचानक राज्यपाल निवास पर पहुंच गए हैं। ये राज्यपाल आवास है, राजभवन है, जिसे लोक भवन भी कहा जाता है। और देखिए किस तरह से गेट को खोलने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता इस गेट को भेद कर राज्यपाल से मिलने जाना चाहते हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। हरक सिंह को देखिए पुलिस डिटेन कर रही है यहाँ पर, और पुलिस डिटेन करने की कोशिश कर रही है, और गणेश गोदयाल यहाँ गिर गए हैं। देखा जा सकता है कि किस तरह से कांग्रेस पूरे आक्रामक तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की जारी है।
5: राज्यपाल को क्या मांग देने के लिए कि दुष्यंत गौतम के इस्तीफे की मांग, अजय गोटानी की मांग को लेकर हम ज्ञापन देने के लिए आए थे। चार दिन से राज्यपाल उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के सम्मान का सवाल है, उत्तराखंड की बेटियों का सम्मान है।
3: बीजेपी कांग्रेस पर मामले में सियासत करने का आरोप लगा रही है।
6: जब पुलिस के किसी पेपर में कहीं नाम नहीं है, केवल ऑपोजिशन इस नाम को उठा रही है।
7: उनके पेरेंट्स ने कहा सीबीआई जांच कराओ, तो सीबीआई जांच हो गई। तो आखिरकार भाई वो जांच में, जांच को होने देना, जांच में क्या आया है उसको जाने बगैर सारी बातें कह देना, पूरी तरीके से जो है वो पॉलिटिकल खेल रहे हैं। और राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, किसी की छवि बेवजह जो है धूमिल की जा रही है।
3: अंकिता भंडारी की मौत में बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम के शामिल होने को लेकर विपक्ष और परिवार की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सीबीआई की जांच पूरी होने से पहले ही दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का गवर्नर बना दिया गया, जिसके विरोध में अंकिता का परिवार दिल्ली पहुंचा।
8: किस बेस पे उन्होंने उस आदमी को राज्यपाल बनाया?
9: जो आशाएं लगी थी वो कुछ नहीं हुई, और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे।
8: मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक उनकी सीबीआई जांच नहीं हो जाती, उनको राज्यपाल घोषित न किया जाए।
3: उत्तराखंड में चुनाव से पहले दुष्यंत कुमार गौतम के राज्यपाल बनने के बाद एक बार फिर अंकिता भंडारी का मुद्दा अब बढ़ता नजर आ रहा है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: शिवा शर्मा मामले में जांच का दायरा बढ़ रहा है। इसमें खुलासा हुआ कि आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे नेपाल भाग चुकी है, उसके साथ उसकी बहन और अन्य आरोपी भी फरार हैं। सभी का पुलिस इनकी तलाश कर रही है, लेकिन एक वीडियो भी आया है जिसमें अपने आप को श्रद्धा बेगुनाह बताती है।
10: ये
1: वही तस्वीर है जो श्रद्धा दुबे के नेपाल भाग जाने का पुख्ता

0: का प्रमाण है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर नेपाल के माहिम नगर की है। श्रद्धा अपनी बहन रश्मि दुबे और दोस्त आदिल रोड क्रॉस कर बस स्टेशन के भीतर जाते दिखे हैं। पुलिस सूत्रों का मानना है कि श्रद्धा का नेटवर्क काफी मजबूत है और उसे पुलिस की हर मूवमेंट की इनसाइड जानकारी समय से पहले मिल रही है। पुलिस से भाग रही श्रद्धा दुबे अब कह रही है कि वो पुलिस की जांच में सहयोग करना चाह रही है।
1: मैं कहीं गायब नहीं हूँ, मैं पुलिस में आके बयान देना चाहती हूँ, मैं उन्हें सब कुछ सच सच जो कुछ भी है मैं उन्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ।
0: एक तरफ श्रद्धा दुबे वीडियो जारी कर पुलिस के सामने आने की बात कह रही है तो दूसरी तरफ उसकी SUV मिलने की खबर ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा के पास पार्किंग में श्रद्धा की SUV कार मिली है। जानकारी के मुताबिक UP 32 QQ 0111 ये गाड़ी 10 अक्टूबर से पार्किंग में खड़ी थी। श्रद्धा गाड़ी पार्क करने के बाद नेपाल जाने की बात कहकर वहाँ से निकली थी और अब नेपाल से आई ये तस्वीर काफी कुछ बयान कर रही है। कारोबारी शिवा शर्मा की मौत से उठे सवालों को लेकर पहली बार मॉडल श्रद्धा दुबे का वीडियो सामने आया है। शिवा शर्मा की मौत के बाद उठे सवालों पर सुनिए श्रद्धा दुबे का ये बयान।
1: वो हत्या नहीं थी, वो एक सुसाइड था, ठीक है। मैंने अपनी आंखों से देखा उसको कूदते हुए, ठीक। अगर वहाँ के CCTV कैमरे निकलेंगे, सब कुछ निकलेगा तो उसमें दिखेगा कि वो किस तरह से कूद रहा है।
0: शिवा की मां ने जो FIR दर्ज कराई है उसमें मुख्य आरोपी श्रद्धा है, साथ में श्रद्धा की बहन रश्मि दुबे भी आरोपी बनाई गई है। नेपाल से आई तस्वीर में रश्मि भी साथ दिखी है। शिवा की मां ने आरोप लगाए हैं कि श्रद्धा उनके बेटे को लगातार धमकाती थी और टॉर्चर करती थी,
2: डेली बांध के और थ्रेटन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करती थी जिसके बाइट्स अक्सर उनके बॉडी पे होते थे। निशान पूछने पे वो ये कहते थे कि चोट लग गई है, गिर गया हूँ।
0: लखनऊ पुलिस ने मामले में जांच तेज कर दी है ताकि करोड़पति कारोबारी की मौत की असल वजह साफ हो सके। बहराइच से राम बरन चौधरी और लखनऊ से अंकित मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
3: और अब खबर आमिर खान के भांजे और कई फिल्मों में एक्टिंग करने वाले इमरान खान की, जिन्हें मुंबई पुलिस ने भारत छोड़ने का नोटिस दे दिया है। इमरान को डेडलाइन बता दी गई है 28 अक्टूबर तक देश है इमरान को डेडलाइन बता दी गई है 28 अक्टूबर तक देश छोड़ दीजिए।
4: अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस नोटिस का मसौदा साफ है। पुलिस ने दो टूक कह दिया है कि इमरान खान भारत छोड़ दें। मुंबई पुलिस ने एक्टर आमिर खान के भांजे को ये नोटिस थमाया है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को ऐसा फरमान जारी करना पड़ा। दरअसल ये पूरा मामला 10 अक्टूबर 2026 का है। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। इमरान खान भी उस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया था। इस बात से BJP नाराज हो गई। पार्टी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस से इसकी शिकायत कर दी। दरअसल इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं है, वो अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं। उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा है। BJP की शिकायत थी कि ऐसे लोग देश के अंदरूनी प्रोटेस्ट में कैसे शामिल हो सकते हैं।
5: किरीट सोमैया ने कहा था कि इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और वो भारत में हो रहे आंदोलन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने लगातार इसकी शिकायत मुंबई पुलिस से की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए इमिग्रेशन एक्ट के तहत इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के निर्देश मुंबई पुलिस द्वारा दिए गए हैं।
4: उसी मामले में संबंधित आव्रजन कानूनों के तहत कार्रवाई की गई है। मुंबई पुलिस के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की ओर से नोटिस जारी किया गया है।
6: इमरान खान के खिलाफ मैंने शिकायत दी थी, इमरान खान को 28 अक्टूबर तक हिंदुस्तान छोड़ना है। ऐसे जो भी होंगे, इमरान होंगे, इकबाल होंगे, यूसुफ होगा, अब्दुल होगा, जो विदेशी नागरिक विदेशी पैसा, उनके ऊपर ऐसी ही कार्रवाई होगी।
4: OCI कार्ड धारक भारतीय मूल के विदेशी नागरिक होते हैं जिन्हें भारत में रहने और कई अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता है, लेकिन OCI का दर्जा भारतीय नागरिकता के समान नहीं है। उसके साथ कुछ कानूनी प्रतिबंध भी जुड़े होते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इमरान खान मुंबई पुलिस के नोटिस पर क्या कदम उठाते हैं। दीपेश त्रिपाठी, आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: बीजेपी और विपक्ष में जारी है राजनीतिक घमासान। ज्ञानेश के खिलाफ राहुल की मोर्चाबंदी जारी। पार्टी नेताओं के साथ इंदिरा भवन में बैठक। बीजेपी का आरोप, विदेशी हाथों में खेल रहे हैं राहुल। अंकिता के परिजनों से मुलाकात के बाद राहुल ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। दुष्यंत गौतम की नियुक्ति पर उठाए सवाल, कहा सरकार के निर्णय से स्तब्ध हूं। दिल्ली में प्रदर्शन के पहले दीपके का केंद्र पर हमला, कहा एक देश एक पार्टी इनका उद्देश्य। प्रशांत भूषण बोले सत्ता परिवर्तन के लिए हमारी लड़ाई। पंचायत आज तक राजस्थान में बोले मुख्यमंत्री भजन लाल, तेजी से विकास कर रही है डबल इंजन की सरकार। पेपर लीक को किया सील, ड्रग तस्करों पर कार्रवाई। प्रयागराज में योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा माफिया के सामने घुटने टेक मौन रहती थी समाजवादी सरकार, अब माफिया मुक्त हो गया यूपी। हमारे देश में चुनाव आयोग के खिलाफ शुरू हुआ राजनीतिक आंदोलन अब अदालतों में भी चल रहा है। आज तीन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर यह जवाब मांगा। पहला नोटिस राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं के अलावा तीन और अर्जियों पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को जारी हुआ। राहुल गांधी ने फिर से टी पार्टी करके कल अपनी आगे की रणनीति बनाई।
1: तेरह अक्टूबर के बाद राहुल गांधी की आज फिर से टी पार्टी हुई, फिर से चुनाव आयोग के खिलाफ जुटान हुआ और फिर से आगे की रणनीति पर बात हुई। चुनाव आयोग के खिलाफ छिड़ी सियासी लड़ाई जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो वहां जंग के चार तरह के मोर्चे नजर आए। पहला मामला चुनाव आयोग और SIR वाला था, दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक राहुल गांधी के मार्च का था, तीसरा मामला जंतर मंतर से प्रदर्शन स्थल हटाने का था, चौथा मामला महिला पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों से बदसलूकी का था, जिसमें से तीन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। पहला नोटिस राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं के अलावा तीन और अर्जियों पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग और दोनों चुनाव आयुक्तों को जारी हुआ और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि हम अगली सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं में से एक से उसके आचरण के बारे में पूछना चाहेंगे। नोटिस जारी करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी बात की निंदा कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं में से एक के संबंध में नोटिस को फिलहाल अस्थायी तौर पर स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते वो अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण दें। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन करने पहुंचे राहुल, खड़गे, अखिलेश, महुआ मोइत्रा समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं को नोटिस देकर जवाब मांगा है।
2: भारत की न्यायपालिका सबसे ज्यादा मजबूत, निष्पक्ष और जनता इस पे विश्वास करती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसको डराने का प्रयास, क्या हजारों समर्थकों की भीड़ लेकर सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में जाना, नारेबाजी करना, हुड़दंग करना, ये क्या था?
1: जंतर मंतर से प्रदर्शन स्थल हटाने के मामले में भी सरकार ने अदालत में बताया कि इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं। कमेटी ने पहले ही रिपोर्ट दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। आज तक ब्यूरो
0: खबर। CJP के प्लान 16 अक्टूबर यानी कि आज दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने के ऐलान की। अभिजीत दीपके के इस ऐलान के बाद NDMC ने 16 और 17 अक्टूबर यानी कि आज और कल सेंट्रल पार्क बंद करने का ऐलान कर दिया।
1: लेकिन CJP की कॉल के बाद कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से लेकर इर्द गिर्द सुरक्षा बढ़ा दी गई है, नए CCTV कैमरे लगाए गए हैं।
3: ये देखना होगा कि कल का जो कॉल है वो कांग्रेस जनता पार्टी कैसे ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करती है। हालांकि उन्होंने कहा है लोगों को इकट्ठा होने के लिए, लेकिन जैसा हमने पहले देखा है वैसी कुछ तस्वीरें कल को भी देखने को मिल सकती हैं कि आसपास इतनी भारी संख्या में सिक्योरिटी तैनात होगी कि कोई भी यहाँ इकट्ठा, किसी का भी यहाँ इकट्ठा होना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा।
1: दीपके के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत भूषण ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। जी हाँ, प्रशांत भूषण ने कहा कि सिविल सोसाइटी और युवाओं के नेतृत्व में लोकतंत्र को बचाने और सरकार बदलने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी।
4: स्टूडेंट्स को, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को ये श्रेय देते हैं और उनकी अगुवाही में ये लड़ाई लड़ी जाएगी, वो हमारे लीडर होंगे और उनकी अगुवाही में सारी सिविल सोसाइटी मिलकर, पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सब ये लड़ाई लड़ेंगी हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए और रेजिम चेंज के लिए। ये मैं आज खुले तौर पर कह रहा हूँ, यहाँ ये रेजिम चेंज की लड़ाई है और हम लोग रेजिम चेंज करा कर रहे हैं।
1: प्रशांत भूषण सरकार बदलने की बात कर रहे हैं तो दिपके ने ज्ञानेश कुमार पर अटैक करते हुए 2024 में लोकसभा चुनावों पर भी सवाल उठा दिया है।
5: 2024 में इंडिया अलायंस और एनडीए का जो मार्जिन था विक्ट्री और डिफीट का, दैट वाज जस्ट 2%। पिछले दो सालों में 13 करोड़ से ज्यादा वोट डिलीट हुए।
1: तो अभिजीत दिपके बेंगलुरु के मंच का जिक्र करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त पर एक और सवाल उठाते हैं।
5: प्रकाश सर के साथ में बेंगलुरु गया था, वहां पर मेरे स्टेज पर बहुत ही एक मिरेकुलस चीज हुई, एक इट वाज, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा ये असलियत में कैसे हो सकता है। उस स्टेज पर मुझे ऐसे लोग मिले जो मरे हुए थे, राइट सर, मरे हुए लोग थे, मरे हुए लोग मेरे साथ खड़े हुए थे स्टेज पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, जिनको ज्ञानेश कुमार के इलेक्शन कमीशन ने डेट डिक्लेयर कर दिया था।
1: अब 16 अक्टूबर को क्या होगा, हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में सीजेपी के प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। मौसमी सिंह के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
0: जंतर मंतर को लेकर रण जारी है। आज सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने लोगों से अपील की कि तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में पहुंचे, वहीं दूसरी ओर नेहा बोरा के बयान पर हंगामा बरपा है।
6: विपक्ष के विरोध प्रदर्शन की पोस्टर गर्ल बन गई नेहा बोरा है। बारह अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के साथ आगे आगे दिख रही थी। 13 अक्टूबर को राहुल गांधी के यहाँ टी पार्टी में भी राहुल के साथ दिखी, लेकिन अब नेहा बोरा ने जो कहा है उसने सियासी तूफान ला दिया है।
7: And we know that the Gen Z movement that we are seeing everywhere in this country first started in Bangladesh. And congratulations to you for showing us the way, for showing us and extending solidarity to the young people of this country. We know that the movement that began in Bangladesh was for democratic and voter rights. Today, the movement that the young people are participating in and leading is also a movement for democratic and voting rights. We know that the fight that you fight against religious fundamentalism in your country is also a fight that the Gen Z and the young people of this country fight today.
6: तो नेहा बोरा बता रही हैं कि 2024 में बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार गिराने के लिए हुए प्रदर्शनों से भारत के युवाओं को प्रेरणा मिली है और वो सरकार के खिलाफ तन कर खड़े हुए हैं। अब नेहा बोरा के बयान पर बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है।
8: बांग्लादेश में हुआ क्या था, एक ग्रुप ऑफ इस्लामिस्ट ने भीड़ के सहारे, अराजकता के सहारे पूरे के पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने का प्रयास किया। उनका मकसद रेजिम चेंज था। मतलब आज ये साबित हो चुका है कि राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम भारत में लोकतंत्र को तहस नहस करने की एक साजिश रच रहे हैं।
6: अकेले नेहा बोरा ही नहीं, राहुल गांधी के साथ प्रदर्शन में शामिल प्रशांत भूषण भी ऐसा बयान दे रहे हैं जो सियासी आप को और हवा दे रहा है। भूषण ने कहा कि ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन की है। इधर अभिजीत दिपके बार बार अपील कर रहे हैं कि कल शाम 5 बजे वो कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा रैली करेंगे, इसमें लोग शामिल हों।
9: जैसे कि आप लोगों को पता है, सौरभ और आशु को बस तिरंगा लहराने के लिए जेल में डाला गया है। तो मैं सभी देशभक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग तिरंगे से प्यार करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 16 अक्टूबर को शाम को 5 बजे आप सब सेंट्रल पार्क कैनॉट प्लेस में आइए तिरंगे के साथ। वहां पर हम अपना तिरंगा लहराएंगे और हम बता देंगे कि वेविंग अ तिरंगा इज नॉट अ क्राइम।
6: एनएसयूआई पहले ही आरोप लगा चुकी है कि प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें पीटा। अब दिल्ली पुलिस ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों पर हमला करने का केस दर्ज किया है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन एनएसयूआई बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार की जंग जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी का चुनाव सीएम योगी की हैट्रिक या फिर अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी का चुनाव है। दोनों ही नेताओं ने चुनावी दंगल में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। दोनों ही नेताओं ने चैलेंज पॉलिटिक्स को लेकर जुबानी युद्ध शुरू कर दिया।

0: योगी और अखिलेश की जुबानी टक्कर।
1: उन्होंने यही फैसला लेना चाहिए, उनके बीच में अगला चुनाव लड़ना चाहिए।
0: वार और पलटवार, सियासत है धुआंधार।
2: पीडीए चिल्लाते थे ये राज्यसभा के टिकट में, वो पीडीए कहाँ चला गया था।
0: 403 सीटों की लड़ाई, चुनावी पारा है हाई। 2027 का चुनाव, हर दिन नए नए दाम।
3: और जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं।
4: आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से, चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं। लड़ाई चेलों से क्यों, लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए।
0: विधानसभा चुनाव से पहले 10 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव को योगी और अखिलेश की अग्नि परीक्षा से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन चुनावी लड़ाई में 3 के बजाय 2 उम्मीदवार उतारकर अखिलेश पहले राउंड में पिछड़ गए। दूसरे राउंड में अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया, ऐलान किया कि सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं। योगी ने नहले पर दहला चला, चुनौती स्वीकार कर ऐलान किया कि अयोध्या में सीधा मुकाबला उनके और अखिलेश यादव के बीच होना चाहिए और वो तैयार हैं। वहाँ भी अखिलेश यादव का सियासी दांव उल्टा पड़ा, लिहाजा अखिलेश को डैमेज कंट्रोल का गियर लगाना पड़ा। ऐसे में 2027 की लड़ाई को लेकर सियासी पारा हाई है। सवाल यही है कि 2027 में योगी के सिर फिर सजेगा ताज या फिर 10 साल के बाद अखिलेश की सत्ता में वापसी होगी।
3: लेकिन जन आक्रोश के सामने भारतीय जनता पार्टी नहीं चलेगी। बाई इलेक्शन में तो 420 ही चल सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 403 में 420 ही नहीं चलने देंगे। पीडी के लोग डट करके मुकाबला करने काम करेंगे और भाजपाई हारेंगे भी और भागेंगे भी इस बार।
5: उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के चुनाव ने बता दिया है कि विधानसभा का चुनाव परिणाम क्या होने जा रहा है। ये लड़ाई 80-20 की फिर आ गई है, 80% एनडीए में और 20% पीडीए में, और पीडीए का क्या हाल होने वाला है ये आपके सामने फिर आने वाला है।
0: बीते दिन समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए, तो 24 घंटों के अंदर समाजवादी पार्टी के कुनबे में कई नेताओं को शामिल किया गया, जिसमें कई बीजेपी छोड़कर साइकिल पर सवार हुए हैं। मतलब सिर्फ जुबानी जंग नहीं बल्कि हर मोर्चे पर सीधी टक्कर जारी है।
3: वो हारने जा रहे हैं, वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए प्रहरी पीडीए समाज जुड़ गया है, ये लोग पीड़ा दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, और वहीं प्रेम दया का अपनापन का समाजवादी पार्टी लोगों को जोड़ने का काम कर रही है।
4: अगर इनका वास्तविक चेहरा देखना हो तो अभी राज्यसभा में आपने देखा होगा, ये पीडीए पीडीए पीडीए चिल्ला रहे थे, पूछो तो राज्यसभा में इनको प्रत्याशी बनाने थे तो एक अपने चचा जान को बना दिए और दूसरा मुंबई के धन्ना सेठ को बना दिए। एक भी दलित नहीं, एक भी वंचित नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, एक भी फॉरवर्ड नहीं, कोई मतलब नहीं। अरे चलो इन पे विश्वास नहीं था तो कम से कम मुसलमानों को ही बना देते प्रत्याशी, लेकिन नहीं बनाया उनको भी।
0: अखिलेश ने पीडीए के फॉर्मूले से 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को पछाड़ा था। इसी चुनावी मंत्र पर अखिलेश 2027 में जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो वहीं अखिलेश के पीडीए पर तंज करते हुए सीएम योगी ने इसे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करार दिया। चाहे अखिलेश हो या फिर योगी, दोनों अपनी अपनी जीत की भविष्यवाणी करने में पीछे नहीं है।
3: इधर देखने को मिल रहा है कि जब जनता में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, भारतीय जनता पार्टी जब जनता के बीच में कमजोर होती दिख रही है उस समय वो इलेक्शन कमीशन के पीछे छिप जा रही है और इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के इस भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को और भारत के नागरिकों को धोखा दे रहे हैं।
5: आश्चर्य है कि चुनाव जीते तो इनका पुरुषार्थ और हारे तो ईवीएम दोषी। इलेक्शन कमीशन दोषी।
0: हर दिन यूपी के सियासी दंगल में योगी और अखिलेश के बीच वार पलटवार का खेल जारी है। अखिलेश राम मंदिर में दान की चोरी को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरते हैं तो योगी राम भक्तों को अखिलेश से सावधान रहने की सलाह देते हुए नजर आते हैं।
3: देखिए धर्म अधर्म, अधर्मी कौन है वो हारेगा, झूठ बोलने वाले हारेंगे, जनता को दुख देने वाले हारेंगे और जिन्होंने करोड़ों श्रद्धालुओं का चढ़ावा रामधन की चोरी की वो हारेंगे, भगवान स्वयं हरवाएंगे उन्हें।
4: रामद्रोही इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? याद करिए, ये रामद्रोही इसको स्वीकार कर ही नहीं सकते और इसलिए वे कुछ न कुछ युक्ति जरूर निकाल करके अयोध्या को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ते।
0: योगी ने राम मंदिर के नाम पर धर्म याद दिलाया तो अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी का धर्म। वहीं योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताते हैं, लेकिन अखिलेश यूपी की कानून व्यवस्था पर उठे सवालों से पलटवार करते हैं।
5: क्या माफिया जिस जमीन पे पैर रख लिया वह तीख की हो गई, अशरफ की हो गई, और अब जिस जमीन पर सरकार ने कहा कि ये माफिया की नहीं, ये गरीब के लिए आसियाना बनना है, तो माफिया की सिट्टी पिट्टी गम वहां पे बहुमंजिला आवासीय सुविधा उपलब्ध करवा करके हम गरीब के लिए मकान की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं।
3: यूपी सरकार कस्टोडियल डेथ में नंबर वन है। ह्यूमन राइट्स कमीशन से सबसे ज्यादा यूपी सरकार को नोटिसेस मिले हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कई ऑब्जर्वेशंस में कहा कि यहां की पुलिस पॉलिटिकल काम कर रही है, यहां की पुलिस प्रशासन न्याय नहीं दे रहा है, और यहां तक कहा कि पुलिस को क्या खत्म कर दिया जाए। सोचिए, पुलिस को भंग कर दिया जाए, विभाग ही खत्म किया जाए क्या?
0: मतलब साफ है कि यूपी चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे कानून व्यवस्था, अयोध्या, वोट चोरी और तुष्टीकरण के मुद्दों पर जुबानी तकरार और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। देखना यही है कि यूपी के वोटरों पर ये मुद्दे कितना असर डालते हैं। दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे हैं, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा।
6: और अब खबर अंकिता भंडारी मर्डर केस की, जिसे लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाए जाने का परिवार विरोध कर रहा है तो कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई है।
7: इंडिया गेट देर रात एक बार फिर हंगामे का गवाह बना, जहां अंकिता भंडारी के माता पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अंकिता भंडारी का परिवार दुष्यंत कुमार का सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने के विरोध में इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने पहुंचा था। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत कांग्रेस के कई नेता माता पिता से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन देर रात इंडिया गेट पर प्रशासन परिवार को हटाने पहुंचा, जहां माता पिता के अलावा कई कांग्रेसी नेता हिरासत में लिए गए। प्रशासन के एक्शन पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, सुबह के 4 बजे जब दुनिया सो रही थी तब अंकिता भंडारी के माता पिता को हिरासत में ले लिया गया। जिस जांच का नतीजा आया नहीं उसके पहले ही नियुक्ति की जल्दी और सवाल पूछने वाले माँ बाप को रात के अंधेरे में उठा लिया गया। इस सरकार की पहचान यही है, पीड़ितों की आवाज दबा दो, सवाल करने वालों को हटा दो। उधर अंकिता भंडारी को लेकर हंगामे की एक तस्वीर देहरादून में भी नजर आई।
8: कांग्रेस कार्यकर्ता अचानक राज्यपाल निवास पर पहुंच गए हैं। ये राज्यपाल आवास है, राजभवन है, जिसे लोक भवन भी कहा जाता है। और देखिए किस तरह से गेट को खोलने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता इस गेट को भेद कर राज्यपाल से मिलने जाना चाहते हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। हरक सिंह को देखिए पुलिस डिटेन कर रही है यहाँ पर, और पुलिस डिटेन करने की कोशिश कर रही है। और गणेश गोदयाल यहाँ गिर गए हैं। देखा जा सकता है कि किस तरह से कांग्रेस पूरे आक्रामक तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की जारी है।
9: राज्यपाल को क्या बंदे निकला है? दुष्यंत गौतम के इस्तीफे की मांग, अजय गोटान की मांग को लेकर हम ज्ञापन देने के लिए आए थे। चार दिन से राज्यपाल उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के सम्मान का सवाल है, उत्तराखंड की बेटियों का सम्मान है।
7: बीजेपी कांग्रेस पर मामले में सियासत करने का आरोप लगा रही है।
10: जब पुलिस के किसी पेपर में कहीं नाम नहीं है, केवल ऑपोजिशन इस नाम को उठा रही है।
11: उनके पेरेंट्स ने कहा सीबीआई जांच कराओ, तो सीबीआई जांच हो गई। तो आखिरकार भाई वो जांच में, जांच को होने देना, जांच में क्या आया है उसको जाने बगैर सारी बातें कह देना, पूरी तरीके से जो है वो पॉलिटिकल खेल रहे हैं। और राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, किसी की छवि बेवजह जो है धूमिल की जा रही है।
7: अंकिता भंडारी की मौत में बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम के शामिल होने को लेकर विपक्ष और परिवार की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सीबीआई की जांच पूरी होने से पहले ही दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का गवर्नर बना दिया गया, जिसके विरोध में अंकिता का परिवार दिल्ली पहुंचा।
12: किस बेस पे उन्होंने उस आदमी को राज्यपाल बनाया?
13: जो आशाएं लगी थी वो कुछ नहीं हुई, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे।
12: मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक उनकी सीबीआई जांच नहीं हो जाती, उनको राज्यपाल घोषित ना किया जाए।
7: उत्तराखंड में चुनाव से पहले दुष्यंत कुमार गौतम के राज्यपाल बनने के बाद एक बार फिर अंकिता भंडारी का मुद्दा अब बढ़ता नजर आ रहा है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
6: शिवा शर्मा मामले में जांच का दायरा बढ़ रहा है। इसमें खुलासा हुआ कि आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे नेपाल भाग चुकी है, उसके साथ उसकी बहन और अन्य आरोपी भी फरार हैं। सभी का पुलिस इनकी तलाश कर रही है, लेकिन एक वीडियो भी आया है जिसमें अपने आप को श्रद्धा बेगुनाह बताती है।
14: ये वही तस्वीर है जो श्रद्धा दुबे के नेपाल भाग जाने का पुख्ता प्रमाण है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर नेपाल के माहिम नगर की है। श्रद्धा अपनी बहन रश्मि दुबे और दोस्त आदिल रोड क्रॉस कर बस स्टेशन के भीतर जाते दिखे हैं। पुलिस सूत्रों का मानना है कि श्रद्धा का नेटवर्क काफी मजबूत है और उसे पुलिस की हर मूवमेंट की इनसाइड जानकारी समय से पहले मिल रही है। पुलिस से भाग रही श्रद्धा दुबे अब कह रही है कि वो पुलिस की जांच में सहयोग करना चाह रही है।
15: मैं कहीं गायब नहीं हूँ, मैं पुलिस में आके बयान देना चाहती हूँ, मैं उन्हें सब कुछ सच सच जो कुछ भी है मैं उन्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ।
14: एक तरफ श्रद्धा दुबे वीडियो जारी कर पुलिस के सामने आने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ उसकी एसयूवी मिलने की खबर ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा के पास पार्किंग में श्रद्धा की एसयूवी कार मिली है। जानकारी के मुताबिक UP 32 QQ 0111 ये गाड़ी 10 अक्टूबर से पार्किंग में खड़ी थी। श्रद्धा गाड़ी पार्क करने के बाद नेपाल जाने की बात कहकर वहां से निकली थी, और अब नेपाल से आई ये तस्वीर काफी कुछ बयान कर रही है। कारोबारी शिवा शर्मा की मौत से उठे सवालों को लेकर पहली बार मॉडल श्रद्धा दुबे का वीडियो सामने आया है। शिवा शर्मा की मौत के बाद उठे सवालों पर सुनिए श्रद्धा दुबे का ये बयान।
15: वो हत्या नहीं थी, वो एक सुसाइड था, ठीक है। मैंने अपनी आंखों से देखा उसको कूदते हुए, ठीक। अगर वहाँ के CCTV कैमरेज निकलेंगे, सब कुछ निकलेगा, तो उसमें दिखेगा कि वो किस तरह से कूद रहा है।
14: शिवा की मां ने जो FIR दर्ज कराई है उसमें मुख्य आरोपी श्रद्धा है, साथ में श्रद्धा की बहन रश्मि दुबे भी आरोपी बनाई गई है। नेपाल से आई तस्वीर में रश्मि भी साथ दिखी है। शिवा की मां ने आरोप लगाए हैं कि श्रद्धा उनके बेटे को लगातार धमकाती थी और टॉर्चर करती थी,
16: डेली बांध के और थ्रेटन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करती थी, जिसके बाइट्स अक्सर उनके बॉडी पे होते थे निशान। पूछने पे वो ये कहते थे कि चोट लग गई है, गिर गया हूँ।
14: लखनऊ पुलिस ने मामले में जांच तेज कर दी है ताकि करोड़पति कारोबारी की मौत की असल वजह साफ हो सके। बहराइच से रामबरन चौधरी और लखनऊ से अंकित मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव आज तक।
6: और अब खबर आमिर खान के भांजे और कई फिल्मों में एक्टिंग करने वाले इमरान खान की, जिन्हें मुंबई पुलिस ने भारत छोड़ने का नोटिस दे दिया है। इमरान को डेडलाइन बता दी गई है, 28 अक्टूबर तक देश छोड़ दीजिए।
17: अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस नोटिस का मसौदा साफ है। पुलिस ने दो टूक कह दिया है कि इमरान खान भारत छोड़ दें। मुंबई पुलिस ने एक्टर आमिर खान के भांजे को ये नोटिस थमाया है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को ऐसा फरमान जारी करना पड़ा। दरअसल ये पूरा मामला 10 अक्टूबर 2026 का है, जब मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था। इस प्रदर्शन में सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। इमरान खान भी उस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया था। इस बात से बीजेपी नाराज हो गई। पार्टी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस से इसकी शिकायत कर दी। दरअसल इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं है, वो अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं। उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा है। बीजेपी की शिकायत थी कि ऐसे लोग देश के अंदरूनी प्रोटेस्ट में कैसे शामिल हो सकते हैं।
18: किरीट सोमैया ने कहा था कि इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और वो भारत में हो रहे आंदोलन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने लगातार इसकी शिकायत मुंबई पुलिस से की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए इमिग्रेशन एक्ट के तहत इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के निर्देश मुंबई पुलिस द्वारा दिए गए हैं।
17: उसी मामले में संबंधित आव्रजन कानूनों के तहत कार्रवाई की गई है। मुंबई पुलिस के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की ओर से नोटिस जारी किया गया है।
19: इमरान खान के खिलाफ मैंने शिकायत दी थी, इमरान खान को 28 अक्टूबर तक हिंदुस्तान छोड़ना है। ऐसे जो भी होंगे, इमरान होंगे, इकबाल होंगे, यूसुफ होगा, अब्दुल होगा, जो विदेशी नागरिक, विदेशी पैसा, उनके ऊपर ऐसी ही कार्रवाई होगी।
17: OCI कार्ड धारक भारतीय मूल के विदेशी नागरिक होते हैं, जिन्हें भारत में रहने और कई अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता है, लेकिन OCI का दर्जा भारतीय नागरिकता के समान नहीं है। उसके साथ कुछ कानूनी प्रतिबंध भी जुड़े होते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इमरान खान मुंबई पुलिस के नोटिस पर क्या कदम उठाते हैं। दीपेश त्रिपाठी, आज तक।
6: कश्मीर में मौसम लगातार बदल रहा है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी से सफेद परत दिखाई देने लगी। ऊंचे पहाड़ों, खुले मैदानों पर गिरी बर्फ से इलाका पूरी तरह से ढक गया। बर्फबारी के साथ ही घाटी में सर्द मौसम की शुरुआत का एहसास होने लगा।
17: ये तस्वीरें हैं उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा स्थित गुरेज की तुलैल घाटी की है, जहाँ सीजन की पहली बर्फबारी ने दस्तक दी है। बर्फबारी के बाद घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ तुलैल के मैदानी हिस्सों में बर्फ की सफेद परत दिखाई देने लगी है। बर्फबारी के साथ ही यहां मौसम का मिजाज बदल गया है और खूबसूरत वादियों ने सर्दियों की आहट का एहसास कराना शुरू कर दिया है।
20: हर जगह पर जबरदस्त बर्फबारी रात के बीच हुई है, जिससे तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। अगर श्रीनगर की बात की जाए तो दिन का अधिकतम तापमान 15 डिग्री रहने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटों के दौरान कश्मीर में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा।
17: भारी बर्फबारी का असर सड़क के रास्ते पर भी पड़ा है। पुंछ और राजौरी को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाले मुगल रोड पर पीर की गली के पास बर्फ जमा होने से आवाजाही बंद हो गई है। सड़क से बर्फ हटाने और रास्ते को साफ करने के लिए मशीनें चलाई जा रही हैं। अक्टूबर का अभी आधा महीना ही गुजरा है और कश्मीर के कई इलाकों में पारा शून्य तक लुढ़क चुका है, जबकि श्रीनगर में भी तापमान 15 डिग्री तक गिरा है। लेकिन बदलते मौसम में भी यहां पहुंचे पर्यटकों में गजब का उत्साह है।
21: बहुत बहुत अमेजिंग, सबको आना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगी, इंडिया में, वर्ल्ड में सबको आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है।
17: अब आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। अशरफ वानी, मीर फरीद के साथ एजाज डार, श्रीनगर, आज तक।
6: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: विपक्ष में जारी है राजनीतिक घमासान। ज्ञानेश के खिलाफ राहुल की मोर्चाबंदी जारी। पार्टी नेताओं के साथ इंदिरा भवन में बैठक। बीजेपी का आरोप, विदेशी हाथों में खेल रहे हैं राहुल। अंकिता के परिजनों से मुलाकात के बाद राहुल ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। दुष्यंत गौतम की नियुक्ति पर उठाए सवाल, कहा सरकार के निर्णय से स्तब्ध हूं। दिल्ली में प्रदर्शन के पहले दीपके का केंद्र पर हमला, कहा एक देश एक पार्टी इनका उद्देश्य। प्रशांत भूषण बोले सत्ता परिवर्तन के लिए हमारी लड़ाई। पंचायत आज तक राजस्थान में बोले मुख्यमंत्री भजन लाल, तेजी से विकास कर रही है डबल इंजन की सरकार। पेपर लीक को किया सील, ड्रग तस्करों पर कार्रवाई। प्रयागराज में योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा माफिया के सामने घुटने टेक मौन रहती थी समाजवादी सरकार, अब माफिया मुक्त हो गया यूपी। हमारे देश में चुनाव आयोग के खिलाफ शुरू हुआ राजनीतिक आंदोलन अब अदालतों में भी चल रहा है। आज तीन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर यह जवाब मांगा। पहला नोटिस राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं के अलावा तीन और अर्जियों पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को जारी हुआ। राहुल गांधी ने फिर से टी पार्टी करके कल अपनी आगे की रणनीति बनाई।
1: तेरह अक्टूबर के बाद राहुल गांधी की आज फिर से टी पार्टी हुई, फिर से चुनाव आयोग के खिलाफ जुटान हुआ और फिर से आगे की रणनीति पर बात हुई। चुनाव आयोग के खिलाफ छिड़ी सियासी लड़ाई जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, तो वहां जंग के चार तरह के मोर्चे नजर आए। पहला मामला चुनाव आयोग और SIR वाला था, दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक राहुल गांधी के मार्च का था, तीसरा मामला जंतर मंतर से प्रदर्शन स्थल हटाने का था, चौथा मामला महिला पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों से बदसलूकी का था, जिसमें से तीन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। पहला नोटिस राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं के अलावा तीन और अर्जियों पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग और दोनों चुनाव आयुक्तों को जारी हुआ और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि हम अगली सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं में से एक से उसके आचरण के बारे में पूछना चाहेंगे। नोटिस जारी करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी बात की निंदा कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं में से एक के संबंध में नोटिस को फिलहाल अस्थायी तौर पर स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते वो अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण दें। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन करने पहुंचे राहुल, खड़गे, अखिलेश, महुआ मोइत्रा समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं को नोटिस देकर जवाब मांगा है।
2: भारत की न्यायपालिका सबसे ज्यादा मजबूत, निष्पक्ष और जनता इस पे विश्वास करती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इसको डराने का प्रयास, क्या हजारों समर्थकों की भीड़ लेकर सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में जाना, नारेबाजी करना, हुड़दंग करना, ये क्या था?
1: जंतर मंतर से प्रदर्शन स्थल हटाने के मामले में भी सरकार ने अदालत में बताया कि इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं। कमेटी ने पहले ही रिपोर्ट दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। आज तक ब्यूरो
0: खबर। CJP के प्लान 16 अक्टूबर यानी कि आज दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने के ऐलान की। अभिजीत दीपके के इस ऐलान के बाद NDMC ने 16 और 17 अक्टूबर यानी कि आज और कल सेंट्रल पार्क बंद करने का ऐलान कर दिया।
1: लेकिन CJP की कॉल के बाद कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से लेकर इर्द गिर्द सुरक्षा बढ़ा दी गई है, नए CCTV कैमरे लगाए गए हैं।
3: ये देखना होगा कि कल का जो कॉल है वो कांग्रेस जनता पार्टी कैसे ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करती है। हालांकि उन्होंने कहा है लोगों को इकट्ठा होने के लिए, लेकिन जैसा हमने पहले देखा है वैसी कुछ तस्वीरें कल को भी देखने को मिल सकती हैं कि आसपास इतनी भारी संख्या में सिक्योरिटी तैनात होगी कि कोई भी यहां इकट्ठा, किसी का भी यहां इकट्ठा होना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा।
1: दीपके के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत भूषण ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। जी हाँ, प्रशांत भूषण ने कहा कि सिविल सोसाइटी और युवाओं के नेतृत्व में लोकतंत्र को बचाने और सरकार बदलने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी।
4: स्टूडेंट्स को और यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को ये श्रेय देते हैं और उनकी अगुवाही में ये लड़ाई लड़ी जाएगी। वो हमारे लीडर होंगे और उनकी अगुवाही में सारी सिविल सोसाइटी मिलकर, पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर, सब ये लड़ाई लड़ेंगी हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए और रेजिम चेंज के लिए। ये मैं आज खुले तौर पर कह रहा हूँ, यहाँ ये रेजिम चेंज की लड़ाई है और हम लोग रेजिम चेंज करा कर रहे हैं।
1: प्रशांत भूषण सरकार बदलने की बात कर रहे हैं तो दीपके ने ज्ञानेश कुमार पर अटैक करते हुए 2024 में लोकसभा चुनावों पर भी सवाल उठा दिया है।
5: 2024 में इंडिया अलायंस और एनडीए का जो मार्जिन था विक्ट्री और डिफीट का, दैट वाज जस्ट 2%। पिछले दो सालों में 13 करोड़ से ज्यादा वोट डिलीट हुए।
1: तो अभिजीत दीपके बेंगलुरु के मंच का जिक्र करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त पर एक और सवाल उठाते हैं।
5: प्रकाश सर के साथ में बेंगलुरु गया था, वहां पर मैं स्टेज पर बहुत ही एक मिराकुलस चीज हुई, एक इट वाज, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा ये असलियत में कैसे हो सकता है। उस स्टेज पर मुझे ऐसे लोग मिले जो मरे हुए थे, राइट सर, मरे हुए लोग थे, मरे हुए लोग मेरे साथ खड़े हुए थे स्टेज पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, जिनको ज्ञानेश कुमार के इलेक्शन कमीशन ने डेट डिक्लेयर कर दिया था।
1: अब 16 अक्टूबर को क्या होगा, हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में सीजेपी के प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। मौसमी सिंह के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
0: जंतर मंतर को लेकर रण जारी है। आज सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने लोगों से अपील की कि तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में पहुंचे। वहीं दूसरी ओर नेहा बोरा के बयान पर हंगामा बरपा है।
6: विपक्ष के विरोध प्रदर्शन की पोस्टर गर्ल बन गई नेहा बोरा है। बारह अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के साथ आगे आगे दिख रही थी। 13 अक्टूबर को राहुल गांधी के यहाँ टी पार्टी में भी राहुल के साथ दिखी, लेकिन अब नेहा बोरा ने जो कहा है उसने सियासी तूफान ला दिया है।
7: And we know that the Gen Z movement that we are seeing everywhere in this country first started in Bangladesh. And congratulations to you for showing us the way, for showing us and extending solidarity to the young people of this country. We know that the movement that began in Bangladesh was for democratic and voter rights. Today, the movement that the young people are participating in and leading is also a movement for democratic and voting rights. We know that the fight that you fight against religious fundamentalism in your country is also a fight that the Gen Z and the young people of this country fight today.
6: तो नेहा बोरा बता रही हैं कि 2024 में बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार गिराने के लिए हुए प्रदर्शनों से भारत के युवाओं को प्रेरणा मिली है और वो सरकार के खिलाफ तनकर खड़े हुए हैं। अब नेहा बोरा के बयान पर बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है।
8: बांग्लादेश में हुआ क्या था, एक ग्रुप ऑफ इस्लामिस्ट ने भीड़ के सहारे, अराजकता के सहारे पूरे के पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने का प्रयास किया। उनका मकसद रेजिम चेंज था। मतलब आज ये साबित हो चुका है कि राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम भारत में लोकतंत्र को तहस नहस करने की एक साजिश रच रहे हैं।
6: अकेले नेहा बोरा ही नहीं, राहुल गांधी के साथ प्रदर्शन में शामिल प्रशांत भूषण भी ऐसा बयान दे रहे हैं जो सियासी आप को और हवा दे रहा है। भूषण ने कहा कि ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन की है। इधर अभिजीत दीपके बार बार अपील कर रहे हैं कि कल शाम 5 बजे वो कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा रैली करेंगे, इसमें लोग शामिल हों।
9: जैसे कि आप लोगों को पता है, सौरभ और आशु को बस तिरंगा लहराने के लिए जेल में डाला गया है। तो मैं सभी देशभक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग तिरंगे से प्यार करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 16 अक्टूबर को शाम को 5 बजे आप सब सेंट्रल पार्क कैनॉट प्लेस में आइए तिरंगे के साथ। वहां पर हम अपना तिरंगा लहराएंगे और हम बता देंगे कि वेविंग अ तिरंगा इज नॉट अ क्राइम।
6: एनएसयूआई पहले ही आरोप लगा चुकी है कि प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें पीटा। अब दिल्ली पुलिस ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों पर हमला करने का केस दर्ज किया है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन एनएसयूआई बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार की जंग जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी का चुनाव सीएम योगी की हैट्रिक या फिर अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी का चुनाव है। दोनों ही नेताओं ने चुनावी दंगल में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। दोनों ही नेताओं ने चैलेंज पॉलिटिक्स को लेकर जुबानी युद्ध शुरू कर दिया।

0: योगी और अखिलेश की जुबानी टक्कर।
1: उन्हें यही फैसला लेना चाहिए, उनके बीच में अगला चुनाव लड़ना चाहिए।
0: वार और परखवार, सियासत है धुआंधार।
2: पीडीए पीडीए चिल्लाते थे ये राज्यसभा के टिकट में, वो पीडीए कहाँ चला गया था।
0: 403 सीटों की लड़ाई, चुनावी पारा है हाई। 2027 का चुनाव, हर दिन नए नए दाम।
3: और जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं।
4: आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं। लड़ाई चेलों से क्यों, लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए।
0: विधानसभा चुनाव से पहले 10 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव को योगी और अखिलेश की अग्नि परीक्षा से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन चुनावी लड़ाई में 3 के बजाय 2 उम्मीदवार उतारकर अखिलेश पहले राउंड में पिछड़ गए। दूसरे राउंड में अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया, ऐलान किया कि सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं। योगी ने नहले पर दहला चला, चुनौती स्वीकार कर ऐलान किया कि अयोध्या में सीधा मुकाबला उनके और अखिलेश यादव के बीच होना चाहिए और वो तैयार हैं। वहाँ भी अखिलेश यादव का सियासी दांव उल्टा पड़ा, लिहाजा अखिलेश को डैमेज कंट्रोल का गियर लगाना पड़ा। ऐसे में 2027 की लड़ाई को लेकर सियासी पारा हाई है। सवाल यही है कि 2027 में योगी के सिर फिर सजेगा ताज या फिर 10 साल के बाद अखिलेश की सत्ता में वापसी होगी।
3: लेकिन जन आक्रोश के सामने भारतीय जनता पार्टी नहीं चलेगी। बाई इलेक्शन में तो 420 ही चल सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 403 में 420 ही नहीं चलने देंगे। पीडी के लोग डट करके मुकाबला करने काम करेंगे और भाजपाई हारेंगे भी और भागेंगे भी इस बार।
5: उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के चुनाव ने बता दिया है कि विधानसभा का चुनाव परिणाम क्या होने जा रहा है। ये लड़ाई 80-20 की फिर आ गई है, 80% एनडीए में और 20% पीडीए में, और पीडीए का क्या हाल होने वाला है यह आपके सामने फिर आने वाला है।
0: बीते दिन समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए, तो 24 घंटों के अंदर समाजवादी पार्टी के कुनबे में कई नेताओं को शामिल किया गया, जिसमें कई बीजेपी छोड़कर साइकिल पर सवार हुए हैं। मतलब सिर्फ जुबानी जंग नहीं बल्कि हर मोर्चे पर सीधी टक्कर जारी है।
3: वो हारने जा रहे हैं, वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए प्रहरी पीडीए समाज जुड़ गया है। ये लोग पीड़ा दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, और वहीं प्रेम दया का अपनापन का समाजवादी पार्टी लोगों को जोड़ने का काम कर रही है।
4: अगर इनका वास्तविक चेहरा देखना हो तो अभी राज्यसभा में आपने देखा होगा, ये पीडीए पीडीए पीडीए चिल्ला रहे थे। पूछो तो राज्यसभा में इनको प्रत्याशी बनाने थे तो एक अपने चचा जान को बना दिए और दूसरा मुंबई के धन्ना सेठ को बना दिए। एक भी दलित नहीं, एक भी वंचित नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, एक भी फॉरवर्ड नहीं, कोई मतलब नहीं। अरे चलो इन पे विश्वास नहीं था तो कम से कम मुसलमानों को ही बना देते प्रत्याशी, लेकिन नहीं बनाया उनको भी।
0: अखिलेश ने पीडीए के फॉर्मूले से 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को पछाड़ा था। इसी चुनावी मंत्र पर अखिलेश 2027 में जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो वहीं अखिलेश के पीडीए पर तंज करते हुए सीएम योगी ने इसे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करार दिया। चाहे अखिलेश हो या फिर योगी, दोनों अपनी अपनी जीत की भविष्यवाणी करने में पीछे नहीं है।
3: इधर देखने को मिल रहा है कि जब जनता में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, भारतीय जनता पार्टी जब जनता के बीच में कमजोर होती दिख रही है, उस समय वो इलेक्शन कमीशन के पीछे छिप जा रही है और इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के इस भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को और भारत के नागरिकों को धोखा दे रहे हैं।
5: आश्चर्य है कि चुनाव जीते तो इनका पुरुषार्थ और हारे तो ईवीएम दोषी। इलेक्शन कमीशन दोषी।
0: हर दिन यूपी के सियासी दंगल में योगी और अखिलेश के बीच वार पलटवार का खेल जारी है। अखिलेश राम मंदिर में दान की चोरी को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरते हैं तो योगी राम भक्तों को अखिलेश से सावधान रहने की सलाह देते हुए नजर आते हैं।
3: देखिए धर्म अधर्म, अधर्मी कौन है वो हारेगा, झूठ बोलने वाले हारेंगे, जनता को दुख देने वाले हारेंगे और जिन्होंने करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु करोड़ों श्रद्धालुओं का चढ़ावा रामधन की चोरी की वो हारेंगे, भगवान स्वयं हरवाएंगे उन्हें।
4: रामद्रोही इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? याद करिए, ये रामद्रोही इसको स्वीकार कर ही नहीं सकते और इसलिए वे कुछ न कुछ युक्ति जरूर निकाल करके अयोध्या को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, कोई कोर कसर नहीं छोड़ते।
0: योगी ने राम मंदिर के नाम पर धर्म याद दिलाया तो अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी का धर्म। वहीं योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताते हैं, लेकिन अखिलेश यूपी की कानून व्यवस्था पर उठे सवालों से पलटवार करते हैं।
5: क्या माफिया जिस जमीन पे पैर रख लिया वह तीक की हो गई, अशरफ की हो गई, और अब जिस जमीन पर सरकार ने कहा कि ये माफिया की नहीं, ये गरीब के लिए आसियाना बनना है, तो माफिया की सिट्टी पिट्टी गम वहां पे बहुमंजिला आवासीय सुविधा उपलब्ध करवा करके हम गरीब के लिए मकानों की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं।
3: यूपी सरकार कस्टोडियल डेथ में नंबर वन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन से सबसे ज्यादा यूपी सरकार को नोटिसेस मिले हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कई ऑब्जर्वेशंस में कहा कि यहां की पुलिस पॉलिटिकल काम कर रही है, यहां की पुलिस प्रशासन न्याय नहीं दे रहा है, और यहां तक कहा कि पुलिस को क्या खत्म कर दिया जाए। सोचिए, पुलिस को भंग कर दिया जाए, विभाग ही खत्म किया जाए क्या?
0: मतलब साफ है कि यूपी चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे कानून व्यवस्था, अयोध्या, वोट चोरी और तुष्टीकरण के मुद्दों पर जुबानी तकरार और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। देखना यही है कि यूपी के वोटरों पर ये मुद्दे कितना असर डालते हैं। दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे हैं, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा।
6: और अब खबर अंकिता भंडारी मर्डर केस की, जिसे लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाए जाने का परिवार विरोध कर रहा है तो कांग्रेस भी

0: इंडिया गेट देर रात एक बार फिर हंगामे का गवाह बना, जहां अंकिता भंडारी के माता पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अंकिता भंडारी का परिवार दुष्यंत कुमार का सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने के विरोध में इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने पहुंचा था। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत कांग्रेस के कई नेता माता पिता से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन देर रात इंडिया गेट पर प्रशासन परिवार को हटाने पहुंचा, जहां माता पिता के अलावा कई कांग्रेसी नेता हिरासत में लिए गए। प्रशासन के एक्शन पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, सुबह के 4 बजे जब दुनिया सो रही थी तब अंकिता भंडारी के माता पिता को हिरासत में ले लिया गया। जिस जांच का नतीजा आया नहीं, उसके पहले ही नियुक्ति की जल्दी और सवाल पूछने वाले माँ बाप को रात के अंधेरे में उठा लिया गया। इस सरकार की पहचान यही है, पीड़ितों की आवाज दबा दो, सवाल करने वालों को हटा दो। उधर अंकिता भंडारी को लेकर हंगामे की एक तस्वीर देहरादून में भी नजर आई।
1: कांग्रेस कार्यकर्ता अचानक राज्यपाल निवास पर पहुंच गए हैं। ये राज्यपाल आवास है, राजभवन है, जिसे लोक भवन भी कहा जाता है। और देखिए किस तरह से गेट को खोलने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता इस गेट को भेद कर राज्यपाल से मिलने जाना चाहते हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। हरक सिंह को देखिए पुलिस डिटेन कर रही है यहाँ पर, और पुलिस डिटेन करने की कोशिश कर रही है, और गणेश गोदयाल यहाँ गिर गए हैं। देखा जा सकता है कि किस तरह से कांग्रेस पूरे आक्रामक तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की जारी है।
2: राज्यपाल को क्या मांग करने के लिए कि दुष्यंत गौतम के इस्तीफे की मांग, अजय गोदयाल की मांग को लेकर हम ज्ञापन देने के लिए आए थे। चार दिन से राज्यपाल के उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के सम्मान का सवाल है, उत्तराखंड की बेटियों का सम्मान है।
0: बीजेपी कांग्रेस पर मामले में सियासत करने का आरोप लगा रही है।
3: जब पुलिस के किसी पेपर में कहीं नाम नहीं है, केवल ऑपोजिशन इस नाम को उठा रही है।
4: उनके पेरेंट्स ने कहा सीबीआई जांच कराओ तो सीबीआई जांच हो गई, तो आखिरकार भाई वो जांच में जांच को होने देना, जांच में क्या आया है उसको जाने बगैर सारी बातें कह देना, पूरी तरीके से जो है वो पॉलिटिकल खेल रहे हैं। और राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, किसी की छवि बेवजह जो है धूमिल की जा रही है।
0: अंकिता भंडारी की मौत में बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम के शामिल होने को लेकर विपक्ष और परिवार की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सीबीआई की जांच पूरी होने से पहले ही दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का गवर्नर बना दिया गया, जिसके विरोध में अंकिता का परिवार दिल्ली पहुंचा।
5: किस बेस पे उन्होंने उस आदमी को राज्यपाल बनाया?
6: जो आशाएं लगी थी वो कुछ नहीं हुई, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे।
5: मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक उनकी सीबीआई जांच नहीं हो जाती, उनको राज्यपाल घोषित न किया जाए।
0: उत्तराखंड में चुनाव से पहले दुष्यंत कुमार गौतम के राज्यपाल बनने के बाद एक बार फिर अंकिता भंडारी का मुद्दा अब बढ़ता नजर आ रहा है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
7: शिवा शर्मा मामले में जांच का दायरा बढ़ रहा है। इसमें खुलासा हुआ कि आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे नेपाल भाग चुकी है, उसके साथ उसकी बहन और अन्य आरोपी भी फरार हैं। सभी का पुलिस इनकी तलाश कर रही है, लेकिन एक वीडियो भी आया है जिसमें अपने आप को श्रद्धा बेगुनाह बताती है।
8: जी वही तस्वीर है जो श्रद्धा दुबे के नेपाल भाग जाने का पुख्ता प्रमाण है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर नेपाल के माहिम नगर की है। श्रद्धा अपनी बहन रश्मि दुबे और दोस्त आदिल रोड क्रॉस कर बस स्टेशन के भीतर जाते दिखे हैं। पुलिस सूत्रों का मानना है कि श्रद्धा का नेटवर्क काफी मजबूत है और उसे पुलिस की हर मूवमेंट की इनसाइड जानकारी समय से पहले मिल रही है। पुलिस से भाग रही श्रद्धा दुबे अब कह रही है कि वो पुलिस की जांच में सहयोग करना चाह रही है।
9: मैं कहीं गायब नहीं हूँ, मैं पुलिस में आके बयान देना चाहती हूँ, मैं उन्हें सब कुछ सच सच जो कुछ भी है मैं उन्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ।
8: एक तरफ श्रद्धा दुबे वीडियो जारी कर पुलिस के सामने आने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ उसकी एसयूवी मिलने की खबर ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा के पास पार्किंग में श्रद्धा की एसयूवी कार मिली है। जानकारी के मुताबिक यूपी 32QQ0111 ये गाड़ी 10 अक्टूबर से पार्किंग में खड़ी थी। श्रद्धा गाड़ी पार्क करने के बाद नेपाल जाने की बात कहकर वहां से निकली थी, और अब नेपाल से आई ये तस्वीर काफी कुछ बयान कर रही है। कारोबारी शिवा शर्मा की मौत से उठे सवालों को लेकर पहली बार

0: बार मॉडल श्रद्धा दुबे का वीडियो सामने आया है। शिवा शर्मा की मौत के बाद उठे सवालों पर सुनिए श्रद्धा दुबे का ये बयान।
1: वो हत्या नहीं थी, वो एक सुसाइड था, ठीक है। मैंने अपनी आंखों से देखा उसको कूदते हुए, ठीक। अगर वहां के सीसीटीवी कैमरेज निकलेंगे, सब कुछ निकलेगा, तो उसमें दिखेगा कि वो किस तरह से कूद रहा है।
0: शिवा की मां ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें मुख्य आरोपी श्रद्धा है, साथ में श्रद्धा की बहन रश्मि दुबे भी आरोपी बनाई गई है। नेपाल से आई तस्वीर में रश्मि भी साथ दिखी है। शिवा की मां ने आरोप लगाए हैं कि श्रद्धा उनके बेटे को लगातार धमकाती थी और टॉर्चर करती थी,
2: डेली बांध के और थ्रेटन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करती थी, जिसके बाइट्स अक्सर उनके बॉडी पे होते थे। निशान पूछने पे वो ये कहते थे कि चोट लग गई है, गिर गया हूँ।
0: लखनऊ पुलिस ने मामले में जांच तेज कर दी है ताकि करोड़पति कारोबारी की मौत की असल वजह साफ हो सके। बहराइच से रामवरण चौधरी और लखनऊ से अंकित मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
3: और अब खबर आमिर खान के भांजे और कई फिल्मों में एक्टिंग करने वाले इमरान खान की, जिन्हें मुंबई पुलिस ने भारत छोड़ने का नोटिस दे दिया है। इमरान को डेडलाइन बता दी गई है, 28 अक्टूबर तक देश छोड़ दीजिए।
4: अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस नोटिस का मसौदा साफ है। पुलिस ने दो टूक कह दिया है कि इमरान खान भारत छोड़ दें। मुंबई पुलिस ने एक्टर आमिर खान के भांजे को ये नोटिस थमाया है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को ऐसा फरमान जारी करना पड़ा। दरअसल ये पूरा मामला 10 अक्टूबर 2026 का है, जब मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था। इस प्रदर्शन में सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। इमरान खान भी उस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया था। इस बात से बीजेपी नाराज हो गई। पार्टी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस से इसकी शिकायत कर दी। दरअसल इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं है, वो अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं। उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा है। बीजेपी की शिकायत थी कि ऐसे लोग देश के अंदरूनी प्रोटेस्ट में कैसे शामिल हो सकते हैं।
5: किरीट सोमैया ने कहा था कि इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और वो भारत में हो रहे आंदोलन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने लगातार इसकी शिकायत मुंबई पुलिस से की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए इमिग्रेशन एक्ट के तहत इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के निर्देश मुंबई पुलिस द्वारा दिए गए हैं।
4: उसी मामले में संबंधित आव्रजन कानूनों के तहत कार्रवाई की गई है। मुंबई पुलिस के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की ओर से नोटिस जारी किया गया है।
6: इमरान खान के खिलाफ मैंने शिकायत दी थी, इमरान खान को 28 अक्टूबर तक हिंदुस्तान छोड़ना है। ऐसे जो भी होंगे, इमरान होंगे, इकबाल होंगे, यूसुफ होगा, अब्दुल होगा, जो विदेशी नागरिक, विदेशी पैसा, उनके ऊपर ऐसी ही कार्रवाई होगी।
4: OCI कार्ड धारक भारतीय मूल के विदेशी नागरिक होते हैं, जिन्हें भारत में रहने और कई अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता है, लेकिन OCI का दर्जा भारतीय नागरिकता के समान नहीं है। उसके साथ कुछ कानूनी प्रतिबंध भी जुड़े होते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इमरान खान मुंबई पुलिस के नोटिस पर क्या कदम उठाते हैं। दीपेश त्रिपाठी, आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: और विपक्ष में जारी है राजनीतिक घमासान। ज्ञानेश के खिलाफ राहुल की मोर्चाबंदी जारी। पार्टी नेताओं के साथ इंदिरा भवन में बैठक। बीजेपी का आरोप, विदेशी हाथों में खेल रहे हैं राहुल। अंकिता के परिजनों से मुलाकात के बाद राहुल ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। दुष्यंत गौतम की नियुक्ति पर उठाए सवाल, कहा सरकार के निर्णय से स्तब्ध हूं। दिल्ली में प्रदर्शन के पहले दीपके का केंद्र पर हमला, कहा एक देश एक पार्टी इनका उद्देश्य। प्रशांत भूषण बोले सत्ता परिवर्तन के लिए हमारी लड़ाई। पंचायत आज तक राजस्थान में बोले मुख्यमंत्री भजन लाल, तेजी से विकास कर रही है डबल इंजन की सरकार। पेपर लीक को किया सील, ड्रग तस्करों पर कार्रवाई। प्रयागराज में योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा माफिया के सामने घुटने टेक मौन रहती थी समाजवादी सरकार, अब माफिया मुक्त हो गया यूपी। हमारे देश में चुनाव आयोग के खिलाफ शुरू हुआ राजनीतिक आंदोलन अब अदालतों में भी चल रहा है। आज तीन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर यह जवाब मांगा। पहला नोटिस राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं के अलावा तीन और अर्जियों पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को जारी हुआ। राहुल गांधी ने फिर से टी पार्टी करके कल अपनी आगे की रणनीति बनाई।
1: तेरह अक्टूबर के बाद राहुल गांधी की आज फिर से टी पार्टी हुई, फिर से चुनाव आयोग के खिलाफ जुटान हुआ और फिर से आगे की रणनीति पर बात हुई। चुनाव आयोग के खिलाफ छिड़ी सियासी लड़ाई जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो वहां जंग के चार तरह के मोर्चे नजर आए। पहला मामला चुनाव आयोग और SIR वाला था, दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक राहुल गांधी के मार्च का था, तीसरा मामला जंतर मंतर से प्रदर्शन स्थल हटाने का था, चौथा मामला महिला पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों से बदसलूकी का था, जिसमें से तीन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। पहला नोटिस राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं के अलावा तीन और अर्जियों पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग और दोनों चुनाव आयुक्तों को जारी हुआ और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि हम अगली सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं में से एक से उसके आचरण के बारे में पूछना चाहेंगे। नोटिस जारी करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी बात की निंदा कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं में से एक के संबंध में नोटिस को फिलहाल अस्थायी तौर पर स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते वो अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण दें। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन करने पहुंचे राहुल, खड़गे, अखिलेश, महुआ मोइत्रा समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं को नोटिस देकर जवाब मांगा है।
2: भारत की न्यायपालिका सबसे ज्यादा मजबूत, निष्पक्ष और जनता इस पे विश्वास करती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसको डराने का प्रयास, क्या हजारों समर्थकों की भीड़ लेकर सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में जाना, नारेबाजी करना, हुड़दंग करना, ये क्या था?
1: जंतर मंतर से प्रदर्शन स्थल हटाने के मामले में भी सरकार ने अदालत में बताया कि इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं। कमेटी ने पहले ही रिपोर्ट दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। आज तक ब्यूरो
0: खबर। CJP के प्लान 16 अक्टूबर यानी कि आज दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने के ऐलान की। अभिजीत दीपके के इस ऐलान के बाद NDMC ने 16 और 17 अक्टूबर यानी कि आज और कल सेंट्रल पार्क बंद करने का ऐलान कर दिया।
1: लेकिन CJP की कॉल के बाद कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से लेकर इर्द गिर्द सुरक्षा बढ़ा दी गई है, नए CCTV कैमरे लगाए गए हैं।
3: ये देखना होगा कि कल का जो कॉल है वो कांग्रेस जनता पार्टी कैसे ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करती है। हालांकि उन्होंने कहा है लोगों को इकट्ठा होने के लिए, लेकिन जैसा हमने पहले देखा है वैसी कुछ तस्वीरें कल को भी देखने को मिल सकती हैं कि आसपास इतनी भारी संख्या में सिक्योरिटी तैनात होगी कि कोई भी यहाँ इकट्ठा, किसी का भी यहाँ इकट्ठा होना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा।
1: दीपके के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत भूषण ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। जी हाँ, प्रशांत भूषण ने कहा कि सिविल सोसाइटी और युवाओं के नेतृत्व में लोकतंत्र को बचाने और सरकार बदलने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी।
4: स्टूडेंट्स को और यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को ये श्रेय देते हैं और उनकी अगुवाही में ये लड़ाई लड़ी जाएगी, वो हमारे लीडर होंगे और उनकी अगुवाही में सारी सिविल सोसाइटी मिलकर, पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सब ये लड़ाई लड़ेंगी हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए और रेजिम चेंज के लिए। ये मैं आज खुले तौर पर कह रहा हूँ, यहाँ ये रेजिम चेंज की लड़ाई है और हम लोग रेजिम चेंज करा कर रहे हैं।
1: प्रशांत भूषण सरकार बदलने की बात कर रहे हैं तो दिपके ने ज्ञानेश कुमार पर अटैक करते हुए 2024 में लोकसभा चुनावों पर भी सवाल उठा दिया है।
5: 2024 में इंडिया अलायंस और एनडीए का जो मार्जिन था विक्ट्री और डिफीट का, दैट वाज जस्ट 2%। पिछले दो सालों में 13 करोड़ से ज्यादा वोट डिलीट हुए।
1: तो अभिजीत दिपके बेंगलुरु के मंच का जिक्र करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त पर एक और सवाल उठाते हैं।
5: प्रकाश सर के साथ में बेंगलुरु गया था, वहां पर मेरे स्टेज पर बहुत ही एक मिरेकुलस चीज हुई, एक इट वाज, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा ये असलियत में कैसे हो सकता है। उस स्टेज पर मुझे ऐसे लोग मिले जो मरे हुए थे, राइट सर, मरे हुए लोग थे, मरे हुए लोग मेरे साथ खड़े हुए थे स्टेज पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, जिनको ज्ञानेश कुमार के इलेक्शन कमीशन ने डेट डिक्लेयर कर दिया था।
1: अब 16 अक्टूबर को क्या होगा, हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में सीजेपी के प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। मौसमी सिंह के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
0: जंतर मंतर को लेकर रण जारी है। आज सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने लोगों से अपील की कि तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में पहुंचे, वहीं दूसरी ओर नेहा बोरा के बयान पर हंगामा बरपा है।
6: विपक्ष के विरोध प्रदर्शन की पोस्टर गर्ल बन गई नेहा बोरा है। बारह अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के साथ आगे आगे दिख रही थी। 13 अक्टूबर को राहुल गांधी के यहाँ टी पार्टी में भी राहुल के साथ दिखी, लेकिन अब नेहा बोरा ने जो कहा है उसने सियासी तूफान ला दिया है।
7: And we know that the Gen Z movement that we are seeing everywhere in this country first started in Bangladesh. And congratulations to you for showing us the way, for showing us and extending solidarity to the young people of this country. We know that the movement that began in Bangladesh was for democratic and voter rights. Today, the movement that the young people are participating in and leading is also a movement for democratic and voting rights. We know that the fight that you fight against religious fundamentalism in your country is also a fight that the Gen Z and the young people of this country fight today.
6: तो नेहा बोरा बता रही हैं कि 2024 में बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार गिराने के लिए हुए प्रदर्शनों से भारत के युवाओं को प्रेरणा मिली है और वो सरकार के खिलाफ तन कर खड़े हुए हैं। अब नेहा बोरा के बयान पर बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है।
8: बांग्लादेश में हुआ क्या था, एक ग्रुप ऑफ इस्लामिस्ट ने भीड़ के सहारे, अराजकता के सहारे पूरे के पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने का प्रयास किया। उनका मकसद रेजिम चेंज था। मतलब आज ये साबित हो चुका है कि राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम भारत में लोकतंत्र को तहस नहस करने की एक साजिश रच रहे हैं।
6: अकेले नेहा बोरा ही नहीं, राहुल गांधी के साथ प्रदर्शन में शामिल प्रशांत भूषण भी ऐसा बयान दे रहे हैं जो सियासी आप और हवा दे रहा है। भूषण ने कहा कि ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन की है। इधर अभिजीत दिपके बार बार अपील कर रहे हैं कि कल शाम 5 बजे वो कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा रैली करेंगे, इसमें लोग शामिल हों।
9: जैसे कि आप लोगों को पता है, सौरभ और आशु को बस तिरंगा लहराने के लिए जेल में डाला गया है। तो मैं सभी देशभक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग तिरंगे से प्यार करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 16 अक्टूबर को शाम को 5 बजे आप सब सेंट्रल पार्क कैनॉट प्लेस में आइए तिरंगे के साथ। वहां पर हम अपना तिरंगा लहराएंगे और हम बता देंगे कि वेविंग अ तिरंगा इज नॉट अ क्राइम।
6: एनएसयूआई पहले ही आरोप लगा चुकी है कि प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें पीटा। अब दिल्ली पुलिस ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों पर हमला करने का केस दर्ज किया है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन एनएसयूआई बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार की जंग जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी का चुनाव सीएम योगी की हैट्रिक या फिर अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी का चुनाव है। दोनों ही नेताओं ने चुनावी दंगल में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। दोनों ही नेताओं ने चैलेंज पॉलिटिक्स को लेकर जुबानी युद्ध शुरू कर दिया।

0: योगी और अखिलेश की जुबानी टक्कर।
1: उन्होंने यही फैसला लेना चाहिए, उनके बीच में अगला चुनाव लड़ना चाहिए।
0: वार और पलटवार, सियासत है धुआंधार।
2: पीडीए पीडीए चिल्लाते थे ये राज्यसभा के टिकट में, वो पीडीए कहाँ चला गया था।
0: 403 सीटों की लड़ाई, चुनावी पारा है हाई। 2027 का चुनाव, हर दिन नए नए दाम।
3: और जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं।
4: आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं। लड़ाई चेलों से क्यों, लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए।
0: विधानसभा चुनाव से पहले 10 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव को योगी और अखिलेश की अग्नि परीक्षा से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन चुनावी लड़ाई में 3 के बजाय 2 उम्मीदवार उतारकर अखिलेश पहले राउंड में पिछड़ गए। दूसरे राउंड में अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया, ऐलान किया कि सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं। योगी ने नहले पर दहला चला, चुनौती स्वीकार कर ऐलान किया कि अयोध्या में सीधा मुकाबला उनके और अखिलेश यादव के बीच होना चाहिए और वो तैयार हैं। वहां भी अखिलेश यादव का सियासी दांव उल्टा पड़ा, लिहाजा अखिलेश को डैमेज कंट्रोल का गियर लगाना पड़ा। ऐसे में 2027 की लड़ाई को लेकर सियासी पारा हाई है। सवाल यही है कि 2027 में योगी के सिर फिर सजेगा ताज या फिर 10 साल के बाद अखिलेश की सत्ता में वापसी होगी।
3: लेकिन जन आक्रोश के सामने भारतीय जनता पार्टी नहीं चलेगी। बाई इलेक्शन में तो 420 ही चल सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 403 में 420 ही नहीं चलने देंगे। पीडी के लोग डट करके मुकाबला करने काम करेंगे और भाजपा ही हारेंगे भी और भागेंगे भी इस बार।
5: उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के चुनाव ने बता दिया है कि विधानसभा का चुनाव परिणाम क्या होने जा रहा है। ये लड़ाई 80-20 की फिर आ गई है, 80% एनडीए में और 20% पीडीए में, और पीडीए का क्या हाल होने वाला है ये आपके सामने फिर आने वाला है।
0: बीते दिन समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए, तो 24 घंटों के अंदर समाजवादी पार्टी के कुनबे में कई नेताओं को शामिल किया गया, जिसमें कई बीजेपी छोड़कर साइकिल पर सवार हुए हैं। मतलब सिर्फ जुबानी जंग नहीं बल्कि हर मोर्चे पर सीधी टक्कर जारी है।
3: वो हारने जा रहे हैं, वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए प्रहरी पीडीए समाज जुड़ गया है। ये लोग पीड़ा दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, और वहीं प्रेम दया का अपनापन का समाजवादी पार्टी लोगों को जोड़ने का काम कर रही है।
4: अगर इनका वास्तविक चेहरा देखना हो तो अभी राज्यसभा में आपने देखा होगा, पीडीए पीडीए पीडीए चिल्ला रहे थे। पूछो तो राज्यसभा में इनको प्रत्याशी बनाने थे तो एक अपने चचा जान को बना दिए और दूसरा मुंबई के धन्ना सेठ को बना दिए। एक भी दलित नहीं, एक भी वंचित नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, एक भी फॉरवर्ड नहीं, कोई मतलब नहीं। अरे चलो इन पे विश्वास नहीं था तो कम से कम मुसलमानों को ही बना देते प्रत्याशी, लेकिन नहीं बनाया उनको भी।
0: अखिलेश ने पीडीए के फॉर्मूले से 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को पछाड़ा था। इसी चुनावी मंत्र पर अखिलेश 2027 में जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो वहीं अखिलेश के पीडीए पर तंज करते हुए सीएम योगी ने इसे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करार दिया। चाहे अखिलेश हो या फिर योगी, दोनों अपनी अपनी जीत की भविष्यवाणी करने में पीछे नहीं है।
3: इधर देखने को मिल रहा है कि जब जनता में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, भारतीय जनता पार्टी जब जनता के बीच में कमजोर होती दिख रही है उस समय वो इलेक्शन कमीशन के पीछे छिप जा रही है और इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के इस भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को और भारत के नागरिकों को धोखा दे रहे हैं।
5: आश्चर्य है कि चुनाव जीते तो इनका पुरुषार्थ और हारे तो ईवीएम दोषी। इलेक्शन कमीशन दोषी।
0: हर दिन यूपी के सियासी दंगल में योगी और अखिलेश के बीच वार पलटवार का खेल जारी है। अखिलेश राम मंदिर में दान की चोरी को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरते हैं तो योगी राम भक्तों को अखिलेश से सावधान रहने की सलाह देते हुए नजर आते हैं।
3: देखिए धर्म अधर्म, अधर्मी कौन है वो हारेगा, झूठ बोलने वाले हारेंगे, जनता को दुख देने वाले हारेंगे और जिन्होंने करोड़ों श्रद्धालुओं का चढ़ावा रामधन की चोरी की वो हारेंगे, भगवान स्वयं हरवाएंगे उन्हें।
4: रामद्रोही इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? याद करिए, ये रामद्रोही इसको स्वीकार कर ही नहीं सकते और इसलिए वे कुछ न कुछ युक्ति जरूर निकाल करके अयोध्या को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ते।
0: योगी ने राम मंदिर के नाम पर धर्म याद दिलाया तो अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी का धर्म। वहीं योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताते हैं, लेकिन अखिलेश यूपी की कानून व्यवस्था पर उठे सवालों से पलटवार करते हैं।
5: क्या माफिया जिस जमीन पे पैर रख लिया वह अतीक की हो गई, अशरफ की हो गई, और अब जिस जमीन पर सरकार ने कहा कि ये माफिया की नहीं, ये गरीब के लिए आसियाना बनना है, तो माफिया की सिट्टी पिट्टी गम वहां पे बहुमंजिला आवासीय सुविधा उपलब्ध करवा करके हम गरीब के लिए मकानों की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं।
3: यूपी सरकार कस्टोडियल डेथ में नंबर वन है।
6: और अब खबर अंकिता भंडारी मर्डर केस की, जिसे लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाए जाने का परिवार विरोध कर रहा है तो कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई है।
7: इंडिया गेट देर रात एक बार फिर हंगामे का गवाह बना, जहां अंकिता भंडारी के माता पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अंकिता भंडारी का परिवार दुष्यंत कुमार का सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने के विरोध में इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने पहुंचा था। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत कांग्रेस के कई नेता माता पिता से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन देर रात इंडिया गेट पर प्रशासन परिवार को हटाने पहुंचा, जहां माता पिता के अलावा कई कांग्रेसी नेता हिरासत में लिए गए। प्रशासन के एक्शन पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, सुबह के 4 बजे जब दुनिया सो रही थी तब अंकिता भंडारी के माता पिता को हिरासत में ले लिया गया। जिस जांच का नतीजा आया नहीं उसके पहले ही नियुक्ति की जल्दी और सवाल पूछने वाले माँ बाप को रात के अंधेरे में उठा लिया गया। इस सरकार की पहचान यही है, पीड़ितों की आवाज दबा दो, सवाल करने वालों को हटा दो। उधर अंकिता भंडारी को लेकर हंगामे की एक तस्वीर देहरादून में भी नजर आई।
8: कांग्रेस कार्यकर्ता अचानक राज्यपाल निवास पर पहुंच गए हैं। ये राज्यपाल आवास है, राजभवन है, जिसे लोक भवन भी कहा जाता है, और देखिए किस तरह से गेट को खोलने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता इस गेट को भेद कर राज्यपाल से मिलने जाना चाहते हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। हरक सिंह को देखिए पुलिस डिटेन कर रही है यहाँ पर, और पुलिस डिटेन करने की कोशिश कर रही है, और गणेश गोदयाल यहाँ गिर गए हैं। देखा जा सकता है कि किस तरह से कांग्रेस पूरे आक्रामक तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की जारी है।
9: राज्यपाल को क्या मांग देने दिला है कि दुष्यंत गौतम के इस्तीफे की मांग, अजय गोटानी की मांग को लेकर हम ज्ञापन देने के लिए आए थे। चार दिन से राज्यपाल को उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के सम्मान का सवाल है, उत्तराखंड की बेटियों का सम्मान है।
7: बीजेपी कांग्रेस पर मामले में सियासत करने का आरोप लगा रही है।
10: जब पुलिस के किसी पेपर में कहीं नाम नहीं है, केवल ऑपोजिशन इस नाम को उठा रही है।
11: उनके पेरेंट्स ने कहा सीबीआई जांच कराओ, तो सीबीआई जांच हो गई। तो आखिरकार भाई वो जांच में, जांच को होने देना, जांच में क्या आया है उसको जाने बगैर सारी बातें कह देना, पूरी तरीके से जो है वो पॉलिटिकल खेल रहे हैं और राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, किसी की छवि बेवजह जो है धूमिल की जा रही है।
7: अंकिता भंडारी की मौत में बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम के शामिल होने को लेकर विपक्ष और परिवार की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सीबीआई की जांच पूरी होने से पहले ही दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का गवर्नर बना दिया गया, जिसके विरोध में अंकिता का परिवार दिल्ली पहुंचा।
12: किस बेस पे उन्होंने उस आदमी को राज्यपाल बनाया? जब तक उनकी सीबीआई जांच नहीं हो जाती उनको राज्यपाल घोषित न किया जाए।
7: उत्तराखंड में चुनाव से पहले दुष्यंत कुमार गौतम के राज्यपाल बनने के बाद एक बार फिर अंकिता भंडारी का मुद्दा अब बढ़ता नजर आ रहा है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
6: शिवा शर्मा मामले में जांच का दायरा बढ़ रहा है। इसमें खुलासा हुआ कि आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे नेपाल भाग चुकी है, उसके साथ उसकी बहन और अन्य आरोपी भी फरार हैं। सभी का पुलिस इनकी तलाश कर रही है, लेकिन एक वीडियो भी आया जिसमें अपने आप को श्रद्धा बेगुनाह बताती है।
13: वही तस्वीर है जो श्रद्धा दुबे के नेपाल भाग जाने का पुख्ता प्रमाण है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर नेपाल के माहिम नगर की है। श्रद्धा अपनी बहन रश्मि दुबे और दोस्त आदिल रोड क्रॉस कर बस स्टेशन के भीतर जाते दिखे हैं। पुलिस सूत्रों का मानना है कि श्रद्धा का नेटवर्क काफी मजबूत है और उसे पुलिस की हर मूवमेंट की इनसाइड जानकारी समय से पहले मिल रही है। पुलिस से भाग रही श्रद्धा दुबे अब कह रही है कि वो पुलिस की जांच में सहयोग करना चाह रही है।
14: मैं कहीं गायब नहीं हूँ, मैं पुलिस में आके बयान देना चाहती हूँ, मैं उन्हें सब कुछ सच सच जो कुछ भी है मैं उन्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ।
13: एक तरफ श्रद्धा दुबे वीडियो जारी कर पुलिस के सामने आने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ उसकी एसयूवी मिलने की खबर ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा के पास पार्किंग में श्रद्धा की एसयूवी कार मिली है। जानकारी के मुताबिक यूपी 32 QQ0111 ये गाड़ी 10 अक्टूबर से पार्किंग में खड़ी थी। श्रद्धा गाड़ी पार्क करने के बाद नेपाल जाने की बात कहकर वहां से निकली थी और अब नेपाल से आई ये तस्वीर काफी कुछ बयान कर रही है। कारोबारी शिवा शर्मा की मौत से उठे सवालों को लेकर पहली बार मॉडल श्रद्धा दुबे का वीडियो सामने आया है। शिवा शर्मा की मौत के बाद उठे सवालों पर सुनिए श्रद्धा दुबे का ये बयान।
14: वो हत्या नहीं थी, वो एक सुसाइड था, ठीक है। मैंने अपनी आंखों से देखा उसको कूदते हुए, ठीक। अगर वहां के सीसीटीवी कैमरेज निकलेंगे, सब कुछ निकलेगा, तो उसमें दिखेगा कि वो किस तरह से कूद रहा है।
13: शिवा की मां ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें मुख्य आरोपी श्रद्धा है, साथ में श्रद्धा की बहन रश्मि दुबे भी आरोपी बनाई गई है। नेपाल से आई तस्वीर में रश्मि भी साथ दिखी है। शिवा की मां ने आरोप लगाए हैं कि श्रद्धा उनके बेटे को लगातार धमकाती थी और टॉर्चर करती थी,
15: डेली बांध के और थ्रेटन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करती थी, जिसके बाइट्स अक्सर उनके बॉडी पे होते थे। निशान पूछने पे वो ये कहते थे कि चोट लग गई है, गिर गया हूँ।
13: लखनऊ पुलिस ने मामले में जांच तेज कर दी है ताकि करोड़पति कारोबारी की मौत की असल वजह साफ हो सके। बहराइच से रामवरण चौधरी और लखनऊ से अंकित मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
6: और अब खबर आमिर खान के भांजे और कई फिल्मों में एक्टिंग करने वाले इमरान खान की, जिन्हें मुंबई पुलिस ने भारत छोड़ने का नोटिस दे दिया है। इमरान को डेडलाइन बता दी गई है, 28 अक्टूबर तक देश छोड़ दीजिए।
16: अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस नोटिस का मसौदा साफ है। पुलिस ने दो टूक कह दिया है कि इमरान खान भारत छोड़ दें। मुंबई पुलिस ने एक्टर आमिर खान के भांजे को ये नोटिस थमाया है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को ऐसा फरमान जारी करना पड़ा। दरअसल ये पूरा मामला 10 अक्टूबर 2026 का है, जब मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था। इस प्रदर्शन में सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। इमरान खान भी उस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया था। इस बात से बीजेपी नाराज हो गई। पार्टी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस से इसकी शिकायत कर दी। दरअसल इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं है, वो अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं। उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा है। बीजेपी की शिकायत थी कि ऐसे लोग देश के अंदरूनी प्रोटेस्ट में कैसे शामिल हो सकते हैं।
17: किरीट सोमैया ने कहा था कि इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और वो भारत में हो रहे आंदोलन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने लगातार इसकी शिकायत मुंबई पुलिस से की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए इमिग्रेशन एक्ट के तहत इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के निर्देश मुंबई पुलिस द्वारा दिए गए हैं।
16: उसी मामले में संबंधित आव्रजन कानूनों के तहत कार्रवाई की गई है। मुंबई पुलिस के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की ओर से नोटिस जारी किया गया है।
18: इमरान खान के खिलाफ मैंने शिकायत दी थी, इमरान खान को 28 अक्टूबर तक हिंदुस्तान छोड़ना है। ऐसे जो भी होंगे, इमरान होंगे, इकबाल होंगे, यूसुफ होगा, अब्दुल होगा, जो विदेशी नागरिक, विदेशी पैसा, उनके ऊपर ऐसी ही कार्रवाई होगी।
16: OCI कार्ड धारक भारतीय मूल के विदेशी नागरिक होते हैं, जिन्हें भारत में रहने और कई अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता है, लेकिन OCI का दर्जा भारतीय नागरिकता के समान नहीं है। उसके साथ कुछ कानूनी प्रतिबंध भी जुड़े होते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इमरान खान मुंबई पुलिस के नोटिस पर क्या कदम उठाते हैं। दीपेश त्रिपाठी, आज तक।
6: कश्मीर में मौसम लगातार बदल रहा है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी से सफेद परत दिखाई देने लगी। ऊंचे पहाड़ों, खुले मैदानों पर गिरी बर्फ से इलाका पूरी तरह से ढक गया। बर्फबारी के साथ ही घाटी में सर्द मौसम की शुरुआत का एहसास होने लगा।
16: ये तस्वीरें हैं उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा स्थित गुरेज की तुलैल घाटी की है, जहाँ सीजन की पहली बर्फबारी ने दस्तक दी है। बर्फबारी के बाद घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ तुलैल के मैदानी हिस्सों में बर्फ की सफेद परत दिखाई देने लगी। बर्फबारी के साथ ही यहां मौसम का मिजाज बदल गया है और खूबसूरत वादियों ने सर्दियों की आहट का एहसास कराना शुरू कर दिया है।
19: हर जगह पर जबरदस्त बर्फबारी रात के बीच हुई है, जिससे तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। अगर श्रीनगर की बात की जाए तो दिन का अधिकतम तापमान 15 डिग्री रहने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटों के दौरान कश्मीर में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा।
16: भारी बर्फबारी का असर सड़क के रास्ते पर भी पड़ा है। पुंछ और राजौरी को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाले मुगल रोड पर पीर की गली के पास बर्फ जमा होने से आवाजाही बंद हो गई है। सड़क से बर्फ हटाने और रास्ते को साफ करने के लिए मशीनें चलाई जा रही हैं। अक्टूबर का अभी आधा महीना ही गुजरा है और कश्मीर के कई इलाकों में पारा शून्य तक लुढ़क चुका है, जबकि श्रीनगर में भी तापमान 15 डिग्री तक गिरा है। लेकिन बदलते मौसम में भी यहां पहुंचे पर्यटकों में गजब का उत्साह है।
20: बहुत बहुत अमेजिंग, सबको आना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगी, इंडिया में, वर्ल्ड में सबको आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है।
16: अब आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। अशरफ वानी, मीर फरीद के साथ एजाज डार, श्रीनगर, आज तक।
6: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: बीजेपी और विपक्ष में जारी है राजनीतिक घमासान। ज्ञानेश के खिलाफ राहुल की मोर्चाबंदी जारी। पार्टी नेताओं के साथ इंदिरा भवन में बैठक। बीजेपी का आरोप, विदेशी हाथों में खेल रहे हैं राहुल। अंकिता के परिजनों से मुलाकात के बाद राहुल ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। दुष्यंत गौतम की नियुक्ति पर उठाए सवाल, कहा सरकार के निर्णय से स्तब्ध हूं। दिल्ली में प्रदर्शन के पहले दीपके का केंद्र पर हमला, कहा एक देश एक पार्टी इनका उद्देश्य। प्रशांत भूषण बोले सत्ता परिवर्तन के लिए हमारी लड़ाई। पंचायत आज तक राजस्थान में बोले मुख्यमंत्री भजन लाल, तेजी से विकास कर रही है डबल इंजन की सरकार। पेपर लीक को किया सील, ड्रग तस्करों पर कार्रवाई। प्रयागराज में योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा माफिया के सामने घुटने टेक मौन रहती थी समाजवादी सरकार, अब माफिया मुक्त हो गया यूपी। हमारे देश में चुनाव आयोग के खिलाफ शुरू हुआ राजनीतिक आंदोलन अब अदालतों में भी चल रहा है। आज तीन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर यह जवाब मांगा। पहला नोटिस राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं के अलावा तीन और अर्जियों पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को जारी हुआ। राहुल गांधी ने फिर से टी पार्टी करके कल अपनी आगे की रणनीति बनाई।
1: तेरह अक्टूबर के बाद राहुल गांधी की आज फिर से टी पार्टी हुई, फिर से चुनाव आयोग के खिलाफ जुटान हुआ और फिर से आगे की रणनीति पर बात हुई। चुनाव आयोग के खिलाफ छिड़ी सियासी लड़ाई जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, तो वहां जंग के चार तरह के मोर्चे नजर आए। पहला मामला चुनाव आयोग और SIR वाला था, दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक राहुल गांधी के मार्च का था, तीसरा मामला जंतर मंतर से प्रदर्शन स्थल हटाने का था, चौथा मामला महिला पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों से बदसलूकी का था, जिसमें से तीन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। पहला नोटिस राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं के अलावा तीन और अर्जियों पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग और दोनों चुनाव आयुक्तों को जारी हुआ और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि हम अगली सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं में से एक से उसके आचरण के बारे में पूछना चाहेंगे। नोटिस जारी करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी बात की निंदा कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं में से एक के संबंध में नोटिस को फिलहाल अस्थायी तौर पर स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते वो अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण दें। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन करने पहुंचे राहुल, खड़गे, अखिलेश, महुआ मोइत्रा समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं को नोटिस देकर जवाब मांगा है।
2: भारत की न्यायपालिका सबसे ज्यादा मजबूत, निष्पक्ष, न्यायालय के प्रांगण निष्पक्ष और जनता इस पे विश्वास करती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसको डराने का प्रयास, क्या हजारों समर्थकों की भीड़ लेकर सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में जाना, नारेबाजी करना, हुड़दंग करना, ये क्या था?
1: जंतर मंतर से प्रदर्शन स्थल हटाने के मामले में भी सरकार ने अदालत में बताया कि इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं। कमेटी ने पहले ही रिपोर्ट दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। आज तक ब्यूरो
0: खबर। CJP के प्लान 16 अक्टूबर यानी कि आज दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने के ऐलान की। अभिजीत दीपके के इस ऐलान के बाद NDMC ने 16 और 17 अक्टूबर यानी कि आज और कल सेंट्रल पार्क बंद करने का ऐलान कर दिया।
1: लेकिन CJP की कॉल के बाद कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से लेकर इर्द गिर्द सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नए CCTV कैमरे लगाए गए हैं।
3: ये देखना होगा कि कल का जो कॉल है वो कांग्रेस जनता पार्टी कैसे ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करती है। हालांकि उन्होंने कहा है लोगों को इकट्ठा होने के लिए, लेकिन जैसा हमने पहले देखा है वैसी कुछ तस्वीरें कल को भी देखने को मिल सकती हैं कि आसपास इतनी भारी संख्या में सिक्योरिटी तैनात होगी कि कोई भी यहाँ इकट्ठा, किसी का भी यहाँ इकट्ठा होना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा।
1: दीपके के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत भूषण ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। जी हाँ, प्रशांत भूषण ने कहा कि सिविल सोसाइटी और युवाओं के नेतृत्व में लोकतंत्र को बचाने और सरकार बदलने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी।
4: स्टूडेंट्स को और यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ये श्रेय देते हैं और उनकी अगुवाही में ये लड़ाई लड़ी जाएगी। वो हमारे लीडर होंगे और उनकी अगुवाही में सारी सिविल सोसाइटी मिलकर, पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सब ये लड़ाई लड़ेंगी हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए और रेजिम चेंज के लिए। ये मैं आज खुले तौर पर कह रहा हूँ, यहाँ ये रेजिम चेंज की लड़ाई है और हम लोग रेजिम चेंज करा कर रहे हैं।
1: प्रशांत भूषण सरकार बदलने की बात कर रहे हैं तो दीपके ने ज्ञानेश कुमार पर अटैक करते हुए 2024 में लोकसभा चुनावों पर भी सवाल उठा दिया है।
5: 2024 में इंडिया अलायंस और एनडीए का जो मार्जिन था विक्ट्री और डिफीट का, दैट वाज जस्ट टू परसेंट। पिछले दो सालों में 13 करोड़ से ज्यादा वोट डिलीट हुए।
1: तो अभिजीत दीपके बेंगलुरु के मंच का जिक्र करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त पर एक और सवाल उठाते हैं।
5: प्रकाश सर के साथ में बेंगलुरु गया था, वहां पर मेन स्टेज पर बहुत ही एक मिरेकुलस चीज हुई, एक इट वाज, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा ये असलियत में कैसे हो सकता है। उस स्टेज पर मुझे ऐसे लोग मिले जो मरे हुए थे, राइट सर, मरे हुए लोग थे। मरे हुए लोग मेरे साथ खड़े हुए थे स्टेज पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, जिनको ज्ञानेश कुमार के इलेक्शन कमीशन ने डेट डिक्लेयर कर दिया था।
1: अब 16 अक्टूबर को क्या होगा, हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में सीजेपी के प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। मौसमी सिंह के साथ अंशु सिंह, दिल्ली आज तक।
0: जंतर मंतर को लेकर रण जारी है। आज सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने लोगों से अपील की कि तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में पहुंचे। वहीं दूसरी ओर नेहा बोरा के बयान पर हंगामा बरपा है।
6: विपक्ष के विरोध प्रदर्शन की पोस्टर गर्ल बन गई नेहा बोरा है। बारह अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के साथ आगे आगे दिख रही थी। 13 अक्टूबर को राहुल गांधी के यहाँ टी पार्टी में भी राहुल के साथ दिखी, लेकिन अब नेहा बोरा ने जो कहा है उसने सियासी तूफान ला दिया है।
7: And we know that the Gen Z movement that we are seeing everywhere in this country first started in Bangladesh. And congratulations to you for showing us the way, for showing us and extending solidarity to the young people of this country. We know that the movement that began in Bangladesh was for democratic and voter rights. Today, the movement that the young people are participating in and leading is also a movement for democratic and voting rights. We know that the fight that you fight against religious fundamentalism in your country is also a fight that the Gen Z and the young people of this country fight today.
6: तो नेहा बोरा बता रही हैं कि 2024 में बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार गिराने के लिए हुए प्रदर्शनों से भारत के युवाओं को प्रेरणा मिली है और वो सरकार के खिलाफ तन कर खड़े हुए हैं। अब नेहा बोरा के बयान पर बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है।
8: बांग्लादेश में हुआ क्या था, एक ग्रुप ऑफ इस्लामिस्ट ने भीड़ के सहारे, अराजकता के सहारे पूरे के पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने का प्रयास किया। उनका मकसद रेजिम चेंज था। मतलब आज ये साबित हो चुका है कि राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम भारत में लोकतंत्र को तहस नहस करने की एक साजिश रच रहे हैं।
6: अकेले नेहा बोरा ही नहीं, राहुल गांधी के साथ प्रदर्शन में शामिल प्रशांत भूषण भी ऐसा बयान दे रहे हैं जो सियासी आप को और हवा दे रहा है। भूषण ने कहा कि ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन की है। इधर अभिजीत दीपके बार बार अपील कर रहे हैं कि कल शाम 5 बजे वो कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा रैली करेंगे, इसमें लोग शामिल हों।
9: जैसे कि आप लोगों को पता है, सौरभ और आशु को बस तिरंगा लहराने के लिए जेल में डाला गया है। तो मैं सभी देशभक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग तिरंगे से प्यार करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 16 अक्टूबर को शाम को 5 बजे आप सब सेंट्रल पार्क कैनॉट प्लेस में आइए तिरंगे के साथ। वहां पर हम अपना तिरंगा लहराएंगे और हम बता देंगे कि वेविंग अ तिरंगा इज नॉट अ क्राइम।
6: एनएसयूआई पहले ही आरोप लगा चुकी है कि प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें पीटा। अब दिल्ली पुलिस ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों पर हमला करने का केस दर्ज किया है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन एनएसयूआई बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार की जंग जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी का चुनाव सीएम योगी के हैट्रिक या फिर अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी का चुनाव है। दोनों ही नेताओं ने चुनावी दंगल में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। दोनों ही नेताओं ने चैलेंज पॉलिटिक्स को लेकर जुबानी युद्ध शुरू कर दिया।

0: योगी और अखिलेश की जुबानी टक्कर।
1: उन्हें यही फैसला लेना चाहिए, उनके बीच में अगला चुनाव लड़ना चाहिए।
0: वार और पलटवार, सियासत है धुआंधार।
2: पीडीए पीडीए चिल्लाते थे ये राज्यसभा के टिकट में, वो पीडीए कहाँ चला गया था।
0: 403 सीटों की लड़ाई, चुनावी पारा है हाई। 2027 का चुनाव, हर दिन नए नए दाम।
3: और जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़कर के दिखाएं।
4: आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से, चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं। लड़ाई चेलों से क्यों, लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए।
0: विधानसभा चुनाव से पहले 10 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव को योगी और अखिलेश की अग्नि परीक्षा से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन चुनावी लड़ाई में 3 के बजाय 2 उम्मीदवार उतारकर अखिलेश पहले राउंड में पिछड़ गए। दूसरे राउंड में अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया, ऐलान किया कि सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं। योगी ने नेहले पर दहला चला, चुनौती स्वीकार कर ऐलान किया कि अयोध्या में सीधा मुकाबला उनके और अखिलेश यादव के बीच होना चाहिए और वो तैयार हैं। वहां भी अखिलेश यादव का सियासी दांव उल्टा पड़ा, लिहाजा अखिलेश को डैमेज कंट्रोल का गियर लगाना पड़ा। ऐसे में 2027 की लड़ाई को लेकर सियासी पारा हाई है। सवाल यही है कि 2027 में योगी के सिर फिर सजेगा ताज या फिर 10 साल के बाद अखिलेश की सत्ता में वापसी होगी।
5: लेकिन जन आक्रोश के सामने भारतीय जनता पार्टी नहीं चलेगी। बाई इलेक्शन में तो 420 ही चल सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 403 में 420 ही नहीं चलने देंगे। पीडी के लोग डट करके मुकाबला करने काम करेंगे और भाजपाई हारेंगे भी और भागेंगे भी इस बार।
6: उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के चुनाव ने बता दिया है कि विधानसभा का चुनाव परिणाम क्या होने जा रहा है। ये लड़ाई 80-20 की फिर आ गई है, 80% एनडीए में और 20% पीडीए में, और पीडीए का क्या हाल होने वाला है ये आपके सामने फिर आने वाला है।
0: बीते दिन समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए, तो 24 घंटों के अंदर समाजवादी पार्टी के कुनबे में कई नेताओं को शामिल किया गया, जिसमें कई बीजेपी छोड़कर साइकिल पर सवार हुए हैं। मतलब सिर्फ जुबानी जंग नहीं बल्कि हर मोर्चे पर सीधी टक्कर जारी है।
5: वो हारने जा रहे हैं, वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए प्रहरी पीडीए समाज जुड़ गया है। ये लोग पीड़ा दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, और वहीं प्रेम दया का अपनापन का समाजवादी पार्टी लोगों को जोड़ने का काम कर रही है।
4: अगर इनका वास्तविक चेहरा देखना हो तो अभी राज्यसभा में आपने देखा होगा, ये पीडीए पीडीए पीडीए चिल्ला रहे थे। पूछो तो राज्यसभा में इनको प्रत्याशी बनाने थे तो एक अपने चचा जान को बना दिए और दूसरा मुंबई के धन्ना सेठ को बना दिए। एक भी दलित नहीं, एक भी वंचित नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, एक भी फॉरवर्ड नहीं, कोई मतलब नहीं। अरे चलो इन पे विश्वास नहीं था तो कम से कम मुसलमानों को ही बना देते प्रत्याशी, लेकिन नहीं बनाया उनको भी।
0: अखिलेश ने पीडीए के फॉर्मूले से 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को पछाड़ा था। इसी चुनावी मंत्र पर अखिलेश 2027 में जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो वहीं अखिलेश के पीडीए पर तंज करते हुए सीएम योगी ने इसे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करार दिया। चाहे अखिलेश हो या फिर योगी, दोनों अपनी अपनी जीत की भविष्यवाणी करने में पीछे नहीं है।
5: इधर देखने को मिल रहा है कि जब जनता में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, भारतीय जनता पार्टी जब जनता के बीच में कमजोर होती दिख रही है उस समय वो इलेक्शन कमीशन के पीछे छिप जा रही है और इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के इस भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को और भारत के नागरिकों को धोखा दे रहे हैं।
6: आश्चर्य है कि चुनाव जीते तो इनका पुरुषार्थ और हारे तो ईवीएम दोषी। इलेक्शन कमीशन दोषी।
0: हर दिन यूपी के सियासी दंगल में योगी और अखिलेश के बीच वार पलटवार का खेल जारी है। अखिलेश राम मंदिर में दान की चोरी को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरते हैं तो योगी राम भक्तों को अखिलेश से सावधान रहने की सलाह देते हुए नजर आते हैं।
5: देखिए धर्म अधर्म, अधर्मी कौन है वो हारेगा, झूठ बोलने वाले हारेंगे, जनता को दुख देने वाले हारेंगे और जिन्होंने करोड़ों श्रद्धालुओं का चढ़ावा रामधन की चोरी की वो हारेंगे, भगवान स्वयं हरवाएंगे उन्हें।
4: रामद्रोही इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? याद करिए, ये रामद्रोही इसको स्वीकार कर ही नहीं सकते और इसलिए वे कुछ न कुछ युक्ति जरूर निकाल करके अयोध्या को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ते।
0: योगी ने राम मंदिर के नाम पर धर्म याद दिलाया तो अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी का धर्म। वहीं योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताते हैं, लेकिन अखिलेश यूपी की कानून व्यवस्था पर उठे सवालों से पलटवार करते हैं।
6: क्या माफिया जिस जमीन पे पैर रख लिया वह तीक की हो गई, अशरफ की हो गई, और अब जिस जमीन पर सरकार ने कहा कि ये माफिया की नहीं, ये गरीब के लिए आसियाना बनना है, तो माफिया की सिट्टी पिट्टी गम वहां पे बहुमंजिला आवासीय सुविधा उपलब्ध करवा करके हम गरीब के लिए मकान की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं।
5: यूपी सरकार कस्टोडियल डेथ में नंबर वन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन से सबसे ज्यादा यूपी सरकार को नोटिसेस मिले हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कई ऑब्जर्वेशंस में कहा कि यहां की पुलिस पॉलिटिकल काम कर रही है, यहां की पुलिस प्रशासन न्याय नहीं दे रहा है, और यहां तक कहा कि पुलिस को क्या खत्म कर दिया जाए। सोचिए, पुलिस को भंग कर दिया जाए, विभाग ही खत्म किया जाए क्या?
0: मतलब साफ है कि यूपी चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे कानून व्यवस्था, अयोध्या, वोट चोरी और तुष्टीकरण के मुद्दों पर जुबानी तकरार और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। देखना यही है कि यूपी के वोटरों पर ये मुद्दे कितना असर डालते हैं। दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे हैं, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा।
7: और अब खबर अंकिता भंडारी मर्डर केस की, जिसे लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाए जाने का परिवार विरोध कर रहा है तो कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई है।
8: इंडिया गेट देर रात एक बार फिर हंगामे का गवाह बना, जहां अंकिता भंडारी के माता पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अंकिता भंडारी का परिवार दुष्यंत कुमार का सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने के विरोध में इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने पहुंचा था। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत कांग्रेस के कई नेता माता पिता से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन देर रात इंडिया गेट पर प्रशासन परिवार को हटाने पहुंचा, जहां माता पिता के अलावा कई कांग्रेसी नेता हिरासत में लिए गए। प्रशासन के एक्शन पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, सुबह के 4 बजे जब दुनिया सो रही थी तब अंकिता भंडारी के माता पिता को हिरासत में ले लिया गया। जिस जांच का नतीजा आया नहीं उसके पहले ही नियुक्ति की जल्दी और सवाल पूछने वाले माँ बाप को रात के अंधेरे में उठा लिया गया। इस सरकार की पहचान यही है, पीड़ितों की आवाज दबा दो, सवाल करने वालों को हटा दो। उधर अंकिता भंडारी को लेकर हंगामे की एक तस्वीर देहरादून में भी नजर आई।
9: कांग्रेस कार्यकर्ता अचानक राज्यपाल निवास पर पहुंच गए हैं। ये राज्यपाल आवास है, राजभवन है, जिसे लोक भवन भी कहा जाता है, और देखिए किस तरह से गेट को खोलने की कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके।

0: धक्का मुक्की जारी है।
1: राज्यपाल को क्या पत्र देने चला है? दुष्यंत गौतम के इस्तीफे की मांग, अजय गोटानी की मांग को लेकर हम ज्ञापन देने के लिए आए थे। चार दिन से राज्यपाल के लिए उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के सम्मान का सवाल है, उत्तराखंड की बेटियों का सम्मान है।
2: बीजेपी कांग्रेस पर मामले में सियासत करने का आरोप लगा रही है।
3: जब पुलिस के किसी पेपर में कहीं नाम नहीं है, केवल ऑपोजिशन इस नाम को उठा रही है।
4: उनके पेरेंट्स ने कहा सीबीआई जांच कराओ, तो सीबीआई जांच हो गई। तो आखिरकार भाई वो जांच में, जांच को होने देना, जांच में क्या आया है उसको जाने बगैर सारी बातें कह देना, पूरी तरीके से जो है वो पॉलिटिकल खेल रहे हैं। और राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, किसी की छवि बेवजह जो है धूमिल की जा रही है।
2: अंकिता भंडारी की मौत में बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम के शामिल होने को लेकर विपक्ष और परिवार की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सीबीआई की जांच पूरी होने से पहले ही दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का गवर्नर बना दिया गया, जिसके विरोध में अंकिता का परिवार दिल्ली पहुंचा।
5: किस बेस पे उन्होंने उस आदमी को राज्यपाल बनाया?
6: जो आशाएं लगी थी वो कुछ नहीं हुई, और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे।
5: मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक उनकी सीबीआई जांच नहीं हो जाती, उनको राज्यपाल घोषित न किया जाए।
2: उत्तराखंड में चुनाव से पहले दुष्यंत कुमार गौतम के राज्यपाल बनने के बाद एक बार फिर अंकिता भंडारी का मुद्दा अब बढ़ता नजर आ रहा है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
7: शिवा शर्मा मामले में जांच का दायरा बढ़ रहा है। इसमें खुलासा हुआ कि आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे नेपाल भाग चुकी है, उसके साथ उसकी बहन और अन्य आरोपी भी फरार हैं। सभी का पुलिस इनकी तलाश कर रही है, लेकिन एक वीडियो भी आया है जिसमें अपने आप को श्रद्धा बेगुनाह बताती है।
8: वही तस्वीर है जो श्रद्धा दुबे के नेपाल भाग जाने का पुख्ता प्रमाण है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर नेपाल के माहिमनगर की है। श्रद्धा अपनी बहन रश्मि दुबे और दोस्त आदिल रोड क्रॉस कर बस स्टेशन के भीतर जाते दिखे हैं। पुलिस सूत्रों का मानना है कि श्रद्धा का नेटवर्क काफी मजबूत है और उसे पुलिस की हर मूवमेंट की इनसाइड जानकारी समय से पहले मिल रही है। पुलिस से भाग रही श्रद्धा दुबे अब कह रही है कि वो पुलिस की जांच में सहयोग करना चाह रही है।
9: मैं कहीं गायब नहीं हूँ, मैं पुलिस में आके बयान देना चाहती हूँ, मैं उन्हें सब कुछ सच सच, जो कुछ भी है मैं उन्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ।
8: एक तरफ श्रद्धा दुबे वीडियो जारी कर पुलिस के सामने आने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ उसकी एसयूवी मिलने की खबर ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा के पास पार्किंग में श्रद्धा की एसयूवी कार मिली है। जानकारी के मुताबिक UP 32 QQ 0111 ये गाड़ी 10 अक्टूबर से पार्किंग में खड़ी थी। श्रद्धा गाड़ी पार्क करने के बाद नेपाल जाने की बात कहकर वहां से निकली थी और अब नेपाल से आई ये तस्वीर काफी कुछ बयान कर रही है। कारोबारी शिवा शर्मा की मौत से उठे सवालों को लेकर पहली बार मॉडल श्रद्धा दुबे का वीडियो सामने आया है। शिवा शर्मा की मौत के बाद उठे सवालों पर सुनिए श्रद्धा दुबे का ये बयान।
9: वो हत्या नहीं थी, वो एक सुसाइड था, ठीक है। मैंने अपनी आंखों से देखा उसको कूदते हुए, ठीक। अगर वहाँ के सीसीटीवी कैमरेज निकलेंगे, सब कुछ निकलेगा, तो उसमें दिखेगा कि वो किस तरह से कूद रहा है।
8: शिवा की मां ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें मुख्य आरोपी श्रद्धा है, साथ में श्रद्धा की बहन रश्मि दुबे भी आरोपी बनाई गई है। नेपाल से आई तस्वीर में रश्मि भी साथ दिखी है। शिवा की मां ने आरोप लगाए हैं कि श्रद्धा उनके बेटे को लगातार धमकाती थी और टॉर्चर करती थी,
10: डेली बांध के और थ्रेटन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करती थी, जिसके बाइट्स अक्सर उनके बॉडी पे होते थे। निशान पूछने पे वो ये कहते थे कि चोट लग गई है, गिर गया हूँ।
8: लखनऊ पुलिस ने मामले में जांच तेज कर दी है ताकि करोड़पति कारोबारी की मौत की असल वजह साफ हो सके। बहराइच से रामबरन चौधरी और लखनऊ से अंकित मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
7: और अब खबर आमिर खान के भांजे और कई फिल्मों में एक्टिंग करने वाले इमरान खान की, जिन्हें मुंबई पुलिस ने भारत छोड़ने का नोटिस दे दिया है। इमरान को डेडलाइन बता दी गई है, 28 अक्टूबर तक देश छोड़ दीजिए।
11: अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस नोटिस का मसौदा साफ है। पुलिस ने दो टूक कह दिया है कि इमरान खान भारत छोड़ दें। मुंबई पुलिस ने एक्टर आमिर खान के भांजे को ये नोटिस थमाया है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को ऐसा फरमान जारी करना पड़ा। दरअसल ये पूरा मामला 10 अक्टूबर 2026 का है। जब मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान

0: में विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था। इस प्रदर्शन में सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। इमरान खान भी उस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया था। इस बात से बीजेपी नाराज हो गई। पार्टी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस से इसकी शिकायत कर दी। दरअसल इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं है, वो अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं। उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा है। बीजेपी की शिकायत थी कि ऐसे लोग देश के अंदरूनी प्रोटेस्ट में कैसे शामिल हो सकते हैं।
1: किरीट सोमैया ने कहा था कि इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और वो भारत में हो रहे आंदोलन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने लगातार इसकी शिकायत मुंबई पुलिस से की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए इमिग्रेशन एक्ट के तहत इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के निर्देश मुंबई पुलिस द्वारा दिए गए हैं।
0: उसी मामले में संबंधित आव्रजन कानूनों के तहत कार्रवाई की गई है। मुंबई पुलिस के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की ओर से नोटिस जारी किया गया है।
2: इमरान खान के खिलाफ मैंने शिकायत दी थी, इमरान खान को 28 अक्टूबर तक हिंदुस्तान छोड़ना है। ऐसे जो भी होंगे, इमरान होंगे, इकबाल होंगे, यूसुफ होगा, अब्दुल होगा, जो विदेशी नागरिक, विदेशी पैसा, उनके ऊपर ऐसी ही कार्रवाई होगी।
0: OCI कार्ड धारक भारतीय मूल के विदेशी नागरिक होते हैं, जिन्हें भारत में रहने और कई अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता है, लेकिन OCI का दर्जा भारतीय नागरिकता के समान नहीं है। उसके साथ कुछ कानूनी प्रतिबंध भी जुड़े होते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इमरान खान मुंबई पुलिस के नोटिस पर क्या कदम उठाते हैं। दीपेश त्रिपाठी, आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: बीजेपी और विपक्ष में जारी है राजनीतिक घमासान। ज्ञानेश के खिलाफ राहुल की मोर्चाबंदी जारी। पार्टी नेताओं के साथ इंदिरा भवन में बैठक। बीजेपी का आरोप, विदेशी हाथों में खेल रहे हैं राहुल। अंकिता के परिजनों से मुलाकात के बाद राहुल ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। दुष्यंत गौतम की नियुक्ति पर उठाए सवाल, कहा सरकार के निर्णय से स्तब्ध हूं। दिल्ली में प्रदर्शन के पहले दीपके का केंद्र पर हमला, कहा एक देश एक पार्टी इनका उद्देश्य। प्रशांत भूषण बोले सत्ता परिवर्तन के लिए हमारी लड़ाई। पंचायत आज तक राजस्थान में बोले मुख्यमंत्री भजन लाल, तेजी से विकास कर रही है डबल इंजन की सरकार। पेपर लीक को किया सील, ड्रग तस्करों पर कार्रवाई। प्रयागराज में योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा माफिया के सामने घुटने टेक मौन रहती थी समाजवादी सरकार, अब माफिया मुक्त हो गया यूपी। हमारे देश में चुनाव आयोग के खिलाफ शुरू हुआ राजनीतिक आंदोलन अब अदालतों में भी चल रहा है। आज तीन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर यह जवाब मांगा। पहला नोटिस राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं के अलावा तीन और अर्जियों पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को जारी हुआ। राहुल गांधी ने फिर से टी पार्टी करके कल अपनी आगे की रणनीति बनाई।
1: तेरह अक्टूबर के बाद राहुल गांधी की आज फिर से टी पार्टी हुई, फिर से चुनाव आयोग के खिलाफ जुटान हुआ और फिर से आगे की रणनीति पर बात हुई। चुनाव आयोग के खिलाफ छिड़ी सियासी लड़ाई जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो वहां जंग के चार तरह के मोर्चे नजर आए। पहला मामला चुनाव आयोग और SIR वाला था, दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक राहुल गांधी के मार्च का था, तीसरा मामला जंतर मंतर से प्रदर्शन स्थल हटाने का था, चौथा मामला